0: या सुरक्षित नहीं रखी गई, अब इन वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। खबर ये भी है कि चहवा चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: अयोध्या में चढ़ावे चोरी का मामला सामने आते ही वक्फ के घोटाले का राजनीतिक शोर सुनाई पड़ने लगा। पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष बासित अली ने बहराइच के सालार गाजी दरगाह में घोटाले के आरोप लगाए, फिर मुख्यमंत्री योगी ने कई मंचों से वक्फ के घोटालों का उल्लेख किया, अब खुद मुस्लिम जमात के मौलाना रजवी ने वक्फ के घोटालों के आरोप लगाए।
2: क्या वक्फ बोर्ड में भी चल रही है धांधली? क्या वक्फ बोर्ड में भी हुआ है घोटाला? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर वक्फ के घोटालों की जांच करने की मांग की है
3: कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा।
2: मौलाना रिजवी सीएम योगी के नाम लिखी चिट्ठी में दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा लूट समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई।
3: जो वक्फ के जिम्मेदारान थे उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया और ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई।
2: शहाबुद्दीन रिजवी अकेले शख्स नहीं हैं जो वक्फ में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं।
4: पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो हर जगह के ऊपर घपलेबाजी हो रही है पूरी तरीके से।
2: समाजवादी पार्टी पर यह आरोप खुद सीएम योगी अपनी सार्वजनिक रैलियों और कार्यक्रमों में लगाते रहे हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया तो सीएम ने फिर से वक्फ घोटाले का जिक्र किया था।
5: अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई।
2: सियासी आरोप एक तरफ लेकिन आरोपों की जांच दूसरी तरफ। शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दिया जाए तो यूपी में किसी वक्फ घोटाले की सघन जांच अभी तक नहीं हो सकी है।
6: दूसरे स्थानों पे या दूसरे धर्म स्थल पे कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से वहां सुधार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी नहीं। अगर कोई सबूत किसी के पास है, एविडेंस है तो वो सामने लाना चाहिए।
7: वक्फ के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पहले हुआ करता था। वक्फ की जमीनों को औने पौने दामों पर कब्ज हो जाते थे, किराए पे देते थे और उसके धन का दोहन होता था। वक्फ जिस भावना से किया जाता उस भावना का तिरस्कार होता था, लेकिन आज सरकार के प्रयासों के बाद हम वक्फ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने का काम कर रहे हैं।
2: यूपी और देश में वक्फ की संपत्तियों के घोटालों के आरोप शुरू से लगते रहे हैं और उसे दूर करने के लिए ही सरकार ने वक्फ संशोधन कानून भी बनाया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि नए कानून के तहत बने वक्फ बोर्ड अब वक्फ संपत्तियों का उचित रखरखाव कर पाएंगे। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: दिल्ली दंगे में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा।
2: छह साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया, अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी पाए गए हैं। वहीं ताहिर के अलावा चार और आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
8: क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं?
2: आपको बता दें कि 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिला था। उनके पिता ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। तमाम गवाहों की पेशी, सबूतों और सुनवाई के बाद अदालत का फैसला दिल्ली के सामने है। जहां तक ताहिर हुसैन का सवाल है तो खबर है कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगा। ताहिर की माने तो वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है।
9: ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
2: हिंसा में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन से केजरीवाल ने किनारा कर लिया था। आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली थी लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने गले लगा लिया।
10: 2020 में जो दंगे हुए आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन और ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू जो वहाँ पर रहने वाला हिंदू समाज है उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया।
11: कोर्ट का फैसला है उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा क्या नहीं रहा।
12: लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी परी हो जाता।
2: दिल्ली दंगे को लेकर एआईएम सवाल उठाती रही है कि जिस दंगे में 53 लोगों की हत्या हुई उसमें 6 साल बाद भी सिर्फ एक हत्या के केस में दोषियों की पहचान क्यों हो पाई है। आखिर वो कैसी जांच थी जिसमें इसी दंगे में मारे गए हाशिम अली की हत्या के 12 और अनवर हत्याकांड के 5 आरोपी बरी हो जाते हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: महाराष्ट्र के नासिक में एक परिवार वाटरफॉल घूमने गया लेकिन वहां 2 बदमाशों ने परिवार की महिला से छेड़खानी की। परिवार ने विरोध किया तो फिर 15 किलोमीटर तक पीछा करके 4 बार बदमाशों ने हमला किया। इस मामले में 9 लोग पकड़े गए, 3 लोग फरार हैं।
13: बारिश का मौसम, महाराष्ट्र की अलग अलग वाटरफॉल, जहां इस वक्त हर परिवार छुट्टी मनाने के लिए अपनों के संग कुछ खुशी के पल बिताने के लिए पहुंचता है। लेकिन 12 जुलाई रविवार को नासिक के भावली वाटरफॉल के पास भागवत परिवार के साथ जो कुछ हुआ है वो हर आम आदमी को डरा देता है जो कहीं छुट्टी मनाने जाता है।
14: वहां के 2 लोकलाइट थे, उन्होंने कुछ गंदी कमेंट पास कर दी। वो व्हाइट कलर की बलून है, उसने आगे हमारा आके रास्ता ब्लॉक किया।
15: 6 जगह पर अटैक किया लोगों ने।
14: मेरा भाई बैठा था, उसकी कांच फोड़ दी।
15: कांच फूट रही थी तो बच्चा भी डर गया।
14: फाइटर से वगैरह कांच फूटी तो हमने गाड़ी थोड़ा रिवर्स लेके भागना चालू किया।
15: जहां भी रुक के वहां पे हमारी गाड़ी फूटी।
13: सबसे पहले दहशत के इस वीडियो को देखिए जिसमें एक कार में भागता हुआ मेहर भागवत का परिवार, जिनके पीछे एक बाइक पर हाथ में लोहे की रॉड लेकर अटैक करने के लिए आते 2 गुंडे और फिर दो लोग बाइक से, बाकी लोग सफेद रंग की कार से इस परिवार का पीछा 15 किलोमीटर तक करके हमला करते हैं, जो रविवार को नासिक के भावली वाटरफॉल के पास पिकनिक मनाने पहुंचे। इसके बाद ये सवाल हर आम आदमी का परिवार पूछना चाहता है, क्या पिकनिक स्पॉट पर भी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकती है। अब आप जानना चाहेंगे कि यहाँ हुआ क्या। मीर भागवत और उनकी पत्नी की साफ बीती को आज हर परिवार इसीलिए जरूर सुने।
14: मैं और मेरे भाई की फैमिली है ना, हम टोटल 8 लोग, उसके 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे, मिसेस उसकी, मेरी मिसेस, हम भावली डैम पे घूमने गए थे फैमिली के साथ में, टाइम स्पेंड करेंगे अच्छे फैमिली के साथ में। हम वहाँ पे गए तकरीबन 2-3 बजे, वहाँ पे खाना वगैरह खाया, पानी में खेले हम सब। 5:30 बजे के करीब निकलना है भाई, शाम हो रही है तो बच्चे आके गाड़ी में बैठे, लेडीज़ वगैरह निकलने लगे और हम जेंट्स थे तो सब जो खाने के बैग वगैरह थे हम पीछे से लेके आ रहे थे। तो मिसेज जा रही थी थोड़े अभी पानी में भीगने की वजह से ड्रेसेस वगैरह गीले थे तो किसी वहाँ के 2 लोकलाइट थे, उन्होंने कुछ गंदी कमेंट पास कर दी। तो मिसेज ने उनसे आर्ग्यू किया कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने भी आर्ग्यू किया।
15: चेंज करने हम कार के पास जा रहे थे तो आप एक बाइक पे 2 लड़के खड़े थे तो मैं उनके वहाँ से तो जाना ही पड़ेगा तो उनके बाजू से गई तो उन्होंने मुझे शिट्टी बजाई और कुछ कमेंट पास की। तो मैंने उनको बोला तुम पागल हो गए कि पब्लिक प्लेस में लेडीज को छेड़ रहे हो, उनको समझता नहीं आजकल क्या चल रहा है इनका। नहीं बोले असत वो मराठी में मुझे बोलने लगे तो फिर मैं थोड़ा उनके ऊपर ये करने लगा।
14: तो उनका ये चालू था झगड़ा तो मैंने दूर से देखा तो मैं भागते हुए गया कि क्या हुआ। तो इस मिसेस ने बोला कि ये मुझे छेड़ रहे, तो मैंने उनको डांटा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो।
15: मेरे हस्बैंड ने देखा कि इसका क्या चल रहा है उनके साथ, तो फिर ये भी पीछे से, अरे मेरे जा निकल जा बोले वो ऐसे मराठी बोले निकल जाओ तुम, क्यों दिमाग लड़ा। वहाँ पे बाद में जो लड़के खड़े थे 7-8-10 लड़के थे जो कार रहे वहाँ पे, तो वो आए बोले हमारे गाँव के लड़के को तुम ऐसे कैसे बोल सकते, हाथ भी लगा सकते।
14: तो मैंने उनको थोड़ा सा ये किया कि भाई तुम निकल जाओ, तो वो निकल गए। लेकिन वहाँ के जो लोकलाइट थे, वहाँ पे एक फोर व्हीलर में कोई शॉप रन करते वहाँ के लोकल बिजनेस, तो वहाँ के जो 6-8 बच्चे थे लोकलाइट, वो आए क्या हुआ क्या हुआ, तो वो लोग इशू करने लग गए।
15: थोड़ी सी हाथापाई हुई हमारी, वहाँ पे पब्लिक लोगों ने हमको बचा लिया, चलो निकलो यहाँ से जाने दो छोड़ो। आगे जाके इन्होंने पहले पूरा आगे सामने से आके उन्होंने आड़ी गाड़ी लगा दी और डायरेक्ट फाइटर से ना कांच फोड़ने चालू कर दी, तो हम डर गए। मैंने को बोला किरण भगाओ गाड़ी भगाओ, इन्होंने इतनी गाड़ी भगाई तो पीछे से फिर टू व्हीलर रोड वगैरह लेके काफी वीडियो में देखा, वो सब घटना चालू हो गई। फिर आगे जाके उनका एक लड़का गाड़ी पे लटका भी, पूरा लटका।
13: सोचिए कितने बेखौफ रहे होंगे वो गुंडे जो 15 किलोमीटर तक पीछा करके हमला करते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि क्या रास्ते में कहीं पुलिस नहीं थी, कहीं पुलिस पोस्ट नहीं थी।
14: वहाँ से आगे आने पे भावली डैम है, वहाँ पे हमें पुलिस वैन मिली ब्लू कलर की, तो वहाँ पे हमने पूछा कि हमें पुलिस कंप्लेंट करनी है, तो बोले ठीक है आप इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाइए। आगे निकले वहाँ से भावली डैम से 2 किलोमीटर आगे, तो एक वाइट कलर की बलेनो है, उसने आगे हमारे आके रास्ता ब्लॉक किया। जैसा रास्ता ब्लॉक किया तो वहाँ से उसमें से उतर के 2-4 बच्चे भागे, उन्होंने आगे की और मेरे बाजू में जो मेरा भाई बैठा था उसकी कांच फोड़ दी। तो हमने गाड़ी थोड़ा रिवर्स लेके भागना चालू किया, बोला इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाते। लेकिन जैसे हम नासिक मुंबई हाईवे पे आए फ्लाईओवर के नीचे नियर बाय, वहाँ पे 2 बाइक जो वीडियो वायरल हो रहा है पीछे से आके रॉड से मार रहे हैं, उन्होंने पीछे से रॉड से मारा और आगे आके वापस उन्होंने 2-व्हीलर से हमें ब्लॉक किया। वहाँ पे उन्होंने आगे वापस 70 से हमारी गाड़ी फोड़ी। फिर हमने सोचा इगतपुरी में जाना गलत होगा, ये लोकल लाइट है, तो इससे अच्छा अपन नासिक की तरफ भागते।
13: सुनकर डर लगता है, मानो फिल्म में जैसे किसी विलेन का जंगल राज दिखाते वो हालत सच में हो, मतलब रोक रोक कर परिवार पर हमला होता रहा और भागवत परिवार जान बचाने को भागता रहा।
15: 6 जगह पर अटैक किया लगभग उनको। सबसे पहले उन्होंने भावली डैम के आगे जो टर्न आता है ना वहाँ पे पकड़ा, क्योंकि उनको पता है यहाँ से टर्न मारना थोड़ा बड़ी गाड़ी को मुश्किल होगा। बरोबर वहाँ पे पकड़ा, वहाँ पे आए काज बीच छोड़े, वहाँ पे बच्चे डर गए, तब हमने मोबाइल चालू नहीं किया। उसके बाद वहाँ से जब हम निकले तो पीछे 2 बाइक पर जो लड़के आ रहे थे जो रोड था, तो मैंने बेटे को बोला, मैंने बेटा मोबाइल निकल के उनका वीडियो ले, वो बाकी जाने दो। फिर मेरे बेटे ने वो वीडियो लिया, तो वीडियो लेते ले तो उसने वीडियो देखा कि वो देख रहा है कि हम मोबाइल वीडियो ले रहे। फिर उसने रॉड फेंका, 2-2 रॉड फेंके, वहाँ पे उनका निशाना चुप गया। फिर आगे जाके फिर उनका निशाना परफेक्ट लगा, तो वो वीडियो हम लेने से कांच फूट रही थी तो बच्चा भी डर गया, वो वीडियो हमने लिया। फिर आगे जाके टोल नाका के बाहर रुके, तो एक पिंक शर्ट वाला है उसने आके से एक बटन बंद कर दिया हमारी गाड़ी का, बंद कर दिया, कांच खुले थे पूरे बंद कर दिया। फिर बोले उतर जाओ अपन ये करेंगे सॉर्ट आउट करेंगे मिटा देंगे ऐसा वैसा। तो ये मेरे हस्बैंड बोले चलो देखते, फिर मेरे पागल हो गए कि यहाँ पे उतरना रिस्क है, निकलो। फिर से हम वहां से वापस निकल।
13: पीड़ित परिवार का नासिक में नेशनल हाईवे पर 15 किलोमीटर तक पीछा करते ये गुंडे, टोल प्लाजा, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड, हाईवे पुलिस, जहां सब कुछ होता है लेकिन किसी से ये नहीं डरता और कोई मदद के लिए भी आगे नहीं आता।
14: अटैक करने के लिए उन्होंने 70 फाइटर्स और ये बेसबॉल के ये थे, शायद बेसबॉल के आप उसको क्या बोलते हैं स्टिक्स बोल सकते हैं, कुछ लकड़ी के भी थे। और मेरे हिसाब से मुझे किसी के हाथ में एक सिल्वर कलर का वो शायद छोटी सी ऐसी तलवार, तो ऐसी थोड़ा कर्व शेप में होता लेकिन वो सीधी थी, लेकिन सिल्वर तार चमक रहा था। अभी वो क्या हो रहा था, मेरा इंटेंशन था कि भागना है बचना है।
13: इस कार की हालत देखी, चारों तरफ से हमला हुआ, पत्नी बच्चे चीख रहे होंगे, पति गाड़ी भगाते रहे कि किसी तरह इनसे बच जाए। आखिरकार ये पुलिस तक पहुंचे, उसके बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3 लोग अभी फरार।
16: हमने 9 आरोपी अभी तक निष्पन्न किए हैं, जो कि एफआईआर में 6-7 आरोपी थे, बट इसमें जो शेल्टर देने वाले आरोपी है या फिर एसोसिएट्स है जिनको इन्होंने हेल्प किया था वो भी हमने इसमें आरोपी किए हैं, और अभी तक हमने 9 आरोपी इसमें ताबे में लिया है। इसपे आगे की जो कार्रवाई है वो आगे की कार्रवाई चल रही है। पर्यटन को सुरक्षा ऑलरेडी दी हुई है, पर्यटन के वहां पे बंदोबस्त भी था, वो लोग भी वहां पे पुलिस को मिले। पर इस घटना में जो है ये घटना कुछ 7-8 किलोमीटर दूर जाके जहां पे कोई मोबाइल लोकेशन नहीं आ रहा था उस पॉइंट पे हुई है।
13: ऐसे आरोपी हर पिकनिक स्पॉट के पास हर राज्य में मिलते हैं, जो कहीं तय दर से ज्यादा कीमत लेने को, कहीं भाषा को लेकर, कहीं संस्कृति को लेकर या तो विवाद करते हैं या छेड़खानी और मारपीट करते हैं। ये सोचते हैं कि ये लोकल है तो बाहर से छुट्टी मनाने आए लोगों पर हमला कर सकते हैं, उनको डरा सकते हैं, ये उन्हीं लोगों पर हमला करते हैं जिनके सैलानी बनकर आने से इनके और इनके इलाके के लोगों को रोजगार मिलता। जरूरी है कि नासिक के दोषियों को ऐसी सजा मिले जिसे सुनकर देखकर बाकी जगहों पर ऐसी आपराधिक सोच वाले सिहर जाए, ताकि कोई परिवार, कोई आम आदमी किसी जगह छुट्टी मनाने जाने से पहले डरे नहीं।
1: पुलिस चाहे जहां की हो, आम आदमी पार्टी को केंद्र में रखने के दावे करती है। गाजियाबाद पुलिस का ध्येय भी सेवा, सुरक्षा और समर्पण है, जो नागरिकों के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन अगर वाकई में ऐसा होता तो 22 वर्ष का एक नौजवान पिंक बूथ के बाहर तड़प कर नहीं मरता। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पिंक बूथ की महिला पुलिसकर्मियों ने राजकुमार की मदद करना तो छोड़िए, अपने बूथ का दरवाजा तक बंद कर लिया।
17: पुलिस कराते हुए मेरा बेटा का जान चल गया, किस लिए चल गया, क्यों चला गया, इतनी सी मेरा बेटा के हाथ कट गया, क्यों मेरा बेटा के जान चल गया।
13: 22 साल के बेटे को गंवाने वाली एक माँ का ये सवाल गाजियाबाद पुलिस से। मामला बहुत दुखद, क्योंकि पिंक बूथ के बाहर 40 मिनट तक एक नौजवान मदद के लिए तड़पता रहा। बार बार मदद की गुहार लगाने पर महिला पुलिस मदद को आगे नहीं आई, उल्टा पिंक बूथ का दरवाजा बंद कर लिया गया।
17: अंदर पुलिस लेडीज बैठ के देख रही है, मेरा लड़का ऐसे ऐसे तड़पा रहा, लेकिन कोई नहीं उठाया। जब मेरा लड़का के दम टूट गया।
13: यकीन करना मुश्किल है कि गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक नौजवान ज्यादा खून बहने से सबके सामने सड़क पर मर गया, वो भी पुलिस के पिंक बूथ के बाहर। राजकुमार को तड़पता देखकर भी महिला पुलिस कर्मियों का दिल नहीं पसीजा।
18: अच्छा, गिरा कहाँ था एग्जैक्टली? आप यहाँ पे गिरा पड़ा था,
19: ये है,
18: ये जो जगह है यहाँ पे ही गिरा पड़ा था।
19: हाँ जी, यहाँ से वो खून आया ना पूरा।
18: हाँ,
19: यही गिरा पड़ा।
18: ठीक।
13: थानों में फरियादियों के साथ पुलिस के संवेदनहीन बर्ताव की शिकायत तो आपने सुनी होगी, लेकिन गाजियाबाद में जो कुछ हुआ वो इंसानियत के मरने का भी सबूत देता है।
20: 40 मिनट तक राजकुमार यूं ही सड़क पर तड़पता रहा और तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। गाजियाबाद पुलिस का इस मामले में शर्मनाक बयान आया है कि ऑटो चालक और राजकुमार दोनों नशे में थे, लेकिन गाजियाबाद पुलिस को ये जवाब देना होगा कि जब दोनों मदद के लिए पुलिस के पास गए तो पुलिस आखिर क्या कर रही थी।
13: वीडियो में दिख रहा है ये 22 साल का राजकुमार, जिसके शरीर का कतरा कतरा खून जमीन पर फैलता गया। इस नौजवान को दम तोड़ते हुए दर्जनों लोग देखते रहे, तमाशबीनों में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल। तो पिंक बूथ के दरवाजे पर ये सब कुछ हुआ। जिन्हें लोगों की मदद करने के लिए ही तनख्वाह मिलती है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाना तो दूर दरवाजा बंद कर बैठी रहे, ताकि मरने वाले की कराहने की आवाज उन तक ना पहुंचे।
21: वो जब नीचे, वहाँ तो हमें किसी ने ये बताया कि वो नीचे पड़ा था, वो इशारे कर रहा था कि मेरे को बचाओ। वहाँ लेडीज पुलिस खड़ी थी, हमारे पास वीडियो है, वो लेडीज पुलिस खड़ी थी। मान लो आप प्रशासन हो, किस लिए हो? हमारी सेवा के लिए ना। जब आप ही नहीं करोगे, जस्ट यहाँ कोई कुछ काम हो जाए।
22: आसपास जो दुकानें थी
21: जी,
22: वो लोग भी वीडियो बना रहे थे
21: जी,
22: मदद नहीं की,
21: किसी ने मदद नहीं करी।
13: गाजियाबाद में रविवार की दोपहर ऑटो चलाने वाले राजकुमार का किराए को लेकर एक सवारी से झगड़ा होता है। उसने मदद के लिए पिंक बूथ का रुख किया, लेकिन वहां उसे मदद नहीं मिली।
17: मेरा लड़का चौकी में गया नाम दाखिल कराने, मेरा लड़का का चौकी में से बाहर धक्का मार के निकाल के दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद मेरा लड़का दीवार में हाथ मारा, तभी न खोले। उसके बाद मेरा लड़का शीशा पर हाथ मार दिया, मेरा लड़का के हाथ कट गया, खून निकलते निकलते मेरा लड़का वहीं बेहोश हो गया।
1: गाजियाबाद पुलिस से जब इस बारे में पूछा गया तो अजीबोगरीब जवाब पुलिस की तरफ से आया कि मरने वाला नौजवान ऑटो ड्राइवर नशे में था, जिससे उसकी लड़ाई हुई थी वो भी नशे में था। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने क्या दोनों को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए भेजा? पिंक बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी कहाँ थे? घंटों तड़प तड़प कर एक व्यक्ति, एक नौजवान ने दम तोड़ दिया, तो पुलिस ने उसकी मदद क्यों नहीं की?
13: आप सोच रहे होंगे कि मरने वाले राजकुमार के हाथ से खून कैसे निकला, तो इस सवाल का जवाब ये कांच का दरवाजा है, जिसे जोर से खटखटाने की वजह से राजकुमार के हाथ पे चोट लग गई। वो बेसुध होकर बूथ के आगे गिर जाता है और ज्यादा खून निकलने से उसकी मौत हो जाती है।
18: पिंक बूथ है, यानी अगर कोई महिला मुसीबत में पड़ती है, वो अगर मदद के लिए आती है तो अंदर मौजूद पुलिसकर्मी उसकी मदद करेंगी, लेकिन अगर कोई और आता है तो उसे यहाँ पर जाहिर सी बात है तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन रविवार को जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उस पर यकीन करना एक बार की मुश्किल है। दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास एक ऑटो आता है और सीधे अंदर घुस जाता है। आप देखिए यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ऑटो आ जाता है। ऑटो में कुल 3 लोग थे, एक ऑटो चला भी रहा था, तो करीब 4 से 5 लोग अंदर मौजूद थे। उनकी आपस में किसी बात पे लड़ाई हो रही थी, उनको शायद पिंक बूथ समझ में नहीं आया होगा, वो यहाँ पर लड़ने लगते हैं। जब यहाँ पर समझाया गया तो वो ऑटो लेके वापस बाहर की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं कुछ दूर। आगे आप जो चौराहा देख रहे हैं, इस चौराहे के पास पहुंचते हैं, ऑटो रुकता है, उनमें आपस में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और उसके बाद जो ऑटो में ज्यादातर लोग थे वो चले जाते हैं, जबकि जो राजकुमार है 22 साल उम्र है, पास में ही रहता था सिवान, वो वहीं सड़क पर लेट गया।
13: राजकुमार ने जब मदद की गुहार इस पिंक बूथ में लगाई तब इसी तरह का माहौल होगा, लेकिन जब राजकुमार की सुनवाई नहीं हुई तो उसने बूथ के कांच के गेट को खटखटाया और इसी दौरान उसकी नस कटने से खून बहने लगा। लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने मदद तो दूर पास के पुलिस स्टेशन से मदद कराने या एम्बुलेंस बुलाने तक की जहमत नहीं उठाई। दावा है कि जिससे राजकुमार की बाद में जान चली गई।
0: जो 100 नंबर कॉल थी परसों, वो किसने की थी?
3: वो तो ऑर्डर करी, बेटे ने करी थी कि जब वो शीशे में हाथ हाथ मारा।
0: अच्छा, हाथ हाथ मारा जब शीशे में। कितनी देर तक वो बाहर पड़ा रहा? आपने
3: बता, जो बताया मैं था नहीं।
0: अच्छा, कितनी देर बाहर पड़ा?
3: मैं रात को आया था, बहुत देर तक।
0: कितनी देर तक बाहर बॉडी पड़ी रही होगी?
3: पता नहीं,
0: पता नहीं।
13: अब आप सोचिए, पुलिस ने एम्बुलेंस तक बुलाने की कोशिश नहीं की, मतलब पिंक बूथ में मौजूद पुलिसकर्मियों ने अपने दरवाजे पर मदद की गुहार लगाते एक आम आदमी को न सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया बल्कि उसकी आवाज कानों तक ना आए इसके लिए दरवाजा बंद कर लिया।
18: बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में था और जो बाकी लोग थे वो भी शराब के नशे में थे। वो वहीं 3-4 मिनट पड़ा रहा जैसा कि आई विटनेस हमें बताया, उसके बाद फिर वो वापस आता है और वापस वो आया तो अंदर की तरफ जब वो आया पुलिस चौकी में, तो हम आपको दिखाएं कि वो चौकी में दोबारा आता है और चौकी में जब वो दोबारा आता है तो सामने जो आप ये लोहे का गेट देख रहे हैं इसको बजाने लगा। ये जाहिर सी बात है ये तो बंद है, आप देखिए तब भी इस पे ताला लगा था। उसके बाद जब उसकी कंडीशन देखी तो जो अंदर महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने ये जो गेट है, आप ये गेट देखिए ये बन चुका है, तब ये गेट ये टूट गया था शीशे का।
13: आज तक को पता चला है कि आसपास के लोगों की शिकायत के बाद एक बाइक सवार पुलिसकर्मी आया, उसने राजकुमार को ऑटो में बैठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन एक भी ऑटो नहीं रुका। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई जिसे आने में हुई देरी ने दावा है कि राजकुमार की जान ले ली।
4: एक ऑटो चालक द्वारा एक ऑटो सवारी को बिठाया गया, दोनों ही नशे की हालत में थे। पैसे के लेन देन को लेके दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों ही पिंक बूथ पर पहुंचे और शराब के नशे की हालत में ऑटो सवारी ने तेज से पिंक बूथ के गेट पर हाथ मारा जिससे उसके हाथ में कांच गड़ गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
13: यूपी पुलिस अक्सर एनकाउंटर वाले वीडियो दिखाकर अपराधियों को खबरदार करती है, लेकिन गाजियाबाद की ये घटना बताती है कि यूपी पुलिस को सख्त बनने के साथ संवेदनशील बनने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर वो संवेदनशीलता होती तो 22 साल का नौजवान पिंक बूथ के बाहर तड़प कर दम नहीं तोड़ता। हिमांशु मिश्रा, गाजियाबाद, आज तक।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
23: क्या गुप्त नवरात्रि अपने आप में विशेष है? क्या गुप्त नवरात्रि का पूजा विधान अलग है? क्या गुप्त नवरात्रि की साधना के प्रभाव ज्यादा होते हैं? क्या है गुप्त नवरात्रि की महिमा? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
24: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
25: When your cat is acting weirder, or your dog is being louder, your turtle moves slower.
26: Hello, Ted.
25: Your cat seems thirstier.
27: Whoa, slow down, buddy.
25: Or your puppy is acting clumsier. Day or night. If you don't know what's wrong, know where to go.
26: Veg ER for pets. This is Kate.
25: Veg. The better, kinder ER for pets.
5: Soccer's biggest stage is here. And we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
6: उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े चेहरे, जनता के सबसे बड़े सवाल और आज तक की सबसे बड़ी पंचायत, 15 जुलाई, लखनऊ।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

लगातार चौथे दिन अमेरिकी हमलों से दहला ईरान। बंदर अब्बास के शम किश और हिंगाम द्वीप पर धमाकों की आवाज। ईरान ने भी कुवैत बहरीन जॉर्डन पर हमले किए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। 24 घंटे के अंदर वापस लिया 20% टैक्स का फैसला। अमेरिकी सेनाओं ने शुरू की नाकेबंदी। ट्रंप ने कहा ईरान पर जारी रहेंगे हमले। संसद सत्र की तैयारी के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर। अमित शाह से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे। सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी की मुलाकात। आज लखनऊ में सजेगा पंचायत। आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच। सीएम योगी समेत सियासी दिग्गज करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा स्पेन। फ्रांस को 2-0 से हराया। मिकेल और पेड्रो पोरो ने किए गोल। आज दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टक्कर।

0: देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बजे हैं और 6 बजे 6 ताजा खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्पेन पहुंच गया है, फ्रांस को 2-0 से हराकर इतिहास रचा है। बुलेटिन में दूसरी खबर होगी, लगातार चौथे दिन अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तीसरी खबर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। और चौथी बड़ी खबर होगी कि कैसे 24 घंटे के भीतर ही हॉर्मुज पर ट्रंप टोल वसूलने के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूटर्न ले लिया है। बुलेटिन की पांचवी बड़ी खबर है कि आज से भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो जाएगा, यानी बाजार के लिए भी अच्छी खबर है। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण खबर ये कि जुलाई में मानसून ने दस्तक दो दी, लेकिन अचानक कहां गायब हो गया। मन में आपके सवाल है कि आखिर बारिश क्यों नहीं हो रही है, इसका भी जवाब हम आपको देंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर की। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को करारी शिकस्त दे दी है। फ्रांस को 2-0 से हराकर स्पेन ने दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। 16 साल बाद स्पेन फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। मिकेल ओयारज़बाल और पेड्रो पोरो के गोलों की बदौलत स्पेन ने पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा और उसके मजबूत डिफेंस ने फ्रांस को गोल का कोई मौका ही नहीं दिया। सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर टीम में से एक फ्रांस और वो गोल ही नहीं कर पाई। स्पेन ने ऐसी घेरेबंदी की कि फ्रांस के खिलाड़ी गोल पोस्ट तक पहुंच ही नहीं पाए। तो डेलस स्टेडियम में मिकेल ओयारज़बाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी शूटआउट लिया, पेनल्टी पर पहला गोल किया और इसके बाद 58 मिनट पर पेड्रो पोरो ने गोल दागा और इसी के बाद स्पेन ने 2-0 से इस मैच पर अपनी जीत पक्की की। तो लगातार 37वें मैच में अजेय रही स्पेन अब फाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ेगी। तो बता दें अगला मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच है और यहां पर जो विजेता होगा उसको स्पेन का सामना करना पड़ेगा। अब इन सब में सबसे ताकतवर टीम अर्जेंटीना मानी जाती है, लेकिन क्या इंग्लैंड को इतिहास रच देगा। वैसे भी इस फीफा वर्ल्ड कप में बहुत से इतिहास रचे गए हैं, दिग्गज लेगेसी वाली टीमें तो मुकाबले से बाहर हो गई और सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर अब स्पेन और फ्रांस को ही देख लीजिए। स्पेन ने फाइनल में जगह बनाई है तो अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आगे क्या होगा, इस पर नजर बनी रहेगी क्योंकि आज फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। तो अटलांटा स्टेडियम में भारतीय समय के हिसाब से 12:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा जब अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। इस मुकाबले पे सबकी नजरें बनी हुई हैं, लियोनेल मेसी और हैरी केन, ये दो चेहरे जो ये तय करेंगे कि जीत किसकी होगी। मेसी इस वर्ल्ड कप में 8 गोल दाग चुके हैं, गोल्डन बूट की रेस में इस बार मेसी दूसरे स्थान पर हैं, तो इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन अब तक 6 गोल कर चुके हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक 14 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, इसमें इंग्लैंड ने 6 जबकि अर्जेंटीना ने 3 मैच जीते हैं। 5 मुकाबले दोनों के बीच ड्रॉ रहे हैं, यानी अब तक के मुकाबले में अर्जेंटीना के मुकाबले इंग्लैंड का दबदबा ज्यादा है। तो वर्ल्ड कप इतिहास में दोनों टीमों की छठवीं बढ़त होगी। इसके पहले खेले गए कुल 5 वर्ल्ड कप मुकाबलों में इंग्लैंड ने 3 जीते, अर्जेंटीना ने 2 मैच जीते। चलिए शुरू करेंगे दूसरी बड़ी खबर जिसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है, वो है ईरान और अमेरिका के बीच जंग की। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमले किए हैं, लगातार चौथे दिन ईरान के कई शहरों में अमेरिका ने बमबारी की है, हवाई हमले किए हैं और ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया है। तो ईरान के कई इलाकों में अटैक हुए हैं, बंदर अब्बास, केशम द्वीप, किश द्वीप, हंगाम द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान के दक्षिणी इलाके में अंदमिश और अहवज में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरानी न्यूज एजेंसियों के मुताबिक ईरान के किश द्वीप पर पानी और बिजली की सुविधा के पास अमेरिकी प्रोजेक्टाइल से विस्फोट हुआ है और जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक केशम आइलैंड पर भी कई धमाके सुने गए हैं। तो लगातार चौथे दिन ईरान के दक्षिण का इलाका, जो कि ईरान की न सिर्फ कोस्टल लाइन है बल्कि उसकी स्ट्रेटेजिक लाइन है, उस पर अमेरिका ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और उसका मकसद क्या है, उसका मकसद यह है कि ईरान किसी भी हाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कोस्टल लाइन है उस पर वो किसी भी हाल में हमले ना कर सके। तो कौन सा इलाका है जो ताजा हमले में, हम बता दें आपको, बंदर अब्बास सबसे महत्वपूर्ण इलाका जहां से सीधे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण करता है। इसी के साथ हिंगम द्वीप जो बिल्कुल ठीक उसके आगे दक्षिण पश्चिम में है, किश आइलैंड पर यह लगातार तीसरे दिन हो रहा हमला है। अहवाज और अंदिमेश जो कि पूरी तरह से पश्चिमी ईरान के वो हिस्से हैं, इसी के साथ इन इलाकों पर हमला करके दरअसल उसने बॉर्डर सप्लाई लाइन जो है उसको रोकने की कोशिश की है। लेकिन तटीय इलाकों में खासकर किश द्वीप, हिंगम द्वीप और उससे ज्यादा बंदर अब्बास, अमेरिका ने बार बार कहा है कि वो ईरान की नेवी की ताकत को निस्तो नाबूद करेगा ताकि वो किसी भी हाल में, खासकर ये जो इलाका है यहां से आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिसके अंदर जहाजों का बेड़ा होता है, यहां वो मूव न कर सके, उसको निशाना बना रहा। तो अमेरिका उसी ताकत को पंक्चर करना चाहता है। तो मिडिल ईस्ट की महाजंग में अब तक क्या हुआ है, अमेरिका बनाम ईरान में आधी रात को ईरान के कई इलाकों में धमाके हुए हैं, धमाके सुनाई दिए हैं। सिंड्रोम की ओर से इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो भी डी क्लासिफाई की गई हैं पूरे ऑपरेशन की, कि कैसे न सिर्फ लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल बल्कि फाइटर जेट्स लगातार स्क्रैम्बल कर रहे हैं। तो इस बार हिंगम द्वीप, अंदमेश और इन सारे इलाकों को हमला को निशाना बनाया गया है अमेरिकी वायुसेना की ओर से। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते निशाना बनाया है। बहरीन पर हमले किए हैं, जॉर्डन पर हमले किए हैं। रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉशिंगटन से। रोहित, ऐसा लग रहा है कि कुल मिलाकर के घूम फिर के हम फिर से उसी 28 फरवरी के दौर में पहुंच गए हैं जब 39 दिनों की जंग, फिर सीज फायर, फिर बातचीत, फिर इस्लामाबाद टॉक, लेकिन इन सब का मतलब अब लगता नहीं कुछ सार्थक हुआ है, क्योंकि घूम फिर के मेरे सामने फिर वही तस्वीरें मैं देख रहा हूं, वही फाइटर जेट स्क्रैम्बल हो रहे हैं, वही ईरान के हमले हो रहे हैं और इस बार उसने अपना दायरा कुवैत, जॉर्डन तक को अपनी चपेट में ले लिया है।
1: देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है जिस तरह से बातें प्रॉमिस की गई थी दोनों साइड्स द्वारा। दोनों साइड्स ने कहा था कि एक एमओयू है और 60 डेज के अंदर एक अग्रीमेंट हो जाएगा, उसके बावजूद जिस तरह से हमने एस्केलेशन देखी और एस्केलेशन हो रही है पिछले चार दिनों से, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बातचीत जो है वो सही नहीं हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार इस बात का हवाला दिया है कि वो निगोशिएट करते हैं, वो टॉकिंग पॉइंट्स पर एग्री करते हैं ईरानियन लीडर्स, और फिर वो आके फिर से बातचीत जो है फिर से नए सिरे से शुरू कर देते हैं या अग्री नहीं करते चीजों को लेके। आज भी जब उन्होंने मीडिया से बात की तो कहा कि हमारे पास ऑलमोस्ट 3 दिन पहले एक पूरा पुख्ता एग्रीमेंट था, उसको फिर से वॉक बैक कर गया ईरान। तो कहीं ना कहीं आई थिंक फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है यहाँ पे। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, आई थिंक वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम अब जो है ये बम गिराते रहेंगे, इसको एस्केलेट करते रहेंगे जब तक ईरान तैयार नहीं हो जाता बात करने के लिए, और अगर नहीं माना हम कल रात को भी इस तरह से हमले करेंगे, उसके बाद भी हमले करेंगे। और अगले हफ्ते उन्होंने बहुत बड़ी चेतावनी दी, उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते अगर ईरान अगले हफ्ते तक नहीं मानता है बातचीत करने के लिए और अग्रीमेंट के लिए, तो हम फिर से जो उन्होंने बहुत पहले चेतावनी दी कि जो ब्रिजेस हैं उनको निशाना बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं ईरान के रवैये से।
0: और इसी के साथ साथ ये भी है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत करो, तो रोहित इसका भी जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि ईरान अमेरिका के बीच ईरान ने मिडिल ईस्ट देशों को निशाना बनाया है। ईरान ने कुवैत पर हमला किया है, कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के हमले के बाद कुवैत के कई इलाकों में सायरन बज रहे हैं। कुवैत की सेना के मुताबिक अब तक 1 बैलिस्टिक मिसाइल, 5 क्रूज मिसाइल और 33 ड्रोन इंटरसेप्ट हुए हैं, इन्हें तबाह किया गया है। साथ ही कुवैत की सेना ने यह भी कहा है कि कुवैती नौसेना के एक पोत को भी निशाना बनाया गया, यानी एक कुवैत की वॉरशिप पर भी ईरान ने हमले किए हैं, जबकि सशस्त्र बलों के 4 जवान घायल हुए हैं। अगर आपको याद हो पिछले दौर के, जब पहले दौर का 1.0 ये वॉर शुरू हुआ था, सबसे ज्यादा नुकसान यूएई को हुआ था और उसके बाद सबसे ज्यादा हमले बहरीन में हुए थे, लेकिन इस बार जो ईरान का हमला है उसके केंद्र में कुवैत है, कुवैत के साथ बहरीन और बहरीन के साथ जॉर्डन भी ईरान का कहर इस बार देख रहा है। तो ईरान अमेरिका जंग को लेकर के एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ हमलों की नई लहर शुरू की है, ऑपरेशन नसर 2 नाम दिया है। इसके तहत अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किए जा रहे हैं, खैबर शेकन, जुल्फिकार, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। IRGC ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। तो ईरान ने अब इस ऑपरेशन को अपना नाम दिया है ऑपरेशन नसर 2। वॉशिंगटन से रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, बातचीत की दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत करें, कोई रास्ता निकले। ईरान ने ऑपरेशन नसर 2 लॉन्च कर दिया है और उसके बाद उसने अपनी खैबर शेकन और जुल्फिकार, उन बैलिस्टिक मिसाइलों को निकाला, और दूसरा हमले के निशाने पर इस बार कुवैत और जॉर्डन हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब वो ईरान जो है वो अमेरिका की कैपेबिलिटीज को चैलेंज कर रहा है कि अगर आप यहां का इस्तेमाल करेंगे बेस, तो हमें पता है आपकी पावर सेंटर कहां है, आपके कौन से हथियार, कौन से लॉजिस्टिक कहां है। इन दोनों बातों को अगर कड़ियों में हम जोड़ते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है?
1: देखिए, फुल ब्लोन एस्केलेशन है इस वॉर की, जो हमने बात कही थी कि फरवरी में जिस तरह से वॉर शुरू हुई थी, जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था, जो अमेरिकन बेसिस है उन पर अटैक कर रहा था, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है उन पर अटैक कर रहा था, ईरान का ये हमेशा से यही रुख रहने वाला था, ये हम सबको पता था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमने कहा बात कही कि वो अब कह रहे हैं कि वो अग्रीमेंट जो है, अगर ईरान मानने के लिए तैयार नहीं होता तो ये चलता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक ईरान जो है अमेरिका की सारी शर्तों को नहीं मान लेता, जिसके ऊपर MOU साइन करवाया गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद जो ईरानी साइड है, या तो उनकी कई ऐसी बातें हैं जो शायद अमेरिका को अभी तक पसंद नहीं है या समझ में नहीं आई, या दी अदर वे अराउंड कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर और जो बाकी के प्रेसिडेंट डोनाल्ड की रेडलाइंस है उसको लेकर अभी तक ईरान में क्लियर रुख नहीं है, और उसी की वजह से मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश दिया सेंटकॉम को कि फिर से आप जो है इस मुहिम को शुरू करें, और उसके रिटेलिएशन में अब इस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा, एज आई सेड, यू नो, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। लग रहा था कि युद्ध जो है रुक गया है, लग रहा था कि एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो एस्केलेशन हुई है पिछले 4 दिन में, उसको देखते हुए लगता है कि ये थोड़े दिन और चलेगा।
0: और इसी वजह से दरअसल कई सारी इन परिस्थितियों को लेकर के दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात के लिए हैरत में हैं कि आखिर यहां होगा क्या। बने रहिए हमारे साथ, एक बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो कथित डोनाल्ड ट्रंप टैक्स लगाने की बात कही थी, उस पर उन्होंने यूटर्न ले लिया है। दरअसल हॉर्मुज में टोल के घोषणा पर अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूटर्न ले लिया है। 20% टैक्स के फैसले से अब पलट गए हैं सिर्फ 24 घंटे, और 24 घंटे के अंदर ही ट्रंप ने अपना फैसला वापस ले लिया है। उन्होंने कहा था कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को वो सुरक्षा देंगे, लेकिन उस पर 20% टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन 24 घंटे के भीतर उन्होंने अपना यह फैसला वापस ले लिया है। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने जानकारी देते हुए लिखा है कि मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ बातचीत हुई, उस बातचीत के बाद उन्होंने अपनी घोषणा को खत्म करने का फैसला ले लिया। इसकी जगह खाड़ी के देश अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे, इससे अमेरिका में लाखों रोजगार पैदा होंगे। इसके पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि हॉर्मुज रूट से गुजरने वाले जहाजों को 20% टैक्स वसूला जाएगा, लेकिन इस फैसले की कई देशों ने आलोचना की थी। रोहित, 24 घंटे हुए नहीं। अच्छा, एक बार जरूर है कि चाहे बाएं कान से दाएं पकड़े या फिर दाएं कान से बायां पकड़े, ये उन्होंने जरूर कह दिया कि चलो अगर आप अब से 20% टैक्स नहीं दोगे, आओ अमेरिका में निवेश करो। एक तो वो अब इलेक्शन के पहले अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को कह रहे हैं, देखो मैं तो मिडिल ईस्ट से और इन्वेस्टमेंट ला रहा हूं, वहां जहाजों को रास्ता भी देंगे, दुनिया भर के देशों को नाराज भी नहीं किया, लेकिन 24 घंटे में उनकी घोषणाएं बदल जाती हैं। यकीन होगा कि वो अगले कदम क्या करने वाले हैं?
1: देखिए, अगेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हर चीज में ये हमेशा कहते हैं कि उनके सारे विकल्प है, वो यू नो सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। जब मिडिल ईस्ट के जो नेशंस है जिन जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, तो जब उनसे उनकी बातचीत हुई तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए हम 20% टैक्स जो है जो टोल लगाया तो नहीं लगाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट आ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि यू नो किसी भी तरह से यू नो इन्वेस्टमेंट अगर अमेरिका में आती है या अमेरिका में एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, जिसकी बात हमेशा करते आए हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही है अमेरिका में, जॉब्स क्रिएट होंगे, तो कहीं ना कहीं से यू नो मैसेजिंग तो डिलीवर हो रही है। पर हाँ, ये थोड़ा सा आश्चर्य यू नो आश्चर्य करने वाली बात है कि 24 घंटे में ही उन्होंने जो है अपना बयान जो है वो उसको बदल दिया, उनको कन्विंस किया गया मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज द्वारा, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कन्विंस भी हो गए। ये भी दिखाता है इसमें आशुतोष कि अगर ईरान सचमुच पॉजिटिव स्टेप्स ले तो शायद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मान जाए और ये जो इतना बड़ा एस्केलेशन है वो ना हो। लेकिन फिलहाल जो आज उन्होंने बातें की हैं उससे तो ये लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये अटैक सब नहीं रोकने वाले हैं। आशुतोष,
0: ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिम एशिया में जहां स्थिति लगातार तनावग्रस्त होती जा रही है, वहीं पर ट्रंप अपने टोल टैक्स से वापस लौटे हैं, लेकिन स्थिति दरअसल इस बात पर सभी दुनिया की नजर है कि जो युद्ध में एस्केलेशन है क्या वो खत्म होगा। लेकिन बात करेंगे भारत के लिए बड़े दिन की बड़ी खबर, भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से लागू होने जा रहा है। इसी के साथ भारत में आने वाले ब्रिटेन के सामानों की कीमत बहुत कम हो जाएगी, आयात निर्यात पर भारी टैरिफ कटौती देखने को मिलेगी। जून में ब्रिटेन और भारत

0: देना होगा। भारत ब्रिटेन के बीच ये जून में समझौता हुआ था, तारीख तय की गई थी और भारत का सामान अब यूके में। अब सोचिए अगर आप लंदन जाते हैं घूमने या यूके में कहीं जाएंगे, वहां पर आपको सामान मिलेगा मेड इन इंडिया, वो सस्ता होगा क्योंकि उस पर ड्यूटी नहीं होगी। उसी तरह मेड इन ब्रिटेन भी अब भारत में बिकेगा, उस पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी, यानी टैक्स नहीं लगेगा उस तरह का। और जब वो ड्यूटी नहीं होगी तो उसकी वजह से उसकी कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी। अब भारत ब्रिटेन के बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो इसलिए है ताकि दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात का संतुलन बना रहे, एक दूसरे का उत्पाद एक दूसरे के देशों में बिना ड्यूटी के बिके, तो न सिर्फ ब्रिटेन को फायदा होगा बल्कि भारत के जो उत्पाद, अब सोचिए 99% उत्पाद भारत से हम क्या क्या भेजते हैं, चावल भेज सकते हैं, मसाले भेजते हैं, हम कपड़े भेजते हैं, जो कुछ भी हम यूके के बाजार में भेजेंगे उनमें से 99% उत्पाद ऐसे होंगे जिस पर अब ब्रिटेन ड्यूटी नहीं लगाएगा। 11%, 15%, 20% ऐसी ड्यूटी होती थी वो नहीं लगेगी। तो अब क्या क्या फायदा होगा देख लीजिए, इसको बताते हैं। भारत से क्या निर्यात होता है, रेडीमेड कपड़े, जूते जो मेड इन इंडिया है, कई सारे फूड प्रोडक्ट्स भी हैं। और यूके से क्या निर्यात होता है, लग्जरी गाड़ियां। तो अगर आप मेड इन ब्रिटेन गाड़ियां खरीदना चाहते हैं तो बस अच्छे दिन आ गए हैं। भारत से ऑटो पार्ट्स, हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो हम निर्यात करते हैं, उसी के साथ गहने देते हैं, खिलौने जो हम बनाते हैं वो हम ब्रिटेन भेजते हैं, तो उनके पर ड्यूटी जब नहीं होगी तो उनकी कीमतें घट वहां पर घट जाएंगी, जिसकी वजह से भारतीय उत्पादों की मांग ब्रिटेन में बढ़ जाएगी। रेडीमेड कपड़े हम बहुत बड़ा बनाते हैं, गुजरात से, भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो हब हैं। उसी के साथ यूके से लग्जरी गाड़ियों की भी कीमतें, तो ये वो फायदा है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि भारत के जो निर्यातक हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो ये तो बात हो गई भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, लेकिन दरअसल भारत के किसानों की चिंता इस बात की है कि मानसून आ चुका है, वो खबरें मानसून की देख रहे हैं, जून में बारिश हुई नहीं, जुलाई का पहला सप्ताह बीत चुका है लेकिन हफ्ते में जमकर बारिश पहले शुरुआत में हुई, कुछ राज्यों में हुई, कहीं पर बाढ़ आई, लेकिन अभी भी ज्यादातर देश को लग रहा है कि मानसून कहां चला गया, आसमान के बादल कहां चले गए, जून का डिफिसिट जुलाई की बारिश क्या खत्म करेगी, कई सारे ऐसे सवाल है। और यह भी लग रहा है कि क्या सूखा तो नहीं पड़ेगा, 5 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में पानी की एक बूंद नहीं गिरी है, तो सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इससे आगे और कितना नुकसान होगा। देखिए रिपोर्ट।
1: अचानक से बरसता मॉनसून कहां चला गया, जुलाई में बारिश की रफ्तार पर क्यों ब्रेक लग गया, क्या ये अल नीनो का असर है या फिर से सूखा पड़ने वाला है, मॉनसून पर लगा ये ब्रेक फसलों के लिए कितना नुकसानदायक है। पिछले हफ्ते हुई ये शानदार बारिश बता रही थी कि देर से ही सही, लेकिन मॉनसून जब आया तो झूम कर बरसा, किसानों को लगा कि उनकी फसलों की बंपर पैदावार होगी, लेकिन 2 दिन में ही ये चिलचिलाती धूप निकल आई, भीषण गर्मी के साथ उमस, ऐसा लगता है कि जैसे मई जून फिर से लौट आया हो। सवाल है कि बारिश अचानक से कहां चली गई, मॉनसून पर यह ब्रेक क्यों लगा। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून में बारिश अक्सर स्पेल में, यानी कि अलग अलग अवधि में होती है। 2 जुलाई से 9 जुलाई तक अच्छी वर्षा हुई, फिर ब्रेक हो गया। वजह यह है कि जब मॉनसून साउथ में रहता है तो भारत के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होती है, फिर मॉनसून पहाड़ों की तरफ खिसकता है तो बारिश रुक जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी यही स्थिति है। अब सवाल है कि आगे बारिश कब होगी, तो मौसम विभाग बता रहा है कि अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 19 जुलाई से दोबारा उत्तर पश्चिम भारत, यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश की पूरी संभावना है। लेकिन सवाल है कि इससे नुकसान कितना हुआ, अब इसे भी समझिए। जून में बारिश का 40% का डेफिसिट था, फिर जुलाई के पहले हफ्ते में अच्छी बारिश हुई तो ये डेफिसिट घटकर अब 19% रह गया, यानी 21% की रिकवरी हुई है। ये उम्मीद थी कि जुलाई में ठीक ठाक बारिश होगी तो ये पूरा डेफिसिट कवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल है कि कहीं ये पूरा डेफिसिट बढ़ता ना चला जाए, क्योंकि बारिश कम होने का मतलब है कि सब कुछ कम होना, ये पूरा का पूरा दुष्चक्र है जो सबको प्रभावित करता है, और एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसका लंबा असर देश की जीडीपी पर पड़ सकता है। ये समझने से पहले आप ये जानिए कि कैसे कम बारिश फसलों पर असर डाल रही है। आमतौर पर जुलाई से सितंबर के सीजन में खरीफ की फसल 1104 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है। 2025 में 10 जुलाई तक 632 लाख हेक्टेयर पर फसल की बुआई हुई थी, जो 2026 में 16% घटकर सिर्फ 531 लाख हेक्टेयर

0: सबसे ज्यादा असर हुआ है दलहनों पर। 2025 की तुलना में किसानों ने दालों की 23% कम बुआई की है। इसी तरह से मोटे अनाज की 22% कम, तिलहन की 21% कम, कपास की 15% कम और धान की 9% कम बुआई हुई है। ये सारी वो फसलें हैं जिनमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है और पानी बरस ही नहीं रहा तो किसान इन फसलों की बुआई ही नहीं कर पाए। सरकार खुद किसानों को सलाह दे रही है कि किसान अब कम अवधि वाली फसलों को प्राथमिकता दें। सरकार के किसानों को दी गई ये राय बता रही है कि हालात ठीक नहीं है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसका सीधा असर देश के जीडीपी पर पड़ सकता है। अगर मॉनसून में ठीक से बारिश नहीं हुई तो महंगाई भी बढ़ सकती है। यानी मॉनसून में कम बारिश बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। बारिश कम होने का मतलब है फसल कम, मतलब तिलहन और दलहन आयात करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये कम वर्षा अल नीनो की वजह से हो रही है? अल नीनो के साथ आपको एक और टर्म समझना होगा, इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी। दरअसल दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर इस समय प्रशांत महासागर में बन रहे अल नीनो सिस्टम और इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी पर है। अल नीनो यानी पूर्व में प्रशांत महासागर की सतह से गर्म चलने वाली हवाओं के चक्र से दुनिया भर के मौसम पर होने वाले असर और इंडियन ओशन डाइपोल की स्थिति ये तय करेगी कि भारत में मॉनसून कैसा होगा। वैज्ञानिक कह चुके हैं कि प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसका असर एशिया प्रायद्वीप में सितंबर महीने के बाद दिखना शुरू हो सकता है। लेकिन हिंद महासागर में आईओडी की स्थिति क्या होगी इस पर स्पष्टता आने में अभी महीने भर का समय और लग सकता है। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि देश को अल नीनो के प्रभाव के लिए तैयार रहना चाहिए। भले ही उसका असर सितंबर के बाद महसूस किया जाएगा लेकिन अगर अल नीनो आया तो फिर सूखा ही सूखा है। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
1: यहां रुक रहे हैं, ब्रेक के लिए खबर जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
3: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: क्या गुप्त नवरात्रि अपने आप में विशेष है? क्या गुप्त नवरात्रि का पूजा विधान अलग है? क्या गुप्त नवरात्रि की साधना के प्रभाव ज्यादा होते हैं? क्या है गुप्त नवरात्रि की महिमा? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
7: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.

0: छतरी ना खोल बरसात में,
1: आहा भीग जाने दे,
0: मेरी छतरी के नीचे आजा।
1: क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी?
0: सलमा या कमला?
1: सलमा भी थी, कलमा भी होगी, कमला भी होगी।
2: अरे आप कमला गाओगे,
1: मैं सलमा,
2: ये सलमा गाएंगे।
1: कोई तो आगे और पीछा होगा।
0: मैं कमला पसंद, ये सलमा पसंद। नेताओं ने मिलकर ये ट्रस्ट बनाया है जिसमें लैक ऑफ ट्रस्ट जो है आजकल सबसे ज्यादा है, तो का ही कर सकते हैं आप। और सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, संघ ने इधर लेटर जारी कर दिया।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: लगातार चौथे दिन अमेरिकी हमलों से दहला ईरान। बंदर अब्बास, केशम, किशोर, हिंगाम द्वीप पर धमाकों की आवाज। ईरान ने भी कुवैत, बहरीन, जॉर्डन पर हमले किए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, 24 घंटे के अंदर वापस लिया 20% टैक्स का फैसला। अमेरिकी सेनाओं ने शुरू की नाकेबंदी, ट्रंप ने कहा ईरान पर जारी रहेंगे हमले। संसद सत्र की तैयारी के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर, अमित शाह से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे, सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी की मुलाकात। आज लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच, सीएम योगी समेत सियासी दिग्गज करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा स्पेन, फ्रांस को 2-0 से हराया। मिकेल और पेड्रो पोरो ने किए गोल। आज दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टक्कर। लगातार चौथे दिन अमेरिकी हमलों से दहला ईरान। बंदर अब्बास, केशम, किश और हिंगाम द्वीप पर धमाकों की आवाज। ईरान ने भी कुवैत, बहरीन, जॉर्डन पर हमले किए। कुवैत का दावा, ईरान के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ 33 ड्रोन हमले नाकाम किए गए। कई हमलों को बीच रास्ते में रोका गया, लेकिन मलबा गिरने से कई जगह संपत्ति को नुकसान हुआ। ईरान ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि युद्ध की स्थिति में हॉर्मुज पर रहेगा ईरान का ही पूरी तरह नियंत्रण। ईरानी सेना ने दावा किया कि जॉर्डन के अजरक बेस पर अमेरिकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, 24 घंटे के अंदर उन्होंने 20% टैक्स लगाने का फैसला वापस लिया। अमेरिकी सेनाओं ने अब ईरान की नाकेबंदी शुरू की, ट्रंप ने कहा ईरान पर हमले जारी रहेंगे। पहले सेमीफाइनल में स्पेन, 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया। डेल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 22वें मिनट में मिगेल जोरबाल ने दागा पहला गोल, फिर पेड्रो ने 58वें मिनट में गोल किया। 2010 के बाद स्पेन वर्ल्ड कप में दूसरी बार फाइनल में पहुंचा। दूसरी ओर फ्रांस 2018 और 2022 के बाद लगातार तीसरा फाइनल खेलने से चूक गया। आज खेला जाएगा इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच दूसरा सेमीफाइनल। इंग्लैंड और अर्जेंटीना मैच के विजेता का सामना फिर स्पेन के साथ होगा। भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा दूसरा मुकाबला। एल्फिस्टन में इंग्लैंड ने रखा था 259 रनों का टारगेट, 4 विकेट खोकर 46 ओवर में भारत ने मैच को अपने नाम कर लिया। अक्षर पटेल चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच, 4 विकेट झटके, फिर नाबाद 57 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल ने 80 रन बनाए, वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 52 रन की पारी खेली। आज लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच, सीएम योगी समेत सियासी दिग्गज करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज सुनाई देगी। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा होगा। 2500 करोड़ से ज्यादा के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे बढ़ावा मिलेगा। बेंगलुरु में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान थे। 1988 से 2018 तक कर्नाटक विधान परिषद के 5 बार सदस्य भी रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ बीजेपी नेता रामचंद्र गौड़ के निधन पर दुख जताया, कहा एक युग का अंत हुआ, पार्टी के मजबूत स्तंभ थे। अमित शाह ने भी कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ के निधन पर शोक जताया। राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा उनका जीवन, ऐसा पोस्ट किया। देहरादून में परेड ग्राउंड से पीछे हटी कांग्रेस, अब बन्नू स्कूल मैदान में होगा राहुल गांधी का छात्रों का गूंज कार्यक्रम। परेड ग्राउंड पर धरना और पुलिस से नोकझोंक के बाद कांग्रेस ने कार्यक्रम बदल दिया। 17 जुलाई को बन्नू स्कूल मैदान में आयोजन होगा। बंगाल कांग्रेस का ममता बनर्जी को न्योता, बोली कांग्रेस छोड़नी थी राजनीतिक गलती। कोलकाता में 21 जुलाई को शहीद दिवस कार्यक्रम में आए, इतिहास स्वीकार करें। भरत तिवारी इनकाउंटर जांच में नया दावा, भाई और प्रत्यक्ष महिला आयोग के सामने उन्होंने गवाही दी। न्यायिक आयोग के सामने दी गई गवाही में गवाहों ने कहा कि सरेंडर के बाद गोली चलाने का दावा किया गया, जिसकी जांच जारी है। तो बात करेंगे बड़ी खबर की, ईरान और अमेरिका की जंग की। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया है। अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों को फिर से निशाना बनाया गया है। लगातार चौथे दिन अमेरिका ईरान के ज्यादातर इलाकों पर हवाई हमले कर रहा है। ईरानी मीडिया का दावा है कि बंदर अब्बास, केशुम आइलैंड, किश आइलैंड, हेंगम आइलैंड पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान के दक्षिणी इलाके अंदिमेश्क और अहवाज में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरान के किश द्वीप पर पानी बिजली की सुविधा के पास अमेरिकी प्रोजेक्टाइल फायर हुए हैं, जिसका धमाका हुआ है। मीडिया रिपोर्ट ये भी कह रही है कि केशुम आइलैंड पर भी धमाके सुने गए हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति दरअसल ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध है वो लगातार आक्रामक होता जा रहा है। और आखिर किन इलाकों पर हमले हुए हम आपको ये भी बता देते हैं, लेकिन लगातार चौथे दिन, और साथ ही सेंट्रल कमांड ये कह रहा है कि अब वो ईरान की बाड़ी बंदे करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। लेकिन जिन इलाकों पर हमला हुआ हम आपको भी बता देते हैं। तो अब तक क्या क्या घटनाक्रम हुए, लगातार चौथे दिन अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। आधी रात को ईरान के कई इलाकों में धमाके सुनाई दिए हैं और सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका है वो है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम का। बंदर अब्बास, केशम आइलैंड, किश आइलैंड, ये वो इलाके हैं जो कि स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल लाइन है ईरान के तटीय इलाकों के, जहां से न सिर्फ उसकी नौसेना संचालित होती है बल्कि उसके ऊर्जा संसाधन भी वैश्विक बाजार में जाते हैं। और ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान की उस एनर्जी लाइन को तोड़ेंगे। तो ना आपको दिखा देते कहां पर हुआ है, बंदर अब्बास सबसे ज्यादा, जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा नियंत्रण होता है, और यह है वो स्ट्रेट जहां से गल्फ की पूरी एनर्जी लाइन सप्लाई होती है ओमान से होते हुए। इसी के साथ उसके ठीक बगल में दक्षिण पश्चिम में हेंगम आइलैंड है। और उसके बाद नया जो हमला इस बार हुआ है वो है अंदिमेश्क, अहवाज और इसी के साथ किश आइलैंड पर, यानी अमेरिकी हमलों का दायरा बढ़ रहा है। तो केशम आइलैंड, किश आइलैंड, अंदिमेश्क, अहवाज, हंगम द्वीप और उसी के साथ बंदर अब्बास, यानी इस पूरी स्ट्रेटेजिक लाइन में कोस्ट के साथ साथ उन इलाकों पर जहां से भी ईरान की नौसेना या उसकी आईआरजीसी के पास वो पावर है कि वो अमेरिका को निशाना बना दे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर एक और भी है कि ईरान ने एक बार फिर खाड़ी के देशों को अपना निशाना बनाया है। ईरान ने कुवैत पर हमले किए हैं, बहरीन में हमले किए हैं, जॉर्डन में हमले किए हैं, लेकिन कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया है। इसके बाद कुवैत के कई इलाकों में एयर रेड सायरन भी बजे हैं, इंटरसेप्शन हुआ है। कुवैत की सेना के मुताबिक अब तक एक बैलिस्टिक मिसाइल, 5 क्रूज मिसाइल और 33 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं, इन्हें नेस्तनाबूद किया गया है। साथ ही कुवैत की सेना ने कहा है कि कुवैती नौसेना के पोत को भी निशाना बनाया गया, यानी कुवैत नेवी के एक वॉरशिप पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी है, ड्रोन से हमले किए हैं और उसके सशस्त्र बलों के 4 जवान घायल हुए हैं। तो ईरान और अमेरिका के बीच जहां एक तरफ आक्रामकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपनी हमलों की नई लहर शुरू की है और इसका नाम दिया है ऑपरेशन नसर 2। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन नसर 2 शुरू कर दिया है, जिसके तहत खाड़ी के इलाकों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर उसने हमले किए हैं और इस हमलों के लिए उसने अपनी सबसे खतरनाक खैबर शेकन मिसाइल, जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल, इनका इस्तेमाल किया है। आईआरजीसी ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है। उसने खैबर शेकन और इसी के साथ जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिसका इस्तेमाल कुवैत, बहरीन, जॉर्डन में किया गया है, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस और कंट्रोल कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर यह भी है कि जिस अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में टोल लिया जाएगा, टैक्स लगेगा, 24 घंटों में उन्होंने यूटर्न मार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगाने का अपना फैसला महज 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया है। 24 घंटे पहले उन्होंने कहा था कि टैक्स लगेगा, हम इसके गार्जियन हैं, हम यहां से जहाजों को सुरक्षा देंगे लेकिन बदले में 20% ड्यूटी लेंगे। तो अब ट्रंप ने ट्रूथ सोशल, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी दी है कि मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई है। इस बातचीत के बाद उन्होंने अपने उस टोल टैक्स को खत्म करने का फैसला लिया है। अब इसकी जगह खाड़ी के देश अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे, इससे अमेरिका में लाखों रोजगार पैदा होंगे। इससे पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को 20% टैक्स देना पड़ेगा। इस फैसले की कई देशों ने आलोचना की थी और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि अब यह फैसला लागू नहीं होगा। तो क्या कहा था ट्रंप ने, 20% ड्यूटी लगाई। क्या कहा उन्होंने कि जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे हम उन्हें सुरक्षा देंगे, अब ईरान का इस पर नियंत्रण नहीं होगा और इसके बदले में उन्हें खर्चा देना पड़ेगा। तो जो कार्गो शिप होंगे, वाणिज्यिक विमान होंगे, जो जहाज होंगे, वो जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो उन्हें टैक्स देना होगा, क्योंकि उस पर सुरक्षा का खर्चा आएगा। लेकिन 24 घंटे के भीतर खाड़ी के मिडिल ईस्ट, जो कुवैत से लेकर के कतर, यूएई, ये तमाम देश, उनसे बातचीत हुई कि इससे खर्चा बढ़ जाएगा, एनर्जी की कीमतें बढ़ जाएंगी, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्रूड ऑयल के प्राइस आसमान में जाएंगे 20% टैक्स से। उदाहरण के तौर पर अगर किसी जहाज की कीमत में $20 मिलियन का तेल जा रहा तो उस पर 20% टैक्स, तो अब ट्रंप ने उसे वापस ले लिया है। लेकिन इसी के साथ साथ दरअसल मुद्दा इस बात का है कि क्या खाड़ी के देशों में जो तनाव चल रहा है वो रुकेगा। लेकिन अब रुक करेंगे अगली खबर का। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जांच जारी है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब राम मंदिर के मसले पर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। इस बीच आज SIT अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है।
1: ऐसे पोस्टर्स यूपी के अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं। एक पोस्टर में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव हैं, इसमें लिखा है मुलायम सरकार की असलियत। दूसरे पोस्टर में अखिलेश, शिवपाल और राम गोपाल यादव की तस्वीरें हैं, इसमें लिखा गया है दिल में बाबर, मुंह में राम। ऐसे पोस्टर्स लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और अयोध्या में लगाए गए हैं।
2: जैसे चुनाव नजदीक आएगा, सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, प्रायर पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे।
1: इस सियासत से इतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है। खबर है कि मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक जाहिर किया था। कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रसीद नहीं दी गई। आरोप ये भी है कि उनकी दी गई भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित या सुरक्षित नहीं रखी गई। अब इन वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। खबर ये भी है कि चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गठित SIT की टीम जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: अब सोचिए, अयोध्या में चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आया ही नहीं था, अभी उस पर जांच चल ही रही है। अब वक्फ में घोटाले का सियासी शोर सुनाई पड़ने लगा है। सियासी शोर क्योंकि पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली ने बहराइच के सलार गाजी दरगाह में घोटाले के आरोप लगाए। CM योगी ने कई मंचों से वक्फ के घोटाले का जिक्र किया। अब खुद मुस्लिम जमात के मौलाना रिजवी कह रहे हैं कि वक्फ में घोटाले हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, क्या जांच होगी? देखिए रिपोर्ट।
3: क्या वक्फ बोर्ड में भी चल रही है धांधली? क्या वक्फ बोर्ड में भी हुआ है घोटाला? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने CM योगी को चिट्ठी लिखकर वक्फ के घोटालों की जांच करने की मांग की है
4: कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल कर के आएगा।
3: मौलाना रिजवी CM योगी के नाम लिखी चिट्ठी में दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा लूट समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई।
4: जो वक्फ के जिम्मेदारान थे उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया और ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई।
3: शहाबुद्दीन रिजवी अकेले शख्स नहीं हैं जो वक्फ में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं।
5: पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, हर जगह के ऊपर घपलेबाजी हो रही है पूरी तरीके से।
3: समाजवादी पार्टी पर यह आरोप खुद CM योगी अपनी सार्वजनिक रैलियों और कार्यक्रमों में लगाते रहे हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया तो CM ने फिर से वक्फ घोटाले का जिक्र किया था।
6: अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई।
3: सियासी आरोप एक तरफ लेकिन आरोपों की जांच दूसरी तरफ। शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दिया जाए तो यूपी में किसी वक्फ घोटाले की सघन जांच अभी तक नहीं हो सकी है।
7: दूसरे स्थानों पे या दूसरे धर्म स्थल पे कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से वहां सुधार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी नहीं। अगर कोई सबूत किसी के पास है, एविडेंस है, तो सामने लाना चाहिए।
8: वफ के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पहले हुआ करता था। वफ की जमीनों को औने पौने दामों पर कब्ज हो जाते थे, किराए पे देते थे और उसके धन का दोहन होता था। वफ जिस भावना से किया जाता उस भावना का तिरस्कार होता था। लेकिन आज सरकार के प्रयासों के बाद हम वफ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने का काम कर रहे हैं।
3: यूपी और देश में वफ की संपत्तियों के घोटालों के आरोप शुरू से लगते रहे हैं और उसे दूर करने के लिए ही सरकार ने वफ संशोधन कानून भी बनाया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि नए कानून के तहत बने वफ बोर्ड अब वफ संपत्तियों का उचित रखरखाव कर पाएंगे। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: जब हम पुलिस का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? वो लोग वर्दी पहनते हैं, हमें प्रोटेक्शन देंगे, हमारी हिफाजत करेंगे, ख्याल रखेंगे। पुलिस चाहे जहां की हो, आम आदमी को केंद्र में रखने के दावे करती है। अब गाजियाबाद पुलिस का ध्येय भी सेवा, सुरक्षा और समर्पण है नाम के लिए, जो नागरिकों के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन एक वाकया ऐसा, एक हादसा हो जाता है, 22 साल का नौजवान पिंक बूथ के बाहर जाता है और अगर ऐसा होता तो वो तड़प कर नहीं मरता। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पिंक बूथ की महिला पुलिस कर्मियों ने राजकुमार की मदद करना तो छोड़िए, अपने बूथ का दरवाजा तक बंद कर लिया था।
9: पुलिस कराते हुए मेरा बेटा का जान चल गया, किस लिए चल गया, क्यों चला गया, इतनी सी मेरा बेटा के हाथ कट गया, क्यों मेरा बेटा के जान चल गया।
10: 22 साल के बेटे को गंवाने वाली एक माँ का ये सवाल गाजियाबाद पुलिस से। मामला बहुत दुखद, क्योंकि पिंक बूथ के बाहर 40 मिनट तक एक नौजवान मदद के लिए तड़पता रहा। बार बार मदद की गुहार लगाने पर महिला पुलिस मदद को आगे नहीं आई, उल्टा पिंक बूथ का दरवाजा बंद कर लिया गया।
9: अंदर पुलिस लेडीज बैठ के देख रही है, मेरा लड़का ऐसे ऐसे तड़प रहा है, लेकिन कोई नहीं उठाया। जब मेरा लड़का के दम टूट गया।
10: यकीन करना मुश्किल है कि गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक नौजवान ज्यादा खून बहने से सबके सामने सड़क पर मर गया, वो भी पुलिस के पिंक बूथ के बाहर। राजकुमार को तड़पता देखकर भी महिला पुलिस कर्मियों का दिल नहीं पसीजा।
11: अच्छा, गिरा कहाँ था एग्जैक्टली? आप यहाँ पे गिरा पड़ा था।
12: ये है,
11: ये जो जगह है यहाँ पे ही गिरा पड़ा था।
12: हाँ जी, यहाँ से वो खून आया ना पूरा।
11: हाँ
12: हाँ हाँ, यही गिरा पड़ा।
11: ठीक,
10: में फरियादियों के साथ पुलिस के संवेदनहीन बर्ताव की शिकायत तो आपने सुनी हो, लेकिन गाजियाबाद में जो कुछ हुआ वो इंसानियत के मरने का भी सबूत देता है।
13: 40 मिनट तक राजकुमार यूं ही सड़क पर तड़पता रहा और तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। गाजियाबाद पुलिस का इस मामले में शर्मनाक बयान आया है कि ऑटो चालक और राजकुमार दोनों नशे में थे, लेकिन गाजियाबाद पुलिस को यह जवाब देना होगा कि जब दोनों मदद के लिए पुलिस के पास गए तो पुलिस आखिर क्या कर रही थी।
10: वीडियो में दिख रहा है ये 22 साल का राजकुमार, जिसके शरीर का कतरा कतरा खून जमीन पर फैलता गया। इस नौजवान को दम तोड़ते हुए दर्जनों लोग देखते रहे, तमाशबीनों में महिला पुलिस कर्मी भी शामिल। तो पिंक बूथ के दरवाजे पर ये सब कुछ हुआ। जिन्हें लोगों की मदद करने के लिए ही तनख्वाह मिलती है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाना तो दूर दरवाजा बंद कर बैठी रहे, ताकि मरने वाले की कराहने की आवाज उन तक ना पहुंचे।
14: वो जब नीचे, वहाँ तो हमें किसी ने ये बताया कि वो नीचे पड़ा था, वो इशारे कर रहा था कि मेरे को बचाओ। वहाँ लेडीज पुलिस खड़ी थी, हमारे पास वीडियो है, वो लेडीज पुलिस खड़ी थी। मान लो आप प्रशासन हो, किस लिए हो? हमारी सेवा के लिए ना। जब आप ही नहीं करोगे, जस्ट यहाँ कोई कुछ काम हो जाए।
15: आसपास जो दुकानें थी
14: जी,
15: वो लोग भी वीडियो बना रहे थे
14: जी,
15: मदद नहीं की,
14: किसी ने मदद नहीं की।
10: गाजियाबाद में रविवार की दोपहर ऑटो चलाने वाले राजकुमार का किराए को लेकर एक सवारी से झगड़ा होता है। उसने मदद के लिए पिंक बूथ का रुख किया, लेकिन वहाँ उसे मदद नहीं मिली।
9: मेरा लड़का चौकी में गया नाम दाखिल कराने, मेरा लड़का के चौकी में से बाहर धक्का मार के निकाल के दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद मेरा लड़का दीवार में हाथ मारा, तभी न खोले। उसके बाद मेरा लड़का शीशा पर हाथ मार दिया, मेरा लड़का के हाथ कट गया, खून निकलते निकलते मेरा लड़का वहीं बेहोश हो गया।
0: ये संवेदनहीनता नहीं तो आखिर और क्या है। रुक रहे ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
17: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime, and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits, or ask your device to play 90s hits on TuneIn.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नवरात्रि अपने आप में विशेष है? क्या गुप्त नवरात्रि का पूजा विधान अलग है? क्या गुप्त नवरात्रि की साधना के प्रभाव ज्यादा होते हैं? क्या है गुप्त नवरात्रि की महिमा? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: सॉरी।

लगातार चौथे दिन अमेरिकी हमलों से दहला ईरान। बंदर अब्बास, केशम, किश और हिंगाम द्वीप पर धमाकों की आवाज। ईरान ने भी कुवैत, बहरीन, जॉर्डन पर हमले किए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, 24 घंटे के अंदर वापस लिया 20% टैक्स का फैसला। अमेरिकी सेनाओं ने शुरू की नाकेबंदी, ट्रंप ने कहा ईरान पर जारी रहेंगे हमले। संसद सत्र की तैयारी के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर, अमित शाह से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे, सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी की मुलाकात। आज लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच, सीएम योगी समेत सियासी दिग्गज करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा स्पेन, फ्रांस को 2-0 से हराया। मिकेल और पेड्रो पोरो ने किए गोल। आज दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टक्कर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की। आज से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है, इसकी महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, इसकी विशिष्टता क्या है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 11:50 तक, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात में 9:46 तक, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12:00 से 1:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि के साथ ये समझना जरूरी है कि जो नवरात्रि है ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। नवरात्रि वर्ष में 4 मनाई जाती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सामान्य नवरात्रि। जो सामान्य नवरात्रि है, चैत्र की नवरात्रि जो लगभग अप्रैल में आती है, और आश्विन की नवरात्रि जो लगभग अक्टूबर में आती है, ये ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा माघ महीने में लगभग जनवरी में और आषाढ़ में लगभग जुलाई में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। तो कुल मिला के साल में 4 नवरात्रि हो गई, माघ की, चैत्र की, आषाढ़ की और आश्विन की। गुप्त नवरात्रि जो है ये गोपनीय साधनाओं के लिए, तंत्र साधनाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो तंत्र साधक हैं या देवी की विशेष साधना करते हैं वो गुप्त नवरात्रि में अपनी साधना करते हैं।

दान मांगा जाता है। वैज्ञानिक रूप से आप देखिए कि गुप्त नवरात्रि हो या सामान्य नवरात्रि हो, उस समय ऋतुओं में मौसम में परिवर्तन होता है और शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए नवरात्रि के समय में उपवास रखा जाता है और खान पान का ध्यान रखा जाता है ताकि व्यक्ति स्वस्थ बना रहे। आज से जो गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, ये आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि है, 15 जुलाई से शुरू हो रही है और 22 जुलाई तक रहेगी। तो अगर आप कोई गोपनीय साधना करना चाहते हैं, कोई विशेष तंत्र साधना करना चाहते हैं, तो आज से वो अवसर आरंभ हो गया है। गुप्त नवरात्रि में आप विशेष साधना करके विशेष लाभ पा सकते हैं। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में और साथ में बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रिश्तों की समस्या पर ध्यान दें, अनावश्यक तनाव न पालें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, करियर की समस्या हल होगी, मन की चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक पक्ष अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होने के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि भाई, हम लोग सामान्य नवरात्रि खूब मनाते हैं, खूब लाभ पाते हैं, तो गुप्त नवरात्रि की आवश्यकता क्या है? सामान्य और गुप्त नवरात्रि में अंतर क्या है? दोनों के प्रभाव कैसे हैं? देखिए, सामान्य जो नवरात्रि है, चैत्र वाली और आश्विन वाली, इसमें आम तौर पर सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है।

दर्शन करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में आप साधना कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, इस बात का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता आपको उतनी ज्यादा मिलेगी। गुप्त नवरात्रि का मतलब है कि आप एकनिष्ठ होकर साधना करें, एकनिष्ठ होकर ध्यान करें, मंत्र जप करें और विशेष पूजा करें, लेकिन बड़े गुप्त तरीके से, किसी को पता ना चले कि आप इस समय में साधना में लीन हैं। गुप्त नवरात्रि पर आगे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में लाभकारी बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर चिंता ना करें, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, यात्राओं से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, स्थान परिवर्तन हो सकता है, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, कोई बड़ी समस्या हल होगी, धन लाभ की स्थिति बनेगी, जीवन साथी को लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रेखा वर्मा जी ने हमें लिखा है, आगरा से लिखती हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। बेटी की जन्म तारीख है 8 नवंबर 2002, जन्म का समय शाम के 7:35, जन्म स्थान है आगरा। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी अभी दिल्ली में रहकर के नौकरी कर रही है और मेरी बेटी आगे और पढ़ाई नौकरी छोड़ करके करना चाहती है, तो आगे उसके लिए किस करियर में जाना बेहतर होगा और क्या आगे पढ़ाई करने से उसको लाभ होगा। रेखा जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से साल 2027 के सेकेंड हाफ में जून के बाद
आपकी बेटी की पढ़ाई की संभावना बनती है। ऐसा लगता है कि आगे ये मैनेजमेंट की, फाइनेंस की, अकाउंटिंग की कोई पढ़ाई करेंगी और वो पढ़ाई करना इनके लिए कुल मिला जुला कर अच्छा रहेगा। इनका भविष्य और इनका करियर अच्छा दिखाई दे रहा है और अगर दुनिया भर में शांति रही तो आगे पढ़ाई करने के बाद लगभग 3-3.5 साल के बाद इनके विदेश जाने के योग भी बनते हैं। कुंडली के हिसाब से ये संभावना बन रही है कि इनको 2026 में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पेट से संबंधित समस्या होने पर किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। एक अपनी बेटी को पन्ना बनवा करके पहनाइए, लगभग 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको बनवा कर पहनाएं और इनसे कहिए कि रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। अब अगर आप गुप्त नवरात्रि में साधना या पूजा करना चाहते हैं तो देवी की पूजा कैसे करेंगे, क्या सरल तरीका होगा, वो भी आपको बताते हैं। आप चाहें तो गुप्त नवरात्रि में भी 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना कर सकते हैं और अगर आपने कलश की स्थापना की है तो दोनों वेला सुबह और शाम मंत्र जप करिए, चालीसा पढ़िए या दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा और दोनों समय पूजा करने के बाद माता दुर्गा की आरती करना भी आपके लिए अच्छा होगा। दोनों समय माता को भोग भी लगाइए, कोई भी सात्विक चीज आप भोग में लगा सकते हैं, लेकिन सबसे सरल और सबसे उत्तम भोग है लौंग और बताशा। ये रोज भोग में अर्पित करें और बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। माता की पूजा के लिए लाल फूल अर्पित करना या लाल फूल देना सर्वोत्तम होगा, लेकिन माता की पूजा में उनको आक, मदार, धूप और तुलसी ये बिल्कुल अर्पित मत करिएगा। अगर आप गुप्त नवरात्रि में साधना करते हैं या गुप्त नवरात्रि में पूजा करते हैं तो पूरे 9 दिन अपना खान पान और अपना आहार सात्विक रखिएगा। देखिए, गुप्त नवरात्रि के साथ 2 बातें जरूर समझिए। एक तो गुप्त नवरात्रि में अगर आप मध्य रात्रि में पूजा करें, मध्य रात्रि में ध्यान करें, मध्य रात्रि में मंत्र जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और इसके अलावा आप गुप्त नवरात्रि में मध्य रात्रि को जगें और देवी की पूजा जरूर करें। जीवन की कठिन से कठिन बाधा, कठिन से कठिन समस्या को आप गुप्त नवरात्रि में रात की पूजा में दूर कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के प्रयोगों पर आगे चर्चा करेंगे और साथ में आगे आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का
दैनिक राशिफल।

को प्राप्त होगा, रिश्तों की समस्या दूर होगी, करियर की रुकावट दूर होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

पर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

लिए जल्दबाजी में काम करने से बचें, बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो गुप्त नवरात्रि का पूजा विधान और महिमा आपने समझ ली। अब आपको विशेष प्रयोग बताते हैं जो अगर आप गुप्त नवरात्रि में करें तो आपकी कामना पूरी होगी। पहला प्रयोग, अगर आपके रोजगार में दिक्कत है, रोजगार से संबंधित कोई समस्या है तो शीघ्र रोजगार की प्राप्ति के लिए, रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? देवी के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा, 9 बताशे लीजिएगा और हर बताशे पर 2 लौंग रखिएगा। इसके बाद एक एक करके वो सारे 9 बताशे लौंग के साथ देवी को अर्पित करिएगा और देवी से प्रार्थना करिएगा कि आपके रोजगार की समस्या दूर हो या आपको रोजगार की प्राप्ति हो। ये प्रयोग नवरात्रि की किसी भी रात को आप करिएगा। पूरे गुप्त नवरात्रि में किसी भी रात को ये प्रयोग करिएगा और बाद में इस बताशे को और इस लौंग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए गुप्त नवरात्रि में क्या प्रयोग करें? रात के समय में गुप्त नवरात्रि में देवी के सामने रोज एक घी का दीपक जलाइएगा। इसके बाद इनको रोज लाल फूलों की माला अर्पित करिएगा या 2 लाल फूल उनके चरणों में रखिएगा। इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। ये प्रयोग नवरात्रि में हर रात को करें, 15 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक, या अगर रोज रात में ना कर पाए तो लगातार 3 रातों को ये प्रयोग आपको करना चाहिए। अगर आप गुप्त नवरात्रि में लगातार 3 रातों को ये प्रयोग करें तो आप स्त्री हो या आप पुरुष हो, इतना पावन समय है कि आपका विवाह शीघ्र होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी।

करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

काम कर सकते हैं, सेहत अच्छी होती जाएगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जो तंत्र साधना है या तंत्र है वो अशुभ होता है, बुरा होता है। क्या ऐसा है? देखिए, तंत्र का जिसने आविष्कार किया है वो भगवान सदाशिव हैं, और तंत्र बड़ी कल्याणकारी विद्या है। तंत्र के दो हिस्से हैं, एक अविद्या तंत्र और एक विद्या तंत्र। आप जिस तंत्र को निगेटिव समझते हैं, दूसरों को परेशान करना, कष्ट पहुंचाना, वो अविद्या तंत्र है। जो विद्या तंत्र है या शुभ तंत्र है, इसका प्रयोग करके आप किसी की समस्या को दूर कर सकते हैं, ईश्वर की उपलब्धि कर सकते हैं और ईश्वर का अनुभव भी कर सकते हैं। तो जो विद्या तंत्र है, जो शुभ तंत्र है, वो साधना के लिए, दैनिक जीवन के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए कल्याणकारी होता है। केवल इतना समझिए कि अगर आप तंत्र साधना करना चाहते हैं तो आपको गुरु के निर्देशन की जरूरत अवश्य पड़ेगी। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर 4, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, रिश्तों में समस्या हो सकती है। नंबर 8, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नंबर 9, काम की अधिकता रहेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिएगा। इससे आपके काम में जो रुकावटें चली आ रही हैं वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। अब वक्त हो गया है सक्सेस मंत्र का, तो अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं। अगर आज कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा, लाभ होगा।
अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो हरा रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान।

राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा धनु राशि के लोगों को, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज प्रतिपदा तिथि है, चंद्रमा भी मजबूत नहीं है, इसलिए आज शुभ और मंगल कार्य ना करें। आज माता दुर्गा की पूजा लाल फूलों से करें, आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान पर हमले जारी रखने की बात करते हुए पावर प्लांट पर भी हमले की बड़ी धमकी दी। ट्रंप ने कहा ईरान की युद्ध करने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल देने के ऐलान पर ट्रंप ने यूटर्न लिया, 20% टैक्स लगाने का अपना फैसला महज 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया। रूस सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ बातचीत के बाद उन्होंने इसे खत्म करने का फैसला ले लिया है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ हमलों की नई लहर शुरू कर दी है, ऑपरेशन नेसर 2 के तहत अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया है। ईरान का बड़ा बयान है कि युद्ध की स्थिति में हॉर्मुज पर ईरान का ही पूर्ण नियंत्रण बना रहेगा। ईरान ने दावा किया है कि ओमान की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, लेकिन सुरक्षा के लिए हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण ईरान ही रखेगा। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे हॉर्मुज जलडमरू। युद्धकाल में सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान के हाथ में होगी। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने अमेरिका को संदेश देते हुए कहा कि सैन्य हमले और नाकेबंदी से बातचीत की मांग करेंगे, ये सोचना बड़ी भूल होगी। ईरान का अमेरिका से जुड़े इस्लामाबाद एमओयू पर बयान कि डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा कि फिलहाल हमारी कोई प्रतिबद्धता अब उसके प्रति नहीं है। IRGC ने दावा किया कि बहरीन और कुवैत में हथियार भंडार सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया, इसे अमेरिकी हमलों के जवाब के रूप में कार्रवाई बताया। कुवैत नौसेना के जहाज पर भी हमला हुआ है, 4 सैन्यकर्मी घायल हुए हैं, ईरानी आक्रामकता का सेना ने दावा किया। कुवैत ने दावा किया कि ईरान के बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों के साथ 33 ड्रोन हमले नाकाम किए गए, कई हमलों को बीच रास्ते में रोका गया, मलबा गिरने से कई जगह संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि ईरान पर हमलों के खिलाफ नया दौर शुरू हो चुका, हॉर्मुज में उसकी सैन्य क्षमता को निशाना बनाया गया। सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों की नौसैनिक नाकेबंदी से पहले अमेरिका ने हवाई हमले तेज कर दिए। ईरान के बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज, हमलों के बीच हालात फिर से तनावपूर्ण हो चुके हैं। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी फिर से शुरू की गई है। मिडिल ईस्ट में 20 से ज्यादा युद्धपोतों की तैनाती की गई है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने दावा किया है कि हैंगाम आइलैंड पर अमेरिकी प्रोजेक्टाइल से हमला किया, चाबहार में विस्फोट की खबरों से अधिकारियों ने फिलहाल इनकार किया है, लेकिन ईरान में फिर धमाकों की खबर है। सरकारी मीडिया ने दावा किया कि अहवाज शहर और केशम आइलैंड पर विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। ईरानी सेना ने यह भी दावा किया है कि जॉर्डन के अजरक बेस पर अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं, जहां पर अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। खबरें फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी, स्पेन 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। टीम ने पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराकर दूसरी बार फाइनल में अपनी जगह बनाई है। डेलस स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में 22वें मिनट में मिकेल ओयारज़बाल ने पहला गोल दागा, फिर पेड्रो ने 58वें मिनट में दूसरा गोल किया। 2010 के बाद स्पेन वर्ल्ड कप में दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है। दूसरी ओर फ्रांस 2018 और 2022 के बाद लगातार तीसरा फाइनल खेलने से चूक गया है। आज इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच दूसरा महत्वपूर्ण सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड और अर्जेंटीना मैच के विजेता का सामना स्पेन से होगा। भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। 16 जुलाई को कार्डिफ में दूसरा मैच खेला जाएगा। एस्बिस्टन में इंग्लैंड ने 259 रन का टारगेट रखा था, 4 विकेट खोकर 46वें ओवर में भारत ने मैच को अपने नाम कर लिया। इस मैच में अक्षर पटेल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, 4 विकेट झटके उन्होंने फिर नाबाद 57 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल ने 80 रन बनाए थे, वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 52 रनों की नाबाद पारी खेली। आज लखनऊ में सजेगा पंचायत आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच, सीएम योगी समेत सियासी दिग्गज शिरकत करेंगे, विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज आप आज तक पर सुनेंगे। 17 जुलाई को पीएम मोदी का पंजाब दौरा होगा, 2500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर फोकस होगा। बेंगलुरु में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ का 88 साल में उम्र में निधन हो गया, लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशानी थी। 1988 से साल 2018 तक कर्नाटक विधान परिषद के 5 बार सदस्य रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ बीजेपी नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर दुख जताया, कहा एक युग का अंत हुआ, पार्टी के मजबूत स्तंभ थे गौड़ा। अमित शाह ने भी कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर शोक जताया, कहा राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा है उनका जीवन।
पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हाई लेवल बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। 22 जुलाई को नई टीम का ऐलान संभव है। डॉक्टर कृष्ण मोहन बन सकते हैं अब ट्रस्ट के महासचिव। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ बनने की होड़ में अब तक हजारों लोगों ने आवेदन किए हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का भी नाम इसमें शामिल है। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकती है। चोरी के लिए जिम्मेदारी तय होगी। पैसों के लेन देन की भी जांच पर फोकस होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद शंकराचार्य ने ही चढ़ावा चोरी मामले में 3 करोड़ रुपए की चोरी का अनुमान लगाया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के गुरुग्राम में हंगामा हुआ। बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध पर पुलिस हिरासत में कांग्रेस लिया गया। पुलिस लाइन में हनुमान चालीसा पड़ी। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के कांगांग में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पोस्ट ऑफिस से हनुमान मंदिर तक रोष रैली निकाली। राम मंदिर में चंदा चोरी मामले को लेकर जम्मू में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हरि सिंह चिब और सुरेंद्र भगत के नेतृत्व में जांच की मांग उठाई गई। ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर के वाराणसी में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बैठक हुई। दोनों पक्षों ने मध्यस्थता से इनकार किया। दोनों पक्षों ने कहा सिर्फ अदालत का फैसला मानेंगे। मध्य प्रदेश के धार में मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए भोजशाला परिसर के पास खुली जगह दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया नमाज पर लगी रोक बरकरार रहे। माता वैष्णो देवी भवन में 500 करोड़ के नकली चांदी चढ़ावा का मामला सामने आया है। जम्मू की अदालत ने क्राइम ब्रांच दस्तावेज के साथ 29 जुलाई को बुलाया है। रथ यात्रा विवाद भी गहरा चुका है। पूरी मंदिर समिति ने इस्कॉन के दावों को भ्रामक बताया है। पूरी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन का इस्कॉन पर पलटवार। कहा है कि समय से पहले रथ यात्रा शास्त्रों के अनुसार नहीं है। विदेशों में अलग अलग तारीखों पर रथ यात्रा का आयोजन शास्त्र सम्मत नहीं है। रायपुर में देवकी नंदन ठाकुर ने राम मंदिर दान मामले पर उठाई आवाज। कहा मंदिरों के लिए बने सनातन बोर्ड मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों के साथ दिल्ली पहुंचे एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से मुलाकात की। सांसदों के नए गुट के विलय को आधिकारिक मंजूरी दिलाने पर चर्चा हुई। संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूबीटी छोड़ने वाले 6 सांसदों की सदस्यता रद्द होगी। बोले राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की सीएजी रिपोर्ट पर उद्धव ठाकरे ने हमला करते हुए कहा। आनंद दुबे ने कहा कि खाली पड़े हॉस्टल पर 1,62,00,000 रुपए खर्च करे महाराष्ट्र सरकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवंडी में कथित अवैध स्कूल की तोड़फोड़ पर अंतरिम रोक लगाई। किरीट सोमैया ने कहा कि ये स्कूल जिहाद है। महाराष्ट्र टीटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुणे में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से संपर्क करने वाले 66 लोगों से पूछताछ की गई है। 3 भाषा नीति पर केंद्र और एनसीईआरटी को नोटिस भेजा गया है। सीबीएसई को 10 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया। क्लास 9वीं से 3 भाषा नीति को चुनौती दी गई। सीबीएसई ने आर्थिक भाषा असेसमेंट फ्रेमवर्क को जारी कर दिया है। 10वीं में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं लेकिन स्कूल स्तर पर होगा मूल्यांकन। लेकिन 10वीं पास करने के लिए असेसमेंट क्लियर करना जरूरी होगा। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठन गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर संरक्षण देने का आरोप लगाया है। रेखा गुप्ता ने आप पर हमला करते हुए कहा कि ताहिर ने दिल्ली में हिंसा भड़काई। दिल्ली की जनता केजरीवाल को कभी माफ नहीं करेगी। केजरीवाल संजय सिंह और बाकी आप नेता से जवाब मांगा। दिल्ली सरकार मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। बोले आप सरकार ने दंगाइयों को बचाया। ताहिर सिर्फ एक्टर है असली डायरेक्टर तो कोई और है। देहरादून में परेड ग्राउंड से पीछे हट गई है कांग्रेस। अब बन्नू स्कूल मैदान में होगा राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम। परेड ग्राउंड पर धरना और पुलिस से नोकझोंक के बाद कांग्रेस ने कार्यक्रम का वेन्यू बदल दिया है। 17 जुलाई को बन्नू स्कूल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बंगाल कांग्रेस ने ममता बनर्जी को न्योता दिया है। बोला कांग्रेस छोड़ना बहुत बड़ी राजनीति गलती थी। कोलकाता में 21 जुलाई शहीद दिवस कार्यक्रम में आए ममता बनर्जी इतिहास को स्वीकार करें। भरत तिवारी एनकाउंटर जांच में नया दावा किया गया है। भाई और प्रत्यक्षदर्शी महिला ने आयोग के सामने अपनी गवाही दी है। न्यायिक आयोग के सामने दी गई इस गवाही में उन्होंने कहा कि सरेंडर के बाद गोली चलाने का दावा किया गया और अब इस मामले में जांच जारी है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के एनडीए ने बड़ी बैठक की है। नितिन नवीन के आवास पर सहयोगी दलों के नेताओं ने जीत के लिए अपनी रणनीति बनाई। उपचुनाव को लेकर नितिन नवीन ने कहा बांकीपुर की जनता ने मुझे प्यार और स्नेह दिया है। उम्मीद है कि अब नीरज सिन्हा को भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा।
तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी की प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन अब सीट से रद्द हो गया है। 10 प्रस्तावकों की जगह सिर्फ 9 हस्ताक्षर मिले, तकनीकी खामी के चलते यह फैसला लिया गया। बांकीपुर प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर तेज प्रताप यादव पटना पहुंचे, सेक्रेटेरिएट में जाकर के कहा कि हमारे साथ षड्यंत्र हुआ, अब न्यायालय में इसको चुनौती देंगे। इस उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। पवन सिंह, मनोज तिवारी अब मोर्चा संभालेंगे। ग्रेटर नोएडा में फिर एक बार दहेज हत्या हुई है। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल पति पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया गया। जन्मदिन के दिन पत्नी प्रियंका से मारपीट, इलाज कराने के बहाने गोली मारकर फरार हो गया आरोपी। मृतका प्रियंका के परिवार ने आरोप लगाया है कि 25 लाख की जगह 15 लाख दहेज मिलने से ससुराल पक्ष नाराज था। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होता रहता था। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में कांस्टेबल मनीष ने खुद को गोली मार ली, मौके पर ही मौत हो गई। कांस्टेबल मनीष ने अपनी पत्नी प्रियंका की हत्या की जब से चल रहा था फरार। दार्जिलिंग में उफंती बालासन नदी में बहती हुई थार, स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे 4 पर्यटकों की जान बचाई। लगातार बारिश के बाद बालासन नदी का जलस्तर बढ़ गया, पिकनिक से लौट रहे 4 लोग नदी में फंस गए, रेस्क्यू का वीडियो सामने आया। सोनीपत के मोहना रोहतक रोड पर ड्रेन में गिर गई एक थार गाड़ी, ड्राइवर घायल हो गया, पानी कम होने से बड़ा हादसा टल गया। गुरुग्राम द्वारका टनल में चलती कार में आग लग गई थी, 12 मिनट में स्मार्ट फायर सेफ्टी ने सिस्टम पर काबू पाया। टनल में कार में आग लगने से हड़कंप मच गया था, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई, रेस्क्यू और फायर सेफ्टी सिस्टम का एक्शन देखने को मिला। महाराष्ट्र के वसई में पार्किंग में खड़े ई स्कूटर में आग लग गई, भीषण आग के बाद वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। पालघर में तेज हवा आफत बन गई, उड़ता हुआ टीन का शेड महिला पर गिरा, खौफनाक हादसा सीसीटीवी में दर्ज हुआ। धाराशिव में दूध मिलावट का बड़ा खेल देखने को मिला, 6 महीने में 23 करोड़ लीटर दूध में मिलावट की आशंका जताई गई है। नासिक में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक परिवार पर हमला हो गया, 20 किलोमीटर तक पीछा कर कार में तोड़फोड़ की गई, पुलिस ने 9 आरोपियों को दबोच लिया है। गुजरात के वडोदरा में 20 सड़क पर आवारा सांडों की लड़ाई से भगदड़ मच गई, राहगीरों में दहशत फैल गई। कौशाम्बी में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, 28 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया गया, ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। हापुड़ में पानी की बोतल में तेजाब मिलाकर देने का मामला सामने आया है, 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, पानी पीने से युवती की तबीयत बिगड़ गई। बरेली में पुलिस हिरासत में एक आरोपी का हाथ कट गया, परिवार ने प्रताड़ना के आरोप लगाए, पुलिस ने शीशे पर हाथ मारने की वजह बताई। मथुरा पुलिस ने एक मामले में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि चोरी के 2,60,00,000 रुपए नकद और 60,00,000 की ज्वेलरी बरामद कर ली है, 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अमरोहा में नशे में धुत सिपाही ने 2 लोगों को अपनी कार से रौंद दिया, बिना टायर के हाईवे पर गाड़ी दौड़ाई, मुकदमा दर्ज हो गया है।

0: तो पश्चिम एशिया में तनाव और युद्ध की स्थिति के बीच ईरान पर भीषण हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ट्रंप ने कहा कि अगले दो दिन ईरान पर भारी पड़ने वाले हैं। ट्रंप ने अगले सप्ताह ईरान के सभी पावर प्लांट पुलों को नष्ट करने की धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान बातचीत को तैयार नहीं होता, अमेरिका उसे तबाह कर देगा। रुक रहे ब्रेक के लिए, खबर जारी, यहां देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: In association with Hind, बड़े आराम से
5: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
6: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
4: विमल, बोलो जुबां केसरी।
7: उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े चेहरे, जनता के सबसे बड़े सवाल और आज तक की सबसे बड़ी पंचायत, 15 जुलाई, लखनऊ।

छह साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया उसे लेकर सुलगती सियासत का एक सिरा पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार तक पहुंचता है। 2020 की फरवरी के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की हत्या हुई थी। मारे गए 40 मुस्लिम और 13 हिंदुओं में एक नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा का भी था, जिसकी हत्या के केस में कड़कड़डूमा की अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जो आरोप लगाए थे उनमें से अदालत ने हत्या की धारा 302, अपहरण की धारा 365, दंगे से जुड़े अपराधों की धारा 147, 148, 149 और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की धारा 153 और सरकारी आदेश तोड़ने की धारा 188 के तहत ताहिर को दोषी करार दिया है। दोषियों की सजा का ऐलान 16 जुलाई को होगा, लेकिन 5 दोषियों में से एक आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद और AIMIM के विधानसभा उम्मीदवार रहे ताहिर हुसैन ने इसे नाइंसाफी कहा है। लेकिन बीजेपी से इंसाफ की मिसाल कहती है और 51 बार चाकुओं से गोद कर मारे गए अंकित शर्मा के हत्यारों के साथ ताहिर हुसैन के गुनाह का जिक्र भी करती है। सियासत ये है कि दिल्ली की घटना पर पंजाब में पॉलिटिकल घेराबंदी हो गई, क्योंकि दिल्ली दंगे से ठीक पहले दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दे चुके कपिल मिश्रा ने अब इन दंगों के डायरेक्टर का सवाल उठाया है। हालांकि चुप्पी सिर्फ आम आदमी पार्टी लीडरशिप की ही नहीं है। जिस AIMIM ने पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया था, दिल्ली दंगे के आरोपी होने के बावजूद जो ताहिर 33,000 वोट पाता है, अब तक ओवैसी की पार्टी उस पर चुप है। लेकिन केजरीवाल की पार्टी के विधायक अब भी ताहिर हुसैन के समर्थन में खड़े हैं। केजरीवाल के विधायक को ताहिर के लिए ऊपरी अदालतों में इंसाफ की उम्मीद बची हुई लगती है, तो कांग्रेस के नेता ताहिर के साथ इंसाफ की उम्मीद छोड़ चुके हैं और वजह बताते हैं ताहिर का मजहब। दरअसल दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन के दोषी करार होने का असर अब दिल्ली से पंजाब तक दिख रहा है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी की दो चुनौतियां केजरीवाल और कांग्रेस हैं। लिहाजा बीजेपी अब ताहिर कांड के जरिए दोनों दलों को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। हालांकि दिल्ली दंगे को लेकर AIMIM सवाल उठाती रही है कि जिस दंगे में 53 लोगों की जान चली गई उसमें 6 साल बाद भी सिर्फ एक हत्या के केस में दोषियों की पहचान क्यों हो पाई। आखिर वो कैसी जांच थी जिसमें इसी दंगे में मारे गए हाशिम अली की हत्या के 12 और अनवर हत्याकांड के 5 आरोपी बरी हो जाते हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: सॉरी।

0: ये वाक्या 6 साल पहले का है, जब पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस गई। इस हिंसा ने दिल्ली के दिलो दिमाग पर गहरे जख्म किए। करीब 53 बेकसूरों की मौत ने इस हिंसा को बेहद भयावह बना दिया। 6 साल बाद अब इस मामले में हिसाब हुआ है। दिल्ली की कड़कड़ डूमा कोर्ट का इंसाफ सामने आया है। अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी पाया गया। ताहिर हुसैन के अलावा 4 और आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाया। आपको बता दें कि 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिला था। उनके पिता ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। तमाम गवाहों की पेशी सबूतों और सुनवाई के बाद अदालत का फैसला अब दिल्ली के सामने है। जहां तक ताहिर हुसैन का सवाल है, तो खबर है कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगा। ताहिर की माने तो वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है।
1: ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
0: ताहिर हुसैन के अपने तर्क हैं, उसके पास ऊपरी अदालत में जाने का पूरा हक है। लेकिन फिलहाल ताहिर हुसैन को लेकर दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर 6 साल पुरानी हिंसा को लेकर दंगल शुरू हो गया।
2: देखिए, 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन और ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर, जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया।
3: कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है, तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा, ये सब।
0: तो ताहिर हुसैन दिल्ली की राजनीति का फिर से एक अहम किरदार हो गया है। हिंसा में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन से केजरीवाल ने किनारा कर लिया था। आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने गले लगा लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि ताहिर हुसैन का सरपरस्त कौन था। आज तक ब्यूरो।
4: पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन को लगा बड़ा झटका। आईबी अफसर अंकित शर्मा के हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया। ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। अंकित शर्मा की हत्या के मामले में 6 साल बाद दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाजिम, काशिम, अनस, जावेद और ताहिर हुसैन को हत्या, अपहरण, दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगा करने का दोषी ठहराया। वहीं कोर्ट की सुनवाई के दौरान आरोपी ताहिर हुसैन कोर्ट में रोने लगा। फैसले के बाद ताहिर ने अपने आप को बेगुनाह बताया।
1: ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
4: वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। बीजेपी ने सीधे ताहिर हुसैन के बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की।
5: आज जो लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, सनातनी बनने का ढोंग कर रहे हैं, ये लोग जब सत्ता में थे तब इन्होंने अंकित शर्मा जैसे न जाने कितने बेगुनाह निरपराध हिंदू नौजवानों का हत्या करवाने का, मर्डर कराने का जो दिल्ली दंगों का पूरा प्लान था, उसके ये भागीदार थे और बाद में अपराधियों को बचाने की भी सारी कोशिश केजरीवाल और उनके गैंग के द्वारा की गई थी।
4: 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिला था। उनके पिता ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था, जिसको लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आज तक ब्यूरो।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

24 घंटे में पलटे ट्रंप, लेकिन जारी है ईरान पर हमले, कहा अगले दो दिन बहुत भारी, कोई पावर प्लांट और पुल नहीं बचेगा। तेहरान में भी क्वेत, बहरीन, जॉर्डन पर किया अटैक। पीओजेके में पाकिस्तान को खुला चैलेंज, आंदोलनकारी नेता अमान खान शहबाज मुनीर का ललकारा, कहा ये कब्जे वाला इलाका रावलकोट में हजारों की भीड़ ने किया तालियों से बयान का स्वागत। संसद सत्र की तैयारी के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर, अमित शाह से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी की मुलाकात। आज सुबह 10 बजे से लखनऊ में सजेगा पंचायत आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच, सीएम योगी समेत कई सियासी दिग्गज करेंगे शिरकत, विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा स्पेन, फ्रांस को 2-0 से हराया, मिकेल और पेड्रो पोरो ने किए गोल। आज दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टक्कर।

0: देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सुबह के 8 बजे है, अब वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर आज का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें होंगी, आपको ईरान पर जारी अमेरिकी हमले से जुड़ी खबर बताएंगे, साथ ही बात करेंगे ईरान में कहां कहां पर तबाही मची है, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ट्रंप ने अब क्या धमकी दी है, नई धमकी ट्रंप की तरफ से दी गई है, वहीं होर्मुज पर ट्रंप ने कैसे यूटर्न ले लिया है, पूरी डिटेल आपको देंगे। साथ ही खबर भारत और ब्रिटेन में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि दिल्ली में शाह योगी की मुलाकात में आखिर क्या बात हुई है, खबर पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह की भी होगी, और बात खेल जगत की भी करेंगे, फीफा के पहले सेमीफाइनल के रोमांच की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान और अमेरिका जंग की। दरअसल अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया है और भीषण हमला किया गया। अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों को फिर से निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, केशम द्वीप, किश द्वीप, हिंगाम द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। वहीं ईरान के दक्षिणी इलाके अंदिमिश्क और एवाज में भी धमाकों की आवाज सुनी गई। तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरान के किश द्वीप पर पानी और बिजली की सुविधा के पास अमेरिकी प्रोजेक्टाइल से विस्फोट हुआ, तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केशम द्वीप पर कई धमाके भी सुने गए हैं। तो एक तरफ अमेरिकी हमला, तो दूसरी ओर ईरान का बदला, और ईरान ने भी एक बार फिर से मिडल ईस्ट के देशों को निशाना बनाया है। क्वेट पर ईरान ने हमला किया है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। ईरान के हमले के बाद क्वेट के कई इलाकों में खतरे के सायरन बजे हैं। क्वेट की सेना के मुताबिक अब तक एक बैलिस्टिक मिसाइल, 5 क्रूज मिसाइल और 33 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर तबाह किया गया है। क्वेट की सेना ने कहा है कि क्वेती नौसेना के एक पोत को निशाना बनाया गया। इस पूरे हमले में 4 जवानों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। एक बैलिस्टिक और 5 क्रूज मिसाइल को तबाह कर दिया गया है, जिसमें नौसेना के एक जहाज पर ईरानी हमला हुआ। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और ईरानी हमले को लेकर कुवैत ने बड़ा बयान भी दिया है। तो कहां कहां पर हमला किया गया वो आपको समझाते हैं। और देखिए, अब ये जंग आज चौथा दिन है कि जगह जगह को निशाना बनाया जा रहा है ईरान में, और लगातार चौथे दिन अमेरिका का ईरान पर हमला हो रहा है। आपको समझाते हैं कि मिडिल ईस्ट में इस जंग में अमेरिका और ईरान के बीच क्या चल रहा है। आधी रात को ईरान के कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनाई गई है। बंदर अब्बास, केशम द्वीप, किश द्वीप पर हमला किया गया, और साथ ही हिंगाम द्वीप, अंदिमेशक और साथ ही अहवाज में भी कई धमाके हुए। ईरान ने फिर से क्वेत पर ईरान ने उसके बाद हमला किया, एक बार दोबारा हमला किया। क्वेत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो क्वेत में ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दागी गई है, जिसको लेकर क्वेत पर हमला किया गया। तो ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है, 33 से ज्यादा ड्रोन्स को क्वेत ने इंटरसेप्ट भी कर लिया, और बहरीन और जॉर्डन में भी ईरान ने हमला किया है। तो देखिए, ईरान की कई जगहों को निशाना बनाया गया, वो आपको समझाते हैं। अंदिमेश्क, अहवाज, किश द्वीप, हिंगाम द्वीप और केशम द्वीप, साथ ही बंदर अब्बास को, ये जगह जहां पर ईरान में धमाकों की आवाज सुनी गई है, यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, और इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए क्वेत में हमला किया, और क्वेत में कई ड्रोन्स को इंटरसेप्ट भी किया गया है, और क्वेत में हमले हुए, और ये वो जगह आप समझिए जहां पर ईरान में केशम द्वीप, बंदर अब्बास, जहां पर हमले किए गए हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। अशरफ हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अशरफ, ईरान में जिस जिस जगह पर हमले किए गए, सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर पहुंचा है?
1: अभी तक फिलहाल पूजा हम देख रहे थे कि पिछले 3 दिन के दौरान मात्र सैन्य ठिकाने जो हैं वो निशाने पर थे अमेरिका के, और जो IRGC के मुख्यालय हैं, चाहे उनके राडर स्टेशन हैं, चाहे उनके बेसिस हैं, और जो ईरान की नेवी है उस पर जो है बमबारी हो रही थी अमेरिका की। अब ये दायरा जो है अमेरिका ने बढ़ा दिया है। अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पानी के प्लांट, जो मिनरल वाटर प्लांट्स और उस तरह जो रेल के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दबाव जो है अमेरिका की तरफ से एक बार फिर ईरान पर, और उसका जो खुलासा भी है अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया है कि हमारी बातचीत भी चल रही है, सीज फायर नहीं है, जब ईरान डील करे तब तक ये हमला जारी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रेशर अटैक न सिर्फ सेना पर, ईरान की IRGC पर, बल्कि साथ ही साथ इकोनॉमी पर सबसे बड़ा प्रहार जो है फिलहाल अमेरिका की तरफ से जारी है। और जो ब्लॉकेड, जो नेवल ब्लॉकेड जिसको MOU साइन होने के बाद हटाया था अमेरिका ने, उसको दोबारा जो है इम्प्लीमेंट किया है। और 50 बड़े जो जंगी जहाज हैं, बेड़ा जो है अमेरिका का, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास है, उसमें फाइटर जेट्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान को पूरी तरह से नाकाबंदी करने की
0: बिल्कुल
1: कोशिश
0: ईरान भी
1: अमेरिका
0: कहीं ना
1: की
0: कहीं
1: तरफ
0: चुप
1: से।
0: नजर नहीं आ रहा है अशरफ, वो भी कुवैत पर हमला कर रहा है। वहीं ईरान अमेरिका को सबक सीखने की बात कह रहा है। उसने अमेरिका के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन नसर 2 अभियान चलाया और इसके तहत अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ईरान ने खैबर शेकन और जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। IRGC ने हमलों का वीडियो जारी किया है, ताजा वीडियो जारी किया गया है और उसके जरिए दावा किया गया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस और कंट्रोल सेंटर को ईरान ने निशाना बनाया। अमेरिकी बेस को ईरान ने निशाना बनाया है तो नसर 2 अभियान चलाया जा रहा है अमेरिकी ठिकानों पर हमले के लिए। तो उधर ईरान से जारी तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि हम आज रात उन पर जोरदार हमला करने वाले हैं और कल रात भी उन पर जोरदार हमला करेंगे और उसकी अगली रात भी जोरदार हमला किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगले हफ्ते हम उनके सभी पावर प्लांट और पुल को तबाह कर देंगे जब तक कि वो बातचीत के लिए तैयार ना हो जाए। तो एक बड़ी धमकी ट्रंप ने एक बार फिर से दे डाली है।
2: But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: ईरान को धमकी देने वाले ट्रंप ने होर्मुज में टोल लेने के ऐलान के बाद अब यूटर्न ले लिया है। उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगाने का अपना फैसला महज 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ बातचीत के बाद उन्होंने इसे खत्म करने का फैसला लिया है और अब इसकी जगह खाड़ी देश अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे। इससे अमेरिका में लाखों रोजगार पैदा होंगे। इससे पहले ट्रंप ने ऐलान भी किया था कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से अमेरिका 20% टैक्स वसूलेगा और ट्रंप के इस फैसले की कई देशों ने आलोचना भी की थी और अब ट्रंप ने इसे यू टर्न ले लिया है। तो ट्रंप ने इस फैसले पर अब यूटर्न ले लिया है क्योंकि कई जगह पर कई देशों ने उनकी इस फैसले को लेकर आलोचना की थी। 20% टैक्स लगाने की बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे थे, अब ट्रंप ने 20% टैक्स का फैसला वापस ले लिया है। दरअसल कार्गो शिप पर टैक्स लगाने से पीछे हट गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और 24 घंटे के अंदर ही ट्रंप ने यह फैसला वापस ले लिया। अभी 24 घंटे पहले ही ट्रंप ने 20% टैक्स लगाने की बात कही थी और उसके बाद अपना फैसला वापस लिया है। खाड़ी देशों के साथ व्यापार निवेश का हवाला देते हुए उन्होंने फैसला वापस लिया है। ट्रंप ने कहा है कि समझौते ज्यादा लाभदायक होंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि समझौते से अमेरिका में भारी निवेश होगा। तो ट्रंप ने अब अपने इस फैसले को वापस लिया है। और वहीं ईरान अमेरिका जंग को लेकर एक और बड़ी खबर, होर्मुज पर अमेरिका ने नाकेबंदी शुरू कर दी है और इसके तहत ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों की नाकेबंदी की जा रही है। मिडिल ईस्ट में 20 से ज्यादा US नेवी वॉरशिप को तैनात, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की तैनाती की भी बात कही है। साथ ही बयान जारी कर कहा गया है कि अमेरिकी बल पूरी तरह से सतर्क, घातक क्षमता से लैस और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। तो 100 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं।

तो वही हुर्मुज में तेल टैंकर पर हुए हमले को लेकर भारत सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय नाविक की मौत पर विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजनयिक को तलब किया। इस वक्त की बड़ी खबर, हुर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर सोमवार को हुए हमले के सिलसिले में विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजनयिकों को तलब किया है और उनमें डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जवाद हुसैनी भी शामिल थे। हुर्मुज में हुए इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत और कई भारतीयों के घायल होने के मामले पर भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने जा रहा है। एफटीए लागू होने के साथ ही भारत में आने वाले ब्रिटेन के सामानों की कीमत बहुत कम हो जाएगी। जी हां, आयात निर्यात पर भारी टैरिफ कटौती देखने को मिलेगी। जून में ब्रिटेन भारत के बीच एफटीए लागू होने की तारीख का ऐलान किया गया था और एफटीए लागू होने से भारतीय एक्सपोर्ट के लगभग 99% हिस्से पर जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। इससे एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी, कार और विस्की सस्ती हो जाएगी। साथ ही ब्रिटेन के साथ ये ट्रेड डील मोदी सरकार का छठा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन एफटीए और ओमान के साथ भी ऐसी ही डील हुई है, तो एफटीए से लग्जरी कारें भी सस्ती हो जाएंगी। तो एफटीए से क्या कुछ फायदा होगा वो आप समझिए। भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ और उसमें भारत के सामान यूके में ड्यूटी फ्री के साथ आएंगे। भारत के 99% सामान जीरो टैरिफ पर निर्यात होगा, वही यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर उनका आयात किया जाएगा। वही विस्की, लग्जरी कार, ब्यूटी प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा इससे सस्ते होने वाले हैं, यानी लाभदायक ये एफटीए होगा आप सभी के लिए। अब आप ये समझिए कि इस व्यापार को लेकर क्या क्या आयात निर्यात हुआ है। भारत से निर्यात होगा रेडीमेड कपड़े और जूते, वही यूके से निर्यात विस्की की जाएगी जिस पर काफी कम टैक्स होगा, काफी सस्ती होने वाली है। वही कुछ फूड प्रोडक्ट्स भारत से निर्यात किए जाएंगे और यूके से निर्यात होगा लग्जरी कार। यूके की बात करें तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी निर्यात होगा, वही ऑटो पार्ट्स भारत से निर्यात किया जाएगा। तो इस एफटीए के बाद भारत और यूके के बीच जो व्यापार है उसको लेकर आपको समझा रहे हैं। रत्न आभूषण खिलौने भारत से निर्यात किया जाएगा, वही यूके से निर्यात होगा मेडिकल डिवाइसेस। कुछ मेडिकल डिवाइसेस ऐसी हैं जो यूके से जिसका निर्यात किया जाएगा। तो वही उधर मिडल ईस्ट में जारी संकट के बीच आज मोदी कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है। सुबह 11 बजे मोदी कैबिनेट की एक बैठक होगी। संसद के मानसून सत्र से पहले यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सूत्रों के माने तो मीटिंग्स में सरकार पश्चिम एशिया संकट और आर्थिक सुरक्षा पर चर्चा करेगी। साथ ही ये बैठक सरकार के भविष्य की प्राथमिकताओं की भी दिशा तय करने वाली है। और अब खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई। कल देर शाम महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी उस बैठक में मौजूद रहे। मुलाकात के बाद शिंदे ने कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी और शिवसेना, उद्धव गुट के 6 बागी सांसद भी वहां पर मौजूद थे। तो कल दिन में सीएम योगी ने भी अमित शाह के साथ मुलाकात की, जिसके बाद सीएम योगी ने पोस्ट कर कहा कि गृहमंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की गई है। ये तस्वीरें उसके बाद सामने आई। मॉनसून सत्र से पहले यह बैठक हुई। दिल्ली में अमित शाह से एकनाथ शिंदे मिले। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे हैं और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी अमित शाह से मिले। शिंदे गुट में शामिल हुए यूबीटी के 6 सांसद भी बैठक में मौजूद।

0: संसद सत्र की तैयारी के बीच दिल्ली में हाई प्रोफाइल बैठकें। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी हलचल। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम योगी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अमित शाह से मुलाकात की। यूपी में बीजेपी संगठन में बदलाव के बाद दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। सीएम योगी ने अमित शाह से मुलाकात की। इसे यूपी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। गृहमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट की। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक धन्यवाद। सीएम योगी से मुलाकात के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी अमित शाह से मिले और चर्चा की। हालांकि मुलाकात की सटीक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। जहां एक तरफ सीएम योगी से मुलाकात के बाद यूपी में सियासी गर्मी तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भी अमित शाह से मुलाकात कर महाराष्ट्र में भी हलचल बढ़ा दी है। ये बैठक ऐसे समय पर हुई जब केंद्र सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुलाकात के बाद शिंदे ने कहा कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी और हमारे 6 सांसद भी वहां मौजूद थे।
1: मीटिंग हुई, सदिच्छा भेंट थी और अमित भाई के साथ हमारे 6 सांसद थे, उनकी बैठक हुई है। सदिच्छा भेंट थी और उनके चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में चर्चा।
0: एकनाथ शिंदे का ये दिल्ली दौरा केंद्र में शिवसेना की भूमिका को तय करने और मानसून सत्र से पहले पार्टी की ताकत को एकजुट करने के लिहाज से अहम साबित होने वाला है। आज तक ब्यूरो।
2: अब बात कर लेते हैं पंजाब कांग्रेस में मची खींचतान पर। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के संकट पर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग में राहुल गांधी, खड़गे, केसी वेणुगोपाल रहेंगे मौजूद और साथ ही पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल को दिल्ली भी बुलाया गया है। मीटिंग में पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल से मिले फीडबैक पर चर्चा हो सकती है। पंजाब कांग्रेस को लेकर पार्टी मंथन भी करेगी। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खींचतान जारी है।
0: पंजाब में कांग्रेस के पंजे पर खींचतान। चुनाव से पहले बंटी दिख रही है पंजाब कांग्रेस। पंजाब की लड़ाई अब दिल्ली दरबार तक पहुंची। पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान को लेकर आज दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल बैठक में शामिल होंगे। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल को भी दिल्ली बुलाया गया और उनके फीडबैक पर कांग्रेस आला कमान चर्चा कर फैसला लेगा।

0: आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं T20 सीरीज की, जिसमें करारी शिकस्त के बाद अब भारतीय टीम ने 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड को हरा दिया है। बीती रात टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत हासिल की और बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम ने 47 ओवर 5 गेंद में 258 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 45 ओवर में 2 गेंद में ही जीत के लक्ष्य को हासिल कर लिया। रोहित शर्मा 11 रन और विराट कोहली महज 5 रन बनाकर आउट भी हो गए, तो वही कप्तान शुभमन गिल ने शानदार 80 रनों का योगदान दिया। हालांकि वो रिटायर्ड हो गए और अक्षर पटेल ने नाबाद 57 रन बनाए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने भी नाबाद रहते हुए 52 रनों का योगदान दिया। अक्षर पटेल ने 4 विकेट भी झटके। ऐसे बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच से सम्मानित भी किया गया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है और अब इंग्लैंड के साथ दूसरा वनडे 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। दरअसल सेमीफाइनल के मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को करारी शिकस्त दी है और फ्रांस को 2-0 से हराकर स्पेन ने दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई। 16 साल बाद स्पेन फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। मिगेल और साथ ही पेड्रो पोरो के गोल्स की बदौलत स्पेन ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा और उसके मजबूत डिफेंस ने फ्रांस को गोल का कोई भी मौका नहीं दिया। रलास स्टेडियम में मिकेल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने भी गोल दागकर स्पेन की जीत पक्की कर दी है। लगातार 37वें मैच में अजय रही स्पेन अब फाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ने वाली है। देखिए, आज फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और इंग्लैंड का महामुकाबला होगा। अटलांटा स्टेडियम में भारतीय समय के हिसाब से 12:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। अब देश का गौरव बढ़ाने वाली खबर, क्योंकि भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज भारतीय समय अनुसार तड़के 2 बजे अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे हैं और 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ वो वैंकूवर से सोयूज MS-29 के जरिए रवाना हुए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचते ही वहां पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अब अनिल मेनन 8 महीने तक अंतरिक्ष में रिसर्च करेंगे। नासा के अनुसार मेनन की यह पहली अंतरिक्ष उड़ान है और रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए दूसरी उड़ान है। तो मेनन के पिता केपी शंकरन मेनन केरलम के पलक्कड़ जिले के रहने वाले हैं। उनकी मां एलिजाबेथ यूक्रेन से अमेरिका आकर बसी हैं और अब मेनन ISS पर रहते हुए लंबी अवधि के अंतरिक्ष उड़ान के शारीरिक असर का अध्ययन करने के लिए कई प्रयोग भी करेंगे और ये देखेंगे कि माइक्रोग्रेविटी अंतरिक्ष यात्रियों में ब्लड सर्कुलेशन, नसों की संरचना और रक्त की बनावट को कैसे प्रभावित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुपर 8 में वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। दार्जिलिंग में उफनती बालासन नदी में बही थार, स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे 4 पर्यटकों की बचाई जान। सोनीपत के गोहाना रोहतक रोड पर ड्रेन में गिरी थार, ड्राइवर घायल, पानी कम होने की वजह से टला बड़ा हादसा। गुरुग्राम द्वारका टनल में चलती कार में लगी हुई सड़क 12 मिनट में स्मार्ट फायर सेफ्टी सिस्टम ने पाया काबू। महाराष्ट्र के वसई में पार्किंग में खड़े स्कूटर में लगी भयंकर आग, वाहन पूरी तरह से जलकर खाक। पालघर में तेज हवा बनी आफत, उड़ता हुआ टीन शेड महिला पर गिरा, खौफनाक हादसा CCTV में कैद। यूपी के अमरोहा में नशे में धुत सिपाही ने 2 लोगों को कार से रौंदा, बिना टायर के हाईवे पर दौड़ाई गाड़ी, मुकदमा दर्ज। गुरुग्राम के झुंड सराय में गोदाम में लगी भयंकर आग, बुझाने के प्रयास जारी, कोई जनहानि नहीं। बनासकांठा में आवारा गाय का हमला, स्कूल जा रहे 7 साल के बच्चे को सींग मारकर किया घायल। चलिए इसी के साथ सुपर 8 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
4: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
5: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
3: मतलब
5: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
3: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
5: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
3: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
2: ओ अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
4: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
5: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
7: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
12: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
13: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
14: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
15: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
16: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
14: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
17: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े चेहरे, जनता के सबसे बड़े सवाल और आज तक की सबसे बड़ी पंचायत, 15 जुलाई लखनऊ।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से पर
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
3: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

क्वेड बहरीन जॉर्डन पर किया अटैक। पीओजेके में पाकिस्तान को खुला चैलेंज, आंदोलनकारी नेता अमान खान शहबाज मुनीर को ललकारा, कहा ये कब्जे वाला इलाका। रावलकोट में हजारों की भीड़ ने किया तालियों से बयान का स्वागत। संसद सत्र की तैयारियों के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर जारी, अमित शाह से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे।

चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा स्पेन, फ्रांस को 2-0 से हराया। मिकेल और पेड्रो पोरो ने किया गोल। आज दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टक्कर।

आदित्यनाथ के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान पर हमले जारी रखने की बात कहते हुए पावर प्लांट पर भी बड़े हमले की धमकी दी। ट्रंप ने कहा ईरान की युद्ध करने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लेने के ऐलान पर ट्रंप का यूटर्न, 20% टैक्स लगाने का अपना फैसला महज 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया गया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मिडल ईस्ट के नेताओं के साथ बातचीत के बाद उन्होंने इसे खत्म करने का फैसला लिया। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ हमलों की नई लहर शुरू की, ऑपरेशन नसर 2 के तहत अमेरिकी ठिकानों पर किया अटैक। ईरान का बड़ा बयान, युद्ध की स्थिति में हॉर्मुज पर रहेगा हमारा पूर्ण नियंत्रण। ईरान का दावा, ओमान की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं लेकिन सुरक्षा के लिए हॉर्मुज पर रखेंगे पूरा नियंत्रण। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री बोले राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे हॉर्मुज, युद्धकाल में सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे हाथ में होगी। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री का अमेरिका को संदेश, सैन्य हमलों और नाकेबंदी से हम बातचीत की मांग करेंगे, ये सोचना बड़ी भूल होगी। ईरान का अमेरिका से जुड़े इस्लामाबाद एमओयू पर बयान, डिप्टी विदेश मंत्री बोले कि फिलहाल हमारी कोई भी प्रतिबद्धता नहीं है। IRGC का दावा, बहरीन और कुवैत में हथियार भंडार और सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना, इसे अमेरिकी हमलों का जवाब बताया। कुवैत नौसेना के जहाज पर हमला, 4 सैन्यकर्मी घायल हुए, ईरानी आक्रमकता का सेना ने किया दावा। कुवैत का दावा, ईरान के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ 33 ड्रोन हमले नाकाम हुए, कई हमलों के बीच रास्ते में रोका पर मलबा गिरने की वजह से कई जगह संपत्ति को नुकसान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा, ईरान पर हमलों का नया दौर शुरू, हॉर्मुज में उसकी सैन्य क्षमता को निशाना बनाया। US सेंटकॉम का बयान, ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों के नौसैनिक नाकेबंदी से पहले अमेरिका ने तेज किए हवाई हमले। ईरान के बंदर आबाद में धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई, हमलों के बीच हालात फिर से तनावपूर्ण हुए। अमेरिका का दावा, ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी फिर से शुरू, मिडिल ईस्ट में 20 से ज्यादा युद्ध पोत तैनात। ईरान की सरकारी एजेंसी का दावा, हिंगाम द्वीप पर अमेरिकी प्रोजेक्टाइल से हमला, वहीं चाबहार में विस्फोट की खबरों से अधिकारियों का इनकार। ईरान ने फिर से धमाकों की खबर को सरकारी मीडिया ने दावा करते हुए कहा कि एवाज शहर और केशम द्वीप पर सुनी गई है विस्फोटों की आवाजें। ईरानी सेना का दावा, जॉर्डन के अजर्क बेस पर अमेरिकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। वहीं स्पेन 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, टीम ने पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराकर दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई। डलास स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 22वें मिनट में मिकेल ने दागा पहला गोल, वहीं पेड्रो ने 58वें मिनट में किया गोल। 2010 के बाद स्पेन वर्ल्ड कप में दूसरी बार फाइनल में पहुंची, दूसरी ओर फ्रांस 2018 और 2022 के बाद लगातार तीसरा फाइनल खेलने से चूकी। आज खेला जाएगा इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच दूसरा सेमीफाइनल, इंग्लैंड और अर्जेंटीना मैच के विजेता का सामना होगा स्पेन से। तो वहीं भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा दूसरा मैच। अजबेस्टन में इंग्लैंड ने रखा था 259 रन का टारगेट, तो 4 विकेट खोकर 46वें ओवर में भारत ने मैच किया अपने नाम। अक्षर पटेल चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच, 4 विकेट झटके, फिर नाबाद 57 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल ने 80 रन बनाए, वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 52 रन की पारी खेली। आज लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच, सीएम योगी समेत सियासी दिग्गज करेंगे शिरकत, विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज। 17 जुलाई को पीएम मोदी का पंजाब दौरा, 2500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजना की रखेंगे आधारशिला, स्वास्थ्य रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा। बेंगलुरु में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा को 88 साल की उम्र में निधन हुआ, लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान। 1988 से 2018 तक कर्नाटक विधान परिषद के 5 बार रहे थे सदस्य। प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ बीजेपी नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर जताया दुख, कहा कि एक युग का अंत हुआ, पार्टी के मजबूत स्तंभ थे। अमित शाह ने भी कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर जताया शोक, कहा राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा उनका जीवन। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, हाई लेवल मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 22 जुलाई को नई टीम का ऐलान संभव, डॉक्टर कृष्ण मोहन बन सकते हैं महासचिव। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ बनने की होड़, अब तक हजारों लोगों ने किया आवेदन, पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का भी नाम शामिल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT आज पेश कर सकती है फाइनल रिपोर्ट, चोरी के लिए तय होगी जिम्मेदारी, पैसों के लेन देन की भी जांच होगी। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज बोले कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, चढ़ावा चोरी मामले में 3 करोड़ रुपए की चोरी का लगाया गया अनुमान। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर गुरुग्राम में हंगामा, बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध पर पुलिस हिरासत में लिए गए कांग्रेसियों ने पुलिस लाइन में पढ़ी हनुमान चालीसा। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कांगड़ा में कांग्रेस का प्रदर्शन, पोस्ट ऑफिस से हनुमान मंदिर तक निकाली रोष रैली। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर जम्मू में भी कांग्रेस का प्रदर्शन, हरि सिंह शिव और
साथ ही सुरेंद्र भगत के नेतृत्व में उठाई गई है जांच की मांग। ज्ञानवापी विवाद को लेकर वाराणसी में हुई बैठक में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने मध्यस्थता से किया इनकार। दोनों पक्षों ने कहा सिर्फ अदालत का फैसला मानेंगे। मध्य प्रदेश के धार में मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए दी जाएगी भोजशाला परिसर के पास खुली जगह। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नमाज पर लगी रोक रहेगी बरकरार। माता वैष्णो देवी भवन में 500 करोड़ के नकली चांदी चढ़ावा का मामला आया सामने। जम्मू की अदालत ने क्राइम ब्रांच से दस्तावेज के साथ 29 जुलाई को बुलाया। रथ यात्रा विवाद गहराया, पुरी मंदिर समिति ने इस्कॉन के दावों को बताया भ्रामक। पुरी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन का इस्कॉन पर पलटवार, कहा समय से पहले रथ यात्रा, शास्त्रों के अनुसार नहीं, विदेशों में अलग अलग तारीखों पर रथ यात्रा का आयोजन शास्त्र सम्मत नहीं। वहीं रायपुर में देवकीनंदन ठाकुर ने राम मंदिर दान मामले पर उठाई आवाज, बोले मंदिरों के लिए बने सनातन बोर्ड, कहा मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों के साथ दिल्ली पहुंचे एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से की मुलाकात, सांसदों के नए गुट के विलय को आधिकारिक मंजूरी दिलाने पर चर्चा। संजय राउत का बड़ा दावा, यूबीडी छोड़ने वाले 6 सांसदों की सदस्यता होगी रद्द, बोले राजनीतिक भविष्य हो जाएगा खत्म। महाराष्ट्र सरकार की सीएजी रिपोर्ट पर यूबीडी का हमला, आनंद दुबे बोले खाली पड़े हॉस्टल पर 1,62,00,000 रुपए खर्च कर रही है महाराष्ट्र सरकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवंडी में कथित अवैध स्कूल की तोड़फोड़ पर लगाई अंतरिम रोक, किरीट सौम्या ने बताया था स्कूल जुहार। महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई, पुणे में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से संपर्क रखने वाले 66 लोगों से की गई पूछताछ। 3 भाषा नीति पर केंद्र और एनसीईआरटी को नोटिस, सीबीएसई को 10 दिन में जवाब देने के निर्देश दिए गए। एससी ने फिलहाल रोक लगाने से किया इनकार, क्लास 9वीं तक 3 भाषा नीति को दी गई है चुनौती। सीबीएसई ने 8वीं भाषा असेसमेंट फ्रेमवर्क किया जारी, 10वीं में 3री भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं, स्कूल स्तर पर होगा मूल्यांकन, लेकिन 10वीं पास करने के लिए असेसमेंट क्लियर करना जरूरी। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठनी, सीएम रेखा गुप्ता ने लगाया आम आदमी पार्टी पर संरक्षण देने का आरोप। सीएम रेखा गुप्ता का आम आदमी पार्टी पर हमला, बोली कि ताहिर ने दिल्ली में हिंसा भड़काई, दिल्ली की जनता केजरीवाल को कभी माफ नहीं करेगी, केजरीवाल संजय सिंह और साथी बाकी आम आदमी पार्टी नेता से मांगा जवाब। मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर कसा तंज, बोले आम आदमी पार्टी सरकार ने दंगाइयों को बचाया, ताहिर सिर्फ एक्टर, असली डायरेक्टर कोई और है। देहरादून में परेड ग्राउंड से पीछे हटी कांग्रेस, अब बनू स्कूल मैदान में होगा राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम। परेड ग्राउंड पर धरना और पुलिस से नोकझोंक के बाद कांग्रेस ने बदला कार्यक्रम का वेन्यू, 17 जुलाई को बनू स्कूल मैदान में आयोजन। बंगाल कांग्रेस का ममता बनर्जी को न्योता, बोली कांग्रेस छोड़नी थी राजनीतिक गलती। वहीं कोलकाता में 21 जुलाई शहीद दिवस कार्यक्रम में आए इतिहास स्वीकारे। भरत तिवारी एनकाउंटर जांच में नया दावा, भाई और प्रत्यक्षदर्शी महिला ने आयोग के सामने दी गवाही। वहीं न्यायिक आयोग के सामने बोले गवाह, सरेंडर के बाद गोली चलाने का किया गया था दावा, जांच जारी। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक, नितिन नवीन के आवास पर सहयोगी दलों के नेताओं ने जीत के लिए बनाई रणनीति। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर नितिन नवीन बोले, बांकीपुर की जनता ने मुझे प्यार और स्नेह दिया, उम्मीद है कि अब नीरज सिन्हा को भी मिलेगा जनता का आशीर्वाद। बांकीपुर सीट से तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी की प्रत्याशी वीना मानवी का नामांकन रद्द, 10 प्रस्तावकों की जगह सिर्फ 9 हस्ताक्षर मिले। तो वहीं बांकीपुर प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर तेज प्रताप यादव पहुंचे पटना और उन्होंने कहा कि हमारे साथ षड्यंत्र हुआ, जाएंगे न्याय। बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पवन सिंह मनोज तिवारी भी संभालेंगे मोर्चा। ग्रेटर नोएडा में फिर से एक और दहेज हत्या, दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल पति पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप। जन्मदिन के दिन की थी पत्नी प्रियंका से मारपीट, इलाज कराने के बहाने से गोली मारकर हुआ फरार। मृतका प्रियंका के परिवार का आरोप है कि 25 लाख की जगह 15 लाख दहेज मिलने से नाराज था ससुराल पक्ष, आए दिन किसी न किसी बात को लेकर होता रहता था विवाद। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में कांस्टेबल मनीष ने खुद को गोली मारी, मौके पर मौत। कांस्टेबल मनीष ने की थी अपनी पत्नी प्रियंका की हत्या जब से चल रहा था फरार। वहीं दार्जिलिंग में उफनती बालासन नदी में वही थार, स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे 4 पर्यटकों की बचाई जान। लगातार बारिश से बढ़ा बालासन नदी का जलस्तर, पिकनिक से लौट रहे 4 लोग नदी में फंसे, रेस्क्यू का वीडियो आया सामने। सोनीपत के गोहाना रोहतक रोड पर ड्रेन में गिरी थार, ड्राइवर घायल हुआ, पानी कम होने की वजह से चला बड़ा हादसा। गुरुग्राम द्वारका टनल में चलती कार में लगी भयंकर आग, 12 मिनट में स्मार्ट फायर सेफ्टी सिस्टम ने पाया काबू। टनल में कार में आग लगने की वजह से अचानक से हड़कंप मच गया, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा रेस्क्यू और फायर सेफ्टी सिस्टम का एक्शन।
महाराष्ट्र के वसई में पार्किंग में खड़े स्कूटर में लगी भयंकर आग, वाहन पूरी तरह से जलकर खाक। पालघर में तेज हवा बनी आफत, उड़ता हुआ टिन शेड का महिला पर जाकर गिरा खौफनाक हादसा, सीसीटीवी में हुआ कैद। महाराष्ट्र के धारशिव में दूध मिलावट का बड़ा खेल, 6 महीने में 23 करोड़ लीटर दूध में मिलावट की आशंका। नासिक में छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार पर हमला, 20 किलोमीटर तक पीछा कर कार में तोड़फोड़ की, पुलिस ने 9 आरोपियों को दबोचा। गुजरात के वडोदरा में बीच सड़क आवारा सांड की लड़ाई से बची भगदड़, राहगीरों में दहशत। कौशाम्बी में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, 28 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ, ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप। हापुड़ में पानी की बोतल में तेजाब मिलाकर देने का मामला, 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, पानी पीने से युवती की बिगड़ी तबीयत। बरेली में पुलिस हिरासत में आरोपी का हाथ कटा, परिवार ने लगाए प्रताड़ना के आरोप, पुलिस ने शीशे पर हाथ मारने की बात बताई वजह। कोयमथरा पुलिस का बड़ा खुलासा, चोरी के 2 करोड़ 60 लाख रुपए नकद और 60 लाख की ज्वेलरी बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में नशे में धुत सिपाही ने 2 लोगों को कार से रौंदा, बिना टायर के हवाई पर हाईवे पर दौड़ाई गाड़ी, मुकदमा दर्ज।

का आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 11:50 तक, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात में 9:46 तक, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, रिश्तों की समस्या पर ध्यान दें, अनावश्यक तनाव न पालें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, करियर की समस्या हल होगी, मन की चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक पक्ष अच्छा बना रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होने के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर चिंता ना करें, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, यात्राओं से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, स्थान परिवर्तन हो सकता है, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, कोई बड़ी समस्या हल होगी, धन लाभ की स्थिति बनेगी, जीवन साथी को लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तुला राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, रिश्तों की समस्या दूर होगी, करियर की रुकावट दूर होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई मनोकामना पूरी होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

मत पालिए, जल्दबाजी में काम करने से बचें, बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

कर सकते हैं, सेहत अच्छी होती जाएगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनावी मुकाबले के लिए तैयार है। उद्घाटन, शिलान्यास और यूपी के लगभग हर जिले को नापना इस तैयारी का हिस्सा है। 2017 से पहले और अब का फर्क गिनाना योगी आदित्यनाथ का चुनावी अंदाज है। योगी की इस रणनीति के बीच बीजेपी अच्छे से जानती है कि चुनाव के लिए संगठन और समीकरण बेहद अहम है। यूपी बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए 8 प्रमुख संगठनात्मक कार्यक्रमों का रोड मैप तैयार किया है। 19 से 22 जुलाई तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बूथों की मैपिंग कर संगठन को और मजबूत किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में बूथों की संख्या 80 से अधिक होगी, वहां नए मंडलों का गठन किया जाएगा। SIR के बाद बदले मतदाता आंकड़ों के आधार पर कई जगह बूथों और मंडलों का पुनर्गठन होगा। यूपी में चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन की रणनीति में जुलाई के पहले हफ्ते से सरगर्मी आई है, जब पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे थे। यूपी में 12 जुलाई को वृक्षारोपण कार्यक्रम का पहला चरण पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को नए सिरे से बूथ स्तर तक पहुंचाने की रणनीति बनाई जा रही है। चुनाव से पहले सभी जिलों में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। जून में बीजेपी ने यूपी की टीम भी नए सिरे से बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम में 19 उपाध्यक्ष हैं, जिनमें 8 OBC हैं। यूपी में संगठन को टॉप गियर में डालने का बीजेपी का ये फैसला अखिलेश यादव के दाव के बीच आया है। अखिलेश यादव जहां अपने PDA के समीकरण पर मजबूती से खड़े हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन जैसे आयोजन कर और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी को घेर कर, साथ ही सनातन की बात कर बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की तैयारियों के बीच असल सवाल SIR के बाद बनी परिस्थितियों का है। उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया में तकरीबन 2,04,00,000 नाम कटे और तकरीबन 84,28,000 नए नाम जुड़े। SIR पर विपक्ष के राजनीतिक विरोध के बीच पिछले साल बिहार चुनाव से राज्यों में SIR हो रहे हैं। बिहार, बंगाल, पुडुचेरी में NDA सरकारें बनी हैं, जबकि केरल में कांग्रेस और तमिलनाडु में TVK सरकार बनी है। अब सबकी निगाहें यूपी पर है। आज तक के रूप

लेकिन जारी है ईरान पर हमले का। अगले दो दिन बहुत भारी, कोई पावर प्लांट और पुल नहीं बचेगा। तेहरान ने कुवैत, बहरीन, जॉर्डन पर किया अटैक। वाराणसी को आज मिल सकती है बहुत बड़ी सौगात। पीएम के संसदीय क्षेत्र के लिए 25,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट को मिल सकती है कैबिनेट से मंजूरी। गंगा और वर्णा कॉरिडोर से काशी को बड़ी राहत। आज सुबह 10 बजे लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच। सीएम योगी समेत कई सियासी दिग्गज करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हस्तियों के साथ मंथन। भारत ब्रिटेन के बीच आज से लागू हो रहा है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। कार, ब्रांडेड कपड़े समेत कई चीजें होंगी सस्ती। देश में बढ़ेगा निर्यात, एमएसएमई को होगा फायदा। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा स्पेन, फ्रांस को 2-0 से हराया। मिकेल और पेड्रो पोरो ने किए गोल। आज दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मुकाबला।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach, in association with
1: Bharat.
2: नमस्कार, स्वागत है आपका. घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का. आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम. सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी. लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं. देहरादून में देर रात क्यों सड़क पर उतरी कांग्रेस? कांग्रेस नेताओं ने क्यों कहा कि राहुल गांधी से डर गई है उत्तराखंड की सरकार? अब से थोड़ी देर बाद ये पूरी खबर विस्तार से. टीएमसी में नया बवाल, अभिषेक बैनर्जी पर कल्याण बैनर्जी का सीधा हमला, क्या है ये पूरा मामला दिखाएंगे आपको. और बुलेटिन में साथ ही दिखाएंगे गुरुग्राम के टनल में लगे स्मार्ट फायर सिस्टम की तस्वीर, से 12 मिनट में बुझी कार में लगी आग. और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें दिल्ली में कल हुई 3 अहम मुलाकात की खबर के साथ. कल गृहमंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की मुलाकात हुई. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी मुलाकात की. ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब 5 दिन बाद संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है. केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हैं. अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव हैं. अटकलें ये भी हैं कि आखिरकार शाह के साथ ताबड़तोड़ मुलाकात के क्या मायने.
3: जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले कल दिल्ली में अचानक सियासी सरगर्मी बढ़ गई. चर्चा 3 अहम मुलाकातों की हो रही है. दिल्ली में कल गृहमंत्री अमित शाह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अलग अलग मुलाकात की. इन मुलाकातों के बाद मुलाकात के मायनों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. अमित शाह से योगी की 40 मिनट की मुलाकात को यूपी चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है. हाल ही में यूपी में बीजेपी संगठन में बदलाव भी हुआ है. दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें भी तेज हैं. गृहमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा, दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट की. अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक धन्यवाद. सीएम योगी से मुलाकात के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अमित शाह से मुलाकात की और चर्चा की. नितिन नवीन पटना में बांकीपुर उपचुनाव की रणनीति पर मंथन करने के बाद दिल्ली लौटे थे. हालांकि इस मुलाकात में क्या बात हुई इसे लेकर जानकारी सामने नहीं आई है. जहां एक तरफ सीएम योगी से मुलाकात के बाद यूपी में सियासी गर्मी तेज हो गई, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भी अमित शाह से मुलाकात कर महाराष्ट्र में भी हलचल बढ़ा दी है. ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब केंद्र सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं. राजनीतिक गलियारों में मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मुलाकात के बाद शिंदे ने कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी और हमारे 6 सांसद भी वहां मौजूद थे.
4: मीटिंग हुई, सदिच्छा भेंट थी और अमित भाई के साथ हमारे 6 सांसद थे, उनकी बैठक हुई है. सदिच्छा भेंट थी और उनके चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में चर्चा.
3: एकनाथ शिंदे का ये दिल्ली दौरा केंद्र में शिवसेना की भूमिका को तय करने, मानसून सत्र से पहले पार्टी की ताकत को एकजुट करने के लिहाज से अहम साबित होने वाला है. ऐश्वर्या पालीवाल और पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक.
2: पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ. पीयूष, ये कई एजेंडों का मिश्रण हो सकता है. आगामी यूपी विधानसभा चुनाव है, जल्द मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है, सभी का मिश्रण.
5: जी बिल्कुल, कल बैठकों का दौर लगातार जारी रहा. कल शाम को 6 बजे के आसपास गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई और लगभग 40 मिनट से ज्यादा वो मुलाकात चली. और इस मुलाकात के कहीं ना कहीं मायने ये निकाले जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आना है, उससे पहले ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है. दूसरा, कल शाम के 6 बजे के बाद देर रात गृहमंत्री अमित शाह के घर पर एक और बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण मुलाकात हुई. इस मुलाकात में ना सिर्फ एकनाथ शिंदे मौजूद थे बल्कि उनके पुत्र जो सांसद भी श्रीकांत शिंदे वो भी थे और इनके अलावा जो नए सांसद आए हैं उद्धव ठाकरे के गुट से वो सभी सांसद मौजूद थे और इन सबकी मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से हुई है. और एक बात का जो प्रॉमिस है वो केंद्र सरकार की तरफ से इन सभी सांसदों को किया गया है कि उनके क्षेत्र में जो अब तक विकास नहीं हो पा रहा था वो विकास होगा, वहां पर योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, साथ साथ महाराष्ट्र के विकास को लेकर भी सरकार इन सांसदों का समर्थन लेगी। तो अब गणित भी कहने के संसद में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कैसे तृणमूल कांग्रेस में टूट हुई और 20 अलग सांसद हो गए, एनसीपीआई अलग सांसद अलग पार्टी हो गई, वो पूरी तरह से एनडीए का समर्थन कर रही है। 6 और सांसद उद्धव ठाकरे गुट के एकनाथ शिंदे के साथ आ जाते हैं, तो इनकी संख्या बढ़कर भी 7 से 13 हो चुकी है। अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शरद पवार की पार्टी के सांसद भी कहीं ना कहीं वो आना चाहते हैं। तो लगातार गणित एनडीए का बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं फायदा होगा एनडीए को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल है। 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू होना है, उससे पहले कहीं ना कहीं गणित अपना सही करने की कोशिश में है सरकार। आपको याद होगा जब पिछली बार डिलिमिटेशन बिल सरकार लेके आई थी वुमेन्स रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, तो उस वक्त कहीं बहुत दिक्कतों का सामना हुआ था। और इसी के साथ साथ कई और भी बहुत महत्वपूर्ण बिल है, जैसे वन नेशन वन पोल हो गया, इसके अलावा और कई सारे अमेंडमेंट्स हैं जो सरकार जिस पर फोकस कर रही है। तो अगर संख्या सरकार के पास ज्यादा होगी बेहतर होगी और समर्थन रहेगा सांसदों का तो मदद मिलेगी। इसीलिए आप देख सकते हैं कैसे मानसून सत्र से ठीक पहले लगातार बैठकों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश को लेकर भी योगी आदित्यनाथ के साथ कल गृहमंत्री अमित शाह की बैठक हुई और उस बैठक के भी कई बहुत महत्वपूर्ण मायने निकाले जा रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले नितिन नवीन भी उत्तर प्रदेश गए थे, वहां पर उन्होंने जो बीजेपी की नई टीम है उनके साथ मुलाकात की थी, और लगातार अब विधानसभा चुनाव से पहले हम इसी तरह की हाई प्रोफाइल बैठकें देखते रहेंगे, क्योंकि विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा गंभीर है, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव को लेकर भी लगातार
2: ठीक है। आगामी चुनाव को लेकर तमाम बैठकों का दौर चल रहा है। बात अब देहरादून की सड़कों की करेंगे, जहां पर देर रात कांग्रेस ने मार्च किया है। राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल को लेकर उत्तराखंड में सियासी घमासान है। देहरादून के परेड ग्राउंड में इजाजत मिलने के बाद रद्द करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। रात को ही परेड ग्राउंड तक मार्च निकालकर राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े किए।
3: देहरादून में आधी रात को कांग्रेस का हल्ला बोला। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर सड़क पर उतरी कांग्रेस। छात्रों की गूंज कार्यक्रम स्थल को लेकर बढ़ा सियासी संग्राम। 17 जुलाई को देहरादून के परेड ग्राउंड में राहुल गांधी के कार्यक्रम को इजाजत न मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देर रात प्रदर्शन किया, परेड ग्राउंड तक मार्च निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध को देखते हुए परेड ग्राउंड के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। परेड ग्राउंड का गेट खुलवाने की कोशिश के दौरान पुलिस से कुछ कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: 17 तारीख को आवाज है, नौजवानों की आवाज, हमारी युवाओं की आवाज, हमारी युवतियों की आवाज, उनके भविष्य को कुचला जा रहा है, उनके सपनों को बर्बाद किया जा रहा है, और राहुल गांधी जी सबकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे आना चाहते हैं, और सरकार की मंशा नियत साफ हो चुकी है, उनके नियत पे खोट है, और मैं कहना चाहता हूँ जवाबदारी जवाबदेही रचना सरकार की जिम्मेदारी होती है, और सरकार बेनकाब हो चुकी है।
3: कांग्रेस का दावा है कि 9 तारीख को ही प्रशासन से इजाजत मांगी गई थी, 10 तारीख को परमिशन भी मिल गई, लेकिन अब कार्यक्रम को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है
6: कि इस प्रदेश की सरकार राहुल गांधी जी के नाम से डर गई है। राहुल गांधी जी की संभावित उपस्थिति और छात्रों को उनको उनके द्वारा संबोधित किए जाने के स्थिति में सरकार अपने को असहज पा रही है।
7: 17 तारीख का कांग्रेस का घिसा पिटा कार्यक्रम है, पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है, और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और यह भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है।
3: आधी रात तक चली सियासी उठापटक के बाद कांग्रेस जगह बदलने के फैसले पर मान गई और अपने विरोध प्रदर्शन को खत्म कर दिया। राहुल गांधी का कार्यक्रम अब बन्नू स्कूल मैदान में आयोजित किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: और अब बात पंजाब कांग्रेस से बचे घमासान की करेंगे। चुनाव से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस के संकट पर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल को आज दिल्ली बुलाया गया है। मीटिंग में भूपेश बघेल से मिले फीडबैक पर चर्चा संभव है। चर्चा तेज है कि पंजाब कांग्रेस में छिड़े अंदरूनी घमासान पर आज बड़ा फैसला हो सकता है।
8: पंजाब में कांग्रेस के पंजे पर खींचतान। चुनाव से पहले बंटी दिख रही है पंजाब कांग्रेस। पंजाब की लड़ाई अब दिल्ली दरबार तक पहुंची। पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान को लेकर आज दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल बैठक में शामिल होंगे। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल को भी दिल्ली बुलाया गया और उनके फीडबैक पर कांग्रेस आला कमान चर्चा कर फैसला लेगा। पंजाब कांग्रेस की दीवारों में दरार अब किसी से छिपे नहीं है, सब कुछ सामने आ गया है। असली विवाद की वजह पार्टी के अंदर चल रही खेमेबंदी है। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। राजा वडिंग को एक्सटेंशन मिलने के बाद पार्टी के अंदर खींचतान शुरू हो गई। 1 जुलाई को पार्टी ने घोषणा की कि राजा वडिंग पंजाब यूनिट के अध्यक्ष बने रहेंगे और चन्नी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होंगे, जिसके बाद सियासी जमीन में खटपट का बीज पड़ गया। पंजाब में जारी सियासी उठापटक पर अब आला कमान को फैसला लेना होगा, लेकिन चुनाव से पहले खींचतान पर विरोधियों को एक और दांव मिल गया है। आज तक ब्यूरो।
2: राहुल गौतम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राहुल, आज की मीटिंग में कौन कौन मौजूद रहने वाला है?
9: देखिए, बताया जा रहा है 10 बजे ये बैठक शुरू होगी केसी वेणुगोपाल के घर पर, जहां भूपेश बघेल पहुंचेंगे। उन्हें आनंद फानंद में दिल्ली बुलाया गया कल रात को, तकरीबन 12 बजे वो दिल्ली पहुंचे हैं। और आप देखिए कि कितना जरूरी है ये मुलाकात, की विधानसभा का सत्र चल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन उसके बीच में उनको बुलाया गया है। और बताया जा रहा है कि पहले केसी वेणुगोपाल मिलेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, और उसके बाद अगर जरूरत होगी तो फिर केसी वेणुगोपाल के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मिलेंगे। दरअसल पूरा पेच आप जानते हैं इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि राजा वड़िंग को लेकर एक बगावत हो गई है और चन्नी गुट का साफ कहना है कि उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है इससे कम कि जो वड़िंग है उनको हटाया जाए। ऐसे में आला कमान को बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि जाहिर अगर वो फैसला बदलते हैं तो उनके फैसले पर ही सवाल उठ जाएंगे। तो बताया जा रहा है कि जो नाराज नेता है उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा, कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, माइनर चेंजेस, कुछ वायदे किए जा सकते हैं और उसके बाद इस पूरे विवाद को शांत किया जा सकता है। लेकिन नाराजगी आप कह सकते हैं इस वक्त पार्टी जो है वो बिल्कुल मोल लेने की स्थिति में नहीं है, और इसीलिए जब राहुल गांधी जैसे ही वापस आए विदेश दौरे से, उन्होंने सबसे पहले मुलाकात करी, जो ताजा हालात है उनका जायजा लिया और अब इस पर आप कह सकते हैं कि अंतिम फैसले पर मोहर लगेगी। ये कुल मिलाकर किरकिरी हुई है पार्टी की और ये पार्टी अच्छी तरह जानती है, इसीलिए अब इसमें बिना देरी किए, बिना लाग लपेट के आप कह सकते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में हमको क्लैरिटी मिल जाएगी।
2: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में चल रहे अंदरूनी बवाल की करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी के भतीजे पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पार्टी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि अभिषेक के इर्द गिर्द बने इकोसिस्टम ने पार्टी को बर्बाद कर दिया। आपको बता दें कि कोलकाता के कैमिक स्ट्रीट पर ही अभिषेक बनर्जी का दफ्तर है, इसीलिए कल्याण बनर्जी ने कैमिक स्ट्रीट इकोसिस्टम का जिक्र किया है। कल्याण बनर्जी ने टीएमसी की हार और पार्टी को कमजोर करने के लिए आईपैक को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो नेता और कार्यकर्ता पहले अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते थे, वो पार्टी छोड़कर बागी खेमे में जा रहे हैं या उसी नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो गए। तापस सेन गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, ये कोई नई बात नहीं है जब इस तरीके से आरोप अभिषेक बनर्जी पर लगे हों, क्योंकि जब हार का सामना टीएमसी को इस बार के चुनाव में करना पड़ा तभी से मुश्किलें खड़ी हो गई थी टीएमसी में, अंदरूनी जिस तरह से कलह चल रही थी पार्टी को यूनाइटेड रखने की, और तमाम आरोप जो है सिरे से अभिषेक बनर्जी पर ही लगे। एक बार फिर से नया आरोप।
10: जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक बनर्जी हमेशा से ही एपिसेंटर रहे हैं, हमने पिछले 2-3 महीनों में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को बिखरते हुए देखा है। साफ तौर पे छोटे से बड़े नेता हर किसी ने आरोप लगाया कि इस पार्टी का ये जो हाल हुआ है उसके लिए, उसके पीछे अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार है। और कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर ये बात खुलकर कह दिया कि जो कैमैक स्ट्रीट जो अभिषेक बनर्जी का दफ्तर रहा है वहां से कॉल लिया जाता था, और ये जो एक इकोसिस्टम बनाकर रखा था अभिषेक बनर्जी ने, उसके वजह से जो पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, जो वरिष्ठ नेता रहे हैं वो पार्टी से दूर होते हुए नजर आए। तो इसका मतलब क्या हम ये माने कि कल्याण बनर्जी भी अब दूसरे सुर पे गाना गा रहे? क्या ऐसा कोई संभावना है कि आगे कल्याण बनर्जी कैंप शिफ्ट कर सकते हैं? क्योंकि अटकलें इस बीच ये लगाई जा रही है कि संदीपन साहा यानी ऋतुव्रतो कैंप के साथ मदन मित्रा की एक बातचीत हुई है, और हालांकि इसकी कोई औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि मदन मित्रा जो ममता सबसे पुराने साथी रहे हैं, वो भी ऋतुव्रत कैंप के साथ बातचीत पर है और उनके मन में भी कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है। तो क्या उनका अभिषेक बनर्जी की वजह से मदन मित्रा भी ममता बनर्जी का दामन छोड़ने के लिए तैयार है? 21 जुलाई जो शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है तृणमूल कांग्रेस की ओर पे तरफ से, इस बार एक टग ऑफ वॉर देखने को मिल रहा है। एक तरफ ऋतुव्रत कैंप की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मनाएंगे, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मनाएंगे। हालांकि इस समय ये साफ नहीं है कि पार्टी का जो बागडोर है वो किसके हाथ में है, क्या ममता फैक्शन के पास है या ऋतुव्रत फैक्शन के पास है। लेकिन तमाम बड़े नेता और ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाने वाले कल्याण बनर्जी का ये बयान कहीं ना कहीं सीधा ये साबित करता है कि अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से पिछले 2021 के बाद जिस तरीके से पार्टी का जो बागडोर संभाले थे उससे इस पार्टी को नुकसान ही हुआ है। कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी तो है, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो है वो अभिषेक बनर्जी पर आता है।
2: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते आगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिल सकती है। कैबिनेट वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ की बड़ी सड़क परियोजना को मंजूरी दे सकती है। वाराणसी में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आज 2 एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार वाराणसी के लिए गंगा और वरुण कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने की तैयारी में भी है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में विस्तार से बताइए, इससे कैसे वाराणसी को फायदा होगा?
11: देखिए, बिल्कुल, वाराणसी में जो 15 करोड़ टूरिस्ट आते हैं हर साल, उनको लेकर हमेशा ट्रैफिक की अव्यवस्था रहती है और उसको लेकर ये 2 एलिवेटेड रोड जो है उनको मंजूरी आज कैबिनेट से मिल सकती है। गंगा कॉरिडोर और वरुणा कॉरिडोर, दोनों कॉरिडोर के अंदर जो पैसा एलोकेट किया जाएगा वो 25,000 करोड़ का है और 60 मिनट का जो सफर है वो महज 20 मिनट

0: नसर 2 अभियान चलाया। इसके तहत अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने खैबर शेकन और जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल दागी। आईआरजीसी ने हमलों का वीडियो जारी किया। दावा किया गया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस और कंट्रोल सेंटर को ईरान ने निशाना बनाया है। तो ऑपरेशन नसर 2 इसे नाम दिया गया है। हमलों की ये तीसरी लहर बताई जा रही है। खैबर शेकन, जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल्स इसमें दागी जा रही। उधर ईरान से जारी तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हम आज रात उन पर जबरदस्त तरीके से हमला करेंगे, कल रात भी उन पर जोरदार हमला करेंगे और उनकी अगली रात भी हमला किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगले हफ्ते हम उनके सभी पावर प्लांट्स और पुल्स को निशाना बनाएंगे, उन्हें तबाह करेंगे जब तक कि वो बातचीत के लिए तैयार ना हो जाए।
1: We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, एक बार फिर से ट्रंप यही कह रहे हैं कि वो पावर प्लांट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने में, जिसमें जाहिर तौर पर काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान ईरान को पहुंचेगा, लेकिन वो इस बीच ये भी कह रहे हैं कि बातचीत की टेबल पर ईरान आ जाए इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। पहले भी तो ऐसा हुआ, वो तो पूरा सिस्टम ही फेल हो गया। जो भी बातचीत हुई वो एक बार फिर से किसी भी सकारात्मक तरीके से सामने नहीं आई।
2: नेहा, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दबाव बढ़ाना चाहते हैं ईरान पर ताकि वो उनके अनुसार जो है डील पर तैयार हो, लेकिन ईरान है कि अमेरिका की तरफ से सामने रखी गई डील को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये युद्ध जो कि शुरू हुआ था डिसआर्म करने के लिए, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज खत्म करने के लिए ईरान की, अब ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर और वहां पर जहाजों की आवाजाही को लेकर जो है अटका हुआ है। और उस बीच जो है एक बार फिर, क्योंकि MOU साइन होने के बाद हमने देखा कि अपनी शर्तों पर कायम रहना चाहता है ईरान, लेकिन अमेरिका भी जो है वो कहीं ना कहीं किसी तरह का जीत इस युद्ध से हासिल करना चाहता है। यही कारण है कि अब न सिर्फ हमले हो रहे हैं लगातार ईरान के अलग अलग पोर्ट सिटीज पर, बल्कि साथ ही साथ जो नेवल ब्लॉकेड युद्ध के दौरान अमेरिका ने किया था ताकि आर्थिक तौर पर कमजोर किया जाए ईरान को, वही दोबारा कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्योंकि पिछले 12-14 घंटे से जब से नेवल ब्लॉकेड है, पूरी तरह से 20 जो बेड़ा है, बहरी बेड़ा अमेरिका का, वो स्टेट ऑफ हार्मूज में तैनात है। 100 से ज्यादा उनके फाइटर जेट्स वहां पर पहुंच रहे हैं। एक प्रेशर टैक्टिक्स है, लेकिन इसका जवाब भी जो है ईरान कहीं ना कहीं उसी तरह से दे रहा है जिस तरह से हमने फरवरी में शुरू हुए युद्ध के दौरान देखा था। वो लगातार हमले कर रहा है अमेरिका के सहयोगी देशों पर, खासतौर से बहरीन और कुवैत और जॉर्डन, इन तीन जगहों पर जहां पर अमेरिकी सेना की तैनाती है वहां पर लगातार जो है ईरान और आईआरजीसी के हमले जारी हैं। और दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हार्मूज में भले ही अमेरिका का दावा हो कि हमारा कंट्रोल है वहां पर, लेकिन अगर हम डाटा देखें कि जहाज कितने पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरे, तो मात्र 3 जहाज गुजरे हैं स्टेट ऑफ हार्मूज से। जाहिर है इस तनातनी का असर जो है वो दुनिया के आर्थिक माहौल पर भी पड़ रहा है, एनर्जी सप्लाई पर भी पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई हो रहा है तो वो शिपिंग इंडस्ट्री है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वही बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे प्रदर्शन की बात इस खबर में होगी कि 40 दिन से वहां बड़ा जन आंदोलन चल रहा है। पाकिस्तान नैरेटिव को खुली चुनौती दी है। आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक सरदार अमान खान ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि POK ना तो आजाद है और ना ही विवादित है, बल्कि ये एक कब्जे वाला इलाका है। रावलकोट के ईदगाह मैदान में आयोजित इस जनसभा में हजारों लोग मौजूद थे। अपने संबोधन में अमान खान ने पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे दावों को सीधी तौर पर चुनौती दी है। उनके इस बयान के बाद सभा में मौजूद हजारों लोगों ने जोरदार तालियां और नारों के साथ उनका समर्थन किया।
3: अखबार में बताया था कि चार्टर के मुताबिक ये इस पर ज्यादा देर मौजूद है, और उन क्रांतियों की मौजूदगी में यह एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी

0: ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर कब्जा करता है। ये एक मुतनाजा इलाका है, जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुतालिक जो बात करने का इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है, वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है।
1: अब आपको दिखाते हैं गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेस वे के टनल में कार में आग की तस्वीर। इस आग पर महज 12 मिनट में काबू पा लिया गया। दरअसल टनल में स्मार्ट फायर सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ है। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेस वे के एयरपोर्ट टनल में कल सुबह चलती कार में आग लग गई। इससे सुरंग में घना धुआं भर गया। कार में सवार लोग समय रहते बाहर तो निकल आए, लेकिन आग लगते ही टनल के स्मार्ट सेफ्टी सिस्टम ने तुरंत काम शुरू कर दिया और आग पर 12 मिनट में ही काबू पा लिया गया। और बात फीफा वर्ल्ड कप की, सेमीफाइनल के मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को करारी शिकस्त कर दी। फ्रांस को 2-0 से हराकर स्पेन ने दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। 16 साल बाद स्पेन फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है।
2: स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ये जश्न की रात थी। सड़कों पर नाचते लोग, हॉर्न बजाकर खुशी जताते फुटबॉल के दीवाने। स्पेन का झंडा लहराते लोग, खुशी हो भी क्यों ना, 16 साल बाद स्पेन एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जो पहुंचा है। डेलस में खेले गए पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन की तरफ से मिकेल ओयारज़बाल और पेड्रो पोरो ने गोल किए। इसके साथ फ्रांस का लगातार तीसरा बार फाइनल खेलने का सपना चकनाचूर हो गया। स्पेन 2010 के बाद फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। अब स्पेन के सामने 2010 के खिताबी जीत दोहराने की चुनौती है। फाइनल में स्पेन का मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज रात अटलांटा में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा। फ्रांस की टीम सेमीफाइनल में 6 मैचों में अपराजेय रहकर पहुंची थी। सेमीफाइनल से पहले किसी मैच में एम्बापे की टीम पहले हाफ में गोल नहीं खाई थी, लेकिन स्पेन के छोटे और सटीक पास वाले टिकी टाका खेल के सामने फ्रांस पूरी तरह बिखर गया। स्पेन ने 22 मिनट में मिकेल ओयारज़बाल के पेनल्टी से किए गोल से बढ़त बनाई थी। इसके बाद दूसरे हाफ में 58 मिनट में पेड्रो पोरो ने स्पेन के लिए दूसरा गोल किया। स्पेन ने लगातार तीसरे बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में फ्रांस को हराया। इससे पहले 2024 यूरोपीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में स्पेन ने 2-1 से जीत दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष नेशंस लीग में 5-4 से फ्रांस को हराया था। मैच में सारी नजरें फ्रांस के एम्बापे और स्पेन के लामिन यमाल पर थी, लेकिन दोनों खिलाड़ी बढ़िया तो खेले लेकिन कोई गोल नहीं कर पाए। आज तक ब्यूरो।
1: और बात क्रिकेट की, T20 सीरीज में करारी शिकस्त के बाद टीम इंडिया ने 3 मैचेस की एक दिवसीय सीरीज का विजयी आगाज किया है। इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड ने भारत के सामने 259 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने 45 ओवर 2 गेंद में पूरा कर लिया। 6 विकेट से भारत जीत गई है। 47.5 ओवर में इंग्लैंड ने 258 रन बनाए थे, जिसे भारत ने 45.2 ओवर में हासिल कर लिया। बेहद दिलचस्प मुकाबला जिसमें भारत ने आगाज ही जीत के साथ किया है। शुभमन गिल ने 80 रन बनाए 75 गेंदों पर। अक्षर पटेल ने 57 रन का योगदान दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने भी 52 रन की पारी खेली, वो नाबाद रहे। वहीं श्रेयस अय्यर ने 35 रन बनाए। जिन का बल्ला नहीं चला उसमें रोहित शर्मा 11 रन पर आउट, विराट कोहली 5 रन पर आउट और केएल राहुल 1 रन पर ही पवेलियन लौट गए। अक्षर पटेल ने 4 विकेट झटके 57 रन दिए। तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
6: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

हॉर्मुज पर टैक्स वसूली के फैसले से 24 घंटे में पलटे ट्रंप, जारी है ईरान पर हमले का अगले दो दिन बहुत भारी, कोई पावर प्लांट और पुल नहीं बचेगा। तेहरान ने कुवैत, बहरीन, जॉर्डन पर किया अटैक। वाराणसी को आज मिल सकती है बहुत बड़ी सौगात, पीएम के संसदीय क्षेत्र के लिए 25,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट को मिल सकती है कैबिनेट से मंजूरी, गंगा और वरुणा कॉरिडोर से काशी को बड़ी राहत। सुबह 10 बजे से लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामन, सीएम योगी समेत कई सियासी दिग्गज करेंगे शिरकत, विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हस्तियों के साथ मंथन। भारत ब्रिटेन के बीच आज से लागू हो रहा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, कार, विस्की, ब्रांडेड कपड़े समेत कई चीजें होंगी सस्ती, देश में बढ़ेगा निर्यात, एमएसएमई को होगा फायदा। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा स्पेन, फ्रांस को 2-0 से मात दी, मिकेल और पेड्रो पोरो ने किए गोल, आज दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टक्कर। साढ़े 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, सेनापति शहर में बेकाबू भीड़ ने असम राइफल्स के कैंप पर पथराव किया, आगजनी और तोड़फोड़ भी की। स्थिति को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों ने ब्लैंक राउंड चलाए और आंसू गैस के गोले छोड़े, स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की मौजूदगी में फिलहाल हालात नियंत्रण में। यूपी के संभल में प्रशासन ने दबंगों के अवैध कब्जे से मुक्त कराई 2.25 बीघा जमीन, 4 साल पहले दबंगों ने महिला की जमीन पर मकान बनाकर कर लिया था अवैध कब्जा। गुरुग्राम के पटौदी रोड स्थित एक कंपनी के वेयर हाउस में भीषण आग लगने से हड़कंप, वहां मौजूद कर्मचारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी के साथ आरपीएफ द्वारा अमानवीय व्यवहार मामले में पकड़ा तूल, ऑल इंडिया स्टेशन प्रबंधक संगठन का 69 रेलवे मंडलों को में प्रदर्शन। रेलवे कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपी आरपीएफ कर्मियों की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग उठाई, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की धमकी दी। मौके पर मौजूद डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट की बहन के रेलवे ट्रैक पर कूदने के माहौल हुआ तनावपूर्ण, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के जवानों ने कूदकर बचाई महिला की जान। एमपी के छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई पर पुराने जमीनी विवाद, मारपीट और हवाई फायरिंग के आरोप।

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है और मामले में मेरा नाम नहीं जोड़ा जा सकता। अहमदाबाद के साबरमती स्थित रेलवे यार्ड में पैसेंजर ट्रेन के खाली कोच में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की चार टीमों ने मिलकर पाया काबू। दार्जिलिंग में उफनती बालासन नदी में बही थार, स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे चार पर्यटकों की बचाई जान। लगातार बारिश से बढ़ा बालासन नदी का जलस्तर, पिकनिक से लौट रहे चार लोगों को नदी में फंसे होने के बाद रेस्क्यू टीम ने बचाया, वीडियो आया सामने। सोनीपत के गोहाना रोहतक रोड पर ड्रेन में गिरी थार, ड्राइवर घायल, पानी कम होने से तालाब बड़ा हादसा। गुरुग्राम द्वारका टनल में चलती कार में लगी आग, 12 मिनट में स्मार्ट फायर सेफ्टी सिस्टम ने पाया आग पर काबू। टनल में कार में आग लगने से बचा कम, सिस्टम में कैद हुआ पूरा रेस्क्यू, फायर सेफ्टी सिस्टम का एक्शन। महाराष्ट्र के वसई में पार्किंग खड़े स्कूटर में लगी भीषण आग, वाहन पूरी तरह से जलकर खाक। पालघर में तेज हवा बनी आफत, उड़ता हुआ टिन का शेड महिला पर गिरा, खौफनाक हादसा, सिस्टम में कैद। महाराष्ट्र के धाराशिव में दूध मिलावट का बड़ा खेल, 6 महीने में 23 करोड़ लीटर दूध में मिलावट की आशंका। नासिक में छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार पर हमला, 20 किलोमीटर पीछा कर कार में की तोड़फोड़, 9 आरोपियों को दबोचा। गुजरात के वडोदरा में बीच सड़क आवारा सांडों की लड़ाई से मची भगदड़, राहगीरों में दहशत। कौशाम्बी में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, 28 पेज का सुसाइड नोट बरामद, ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप। हापुड़ में पानी की बोतल में तेजाब मिलाकर लोन देने का मामला, दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज, पानी पीने से युवती की बिगड़ी तबियत। बरेली में पुलिस हिरासत में आरोपी का हाथ कटा, परिवार ने लगाया प्रताड़ना के आरोप, पुलिस ने शीशे पर हाथ मारने की बताई वजह। मथुरा पुलिस का बड़ा खुलासा, चोरी के 2,60,00,000 रुपए नकद और 60 लाख की ज्वेलरी बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में नशे में धुत सिपाही ने 2 लोगों को कार से रौंदा, बिना टायर के हाईवे पर दौड़ाई गाड़ी, मुकदमा दर्ज। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लड़की से मारपीट और कपड़े उतारने का वीडियो वायरल, पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 को किया गिरफ्तार। जम्मू के रजौरी में आतंकी अलर्ट, सीसी में संदिग्ध दिखने के बाद थाना मंडी के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पीलीभीत जिला अस्पताल में पैरामेडिकल छात्रा की हत्या, सिरफिरे छात्र ने चाकू से किए ताबड़तोड़वार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चोरी के पैसों को लेकर चोरों में बहस, 2 भाइयों ने 17 साल के नाबालिग साथी की हत्या की। नागपुर महानगर पालिका के बगीचे में गांजे की खेती से मचा कम, वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र को मिल सकता है बड़ा तोहफा, कैबिनेट वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ की बड़ी सड़क परियोजना को दे सकता है मंजूरी। केंद्र सरकार वाराणसी के लिए गंगा और वरुण कॉरिडोर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी देने की तैयारी में, बड़े सड़क प्रोजेक्ट के वाराणसी में ट्रैफिक आसान होगा। पर्यटन, परिवहन और संस्कृति पर बनाई स्थायी समिति ने पैंगोंग में सीमावर्ती निवासियों की चिंताएं सुनी, सड़क और कनेक्टिविटी सहित कई मुद्दों पर चर्चा। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ ऐतिहासिक सीटा एग्रीमेंट आज से हुआ लागू, भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले करीब 99% सामान पर इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म। पीओजेके में संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी का पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन तेज, मुजफ्फराबाद चलो मार्च में कई प्रदर्शनकारी शामिल हुए। आज लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच, सीएम योगी समेत सियासी दिग्गज करेंगे शिरकत। 17 जुलाई को पीएम मोदी का पंजाब दौरा, 2,500 करोड़ से ज्यादा का विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला, स्वास्थ्य, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा। बेंगलुरु में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा का 88 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से थे परेशान। प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ बीजेपी नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर जताया शोक, कहा एक युग का अंत हुआ, पार्टी के मजबूत स्तंभ थे। अमित शाह ने भी कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर जताया शोक, कहा राष्ट्र सेवा में समर्पित रहा उनका जीवन। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, हाई लेवल मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बातचीत। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 22 जुलाई को नई टीम का ऐलान संभव, डॉक्टर कृष्ण मोहन बन सकते हैं महासचिव। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ बनने की ओर अब तक 1,000 लोगों ने किया आवेदन, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का भी नाम शामिल। राम मंदिर श्रावा चोरी मामले में एसआईटी आज पेश कर सकती है फाइनल रिपोर्ट, चोरी के लिए तय होगी जिम्मेदारी, पैसों के लेन देन की भी जांच। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी बोले, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, श्रावा चोरी मामले में 3 करोड़ रुपए की चोरी का लगाया अनुमान। राम मंदिर श्रावा चोरी को लेकर गुरुग्राम में हंगामा, बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कांगड़ा में कांग्रेस का प्रदर्शन, पोस्ट ऑफिस से हनुमान मंदिर तक निकाली गई रोष रैली। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर जम्मू में कांग्रेस का प्रदर्शन, हरी सिंह चिब और सुरेंद्र भगत के नेतृत्व ने उठाई जांच की मांग। ज्ञानवापी विवाद को लेकर वाराणसी में हुई बैठक में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने मध्यस्थता से किया इनकार, दोनों पक्षों ने कहा सिर्फ अदालत का फैसला मानेंगे। मध्यप्रदेश धार में मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए दी जाएगी भोजशाला परिसर के पास खुली जगह, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नमाज पर लगी रोक रहेगी बरकरार।
माता वैष्णो देवी भवन में 500 करोड़ के नकली चांदी चढ़ावा का मामला, जम्मू की अदालत ने क्राइम ब्रांच से दस्तावेज के साथ 29 जुलाई को बुलाया। रथ यात्रा विवाद गहराया, पुरी मंदिर समेत इस्कॉन के दावों को बताया भ्रम। पुरी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन का इस्कॉन पर पलटवार का, समय से पहले रथ यात्रा शास्त्रों के अनुसार नहीं है। विदेशों में अलग अलग तारीखों पर रथ यात्रा का आयोजन शास्त्र सम्मत नहीं है। रायपुर में देवकी नंदन ठाकुर ने राम मंदिर दान मामले पर उठाई आवाज, बोले मंदिरों के लिए बने सनातन बोर्ड का, मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों के साथ दिल्ली पहुंचे एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से की मुलाकात, सांसदों के नए गुट के विलय और आधिकारिक मंजूरी दिलाने पर चर्चा। संजय राउत का बड़ा दावा, यूबीटी छोड़ने वाले 6 सांसदों की सदस्यता होगी रद्द, बोले राजनीतिक भविष्य हो जाएगा खत्म। महाराष्ट्र सरकार की सीएजी रिपोर्ट पर यूबीटी का हमला, आनंद दुबे बोले खाली पड़े हॉस्टल में 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है महाराष्ट्र सरकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवंडी में कथित अवैध स्कूल पर तोड़फोड़ की लगाई अंतरिम रोक, किरीट सोमैया को बताया था स्कूल जिहाद। महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई, पुणे में पाकिस्तानी गैंग से शहजाद भट्टी से संपर्क करने वाले 66 से पूछताछ। युद्ध पर जारी तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान पर हमले जारी रखने की बात कहते हुए कहा कि पावर प्लांट पर भी बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप ने कहा ईरान की युद्ध करने की क्षमता लगभग खत्म है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टोल लेने के ऐलान पर ट्रंप का यूटर्न, 20% टैक्स लगाने का अपना फैसला महज 24 घंटे के भीतर वापस लिया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मिडल ईस्ट के नेताओं के साथ बातचीत के बाद उन्होंने इसे खत्म करने का फैसला लिया है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ हमलों की नई लहर शुरू की है, ऑपरेशन असर 2 के तहत अमेरिकी ठिकानों पर किया अटैक। ईरान का बड़ा बयान, युद्ध की स्थिति में होर्मुज पर रहेगा पूरा नियंत्रण। ईरान का दावा, ओमान की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं हुआ लेकिन सुरक्षा के लिए होर्मुज पर रखेंगे पूरा नियंत्रण। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री बोले राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे होर्मुज। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री का अमेरिका को संदेश, सैन्य हमले और नाकेबंदी के बीच बातचीत की मांग करेंगे, ये सोचना भी बड़ी भूल है। ईरान का अमेरिका से जुड़े इस्लामाबाद एमओयू पर बयान, डिप्टी विदेश मंत्री बोले फिलहाल हमारी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। आज इसी का दावा, बहरीन और कुवैत में हथियार भंडार और सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, इसे अमेरिकी हमलों का जवाब बताया। कुवैत ने सेना की जहाज पर हमला, 4 सैन्यकर्मी घायल, ईरानी आक्रामकता का सेना ने किया दावा। कुवैत का दावा, ईरान के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के साथ 33 ड्रोन हमले नाकाम, कई हमलों के बीच रास्ते में रोका गया पर मलबा गिरने से कई जगह संपत्ति को नुकसान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा, ईरान पर हमलों का नया दौर शुरू, होर्मुज में उसकी सैन्य क्षमता को निशाना बनाया गया। यूएस एनकॉम का बयान, ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों की नौसैनिक नाकेबंदी से पहले अमेरिका ने तेज किए हवाई हमले। ईरान के बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज, हमलों के बीच हालात तनावपूर्ण। अमेरिका का दावा, ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी फिर शुरू, मिडल ईस्ट में 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात। ईरान की सरकारी एजेंसी का दावा, हेंगाम द्वीप पर अमेरिकी प्रोजेक्टाइल से हमला, वहीं चाबहार में विस्फोट की खबरों से अधिकारियों का इनकार। ईरान ने फिर धमाकों की खबर, सरकारी मीडिया का दावा, एवाज शहर और केशम द्वीप पर सुनी गई विस्फोट की आवाज। ईरानी सेना का दावा, जॉर्डन के अजरक बेस पर अमेरिकी ठिकानों को ड्रोन से बनाया गया निशाना। स्पेन 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, टीम ने पहले सेमीफाइनल में 2-0 से फ्रांस को हराकर फाइनल में बनाई जगह। डाला स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 22वें मिनट में मिकेल ओयारजाबाल ने दागा पहला गोल, फिर पेड्रो ने 98वें मिनट में किया दूसरा गोल। 2010 के बाद स्पेन वर्ल्ड कप में दूसरी बार फाइनल में पहुंची, दूसरी ओर फ्रांस 2018 और 2022 के बाद लगातार तीसरी बार फाइनल खेलने से चूकी। आज खेला जाएगा इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच दूसरा सेमीफाइनल, इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच विजेता का सामना होगा स्पेन से। भारत के पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से भारत ने बढ़त बनाई। एज बैस्टन ने इंग्लैंड ने रखा था 259 रन का टारगेट, 4 विकेट खोकर 46वें ओवर में भारत ने हासिल किया लक्ष्य। अक्षर पटेल चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच, 4 विकेट झटके, फिर नाबाद 57 रन की पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल ने 80 रन बनाए, वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 52 रन की पारी खेली। धुरंधर के बाद बॉक्स ऑफिस पर आएगी रणवीर कपूर की फिल्म प्रलय, रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले महीने शुरू हो जाएगी इस मूवी की शूटिंग। 7 साल बाद फिर बड़े पर्दे पर गोविंदा की एंट्री, फिल्म रूपा और दुनियादारी में नजर आएंगे। तंबार 2 में नजर आएगी आलिया भट्ट, 3 दिसंबर 2027 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। ऑपरेशन सफेद सागर का टीजर लॉन्च, कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स की मुश्किल ऑपरेशन को दिखाएगी सीरीज। वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय का ट्रेलर लॉन्च, अभिमन्यु सिंह अर्चना पूरन सिंह आएंगे नजर। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर न्यायिक आयोग की जांच तेज है। वहीं चश्मदीदों की गवाही में बड़ा खुलासा हुआ, इनकाउंटर की एक चश्मदीद ललिता देवी ने आयोग में अपना बयान दर्ज कराया।
बाद में ललिता ने कहा कि मैंने अपनी आंखों के सामने घटना होते देखी। ललिता देवी के मुताबिक भरत तिवारी ने जब पिस्टल फेंक दिया था उसके बाद उसे पीछे से 3 गोलियां मारी गईं।

0: भरत तिवारी एनकाउंटर में बड़ा खुलासा। चश्मदीद ने बिहार पुलिस पर खड़े किए गंभीर सवाल। न्यायिक जांच आयोग के सामने पुलिस की थ्योरी पर उठा दिए सवाल। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। न्यायिक आयोग के सामने गवाही देते हुए चश्मदीद महिला ने बिहार पुलिस पर कई सवाल खड़े किए। ललिता देवी ने बयान दर्ज कराने के बाद कहा कि सरेंडर के बाद भरत तिवारी को गोली मारी गई और ये सब कुछ उसने देखा था।
1: देख ले रहे कि जैसे झोपड़ी में बैठे रह जाए, प्रशासन में गाड़ी आई लो तो हमने कहते भाग जा लो, ये तो गोली लग जाये तो अपने अपने झोपड़ी में ढूंढ फेंके लेके ढूंढने के बाद अपन यहाँ के मांग रहे कि तीन मांग हमारे पूरी कर जाए। तो एक जना एस डी एम कहालन कि एस डी एम के गाड़ी आई पीछे से डी एस पी साहब के, तो वहाँ के कहानी कि तहार मांग पूरी कर जाएगा अथी पिस्तौल फेंक दो ए पोल से ओ पोल तले फेंक दे पिस्तौल, प्रशासन दौ हथियार उठा ले बन आ कंधा पर हाथ ले जाके होने धो के आ पीछे से तरह मार के आ उठा अथी मार दिल बन तीन को गोली।
0: चश्मदीद के साथ साथ भरत तिवारी के भाई ने भी जांच आयोग के सामने अपना बयान दर्ज कराया और बिहार पुलिस की जांच और राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए।
2: मैंने यही बोला कि न्याय दिलवाया जाए और जो भी इसमें है पुलिस वाले कर्मचारी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो।
0: जांच आयोग के सामने अब तक 25 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच आयोग की रिपोर्ट में क्या होगा। आरा से सोनू सिंह और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: 9 बज गए, मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
5: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
6: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है। डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
7: वाह वाह वाह वाह।
6: सेबी और NSE का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
8: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
9: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
10: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
11: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
12: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
15: In association with Hind, bade aaram se.
16: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
17: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
15: Vimal, bolo zubaan kesri.
18: Uttar Pradesh ki siyasat ke sabse bade chehre. जनता के सबसे बड़े सवाल और आज तक की सबसे बड़ी पंचायत। 15 जुलाई लखनऊ।

0: छतरी ना खोल बरसात में,
1: आहा भीग जाने दे
0: मेरी छतरी के नीचे हाचा।
1: क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी?
0: सलमा या कमला?
1: सलमा भी थी, कलमा भी होगी, ये कमला भी होगी।
2: अरे आप कमला गाओगे,
1: मैं सलमा,
2: ये सलमा गाएंगे।
1: कोई तो आगे और पीछे होगा।
0: मैं कमला पसंद, ये सलमा पसंद। नेताओं ने मिलकर ये ट्रस्ट बनाया है जिसमें लैक ऑफ ट्रस्ट जो है आजकल सबसे ज्यादा है, तो का ही कर सकते हैं आप। और सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, संघ ने इधर लेटर जारी कर दिया।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सॉरी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: छह साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया उसे लेकर सुलगती सियासत का एक सिरा पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार तक पहुंचता है। 2020 की फरवरी के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की हत्या हुई थी। मारे गए 40 मुस्लिम और 13 हिंदुओं में एक नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा का भी था, जिसकी हत्या के केस में कड़कड़डूमा की अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जो आरोप लगाए थे उनमें से अदालत ने हत्या की धारा 302, अपहरण की धारा 365, दंगे से जुड़े अपराधों की धारा 147, 148, 149 और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की धारा 153 और सरकारी आदेश तोड़ने की धारा 188 के तहत ताहिर को दोषी करार दिया है। दोषियों की सजा का ऐलान 16 जुलाई को होगा, लेकिन 5 दोषियों में से एक आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद और AIMIM के विधानसभा उम्मीदवार रहे ताहिर हुसैन ने इसे नाइंसाफी कहा है। लेकिन बीजेपी से इंसाफ की मिसाल कहती है और 51 बार चाकुओं से गोद कर मारे गए अंकित शर्मा के हत्यारों के साथ ताहिर हुसैन के गुनाह का जिक्र भी करती है। सियासत ये है कि दिल्ली की घटना पर पंजाब में पॉलिटिकल घेराबंदी हो गई, क्योंकि दिल्ली दंगे से ठीक पहले दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दे चुके कपिल मिश्रा ने अब इन दंगों के डायरेक्टर का सवाल उठाया है। हालांकि चुप्पी सिर्फ आम आदमी पार्टी लीडरशिप की ही नहीं है। जिस AIMIM ने पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया था, दिल्ली दंगे के आरोपी होने के बावजूद जो ताहिर 33,000 वोट पाता है, अब तक ओवैसी की पार्टी उस पर चुप है, लेकिन केजरीवाल की पार्टी के विधायक अब भी ताहिर हुसैन के समर्थन में खड़े हैं। केजरीवाल के विधायक को ताहिर के लिए ऊपरी अदालतों में इंसाफ की उम्मीद बची हुई लगती है, तो कांग्रेस के नेता ताहिर के साथ इंसाफ की उम्मीद छोड़ चुके हैं और वजह बताते हैं ताहिर का मजहब। दरअसल दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन के दोषी करार होने का असर अब दिल्ली से पंजाब तक दिख रहा है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी की 2 चुनौतियां केजरीवाल और कांग्रेस हैं, लिहाजा बीजेपी अब ताहिर कांड के जरिए दोनों दलों को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। हालांकि दिल्ली दंगे को लेकर AIMIM सवाल उठाती रही है कि जिस दंगे में 53 लोगों की जान चली गई उसमें 6 साल बाद भी सिर्फ एक हत्या के केस में दोषियों की पहचान क्यों हो पाई। आखिर वो कैसी जांच थी जिसमें इसी दंगे में मारे गए हाशिम अली की हत्या के 12 और अनवर हत्याकांड के 5 आरोपी बरी हो जाते हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
7: इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन जारी है ईरान पर हमले। कहा अगले दो दिन बहुत भारी, कोई पावर प्लांट और पुल नहीं बचेगा। तेहरान ने भी कुवैत, बहरीन, जॉर्डन पर किया अटैक। वाराणसी को आज मिल सकती है बहुत बड़ी सौगात। पीएम के संसदीय क्षेत्र के लिए 25,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट को मिल सकती है कैबिनेट से मंजूरी। गंगा और वरुणा कॉरिडोर से काशी को बड़ी राहत। आज सुबह 10 बजे से लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच। सीएम योगी समेत कई सियासी दिग्गज करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हस्तियों के साथ मंथन। पंजाब में चनी संकट पर आज दूसरे दिन मंथन करेंगे कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और खड़गे ले सकते हैं बड़ा फैसला। रिपोर्ट के साथ प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल को भी तलब किया गया है।

0: ट्रेड अग्रीमेंट, कार, विस्की, ब्रांडेड कपड़े समेत कई चीजें होंगी सस्ती। देश में बढ़ेगा निर्यात, एमएसएमई को होगा फायदा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

अंजलि इस्तवाल, बस शुरू ही होने वाला है यूपी चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सियासी महाकुंभ। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र है, जहां हर सियासी हलचल दिल्ली की सत्ता तक असर डालती है। आज इसी राजनीतिक तापमान को समझने, परखने और भविष्य की तस्वीर देखने के लिए लखनऊ में सज चुका है पंचायत आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच। कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंच का आगाज करेंगे। ऐसे वक्त में जब 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है, जब सत्ता अपनी उपलब्धियों के दम पर जीत की हैट्रिक का दावा भी कर रही है और विपक्ष बदलाव की हुंकार भर रहा है, तब हर बयान, हर रणनीति और हर संकेत बेहद अहम हो जाता है। आज हम जानेंगे मुख्यमंत्री योगी का मिशन 2027 क्या है, जीत का रोडमैप, सरकार का अगला एजेंडा क्या है, 10 वर्षों के शासन का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या मिलेगा, क्या उम्मीदें अभी भी अधूरी हैं। इन सवालों का जवाब भी इसी मंच से तलाशा जाएगा। तो जब तक पंचायत आज तक यूपी का आगाज होता है, उससे पहले रुक कर लेते हैं बड़ी खबरों का।

0: अमेरिका ईरान युद्ध एक बार फिर से तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज रूट पर 20% टैरिफ लगाने वाले बयान से तो यूटर्न ले लिया, लेकिन उन्होंने नई धमकी दे दी है। इससे ईरान युद्ध को और धक्का लगा है, वो धधक उठा है। ट्रंप ने अपनी नई धमकी में कहा है कि ईरान डील के लिए तैयार हो जाए, वरना अगले हफ्ते पावर प्लांट और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से तीसरे दौर का यानी कि युद्ध शुरू हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां देते जा रहे हैं। उन्होंने पहले ये धमकी दी थी कि वो 20% का शुल्क लगाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और ये सबके लिए होगा क्योंकि वो उसके गार्जियन है, लेकिन इससे उन्होंने यू टर्न ले लिया। अपना टोल लगाने वाली बात, अपनी पेनल्टी लगाने वाली बात को उन्होंने दरकिनार कर दिया, लेकिन एक नई धमकी दे दी है।
1: But we're going to hit him very hard tonight. We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: और इस वक्त आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम ये तीन तस्वीरें। पहला, ट्रंप की तरफ से दी जा रही है एक नई धमकी कि अब अगला निशाना होंगे बिजली घर, पानी, ब्रिज, और साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरें अमेरिकी बमबारी की भी। और अमेरिका ने ईरान पर समंदर से घेराबंदी की है। पहली बार अमेरिका ने अनमैन्ड वेसल से ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमला किया है। सेंटकॉम ने बताया है कि तीन क्रॉसएयर अनमैन्ड सरफेस वेसल्स ने नेवल बेस के अंदर पनडुब्बी और जहाज रखरखाव केंद्र पर हमला किया। ये अमेरिकी वन वे समुद्री ड्रोन का पहला कॉम्बैट इस्तेमाल था। हवा से किए गए पिछले हमलों के विपरीत वन वे सरफेस ड्रोन्स ईरानी जल क्षेत्र में घुस गए और फिर केंद्र के अंदर विस्फोट कर गया। सेंटकॉम ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद ईरान के कमर्शियल जहाजों पर हमले जारी रखने की क्षमता को कम करना था। और आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, जाहिर तौर पर अमेरिका की तरफ से जिस तरह की धमकी दी जा रही है, अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर है, पर ऐसे में कैसे बातचीत की टेबल पे कोई देश आ सकते हैं जब धमकी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दी जाए और इसका नतीजा शायद उन देशों को भी भुगतना पड़ेगा जो अमेरिका के बेस होस्ट कर रहे हैं।
2: जाहिर तौर पर वो तमाम देश तो उसका नतीजा भुगत ही रहे हैं क्योंकि ईरान की तरफ से जो पलटवार किया जा रहा है उसके निशाने पर बहरीन भी है, कुवैत भी है, कतर भी है, यहां तक कि जॉर्डन तक अमेरिकी जो ठिकाने हैं उनके वो निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से। लेकिन जाहिर तौर पर बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि फिर आखिर वो प्रक्रिया जिस पर 18 जून को दस्तखत किए गए थे, वो तथाकथित एक एमओयू किया गया था।
0: शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए सीधा चलते हैं पंचायत आज तक यूपी में।

उन्होंने जब पिछला अपना शपथ ग्रहण किया तो क्रिकेट के स्टेडियम में किया, एक आनंद स्टेडियम में किया। 25 मार्च 2022 का वो दिन था, लगा 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 दिन के टेस्ट मैच जैसे खेला जाएगा, या 2020 के अंदाज में जैसा उनके पिछले कार्यकाल में दिखा था, वनडे मैच की कौन सा रोमांच होगा। आज देखिए, कुल जो 1826 दिन थे उसमें से 1573 दिन हो चुके हैं, 253 दिन बाकी हैं, और अब 2020 वाला अंदाज शुरू हो चुका है प्रशासन में। अब समर्थकों के लिए भरोसे का नाम, आलोचकों के लिए एक तरीके से चुनौती का पर्याय है योगी आदित्यनाथ, लेकिन कई सवाल आज जब हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो हम सब के मन में है। सबसे पहले तो ये कि चुनावी मुकाबले के लिए किस तरह का रोड मैप इस समय चल रहा है, हम संगठन से लेकर सरकार तक बहुत सारी तैयारियां देख रहे हैं। प्रभु श्री राम दिल में उनके बसते हैं, अयोध्या को लेकर हमेशा भावुक रहते हैं, इसीलिए जैसे ही गड़बड़ी की बात सुनी उन्होंने SIT के जांच के आदेश दिए। योगी जी किस तरीके से अपनी पूरी जनता को बताएंगे कि हर एक व्यक्ति पर, चाहे किसी भी पद पर बैठा हो, उस पर एक्शन अनिवार्य है और होकर रहेगा। योगी जी का ही नारा था जो देश के अलग अलग हिस्सों में गूंजा, बटोगे तो कटोगे। अब बटने से कटने के बीच क्या जो सामने वाली पार्टी में PDA का अध्याय है वो किसी भी तरीके से जातियों में बंटवारे का काम कर सकता है? स्नेह से समर्थक बुलडोजर बाबा कहते हैं, सामने विरोधी कहते हैं ये बुलडोजर जस्टिस से काम नहीं चल सकता, इसके बीच कहां से रास्ता निकलता है? अयोध्या के बाद काशी मथुरा का रास्ता कहां होकर जाता है, अभी जब हम कार सेवा की भी बात देखते हैं। और साथ में हमने देखा देश भर के कई प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो योगी जी को आइडियलाइज करते हुए उनके फैसलों को लेकर आगे चलते हैं। क्या योगी जी भी चुनावी घोषणाओं के हिसाब से कम या तो मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र से कोई प्रेरणा लेने वाले हैं? इन सभी सवालों और साथ ही उनके अपने दिल की जो बातें हम यहां पर सुनने वाले हैं, बहुत स्वागत कीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का।

पंचायत आज तक इस विशेष कॉन्क्लेव में उपस्थित वाइस चेयरमैन इंडिया टुडे ग्रुप सामान्य कलीपुरी जी, न्यूज डायरेक्टर आज तक श्री सुप्रिय प्रसाद जी, आज तक ग्रुप से जुड़े हुए सभी उनके संपादकगण और उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले आज तक को पंचायत उत्तर प्रदेश के इस विशेष कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश को फोकस करते हुए इस विशेष पंचायत को उन्होंने यहां पर रखा है और पहले ही देश की इस सबसे बड़े ग्रुप ने इस बात की भी घोषणा कर दी है कि बीजेपी यूपी में फिर से हैट्रिक लगाने जा रही है। उनकी इस घोषणा के लिए मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। वास्तव में एक लोकप्रिय मीडिया ग्रुप होने के नाते आम जन की आवाज उन लोगों तक पहुंचती है। उन्होंने ये कहकर के आम जन की आवाज को ही मोहर लगाने का काम किया है। मित्रों, आज हम यहां पे लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पंचायत उत्तर प्रदेश के स्पेशल कॉन्क्लेव में यहां पर उपस्थित हैं। आप में से अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोग यहां पर मौजूद हैं। अगर वह किसी राजनीति की किसी संकुचित दायरे में कैद नहीं है, उत्तर प्रदेश में वह किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, किसी भी जनपद से जुड़ा हुआ हो, किसी भी पेशे से जुड़ा हुआ हो, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की इस प्रगति को आप सब ने पिछले एक दशक में देखा है। बदलते हुए भारत में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या हो सकती है और उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है, उत्तर प्रदेश की क्या आकांक्षाएं थी, उन आकांक्षाओं की पूर्ति हुई है नहीं हुई है, इन सभी बातों को अनुभव भी किया होगा। मुझे एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के पहले एक सांसद के रूप में उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र से देश के संसद में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय मैं उन मुद्दों से जूझता था। उन मुद्दों के लिए हर स्तर पर उन मुद्दों को उठाने का प्रयास करता था और कभी कभी निराशा भी होती थी कि लगता है ये सब नियति बन चुकी है, बीमारी से मरना, माफिया के सामने लोगों का नतमस्तक होना, बिजली के लिए और सामान्य जन सुविधाओं के लिए लोगों को तरसते हुए देखना, भूख से मौत, युवाओं के सामने पहचान का संकट, किसान के सामने आत्महत्या जैसे कदम उनके द्वारा उठाए जाने, ये सभी चीजों को हम बहुत नजदीक से देखते थे और उस समय अंतःकरण में पीड़ा होती थी कि क्या इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है क्या।
लेकिन जब पिछले 9 वर्ष के अंदर मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर शासन सत्ता का संचालन करने का अवसर हमारी पार्टी ने दिया और मैं इसके परिणाम को देखता हूं, ऐसा नहीं कि मेरे साथ में दिल्ली से या लखनऊ गोरखपुर से कोई टीम अलग से आई हो। मैं दिल्ली में सांसद था जब मुझे यहां भेजा गया, मेरे साथ एक भी व्यक्ति दिल्ली से नहीं आया। मैं गोरखपुर से सांसद था और गोरखपुर में लगातार 5 बार से सांसद होने के साथ साथ वहां से हर एक उस पर जुड़ा था, वहां से भी एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं आया। जो लोग लखनऊ में मौजूद थे और जो टीम मुझे मिली, मैंने उसी को लेकर के उनकी मानसिकता को बदलने का काम करने का प्रयास किया और जो परिणाम सामने आए हैं ये सब आपके सामने हैं। और मैं केवल एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि यही काम, यही घोषणा जो मैं भी आपके सामने करने जा रहा हूं, जो रिजल्ट आए हैं, अगर यह बात मैं आज से 9 वर्ष पहले मैं बोलता या 9.25 वर्ष पहले जो महानुभाव उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री थे वे लोग उस प्रकार की घोषणा यूपी के बारे में करते तो लोग जरूर हंस देते, अब उसके लिए ताली नहीं बजाते, उस समय हंसते। हमने इन 9 वर्षों में यूपी को कहां पहुंचाया है और मैं मानता हूं कि यूपी को इन 9 वर्षों में हम लोगों ने पहचान के संकट से उभारा है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है, उत्तर प्रदेश के अंदर वीमेन वर्कफोर्स की उपस्थिति 3 गुना बढ़ी है और उत्तर प्रदेश जो कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में था, इन 9 वर्षों में देश की टॉप 3 यानी बॉटम 3 से टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। ऐसे कौन से कारण थे जो यूपी में नहीं हो सकते थे, लेकिन इन

जिन जनपदों में कोई भी सभ्य परिवार और कोई भी क्षमतावान परिवार अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजता था, अगर उसको भेजना होता था तो यूपी के बाहर किसी हॉस्टल में या किसी नातेदार रिश्तेदार के यहाँ भेज करके वहां से अपनी बेटी को पढ़ाता था। एक बेटी को जिसको माँ बाप का सानिध्य मिलना चाहिए बचपन में, वह हॉस्टल में रहने के लिए या फिर अपने नातेदार रिश्तेदार के यहाँ रहने के लिए मजबूर कर दी जा रही है। ये स्थिति 2017 के पहले थी। कैसे सत्ता के समानांतर माफिया की सरकारें चलती थी, कोई सुरक्षित नहीं था, ना मीडिया सुरक्षित थी, ना कॉमन मैन सुरक्षित था, ना व्यापारी सुरक्षित था, ना कोई बेटी सुरक्षित थी, ना उद्यमी सुरक्षित था। व्यापारी घर से निकलता था तो ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मैं शाम को भी अपने परिवार का मुंह देख सकूं। परिवार का कोई सदस्य घर से सर्विस करने के लिए किसी काम के लिए बाहर निकलता था तो शाम वह ये प्रार्थना करके निकलता था कि ईश्वर मुझे शाम को अपने परिवार का मुंह देखने का अवसर मिले। उद्यमी निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे मालूम था कि जब वह स्वयं सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। न सरकार की नीति थी और न नियत थी, अराजकता चरम पर थी। माफिया के सामने सरकारें नाक रगड़ती भी दिखाई देती थी और आज भी उनके पुराने संस्कार आप सुनते होंगे, जब वे बोलते हैं कि अगर सत्ता में कभी आ गए तो हम इसकी जांच कराएंगे कि माफिया मारे क्यों जा रहे हैं या माफिया को माफिया के साथ इतनी सख्ती क्यों की जा रही है। यानी उनकी सहानुभूति आज भी यूपी के नागरिकों के लिए नहीं है, यूपी के कॉमन मैन के लिए नहीं है, यूपी के व्यापारी यूपी की बेटी के लिए नहीं है। उनकी सहानुभूति आज भी उस माफिया के प्रति है, उनके गुर्गों के प्रति है जो या तो जेल में है या फिर जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उनकी सहानुभूति यूपी के नागरिकों के प्रति आज भी नहीं दिखती है। ये स्थिति यूपी के अंदर, आप यूपी के अंदर आज एक संतुष्टि का लेबल पाते होंगे अगर सरकार के स्तर पर तुलनात्मक रूप से आप कोई भी बात पब्लिक के सामने कहेंगे कि 2017 से लेके 2026 के बीच इन 20 वर्षों के ही या 2003 से लेकर के 2026 के बीच इन 23 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के आप पब्लिक के बीच में जाइए, पहले 4 साल मुलायम सिंह जी के, अगले 5 साल मायावती जी के, अगले 5 वर्ष अखिलेश जी के, और फिर पिछले 10 वर्षों से लगभग 9 वर्षों से हमारी सरकार है, इन सभी को लेकर के इस रिपोर्ट कार्ड को एक बार पब्लिक के सामने आप जाएंगे तो पब्लिक से इस रिपोर्ट के बारे में संतुष्ट के लेवल के बारे में आप पूछेंगे, आपको स्वर्गीय राजीव गांधी जी की वे प्रश्न वे मुद्दे याद आ जाएंगे जिन्होंने कभी एक बार बहुत निराश होकर के कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं लेकिन 15 ही नीचे पहुंचता है। मित्रों, ये 15 रुपया ही पहुंचता था, ये 85 कौन खा जाता था? और ये पैसा जो 85 रुपया खाया जा रहा था, 85% पैसे पे डकैती पड़ती थी, ये पैसा किसी युवा का होगा, किसी छात्र की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी युवा की नौकरी का पैसा था, किसी बुजुर्ग और निराश्रित महिला की पेंशन का पैसा था, किसी गरीब के अनाज का पैसा था, किसी बहन और बेटी के लिए बनने वाले शौचालय का यही पैसा था, जिस पैसे पर 85% पैसे पर ये लोग डकैती डालने का काम करते थे। और आज DBT के माध्यम से 100 रुपया दिल्ली से या लखनऊ से हम भेजते हैं तो अब पैसा सीधे उस लाभार्थी के खाते में जाता है, वह चाहे वह छात्र हो, चाहे वह युवा हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह अन्नदाता किसान हो, चाहे वह श्रमिक हो, किसी भी तबके का व्यक्ति है, उस तक उन योजनाओं का लाभ आज पहुंचता है।
अब उससे अलग नहीं।

है, उन योजनाओं का लाभ उस तक पहुंच रहा है। आज सरकार के पास नीति भी है और उसको जमीनी धरातल पर उतारने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति का की नियत भी है। हमने संकल्प किया था कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करेंगे, माफिया मुक्त करेंगे, कर्फ्यू मुक्त करेंगे, दंगा मुक्त करेंगे। सरकार की इच्छा शक्ति थी, हम लोगों ने उसको जमीनी धरातल पर उतार कर दिखाया कि हाँ, देश का सबसे बड़ी आबादी का राज्य दंगा मुक्त हो सकता है, कर्फ्यू मुक्त हो सकता है, उपद्रव से मुक्त हो सकता है और अपनी परंपरागत पहचान उत्सव से युक्त हो सकता है। ये यूपी ने करके दिखाया है 9 वर्षों में। उत्तर प्रदेश बीमारी से मुक्त हो सकता है, माफिया से मुक्त हो सकता है, हम लोगों ने करके दिखाया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से मौतें, हर वर्ष यही सीजन था, हर परिवार सशंकित रहता था, पता नहीं कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत जीरो जीरो पे पहुंच चुकी है। हर वर्ष 1200 से 1500 मौतें होती थी। भूख से मौतें अलग से होती थी, आज सेचुरेशन 100% उन्हें हम सेचुरेट कर चुके हैं। जो लोग भूख से मरते थे उनको जमीन के पट्टे मिल चुके हैं, उनका अपना आवास बन चुका है, उनके लिए आयुष्मान का कार्ड उन तक पहुंच चुका है, उन तक रसोई गैस के सिलेंडर पहुंच चुके हैं और उनके लिए कोई ना कोई रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। परंपरागत उद्यम फिर से पुनर्जीवित हो चुका है, जिसने कभी यूपी को एक पहचान दिलाई थी। याद करिए, आजादी के तत्काल बाद 1950 में भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का जो योगदान था वह 14% था। 2017 में जब हम लोग आए थे तो घट करके मात्र 7% के आसपास रह गया था। यानी देश प्रगति कर रहा है लेकिन यूपी अवनति की ओर था, लगातार उसकी अर्थव्यवस्था में गिरावट थी। कारण था, अन्नदाता किसान को पानी नहीं मिलता था, अन्नदाता किसान को समय पे बीज नहीं मिलता था, अन्नदाता किसान के लिए बिजली नहीं थी, किसान अपने खेत में जाने से डरता था, पैदावार हो गई फसल और ज्यादा हो गई वह भी एक समस्या थी, क्योंकि उसका दाम किसान को नहीं मिलता था, बिचौलियों को मिलता था। एग्रीकल्चर यूपी के आधार थी, सरकार के स्तर पर कोई प्रोत्साहन नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग पावर जब परंपरागत उद्यम के साथ जुड़ती है तो परिणाम देती है, इकोनॉमी को तेज करती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास एमएसएमई का एक बेहतरीन नेटवर्क था, लेकिन पिछली सरकारों के इंस्पेक्टर राज ने उसको तबाह कर दिया था। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जाता था, कहीं विभागीय उत्पीड़न के शिकार वे लोग होते थे। न उन्हें टेक्नोलॉजी दी गई थी, न उनको डिजाइन दी गई, न उनके लिए पैकेजिंग की सुविधा थी, न उनके लिए मार्केट की सुविधा थी, कुछ भी नहीं था। परिणाम था हताश और निराश होकर के लोग, जो किसान यूपी के अंदर कभी आत्मनिर्भर इकाई बनकर के स्वावलंबन का जीवन व्यतीत करता था, जो कारीगर कभी यूपी के अंदर उद्यमी था, वो प्लान कर चुका था, कारीगर श्रमिक बन गया, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। यूपी की अर्थव्यवस्था को तो डूबना ही डूबना था और यही यूपी के अंदर हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 2017 से 2026 के बीच में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास की दर को 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की है। आज किसान के लिए समय पे बीज है। आप याद कर रहे होंगे, इस समय अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, फर्टिलाइजर की क्राइसिस स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए थी
लेकिन यूपी में किसानों को फर्टिलाइजर समय पे मिल रहा है, पेस्टिसाइड समय पे मिल रहा है, सीड समय पे मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इन 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने 24 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है। आप याद करिए, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, योजना आयोग ने इसको 1970 के दशक के प्रारंभ में, यानी तब हमारा मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तब इसको अप्रूव किया। 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने इसका शिलान्यास किया, लेकिन वो योजना कभी पूरी नहीं हो पाई। वो योजना पूरी तब हुई जब यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, हमारी सरकार आई, हमने उसको पूरा किया। आज 14 लाख हेक्टेयर लैंड को हम अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। अर्जुन सहायक परियोजना बुंदेलखंड में आज प्रभावी हो चुकी है, लाखों हेक्टेयर लैंड को पेयजल उपलब्ध, वहां पे लैंड को पानी मिल रहा, खेत को पानी मिल रहा है और लोगों के पेयजल की सुविधा उसके माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं महोबा में गया था, जब योजना नहीं थी तब मैं लोगों से बात करता था कि भाई क्या स्थिति रहेगी आपकी और आपकी खेत क्यों आप प्लान करते हैं, क्या स्थिति होगी आपको अगर हम इसको पूरा करेंगे। लोगों में तब तक विश्वास नहीं था और आज मैं कह सकता हूं प्रति बीघा वहां के किसानों को 5,000 रुपये मिलता था वर्ष में, और आज प्रति बीघा 50,000 रुपये उसी महोबा जनपद में वहां के अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो रहा है। अर्जुन सहायक परियोजना पूर्ण होने पर आप बाण सागर परियोजना के परिणाम देखिए, मिर्जापुर और बुंदेलखंड के जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने इस परियोजना को पूरा किया, दशकों से लंबित परियोजनाएं थी, लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज वह कार्य पूरा होने के बाद 2.5 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध करवाई। आज यूपी के किसानों को 10 घंटे का बिजली हम उपलब्ध करवाते हैं खेती के लिए और बिजली फ्री है, यानी 16 लाख ट्यूबवेल, प्राइवेट ट्यूबवेल थे, उनको भी हमने फ्री में बिजली कर दी है। हमने कहा पैसा हम लोग स्वयं भरेंगे, लेकिन आप अच्छी फसल करिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यूपी का किसान अच्छा कर रहा है। अकेले गन्ना किसानों को हम लोगों ने अब तक, यानी जिस राज्य में 2007 से 2017 के बीच 29 चीनी मिलें बंद हुई, 21 चीनी मिलें बेच दी गई औने पौने दाम पे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक चीनी मिल ऐसी थी जिस चीनी मिल कि जमीन की कीमत ही 100 करोड़ से ऊपर की थी, उस चीनी मिल को मात्र 3 करोड़ में बेचा गया था, मात्र 3 करोड़ में। 2017 में जब सरकार बनी हमारी, तब उत्तर प्रदेश में 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी था और आज पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने 3,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। ये सीधे किसानों के खाते में पैसा गया है। 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना का दाम हम किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं और आज के दिन पे 122 चीनी मिलों का संचालन यूपी कर रहा है। इन चीनी मिलों में 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 4 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान करा रही, यानी 10 वर्ष में और 4 दिन में कोई अंतर नहीं है क्या, यानी 4 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान होता है। शेष जो चीनी मिलें हैं उन चीनी मिलों पर भी इस बात का दबाव है कि वे भी प्रयास करें कि कम से कम 15 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को हो जाए और सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है कि हम अन्नदाता किसान को उसका दाम समय पर उपलब्ध करवाएं। आज किसान में के दाम को किसी भी उपज को बिचौलियों के माध्यम से नहीं, सरकार सीधे उनसे खरीदती, अगर मार्केट में अच्छा दाम है किसान स्वतंत्र है, मार्केट में अपने उपज को बेच सकता है, लेकिन अगर मार्केट में दाम नहीं है तो MSP में लागत का 1.5 गुना दाम पर सरकार उससे खरीदेगी और सरकार फिर उसको अपने स्तर पर आगे मार्केट तक पहुंचाने का काम करेगी। अन्नदाता किसान को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आज किसान के लिए
प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना भी है, सॉयल हेल्थ कार्ड की भी योजना है, आज किसान के लिए हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी खेती में जो विकास दर बढ़ी है उस विकास दर के पीछे ये डबल इंजन सरकार के द्वारा जो उसको फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है उसका परिणाम आज यहां देखने को मिल रहा है। एमएसएमई में जो दम तोड़ चुका था, जहां कारीगर प्लान कर चुका था, वह फिर से आगे बढ़ा है। आज के दिन पे यूपी देश के अंदर सबसे ज्यादा एमएसएमई यूनिट को संचालित कर रहा, 96 लाख एमएसएमई यूनिट वर्तमान में यूपी के अंदर संचालित हो चुके हैं। 96 लाख, हर एक यूनिट को सरकार 5 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की बीमा भी कवर उपलब्ध करवा रही है, और 3.25 करोड़ युवा इसके साथ रोजगार के साथ जुड़ चुके हैं। यानी जो पहले से मौजूद था, हां इसके लिए हमें उनको टेक्नोलॉजी देनी पड़ी, हमें उनको डिजाइन देनी पड़ी, पैकेजिंग के साथ जोड़ना पड़ा, मार्केट से लिंक करना पड़ा, और सरकार ने उनके लिए कॉमन सर्विस सेंटर बना करके उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं, तब यूपी इस दिशा में आगे बढ़ा। मित्रों, यूपी जैसे राज्य के बारे में मेरा मानना है, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कानून का राज स्थापित कर दीजिए, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल दे दीजिए, अपने आप सुशासन के लक्ष्य प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। और उत्तर प्रदेश में इस कार्य को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज मैं मानता हूं, मुझे अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि यूपी मॉडल को सुरक्षा के इस मायने में लोगों ने अडॉप्ट किया। यूपी का नाम वहीं पे नहीं आ रहा है, पहले एक मान्यता थी, मैं दिल्ली में अक्सर देखता था, राज्यों की सूची आती थी, राज्यों में किस योजना में कौन राज्य टॉप 3 में है, कौन कौन राज्य है टॉप 3 में, यूपी का कहीं पता नहीं होता था। हम ढूंढते थे यूपी कहां है, ओह यूपी तो बॉटम 3 में है, हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते थे क्योंकि उस समय सरकारों की मानसिकता ऐसी थी। आज मैं कह सकता हूं देश के अंदर कोई भी स्कीम हो, कोई भी स्कीम हो, किसी भी स्कीम के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में 100 से ज्यादा वेलफेयर की स्कीम निकली है। इन स्कीम में आज के अंदर आप देखेंगे यूपी हर एक स्कीम में टॉप 2 में यूपी का नाम आता है, हर एक स्कीम में यूपी का नाम आता है। और यूपी में स्कीम सफल होने का मतलब स्कीम अपने आप में देश के अंदर सफल हो गई, दुनिया के लिए एक मॉडल बन गई। किसी भी योजना में आप देखेंगे आज गरीब को मकान मिला है और लगातार दिए जा रहे हैं, हर घर में शौचालय बन गए हैं, हर गरीब के पास अपनी वे सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं जिसके लिए वह दशकों से लालायित था, आज उसको प्राप्त हुआ है। अब कोई मेरे पास शिकायत लेके नहीं आता कि साहब अनाज नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता, इसकी शिकायत लेके नहीं आता है। मुझे याद है 17 में मैं आया था, सर्वाधिक शिकायत मेरे पास आती थी, लेकिन सरकार आते ही मेरे लिए चिंता का भी सबक था क्योंकि मैं आंदोलन भी करता था इस मुद्दे को लेकर कि गरीबों को राशन मिलना चाहिए। भूख से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में भूख से मौतें होती थी, तब मेरे लिए एक चिंता का विषय होता था, हम लड़ते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, हम लोग आए, हमने पॉस मशीन लगाई। स्वाभाविक रूप से फेयर प्राइस शॉप के संचालक इसका विरोध करते, उन्होंने विरोध किया भी, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भी देखो पहले क्या होता था जाने दीजिए, हम आगे से सुधारना चाहते हैं, आप लोग योगदान दीजिए। उन्होंने कहा साहब फिर हमारा कैसे चलेगा, हमने कभी कहा गरीब का हक पे डकैती डाल करके तुम लोग अपनी व्यवस्था का संचालन करना चाहते हो, तुम्हें मांग करने गवर्नमेंट से मांग करो कि आपके इंसेंटिव को बढ़ाएं, गवर्नमेंट हम इंसेंटिव को आपका बढ़ाएंगे लेकिन गरीब के हक में डकैती नहीं डालने देंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता 16 करोड़ लोगों को आज के दिन पे हम यूपी के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवा रहे हैं। ई पॉस मशीन हमारे यहां पूरे स्क्रीन में आता है, 80,000 फेयर प्राइस शॉप है, सबका आता है,
किसी गांव में अगर फेयर प्राइस शॉप में थोड़ी घटतोली हुई वो हमें अलर्ट कर देगा। यहाँ पे हमारी टीम जाती है, छापेमारी करती है, उसी समय उसको देखती है, कार्रवाई कर देती है। किसी की हिम्मत नहीं होती। हमने उनके कमीशन को बढ़ाया है, आने वाले समय में फिर प्रस्ताव आएगा, हम इस चीज को और आगे करेंगे। लेकिन आज हम मॉडल शॉप बना रहे हैं, आज गरीब को राशन मिल रहा है, आज किसी बेटी और किसी बहन को अपनी गरिमा को छुपाने के लिए शाम का इंतजार नहीं करना होता, उसके घर में शौचालय है, कोई समस्या नहीं, पेयजल की समस्या का समाधान हुआ है, यूपी के सभी 75 जनपदों में समान रूप से हम बिजली उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यूपी में 2017 के पहले कुछ विद्युत की कुल आपूर्ति यूपी के अंदर कुल 15,000 से 16,000 मेगावाट पीक आवर में होती थी, और आज पीक आवर में यह खपत हुई है लगभग 33,000 से 35,000 मेगावाट। ये यूपी की नई स्थिति है। यूपी के अंदर बहुत सारे लोगों को औद्योगिकीकरण का मॉडल दिखाई नहीं देता है, यानी 36 सेक्टोरल पॉलिसीज यूपी ने बनाई है, इसके माध्यम से जो निवेश हुआ है। मुझे याद है 2017 में जब सरकार आने के बाद 6 महीने के बाद मेरे औद्योगिक विकास के मंत्री और अवस्थापन और औद्योगिक विकास के आयुक्त मेरे पास आए, उन्होंने कहा था हम कोई इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा भाई आपका टारगेट क्या है, उन्होंने कहा साहब 20,000 करोड़। मैंने कहा नाम क्या है, उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो मैंने कहा पहले नाम बदल दो भाई, मुझे देखे। मैंने कहा भी देखो ग्लोबल शब्द आपने रखा है और टारगेट है 20,000 करोड़ का, तो 20,000 करोड़ तो एक जिले का होना चाहिए, इसको डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टर समिट रखो, ये ग्लोबल नहीं, ग्लोबल के लिए आपको टारगेट बड़ा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा साहब यूपी में कौन निवेश करेगा। मैंने कहा 6 महीने हुए हैं ना, अभी कुछ तो बदला होगा। उन्होंने कहा साहब समय लगेगा, अभी विश्वास बहाल करने में समय लगेगा, हम जिससे भी बात करते हैं वो हाँ तो कहता है लेकिन निवेश करने को तैयार नहीं होता है। मैंने कहा मेहनत करो, पॉलिसीज बनाओ, इन्वेस्टर समिट के पहले हमारी कुछ पॉलिसीज आनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होगा, अनावश्यक विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा एक्सपर्ट की राय लीजिए, पॉलिसी तैयार करो, पिक एंड चूज नहीं करेंगे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे पास 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज है, 50,00,000 करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए, 50,00,000। जिस राज्य में 20,000 करोड़ का निवेश नहीं आने को तैयार था, आज 50,00,000 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 15,00,000 करोड़ को हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कर लिया है, 7,50,000 करोड़ हमारे पास तैयार है, उसके लिए कोई तिथि तय करते हुए हम उसको भी ग्राउंड ब्रेकिंग कराने की तैयारी कर रहे हैं। यह है नया यूपी, जिस यूपी में और इसके माध्यम से 65,00,000 नौजवानों को हमने यूपी के अंदर ही नौकरी दी है। ये सभी कार्यक्रम आज यूपी के अंदर चल रहे हैं। आज यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल, 2017 के पहले हम लोग भी इस बात को बोलते थे और सोचते थे, मजाक में हम लोग भी कह देते थे, लोग कहते थे यूपी का बॉर्डर कहां से शुरू हो रहा है इस राज्य में, हम कहते थे भाई देखो सड़क पे चलना है, जहां से गड्ढे प्रारंभ हो जाए मान लेना यूपी का बॉर्डर प्रारंभ हो गया। शाम के समय अगर देर शाम हो गई, जहां से अंधेरा शुरू हो जाए मान लेना यूपी का बॉर्डर शुरू हो गया। आज मैं मानता हूं यूपी के अंदर सड़कें देश के अंदर किसी भी राज्य की तुलना में अच्छी मिलेंगी, सबसे अच्छी सड़कें यूपी की मिलेंगी। भारत की 60% एक्सप्रेस नेटवर्क पर यूपी का अधिकार है आज के दिन पे। सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी के से जुड़े हुए एयरपोर्ट यूपी के पास हैं। आज के दिन पे हम 17 एयरपोर्ट का संचालन कर रहे हैं, जब मैं आया था तब यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 17 संचालित हैं, उनमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिसमें अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने उसका उद्घाटन करवाया है।
देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, यानी इस एयरपोर्ट में हमारे पास जो लैंड है वह है लगभग 14,000 एकड़ लैंड। भारत के अंदर किसी एयरपोर्ट के पास इतनी लैंड नहीं है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ और वाराणसी पहले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, और ये सभी एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, नए एयरक्राफ्ट आएंगे और बेहतरीन सुविधा यहां प्राप्त होगी। 5 नए एयरपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है। अब चित्रकूट में भी एयरपोर्ट है, आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट है। कोई सोचता था आजमगढ़ में एयरपोर्ट होगा? आज आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट है, श्रावस्ती में एयरपोर्ट है, अलीगढ़ में एयरपोर्ट, मुरादाबाद में एयरपोर्ट, जहां लोग कल्पना नहीं करते थे, सोनभद्र में एयरपोर्ट। यानी जिन क्षेत्रों में कभी कोई कल्पना ही नहीं करता था वहां भी एयरपोर्ट है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में चल चुकी है। मुझे याद है 2017 में इलेक्शन कैंपेन के बाद मैं और एक केंद्रीय मंत्री मेरठ में थे। हम लोग मेरठ में थे तो मुझे गाजियाबाद में भी एक सभा करनी थी, तो मैंने गाड़ी पकड़ी, हम हेलीकॉप्टर से उतरे, हमने वहां से मैंने गाड़ी पकड़ी, मैं तो दिल्ली चला गया। मैंने उनको कहा, मैंने कहा चलिए चल लेते हैं, दिल्ली चलना है। उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं निकलूंगा नहीं जब तक मेरे लिए सुरक्षा नहीं आएगी। मैं वहां से गया गाजियाबाद, गाजियाबाद में सभा करके फिर मैं दिल्ली गया। फिर मैंने फोन किया, मैंने कहा कहाँ? उन्होंने कहा मैं तो अभी मेरठ में हूँ। मैंने कहा क्यों? कहा मेरी सुरक्षा पहुंच रही है। मैंने कहा मैं तब से दिल्ली पहुंच चुका हूँ। 3 घंटे लगते थे मेरठ से दिल्ली पहुंचने में, आज मात्र 40 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं। 12 लेन का एक्सप्रेस वे भी बन चुका है, रैपिड रेल बन चुकी है। देश की पहली इनलैंड वाटर वे दिल्ली हल्दिया के बीच में, ये यूपी के आपके वाराणसी हल्दिया के बीच में संचालित हो चुकी है। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन, 17 के पहले एक भी नहीं था, आज 7 सिटी है हमारे पास जहां पे मेट्रो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। ये नया यूपी है, 17 के पहले अगर समाजवादी विकास का मॉडल होता ना तो यूपी कब का डूब गया होता। कैसे डूबो रहे थे ये सब, इस सिफाई खानदान कैसे यूपी को तबाह कर रहा था, उसका नमूना हम यहां पर बैठे हैं। इसके ठीक पीछे एक ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, उसको कहते हैं JPNIC, भारत के आजादी के बाद जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ था, जिस महापुरुष के नाम पर हुआ था, ऐसे सरदेव जयप्रकाश जी के नाम पर वह सेंटर बनाया है, इन समाजवादियों ने बनाने का प्रयास किया था। उसकी DPR थी 200 करोड़, 864 करोड़ खर्च हो गए, अभी भी अधूरा। कहां चला गया ये पैसा? यानी 200 करोड़ के प्रोजेक्ट पर 864 करोड़ खर्च हो गए, तब भी अधूरा है। आप यहां आए होंगे, इसके बगल में एक नदी पड़ती है आदि गंगा के रूप में, मां गोमती है, गोमती रिवर फ्रंट के नाम पर। इसका जो कुल PPR बना था वह बना था 167 करोड़ का, खर्च हो गए 1400 करोड़ और कार्य अधूरा है। यानी कोई अप्रूवल नहीं, खजाना लुटवाया जा रहा था। एक तरफ गरीब भूख से मर रहा था, गरीब बीमारी से मर रहा था, और दूसरी तरफ खजाने को कैसे लुटवाया जा रहा था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 2016 दिसंबर में तत्कालीन CM ने उसका शिलान्यास किया। शिलान्यास करने के बाद 15,200 करोड़ रुपए के लिए
उसका अलाइनमेंट तय करते हुए तय किया कि 15,200 करोड़ रुपए में यह एक्सप्रेसवे बनेगा। मार्च 17 में सरकार बदल गई, मई 17 में मैंने उसकी समीक्षा कर रहा था, मैंने पूछा भाई ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रोग्रेस क्या है। लोगों ने कहा साहब जीरो। मैंने कहा जीरो क्यों है? मुझे बताया गया कि साहब जो है लैंड ही नहीं है। तो मैंने कहा बिना लैंड के कैसे सब इसके टेंडर हो गए? आप देखिए कितनी बड़ी बेमानी थी ये। तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया एक सामान्य वे में। हमने कहा कैंसिल करो, जब है नहीं तो फिर लैंड नहीं है तो पहले लैंड तो अलॉट एक्वायर करो या लैंड खरीदो। लैंड खरीदी गई, हमें 2 वर्ष लगे लैंड खरीदने में। 18 के अंत में लैंड जब हमारे पास आ गई, इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट के लिए 80% लैंड आपके पास होनी चाहिए, लेकिन थी नहीं लैंड। केवल जो ग्राम पंचायतों की राजस्व विभाग की लैंड रही होगी उस लैंड को ही इन्होंने आधार बना करके टेंडर कर दिए, सब कुछ कर दिए। 2018 में जब हमारे पास लैंड आ गई, लगभग 90% लैंड आ गई, टेंडर हुए। टेंडर के बाद ये हुआ कि अब इसको काम शुरू हो। हमने कहा भी ठीक है काम शुरू होगा, भाई बताओ कितने का टेंडर, कितने का खुला है? मुझे बताया गया कि साहब 15,200 करोड़ का। मैंने कहा पहले कितने का था? कहा 15,200 करोड़। मैंने कहा 2 साल के बाद कॉस्ट एक्सलेशन का कोई मुद्दा आया नहीं क्या? कहा नहीं साहब, कोई भी कॉस्ट नहीं बढ़ाई है लोगों ने। मैंने कहा यार देखो ये कॉन्ट्रेक्टर इतने ज्यादा जो है मेहरबान क्यों है हम लोगों पे कि 2 साल के बाद भी इनका दाम नहीं बढ़ा है। मैंने कहा ये काम करो इसको कैंसिल कर दो और एक साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मंगाओ। हमने एक साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मंगाई। मित्रों जब इस बार एक साथ मंगाई गई और उसके बाद देखा तो ये मात्र जो 15,200 करोड़ का टेंडर हुआ था वह चल गया इस बार 11,800 करोड़ रुपए में। और उस एक्सप्रेस वे को जो 341 किलोमीटर लंबा है, 341 किलोमीटर लंबा है, जिसे समाजवादी पार्टी 340 किलोमीटर बनाना चाहती थी, हमने 341 किलोमीटर बनाया। वे 110 मीटर चौड़ा बनाना चाहते थे, हमने उसको 120 मीटर चौड़ा बनाया और उसको मात्र 11,800 करोड़ रुपए में। वही एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसको आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए हम उपयोग करते हैं। एक अन्य उदाहरण इनकी डकैती का मैं आपको बताना चाहता हूं, वह है यूपी की एक्साइज पॉलिसी का। 2017 में यूपी के अंदर एक्साइज ड्यूटी जो आती थी वह मात्र आती थी 12,000 करोड़ की, और 12,000 करोड़ रुपया ये मिलता था, हाफ करके मिलता था। ये भी हमने पूरी पॉलिसी चेंज की। मैं जानता था ये सब माफिया जकड़े हुए हैं सत्ता को, पूरे उसको हम लोगों ने किया। मैं मानता था बहुत कठिन था मेरे लिए, हमारी सरकार के लिए कठिन था। सारे हथकंडे उन्होंने अपनाए, हम लोगों ने तब भी उसको लागू कराया। और करवाने के बाद यूपी की आमदनी क्या है इस समय? एक्साइज से यूपी को मिलता है इस समय 63,000 करोड़ रुपए, 63,000, 12,000 करोड़ से आप अनुमान करिए 5 गुना से अधिक एक्साइज ड्यूटी यूपी को आज के दिन पे प्राप्त हो रही है। ये पैसा किसका था? किसी गरीब का, भूख से मरने वाले उस गरीब का पैसा ये समाजवादी डकार जाते थे। किसी छात्र की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी वृद्धजन की वृद्धावस्था पेंशन का पैसा था, वह पैसा जाता उसको ये लोग किस रूप में डकार जाते थे और कैसे डकैती डालते थे उसके उदाहरण है। और यूपी के अंदर सुरक्षा नहीं थी तो यूपी के अंदर
जिस राज्य में पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाए, कर्फ्यू लग जाए। आज मुझे अच्छा लगता है जब कोई पर्व और त्योहार किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, किसी का भी होता है, और उनका पर्व बहुत अच्छे ढंग से मनता है, वो मनाया जाता है, तो उसके बाद वे आकर के मुझे धन्यवाद देते हैं कि साहब बहुत अच्छा हो गया कार्यक्रम। तो मैं बोलता हूँ यार 9 वर्ष के बाद तो कम से कम धन्यवाद मत दो। तो पहले दिन से हमने तय किया है कि हर पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से होगा, हर पर्व और त्यौहार होगा। अब याद करिए 17 के पहले अभी हमारी कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है। यानी ये लोग क्या करते थे कि उपद्रव को रोकने के लिए ये कहते थे कावड़ यात्रा ही न हो, रामनवमी के ही शोभा यात्राएं न निकले, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन ही न हो, दुर्गा पूजा के पंडाल ही न सजे, इन्होंने बैन कर दिया था। यानी जो लोग कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, जो लोग रामनवमी की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजनों को नहीं होने देते थे, नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों को प्रतिबंधित करते थे, वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। कितना हास्यास्पद है, वे आज वह आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई, वे आज आस्था की बात करते हैं। जिन लोगों ने पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों में नमाज पढ़वा करके पूरे वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास किया, भाई अगर आप सेकुलर थे, एक जगह आप नमाज पढ़वा रहे थे तो किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का भी पाठ करवा देते साथ साथ, दोनों एक साथ होता चलो मान्य हो जाता कि चलो भाई दोनों लोग सहमत हैं। लेकिन ये वन वे चल रहा था, वन वे। वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। तो देश के उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर रहे थे कि साहब राम और कृष्ण हुए ही नहीं, वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो, उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास की, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है, वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं। उस समय कौन कौन से घोटाले नहीं हुए थे, चाहे वह केंद्र की सरकार उस समय की कांग्रेस की रही हो, चाहे यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकारें। अयोध्या की घटना निश्चित ही हम सब की आस्था, हम जैसे राम भक्तों की आस्था को आहत करती है, और ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया, वह एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट को उस पर कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। ट्रस्ट ने अनुरोध किया, गवर्नमेंट ने उस एसआईटी गठित की, एसआईटी की रिपोर्ट आते ही ट्रस्ट ने कार्रवाई भी शुरू की। जो 6 लोग विजुअल में चोरी करते हुए पकड़े गए उनकी गिरफ्तारी हुई, जो उनमें सहयोग कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी होने के साथ ही नैतिक आधार पर भी 2 इस्तीफे और हुए। लेकिन उसके नाम पर अयोध्या को बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि को बदनाम करना, हिंदू आस्था पर प्रहार करना, ये कहां का न्याय संगत है? और इसीलिए आज प्रश्न ये उठता है कि जब
ये लोग सत्ता में थे तब आस्था पर प्रहार करते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी की चरम तक पहुंचते थे, हर प्रकार से आस्था को आहत करने वाले कार्य करते थे। और आज यूपी के अंदर जब ये सभी आस्था के केंद्र देश के लिए मॉडल बन रहे हैं और यूपी अपनी उस पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है, अयोध्या में आस्था को भी सम्मान मिला लेकिन साथ साथ उससे अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई है। मैं मानता हूं समाजवादी पार्टी की यह पीड़ा हो सकती है क्योंकि उन्होंने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज उसी अयोध्या में लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आकर के दर्शन करते हैं और अपनी आस्था का सम्मान पाते हैं। ये आस्था का सम्मान है लेकिन उससे अर्थव्यवस्था को जो गति मिली है, याद करिए वह गति वही है, चाहे वो फूल बेचने वाला हो, रिक्शा चालक हो, रेस्टोरेंट और चाय बेचने वाला हो, या फिर कोई होटल संचालक हो, कोई टैक्सी संचालक हो, कोई नाविक हो, इन सब की भी तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, इन सबको भी सम्मान मिला है, इन सबको भी पहचान मिला है। महाकुंभ के दौरान एक भव्य और दिव्य कुंभ हुआ, आपने देखा होगा कि अकेले प्रयागराज में 45 दिन के उस आयोजन में एक नाविक परिवार ने 30 करोड़ की इनकम की थी अकेले प्रयागराज में। आपने दृश्य देखा होगा जो समय मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बना था। और वही तो मैं कह रहा हूं, इनको ये अच्छा नहीं लगता है क्योंकि समृद्धि तो जैसे लगता है कि इन दो खानदानों की ही, इन्होंने दो खानदानों ने अपने नाम पे पेटेंट करवा दिया है कि समृद्धि लूट का हो चाहे कैसे भी हो, केवल इन दो खानदानों के हिस्से में आना चाहिए, बाकी लोग विपन्न रहें उसमें इनको अच्छा लगता है। मुझे आश्चर्य होता है किस किस प्रकार से ये लोग माहौल खराब करके वो करते हैं, जिन्होंने जमीनी धरातल को नहीं देखा, जिनको फुर्सत नहीं होती जाने की, एक गरीब की पीड़ा को नहीं समझ सकते। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इन दोनों राजकुमारों ने जहां जन्म लिया है तो जन्म से दोनों युवराजों ने चांदी की चम्मच से खाने की आदत रही है, देर से सोकर के उठने की आदत रही है, तो उनको सूर्योदय का आनंद नहीं होगा, उनको तो ये उनकी नींद में खलल डालने जैसा होता है। गर्मी कैसे होती है दोनों को नहीं पता है, बरसात की पीड़ा क्या होती है उनको नहीं पता है क्योंकि दोनों लोग फीफा कप का आनंद लेने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया गया है, कोई यूएस की यात्रा में अपने टूरिस्ट वीजा में गया है। ये पैसा किसका है, किसके पैसे को लेकर के आप ये फॉरेन की यात्रा कर रहे हैं और यहां आईना दिखा करके समाज को बांटने का पाप करते हैं, जातीय खेमों में बांट करके, जाति को जाति से लड़ा करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके सत्ता हत्याने की कुछ सी चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन ये जनता है, सब जानती है, आपके सारे करतूतों को जानती है, अब आपको माफ करने वाली नहीं है। और इसीलिए आपके पास आया हूं और मैं आज इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूं 9 वर्षों की कार्य पद्धति भी, जनता जनार्दन के सामने हमारा रिपोर्ट कार्ड भी पूरी पारदर्शिता के साथ जनता जनार्दन के सामने है। 2003 से लेकर के 2017 के बीच में प्रदेश के अंदर शासन करने वाली समाजवादी पार्टी और अन्य सरकारों की कार्य पद्धतियां भी सबके सामने हैं। जनता जनार्दन फैसला करने को तैयार है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हम लोगों ने जो कार्य किया वह प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी और डायनेमिक लीडरशिप में विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का काम किया है। डबल इंजन सरकार का लाभ हम लोगों ने लिया है, मोदी जी का मार्गदर्शन भी है, उनका नेतृत्व भी है, इसमें यूपी सफल हुआ है। और विकसित भारत की उसी संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत का मतलब किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी
क्षेत्र, किसी भाषा या किसी पार्टी का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का भारत कैसा होना चाहिए जिसमें 140 करोड़ चेहरे पर खुशहाली हो, हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो, हर बहन और हर बेटी स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हो, हर व्यापारी मजबूती के साथ राष्ट्र की जीवन रेखा बन करके अपने आप को आगे बढ़ा सकें। उस नए भारत के निर्माण के लिए हम विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं और मेरा मानना है विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है। और कोई संदेह नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने सभी लोगों को मौका दिया है। गत वर्ष एक रिकॉर्ड टूटा था, इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार यूपी के अंदर हैट्रिक लगाएगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं इंडिया टुडे ग्रुप को और इस प्रतिष्ठित चैनल आज तक को इस पंचायत उत्तर प्रदेश के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सभी महानुभावों का भी अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।

0: तो पंचायत आज तक के मन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने यूपी को संकट से बचाया है। 2014 के पहले भी डबल इंजन सरकार थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ जनता को धोखे में रखा है। लखनऊ पंचायत आज तक के कार्यक्रम में अखिलेश पर निशाना साधते हुए, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दो युवराज देश को बर्बाद कर रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि जमीनी हकीकत क्या है।
1: वहीं कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पहले कांवड़ यात्रा रोक दी जाती थी, उपद्रव अब ना हो ये हम सुनिश्चित करते हैं। पहले वो सुनिश्चित करते थे कि दुर्गा पूजा ना हो, जन्माष्टमी नहीं होने देते थे, रामनवमी को रोकते थे। आज आस्था की बात करते हैं। उन्होंने राम मंदिर के विषय पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरे में जो चोरी करते हुए देखे गए उनको गिरफ्तार किया गया, नैतिकता के आधार पर भी इस्तीफे हुए हैं। और अखिलेश की विदेश यात्रा पर कटाक्ष भी।
0: वक्त हो गया है शतक आज तक का।

लखनऊ में पंचायत आज तक के कार्यक्रम के शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी ने अपनी सरकार के विकास का रखा रोड मैप, गिनाए 9 साल की उपलब्धियां, पिछली सरकारों पर भी खुलकर हमला। यूपी के विकास पर बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि नीचे से टॉप 3 रहा यूपी, अब देश का टॉप 3 स्टेट। हमने यूपी की पहचान बनाई है और संकट से उबारा है।

0: संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने सिंचाई से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सरकार की उपलब्धियां गिनाए, कृषि से लेकर गन्ना मूल्य के भुगतान पर भी बात की, औद्योगिकरण पर भी चर्चा। विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि माफिया के सामने सरकार पहले नाचती थी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हालत एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र को मिल सकता है बड़ा तोहफा। कैबिनेट वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ की बड़ी सड़क परियोजना को मंजूरी दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार वाराणसी के लिए गंगा और वरुण कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी देने की तैयारी में, बड़े सड़क प्रोजेक्ट्स में वाराणसी में ट्रैफिक हो जाएगा आसान। पर्यटन परिवहन और संस्कृति पर बने स्थायी समिति में पेंगोंग में सीमावर्ती निवासियों की चिंताएं सुनी है, सड़क और कनेक्टिविटी समेत कई मुद्दों पर चिंता। भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ ऐतिहासिक सीईटी एग्रीमेंट आज से लागू हुआ। अब भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले लगभग 99% सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म। पीओजे की संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी का पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज, मुजफ्फराबाद चलो मार्च में कई हजार प्रदर्शनकारी शामिल हुए।
1: दिल्ली दौरे पर सीएम योगी की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात, हाई लेवल मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 22 जुलाई की नई टीम का ऐलान संभव, डॉक्टर कृष्ण मोहन बन सकते हैं महासचिव। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ बनने की ओर अब तक हजारों लोगों ने किया आवेदन, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का भी नाम शामिल। राम मंदिर जहां चोरी मामले में एसआईटी आज पेश कर सकती है फाइनल रिपोर्ट, चोरी के लिए तय होगी जिम्मेदारी, पैसों के लेन देन की भी जांच। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी बोले, स्वामी अवतेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, चढ़ावा चोरी मामले में 3 करोड़ रुपए की चोरी का लगाया अनुमान। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर गुरुग्राम में हंगामा, बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध पर पुलिस हिरासत में लिए गए कांग्रेसियों ने पुलिस लाइन में पड़ी हनुमान चालीसा। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कांगड़ा में कांग्रेस का प्रदर्शन, पोस्ट ऑफिस से हनुमान मंदिर तक निकाली गई रोष रैली। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर जम्मू में कांग्रेस का प्रदर्शन, हरी सिंह चिब और सुरेंद्र भगत के नेतृत्व में उठाई गई जांच की मांग। ज्ञानवापी विवाद को लेकर वाराणसी में हुई बैठक में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने मध्यस्थता से किया इनकार, दोनों पक्षों ने कहा सिर्फ अदालत का फैसला मानेंगे। मध्यप्रदेश धार में मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए दी जाएगी भोजशाला परिसर के पास खुली जगह, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नमाज पर लगी रोक रहेगी बरकरार।
0: माता वैष्णो देवी भवन में 500 करोड़ के नकली चांदी चढ़ावा का मामला, जम्मू की अदालत ने क्राइम ब्रांच से दस्तावेज के साथ 29 जुलाई को बुलाया है। रथ यात्रा विवाद गहरा है, पूरी मंदिर समिति ने इस्कॉन के दावों को बताया भ्रामक। पूरी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन का इस्कॉन पर पलटवार, कहा कि समय से पहले रथ यात्रा शास्त्रों के अनुसार नहीं, विदेशों में अलग अलग कार्यक्रमों पर रथ यात्रा का आयोजन शास्त्र सम्मत नहीं है। रायपुर में देवकी नंदन ठाकुर ने राम मंदिर दान मामले पर उठाई आवाज, बोले कि मंदिरों के लिए बने सनातन बोर्ड, कहा कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों के साथ दिल्ली पहुंचे एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से की मुलाकात, सांसदों के नए गुट के विलय को आधिकारिक मंजूरी दिलाने पर चर्चा। संजय राउत का बड़ा दावा, यूपीडी छोड़ने वाले 6 सांसदों की सदस्यता होगी रद्द, बोले कि राजनीतिक भविष्य हो जाएगा खत्म। महाराष्ट्र सरकार के सीएजी रिपोर्ट पर यूपीटी का हमला, आनंद दुबे बोले कि खाली पड़े हॉस्टल पर यहां 1,62,00,000 रुपए खर्च कर रही है महाराष्ट्र सरकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवंडी में कथित अवैध स्कूल पर तोड़फोड़ पर अंतरिम रोक लगाई, किरीट सोमैया ने इसे स्कूल जिहाद बताया था। महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई, पुणे में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से संपर्क करने वाले 66 लोगों से पूछताछ।
1: जंग में जारी तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान पर हमले जारी रखने की बात कहते हुए पावर प्लांट पर बड़े हमले की धमकी दी। ट्रंप ने कहा ईरान की युद्ध करने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लेने के ऐलान पर ट्रंप का यूटर्न, 20% टैक्स लगाने का अपना फैसला महज 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ बातचीत के बाद उन्होंने इसे खत्म करने का फैसला लिया है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ हमलों की नई लहर शुरू की है, ऑपरेशन नसर 2 के तहत अमेरिकी ठिकानों पर किया अटैक। ईरान का बड़ा बयान, युद्ध की स्थिति में होमस पर रहेगा हमारा पूर्ण नियंत्रण। ईरान का दावा, ओमान की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं लेकिन सुरक्षा के लिए होमस पर रखेंगे पूरा नियंत्रण। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री बोले राष्ट्र सुरक्षा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे होमोज, युद्धकाल में सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे हाथ में होगी। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री का अमेरिका को संदेश, सैन्य हमलों और नाकेबंदी से हम बातचीत की मांग करेंगे, ये सोचना बड़ी भूल होगी। ईरान का अमेरिका से जुड़े इस्लामाबाद एमओयू पर बयान, डिप्टी विदेश मंत्री बोले फिलहाल हमारी कोई प्रतिबद्धता नहीं।
0: आईआरजीसी कतार में बहरीन और कुवैत में हथियार भंडार और सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, इसे अमेरिकी हमलों का जवाब बताया। कुवैत नौसेना ने के जहाज पर भी हमला, चार सैन्यकर्मी इसमें घायल, ईरानी आक्रामकता का सेना ने दावा किया। कुवैत का दावा, ईरान के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ 33 ड्रोन हमले नाकाम, कई हमलों के बीच रास्ते में हमलों को रोका पर मलबा गिरने से कई जगहों पर संपत्ति को नुकसान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि ईरान पर हमलों का नया दौर शुरू, होर्मुज में उसकी सैन्य क्षमता को निशाना बनाया। यूएसएनकॉम का बयान, ईरानी बंदरगाहों तटीय इलाकों की नौसैनिक नाकेबंदी से पहले अमेरिका ने तेज किए हवाई हमले। ईरान के बंदर अब्बास में धमाकों की आवाजें, हमलों के बीच में हालात तनावपूर्ण। अमेरिका का दावा ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी फिर से शुरू, मिडिल ईस्ट में 20 से ज्यादा युद्ध पोत तैनात। ईरान की सरकारी एजेंसी का दावा कि हिंगाम द्वीप पर अमेरिकी प्रोजेक्टाइल से हमला, वहीं चाबहार में विस्फोट की खबरों से आधिकारिक रूप से इनकार। ईरान ने फिर से धमाकों की वहां खबर है, सरकारी मीडिया का दावा है अहवाज शहर केश्म द्वीप पर विस्फोट की आवाज सुनी गई। ईरानी सेना का दावा है कि जॉर्डन के अजरक बेस पर अमेरिकी ठिकानों को ड्रोन से बनाया गया निशान।
1: स्पेन 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में, टीम ने पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराकर दूसरी बार फाइनल में बनाई जगह। डालस स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 22 मिनट में मिकेल ओयारजबाल ने दागा पहला गोल, फिर पेड्रो ने 58 मिनट में किया गोल। 2010 के बाद स्पेन वर्ल्ड कप में दूसरी बार फाइनल पहुंचा, दूसरी ओर फ्रांस 2018 और 2022 के बाद लगातार तीसरी बार फाइनल खेलने से चूका। आज खेला जाएगा इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, इंग्लैंड और अर्जेंटीना मैच के विजेता का सामना होगा स्पेन से। भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर 3 मैचिंग सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा दूसरा मैच। एजबास्टन में इंग्लैंड ने रखा था 259 रन का टारगेट, 4 विकेट खोकर 46वें ओवर में भारत ने मैच किया अपने नाम। अक्षर पटेल चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच, 4 विकेट झटके, फिर नाबाद 57 रन के मैच जिताऊ पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल ने 80 रन बनाए, वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 52 रन की पारी खेली।
0: मणिपुर में फिर से बिगड़े हालात, सेनापति शहर में बेकाबू भीड़ ने असम राइफल्स के कैंप पर पथराव किया, अगजनी और तोड़फोड़ की, आम लोगों की गाड़ी को भी फूंके जाने की खबर है। स्थिति को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों ने ब्लैक राउंड चलाए और आंसू गैस के गोले छोड़े, स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की मौजूदगी में फिलहाल हालात नियंत्रित। यूपी के संभल में प्रशासन ने दबंगों के अवैध कब्जे से कब्जा मुक्त कराए 2.25 बीघा जमीन, 4 साल पहले दबंगों ने महिला की जमीन पर मकान बनाकर अवैध कब्जा कर लिया था। गुरुग्राम के पटौदी रोड पर एक कंपनी के वेयर हाउस में लगी भीषण आग से हड़कंप, वेयर हाउस में मौजूद कर्मचारियों ने भागकर बचाई अपनी जान।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details. Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Two games left to go in the World Soccer Championship. One of the best games so far was when Cape Verde nearly shocked the world and upset Argentina. Argentina was a minus 1,700 favorite to qualify for the next round and needed extra time to advance. This has been your official Odyssey Sports match day preview, brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
7: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
8: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग रहे।

0: प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जो सबसे निचले तबके गरीब लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है उसकी भी पूर्ति हम लोगों ने किया है। और इसी का नतीजा है कि आप देखें कि हम विचारधारा से अपने कहीं डिरेल नहीं होते हैं। जिस विचारधारा पे हम वोट लेकर आते हैं उसी विचारधारा को लेकर हम काम भी करते हैं और उसी का नतीजा है कि आज देश में तीसरी बार लगातार मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी। और अगर देखें तो आज एनडीए अलायंस के साथ पूरे देश में करीब 22 जगहों पे मेरी सरकारें हैं, जिसमें कई सरकारें हैं जो दो बार और तीन बार रिपीट कर रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने दोबारा उन्होंने बनाया और इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का हैट्रिक लगने वाला।
1: पिछली बार ही बहुत मुश्किल सब कह रहे थे, हालांकि आप लोगों ने उस समय सारे आलोचनाओं को पीछे छोड़ते हुए वहां पर सरकार बनाई, लेकिन तीसरी बार को लेकर और ज्यादा संशय सबको लगता है। कारण उसका मैं आपको बताती हूँ। 2024 का चुनाव जो आप लोग उसका मंथन भी आप लोगों ने किया होगा बहुत, कौन सी वो चीजें हैं, कौन सी वो सबक हैं जो मैं कहूंगी 2024 के लोकसभा नतीजे जो यूपी में आए, जो आज भी समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर ये कहा जाता है कि देखिए इतनी विधानसभा क्षेत्रों में हमारी लीड रही और उसके हिसाब से वो 27 की तैयारी कर रहे हैं।
0: देखिए 2024 में जो विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया, जनता को गुमराह किया, और कह लीजिए कि वो जो खटा खटा आप लोग टीवी पे भी बोल रहे थे कि 8,500 रुपये का फार्म भरवाने की बात किया, संविधान बदलने की बात किया, जो जनता को गुमराह करके उन्होंने जो नैरेटिव सेट किया उससे हम सावधान हैं। 2027 में ऐसा नैरेटिव हम उनको करने नहीं देंगे। हमारे कार्यकर्ता जागरूक होकर उस पर जागरूक करते रहे।
1: नैरेटिव इस बार भी है और चुनाव के बहुत नजदीक है, और वो नैरेटिव है जिसमें अखिलेश यादव के पोस्टर पर लिखा होता है सनातन ही समाजवादी है। राम मंदिर का मुद्दा जो चढ़ावे का मुद्दा है, मामला है, वो कितना आघात पहुंचा सकता है भारतीय जनता पार्टी को?
0: देखिए राम मंदिर का मुद्दा कहीं ना कहीं हम सनातनियों के लिए, हम सब के लिए, ये हमारे इष्ट देवता का विषय है। राम हमारे दिल में बसते हैं और किस प्रकार से देखेंगे कि मंदिर बनाने के लिए किसने सपोर्ट किया और किसने विरोध किया है ये आम जनता को पता है। और निश्चित तौर से मुझे भी ठेस पहुंचा है और हम सब चाहते हैं कि उस पर जो सरकार कार्रवाई करी है उस पर त्वरित समाधान निकाले और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको दंड मिले और आगे से ऐसी घटना ना हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए।
1: नहीं, पर अगर आपके विरोधी ये कहते हैं कि बचाया जा रहा है बड़े लोगों को, आप लोग किसी को भी जो जो कैमरे में नजर आए उनकी उनको पकड़ा गया, जांच में उन लोगों का नाम रहा, समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई ये तो छोटे छोटे लोगों के नाम है, बड़ों को बचाने की कोशिश हो रही है, आपको लग रहा है कि इस जांच के बावजूद जनता को कन्विंस करना मुश्किल होगा कि कोई बड़ा नाम नहीं है जिसको बचाया गया?
0: देखिए विपक्ष आज से नहीं, शुरू से आप देखें भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कहीं ना कहीं वो बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, चाहे चुनाव आयोग हो, और कुछ समय पे तो उन्होंने अदालत पर भी विषय उठाया था। एसआईटी की जांच कोई हमारी जांच नहीं, एसआईटी पहले से बनती रही है और उसकी जांच आने दीजिए। मैंने पहले कहा कि हम सबकी भी प्रयास है कि

0: कोई भी दोषी बचने ना पाए।
1: पर कहीं से ऐसा हो सकता है, देखिए ट्रस्ट में बीजेपी का कोई लेना देना है नहीं, वहां मंदिर के मैनेजमेंट में बीजेपी प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ये आपकी पार्टी का वैचारिक एजेंडा रहा है, वैचारिक पहचान आप लोगों की इससे जुड़ी रही है, इसीलिए आपको लगता है क्या कि कहीं लोग कन्विंस हो सकते हैं इस चीज से कि हाँ बीजेपी का हाथ होगा इसमें?
0: देखिए आपने पहले ही कहा कि ट्रस्ट का विषय है, लेकिन हम लोग के आस्था का सवाल है वो, और हमारे जो सनातनी हैं वो भी जानते हैं कि हम सब ने, हमारे दल के बहुत से लोगों ने कुर्बानी देकर राम मंदिर का निर्माण कराया है, और हम ऐसा कभी नहीं होने देना चाहते हैं ना होने देंगे कि मंदिर के अंदर कोई भी चंदा में घोटाला हो, और जो हुआ है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई मिले, उसके पीछे हम लोग कहीं भी उसको बचाने का काम नहीं करेंगे।
1: पर अयोध्या से आगे बढ़कर मथुरा में अब कार सेवा होने वाली है, तो बीजेपी के चुनावी एजेंडे पर रहेगा ये?
0: अब एजेंडा हमारा आएगा, मैनिफेस्टो हमारा आएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि रहेगी कि नहीं रहेगी।
1: अच्छा, आपकी अपनी टीम की बात करते हैं पंकज जी, आपकी टीम में ऐसा लगता है देखकर कि सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा गया है, इसमें आपके 25 ओबीसी, 11 ब्राह्मण, 9 राजपूत चेहरे, 52 के 52 पदाधिकारी जो नई टीम में है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, आपको जब अध्यक्ष बनाया गया था तो एक तरीके से कहा गया कि ये समाजवादी पार्टी की पीडीए कॉम्बिनेशन का जवाब है उसकी काट के तौर पर।
0: देखिए जहां तक मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, मैं शुरू से 1991 से लगातार पार्टी में काम कर रहा हूं, और आप लोग को भी शिकायत रहती थी कि मैं आप सबके मंच पे नहीं आता हूं, मैं लो प्रोफाइल रह करके काम करता था, और पार्टी के जो भी निर्देश आदेश होते थे उसके आधार पर मैं अभी तक का राजनीति किया हूं। अब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने उस देख करके, मेरे उस पार्टी के प्रति निष्ठा को देख करके या जो भी देख करके उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया है, तो मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मुझे काम सौंपा है, कोई 2007 पहले तो संगठन को हमें मजबूत करना है, और संगठन के आधार पर ही हम 2027 में फिर से सरकार बनाने का प्रयास करें।
1: अच्छा, योगी जी गोरखपुर के क्षेत्र से आते हैं, मतलब सांसदी छोड़ी भी वहां की तो गोरखपुर से ही उनका विधानसभा का सीट है, आप महाराजगंज क्षेत्र से आते हैं, तो लगभग एक ही क्षेत्र से सीएम भी, पार्टी प्रेसिडेंट भी, कोई सोच है इसके पीछे क्या?
0: हमारे और योगी जी के सोच में, वो भी सांसद रहे हैं, मैं भी सांसद रहा हूँ, हम लोग साथ में भी काम किए हैं, आज वो देश के मुख्यमंत्री हैं, मैं भारत सरकार का मंत्री रहते हुए भी काम किया हूँ, और अध्यक्ष रहते हुए भी हम दोनों के बहुत ही अच्छे तालमेल बातचीत करके कि जो भी निर्णय लेता है वो हम लोग बैठ के बात करके, और कुछ हमको बात आती है संगठन की तरफ से तो उनको बताते हैं, उनको कुछ लगता है कहीं संगठन में कुछ दिक्कत आ रही है तो हमको बताते हैं, और मिलकर हम उसको ठीक करने का काम करते हैं।
1: पार्टी अध्यक्ष कितनी रेटिंग देते हैं योगी जी के कामकाज को
0: जी?
1: प्रदेश पार्टी अध्यक्ष कितना नंबर देते हैं योगी जी के कामकाज को?
0: देखिए योगी जी का जो 9 साल का कार्यकाल है, अगर आप देखें तो इस 9 साल में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने का काम योगी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी, गुंडा माफियों का प्रदेश कहा जाता था, बीमारू प्रदेश कहा जाता था, और कह लीजिए कि आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। खास तौर से अगर हमारी माता बहनों की बात करें तो शाम के बाद अगर घर से बाहर निकलती थी तो परिवार के लोग चिंतित रहते थे कि पहले हमारी घर के महिलाएं घर में आ जाएं। व्यापारी हमारा कोई भी दिन भर वो दुकान पर चैन से तो बैठता था, लेकिन डर लगा रहता था कब हमारे पास फिर मांग डिमांड कुछ हमारे पास ना आ जाए, तो एक पहचान थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोग आने से घबराते थे, भारत सरकार की जितनी स्कीम्स थी वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन आज योगी जी के आने के बाद से जो इस प्रदेश में आधे से ज्यादा जिलों में कर्फ्यू लगा रहता था, लेकिन योगी जी के आने के बाद से आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर आज पूरे देश के सभी प्रदेश में चर्चा होती है, और साथ ही साथ जो भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं वो आज धरातल तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर एक पे पहुंचने का काम किया है, और भारत उत्तर प्रदेश में जो लोग भी कभी आना नहीं चाहते थे आज दुनिया से भी निवेश आ रहा है, और देश का भी बड़े बड़े उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने आ रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक पहचान बदलने का काम कहीं ना कहीं योगी जी ने करके दिखाया।
1: पंकज जी, एक बहुत बड़ी चीज होती है और हम सब इसकी चर्चा हमेशा करते हैं कि चुनावों में विकास को मुद्दा होना चाहिए, आपने विकास के काम अपने गिनवाए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश चुनाव आते आते मुद्दे बदल जाते हैं और हकीकत यह है कि आज भी जातियों के आधार पर कई जगह वोट दिए जाते हैं और मांगे भी जाते हैं। इसी वजह से अगर योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे और सामने एक पीडीए अलायंस होता है, मतलब एक अलायंस होता है जो पीडीए को अपनी ताकत बताता है और उसमें पिछड़ा दलित आदिवासी समय समय पर अलग अलग उसका स्वरूप भी बताते हैं। अब आप सब भी नोटिस कर रहे होंगे अगर राम मंदिर का मुद्दा उठ रहा है तो उसमें जो बीजेपी का शहरी वोटर रहा है उस पर भी निशाना है, जो सवर्ण वोटर हैं उन पर भी निशाना है। ये पीडीए से अगर जातियां अलग अलग होकर वोट देंगी तो ये आपका हिंदुओं को एकजुट रखने का फॉर्मूला क्या होगा?
0: देखिए, हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी का नाम लेने से घबरा रही है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी वो सीधे बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता को 2017 का पहले वाला उत्तर प्रदेश याद आने लगेगा। इसलिए वो पीडीए का जो विश्लेषण बार बार करते हैं, जो आप भी कर रहे हैं कि बदल रहे हैं, मेरा मानना है कि पारिवारिक दबंगई आधारित पार्टी है ये, और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है,
1: इसे क्या कहा आपने पंकज जी,
0: अत्याचार। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें अगर आप, तो देखें कि भारतीय जनता पार्टी में हम सर्व समाज की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री जी का खुद का भी नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा देकर, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं किसी में भी कोई भेदभाव नहीं किया गया है, चाहे वो किसी जाति का हो चाहे वो किसी धर्म का हो, सबको एक बराबर देने का काम किया गया है। और मैं मानता हूं कि जाति के आधार पर लोग वोट मांगते हैं, लेकिन विकास भी उसमें विशेष मुद्दा होता है, और क्योंकि हम लोग बिना भेदभाव के कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में सभी जातियों का समायोजन भी किया जाता है। अगर आप केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी देखेंगी तो करीब करीब बहुत सी जातियों का समायोजन इस सरकार में भी, इसके पहले की भी सरकार में था, उसमें से एक मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ। तो ये केवल कहने के लिए है, क्योंकि हमने उनका चार टर्म मुलायम सिंह जी का बुला करके अखिलेश जी का मिला करके उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि जो पीडीए का एक नारा देते हैं पिछड़ा वाला, उस कितना महत्व उनको मिला है, कि किन व्यक्तियों को मिला है, किन जातियों को विशेष मिला है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है।
1: तो सॉफ्ट हिंदुत्व चलेगा उनका कि नहीं चलेगा?
0: देखिए, चुनाव है, चुनाव में तो विकास का भी मुद्दा चलेगा, जाति का भी मुद्दा चलेगा, हिंदुत्व का भी मुद्दा चलेगा, सभी मुद्दे चलेंगे।
1: सॉफ्ट हिंदुत्व काम कर सकता है अखिलेश यादव का?
0: निश्चित तौर से करेगा।
1: करेगा काम
0: किसका?
1: अखिलेश यादव का?
0: नहीं, हमारा योगी जी,
1: आप लोग तो हार्ड हिंदुत्व करते हैं।
0: नहीं, हम लोग हार्ड हिंदुत्व भी करते हैं और समाज के सभी वर्गों को लेकर भी चलने का काम करते हैं।
1: तो सब एक साथ चलेंगे इस मामले में, इसमें कोई आपको संशय नहीं लग रहा है?
0: हिंदुत्व एक विषय है, अभी आपने जात की बात किया, हम समाज के सभी वर्गों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाने का काम करती है।
1: क्योंकि जब तक अयोध्या का मामला नहीं आया था तब तक तो जातियों में बांटकर किस जाति का कितना इनकाउंटर हो रहा है, किस जाति के अपराधी मारे जा रहे हैं, किसके छोड़े जा रहे हैं, ये विश्लेषण चल रहा था।
0: अब जो लोग उस आधार पर राजनीति करते हैं उनकी वही यूएसपी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विकास यूएसपी है और समाज को सबको एक साथ लेकर के चलने की यूएसपी है, और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो प्रधान जी की मंत्री जी का मानना है कि देश के रहने वाले सभी नागरिक, जब तक विकास उनका नहीं होगा और देश में सभी भूभागों में सभी क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, तब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए हम सबको लेकर और सभी क्षेत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती
1: है। अच्छा, SIR के बाद की आप लोगों की तैयारी अभी दिख रही है, आप कितना उसमें परिवर्तन देख रहे हैं? कुल अगर 15,44,00,000 वोटरों की संख्या घटकर अब 13,39,00,000 रह गई है, यानी करीब 2,04,00,000 मतदाता कम यहां पर हुए हैं, सीटों की प्रोफाइल में बहुत परिवर्तन आया है, ऐसा कि विपक्ष भी बोल सके कि देखिए आपने अपने जितवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से करवाया?
0: देखिए, SIR का ये विरोध तो विपक्ष शुरू से करता रहा, और यही उत्तर प्रदेश में जब करोड़ों वोट कटा तो अखिलेश जी एक बार तो खुश भी हुए कि भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा वोट कट गया, शहरों का वोट कट गया, प्रसन्न भी हुए थे और उसी SIR के उस पर उंगली भी उठाते थे। लेकिन मेरा मानना है कि SIR में सब ठीक ठाक से पूरा जांच करके हुआ है, जितने भी मरे हुए मतदाता देवस्थान वाले मतदाता थे, जो लोग स्थान बदल लिए थे, ऐसा परिवर्तन आया। लेकिन हम संगठन आधारित पार्टी हैं। हमारा संगठन इस समय पूरा उस पर फोकस किया हुआ है कि हर बूथ पर वोटर लिस्ट भेज करके एक एक घर में फिर से दिखवाने का काम हम करेंगे कि किसी का नाम छूट गया हो, किसी का नाम गलती से कट गया हो, तो अभी भी उसमें अवसर है, फॉर्म 6 भरवा करके उसका नाम जुड़वाने का काम करेंगे। SIR कोई समस्या नहीं है,
1: क्योंकि SIR से पहले भी जब अभी उपचुनाव हुए थे कई सीटों के, उसमें हमने ये भी देखा कि कई ऐसी जगह जहां पर मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी। तो इस हिसाब से आप सीटों को देख रहे हैं क्या?
0: अभी तो विश्लेषण करना पड़ेगा बैठ करके, एक सीट बाई सीट हम लोग उसको देखेंगे कि कहां पर क्या परिस्थिति बनी है, SIR के बाद क्या स्थिति आई है, उसके बाद उस पर निर्णय लेंगे।
1: एक और चीज जो चुनाव बिल्कुल जब सर पर आ जाते हैं तो जरूर चर्चा का विषय होते हैं, यहां पर योगी आदित्यनाथ 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, क्या योगी आदित्यनाथ ही चेहरा है बीजेपी के इस बार NDA के?
0: देखिए, भारतीय जनता, मैंने पहले भी कहा कि संगठन आधारित पार्टी है और हम अपने विचारधारा पर चलते हैं, और मेरा पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। हमारे पार्टी में हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं। हम सब मिल करके कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि कौन होगा मुख्यमंत्री।
1: अच्छा, जेनरेशन का बदलाव आपका केंद्रीय बीजेपी में भी रहा, तो नितिन नवीन जी का नाम आपने कहा है, कुछ बदलाव आए? जैसे कहते हैं ना, जब अलग अलग देशों में जेन जी निकलकर वहां पर उन लोगों ने आंदोलन किया, यहां पर आपका जो नेक्स्ट जेनरेशन पे पहुंचा है अभी कमान।
0: देखिए, नया जनरेशन जब आता है तो निश्चित तौर से उसका करने का क्षमता भी ज्यादा होती है, सोच की क्षमता अलग होती है, और उसमें वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेकर के और भी अच्छा काम वो करते हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसे ही अच्छा काम कर रहे हैं।
1: तो वैसे ही कुछ थोड़ा कामकाज में परिवर्तन आया है अभी?
0: देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पहले से भी हमारे दल में होता रहा था, बूथ की बैठक होती थी लेकिन नियमित नहीं हो पाती थी, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में आज चाहे प्रदेश की कार्य समिति हो, चाहे क्षेत्र की कार्य समिति हो, चाहे जिले की कार्य समिति हो, मंडल की कार्य समिति हो, और हमारे कह लीजिए कि शक्ति केंद्र की बैठक हो, और हर बूथ का हर महीना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फोकस किया है कि हर बूथ की हर महीने बैठक हो करके निश्चित तौर से सुनिश्चित किया जाए, और हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। करीब करीब 85-90% हम लोग कामयाब भी मिल गए, लेकिन इसको कंटिन्यू हम कर ले जाएं तो, ताकि क्योंकि चुनाव में सबसे आवश्यक होता है कि हमारा बूथ कैसा है। अगर बूथ, हम संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि बूथ का कार्यकर्ता, बूथ की कमेटी हमारी अगर मजबूत है तो समझ लीजिए कि आप 50% से ज़्यादा चुनाव आपके हाथ में आ जाता है। क्योंकि अगर आप देखें तो अंतिम 48 घंटे में कोई भी पार्टी हो वो जाकर के बूथ कमेटी पे ही अपने निर्भर कर जाती है। बूथ का कार्यकर्ता अगर काम करता है तो बूथ का हम वो जीत जाते हैं, बूथ का कार्यकर्ता काम नहीं करता है तो बूथ हम थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लक्ष्य है कि बूथ की बैठक हर महीने निश्चित तौर से हो, और उसका प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे कि हमारा चुनाव आते आते कम से कम 5-6 मरते बैठक हो जाए तो बूथ हमारी ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी।
1: जब 300 पार का आंकड़ा आया था विधानसभा में, उस समय कुछ जगह पे सेटबैक्स भी हुए, क्योंकि बाद में योगी जी ने स्वयं स्वीकारा और कहा कि अति आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं में, कहीं पर नेताओं में आ गया। आप लोग जब इस बार चुनाव में उतर रहे हैं, एक हैट्रिक सामने दिख रही है, पर क्या उस अति आत्मविश्वास के साथ जा रहे हैं या किसी भी तरह की कोई चूक कहीं रह न जाए?
0: देखिए, हम कोई आत्मविश्वास के साथ नहीं जा रहे, चुनाव चुनाव होता है, और ठीक है कि चुनाव हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अगर देखें तो 365 दिन काम करते हैं, हमारा अभियान लगातार चलता रहता है, यानी कि कोविड में भी कह लीजिए तो सारे दल के कार्यकर्ता घर में बैठे ले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोविड में भी जनता की सेवा करता था। और हम जब सरकार में आते हैं तो हम शासक के रूप में नहीं करते हैं बल्कि सेवक के रूप में काम करते हैं, और कार्यकर्ता हमारा हमेशा जनता से कनेक्ट में रहता है, और जो हमारे 12 साल के मोदी जी के कार्यकाल का जो काम है और जो योगी जी के 9 साल का जो काम है उसको लेकर के डायरेक्ट कनेक्ट हमारा जनता से रहता है, और जनता से मिल करके जनता के भावों को समझ करके उस प्रकार से हम काम करते हैं।
1: पंकज जी, वो कौन सा मुद्दा है जिस पे आपको लगता है कि आपको जनता को कन्विंस करना ही नहीं है, जनता को मालूम है कि बीजेपी सरकार की का ये स्ट्रेंथ है और ये उन्हें मिलेगा, और कौन सी ऐसी चीज है जिस पे आपको लग रहा है कि इसके लिए तो घर घर व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ और कमजोरी?
0: देखिए, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमारा है कि एक तो जो प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और जो कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री जी निकाला कि एक गरीब को मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है, एक गरीब को देश का अगर नागरिक है तो उसको जीवन यापित करने के लिए कम से कम एक मकान होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, घर में बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, पानी का कनेक्शन होना चाहिए, गैस का सिलेंडर होना चाहिए, गरीब आदमी हो तो भूखा सो नहीं पाए, राशन की व्यवस्था होनी चाहिए, बीमार होता है तो कहीं ना कहीं उसको दवा की व्यवस्था होनी चाहिए, और गरीब आदमी है तो 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में उसे हम मदद के रूप में भी देते हैं, साथ ही साथ उनका दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा भी एक सस्ते प्रीमियम पे करवाने का काम, और उनके घर तक का सड़क कैसे ठीक हो, उनको बाहर निकलने का सड़क कैसे ठीक हो, इन सब को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने किया है, और इन कार्यों को लेकर के हम सब जाएंगे जनता के बीच में, और इसी के आधार पर हम निश्चित तौर से चुनाव जीतेंगे।
1: चूंकि सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ी युवा आबादी भी हो जाती है, रोजगार एक इशू हमेशा रहता है, रोजगार के मुद्दे पे आपको क्या युवाओं में एक असंतुष्टि दिख रही है?
0: देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश में 4 जाति तय की है उसमें आप देखें तो एक युवा भी है, और प्रधानमंत्री जी का महिलाओं पर भी और युवाओं पर विशेष फोकस रहा है। हम सबको नौकरी देने में सक्षम तो नहीं है, लेकिन रोजगार हम दे सकते हैं, 100 रोजगार उनको करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और वो नौकरी मांगने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने, ऐसा प्रधानमंत्री जी की सोच है, और ऐसा तमाम स्कीम हम लेकर के आए। पहले हम उनको स्किल करने का भी स्कीम लेकर के आए, स्किल होने के बाद अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो फाइनेंस की अगर कमी है तो हम मुद्रा योजना लेकर के आए, हम स्टार्टअप इंडिया लेकर के आए, हम स्टार्टअप इंडिया लेकर के आए, और कह लीजिए कि रोजगार नौजवानों को कैसे काम मिल सके, इस पर विशेष फोकस प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का भी निश्चित तौर से इस पर है।
1: 4 जातियों का चूंकि आपने जिक्र किया, उसमें महिलाओं को भी बहुत प्रमुखता से, और जो अलग अलग राज्यों में जहां पर चुनाव हुए भी हैं अभी, वहां पर बहुत प्रमुखता से उनको हमने देखा, चाहे यहाँ पड़ोसी आपका बिहार हो या उधर मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेश में तो एक ऐसी योजना आई जो हर एक प्रदेश में धीरे धीरे करके, और जो पार्टी सामने आती वही वादा कर रही है। यूपी में ऐसा कुछ है नहीं अभी तक, पंकज जी कुछ सोच रहे हैं आप लोग?
0: देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री जी का जो सोच है ना कि देश को 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो देश के हर आदमी को कहीं ना कहीं अपना योगदान देना होता है, तभी देश खड़ा, केवल सरकार नहीं बना सकती है, सरकार के साथ साथ देश के जनता को भी, और आधी आबादी हमारी माता बहनों का है, और अगर आप देखें 2014 के पहले तो माता बहनों पे किसी का विशेष फोकस नहीं रहता था, और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद अगर आप देखें जितनी भी कल्याणकारी योजनाएँ हैं उनमें विशेष रूप से फोकस पहले महिलाओं पर है, और महिलाओं को कैसे काम मिले, लखपति दीदी कैसे बने, ड्रोन दीदी कैसे बने, हमारी लोन सखी कैसे बने, बैंक सखी कैसे बने, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे करने का काम हमारी प्रधानमंत्री जी की इच्छा रहती है, और जैसा भी होता है उनको सहयोग भी दिया जाता है और आगे भी देते रहेंगे।
1: 3 कारण की आपको लगता है कि हैट्रिक होगी, क्योंकि हैट्रिक भी 3 है, तो इसीलिए मैं 3 कारण आपसे समझना चाहती हूँ जो सबसे बड़ी रीजन हो सकते हैं अगर आप लोग मारे हैट्रिक।
0: देखिए, सबसे पहले जो 24 की बात आपने किया था कि जिस प्रकार से वो नैरेटिव फैलाने में सफलता प्राप्त कर लिए थे, तो पहला तो मेरा होगा कि वो नैरेटिव इस बार हम लोग फैलने नहीं देंगे, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से दबाएंगे, और दूसरा जो हमारी भारत सरकार ने जो काम किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किया है उसको घर घर तक हमको निश्चित तौर से लेकर के पहुंचाना चाहिए, और अपने विचारधारा से जो हम पहले भी करते रहे हैं और आज भी जो हमारी विचारधारा है, जनता को विश्वास दिलाएंगे कि हम अपने विचारधारा से इतर नहीं होने वाले।
1: मुझे तो लगा आप बोलेंगे मोदी जी का नेतृत्व, योगी जी का चेहरा।
0: मोदी जी हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में ही पूरे देश में चुनाव होता है, भले उनका नाम ना लिया जाए, लेकिन मोदी जी को तो बिना मोदी जी के काम चलने वाला नहीं है। तो मोदी जी भी होंगे, जोगी जी भी होंगे, हमारे मैंने पहले भी कहा कि हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व है, सबके मिलके हम सब मेहनत करके और सरकार बनाएंगे।
1: युद्ध एक ऐसे समय पे चल रहा है इस दुनिया में जब हर देश में उसका असर दिख रहा है, भारत में भी दिख रहा है। अगर पेट्रोल डीजल के दर बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है, ये चीजें आपको मुश्किल पैदा कर सकती हैं जनता को जवाब देने में।
0: आप देखिए, वैश्विक संकट अभी जो चल रहा है, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, उसके पहले भी इस देश पर बहुत बड़ा वैश्विक संकट आया था कोविड के समय में, और पूरी देश की स्थिति बिगड़ गई थी। और भारत तो चूंकि 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, और मैं तो कहता हूं कि हम सब बहुत प्रभावित हैं कि उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आप कल्पना करो कि अगर देश के प्रधानमंत्री उस समय नहीं होते तो इस देश का क्या हाल होता। मैं दूसरे कारण से कह रहा हूं, क्योंकि देश की जनता का विश्वास, नेता पे अगर विश्वास ना हो तो जो अपील होता है ना, वो जनता मानती नहीं है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने एकाएक रात में और लॉकडाउन की घोषणा किया, अगर शायद कोई दूसरा जनता रहता तो देश में रिवोट हो जाता, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ऊपर विश्वास लोगों को इतना है कि प्रधानमंत्री जी कहे तो निश्चित तौर से उस पर लोगों ने अमल भी किया। और फिर प्रधानमंत्री जी इस देश में अगर देखें, बहुत से वैक्सीन जो 20 साल 25 साल से देश में नहीं बन पाए थे, कोविड भी पूरे दुनिया के लिए नया था, प्रधानमंत्री जी ने अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा किया, अपने डॉक्टरों पर भरोसा किया, अपने सभी नीचे के जो हमारे सफाई कर्मी थे सब पे भरोसा किया और उनको पूरी मदद किया। और मैं देश के वैज्ञानिकों को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से साल भर के भीतर उन्होंने दो दो वैक्सीन का निर्माण भी किया और प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ की जनता को दो दो मरते फ्री में डोज देने का काम किया, और साथ ही साथ 100 से ज़्यादा कंट्री को वैक्सीन मित्रता के रूप में हम उनकी मदद करने के भी काम किए। इस प्रकार से हमारी सरकार काम करती है।
1: यकीन के साथ आप कह रहे हैं कि फिर एक बार बीजेपी सरकार है।
0: निश्चित तौर से जो मैं किया हूं जनता के बीच में लेके जाएंगे और जनता उस पर मेरे विश्वास करेगी। तीसरी बार योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, नितिन जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी गया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच पर आने के लिए पंकज जी, थैंक यू।
2: तो विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को लगातार बदनाम करता है। पंकज चौधरी ने कहा कि राम मंदिर हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, कई सारी बातें उन्होंने कही यूपी मॉडल को लेकर, चुनाव को लेकर, ऑपोजिशन की मौजूदा राजनीति को लेकर, और विपक्ष ने राम मंदिर का भी विरोध किया था, और आज उन्हें भगवान राम याद आ रहे हैं। यूपी में पहले गुंडे और माफियाओं का राज था और हमारे समय में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हुआ है।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: At Buyers Volkswagen, we've been family owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at columbusvw.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
6: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
7: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
10: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
9: विमल, बोलो जुबां केसरी।

छह साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया उसे लेकर सुलगती सियासत का एक सिरा पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार तक पहुंचता है। 2020 की फरवरी के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की हत्या हुई थी। मारे गए 40 मुस्लिम और 13 हिंदुओं में एक नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा का भी था, जिसकी हत्या के केस में कड़कड़डूमा की अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जो आरोप लगाए थे उनमें से अदालत ने हत्या की धारा 302, अपहरण की धारा 365, दंगे से जुड़े अपराधों की धारा 147, 148, 149 और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की धारा 153 और सरकारी आदेश तोड़ने की धारा 188 के तहत ताहिर को दोषी करार दिया है। दोषियों की सजा का ऐलान 16 जुलाई को होगा, लेकिन 5 दोषियों में से एक आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद और AIMIM के विधानसभा उम्मीदवार रहे ताहिर हुसैन ने इसे नाइंसाफी कहा है। लेकिन बीजेपी से इंसाफ की मिसाल कहती है और 51 बार चाकुओं से गोद कर मारे गए अंकित शर्मा के हत्यारों के साथ ताहिर हुसैन के गुनाह का जिक्र भी करती है। सियासत ये है कि दिल्ली की घटना पर पंजाब में पॉलिटिकल घेराबंदी हो गई, क्योंकि दिल्ली दंगे से ठीक पहले दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दे चुके कपिल मिश्रा ने अब इन दंगों के डायरेक्टर का सवाल उठाया है। हालांकि चुप्पी सिर्फ आम आदमी पार्टी लीडरशिप की ही नहीं है। जिस AIMIM ने पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया था, दिल्ली दंगे के आरोपी होने के बावजूद जो ताहिर 33,000 वोट पाता है, अब तक ओवैसी की पार्टी उस पर चुप है, लेकिन केजरीवाल की पार्टी के विधायक अब भी ताहिर हुसैन के समर्थन में खड़े हैं। केजरीवाल के विधायक को ताहिर के लिए ऊपरी अदालतों में इंसाफ की उम्मीद बची हुई लगती है, तो कांग्रेस के नेता ताहिर के साथ इंसाफ की उम्मीद छोड़ चुके हैं और वजह बताते हैं ताहिर का मजहब। दरअसल दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन के दोषी करार होने का असर अब दिल्ली से पंजाब तक दिख रहा है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी की 2 चुनौतियां केजरीवाल और कांग्रेस हैं, लिहाजा बीजेपी अब ताहिर खान के जरिए दोनों दलों को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। हालांकि दिल्ली दंगे को लेकर AIMIM सवाल उठाती रही है कि जिस दंगे में 53 लोगों की जान चली गई उसमें 6 साल बाद भी सिर्फ एक हत्या के केस में दोषियों की पहचान क्यों हो पाई। आखिर वो कैसी जांच थी जिसमें इसी दंगे में मारे गए हाशिम अली की हत्या के 12 और अनवर हत्याकांड के 5 आरोपी बरी हो जाते हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: परसों चूंकि मेरा जन्मदिन है 17 जुलाई को, तो उसकी उन्होंने बधाई दी
1: एडवांस में, बधाई आपको सबकी तरफ से।
0: तो गोरखपुर में हम एक भोज कर रहे हैं इस बार। वो चाहते थे हमेशा मंच से, योगी जी कहते थे कि कुछ खिएगी ना कि नहीं, कुछ खिलाए कि नहीं जनता से, तो इस बार सबको पकड़ पकड़ के, विक्रम चौधरी भी बैठे हैं, चारू जी भी हमारी उपाध्यक्ष बैठी, इन लोगों को इतना सबको, हम तो हाथे से सबको पूरी खिलाएंगे इस
1: गिफ्ट,
0: बार
1: गिफ्ट आएगा सबकी तरफ से।
0: नहीं अभी है, परसों हम भोज कर रहे हैं 17 को, तो पूरा पांचों विधानसभा को हम बुला लिए टाइम पूरा शांत, क्यों महाराज जी हमेशा मंच से पूछते थे कि आप लोग को कुछ खिलाए कि नहीं, सांसद जी कुछ खिलाए कि नहीं, तो इस बार सबको रच के खिलाएंगे।
1: गिफ्ट में वोट आएगा?
0: नहीं वोट नहीं चाहिए, हमको प्रेम चाहिए। वोट तो देखिए उत्तर प्रदेश ने डिसाइड कर लिया, श्वेता जी महिलाओं ने, बेटियों ने डिसाइड किया, माताओं ने डिसाइड किया, युवाओं ने डिसाइड किया। जो उत्तर प्रदेश को मैंने देखा है, चूंकि मैं यहीं का हूं, मैंने इतनी भोजपुरी फिल्में की, मैं इतने जिले जिले घुमा हूं, मुझसे कुछ बचा नहीं था, मैं यहाँ की समस्याओं को जानता था, मैं इसीलिए उनकी फिल्में बनाता था। तो आज उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता, जो सुरक्षा, फ्यूचर, भविष्य, एजुकेशन, हेल्थ, सड़क, एवरीथिंग, जो एक एक, एक जिंदगी जीने के लिए एक इंसान को मिलना चाहिए, जो उसका अधिकार है, जिस देश का वो नागरिक है, जो उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए, वो सब कुछ उत्तर प्रदेश में मिल रहा है इस डबल इंजन की सरकार में। तो मोदी जी और योगी जी केंद्र में, उनको पता है वहां मोदी जी हैं, यहां पर योगी जी हैं, पूरा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, इफ बट कुछ नहीं, क्लियर है कि 17 का रिकॉर्ड टूटी ये वेर, पूरा जनता की आवाज बा। श्वेता जी मैं आपको ये दावे के साथ ऑन रिकॉर्ड आपके इस विश्व के या भारत के सबसे बड़े चैनल पे, नंबर 1 चैनल पे ये मैं बता रहा हूं,
1: हैट्रिक हो जाएगी बार
0: 100%, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं मास का आदमी हूं, मैं तो जमीन का आदमी हूं, मैं तो देखता हूं, आंख देख के पता चलता है। अभी इधर ये आंखें देख लो, ये सब बातों में इनको पता है। और यहां महिलाओं की संख्या आप देख रही है, 70% महिलाएं बैठी हैं।
1: कितनी को टिकट मिलता है वो भी देखना है अभी। महिलाएं तो बैठी हैं, लेकिन अच्छा ये बताइए आपके पहनावे का क्या, आधा तो योगी लग रहा है आप हो गए।
0: ये देखा हम, मैं सुबह में उठा और मैं रात में सोया नहीं था, खैर
1: रात में सोया नहीं था लेकिन सुबह
0: उठा वही जी रवि किशन,
1: आप इसीलिए आप बोलते हैं आप वायरल
0: हो
1: वायरल तो होगा ये।
0: तो सुबह जो आधा घंटे का नहीं कि रगड़ के सो ही जाते हैं, तब वो उसमें उठे और यही पहने, सोचे होटल जाएंगे बदलेंगे, तब तक पता चला महाराज जी अंदर बतिया रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। तो मैं बोला फॉरगेट चेंजिंग एंड एवरीथिंग, लेट्स गो इनसाइड। तो मैं आइए मेरा, मैं प्रॉपरली एक हीरो की तरह तैयार होके आने वाला था लेकिन मैं बोला अब आ ही गए हैं, लोग देख ही लिया है तो देख ही ले, अब भैया अब ऐसे ही बैठ जाते
1: हैं। लुक अच्छा है।
0: ओह थैंक यू।
1: और मतलब चुनावी माहौल में तो सुपर हिट हो सकता है। नहीं पर लोग
0: आप पंडित की ओर इशारा कर रही है क्या, ब्राह्मण की ओर?
1: बिल्कुल। बड़ा सम्मेलन चल रहा है हर जगह, सामने आपके जितने विरोधी हैं वो सब लगे हुए हैं कि ब्राह्मण वोट ले जाएं। कितने हिस्सों में बटेगा ब्राह्मण वोट?
0: ब्राह्मण कहीं नहीं जाएगा। अच्छा। ब्राह्मण को पता है कि मेरा सनातन, मेरे घर की मां बहन, मेरा देश, मेरा प्रदेश, मेरा जिला, मेरा गांव सुरक्षित है, अन्याय नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी नहीं हो रही है, माफिया लोग जिला नहीं चला रहे हैं, ब्राह्मण वहां जाएगा। ये बात मैं आपको जमीन पर लिख के देता हूं।
1: नहीं पर देखिए ना, सामने समाजवादी पार्टी ने पूरी गिनती दी कि कैसे कोई अपराधी अगर छोटा अपराध भी कर देगा, ब्राह्मण होगा, तो उसके पीछे पुलिस पड़ जाएगी, लेकिन दूसरी जाति की तरफ नहीं जाएगी। ब्राह्मणों को बहुत बताया गया है ये चीज।
0: देखिए ये सब बातें चुनावी है, ब्राह्मण भी जान रहे हैं, ब्राह्मण समाज भी जान रहा है, ब्राह्मण समाज बहुत विद्वान समाज है, पैसे हैं उसके पास, पैसे नहीं हो बात अलग, ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ समाज है, वो सब समझता है और चुनाव को और राजनीति को तो कुछ ज्यादा ही समझता है। तो ब्राह्मण को क्या लालच या लॉलीपॉप देने का कोई भी प्रयास विरोधी पक्ष जो भी कर रहा है, ब्राह्मण कभी किसी लालच में नहीं आता, वो तो देने के लिए पैदा हुआ है, वो धरती पर आता है, वो सिर्फ उसको दे रहा है। लेता हुआ ब्राह्मण कभी ब्राह्मण नहीं होता, वो देने आया, वो किसी लालच में कभी नहीं जाएगा। मेरा राष्ट्र, हमारा राष्ट्र सुरक्षित बा हो, हमारा भारत बढ़िया बा, हमारे नेता बढ़िया, कोनो भ्रष्टाचार नहीं किए हो, कोनो स्कैम नहीं किया, अखबार खोलत ही पढ़त है, बढ़िया बम बम बा, तब हम चुटिया मारेगा, जनेऊ को साधेगा, चल चल देगा। वो ऐसे ही है, वो आशीर्वाद देने के लिए खाली ऐसे रहता है। ओके, कुछ ना, एकदम कोई कंफ्यूजन में ना रहे विरोधी। ब्राह्मण कत्तो नहीं खे जात, ब्राह्मण ना जाई, ब्राह्मण अपने भारत के साथ खड़ा रहा ला, जो ने धरती के बा वह ब्राह्मण रही, जम के रही और त्रिशूल गाड़ के रही, वो कहीं ना भटकी हो।
1: पीडीए का एक पी पंडित भी होता है, पी अलग अलग होते हैं ना, पिछड़ा।
0: देखिए ये लोग उल्टा पेड़ से भी लटक जाए इस बार सब लोग, तब वो चुनाव ना जीत भैया, जान ला श्वेता जी, जान ला मार बात।
1: अयोध्या से भी नहीं, अयोध्या का मुद्दा नहीं लोग देखेंगे जब,
0: अयोध्या
1: वो कह रहे हैं समाजवाद ही सनातन है, सनातन ही समाजवाद है।
0: बहुत बड़ा पाप हुआ अयोध्या में, बहुत बड़ा पाप हुआ। एक पंडित होने के नाते, हिंदू होने के नाते, एक पुजारी का बेटा होने के नाते, हमारे इष्ट प्रभु राम के भक्त होने के नाते इतनी पीड़ा हुई, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकती। लेकिन तुरंत एसआईटी गठित हुई, तुरंत जितने हुए पकड़े गए, जो और भी पाए जाएंगे वो भी पकड़े जाएंगे। मैं चाहूंगा कि ऐसे दंड मिले कि आने वाले समय पूरे भारत के हर मंदिर का हर कोई व्यक्ति अगर गलती से सोच रहा है तो उसको कांप जाए। ऐसा दंड मिलना चाहिए उन पापियों को जिन्होंने ये पाप किया है। ये पाप ना मस्जिद में हो, ना क्रिश्चियन गिरजाघर में हो, ना गुरुद्वारे में हो, ऐसा दंड हो, एक ऐसा मैसेज जाए। मैं ये चाहता हूं, ये बहुत पीड़ा हुई, लेकिन सनातन को हिंदू इससे कहीं घबराया नहीं है, उसकी आस्था में कोई कमी नहीं आई, और अयोध्या में लोगों की भीड़ बढ़ गई है, कोई चिंता वो बात में कोई नहीं जाए। ये पाप हुआ है, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि एक संदेशा जाए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कि इस देश में 2026 में ये हुआ था अयोध्या मंदिर में, तब ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिला था, तब उन लोग कांपे, ताकि कोई आगे ये गंदा पाप, ये घिनौना, ये घृणित अपराध ना कर पाए।
1: योगी जी पर इसीलिए क्या लोगों को ज्यादा भरोसा होगा कि लॉ ऑर्डर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में वो एक बेंचमार्क एक सेट करते हैं। वो कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे तो माफिया उसके बाद खात्मा शुरू होता है। जब उनका जो बुलडोजर बाबा की जो उनकी उपाधि है, कई राज्यों में अब हम देख रहे हैं कि उसका इस्तेमाल किया जाता है, और उनके ऐसे ही कठोर प्रशासक होने के नाते लोग चाहते हैं कि चाहे किसी भी पद पर कोई भी व्यक्ति हो, कार्रवाई तो हो कर रहे।
0: पद तो मायने नहीं रखता ना, जुर्म किया है तो जुर्म किया है, पाप किया है तो पाप किया है, पद का क्या लेना देना। पापी का पद से कोई, अगर कोई भी पद पर हो, अगर उसने पाप किया तो सजा तो वो उसको लागू होती है, वो कोई भी होगा, वो पद का कहां से इसमें क्या कोई संबंध ही नहीं है।
1: अच्छा, आप कहते हैं कि आप ग्राउंड के आदमी हैं, आप जमीन से जुड़े रहते हैं, क्या कह रहे हैं ग्राउंड पे लोग, कुछ शिकायत भी तो बता रहे होंगे ना।
0: देखिए, शिकायत तो मनुष्य आदमी, मनुष्य आत्मा जो है ना, कभी तृप्त नहीं होती, कभी नहीं तृप्त, कुछ ना कुछ मांगती रहती है, कुछ और दे दो, अभी सड़किया मिल गई, 6 लेन दे दो, फ्लायर दो, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, बिजनेस, एवरी जिले में मेडिकल कॉलेजेस, एजुकेशन सिस्टम, हाईटेक, एवरीथिंग, उत्तर प्रदेश चेंज फ्रंट ऑफ मी। ये उत्तर प्रदेश ऐसा टेक ऑफ मारा है हमारी आंखों के सामने, उसके बाद भी ये मनुष्य है, उसको अपग्रेड होना है, वो मांगता रहेगा, उसकी मांगे चलती रहेंगी, उसके साथ सरकार चलती रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज वो है, सब जो टच करती है वोटर को, कि मेरा नेता, मेरे लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरे लीडर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ महाराज जी, हमारे यहाँ पर कोई बड़ा स्कैम, करप्शन, पाप, इस तरह से घृणित अपराध ये नहीं हुआ, हुआ किसी छोटा मोटा भी किसी ने जुर्म किया या हिम्मत की, तुरंत दंडित किया गया, तुरंत दान महाकल्याण। सो एक है कि निरंतर काम करें, 14 के बाद 14 से लेके 26 तक का भारत और ये उत्तर प्रदेश 17 के बाद से अब तक जो गति में आगे बढ़ा है, जनता अपनी आंखों से देख रही है। जेंजी क्राउड आर वेरी हैप्पी, जेंजी आर लविंग मोदी जी। ये बीजेपी के साथ जेंजी बहुत कनेक्ट हो गए हैं, यंगस्टर्स और बेटियां जो आधी आबादी हैं वो तो कंप्लीटली भाजपा के प्रति आकर्षित हैं। मैं आपको दावे के साथ, जितनी महिलाएं हैं इस आधी आबादी की, और महादेव चाहेंगे अब रिजर्वेशन का बिल भी पारित हो जाएगा तो फिर तो बम बम है, कोई चिंता नहीं, महिलाओं की आवाज बन के मोदी जी उठे।
1: पर ये बच्चे, ये युवा नौकरी की बात नहीं पूछते हैं आपसे।
0: जॉब्स आर देयर, 9 लाख से ज्यादा तो नौकरी, सरकारी नौकरी यहाँ पर मिली, 2 लाख से ज्यादा तो पुलिस में भर्ती हुई बिना खर्ची बिना पर्ची। ये कभी हुआ नहीं था, ये कभी सुनाई नहीं गया, वो सुनाई नहीं दिया गया था, इस उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। यहाँ कभी पुरानी बंद मिले शुरू नहीं हुई, कभी पलायन यहाँ पर रुकता नहीं था जो बंद हो गया। कोविड में पूरे उत्तर प्रदेश को बचा लिया गया, अनबिलीवेबल काम। 26 करोड़ की आबादी है, अपने आप में एक देश है ये। और जहां अपराध, जहां पे लोग आने डरते थे, फिल्मों में शूटिंग के लिए लोग आने डरते थे, हीरोइंस आने डरती थी, यहां नो नो नो भी कहा, फिल्में बनती थी उत्तर प्रदेश के अपराध को लेकर पहले, वो बंद हो गई। क्या जगह थी, डरावनी जगह थी, लोग भाग, महिलाएं बेटियां 5 बजे के बाद जाती नहीं थी, लोग अगवा हो जाते, व्यापारी अगवा हो जाते थे, सब दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे थे।
1: रवि जी, क्या होता है ना कि जब एक रिश्ता लंबा चलता है तो जो शुरू शुरू में बहुत मोहब्बत रहती है, आपको उसके बाद कमियां दिखना शुरू भी होती हैं, ये तो मानेंगे ना, तो मनुष्य प्रवृत्ति ये भी है। 10 साल हो जाएंगे अगले साल, कमियां तो दिखेंगी। आपको लगता है वो युवा आपसे नीट पेपर लीक के बारे में नहीं पूछ रहा है?
0: देखिए, वो जो भी पाप किया है वो दंडित हुआ, वो अपराध है, मैंने कहा अपराध हुआ उसमें दंडित हुआ, उसको कैसे रिकवर करना, कैसे वो रिपीट ना हो, उस पर पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा बारीकी से ध्यान है। ये नहीं, युवा ये भी जानता है कि ये मोदी जी ने नहीं किया, ये भाजपा ने नहीं किया, सरकार 140 करोड़ की आबादी वाले इतने बड़े देश को चला रही है, जहां पर बाहर भी आतंकवादी हैं, घर के अंदर भी आतंकवादी हैं, बाहर भी गद्दार हैं, घर के अंदर भी गद्दार हैं, अनगिनत समस्याओं के साथ चलना, जहां पार्लियामेंट चलने नहीं दिया जा रहा, ये 20 तारीख के बाद फिर देखिएगा तूफान मचाएंगे, ये मानसून सेशन को भी प्लान चल रहा है कि इसमें भी अवरोध लाएं। तो जहां ऐसी मानसिकता है, जहां पे विरोधी पक्ष जो रहता ही नहीं पार्लियामेंट में, जहां विरोधी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, कभी पार्लियामेंट में हमको दिखाई नहीं देते, 5-10 मिनट के बाद सब रेस्टलेस होकर नाचने लगते हैं, उनको कुर्सी काटने लगती है, और फ्रंट ऑफ मी ओनली दे रन अवे।
1: आप कितना संतुष्ट हैं एक सांसद के रूप में अपने परफॉर्मेंस से?
0: आई एम वेरी हैप्पी, मैं बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड लिया हूं। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला उत्तर प्रदेश का सांसद। कलाकार को हमेशा एक कम आंका जाता है, नॉर्थ में, साउथ में उनको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, यहां पे लगता है नहीं नहीं उनके काम मालूम बा हो, वो कौन दुनिया देख ले वाड़न, वो तो हीरो वाड़न। अरे
1: ताली सहमति में बजा रहे हैं या
0: नहीं? सहमति में धन्यवाद, कहें कि हम बहुत नीचे से ऊपर आए, तभी ना सब गरीबी जो देखा है, गरीब ब्राह्मण का लड़का, समझ रहे हो, मिट्टी के घर से आज पूरे विश्व में नाम किए, और अपने बल पर, कोई गॉडफादर नहीं हमारा, किसी ने हमको नहीं बनाया, सेल्फ मेड आदमी हूं मैं। लापता लेडीज ऑस्कर तक पहुंच गई इसी आदमी के, तो जानते हैं दुनिया, तब गोरखपुर के सांसद हैं, पहली बार में मोदी जी योगी जी का आशीर्वाद वहां पे जीत जाते, दूसरी बार जनता नहीं जिताती, जनता बहुत जानती है, बड़ी बारीकी से देखती है कि आदमी क्या है, इसका विचार क्या है, व्यवहार क्या है, मिलता कैसे, काम कैसे करता है, कोविड में कहां था, घूम रहा था, सुपरस्टार होके भी कोविड में घूम रहा था गांव गांव, और सारे विजुअल्स हैं, हर मेरा काम प्लेटफॉर्म पर है, पूरा सोशल मीडिया पर है, जहां पे भी रहता हूं मेरे लगातार सारे काम, ही ना ही कि भाई बन गए नहीं चल गए, नहीं नहीं नहीं, तभी हम जो 24 के माहौल में भी हम 6 लाख वोट पाए,
1: 24 के माहौल में भी
0: हाँ
1: 6 लाख वोट पाए, लेकिन यही वो सीट है, ऐसा भी नहीं है कि कोई सेफ सीट है, यही वो सीट है जो पहले, मतलब अब तो फैजाबाद को लेकर
0: 2018 में हार गए थे,
1: उस समय बहुत बीजेपी के लिए मंथन का विषय था, पर आज आपने अपने सफर की भी बात की और वाकई बहुत नीचे से आप जहां पर आज हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि कलाकार के रूप में उम्मीद करते हैं कि आप और भी ऊपर जाएं, इंटरनेशनल फेम रहा, वेब सीरीज आपकी रही, जीवन आपका भी,
0: अभी धमाल पिक्चर हमारी ब्लॉकबस्टर हो गई 3 दिन पहले,
1: एक और बताइए
0: कौन देखा धमाल, ओ सब धमाल देखे हो, लापता लेडीज के बाद मामला देखो, महादेव का डमरू बजता है ना, समय होत बलवान, हम वही आदमी, वही चेहरा, वही आंखें, अब पूरा दुनिया पगला है हमारे पीछे, 34 साल बाद हमको ये समय,
1: बदलता क्या है, वही कह ना आप, वही आदमी, वही चेहरा, वही बोलने का अंदाज,
0: और पूरी दुनिया पागल है इस वक्त हमारे ऊपर,
1: समय
0: 34 साल महादेव देखे, बड़ा रगड़ाई भाई लेकर, अब इसको थोड़ा प्रसाद दे दो, समय हो पा, वो सारे मंच मिलने लगे जहां पर हमको कभी श्वेता जी कोई बुलाता नहीं था, सारे बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता मैं पिछले साल, ये साल भी सब बेस्ट एक्टर अवार्ड जीत रहा हूं मैं, इस समय इसलिए मैं सभी मेरे जितने यंग युवाओं से बोलता हूं, खड़े रहो, डरो मत, सुसाइड मत करो, डिप्रेशन में मत जाओ, शराब ड्रग्स में मत पड़ो, इंतजार करो, जो बनना है बनोगे, अभी जिनका प्रारब्ध है उसका समय चल रहा है, उसको बनने दो, मैं 90s में आया था, मेरे साथ के सारे हीरो आए थे, सब आगे चले गए, मैं पीछे रह गया था, तो आई वॉज वेटिंग कि एक दिन मेरा भी सूर्योदय होगा, एक दिन माई टाइम विल कम, एंड दैट डे विल माई टाइम कम, बट माई टाइम विल कम आफ्टर 34 years, आई वॉज नॉट अवेयर, बट येस आई वेटेड पेशेंटली, आई वेटेड, एंड महादेव की कृपा, इसीलिए कहते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
1: अच्छा, मैं कुछ नेताओं के नाम लेना चाहती हूँ जिस पर मैं चाहती हूँ कि आप एक शब्द, और उसके बाद आगे आप चाहें तो उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर एक शब्द में बताएं पहले।
0: अरे कहाँ फंसा रहे हैं आप, हम अभी तुरंत वायरल हो जाएंगे 15 मिनट में
1: 15 मिनट शायद ज्यादा समय बोल रहा
0: हूँ, अभी तुरंत हो जाएंगे।
1: अच्छा, पहला तो आसान है, योगी आदित्यनाथ।
0: निडर लीडर,
1: ये उनकी सबसे बड़ी ताकत लगती है आपको?
0: निडर होना जरूरी है, भय आपको खत्म करता है, हमार का हुई बोलब तक काज हुई, अरे बर्बाद हो जाए, खोने का डर नहीं, कुछ खोने का डर नहीं, तब आप ऐसे बनते, संत हैं वो, पीठाधीश्वर हैं, निस्वार्थ हैं, तब वो ऐसे हैं।
1: मतलब कभी सेटबैक भी होता है तो भी वैसे ही रहते हैं,
0: बिकॉज अध्यात्म की शक्ति है ना, उनको पता है ना, गोरक्षनाथ की कृपा है उन पर, उनके ऊपर शक्ति, उनको पता है, उन पर कृपा है कि जिसने वो देख लिया ना, वहां इंसान दो पैर वालों को देखते रहोगे तो डरे रहोगे, वहां पा लिए तो फिर नीचे का भय खत्म हो जाता है।
1: अगला नाम नरेंद्र मोदी।
0: निस्वार्थ संत, दूरदृष्टा, बहुत दूर देखते हैं, 50 साल बाद का भारत बन रहा है, याद रखिएगा आप मेरी जुबान ऑन रिकॉर्ड, 50 साल बाद का भारत की तैयारी है ये, 50 साल बाद, उतना दूर देखते हैं, चूंकि मैं उनके अंडर काम करता हूं, यहां महाराज जी के साथ रहता हूं गोरखपुर में, फिर 20 तारीख से वहां प्रधानमंत्री जी के साथ, तो मैं बड़े और कलाकार हूं तो बड़े बारीकी से पढ़ता हूं, मेरा काम है फेस रीडिंग करना, माइंड रीडिंग करना।
1: दोनों में से सुझाव कौन सुनता है, सुझाव देते होंगे ना आप, मतलब सबसे
0: हम
1: नहीं देते।
0: प्रधानमंत्री जी एक दिन हमको बुलाए 9 मिनट कि मीटिंग में 8 मिनट हम बोलते रहे, 1 मिनट उन्होंने बोला। उन्होंने मुझसे पूछा, सुने कितने अच्छे लिसनर हैं, मुझसे सोचिए, मैं तो एक धूल भी नहीं उनके सामने। ये है प्रधान। मैं अपनी बात, मुझे सिनेमा इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे, सब लोगों के बारे में पूछ रहे थे कि कैसे हैं, क्या विचारधारा है, क्या सोच है उनकी। 8 मिनट में बोलता रहा, 1 मिनट उन्होंने सिर्फ बोला। ये प्रधानमंत्री।
1: अच्छा, अगला नाम अखिलेश यादव।
0: पांडे जी बैठे यहां, प्रणाम पांडे जी, हर हर महादेव। अखिलेश यादव जी
1: साथी भी रहे हैं पहले आपके?
0: नहीं, हमारे
1: मित्र,
0: हमारे मित्र हैं, हमारे पार्लियामेंट के साथी हैं और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। यह कब कि इनका टाइम कब आई अब वो तो भगवान है जनिया, लेकिन ई 27 में तो टाइम ना ही आई।
1: राहुल गांधी।
0: लापता लेडीज हम फिल्म किए थे तो लापता युवराज हैं, अब कहाँ है पूरा देश उनको खोज रहा है। सदन में देखिए, आए आप आए तो शायद यूरोप का या जहां भी हैं भगवान जाने, इंतजार रहेगा उनका।
1: आप को चुनने के लिए जब कहा जाए, हालांकि मुश्किल चॉइस है, मुझे लगता है इन दोनों जगहों में कहां पर क्या आपके लिए रहता है, फिल्म का सेट और देश की संसद?
0: दोनों चाहिए। फिल्म का सेट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, मेरा घर चलता है, मेरे खर्चे बहुत हैं, मेरा परिवार बड़ा है, खर्चीला आदमी हूं मैं, शौकीन हूं कपड़ों का, चीजों का, क्योंकि सुपरस्टार भगवान देश ने बनाया, तो मेहनत करता हूं तुरंत, लेकिन फिर मैं ज्यादा दिन नहीं दे पाता, ज्यादा फिल्में नहीं कर पाता, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत समय ले लेता है। महाराज जी हर 15 दिन में उनका दौरा रहता है, हर वीकेंड में हमको वहां जाना, वहां पे भी रहते हैं हम, गोरखपुर में घर है हमारा तो हम गोरखपुर रहते हैं। सो बट ऑक्सीजन से ना, चूंकि कलाकार में शुद्ध रूप से मुझे चुना गया, लोग भोजपुरिया समाज मानता है हमको, सुपरस्टार बनाया, वो मुझे देखना चाहते हैं पर्दे पर, और मैं वहां यहाँ निस्वार्थ में काम करना चाहता हूँ। मैं राजनीति में महादेव से यही मनाता हूँ, कोई दाग ना लगे हम पे। हम राजनीति में कोई पैसा, कोई लोभ में नहीं आए, हमको पावर नाम सब भगवान दिए थे। मैं जब गरीब था, मेरी कोई मदद नहीं करता था, वही करने मैं यहाँ आया हूँ कि किसी की जान बचा लूँ, किसी को एक फोन करूँ। मैं ट्रेन की टिकट खुद बुक करता हूँ, लोगों का हमार टिकटिया बुक कर ला बाबू, हम करीला सब काम करता हूँ, कोई शर्म नहीं हम, कोई हमार गाड़ी रोक देला गांव में, हम रुक जाइला, कोई शर्म नहीं, कोई ईगो नहीं, भाई नो प्रॉब्लम, सांसद हूं तुम्हारा, भैया हो हमार नाली है, भैया हो हमारे यार, भैया ई भाई, भैया आ यस आई डू इट, कोई ईगो नहीं।
1: आजकल वेब सीरीज का जमाना है, आपका मामला लीगल है आया, फिर मामला लीगल है का पार्ट 2 आया, तो 2 पार्ट तो योगी जी के भी सीरीज के हो गए हैं, स्टोरी लाइन अलग होती है हर बार, तो 2 बार की तो वो स्टोरी लाइन रही है जो हमने देखी है, वेब सीरीज का तीसरा पार्ट
0: बहुत बुलंद होगा। ये तीसरे पार्ट के बाद उत्तर प्रदेश बहुत ऊंचाई पर जाएगा, बहुत जरूरी है ये कवर अप करने में, रिपेयरिंग करने में, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत खाइयां थी, बहुत जर्जर था सब कुछ, बहुत। अब ये थर्ड जो टर्म आएगा उसके बाद महादेव की क्रिया, ये उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी छलांग लगाएगा, ये $1 trillion को टच करेगा पूरे देश। गोरखपुर में 1 लाख करोड़ का काम हुआ है 8 साल में, केंद्र और राज्य के आशीर्वाद से 1 लाख करोड़ का निवेश हुआ, सब मिला के 1 लाख करोड़। सोचिए गोरखपुर एक जिले में सारे लोगों की नजर, पूरे देश के बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, दे वॉन्ट टू कम एंड इन्वेस्ट इन उत्तर प्रदेश बिकॉज दे फील वी आर सेफ, वी गेट चीप लेबर, वी गॉट फ्यूचर, वी हैव अ बिग लैंड, 1 window clearance. देर इज नो प्रॉब्लम, नो बडी इज गोइंग टू ब्लैकमेल अस, नो बडी इज गोइंग टू टॉर्चर अस, लेट्स गो इन्वेस्ट इन उत्तर प्रदेश एंड ग्रो। और उत्तर प्रदेश इज द फ्यूचर बिकॉज इसी के पास इतनी फर्टाइल लैंड, इतनी बड़ी जमीन है. इस वक्त एम्प्टी लैंड उत्तर प्रदेश के पास ही है पूरे भारत में. उत्तर प्रदेश इज द फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री.
1: पर कहीं पर उस व्यवस्था को नीचे के स्तर पर भी टाइट करने की आवश्यकता है. हमने लखनऊ में ही वो अग्निकांड देखा रवि किशन जी, और उसमें अगर एक चमकते उत्तर प्रदेश की बात आप करते हैं तो उसका धुआं भी उसको धूमिल करता है.
0: यस, ये प्रशासन को बहुत टाइट रहना बहुत जरूरी है, बारीकियां रखनी है, बट जनमानस का भी, जनमानस की भी जिम्मेदारी बहुत. यूरोप वगैरह बहुत छोटी छोटी आबादियों के देश को हम लोग देखते हैं और कंपेयर करते हैं, कोई 250 साल पुराना इतिहास है. भारत तो अभी 76 साल भी बहुत छोटा है, अभी तो अंगड़ाई ले रहा है, अभी 14 के बाद तो अभी टेक ऑफ लेने की. लेकिन जनमानस का भी उतना दायित्व तो बनता है कि देखें, लोग भी अपने आप को चेक रिचेक करें, होटल हैं, हॉस्टल हैं, जो भी है व्यवस्थाएं हैं, अपने हर एवरी ईयर चेकिंग करें, जो भी मॉनिटरिंग करें, पब चला रहे हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो.

0: एक गलती पे माफी ना हो, जुर्माना काफी हो। माननीय कोर्ट से भी निवेदन रहेगा कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कठोर इनको सजा मिले, जो भी इसके जुर्म में लापरवाही में जो भी पाया जाता।
1: 2024 को लेकर बार बार आप लोग कहते हैं कि उस समय तो नैरेटिव फैला दिया गया था, इस वजह से जो भी स्थिति रही वो रही। इस बार आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों पर जनता ने 2024 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को चुना, वो मुद्दों को आप लोगों ने एड्रेस किया है?
0: देखिए, संविधान का झूठ तो राहुल जी भी वो लेके आते थे, संविधान बदल जाएगा ये शब्द कभी नहीं थे प्रधानमंत्री मोदी जी, कभी नहीं। सबसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को सबसे ज्यादा सम्मान देने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी, संविधान के साथ चलने वाले, वो उन्हीं पर बिलीव करते हैं, उसको वो बोलेंगे कि इसको बदलेंगे, ये होगा, ये सब एक बहुत ही वेल प्लान्ड षड्यंत्र था जिसको लोगों ने, और थोड़ा हम लोगों से गलती होगी कि हम लोग भांप नहीं पाए, शायद मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी के लिए राय नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भी रहा होगा। वेल अलर्ट यू हैव टू दी, सपा की तैयारी रही हो, लोग गांव गांव घूमते रहे, साइलेंटली लोगों ने काम किया और पता भनक नहीं लगी।
1: इस बार पूरा भनक है आप लोगों को, कहां क्या कितना काम करना है
0: भाई। 24 का बहुत बड़ा झटका था, वो बहुत बड़ा झटका था, मतलब मैं जीता गोरखपुर से, लेकिन वो जीत का एहसास ही नहीं हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट अच्छा नहीं था, वो शॉकिंग था। ऑफ कोर्स यस, वो आंख खोलने वाला था कि नहीं, आप भाजपा भले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आपको झटका लग सकता है अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, अगर आप वेल अलर्ट नहीं हो, अगर आप जमीन पे धरातल पे मूवमेंट को वॉच नहीं कर रहे हो, एहसास नहीं कर रहे हो कि माहौल क्या हो रहा है, आपको देखते रहना, आप किसी झांसे में ना रहें, ये तो बड़ा बारीकी से यू हैव टू, ये चुनाव है भाई, युद्ध की तरह होता है।
1: अब सब बम बम बा,
0: हर हर महादेव।
1: क्या होगा अगले साल 27 का नतीजा?
0: 17 से बड़ा चुनाव होगा, 17 से बड़ा रिजल्ट आएगा।
1: नारा नहीं देना चाहते हैं आप, 24 वाली गलती हो जाएगी?
0: नहीं, हम वो नारा नहीं दिए थे।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बड़ा अच्छा लगा श्वेता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
4: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
2: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
8: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
7: ओ अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था।
9: वावा, वावा।
7: सेबी और NSE का कहना है किसी भी वीडियो में

0: पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
1: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
2: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
3: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
3: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
4: You're listening to CNBC.
5: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
6: Keep it on smooth jazz.
7: This is Roots Reggae.
8: Exclusively on TuneIn.
9: This is Classic Hip Hop.
10: Exclusively on TuneIn.
3: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
11: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
12: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
13: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
14: सोच बदलो और बैंक भी।
15: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
16: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
17: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
15: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
18: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
19: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
15: YouTube पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत। अब देखिए आज तक वर्टिकल।

0: हॉर्मुज के समुद्र में आग लगी हुई है। हॉर्मुज में लगातार धमाके हो रहे हैं। दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, लेकिन अभी अमेरिका और ईरान की अदावत में यहां बारूद की बारिश हो रही है। अमेरिका ईरान के सामरिक ठिकानों को तबाह करने में जुटा है, तो ईरान भी कई जहाजों को मिसाइलों से टारगेट कर रहा है। हॉर्मुज अब सिर्फ तेल सप्लाई का रास्ता नहीं, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच ताकत की नई जंग का मैदान बन चुका है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

आस्था की बात कर रहे हैं। सैफई खानदान ने राज्य को डुबोया, हमने टॉप थ्री में पहुंचाया माफिया से समाजवादी पार्टी की सहानुभूति। योगी ने दी उत्तर प्रदेश को नई पहचान, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर देश को यकीन, पंचायत आज तक में बोले प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी। रवि किशन ने कहा योगी निडर, मोदी निस्वार्थ और दूरदृष्टा। पंजाब में चन्नी संघर्ष पर आज दूसरे दिन भी मंथन कर रहे कांग्रेस के बड़े नेता, राहुल और खड़गे ले सकते हैं बड़ा फैसला। प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा नेतृत्व बदलना गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है।

कहा यह कब्जे वाला इलाका है। रावलकोट में हजारों की भीड़ ने तालियों से किया बयान। होर्मुज में टैक्स वसूली के फैसले से 24 घंटे में पलटे ट्रंप, लेकिन जारी है ईरान पर हमले। कहा अगले दो दिन बहुत भारी, कोई पावर प्लांट कोई पुल नहीं बचेगा। तेहरान ने भी कुवैत, बहरीन, जॉर्डन पर किया हमला।

0: आस्था को नहीं नकारते थे, हम लोग आस्थावान वाले हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है जो जो आस्था के रहते हुए भी जो सनातन धर्म को मानते नहीं थे, जो सनातन को ख़त्म करने के लिए पैदा हुए थे, वही आज सनातन का झंडा बरदार बने घूम रहे हैं। आप पूछो कि वो सनातनी है क्या, वो तो नाथ संप्रदाय के हैं। और हम लोगों पर आरोप लगाना, ये हम उसका जवाब यहाँ नहीं देंगे, हमने बहुत जवाब दे दिया है। जहाँ तक अयोध्या के मामले में, चोरी के मामले की बात है, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि ये पहले से इन लोगों की आदत न होती ये इस तरह की, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए, सारे चोरों को जेल भेज दिया, सारे पॉकेट मारों को जेल भेज दिया, तो वहाँ कहाँ पैदा हो गए, अयोध्या में कैसे पैदा हो गए? ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी, उनके पास एलआई था, उनके पास सीक्रेट सर्विसेज थी, उनको सारी सूचनाएं थी, तो पहले से जानकारी करके उसे रोकने का प्रयास माननीय अखिलेश मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री जी ने तो किया नहीं, केवल हमारे ऊपर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो हुआ था वो समरसता का सवाल था। एक दूसरे थे जिन्होंने अपने घर में संत थे, और वो अंसारी साहब के दोस्त थे, और दोनों की दोस्ती थी, उन्होंने अपने यहाँ उनको बुलाया और उनको जो आबतारी कराई, यह सवाल है। वहाँ कहाँ नमाज पढ़ाया, मंदिर गए? अब ये भाजपा निरंतर झूठ बोलने का ठेका ले रही है, रोज झूठ बोल के माहौल क्रिएट करते, लेकिन प्रभु श्री राम इनसे नाराज है।
1: तो आप मानते हैं अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो सच क्या है, और क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी चुनाव में मुद्दा होगा?
0: चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा, हम मुद्दा बनावें या ना बनावें, जो साधारण जनमत है, जो साधारण व्यक्ति है, वो रोज पूछता है बाबू अयोध्या में मंदिर से कैसे चोरी हो गया, ये लोग क्यों चुरा ले गए मामला। वो हमको नहीं चोर बताते हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं बताते हैं, वो उन्हीं को बताते हैं। इसने समाजवादी पार्टी का जनाधार जनता में बढ़ा और इनका जनाधार इस चोरी से कम हुआ है।
1: आप मानते हैं?
0: हाँ मानते हैं।
1: एक सवाल ये भी उन्होंने कहा, और जब वो बात कर रहे थे कि जो विदेश घूम रहे हैं वो यूपी को संभालेंगे कैसे या यूपी को क्या समझेंगे?
0: अब दुर्भाग्य वो विदेश नहीं जा पाए, मेरे जैसा आदमी साधारण घर में पैदा हुआ, पूरे विदेश को घूम लिया, ये विदेश घूमने से विजन मिलता है, दृष्टिकोण मिलता है। अब देखिए 102 108 विदेशों में चलती थी, उसकी नकल हुई और अखिलेश जी ने इंजीनियर भेज के अमेरिका से उसकी जानकारी ली, यहाँ चला दिया। तो विदेश जाने से कुछ ज्ञान भी मिलता है, ऐसा नहीं है जो विदेश घूमता है ये यूपी ने चला, ये यूपी घूम के कहाँ यूपी चला पा रहे हैं।
1: नहीं तो क्या अखिलेश यादव विदेश ज्ञान लेने गए हैं? ज्ञान लेने गए हैं? आपने बोला ज्ञान मिलता है, तो क्या ज्ञान लेने गए?
0: नहीं, मैं थोड़े कहता हूँ कि विद्वान है, संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन हमारे उसमें कहा है वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा खोए, अपनों को शीतल करे दूसरों शीतल होए। ये तो वाणी में हमको चोरे कहते रहते हैं, डकैते कहते रहते हैं, हम लोगों को यही कहते रहते हैं। अब हम कहाँ थे उनका जवाब दे, जनता उनको जवाब दी। 2024 में इनकी आँख खुल गई, अभी ये बोल रहे थे बता रहा था, ये पाए 41% वोट और हमारा गठबंधन पाया 43% वोट, तो 24 में इनकी ताकत से 2% हमारी ताकत बढ़ी थी, हम 2% बढ़े थे इनसे, इसलिए हो सकता है वो चिढ़े हुए हो, बोलते हो हमको बदनाम करने के लिए बोलते हो।
1: लेकिन 2024 से 2027 जो अगले साल चुनाव होगा, यूपी बदल गया है, आप नहीं मानते?
0: हमने हम बाप को बता दें रूप बदला है, हमारा ग्राफ बढ़ा है, भगवान प्रभु श्री राम इनसे नाराज हैं, उन्होंने पहले शुरू में ही इनको समझा दिया, जब प्रभु श्री राम की सीट हमारे पार्टी के हक में चले आई, जिसको लेकर ये दुनिया भर में घूमते रहते थे, कहते रहते थे अयोध्या, अयोध्या के बल पर सरकार बनाने की कोशिश करते थे, उस कोशिश को श्री राम ने नकार दिया और हमारे पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को वहां से जिता दिया। अभी इनको एहसास नहीं हुआ इनका ग्राफ कहाँ जा रहा है।
1: लेकिन उसके बाद मिल्कीपुर उपचुनाव भी हुआ।
0: मिल्कीपुर उपचुनाव अगर देखी होती तो चुनाव नहीं था, वो डाका था। और जो सीओ वहां डकैती डाल रहा था उसको फिर इसी मंदिर पर लगाए थे, तो पता लगाओ कैसे चोरी हुई, क्या हुई चोरी। वहां मैं गया था, वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, पुलिस वाले रास्ते में खड़े हो जाते थे, उधर की मैं गया था। इलेक्शन जो वहां से ऑब्जर्वर थे उनसे मैं कहता था ऐसा हो रहा है, वो कहते थे ठीक है देख लें, हुआ कुछ नहीं, ये चुनाव फिर से करा लें, अपना इस्तीफा दिला के फिर से करा लें, अगर मिल्कीपुर जीत जाए तो हम बताएं।
1: नहीं तो लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि उपचुनाव फेयर नहीं था तो आपको लगता है 2027 का चुनाव फेयर हो?
0: अरे फेयर होने नहीं देंगे, ये तो बंगाल में किए,
1: अनफेयर होने नहीं देंगे।
0: सुनिए, ये होने नहीं देंगे या ये चाहते होंगे, लेकिन हम इतना तैयार हैं कि हम फेयर चुनाव कराने के लिए इनको बाध्य करेंगे और हम अपने वोटरों को पोलिंग तक पहुंचाकर अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे।
1: क्योंकि आपने योगी जी की वाणी पर एक कहा, आपके जो सहयोगी दल हैं थे पहले, ओम प्रकाश राजभर का भी एक बयान आया अखिलेश जी को बर्थडे विश करते करते, उन्होंने एसीपीसी की राजनीति की बात की।
0: आपकी बात समझ गया, मैं किसी पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक हमारे यहाँ थे तब तक हमारी वाणी संजीदगी थी, वहां गए बाबा की वाणी सीख लिए, मैं क्या जानू। और कुछ पूछना? पूछो।
1: नहीं, किसकी वाणी की बात की है आपने? हाँ? आपने बोला कि डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, नाम भी नहीं ले रहे।
0: अरे तो नाम आपने एक आदमी का नाम लिया, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, वो मेरे पार्टी में थे तब तक संजीदगी से बोलते थे, क्योंकि तब अखिलेश का प्रभाव था, जब वहां चले गए तो योगी जी का प्रभाव आ गया, तो योगी जी जैसे बोलते वैसे वो बोल रहे हैं।
1: तो आपके एक और सहयोगी हैं अभी। हाँ? वो सहयोगी में है, सहयोगी भी हैं इमरान मसूद, उनकी भाषा के बारे में क्या कहेंगे?
0: देखिए, इमरान मसूद कोई ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा
1: राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं जो 2024 का इंडिया ब्लॉक का रिजल्ट रहा, उसकी क्रेडिट उनको दे रहे हैं।
0: 2024 में इंडिया गठबंधन था, इंडिया गठबंधन के दो नेता थे, एक माननीय अखिलेश जी और दूसरे थे माननीय राहुल गांधी, तीन दोनों को नेतृत्व में वोट पड़ा, लेकिन हमें मिला वोट 39% है, वो 34% और इनको भी मिला, दोनों मिलाकर हम 43 हो गए, 36% हमको मिला, तो ये 36% में उनका भी योगदान है और उनके परसेंट में हमारा भी योगदान, हमारे नेता का, उसको अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कंबाइंड वोट था, वो किसी व्यक्ति का नहीं था।
1: तो अगर ये कंबाइंड वोट था तो आप ये चाहेंगे कि 2027 में भी गठबंधन हो?
0: हाँ, हम लोग चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि 2027 में गठबंधन हो, गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ा जाए।
1: लेकिन इस गठबंधन में जिस तरह के बयान आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं की कि वो ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं, क्या कांग्रेस को आप सोचेंगे कि उनको उनकी भूमिका बढ़े?
0: देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कैसी सीट किसको मिलेगी, लेकिन गठबंधन होगा मैं ये कहता हूँ, और ये गठबंधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के बड़े नेता राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के बीच वार्ता से तय होगा।
1: छोटी पार्टियां जो आपको छोड़ के जा चुकी हैं, बहुत सारी छोटी पार्टियां जो आपको छोड़ करके चली गई उधर,
0: छोटी पार्टियां चली गई क्योंकि उनको आशा लगा यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, अब सरकार नहीं है, माल नहीं है, जहाँ माल है वहाँ गए।
1: तो आपने मान नहीं दिया?
0: नहीं, हमने, हमारे पास माल था ही नहीं, देते कहाँ, जहाँ माल ला रहा है वहीं गए।
1: मान की बात कर रहे हैं।
0: क्या
1: मान? इज्जत।
0: किसकी मान, समझाओ हमको।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल अब ये है कि क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण फेस हैं और एक ब्राह्मण आउटरीच कर रही है समाजवादी पार्टी, क्या आज भी ब्राह्मण समाज में वैसा नंबर है कि आप यूपी की राजनीति को पलट सकते हैं?
0: देखिए, आप समझ लीजिए, ब्राह्मण हमेशा समाजवादी रहा है। ब्राह्मण दूसरे के लिए यज्ञ करता है, ब्राह्मण दूसरे के लिए पूजा करता है। जो कोई आदमी गांव में बीमार होता है तो उसके लिए पूजा जज उसका जो पुरोहित होता है ब्राह्मण होता है वो करता है। गरीब से गरीब आदमी की भला के लिए ब्राह्मण बात करता है। इसलिए ब्राह्मण पूर्ण रूप से समाजवादी है। और ब्राह्मण चूंकि इस हम ये नहीं कहते, लेकिन ब्राह्मण जिस अभिलाषा से और जिस आकांक्षा से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था उसका परिणाम उसे नहीं मिला। आज वो निराश है, इसलिए उससे हम मिलते हैं। वो लोग समाजवादी पार्टी की तरफ उनका प्रभाव बढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि मैं नहीं कहता कितने पैमाने पर, लेकिन ब्राह्मण भाजपा को अब की छोड़ेगा। कितनी हत्याएं हुई ब्राह्मणों की कभी पूछा गया? कितने लोग जेल में डाले गए? मैंने असेंबली में बताया इन लोगों को क्यों निरपराध मारा जाता, क्यों ब्राह्मण और यादव इन्हीं और मुसलमान पर ही कार्रवाई होती है। यही सब माफिया हैं, बड़े माफिया घूम रहे हैं, वो स्वजातीय माफिया घूम रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई आज तक? कार्रवाई हुई? मैं नाम लेना उचित नहीं समझता।
1: नहीं, लेकिन ब्राह्मण समाज सपा के साथ क्यों जुड़ेगा?
0: इसलिए जुड़ेगा कि सपा समाजवादी है और ब्राह्मण की विचारधारा समाजवादी है। हम भी समाजवादी ढंग से काम करते हैं, ब्राह्मण भी समाजवादी ढंग से काम करता है, इसलिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मण के साथ जुटेगी।
1: तो वो हिंदुत्व का झंडा नहीं उठाएंगे?
0: हाँ,
1: वो हिंदुत्व के चादर में नहीं।
0: देखिए, हिंदुत्व का झंडा अलग है, पार्टी अलग है। देखिए, एक अलग कर लो, ब्राह्मण जब धर्म की बात करता है तो दूसरी बात होती है, लेकिन जब वो राजनीति में आता है तो दूसरी बात। आप तो ब्राह्मण के इस राजनीति को धर्म और राजनीति का घालमेल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, क्योंकि अयोध्या धर्म की बात है। अयोध्या ने उन्होंने अपना मुक्ति का एक बल मान लिया, हाथ मान लिया, बाहुबल मान लिया, लेकिन अयोध्या सबके लिए है, हमारे लिए भी है। हर आदमी अयोध्या में जाता है। जो भाजपा को वोट नहीं देता वो भी अयोध्या में जाता है, जो भाजपा को वोट देता है वो भी अयोध्या में जाता है। तो क्या माना जाए अयोध्या केवल भाजपा का है? इसलिए धर्म की जहाँ बात होती है वो अलग है, राजनीति अलग है। धर्म और राजनीति को अलग करके देखा जाना चाहिए।
1: अगर धर्म और राजनीति अलग की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है इसी, क्योंकि आप ये चाहते थे कि ये दो अलग अलग चश्मे से देखा जाए, लेकिन वो नहीं हुआ और 2017, 2022 दोनों चुनाव आप हारे।
0: देखिए, ऐसा है, हम क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते, हमारे चाहने पर तो भर जाएगा। ये भाजपा या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या मोदी जी नहीं सोचेंगे, वो अपने विचारधारा से अपनी ताकत के बल पर करेंगे और हम अपने विचारधारा अपनी शक्ति के बल पर अपना हम करेंगे। हमारी विचारधारा समाजवादी है। हम गरीब के उत्थान के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, बेरोजगारों को रोजी देने के लिए, अशिक्षितों को शिक्षित करने के लिए हम प्रयास करेंगे, प्रयास कर रहे हैं, करेंगे, किया भी है। इसलिए हमारा उनसे कोई इस मामले में मुकाबला नहीं।
1: इलेक्शन विनिंग मशीन बोला जाता है भाजपा को, इलेक्शन विनिंग मशीन, क्योंकि जो उनकी व्यवस्था है बहुत स्ट्रांग है और उसके साथ साथ एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री या पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। आपके पास क्या है कॉम्बिनेशन, क्या फॉर्मूला है?
0: देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय योगी, जो योगी जी से ज्यादा लोकप्रिय है, यही कर दो, एक मैदान में डुबकी बजा दो कि आज अखिलेश की मीटिंग होगी और एक बजा दो बाबा की मीटिंग होगी, देखो भीड़ कहाँ होती है, देखो, देख लो, आपको न विश्वास हो, रास्ते में जाते देख लो, बाबा जिस रास्ते जाते हैं कितनी भीड़ उन्हें घेरती है। माननीय अखिलेश जी को, अखिलेश जी यहाँ पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पीड़ित परिवार के दिल में बैठ गए हैं, वो उनको लेकर इस समाज में आगे बढ़ेंगे और 27 में हम इनको हटा के अलग कर देंगे।
1: आप पीडीए की बात कर रहे हैं?
0: हाँ।
1: पीडीएस के साथ आपको इस बार उम्मीद है कि ब्राह्मण भी जुड़ जाएंगे?
0: ये देखिए, पीडीए, फिर मैंने आपसे कहा ब्राह्मण जो है सबके लिए काम करता है, वो एक पक्ष के लिए नहीं करता। मैंने आपने बताया ना, समाज में किसी वर्ग का व्यक्ति बीमार होता है तो उसका पुरोहित उसके लिए जाता है, पूजा पाठ करता है और सब काम करता है। इसलिए ब्राह्मण और पीडीए में कोई अंतर नहीं, ब्राह्मण पीडीए के साथ काम करने के लिए खुश रहेंगे।
1: माता प्रसाद जी, क्योंकि आपने चर्चा की बंगाल के चुनाव की भी, क्योंकि बंगाल में जो परिणाम हुआ वो ऑपोजिशन को डिमोरलाइज करता है, आप ये मानते हैं
0: क्या?
1: डिमोरलाइज करता है थोड़ा?
0: देखिए, ये बंगाल ये में जो चुनाव हुए हैं फेयर चुनाव नहीं हुए हैं, हम नहीं कह सकते क्योंकि मैं तो बंगाल गया नहीं था, मैंने देखा नहीं, लेकिन जो सुना यही जानता हूँ, बंगाल में फेयर चुनाव नहीं हुआ। बंगाल में जिस तरह से चुनाव कराया गया है वो जो अखबारों में आता है वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से नहीं हुआ है। क्योंकि जिले में जहाँ जिस जिले का वोटर लिस्ट है वहाँ के अधिकारी नहीं लगाए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी पोलिंग बूथों पर लगाए गए, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स लगाई गई, वहाँ लोकल फोर्स नहीं लगाई गई, इसलिए बाहरी फोर्स से दबाव डालकर वहाँ बड़े पैमाने पर बेईमानी कराई गई।
1: लेकिन फ्री इलेक्शन कराने के लिए ज़रूरी था, पहले जिस तरह की पोलिटिकल पोल वायलेंस दिखता था वो इस बार नहीं दिखा, कोई वायलेंस नहीं हुआ चुनाव में।
0: अच्छा, तो वहाँ वायलेंस नहीं हुआ, कहाँ वायलेंस होता था
1: जी?
0: वायलेंस जो करने का, वायलेंस तो यही लोग करते थे, तो ये चुनाव जीतने के लिए गए थे, वायलेंस करने के लिए गए थे।
1: लेकिन क्योंकि आप टीएमसी की बात कर रहे हैं, चुनाव के परिणाम के बाद पूरी टीएमसी टूट गई।
0: देखिए, मैं बंगाल नहीं गया था इसलिए बंगाल, वो राय साहब आए बंगाल के बारे में आपको बताएंगे,
1: लेकिन
0: मैं बंगाल नहीं गया था।
1: चलिए, नहीं, मैं बात कर रही हूँ ऑपोजिशन की, उसके संदर्भ में ये बात उठ रही है कि क्या, क्योंकि जैसे ही टीएमसी टूटी उसी वक्त ये भी चर्चा हुई कि समाजवादी पार्टी भी टूट रही है, क्या आपका संगठन मजबूत है, आपके सांसद आपके साथ?
0: आपको लग नहीं रहा हमारा संगठन मजबूत है? दो ही नेता, तो तीन नेता मजबूत है जो नहीं टूटे, एक तो राहुल गांधी, दूसरे बिहार वाले हमारे लालू जी, तीसरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तीनों नहीं टूटे और तो सबको तोड़ने कोशिश कर ही रहे हैं।
1: तो वो लोग क्यों टूटे आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इतने साल से आप राजनीति देखते हैं, अगर कोई पार्टी टूट गई जैसे ममता बनर्जी की पार्टी?
0: नहीं, हमारी पार्टी टूटने वाली नहीं है, प्रयास मत करिए, ये चाहे जितना जान लड़ा दें टूटेगा नहीं, भाजपा के लोग जरूर टूटने वाले हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं।
1: अभी मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, मॉनसून सत्र से पहले ये भी फिर चर्चा हो रही है कि कौन सी पार्टी के कुछ लोग इनको सपोर्ट करेंगे, डीलिमिटेशन बिल आने वाला है।
0: ऐसा है, सेंटर के बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, और सेंटर के बारे में हमारी पार्टी से कोई टूटे एमपी क्या? हमारे गठबंधन का कोई एक भी एमपी टूटा हो तो बताओ, हमारा गठबंधन का एमपी नहीं टूटा। और अगर इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के हम लोग तैयार हो जाएं तो भाजपा के आधे लोग हमारे टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको एहसास है उनका जनाधार उत्तर प्रदेश से कम हुआ है।
1: तो ये कौन लोग हैं जो आपके साथ जुड़ने के लिए?
0: अरे, आपको बता दें तो उनके सांसद शुरू हो जाएगी।
1: चलिए,
0: आपको बताने के लिए नहीं है।
1: नहीं, क्योंकि आप विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त आरजेडी ने अंडर एस्टिमेट किया एमआईएम को, असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी को। क्या असादुद्दीन ओवैसी, अगर यहाँ पर उन्होंने इंडिकेट किया है जिस तरह का, क्या सपा उनको फेवरेबली देख सकती है?
0: देखिए, ये
1: गठबंधन
0: कुछ
1: एक फॉर्मूला बने उनके साथ,
0: पार्टी को कौन जगह देंगे क्या नहीं, ये हमारा मतलब नहीं है। ये हमारे गठबंधन के नेता किससे समझौता करेंगे किससे नहीं करेंगे ये उनकी बात है, लेकिन हम जानते हैं यहाँ हमारा पीडीए माने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए माने पीड़ित, जो भी पीड़ित, चाहे वो ब्राह्मण पीड़ित हो चाहे वो ठाकुर पीड़ित हो, सब हमारे पीडीए का अंग है, ये हमारे साथ खड़ा है, इसमें से कोई टूटने वाला नहीं।
1: आप असादुद्दीन ओवैसी के जो बयान आए उनको कैसे देखते हैं?
0: देखिए ओवैसी के बयान के बारे में क्या पूछते हैं, वो तो घूम घूम के कर ही रहे हैं, पता नहीं यहाँ बाबा के यहाँ दावत खाए कि नहीं खाए मैं नहीं जानता, लेकिन वो घूम घूम के यही कर रहे हैं हर जगह, वो बजाय इसके कि केंद्र की भाजपा सरकार को हटाने का प्रयास करें, वो हम ही लोगों को हटाने का प्रयास करते हैं।
1: आपको हटाने का प्रयास कर रहे हैं?
0: हमको कहाँ हटा पाएंगे, उत्तर प्रदेश से नहीं हटा पाए, उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत गठबंधन है। और कुछ पूछोगे?
1: बस दो सवाल और। हाँ। और ये सवाल ये है कि आपकी तैयारी के बारे में बताइए।
0: हमारी तैयारी पूरी कुल बता दें वो भेद लग जाए, हमारी तैयारी पूरी है, गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सरकार को उखाड़ फेंकेगा।
1: नहीं लेकिन ऑल्टरनेटिव विजन क्या है?
0: हाँ?
1: एक तरफ योगी आदित्यनाथ बोलेंगे कि इतनी सारी हमने सड़कें बनाई, हाईवेज बनाया, लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर मजबूती से खड़े रहे, आप लोग क्या ऑफर कर रहे हैं?
0: अब हम बता रहे हैं, सड़क तो बनाया है बुंदेलखंड का, अभी एक्सप्रेसवे जो उजड़ गया अभी, और आजमगढ़ जो एक्सप्रेस पूर्वांचल बना है उस पर जाओ बेटी तो दूसरे दिन उठ नहीं पाओगी, अगर कार से जाओगी स्पीड से ऐसे ऐसे उछलता चलता। सड़कें बनाई है जरूर मैं उसका, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो क्वालिटी लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस वे की है वो नहीं है, उनकी क्वालिटी में कमी है। आगरा एक्सप्रेस वे आप कार से जाओ तो चाय पीते जा सकते हो, यहाँ तो बदन बचाना पड़ता।
1: तो आपने कोशिश की क्या जाकर के उस पर?
0: नहीं देखिए, सड़क बनाने में जो गुणवत्ता होनी चाहिए गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उतनी गुणवत्ता की सड़कें नहीं बन पाई।
1: लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर
0: कानून व्यवस्था आपको अभी लगता है ठीक है? ये लिस्ट लाएं दिखा दें, खाली गोरखपुर का बता दें क्या खराब है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी आते हैं उस दिन घटनाएं होती हैं, उस दिन भी लूट होती है, उस दिन भी छीना झपटी होती है, तो कहाँ कानून व्यवस्था, कैसी कानून व्यवस्था? आप CRB का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें देखेंगे पहले की अपेक्षा ये अपराध बढ़ रहे हैं। आप पहले
1: योगी आदित्यनाथ अभी बोल के गए हैं कि समाजवादी पार्टी की सहानुभूति माफियाओं के साथ रहती थी।
0: देखिए हम कानून माफियाओं और कानून व्यवस्था को नहीं तोड़ते थे, अब हम नाम नहीं लेना चाहते, हमारे उस सम्मानित मुख्यमंत्री हैं मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, मेरे पड़ोसी भी हैं, लेकिन पूछो आधे माफिया कहाँ हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते हो? नाम नहीं लेना चाहता, सोच लो कहाँ कहाँ माफिया, इसे चलो इसी रास्ते से चले जाओ वाराणसी से, तो आधे माफिया तो उसी में, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? मैंने असेंबली में कहा कि आप क्यों नहीं कार्रवाई करते, आज तक क्यों को कार्रवाई हुई उन पर? बस
1: इसी बात पर माता प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो असली सवाल ही नहीं पूछा पहले कि यहाँ अपराध कितने बढ़े कितने घटे, ये तो हम असेंबली में करेंगे।
1: जवाब दिया है आपने, अभी अपराध की भी बात की या आपने लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे जो जो काम हुआ सबने आपने बात कर लिया।
0: चलो
1: चलिए, थैंक यू,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, तो आपके पिताजी मेरे मित्र हैं साथी रहे हैं, तुम मेरे बेटी के समान हो, तुम्हें मैं धन्यवाद देता हूँ, जो कुछ पूछा मैंने आपको बताया।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
4: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
5: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
4: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
6: You're listening to MSNBC.
4: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach
3: Durable Pipes Fittings and Tanks A Complete Range of Sanitary Solutions
7: Chogan Perfumes The French Edition for Him and Her

उत्तर प्रदेश आज तक में बोले योगी राम को नकारने वाले आस्था की बात कर रहे। सैफई खानदान ने राज्य को डुबोया, हमने टॉप थ्री में पहुंचाया। माफिया से समाजवादी पार्टी की सहानुभूति। आज तक के मंच पर सांसद रवि किशन ने कहा 2027 में 17 की जीत का रिकॉर्ड टूटेगा। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा ब्राह्मण हमारे साथ, चढ़ावा चोरी बनेगा चुनावी मुद्दा, राहुल अखिलेश साथ हैं। मॉनसून सत्र में बदल सकते हैं सियासी समीकरण। परिसीमन बिल पर सरकार का साथ देगा एनसीपी शरद पवार गुट। सुप्रिया सूले का दावा, उद्धव समेत सभी दलों से हो चुकी है चर्चा, सबका रुख सकारात्मक। पंजाब में चन्नी संकट पर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप का मंथन। फीडबैक के साथ राहुल खड़गे से मिले भूपेश बघेल ने नेतृत्व परिवर्तन को किया खारिज, कहा ये गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं। पीओजेके में पाकिस्तान को खुला चैलेंज, आंदोलनकारी नेता अमान खान शहबाज मुनीर को ललकारा, कहा ये कब्जे वाला इलाका। रावला कोट में हजारों की भीड़ ने किया तालियों से बयान का स्वागत।

0: नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आज तक के मंच पंचायत आज तक से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विद्रोहियों पर जमकर हमले किए। योगी ने कहा कि जब ये सत्ता में थे तो आस्था पर प्रहार करते थे। योगी आदित्यनाथ ने आज तक के मंच पर कहा और उन्होंने कई बड़ी बातें बोली। उन्होंने कहा कि उपद्रव रोकने के लिए कांवड़ यात्रा रोकी गई थी उनके जमाने में। उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले राम शोभा यात्रा को प्रतिबंधित कर देते थे। बड़े दावे किए वहां योगी आदित्यनाथ ने।
1: लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई, वे आज आस्था की बात करते हैं। जिन लोगों ने पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों में नमाज पढ़वा करके पूरे वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास किया, भाई अगर आप सेकुलर थे, एक जगह आप नमाज पढ़वा रहे थे तो किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का भी पाठ करवा देते साथ साथ, दोनों एक साथ होता चलो मान्य हो जाता कि चलो भाई दोनों लोग सहमत हैं। लेकिन ये वन वे चल रहा था, वन वे। वे आज आस्था की बात कर रहे हैं तो देश के उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर रहे थे कि साहब राम और कृष्ण हुए ही नहीं। वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो, उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास की, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है। वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं। उस समय कौन कौन से घोटाले नहीं हुए थे, चाहे वह केंद्र की सरकार उस समय की कांग्रेस की रही हो, चाहे यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकारें।
0: यूपी के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के विदेश दौरे पर भी तंज कसे।
1: समृद्धि तो जैसे लगता है कि इन दो खानदानों की ही, इन्होंने दो खानदानों ने अपने नाम पे पेटेंट करवा दिया है कि समृद्धि लूट का हो चाहे कैसे भी हो, केवल इन दो खानदानों के हिस्से में आना चाहिए, बाकी लोग विपन्न रहे उसमें इनको अच्छा लगता है। मुझे आश्चर्य होता है किस किस प्रकार से ये लोग माहौल खराब करके वो करते हैं, जिन्होंने जमीनी धरातल को नहीं देखा, जिनको फुर्सत नहीं होती जाने की, एक गरीब की पीड़ा को नहीं समझ सकते। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इन दोनों राजकुमारों ने जहां जन्म लिया है तो जन्म से दोनों युवराजों ने चांदी की चम्मच से खाने की आदत रही है, देर से सोकर के उठने की आदत रही है, तो उनको सूर्योदय का आनंद नहीं होगा, उनको तो ये उनकी नींद में खलल डालने जैसा होता है। गर्मी कैसे होती है दोनों को नहीं पता है, बरसात की पीड़ा क्या होती है उनको नहीं पता है, क्योंकि दोनों लोग फीफा कप का आनंद लेने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया गया है, कोई यूएस की यात्रा में अपने टूरिस्ट वीजा में गया है। ये पैसा किसका है, किसके पैसे को लेकर के आप ये फॉरेन की यात्रा कर रहे हैं और यहां आईना दिखा करके समाज को बांटने का पाप करते हैं, जातीय खेमों में बांट करके, जाति को जाति से लड़ा करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके सत्ता हत्याने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन ये जनता है, सब जानती है, आपके सारे करतूतों को जानती है, अब आपको माफ करने वाली नहीं है। और इसीलिए आपके पास आया हूं और मैं आज इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूं 9 वर्षों की कार्यपद्धति भी, जनता जनार्दन के सामने हमारा रिपोर्ट कार्ड भी पूरी पारदर्शिता के साथ जनता जनार्दन के सामने है।
0: और आइए अब रुक करते हैं पंचायत आज तक उत्तर प्रदेश का।
2: पॉइंट खोल दिया गया, अयोध्या के सैकड़ों जमीन, सैकड़ों मंदिर विवादित जितने हो सब दिया जाए चंपत राय को, या आरएसएस को, चाहे विश्व हिंदू परिषद को, या किसी को, या चाहे सपा वाले को। देखिए, अयोध्या कोई पार्टी के नहीं है, किसी को, कोई देश किसी पार्टी में नहीं बिका। पब्लिक पब्लिक बिकता है कर्म पर। कर्म आपके, एक व्यक्ति कर्म करेगा वो पार्टी बदनाम होगा, एक गांव में एक आदमी बद करता है गांव वाले सब बदमाशे हैं। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से वहां पर जमीन खरीद हुआ, जिस प्रकार से झगड़े वाला जमीन भी लिया गया, हमने 2024 में आपके पास कागज पे भेजे हैं, 2020 में हमने एक चिट्ठी लिखा था मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को, वो आपको देखना हो तो देख लीजिएगा, उसमें पूछ लीजिएगा। तो वो चिट्ठी के विषय में कोई जवाब नहीं देता किसी को। आप यहाँ पर डीएम को दरखास्त दे दीजिए, डीएम ले लेगा जरूर, आपके पक्ष में बतिया देगा, दूठो चाय पिला देगा, पकौड़ी खिला देगा, लेकिन वह काम इसलिए नहीं करेगा कि एक आदमी कहते ऊपर से आदेश है, डीएम कहेगा ऊपर से। अरे ऊपर का होता है बिल बताइए, ऊपर कुछ नहीं है। आपको आदमी सेट नहीं किए कि कैसे कैसे चोरी, चोरों नहीं पूरा रहे लोग।
3: मतलब ये शिकायत आप लोग कर रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था।
2: हाँ,
3: आपने पत्र तक लिख दिया, चिट्ठी लिख दी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था।
2: कोई सुना नहीं ना सुनेगा, ये भी बता दे।
3: अभी भी नहीं,
2: अभी जैसे कि गया है, व्यवस्था है, सुनेगा, सब चीज करेगा। सत्यता के विपर्प कोई नहीं आएगा। जैसे कि मंदिर पुजारी व्यवस्था करता है अखाड़ा पर, अखाड़ा निर्मोही अखाड़ा के बहन जी है, निर्वाणी अखाड़ा के है, दिगंबर है, ये सब साधु समाज मिल करके मंदिर के व्यवस्था करते थे। हर मंदिर पर लड़ाई लड़े, पूरा विश्व में ये स्थान धर्म की स्थापना की, मुसलमान से लड़े, चाहे हिंदू से लड़े, चाहे जे विरोध किया उकरे से लड़े। आज उन लोगों का काट करके अलग कर दो, केवल वहां पर एक जमीन खरीदने का अभियान चला दो, ये पार्टी कर नहीं कर रहा है। व्यक्ति वहां व्यक्ति रखा है, व्यक्ति है वो पार्टी से संबंधित है, पार्टी बदनाम है, और इसमें क्या रखा है? कोई हम को किसी के हम बीजेपी के हैं कि हम कांग्रेस के हैं कि हम सपा के हैं? साधु किसी पार्टी के, वो साधु नहीं है।
3: सही बात।
2: हाँ,
3: करपत्री महाराज जी, आरोप लग रहे थे, शिकायत हो रही थी, सब हो रहा था।
2: हाँ।
3: महाराज जी वो माइक ले लीजिए। हाँ, आपको लगता है कि एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द इतना सब कुछ रह गया, वो सुनना ही नहीं चाह रहे थे किसी की?
4: देखिए, चलो मैं तो ये कही
3: माइक।
4: हेलो, देखिए आप तो बहुत पहले से मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। 30 साल हो गया मुझे मात्र 18 करोड़ खाते हुए, जो मैंने संकल्प लिया था कि राम जन्मभूमि में रामला आ जाएंगे तो मैं व्रत तोड़ूंगा। स्वर्णिम इतिहास इसको नहीं कहा जाता श्वेता जी, रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलकती मांग है अब भी, अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्म भूमि है तू, जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई। इन लोगों ने, अगर मुझसे कल किसी पत्रकार ने प्रश्न किया कि राम मंदिर में जितने भी लोग हैं सब सनातनी हैं, तो इन लोगों ने ऐसा काम क्यों किया? हमने कहा राम मंदिर में 1% को छोड़ करके जितने भी लोग ट्रस्ट में हैं, इसमें से कोई व्यक्ति सनातनी नहीं है, सबरल पर्सन आर सीनातनी, सीनातनी, नॉट सनातनी बट यू कैन से सीनातनी। इन सब लोगों ने सीनातनी का काम किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे परम मित्र योगी आदित्यनाथ ने कहा, करपात्री बहुत दिन हो गया आपको 18 करोड़ खाते हुए, मैं खिलाया हूँ आपको, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो मेरे बंधु आप चरणामृत लेकर के प्रतिज्ञा तोड़ दीजिएगा। और जब मैं मंदिर में गया श्वेता कहना चाहिए दिल रो रहा है, तो यही गोविंद गिरी चरणामृत से चम्मच निकाल करके प्रधानमंत्री के मुख में खिला करके जूठा करके चम्मच चरणामृत में डाल दिया। अब बताओ करपात्री किस आधार पर तोड़ेगा बाप? मैं प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूँ जूठे चरणामृत को लेकर के? राजू मेरा साक्षात ये मित्र गवाह है, प्रथम बार मैं गया था। उसके बाद 4-5 महीने बाद मैं कहा कि 18 और खाते खाते पेट नहीं भर पा रहा है, एक दिन चलूं और मंदिर में चरणामृत लेकर के अपना जो है व्रत तोड़ दूं। जब मंदिर में गया मैंने पुजारी संतोष से कहा चरणामृत दे दिए, तो संतोष ने कहा यहाँ पे गोपाल राव जी आए हैं, मंदिर में चरणामृत देना बंद करवा दिया है। मेरी कथा सुनो, मैं बहुत व्यथित हूँ लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि लोगों यह ना कहो कि राम धन बांट लो, लोगों यह ना कहो कि राम धन बांट लो, मोहब्बत जमी और गगन बांट लो, माँ की ममता भाई बहन बांट लो, घर बांटना चाहते हो चंदा चोरो तो मरने पर मेरा कफन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लो। राम राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट आल्दो यू कैन से राम इन्स राष्ट्र माम इन्स मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करता है वो हमारे राम है। राम किसी पार्टी की बपौती नहीं है, राम किसी समाज की बपौती नहीं है, राम सब में है, राम राम सबकी धारा में चलते हैं, ये स्वभाव संत का होता है। मेरे बाप अयोध्या में कितनी घटनाएं हो रही है, मुझसे पूछिए, एक भी वैष्णव धर्म एक भी रामानंदी संप्रदाय का कोई साधु उस ट्रस्ट में कायदे से नहीं रखा गया है महाराज। नित गोपाल दास अस्वस्थ चल रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते, दिनेन्द्र दास महाराज के कोई सुनने वाला नहीं है, ये लाख बोले कोई सुनने वाला नहीं है। दिनेन्द्र दास मंदिर में गए, लोगों से कहा, पुजारी से कहा कि मुझे तुलसी का पत्ता दे दीजिए, लोगों ने कहा गोपाल राव ने तुलसी का पत्ता बंद करवा दिया महाराज जी, ये डंठल से काम चलता है, ये महाराज जी की स्टेटमेंट है। घंटा घंटा बजाना भी वहां बंद करवा दिया गया था। बाप किसकी बात आप करते हैं बाप? अब आवश्यकता है सारे ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए, और ये जो तीन शिरोमणि हैं, पापा है पापा पापा पापा है पापा, मैं नाम नहीं लेता हूं, लोग कहते हैं करपाते नाम नहीं लिया करो, हम कहते पापियों को नाम लेने से पाप लग जाता है, इस नाते नाम नहीं लेता हूं, इस नाते कहता हूं पापा है पापा हो पापा। इन तीनों को जेल के सिकंजे में होना चाहिए बाप, और मुझे विश्वास है अगर पापा है पापा हो पापा अगर बच गए तो सरकार को बचा पाना बड़ा कठिन काम है। अगर ये तीनों नहीं बचे तो सरकार को हटाना बड़ा कठिन काम है। मेरे बाप खुले मन से बोलता हूं, मैं साधु हूं, जम्मू कश्मीर का रामबन ठंडा पानी 5,000 मीटर की ऊंचाई पे जाकर के एक धोती पहन करके कचला पहन करके चावल खा करके 1 रुपया मैंने ला के ट्रस्ट को दिया है। प्रातस्मणि वंदनीय पूज्य पाद राम डॉक्टर रामलास वेदांती नेपाल में 3 दिन तक दातुन नहीं किया, एक मायावादी के घर में फंस गए, रात में आया कहा निकल जाओ महाराज जी नहीं तो कुछ भी हो सकता है। रात में 1 बजे हम लोग वहां से भगे, किसी तरीके से गंदे नाले से बच करके अयोध्या में आए। प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद अवैधनाथ जी महाराज 3 पीढ़ी ने शहादत दिया है, माननीय दिग्विजय नाथ जी ने शहादत दिया है राम जन्मभूमि के लिए, मान अवैधनाथ जी ने दिया है, जोगी आदनाथ दी रहे। शंकाओं का समाधान बता सकता हूं, कोई बचेगा नहीं। कल मुझसे एक पत्रकार पूछ रहा था कि जोगी आदनाथ एक्शन लेंगे, हमने किसकी बात कर रहे हो, मेरा भाई है, मैं बचाव पक्ष की बात नहीं करता हूं, इतिहास साक्षी है, जब उसके पिता की डेडबॉडी उत्तराखंड में जल रही थी तो विधानसभा में खड़ा होकर रो रहा था कि 24 करोड़ लोगों में से तमाम पिताजी मेरे लोग हैं जिनका मैं पुत्र हूं, पिताजी नित्य दाह संस्कार करना पड़ रहा है, मैं आपका दाह संस्कार नहीं कर सकता हूं, वहां नहीं आ सकता हूं, क्योंकि विधानसभा में रो रहा था। ऐसा मुख्यमंत्री पाना बहुत कठिन काम है, और मैं मुख्यमंत्री से कहता हूं कि मुख्यमंत्री का पद बहुत आवश्यक नहीं है मेरे भाई, अगर मुख्यमंत्री के पद का प्रत्याग करना
5: करना पड़े तो प्रत्याग कर जाओ, तुम प्रधानमंत्री गृह मंत्री बन जाओगे, लेकिन एक भी चंदा चोरों को यदि आपने छोड़ दिया तो निश्चित है अयोध्या के साधु, अयोध्या के संत, अयोध्या के सनातनी कभी इसको माफ नहीं कर सकते हैं, कभी इसको माफ नहीं कर सकते हैं। श्वेता जी, मेरे दिल में दर्द है, आज भी मैं 18 सुबह आया हूँ, 18 और भी नहीं पाया, रास्ते में चाय भी नहीं पाया, इनसे कहा बाप जान मैं क्या करूं, इन्हें कहा अभी खिलवाता हूं, अभी खिलाता हूं, जिंदगी मर जाऊंगा, निश्चित हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, लेकिन चंदा चोरों के खिलाफ मेरी आवाज उठती रहेगी। आपका बल चाहिए, आपका साहस चाहिए, आपका हिम्मत चाहिए, संसार में उनको रहने की जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए।
3: बहुत संतों ने त्याग किया है, बहुत संतों ने बलिदान दिया है, और अगर आज ऐसी व्यथा, ऐसा आक्रोश सुनाई देता है तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, और ये आवाज, ये स्वर सुनना पड़ेगा सबको। लेकिन महंत दीनेन्द्र दास जी, चूंकि अभी करपत्री महाराज ये कह रहे हैं कि, और ये आरोप सब लगा रहे हैं कि अगर सच्चे सनातनी राम भक्त सब ट्रस्ट में होते तो दिक्कत नहीं होती, आप जैसे लोग हैं पर आपके पास अधिकार नहीं है, क्या ये सच है? ऐसे बोलिए मंच, ऐसे बोलिए माइक इधर से।
6: जय सीताराम।
3: हाँ,
6: जय सीताराम।
3: जय
6: राम लला के यहाँ हमारे संप्रदाय में इसे निर्माण दिगंबर जो परंपरा उसको बनाए रखना जरूरी है। अगर चोरी चल रही है तो हमारी परंपरा अगर मानेंगे तो चोरी अपने आप बंद हो जाएगा। हमारे वैष्णव संप्रदाय की जो परंपरा मानेंगे तभी आसान का विकास होगा, पैसे में अगर दिख जाएंगे तो उचित नहीं है। इसे योगी जी आए तो उसमें जो चोरी पाए उसको पहुंचा दियो, जेल में पहुंच गए, धीरे धीरे अगर सहयोग करेंगे तो हम लोगों को सफलता मिल जाएगी। हम लोगों को वैष्णव संपर्क परंपरा जैसे निर्मोही निर्वाणी दिगंबर है, अखाड़ी की परंपरा फिर रामला का है, अगर इनकी परंपरा बनाएंगे तो हम लोगों को सफलता मिल जाएगी। इसमें सन्यासी कुछ भी नहीं है, सन्यासी कोई जानकारी नहीं क्या करना चाहिए, जहाँ जिसकी परंपरा उसको परंपरा बनाए रखना जरूरी है ना। तो रामला जो चाहेंगे वो सब ठीक चल रहा है और विकास होगा।
3: जैसे, जैसे अगर मैं पूछूं कि आपका दायित्व क्या था, आपको क्या काम उसमें, क्या आपको पता था कि पैसा कैसे काउंट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका निरीक्षण कौन कर रहा था?
6: नहीं, जब अखाड़ा बना, महात्माओं की सुरक्षा के लिए अखाड़ा बना निर्मोही निर्वाणी दिगंबर, तो उसमें निर्मोही को राम जन्मभूमि मिला था, निर्वाणी वाले उसमें सहयोग किए थे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया निर्मोही अखाड़े को कोई केवल नाम आया, कोई पद नहीं दिया गया। बात हम केवल सुनते रहे, उसमें कौन चोर है कौन अंदर, हमको कोई जानकारी नहीं दी।
3: आप नीचे से ऐसे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, आप कौन हैं? आप एक मिनट बैठ जाइए। आप
6: हेलो, जो नहीं, जो चोरी, जो जो चोरी हुआ उसको दंड दिया जाए, सरकार दंड दे रहा है ना।
3: आप एक अलग सम्मेलन का आयोजन कर लें। मंच के लिए आप ऐसे असम्माननीय बात ना करें, आपने सवाल पूछा, सम्मान की बात है।
0: और अब बढ़ते हैं कुछ खबरों की तरफ। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल का जिक्र किया है, आज तक के मंच पर उन्होंने जमकर हमले किए हैं।
7: सुरक्षा की स्थिति बदहाल थी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था, कितनी खराब स्थिति यूपी के अंदर थी कल्पना करिए। 35 से ज्यादा जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में कोई भी सभ्य परिवार

0: माँ बाप का सानिध्य मिलना चाहिए बचपन में, वह हॉस्टल में रहने के लिए या फिर अपने नातेदार रिश्तेदार के यहां रहने के लिए मजबूर कर दी जा रही है। यह स्थिति 2017 के पहले थी। कैसे सत्ता के समानांतर माफिया की सरकारें चलती थी, कोई सुरक्षित नहीं था, न मीडिया सुरक्षित थी, न कॉमन मैन सुरक्षित था, न व्यापारी सुरक्षित था, न कोई बेटी सुरक्षित थी, न उद्यमी सुरक्षित था। व्यापारी घर से निकलता था तो ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मैं शाम को भी अपने परिवार का मुंह देख सकूं। परिवार का कोई सदस्य घर से सर्विस करने के लिए किसी काम के लिए बाहर निकलता था तो शाम वह ये प्रार्थना करके निकलता था कि ईश्वर मुझे शाम को अपने परिवार का मुंह देखने का अवसर मिले। उद्यमी निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे मालूम था कि जब वह स्वयं सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। न सरकार की नीति थी और न नियत थी, अराजकता चरम पर थी। माफिया के सामने सरकारें नाक रगड़ती भी दिखाई देती थी।
1: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: Summer hits and suddenly you need snacks for the car, the pool, the park, and nothing at the gas station passes the ingredient test. But Thrive Market has over 200 pre-vetted snack packs already screened for Red 40, synthetic dyes, and more because they restrict over 1,000 ingredients. They even have a barcode scanner pointed at any snack in your pantry and find a better swap instantly. Get an exclusive offer of $30 off your first two orders only when you join at thrivemarket.com/getstarted.
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/depositdisclosures for fees and details.
7: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
8: Sokudo.
9: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: आगे आगे, अरे उधर उधर, करेक्ट करेक्ट।
5: मिल गया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक
3: जैक एफएम, नाउ प्लेइंग व्हाट वी वांट कमर्शियल फ्री ऑन ट्यून इन प्रीमियम।
4: What you got for me, Jack?
3: Upgrade to tune in premium and get Jack FM commercial free.
0: Savari. So.
5: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
1: इन एसोसिएशन विद हिंट
0: बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू
7: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
1: विमल बोलो जुबां केसरी
8: वो हॉस्पिटल है तकरीबन 470 जो पेशेंट थे पाकिस्तानी बॉम्बिंग में मारे गए जो वो पेशेंट्स थे उनके रहने की जो व्यवस्था वहां पे थी पूरे कंपाउंड में जो है प्लान्ड बॉम्बिंग हुई और कोई यहां का कोना हिस्सा नहीं है जो बचा सब कुछ तबाह हो गया मीर फरीद काबुल आज तक
9: बाइक पर सवार दो शख्स एक कार का पीछा कर रहे हैं पीछे बैठे शख्स के हाथ में लोहे की रॉड है एक रॉड बाइक की टंकी पर भी रखी हुई है कुछ पल बीतते ही पीछे बैठा शख्स लोहे की रॉड को आगे जा रही कार पर धमाकता है और फिर दूसरी रॉड को भी उठाकर कार पर हमला करता है जिससे कार में बैठा पूरा परिवार सहम जाता है शोर चीख पुकार मच जाती है अब कार के अंदर की तस्वीरें देखिए कार का शीशा बुरी तरह चकनाचूर हो गया कांच के टुकड़े महिला के चेहरे पर लग गए हैं कार में बैठे लोग बेहद डरे हुए हैं हैरान करने वाली और बेहद खौफनाक यह घटना महाराष्ट्र के नासिक की जहां भवाली वाटरफॉल घूमने गए एक परिवार के साथ हुई इस घटना ने पर्यटकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए आरोप है कि कुछ लोगों ने महिलाओं से छेड़छाड़ की जब विरोध किया तो मारपीट शुरू कर दी परिवार वाले किसी तरह वहां से निकले तो आरोपियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया करीब 15 किलोमीटर तक आरोपित कार का पीछा करते रहे घटना के बाद डरे सहमे परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस वालों ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू की आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की स्थानीय लोगों की मदद ली और 9 आरोपियों को धर दबोचा इस घटना ने एक बार फिर नासिक और इगतपुरी के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हालांकि पुलिस का दावा कुछ और ही है नासिक के इस परिवार के साथ जो हुआ वो बेहद खौफनाक था 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है कुछ और आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ आज तक ब्यूरो

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

पंचायत आज तक उत्तर प्रदेश में बोले योगी, राम को नकारने वाले आस्था की बात कर रहे, सैफई खानदान ने राज को डुबोया, हमने टॉप थ्री में पहुंचाया, माफिया से समाजवादी पार्टी की सहानुभूति। आज तक के मंच पर सांसद रवि किशन ने कहा 2027 में 17 की जीत का रिकॉर्ड टूटेगा। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा ब्राह्मण हमारे साथ, चढ़ावा चोरी बनेगा चुनावी मुद्दा, राहुल अखिलेश साथ हैं। मॉनसून सत्र में बदल सकते हैं सियासी समीकरण, परिसीमन बिल पर सरकार का साथ देगा एनसीपी शरद पवार गुट, सुप्रिया सूले का दावा, उद्धव समेत सभी दलों से हो चुकी है चर्चा, सबका रुख सकारात्मक। पंजाब में चनी संकट पर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप का मंथन, फीडबैक के साथ राहुल खड़गे से मिले भूपेश बघेल ने नेतृत्व परिवर्तन को किया खारिज, कहा ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। पीओजेके में पाकिस्तान को खुला चैलेंज, आंदोलनकारी नेता अमान खान शाहबाज मुनीर को ललकारा, कहा ये कब्जे वाला इलाका, रावला कोट में हजारों की भीड़ ने किया तालियों से बयान का स्वागत।

0: खबर पाकिस्तान से, जहां जुल्म और सितम के खिलाफ पूरा पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर उठ खड़ा हुआ है। पीओजेके में एक बार फिर पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है और लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं। रावलाकोट और पीओजेके के अन्य हिस्सों से लोग मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। हजारों प्रदर्शनकारी आगे बढ़ चुके हैं और लाखों अभी रावलाकोट या अन्य जगहों पर आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल लोग लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। रावलाकोट और पीओजेके के अन्य हिस्सों से लोग राजधानी मुजफ्फराबाद कूच कर चुके हैं। हालांकि उन्हें रोकने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस गैर कानूनी तरीके से उन पर एक्शन कर रही है। इस वक्त पूरे पीओजेके से लोग मुजफ्फराबाद की ओर कूच कर रहे हैं।
1: पाकिस्तान के खिलाफ पीओजेके आज इनकलाब लिख रहा है। पाकिस्तानी शासन के खिलाफ विरोध की आवाज उनकी नींद उड़ाने वाली है। शाहबाद सरकार के होश उड़ाने के लिए भीड़ पीओजेके की सड़कों पर उतरी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को खुली चुनौती है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों में जबरदस्त रोष है और वो पाकिस्तान के हर जुल्म को अब सहने वाले नहीं है। जो हुआ सो हुआ, पीओजेके अब कह रहा है कि बहुत हुआ, अब नहीं सहेंगे पाकिस्तान सेना की क्रूरता, नहीं बर्दाश्त करेंगे बेहिसाब जुल्म, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पीओजेके की मांगे इस्लामाबाद मान नहीं लेता। अभी एक दिन पहले ही तो पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस की क्रूरता ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में 8 बेगुनाह लोगों की जिंदगी छीन ली। मुनीर के रेंजर्स ने उन बेगुनाहों को गोलियों से भून दिया। सवाल है कि आखिर कब तक, क्यों पीओजेके पर अवैध तरीके से कब्जा कर पाकिस्तान ऐसे जुल्म ढा रहा है? क्या अपना हक मांगना ही इनका गुनाह है? क्या अपनी आजादी की आवाज उठाना गुनाह है? क्या बेहतर जिंदगी की खातिर सड़कों पर उतरना गुनाह है? बहुत से सवालों के साथ पूरा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर अपने हौसलों से नापाक हुकूमत की चूल्हे हिला रहा है, चुनौती दे रहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी।
2: फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म, हुकूमत की जंग खत्म नहीं होगी। और बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, एक वो दस है जो स्कूल में है सब झूठ है, मतलब पाकिस्तान में सिर्फ एक सच है वो दानिश अक्सर कहता है, मतलब पाकिस्तान में सिर्फ एक सच है कि बारिश के मौसम में ज्यादा पहाड़ी इलाकों में, गर्मी के मौसम में पहाड़ी मैदानी इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ती है और पहाड़ी इलाकों में सर्दी में ज्यादा सर्दी पड़ती है। उसके अलावा कोई सच नहीं है। असल सच आप पढ़ रहे हैं।
1: रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर कूच कर रही है भीड़। अपना इरादा बता रही है कि अंजाम चाहे जो भी हो ये पीछे हटने वाले नहीं है। सुबह से लोग मुजफ्फराबाद की ओर निकल पड़े हैं। पीओजेके के अलग अलग हिस्सों से कारवां निकला है, जमकर नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पुरजोर आवाज उठ रही है। इस मार्च के लिए एक दिन पहले से रावलकोट और अन्य शहरों में लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। नौकरी पेशा लोगों ने काम छोड़ा, स्कूली छात्रों ने स्कूल छोड़ा, महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला और सब निकल पड़े मुजफ्फराबाद मार्च के लिए। इसमें शामिल छात्र अब पीओजेके से अपील कर रहे हैं कि अपने हक के लिए आगे आए। स्कूली बच्चे और बच्चियां पाकिस्तान के अधीन महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर चिंता जता रही हैं। साथ ही वो पाकिस्तान की आवाम से इस मुद्दे पर संजीदा होने की अपील कर रही हैं।
3: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम मारूख और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाएं। एक्टिविटी ने ऐसे क्या गलत किया? वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज उठा रहे, और वो क्या कह रहे हैं खबरों में, कह रहे और धरने याद तक रेजर्स भी कह रहे हैं कि अगर जो लड़के हो जो बच्चे एक्टिविटी में आए हुए अगर वो पीछे ना गए उनके पेफॉर्म्स नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शादी कार्ड नहीं मानेंगे। ये पेफॉर्म है हमारे, अगर हमारे बेफॉर्म नहीं माने जाएंगे चाहे आप लोग के बेफॉर्म अपनी मर्जी से जिया, मैं आपको आपके बेफॉर्म्स की भी जरूरत नहीं है। और मेरी आप सब पाकिस्तानी आवाम से गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े हो, हमें हक के लिए आवाज उठा रहे।
1: सुबह से पीओजेके की आवाम की एक ही मंजिल है मुजफ्फराबाद। हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयारी में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद पहुंचने वाली तमाम सड़कों पर भारी सुरक्षा इंतजाम कर दिए ताकि विरोध में उठती आवाज को दबाया जा सके। दरअसल पीओजेके के लोगों ने ऐलान किया है कि उनकी 38 सूत्रीय मांगे मानी जाएं, अगर नहीं मानी गई तो वो पाकिस्तान असेंबली से आजादी का ऐलान कर सकते हैं। इस चेतावनी के बाद से पाकिस्तानी हुकूमत के होश उड़ गए। सरकार इस लॉन्ग मार्च को किसी भी कीमत पर रोकना चाहती है। प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान की शाबाद सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। वो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी मांगों को मानने की बजाय जिम्मेदार हुक्मरान सिर्फ टहलाने में जुटे हैं।
2: एक आता है कहता है फलां नहीं मान रहा, दूसरा आता है कहता है फलां नहीं मान रहा, हमने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ। रियासत के शहरी है, रियासत आवाम से है, और रियासत आवाम से है, और आवाम ही रियासत है। सुपीरियर रियासत आवाम है, आवाम ताकत है, और आवाम की बात मानी जाएगी और अपनी होगी। आवाम की बात मानी जाएगी और अपनी होगी। इंतखाबात का कहां तक मामला है।
1: मुजफ्फराबाद तक आज हो रहे लॉन्ग मार्च की अगुवाई ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी कर रही है, जिसे पाकिस्तान सरकार जून में ही बैन कर चुकी है। ऐसे में प्रतिबंध का हवाला देकर पाकिस्तान किसी भी हद तक जाकर एक्शन ले सकता है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: मुजफ्फराबाद मार्च के लिए एक दिन पहले रावलकोट में हजारों हजार की संख्या में भीड़ उमड़ गई। वहां एक बार फिर पाकिस्तान की क्रूरता सामने आई। वहां बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। इस फायरिंग में 8 लोगों की मौत हो गई, कई जख्मी हो गए। इस घटना के बाद से पूरे पीओजेके में भारी गुस्सा है।
1: आज ऐतिहासिक मुजफ्फराबाद मार्च हो रहा है। एक दिन पहले इसी मार्च के लिए रावलकोट में पीओजेके की आवाम इकट्ठा हुई थी। मुजफ्फराबाद के लिए प्रदर्शनकारियों का एक्शन प्लान तैयार था, शांतिपूर्वक आगे बढ़ने का एजेंडा था, लेकिन हैवानियत की हदें पार करने वाले पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस का कहर प्रदर्शनकारियों पर टूटा। पहले तो उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस की गोले दागे। प्रदर्शन में शामिल स्कूली बच्चों और महिलाओं को बेतहाशा परेशान किया। प्रदर्शनकारी जब अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने इन बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां दाग दी। रावलकोट बस अड्डा जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी थी, वहां पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए और फायरिंग हुई। उधर सुदनोटी में भी फायरिंग की घटना हुई। 14 जुलाई को ही फायरिंग में 8 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान एक पाकिस्तानी रेंजर्स की भी मौत हो गई, 5 अन्य सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए। अब उस गोलीबारी को लेकर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। सूत्रों का दावा है कि यह हमला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, यानी अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अपने ऊपर खुद ही हमला करवाया और अपने जवान को मार डाला ताकि प्रदर्शनकारियों पर किए एक्शन को सही ठहराया जा सके। लेकिन एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की ऐसी किसी भी साजिश का सच पूरी दुनिया जान चुकी है और अब पूरा पीओजे के सड़कों पर उतरा है।
4: रावलाकोट इलाके में पाकिस्तान के रेंजर्स की फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई थी। अब इसी आंदोलन में अमान खान का एक भाषण जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पीओजे के न तो विवादित है, न ही आजाद कश्मीर है, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है।
1: आंदोलनकारी पाकिस्तान को सच का आईना दिखा रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि पीओजे के विवादित इलाका नहीं है।
2: मौजूद है और उन क्रियादादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर कब्जा है, ये एक मुतनाजा इलाका है, जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुतालिक जो बात करने का इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है, वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरियों के पास है, और इसके हम अपना हाथ महफूज रखते हैं। तो इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस आलम को बुलंद रखेंगी।
1: दरअसल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की 38 सूत्री मांगे हैं, इनमें 12 रिफ्यूजी सीटों को खत्म करना, बिजली टैरिफ में भारी कमी किया जाना शामिल है। एक मांग है कि स्थानीय संसाधनों से होने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा पीओजेके में ही रहना चाहिए। बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए आटे, चीनी और अन्य जरूरी वस्तुओं पर भारी सब्सिडी की मांग भी शामिल है। साथ ही बेहतर सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा व्यवस्था की आवाज भी उठी है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग एक्शन कमेटी कर रही है। वाज़े मांगों पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलियां बरसाई, जुल्म की हदें पार कर दी। इस मुद्दे को लेकर भारत ने भी गहरी नाराजगी जताई। सरकार ने मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के जुल्म सितम को लेकर शिकंजा कसे।
5: स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीज़ों को रोका गया है, इंटरनेट ब्लैकआउट को लागू किया गया है और निहत्थे नागरिकों पर के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घोर दुर्व्यवहारों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराएगी।
1: ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीओजेके के मसले पर पहली बार बेनकाब हुआ है, लेकिन अब वहां लगातार तेज होते पाकिस्तान विरोध ने उसकी तमाम साजिशों को बेनकाब कर दिया। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर जारी अमेरिकी हमले की। अमेरिका ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने दूसरी बार चाबहार को टारगेट किया है। वहां से हमले के दौरान की तस्वीरें भी आई हैं। स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चाबहार की, जहां अमेरिका ने दोबारा हमला किया है। तो ताजा तस्वीर चाबहार की, जहां इस पूरे युद्ध के दौरान दूसरी बार हमला किया गया है, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त आपके लिए लेकर आ रहे हैं। वहां की न्यूज एजेंसी, जो स्थानीय न्यूज एजेंसी है, वो भी इसकी जानकारी दे रही है कि अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है। और आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अशरफ वानी का। अशरफ, चाबहार पर एक बार फिर से हमला, और पिछली बार भी जब यह हमला हुआ था तब भी यही कहा गया था, अब तक इससे दूरी बनाई थी अमेरिका ने, लेकिन एक बार फिर से हमला।
6: दरअसल अंजलि, चाबहार को इसलिए अमेरिका निशाना बना रहा है क्योंकि जब बंदर अब्बास और दूसरे जो पोर्ट्स हैं ईरान के, उन पर जो लगातार ईरान अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे थे, तो चाबहार का अधिकतर इस्तेमाल कर रहा था ईरान वहां पर स्टोरेज के लिए भी और वहां पर जहाजों की पार्किंग के लिए भी। तो कहीं ना कहीं जो ये नए चार दिन से हमले अमेरिका की तरफ से है, सबसे बड़ा फोकस है कि किस तरह से इकोनॉमी जो है उसको डगमगाया जाए ईरान की, और उनके सभी जो साधन हैं, जो उनकी इकोनॉमी चलती है तेल के उत्पादन पर और उसके साथ साथ दूसरे जो देशों को वो तेल बेचते हैं, और खासतौर से सीज फायर के दौरान हमने देखा कि किस तरह से ईरान ने मिलियंस ऑफ बैरल्स जो कच्चा तेल है वो अपने फैसिलिटी से निकाला था। तो यही कारण है कि चाबहार को भी अब अंकुश लगाने के लिए जो है अमेरिका की तरफ से ये हमले हो रहे हैं।
0: जी अशरफ, आप हमारे साथ बने रहे, हम कुछ और बड़ी खबरें लेकर आ रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में जोरदार पलटवार कर दिया है। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम ने बताया है कि जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइल से हमले किए हैं। एक वीडियो भी जारी किया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उसी हमले का है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस पर यह हमला किया है। एक और खबर, बीती रात हुए अमेरिकी हमलों को लेकर ईरान ने कहा है कि हमले में उसके 7 सैनिकों की मौत हुई है। ईरान की आर्मी ने इसकी जानकारी दी है, साथ ही यह भी बताया है कि हाल के हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की जान गई है, वहीं 260 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। अमेरिका बीते 4 दिन से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, इससे ईरान के कई शहरों में बड़ी तबाही देखी जा रही है। तो ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट को निशाना बनाया है। ये दावा ईरान की तरफ से आ रहा है। ईरान लगातार अमेरिका के बेस पर हमले कर रहा है, आसपास के खाड़ी देशों में जो भी उसके बेस हैं, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सैटेलाइट तस्वीर जारी की है ईरान ने, और इस सैटेलाइट तस्वीर के साथ उसने ये दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट को निशाना बनाया है, जो अमेरिका का बहरीन में मौजूद बेस है। तो ईरान ने अमेरिकी धमकी के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में फिर से खाड़ी देशों के अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने कुवैत के अमेरिकी बेस पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में अमेरिकी एयरबेस में ड्रोन हमले से धमाका दिख रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
10: Schwarber to right field, and it will leave.
9: From the first pitch of the season to the stretch run,
10: and that's the ball game.
9: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
11: ऐसे पोस्टर्स यूपी के अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं। एक पोस्टर में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव हैं। इसमें लिखा है मुलायम सरकार की असलियत। दूसरे पोस्टर में अखिलेश, शिवपाल और राम गोपाल यादव की तस्वीरें हैं। इसमें लिखा गया है दिल में बाबर, मुंह में राम। ऐसे पोस्टर्स लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और अयोध्या में लगाए गए हैं।
12: जैसे चुनाव नजदीक आएगा, सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, प्रहर पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे।
11: इस सियासत से इतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है। खबर है कि मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक जाहिर किया था। कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रसीद नहीं दी गई, आरोप ये भी है कि उनकी दी गई भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित या सुरक्षित नहीं रखी गई। अब इन वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। खबर ये भी है कि चहावा चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। आज तक ब्यूरो।
13: छतरी न खोल बरसात में,
14: आहा भीग जाने दे
13: मेरी छतरी के नीचे आचा।
14: क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी?
13: सलमा या कमला?
14: सलमा भी थी, कलमा भी होगी, कमला भी होगी।
15: अरे आप कमला गाओगे?
14: सलमा,
15: ये सलमा गाएंगे।
14: कोई तो आगे और पीछे होगा।
13: मैं कमला पसंद, ये सलमा पसंद। नेताओं ने मिलकर ये ट्रस्ट बनाया है जिसमें लैक ऑफ ट्रस्ट जो है आजकल सबसे ज्यादा है, तो का ही कर सकते हैं आप। और सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। संघ ने इधर लेटर जारी कर दिया।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सॉरी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

को नकारने वाले आस्था की बात कर रहे सैफई खानदान ने राज्य को डुबोया, हमने टॉप थ्री में पहुंचाया, माफिया से समाजवादी पार्टी की सहानुभूति। आज तक के मंच पर सांसद रवि किशन ने कहा 2027 में 17 की जीत का रिकॉर्ड टूटेगा। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा ब्राह्मण हमारे साथ, चढ़ावा चोरी बनेगा चुनावी मुद्दा, राहुल अखिलेश साथ हैं। मानसून सत्र में बदल सकते हैं सियासी समीकरण, परिसीमन बिल पर सरकार का साथ देगा एनसीपी, शरद पवार गुट, सुप्रिया सुलेख दावा, उद्धव समेत सभी दलों से हो चुकी है चर्चा, सबका रुख सकारात्मक।

पंजाब में चन्नी संकट पर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप का मंथन। फीडबैक के साथ राहुल खड़गे से मिले भूपेश बघेल ने नेतृत्व परिवर्तन को किया खारिज, कहा ये गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। पीओके में पाकिस्तान को खुला चैलेंज, आंदोलनकारी नेता अमान खान शाहबाज मुनीर को ललकारा, कहा ये कब्जे वाला इलाका रावला।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ बांशु दीक्षित और एक बार फिर से न्यूज रूम लाइव में आपके सामने हाजिर। और न्यूज रूम लाइव में जैसा कि होता है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन सी खबरें जिन पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं कि 2 बजे में आज कौन सी बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश लखनऊ में पंचायत आज तक चल रहा है, उत्तर प्रदेश का बंद सजा हुआ है। 27 की तैयारियों को लेकर और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर किस तरह की बातें की गई वो हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। इसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर होगी वो भी हम आपको बता दें। दूसरी बड़ी खबर आज हमारी रहने वाली है कि कैसे अब कहा जा रहा है कि चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की आने वाली फाइनल रिपोर्ट में आखिर क्या आने वाला है और इस पर क्या कुछ अभी कहा गया है, क्योंकि एसआईटी की तरफ से तमाम जांच पड़ताल की गई है और उसके बाद अब वो रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। तीसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, परिसीमन बिल पर आखिर एनसीपी शरद गुट की तरफ से क्या होने वाला है, क्या पवार पावर यहां पर मिलने वाली है परिसीमन बिल को, इसके बारे में बात की जाएगी। और इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि पंजाब कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक होने वाला है। भूपेश बघेल तो बहुत लंबे वक्त से बैठे थे, कल राहुल गांधी की एक बैठक भी हुई थी, लेकिन उस बैठक के बाद आखिर निकला क्या है, वड़िंग की कुर्सी बचेगी नहीं बचेगी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें कि अब परिसीमन बिल को लेकर सियासत बहुत ज्यादा तेज हो गई। आने वाला लोकसभा सेशन है, उससे पहले परिसीमन बिल को लेकर चर्चा तेज हो गई है और यह भी कहा जा रहा है कि शरद पवार की जो एनसीपी है वो इसमें साथ है। सुप्रिया सुले एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले ने समर्थन का ऐलान कर दिया है और सुप्रिया सुले ने कहा है कि वो परिसीमन बिल का सपोर्ट तो करेंगी ही करेंगी। साथ ही महिला आरक्षण की जो बात की जा रही है उस पर भी पार्टी का रुख एकदम बहुत स्पष्ट है। तो सुप्रिया सुले ने बहुत स्पष्ट कर दिया है और सुप्रिया सुले ने कह दिया है कि उनकी पार्टी परिसीमन के पक्ष में है और साथ ही जो महिला आरक्षण की बात की जा रही है उसमें भी सुप्रिया सुले सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगी। तो यही कहा जा रहा है कि पवार का पावर शो और इसके साथ ही 2/3 का जो सवाल है क्या वो पास होगा, इस पर भी चर्चा है।
1: वी विल कंसीडर प्रोवाइडेड कंसीडर इंग्रेजी में रिपीट करती है कंसीडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड and the bill how will it be implemented is still a question mark।
0: ऋत्विक भालेकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋत्विक जरा ये बताइए कि महाराष्ट्र की सियासत अब कैसे बदलती हुई दिखाई देगी। पवार पावर की बात की जाती है, क्या वो परिसीमन को मिल रहा है वो तो अब स्पष्ट हो गया है, लेकिन अब आगे क्या तस्वीरें दिखती है महाराष्ट्र की सियासत की। ऋत्विक
2: जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जैसे ही मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत काफी गरमाए हुए नजर आ रही है, क्योंकि
0: बोलिए बोलिए
2: जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही मानसून सत्र दिल्ली में शुरू होने जा रहा है वैसे ही महाराष्ट्र की सियासत भी तेज होते नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर इंडिया अलायंस या महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दल क्या डिलिमिटेशन बिल को समर्थन देंगे इस पर चर्चाएं तेज है। इस बीच अब सुप्रिया सुले एनसीपी शरद पवार पार्टी की नेता और सांसद, उनका साफ तौर पर बयान आया है कि वो डिलिमिटेशन बिल को समर्थन देने के बारे में सोच सकते हैं अगर उन्होंने दिए हुए प्रस्ताव को अगर सरकार ने विचार में लिया। उनका यही कहना है कि 50% सीटें जो है वो हर राज्य में बढ़नी चाहिए, उसी के साथ महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, एससी एसटी को भी आरक्षण इसमें मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समांतर रूप से डिलिमिटेशन जो है हर राज्य में होना चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं अब इस बयान के बाद एनसीपी शरद पवार गुट जो है वो एनडीए और खासकर बीजेपी के और करीब जाते हुए दिख रहा है, नजदीकियां बढ़ते हुए दिख रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि शिवसेना में जो सांसद टूटे और एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए।
0: जुड़ने के लिए ऋत्विक, और अब बात कर लेते हैं पंजाब की। भूपेश बघेल बहुत लंबे वक्त तक पंजाब में रहे, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते रहे और लगभग अब ये स्पष्ट हो गया है, बहुत सी तस्वीरें स्पष्ट हो गई है। और भूपेश बघेल से जब सवाल पूछा गया कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा तो उन्होंने कहा ये गुंडे गुंडियों का खेल नहीं है। अब तस्वीर कुछ हद तक साफ होती दिख रही है, पार्टी के भीतर लंबे समय से खींचतान के बीच सवाल यही, क्या प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे या फिर मौजूदा नेतृत्व पे ही भरोसा रहेगा। वडिंग के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने अपनी रिपोर्ट संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है और उसमें भी राजा वडिंग को ही जिम्मेदारी जारी रखने की सिफारिश की गई है। इस पूरे विवाद पर आज तक ने भूपेश बघेल से बात की तो उन्होंने कहा गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है।
3: क्या नेतृत्व परिवर्तन की
4: कोई भाई ये नीचे रख ले यार।
5: मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं।
3: अच्छा क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश।
5: मैं पहले भी बोल चुका हूं आपसे गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है।
0: राहुल गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल अब इस बयान से क्या ये माना जाए कि राजा वेडिंग ही कमान संभालेंगे पंजाब कांग्रेस की।
6: देखिए इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में भूपेश बघेल कह नहीं सकते थे क्योंकि जाहिर है वो प्रभारी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा जब उन्होंने सवाल पूछा कि क्या कोई लीडरशिप चेंज होगा उन्होंने कहा कि ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अब लगभग ये तय हो गया है कि जो वडिंग है वही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे और पार्टी को ये भी लगता है कि अगर आपने अब हमने उनको हटाया तो हमको नुकसान होगा। इसके पीछे एक गणित भी दिया जा रहा है कि देखिए 29 जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के उसमें से 25 राजा वडिंग के साथ में है। कांग्रेस पार्टी के 7 लोकसभा सांसद हैं उसमें से 4 के साथ में है तो और 16 विधायक हैं उसमें से आधे से ज्यादा वडिंग के साथ में है तो कुल मिलाकर और 4.5
0: साल। रोकता हूं मैं इस वक्त आपको एक बड़ी खबर आ रही है वो बता दें और ये उत्तर प्रदेश के नोएडा से ममूरा गांव में भीषण आग की अभी तक खबर सामने आई है। नोएडा का ममूरा गांव एक बार फिर आपको बता रहे हैं भीषण आग की खबर है और ये देखिए ये कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है। लोगों को बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है और इतनी ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग से बताया जा रहा है ये आग लगी और उसके बाद आग बहुत तेजी के साथ बढ़ी। अब तंग गलियां हैं यहां पर तो ऐसे में रेस्क्यू में थोड़ी परेशानी यहां पर देखी जा रही है और उसके बाद आप देखेंगे कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के तीसरे से चौथे माले पर जो बांस की बल्लियां होती हैं उनको डालकर एक सीढ़ी बनाई गई है और सीढ़ी के जरिए लोगों को बचाया जा रहा है। इसमें महिलाएं भी हैं इसमें पुरुष भी हैं बच्चे भी हैं। इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग और उसके बाद यह आग कितनी तेजी के साथ फैली। नोएडा ममूरा गांव में लगी भीषण आग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऊपरी मंजिल पर यह आग बहुत तेजी के साथ फैली। धुआं आप यहां पर देख सकते हैं लोगों की भीड़ वहां पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है वहां पर अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। इससे पहले हम दिल्ली में देख चुके हैं जब जोरदार आग लगी थी न जाने कितने लोगों की जान चली गई थी लेकिन तब भी स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की थी और यहां भी स्थानीय लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। छत पर एक बार फिर देखिए महिला को रेस्क्यू किया गया और इतनी ऊंचाई पर पास की बल्लियों के सहारे एक सीढ़ी बनाई गई। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अरविंद क्या जानकारी मिल पा रही है अभी तक।
7: देखिए दो लोगों की पूरे हादसे में मौत हो गई है जबकि कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। ये जो नोएडा का ममूरा गांव है वहां पर ये आग लगी है और जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसमें स्पाइकिंग हुई उसकी वजह से ये भीषण आग लग गई है। फायर डिपार्टमेंट की टीम वो मौके पर मौजूद है साथ ही साथ जो फेस 3 थाना इलाके की पुलिस है वो भी मौके पर मौजूद है। जो रेस्क्यू का काम है वो चलाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो ये मकान है जिसमें आग लगी है इसमें कई परिवार फंसे हुए हैं और तस्वीरें भी आज तक के पास मौजूद है हिमांशु जिसमें लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। दरअसल एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जो पास है उसके जरिए भी कुछ लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो फायर डिपार्टमेंट और नोएडा पुलिस का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लेकिन भीषण हादसा और दुखद ये है कि दो लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई हिमांशु।
0: अच्छा एक बात बताइए क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं बताया जा रहा है कि 50 परिवार यहाँ पर फंसे हुए हैं। तंग गलियां हैं छोटी छोटी गलियां हैं लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है। धुआं ऊपरी मंजिल पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये बताया गया जो इलेक्ट्रिक बाइक थी वो ऊपरी मंजिल पर थी या नीचे से आग फैलते हुए ऊपर पहुंची है।
7: देखिए नीचे से आग फैलती हुई ऊपर पहुंची है जो अभी शुरुआती जानकारी मिली है हिमांशु उसके मुताबिक और जैसा आपने बताया ये जो ममूरा गांव है कंजेस्टेड ये इलाका है भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जो मकान है वो आसपास फंसे हुए हैं। इस फायर डिपार्टमेंट की टीम का कहना है कि टीम वहां पर पहुंच गई है और उसके साथ साथ लोकल पुलिस की टीम भी पहुंची है रेस्क्यू करवाया जा रहा है और साथ ही साथ
0: ये इलाका वो देखा जाता है जहां पर ज्यादातर लोग किराए से रहते हैं दूर से आते हैं और यहां पर जो काम की तलाश करते हैं काम करते हैं परिवार के साथ बाहर के रहने वाले लोग किराए पर रहते हैं ज्यादातर वो लोग रहते हैं।
7: जी बिल्कुल और जो कुछ लोकल रेजिडेंट्स के लोकल लोग हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं और जो तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है हिमांशु और जो आग जब लगी तो कुछ लोग खुद ही आसपास के लोकल लोगों की मदद से खुद भी छत से बाहर दूसरी छत पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो फायर डिपार्टमेंट है नोएडा पुलिस है उसके लिए है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए तो अभी अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन फायर डिपार्टमेंट
8: का, नोएडा पुलिस का जारी है और सबकी जो जो जितने भी वहां पर रेस्क्यू टीमें हैं उनकी सबसे बड़ी जो एक वो कहें आप चैलेंज ये है कि जो लोग फंसे हुए उनको जल्द से जल्द
0: सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कहीं पर भी अगर इस तरह का हादसा होता है रेस्क्यू टीम जो रहती है लोगों को सबसे पहले बचाया जाए, उन तक मदद पहुंचाई जाए, सुरक्षित किया जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चल रहे पंचायत आज तक की, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति की बड़ी हस्तियां हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चित परिचित अंदाज में विपक्ष पर हमलों की बौछार की। उन्होंने अयोध्या दान चोरी को लेकर विपक्ष के अभियान को आस्था पर हमला बताया।
9: जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास की, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है। वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं। उस समय कौन कौन से घोटाले नहीं हुए थे, चाहे वह केंद्र की सरकार उस समय की कांग्रेस की रही हो, चाहे यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकारें। अयोध्या की घटना निश्चित ही हम सब की आस्था, हम जैसे राम भक्तों की आस्था को आहत करती है और ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया। वह एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट को उस पर कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। ट्रस्ट ने अनुरोध किया, गवर्नमेंट ने उस एसआईटी गठित की। एसआईटी की रिपोर्ट आते ही ट्रस्ट ने कार्रवाई भी शुरू की। जो 6 लोग विजुअल में चोरी करते हुए पकड़े गए उनकी गिरफ्तारी हुई, जो उनमें सहयोग कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के साथ ही नैतिक आधार पर भी 2 स्थिति और हुई। लेकिन उसके नाम पर अयोध्या को बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि को बदनाम करना, हिंदू आस्था पर प्रहार करना, ये कहां का न्याय संगत है?
0: अब देखिए, ये तो बात हुई राम मंदिर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाने साधा, लेकिन जब बात आई विपक्ष की तो वहां पर नाम आता है राहुल गांधी का, वहां पर बात आता है अखिलेश यादव का, और इन दोनों को लेकर कैसे निशाना साधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो भी सुनिए।
9: समृद्धि तो जैसे लगता है कि इन दो खानदानों की ही, इन्होंने दो खानदानों ने अपने नाम पे पेटेंट करवा दिया है कि समृद्धि लूट का हो चाहे कैसे भी हो, केवल इन दो खानदानों के हिस्से में आना चाहिए, बाकी लोग विपन्न रहे उसमें इनको अच्छा लगता है। मुझे आश्चर्य होता है किस किस प्रकार से ये लोग माहौल खराब करके वो करते हैं, जिन्होंने जमीनी धरातल को नहीं देखा, जिनको फुर्सत नहीं होती जाने की, एक गरीब की पीड़ा को नहीं समझ सकते। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इन दोनों राजकुमारों ने जहां जन्म लिया है तो जन्म से दोनों युवराजों ने चांदी की चम्मच से खाने की आदत रही है, देर से सोकर के उठने की आदत रही है, तो उनको सूर्योदय का आनंद नहीं होगा, उनको तो ये उनकी नींद में खलल डालने जैसा होता है। गर्मी कैसे होती है दोनों को नहीं पता है, बरसात की पीड़ा क्या होती है उनको नहीं पता है, क्योंकि दोनों लोग पीपा कप का आनंद लेने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया गया है, कोई यूएस की यात्रा में अपने टूरिस्ट वीजा में गया है। ये पैसा किसका है, किसके पैसे को लेकर के आप ये फॉरेन की यात्रा कर रहे हैं और यहां आईना दिखा करके समाज को बांटने का पाप करते हैं? जातीय खेमों में बांट करके, जाति को जाति से लड़ा करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके सत्ता हत्याने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन ये जनता है सब जानती है, आपके सारे करतूतों को जानती है, अब आपको माफ करने वाली नहीं है। और इसीलिए आपके पास आया हूं और मैं आज इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूं बड़ी बेबाकी से कह सकता हूं, 9 वर्षों की कार्यपद्धति भी, जनता जनार्दन के सामने हमारा रिपोर्ट कार्ड भी पूरी पारदर्शिता के साथ जनता जनार्दन के सामने है।
0: तो मुख्यमंत्री ने दो खानदानों की यहां पर बात की, अपने अंदाज में उन्होंने तंज भी कसा और हमला भी बोला, लेकिन सैफई खानदान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे वार किया वो हम आपको बताते हैं।
9: 17 के पहले अगर समाजवादी विकास का मॉडल होता ना तो यूपी कब का डूब गया होता। कैसे डूबो रहे थे ये सब, इस सिफाई खानदान कैसे यूपी को तबाह कर रहा था, उसका नमूना हम यहां पर बैठे हैं, इसके ठीक पीछे एक ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, उसको कहते हैं JPNIC, भारत के आजादी के बाद जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ था, जिस महापुरुष के नाम पर हुआ था, ऐसे सरदेव जयप्रकाश जी के नाम पर वह सेंटर बनाया है, इन समाजवादियों ने बनाने का प्रयास किया था, उसकी DPR थी 200 करोड़, 864 करोड़ खर्च हो गए, अभी भी अधूरा।
0: देखिए एक बात तो तय है, विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है अयोध्या में, राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उस पर, अब उसी हमले पर पलटवार किया उत्तर प्रदेश BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी ने
10: कि राम मंदिर का मुद्दा कहीं ना कहीं हम सनातनियों के लिए, हम सब के लिए, ये हमारे इष्ट देवता का विषय है, राम हमारे दिल में बसते हैं, और किस प्रकार से देखेंगे कि मंदिर बनाने के लिए किसने सपोर्ट किया और किसने विरोध किया है, ये आम जनता को पता है, और निश्चित तौर से मुझे भी ठेस पहुंचा है, और हम सब चाहते हैं कि उस पर जो सरकार कार्रवाई करी है उस पर त्वरित समाधान निकाले, और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको दंड मिले, और आगे से ऐसी घटना ना हो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए।
11: पर अगर आपके विरोधी ये कहते हैं कि बचाया जा रहा है बड़े लोगों को, आप लोग किसी को भी जो जो कैमरे में नजर आए उनकी, उनको पकड़ा गया, जांच में उन लोगों का नाम रहा, समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई ये तो छोटे छोटे लोगों के नाम है, बड़ों को बचाने की कोशिश हो रही है, आपको लग रहा है कि इस जांच के बावजूद जनता को कन्विंस करना मुश्किल होगा कि कोई बड़ा नाम नहीं है जिसको बचाया गया?
10: देखिए विपक्ष आज से नहीं, शुरू से आप देखें भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कहीं ना कहीं वो बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, चाहे चुनाव आयोग हो, और कुछ समय पे तो उन्होंने अदालत पर भी विषय उठाया था। SIT की जांच कोई हमारी जांच नहीं, SIT पहले से बनती रही है और उसकी जांच आने दीजिए। मैंने पहले कहा कि हम सबकी भी प्रयास है कि कोई भी दोषी बचने ना पाए।
0: और देखिए ऐसा ही सवाल पूछा गया रवि किशन से, तो रवि किशन ने अपने अंदाज में कहा कि देखिए पापियों का ना कोई धर्म नहीं होता है। अब ये सवाल पूछा गया था राम मंदिर दान चोरी पर,
11: अयोध्या से भी नहीं, अयोध्या का मुद्दा नहीं लोग देखेंगे जब अयोध्या, वो कह रहे हैं समाजवाद ही सनातन है, सनातन ही समाजवाद है।
12: बहुत बड़ा पाप हुआ अयोध्या में, बहुत बड़ा पाप हुआ, एक पंडित होने के नाते, हिंदू होने के नाते, एक पुजारी का बेटा होने के नाते, हमारे ईष्ट प्रभु राम के भक्त होने के नाते इतनी पीड़ा हुई आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकती। लेकिन तुरंत SIT गठित हुई, तुरंत जितने हुए पकड़े गए, जो और भी पाए जाएंगे वो भी पकड़े जाएंगे। मैं चाहूंगा कि ऐसे दंड मिले कि आने वाले समय पूरे भारत के हर मंदिर का हर कोई व्यक्ति अगर गलती से सोच रहा है तो उसको कांप जाए, ऐसा दंड मिलना चाहिए उन पापियों को जिन्होंने ये पाप किया है। ये पाप ना मस्जिद में हो, ना क्रिश्चियन गिरजा घर में हो, ना गुरुद्वारे में हो, ऐसा दंड हो, एक ऐसा मैसेज जाए, मैं ये चाहता हूं। ये बहुत पीड़ा हुई लेकिन सनातन को, हिंदू इससे कहीं घबराया नहीं है, उसकी आस्था में कोई कमी नहीं आई। और
0: तो देखिए पक्ष विपक्ष पर हमले साध रहा है, विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, और वो भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं।
13: जहां तक अयोध्या के मामले में, चोरी के मामले की बात है, यह दुर्भाग्य है क्योंकि ये पहले से इन लोगों की आदत न होती ये इस तरह की, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए, सारे चोरों को जेल भेज दिया, सारे पाकेट मारों को जेल भेज दिया, तो वहाँ कहाँ पैदा हो गए? अयोध्या में कैसे पैदा हो गए, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी। उनके पास एलआई था, उनके पास सीक्रेट सर्विसेज थी, उनको सारी सूचनाएं थी, तो पहले से जानकारी करके उसे रोकने का प्रयास माननीय अखिलेश मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री जी ने तो किया नहीं, केवल हमारे ऊपर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो हुआ था वो समरसता का सवाल था। एक दूसरे
0: यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
17: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है।
18: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से?

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: To right field, and it will leave.
0: From the first pitch of the season to the stretch run,
1: and that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
3: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें।
4: समझ कर, इन्वेस्ट कर।
5: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: पापा।
4: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का
5: सब कैशलेस हो गया
4: है।
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सुंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

पंचायत उत्तर प्रदेश आस्था में बोले योगी आदित्यनाथ, राम को नकारने वाले आस्था की बात कर रहे। सैफई खानदान ने राज्य को डुबोया, हमने टॉप थ्री में पहुंचाया। माफिया से समाजवादी पार्टी की सहानुभूति। आस्था के मंच पर सांसद रवि किशन ने कहा 2027 में 17 की जीत का रिकॉर्ड टूटेगा। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा ब्राह्मण हमारे साथ, चढ़ावा चोरी बनेगा चुनावी मुद्दा, राहुल अखिलेश साथ हैं। मॉनसून सत्र में बदल सकते हैं सियासी समीकरण, परिसीमन बिल पर सरकार का साथ देगा एनसीपी, शरद पवार गुट, सुप्रिया सुले का दावा, उद्धव समेत सभी दलों से हो चुकी है चर्चा, सबका रुख

सकारात्मक। पंजाब में चन्नी संकट पर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप का मंथन। फीडबैक के साथ राहुल खड़गे से मिले भूपेश बघेल ने नेतृत्व परिवर्तन को किया खारिज, कहा यह गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। और पीओजेके में पाकिस्तान को खुला चैलेंज, आंदोलनकारी नेता अमान खान शाहबाज मुनीर को ललकारते दिखे, कहा ये कब्जे वाला इलाका। रावलाकोट में हजारों की भीड़ ने किया तालियों से बयान का स्वागत।

0: और अब एक बड़ी खबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां ममूरा में एक बड़ी बिल्डिंग में जोरदार आग लगती है। बहुत से लोग थे वहां, उनको रेस्क्यू किया जाता है और अभी तक दो लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। नोएडा सेक्टर 66 के एक बहुमंजिला मकान में आग लगती है और ये देखिए गाड़ियां कैसे जली। ये बेसमेंट बताया जा रहा है जहां पर कई गाड़ियां खड़ी रहती थी, अब एक के बाद एक आप देखिए कि कई बाइक जल चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड जल चुकी है और भी कई गाड़ियां। और इसके पीछे क्या बात वजह बताई जा रही है कि इलेक्ट्रिक बाइक थी, उसको चार्ज किया जा रहा था और इस पार्किंग के दौरान आग लगती है और फिर आग भड़क जाती है। ये वो जगह है जहां पर बेसमेंट में कई सारी गाड़ियां खड़ी की जा रही थी, यहां से आग फैलते फैलते ऊपरी मंजिल तक पहुंची और बहुत से लोग ऊपर रह रहे थे। कई परिवार ऐसे हैं जो ऊपर रह रहे थे, उनको रेस्क्यू किया गया। कुछ लोग नीचे उतर पाए, लेकिन जो लोग नीचे नहीं उतर पाए उनको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग बल्लियों के सहारे एक नसेनी बनाई गई, एक सीढ़ी बनाई गई और उसके बाद उसमें महिलाएं भी थी, युवा भी थे, पुरुष भी थे, उनको वहां से रेस्क्यू किया गया, उनकी जान बचाई गई। हालांकि दो लोगों की मौत की आशंका अभी तक आई जा रही है। 40 से 50 परिवार ऐसे तो जो यहां पर रह रहे थे, अब उनको रेस्क्यू किया गया। अभी भी राहत और बचाव का मौके पर चल रहा है। आग की लपटें, धुआं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आग को बुझाने की कोशिशें भी लगातार की जा रही है और कोई फंसा ना हो, ऐसे वक्त पर सबसे पहले प्राथमिकता रहती है रेस्क्यू टीम की, इमरजेंसी सर्विसेज की, कि लोगों की जान बचाई जा सके। तो यहां भी लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है, लेकिन कितना मुश्किल होता है ऐसे वक्त पर आग को बुझाना, ये आप तस्वीरों से समझिए। ये काले धुएं का गुब्बारा आप देख रहे हैं, गाड़ियां जल रही हैं ऊपर, ये बेसमेंट है तो आप देखिए कि काले धुएं का गुब्बारा इतना है कि अंदर पहुंचना मुश्किल हो पा रहा है, गाड़ियों की आग बुझाना मुश्किल हो पा रहा है, सांस लेना मुश्किल हो पा रहा है। तो ऐसे में ये आग फैल जाती है और बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन कई गाड़ियां जलकर तबाह हो गई, दो लोगों की मौत की आशंका अभी तक सामने आ रही है, जो खबर सामने आ रही है। और सेक्टर 66 है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, परिवार के साथ यहां पर रहते हैं, यहां पर एक एक कमरे में, दो दो कमरे में अपने परिवार के साथ रहते हैं और वहीं पर एक ऐसी ही एक इमारत पर एक मकान में आग लगी, जहां बताया जा रहा है कि 50 परिवार थे वो फंस गए थे, ज्यादातरों को अभी तक बचा लिया गया है। अरविंद दोजा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या अपडेट है आपके पास अभी?
1: देखिए, जो ज्वाइंट कमिश्नर है नोएडा के, उन्होंने आज तक को जानकारी दी है, उसके मुताबिक दो लोगों की हादसे में मौत हो गई है। भीषण हादसा था, लेकिन जो लोकल पुलिस फायर डिपार्टमेंट है उसने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। ज्वाइंट सिटी ने बताया कि ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें हर फ्लोर पर बड़े बड़े फ्लैट थे। कुल मिलाकर 48 परिवार रहते थे इसमें, सभी को सुरक्षित निकाला गया है रेस्क्यू करके। जबकि जब आग लगी तो दो लोग फंसे थे, धुएं का गुबार काफी था तो दम घुटने से उनकी मौत हुई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने डेथ घोषित कर दिया। तो एक बड़ा हादसा था, लेकिन अगर रेस्क्यू ऑपरेशन वक्त पर नहीं चलाया जाता तो और बड़ा ही हादसा होता। लेकिन अब दावा नोएडा पुलिस और फायर डिपार्टमेंट का यही है
0: कि तो स्थानीय लोगों की सतर्कता और पुलिस की सतर्कता की वजह से बड़ा हादसा टल गया। हालांकि दो लोगों की मौत की खबर अभी तक यहां पर आई। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको लिए चलते हैं सीधे उत्तर प्रदेश पंचायत आज तक, और ये जानते हैं कि आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस के हाथ में इस वक्त क्या है।

0: बहुत बहुत शुक्रिया आप इस मंच पर आए अजय राय जी, गौतम जी आप इस मंच पर आए। शुरुआत मुझे करनी है इमरान मसूद, हाल ही में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, सबसे पहले तो मुझे जानना है कि सर इस पूरे बयान को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में जब समाजवादी पार्टी के साथ आपकी बातचीत कहां जाएगी वो अभी तक पता नहीं है, क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में यह बयान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को कहां पर खड़ा करता है?
1: देखिए पहली बात तो ये है, समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन में हैं और मजबूत साथी हैं, और बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हुए हम लोग इस तानाशाह सरकार से उत्तर प्रदेश को भी मुक्त कराएंगे और इस देश को भी मुक्त कराएंगे।
0: लेकिन इसके बावजूद बयान की तो बात आती है ना, वो कहते हैं कि जो 2024 में 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा, ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के वजह से हुआ है, और उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दी है कि समाजवादी पार्टी इस मुगालते में ना रहे कि वो उनके बदौलत उनको ये सीटें मिल पाई है। कहीं ना कहीं ये लड़ाई आपसी यहां पर शुरू हो गई है, ऐसा नहीं आपको लगता? क्योंकि बयान के वजह से बाकी सारी चीजें बदल गई।
1: कोई आपस में लड़ाई नहीं है, जब देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हुआ तो पूरा इंडिया ब्लॉक इकट्ठा एकजुट हुआ, और यहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। हमारी वैचारिक एकता है और हम मजबूती के साथ इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाएंगे। बाकी चीजों पर ध्यान देने की ना सपा के साथियों को जरूरत है ना कांग्रेस के साथियों को जरूरत है।
0: तो फिर बयान क्यों आ रहे हैं सर, आप इसके बारे में तो जानकारी दे दीजिए ना कि क्यों अचानक ऐसा हो रहा है कि सहारनपुर के सांसद आकर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो प्रदर्शन रहा है उसके बाद समाजवादी पार्टी अपने आप को बड़ी पार्टी ना समझे, 50-50 हमें करना होगा।
1: देखिए हम बराबर के साथी हैं, कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, बल्कि पूरे देश में जाति धर्म से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर चलती है। हमारी जो सोच है वो इंक्लूसिव सोच है, और निसंदेह हमारे लिए देश का संविधान सर्वोपरि है। हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत मुद्दे बाद में, पहले देश का मुद्दा, देश का संविधान और देश का लोकतंत्र हम सबके लिए प्रिय है।
0: नहीं, बात तो ठीक है, ये कहने के लिए तो बात ठीक है, संविधान के मुद्दे पर लोकसभा के भीतर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में रहा, इंडिया अलायंस वहां पर साथ में आया और उसका नतीजा आपको देखने को मिला। लेकिन जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तब मामले बदल जाते हैं, जिस तरीके से बातें होने लगती है उससे ऐसा लगता है कि जो लोकसभा में हुआ था वो बीत गया। अब विधानसभा में बराबरी का ओहदा मांगने की कांग्रेस पार्टी की कोशिश जो किसी भी तरीके से जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई नजर नहीं आती। आपने जब भी अकेले चुनाव लड़ा आपको
1: ये आपका मत है,
0: नहीं लेकिन स्टैटिस्टिक्स
1: ये आपका मत है, कांग्रेस बहुत मजबूत है,
0: नंबर्स बताइए।
1: अभी आप एक महीने के अंदर एक एक गांव में, मैं तो पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के हर जिले में जा रहा हूं, एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें बुजुर्ग लोग आके ना मिल रहे हो, खड़े हो गए सब, सब में गजब का उत्साह है, पूरा संगठन आपको नजर आएगा। और इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में जो भी कुछ करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, और ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम दोनों के बीच में आपसी सहमति है। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी पार्टी के बहुत जल्द बैठ के अब सारे मुद्दे तय करेंगे, बहुत जल्द जनता से बात करके हम लोग गांव के मजदूरों से, किसानों से, दलितों से, हम एडवोकेट से, प्रोफेसर से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, अलग अलग वर्गों से हम लोग सबसे बात कर रहे हैं। किसान पंचायत मैंने भी की है, अभी मैंने वकीलों के ग्रुप से पूरी डिस्कशन किया है, सबके मुद्दे को समाकित करते हुए बहुत जल्द हम लोग आपस में बातचीत करके जनता का घोषणा पत्र, जनता के मुद्दे, ये घोषणा पत्र हमारा बहुत जल्द लोगों के बीच में होगा।
0: साझा घोषणा पत्र होगा कि अकेला घोषणा पत्र होगा?
1: हम लोग, मैंने बताया ना, अभी हम लोग साथ बैठेंगे, जब हम मिलके लड़ेंगे तो घोषणा पत्र भी साझा ही होगा।
0: लेकिन मामला तो सीटों के बंटवारे पर अटकता है अजय,
1: कोई कहीं कुछ नहीं अटक रहा।
0: 403 की बात क्यों हो रही है फिर? अजय राय जी ने कही है 403 की बात,
1: कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेतागणों का आपस में मीटिंग ऑफ माइंड है, और निश्चित तौर पर सीनियर नेतागण बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की जनता के हित में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक तानाशाह सरकार देश उत्तर प्रदेश के अंदर है जिसने पुलिस को भी हत्यारा बना दिया। आज की उत्तर प्रदेश की सरकार को ना तो उत्तर प्रदेश के न्यायालयों पे भरोसा है, ना ही यहाँ की जांच एजेंसियों पे भरोसा है, ना इस देश के संविधान और कानून पे भरोसा है, पुलिस के द्वारा ही लोगों को मरवाए दे रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर किसी ने अपराध किया भी है, मान लीजिए लेट अस प्रिज्यूम कि किसी ने अपराध किया है, उसके लिए पुलिस है, पुलिस अरेस्ट करे, इन्वेस्टिगेट करे, इंटरोगेट करे, चार्जशीट दाखिल करे, कोर्ट उसमें संज्ञान ले, चार्ज फ्रेम करे, एविडेंस लीकआउट करे, और अगर अपराधी का अपराध सिद्ध होता उसको सजा दे। पुलिस को किसने अधिकार दे दिया आप सीधा लोगों को मार दो? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस देश के संविधान में भरोसा नहीं करती? क्या प्रजातांत्रिक मूल्यों में भरोसा नहीं करती? क्या ये तानाशाह सरकार है? क्या ये लोग संविधान से ऊपर है? हमने तो कानून में पढ़ा था, देयर इज रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, एवरीबॉडी इज इक्वल अमंग इक्वल्स, नोबडी इज अबाउट द लॉ। बट इन उत्तर प्रदेश यहाँ के मुख्यमंत्री तो कानून से भी ऊपर है, संविधान से भी ऊपर है। उनका आचरण किसी भी दृष्टि से ऐसा नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री का आचरण है।
0: आज योगी आदित्यनाथ सुबह मंच पर आए थे और उनका यह कहना था कि जो इस एनकाउंटर्स को विरोध कर रहा है वो किसी ना किसी तरीके से क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहा है।
1: किसका विरोध कर रहा है?
0: एनकाउंटर का जो विरोध कर रहा है।
1: देखिए
0: वो तो एक बात जहन्नुम में पहुंच जाते हैं, उनकी भाषा तो आपको पता है।
1: देखिए एक बात समझिए, एनकाउंटर्स जहां जरूरी होते हैं, सपोज करो अपराधी सामने और बंदूक लगा निकाल कर गोलियां चला रहा है, तो वहां पुलिस को एक लिमिटेड फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी रक्षा के लिए भी और अपराधी को काबू करने के लिए भी। लेकिन उसकी आड़ में आप लोगों को मार दोगे, ये इजाजत किसी को संविधान नहीं देता है।
0: आपने इनकी तरफ तो इशारा कर दिया, वो इंचार्ज है इसके लिए, लेकिन मैं आपसे एक बार पूछना चाहूंगा, क्योंकि इमरान मसूद पर आपकी राय कुछ अलग नजर आ रही है। आपने कहा उस तरफ करें, चल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है, आपने कहा कि 403 की तैयारी चल रही है, अब तक बातचीत भी शुरू नहीं हुई और 403 की तैयारी की आपने बात करना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया हुआ है कि जिस तरीके से MIM काम करती है उसी तरीके से इमरान मसूद काम कर रहे हैं।
2: देखिए शाही जी, पहली बात मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक अच्छा शो आयोजन किया है यहाँ लखनऊ में और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा आप कर रहे हैं, भगवान राम के मंदिर पर चर्चा कर रहे हैं और तमाम इश्यूज हैं जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं। हमने जो कहा कि 403 विधानसभा की हमारी संगठन सृजन के माध्यम से तैयारी चल रही है, जब हम 403 विधानसभाओं में मजबूत रहेंगे तब जो है सामने वाले समाजवादी पार्टी जो हमसे गठबंधन हो चल रहा है और जो चीज़ें आगे आएंगी तब उनको हम ताकत दे पाएंगे। अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो हम ताकत कहाँ दे पाएंगे उनको? हम ताकत तभी दे पाएंगे जब 403, मेरी बात पूरी हो जाने दिए, 403 विधानसभाओं में हम तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में 24 के चुनाव में 17 सीट पे हम लड़े और वो 43 सीट पूरी चीजें 37 सीट वो जीत कर आए, 17 सीट हम जीत कर 6 सीट हम जीते 17 में से। और आप देख सकते हैं ताकत थी तभी तो एक दूसरे के साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर कहीं भी आप देख लीजिएगा, कोई जिला हो, एक एक लोग तन मन धन से कांग्रेस के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और पूरी ताकत के साथ उनके साथ लड़े। और आप देख सकते हैं कि परिणाम उत्तर प्रदेश ने ही मोदी के रथ को, जो दिल्ली में उनका रथ चल रहा था उस रथ को रोकने का काम उत्तर प्रदेश के हमारे जनता ने किया, उत्तर प्रदेश के हमारे साथियों ने किया।
0: लेकिन वो तो इसीलिए हो पाया क्योंकि आप दोनों साथ में लड़े, उसके पहले जो बयानबाजी हुई 2024 के पहले तो नहीं हुई थी। विधानसभा आने के बाद क्या होता है?
2: मैं एक बात और कहना
0: चाहूं, अलायंस की बैठक हुई दिल्ली में, वहां पर मैं अखिलेश यादव वहां पर जाकर कह रहे थे कि आखिर तक बातचीत नहीं की,
2: मैं
0: कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाए।
2: देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। दोनों बड़े दल समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, जिनका बहुत बड़ा आधार बताया जाता है, कितनी सीटें आई? दोनों लोग मिले 19 में, अब कितनी सीटें आई थी आपके सामने है, आप देख लीजिए। 2024 में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी लड़ी, आप देख सकते हैं सीटों का ग्राफ जबरदस्त तरीके से गया।
0: तो आपका कहना है कि
2: इसके पहले भी इतना ग्राफ कभी नहीं था समाजवादी पार्टी का।
0: तो आपका कहना है कि आपके साथ आने के वजह से उनका ग्राफ बढ़ा समाजवादी पार्टी?
2: आपके सामने है, मैं प्रमाण के तौर पे बोल रहा हूँ कि 2019 में आप बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका ग्राफ चुनाव लड़े, 2024 में हमारे साथ लड़े, आपके सामने परिणाम है। मैं तो परिणाम की बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ,
0: ठीक है,
2: मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ।
0: एक ग्राफ मेरे पास भी है, आपने ग्राफ बताया, ठीक है, और जो रियलिटी है 2019 में साथ में लड़े जब वो जो सीटें जो जीता है सबने देखा हुआ, एक ग्राफ मेरे पास भी है। आपने 2017 में साथ में चुनाव लड़ा, आपको मिली 7 सीटें विधानसभा के भीतर। 2022 में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पर चुनाव लड़ा, आपका वोट प्रतिशत 2.33% और 2 सीटें आपको मिल पाई। ये आपका भी तो ग्राफ है, ऐसा नहीं है कि आपका ग्राफ कुछ अलग है।
2: ऐसा है, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदली, वही चीज आप देख सकते हैं कि 2000 जो आपने कहा 2.3, आप देख सकते हैं कि वही आज उत्तर प्रदेश के अंदर रायबरेली, अमेठी, बनारस, बनारस की भी चर्चा कर लीजिए। मोदी जी 7 राउंड चुनाव हारे कि नहीं हारे, डंकी की चोट पर हराया उनको। सूरत से जब काउंटिंग चली तो मोदी जी चुनाव हार रहे थे, उसके बाद आप बताइए 1 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद पूरे चुनाव आयोग ने अपने अधिकृत वेबसाइट को लॉक कर दिया, बंद कर दिया कि कौन आगे गया कौन पीछे गया। 4 बजे मोदी जी डिक्लेयर होते हैं कि मोदी जी चुनाव 1,52,000 से जीत गए। अरे उसके बीच का आंकड़ा कहां गया भैया, कौन आगे था कौन पीछे था, जरा आगे थे कि मोदी जी पीछे थे, क्यों छिपाया गया। तो मैं मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बनारस उसका उदाहरण है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जो कहते थे कि अश्वमेघ का घोड़ा है वो कभी अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा रुकेगा नहीं, और बनारस की जनता ने उनको हराया। और फिर आप देख सकते हैं कि आज पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर आज चर्चा का विषय है पूरी।
0: आपने बात सही कही कि राजनीतिक परिस्थिति बदलती रहती है, जो 2017 में हुआ वो शायद आज नहीं होगा, जो 2022 में हुआ वो शायद आज नहीं होगा, राजनीतिक परिस्थिति बदलती होती है। 2024 में हुआ वो भी आज होगा उसकी कोई गारंटी नहीं, स्थिति हमेशा बदलती रहती है। आज हम जब एनडीए को देख रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी है, उनके साथ में छोटे छोटे दल भी उन्होंने अपने साथ में लेके रखे हुए हैं, फिर वो निषाद है या राजभर है या जो राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ में खड़ा है, अनुप्रिया पटेल उनके साथ में खड़ी है, और अभी चिराग पासवान भी यहां पर आने वाले हैं। भारतीय कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ कौन खड़ा है ना, चंद्रशेखर आजाद दिख रहे हैं। बीएसपी के मायावती सुप्रीमो को मिलने के लिए गौतम जी गए थे, आपको तो मिली भी नहीं। वो कैसे करेंगे आप ये सब चीज, क्योंकि आखिरकार गठबंधन की भी राजनीति की बात होनी चाहिए।
2: देखिए आज जो भारतीय जनता पार्टी की बात आपने कहा कि उनके साथ कई दल हैं, कई लोग हैं, चढ़ावा चोरी पे क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, चंदा चोरी पर क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, इनके लोग शामिल हैं उसमें, भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम के नाम पर ही ये जाएंगे, क्योंकि जो लोग आज उसमें हैं, छोटे छोटे लोगों को तो जेल भेज दिया आपने, छोटे लोगों को भेज दिया, टिल्लू यादव कौन कौन और किसको किसको भेज दिया आपने, मिश्रा जी को। अरे भैया चंपत राय बंसल कब जेल जाएंगे, योगी जी अनिल मिश्रा कब जाएंगे, निपेंद्र मिश्रा के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, गोविंद गिरी पर कब कार्रवाई होगी, गोपाल राव पर कब कार्रवाई होगी, ये प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। और निश्चित तौर से आज ये जो आज गांव गांव में चर्चा है कि चंदा चोरी तो अशोक सिंघल के समय हुआ, अब चढ़ावा चोरी हो रहा है, जो माताएं बने अपने आंचल में पैसा बांध कर जाती हैं, उस आंचल का पैसा इन्होंने छीन लिया, इसका जवाब चुनाव में कैसे दोगे,
0: बिल्कुल
2: कैसे दोगे आप, गठबंधन से नहीं होगा, आपको जनता के बीच में जाके बताना पड़ेगा कि कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई किया।
0: अजय राजे, चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी पर मुझे बात करनी है, क्योंकि एक सबसे बड़ा मुद्दा के तौर पर वो उभर रहा है, और अभी अभी पहले जो सेशन हुआ उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया थी, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब तो आपको जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल अरेंजमेंट अलग तरीके से होता है। चढ़ावा चोरी पर हम बात करेंगे, आप पॉलिटिकल अलायंसेस कैसे बनाएंगे, मैंने इसीलिए स्पेसिफिक सवाल पूछा। आप गए थे मायावती को मिलने के लिए, आपसे नहीं मिली, चंद्रशेखर आजाद आज आपके साथ में है नहीं है किसी को पता नहीं है, जो अलायंसेस आपको बनाने हैं आज, आपकी अलायंस किस तरीके से होगी वो भी अभी तक क्लियरली किसी को पता नहीं, वो आप कैसे बनाएंगे,
1: एकदम क्लियर
0: मैनेजमेंट कैसे हो,
1: एकदम क्लियर है। आपके माथे पे जो साहिल जी पसीना है वो बयान कर रहा है कि आप तनाव में हैं, लेकिन
0: पसीना तो उनके माथे पर भी है।
1: नहीं हमारे
0: थोड़ा उधर नजर डालिएगा, उनके माथे पर भी पसीना
1: है। जब से राहुल गांधी जी ने
0: अजय राय जी के माथे
1: जब से राहुल गांधी जी ने
0: चले
1: जब से राहुल गांधी जी ने इंडिया ब्लॉक को मजबूत करके इस देश के संविधान व लोकतंत्र को बचाने की कसम खाई है, पूरे देश में जनता इतनी मजबूती के साथ जुड़नी शुरू हुई है, तो पसीना आप ही को नहीं, ये पसीना उन सब दलों को आ रहा है जो संविधान के खिलाफ हैं। रही बात कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो लोग इस देश के संविधान को मानते हैं, जो लोग इस देश के लोकतंत्र को मानते हैं, जो लोग इस बात को मानते हैं कि कभी मुगलों को भी ये गुमान था कि उनकी सत्ता कभी अंत नहीं होगी, इसी प्रकार का गुमान कभी अंग्रेजों को था कि अंग्रेजों की सत्ता कभी खत्म नहीं होगी, इसी प्रकार की गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को हो गई है, मोदी जी को भी और योगी जी को भी, कि इनकी इस तानाशाह सत्ता का कभी अंत नहीं होगा, बेशक इन्होंने सिस्टम को कब्जा लिया हो।
0: आप स्पेसिफिक
1: बेशक इन्होंने स्पेसिफिक इस देश के न्यायाधीशों को
0: क्या
1: मायावती में लिया हो,
0: क्या मायावती को गठबंधन में लिया जाएगा, क्या आपके तरफ से कोशिश होगी?
1: देखिए,
0: क्या चंद्रशेखर आजाद,
1: मैं एकदम स्पष्ट कर दूं,
0: आपके तरफ से कोशिश,
1: आपके इस सवाल पे मेरा एकदम स्पष्ट उत्तर है।
0: ठीक,
1: जो भी दल इस देश के संविधान में लोकतंत्र में भरोसा करते हैं वो उन सबका इंडिया गठबंधन में स्वागत है।
0: कोशिश होगी क्या आपके तरफ से? कोई मैंने इसलिए स्पेसिफिक,
1: हमने ओपन,
0: आपको उदाहरण, आप गए थे मायावती के घर पे, आप मिलने के लिए गए थे, नहीं मिली आपको?
1: देखिए,
0: समाजवादी पार्टी को बात नहीं अच्छी लगी।
1: देखिए, बहन मायावती डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक मजबूत फॉलोवर है और मैं भी उन्हीं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मजबूत फॉलोवर हूं।
0: हम भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर,
1: और उनको भी कांशीराम साहब ने ट्रेंड किया और मुझे भी कांशीराम साहब ने ट्रेंड किया। मायावती जी के पिताजी, जब मैं उनके घर जाता था, बिना खाना खाए मुझे आने नहीं देते थे और कहते थे ये पैसा मेरी पेंशन का है।
0: ठीक,
1: उनके भाई सिद्धार्थ वो मेरे घर आते रहे, मैं जाता रहा हूँ। जो बसपा के बड़े बड़े नेता मेरे घर आते, वो कहते थे कि तुम बहन जी कम से कम मिशन की एक हालचाल तो पूछ लिया करो, आप लखनऊ जाते हो, आपके सामने एकदम घर है, तो आप इतने अपने आप को थोड़ा उनको इज्जत दो, कम से कम जय भीम ही कर लो। तो मैं अपने कार्यालय में, हमारी मीटिंग थी जहाँ हमें जो मूर्ति का अनावरण करना था वीरा पासी जी का, उस मूर्ति के अनावरण की तैयारी की मीटिंग थी, वहां से निकले, सामने बहन जी का बंगला था, तो मुझे याद आया कि फिर बीएसपी वाले लोग मेरे पुराने साथी से पूछेंगे कि तुमने बहन जी का हालचाल क्यों नहीं जाना, तो मैं हालचाल जानने गया। उनके स्टाफ ने बड़े अच्छे से व्यवहार किया और उन्होंने कहा कि बहन जी को हम संदेशा दे देंगे, आपका नंबर हमारे पास है, जब बहन जी कहेंगे आपको बुला लेंगे।
0: अभी
1: तो अगर अपने, मैं ये कहता हूँ किसी भी पार्टी में नेता हो, हमारे समाज के जो नेता, क्या हमें उनकी रेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? तो हम रेस्पेक्ट करते हैं, इसमें
0: राजनीति में
1: इसको इतना मुद्दा बनाने की जरूरत क्या है?
0: नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन जब आप कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज के तौर पर लखनऊ में आते हैं और मायावती के द्वार पर जाकर आप बिना मिले लौट कर आते हैं, तो उसके राजनीतिक मतलब तो निकलेंगे। आप तो मुझसे ज्यादा राजनीति को जानते हैं, आप तो आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, आप तो चुनाव भी लड़ चुके हैं, आपको भी पता है कि आप किसी के द्वार पर जाएंगे, नहीं मिलेंगे, तो उसके राजनीतिक मतलब निकाले जाएंगे, आपके भले कितने भी पुराने संबंध।
1: देखिए, पहली बात तो मैं,
0: मेरे पसीने का मतलब आपने
1: निकाला, साहिल जी मैं उस वक्त ना इंचार्ज नहीं था।
0: ठीक है, आप बनने वाले थे,
1: ठीक है,
0: पता था।
1: तो एक तो होता है मैं इंचार्ज है कि उस तौर पे जाना, एक होता है श्रद्धा बस जाना।
0: ठीक
1: है, मेरे समाज के जितने भी नेता किसी भी पार्टी में हो, हम लोग समाज के नाते एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं और करनी चाहिए। पार्टी अपनी जगह है, देश पहले है, देश का संविधान पहले है, देश का लोकतंत्र पहले है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
7: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
8: Sokudo.
9: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
11: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
12: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560006546 पर कॉल करें।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: पाकिस्तान के जुल्म और सितम से परेशान अब पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर उठ खड़ा हुआ है। हजारों की तादाद में पीओजेके के लोग अब मुजफ्फराबाद की ओर कूच कर रहे हैं। पीओजेके और रावलाकोट के बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुजफ्फराबाद पहुंचकर सरकार की नींद उड़ा रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार के माथे पर शिकन की लकीरें खींच दी है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट बिकॉज़ वेल्स फार्गो विल सेंड एन अलर्ट इफ हर बैलेंस ड्रॉप्स बिलो हर सेट अमाउंट। यप, नथिंग गेट्स पास्ट लूसी और वेल्स फार्गो फॉर दैट मैटर। However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
6: Swing and a foul out of play off to the left.
5: Big 12 Radio.
7: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
5: Talk Sport.
8: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
5: And more. Search sports to find the stations covering your team.
9: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
11: संसद सत्र की तैयारी के बीच दिल्ली में हाई प्रोफाइल बैठकें। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी हलचल। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम योगी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अमित शाह से मुलाकात की। यूपी में बीजेपी संगठन में बदलाव के बाद दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। सीएम योगी ने अमित शाह से मुलाकात की। इसे यूपी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। गृहमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट की, अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक धन्यवाद। सीएम योगी से मुलाकात के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी अमित शाह से मिले और चर्चा की। हालांकि मुलाकात की सटीक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। जहां एक तरफ सीएम योगी से मुलाकात के बाद यूपी में सियासी गर्मी तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भी अमित शाह से मुलाकात कर महाराष्ट्र में भी हलचल बढ़ा दी है। ये बैठक ऐसे समय पर हुई जब केंद्र सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुलाकात के बाद शिंदे ने कहा कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी और हमारे 6 सांसद भी वहां मौजूद थे।
12: मीटिंग हुई, सदिच्छा भेंट थी और अमित भाई के साथ हमारे 6 सांसद थे, उनकी बैठक हुई है। सदिच्छा भेंट थी और उनके चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में।
11: एकनाथ शिंदे का ये दिल्ली दौरा केंद्र में शिवसेना की भूमिका को तय करने और मानसून सत्र से पहले पार्टी की ताकत को एकजुट करने के लिहाज से अहम साबित होने वाला है। आज तक ब्यूरो।
13: छतरी न खोल बरसात में,
14: आहा भीग जाने दे
13: मेरी छतरी के नीचे आजा।
14: क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी?
13: सलमा या कमला?
14: सलमा भी थी, कलमा भी होगी, कमला भी होगी।
15: अरे आप कमला गाओगे,
14: सलमा
15: ये सलमा गाएंगे।
14: कोई तो आगे और पीछे होगा।
13: मैं कमला पसंद, ये सलमा पसंद। नेताओं ने मिलकर ये ट्रस्ट बनाया है जिसमें लैक ऑफ ट्रस्ट जो है आजकल सबसे ज्यादा है, तो का ही कर सकते हैं आप। और सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। संघ ने इधर लेटर जारी कर दिया।

पंचायत उत्तर प्रदेश आज तक में बोले, योगी राम को नकारने वाले आस्था की बात कर रहे। सिर्फ वही खानदान ने राज्य को डुबोया, हमने टॉप थ्री में पहुंचाया माफिया से सपा की सहानुभूति। आज तक के मंच पर सांसद रवि किशन ने कहा 2027 में 17 की जीत का रिकॉर्ड टूटेगा। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा ब्राह्मण हमारे साथ, चढ़ावा चोरी बनेगा चुनावी मुद्दा, राहुल अखिलेश साथ। मानसून सत्र में बदल सकते हैं सियासी समीकरण, परिसीमन बिल पर सरकार का साथ देगा एनसीपी शरद पवार गुट, सुप्रिया सुले का दावा, उद्धव समेत सभी दलों से हो चुकी है बात, सबका रुख सकारात्मक। बंगाल में ममता बनर्जी का एक और झटका, दीदी की गरीबी और पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने उठाया बगावती झंडा, टीएमसी से अलग होकर ज्वाइन की अब बागी गुट। नोएडा के ममूरा में घर में लगी भीषण आग से दो लोगों की मौत की खबर, लपटों में फंसे 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया, इलेक्ट्रिक बाइक में चिंगारी की वजह से हादसा।

आज हम यहाँ पे लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, पंचायत उत्तर प्रदेश के स्पेशल कॉन्क्लेव में यहाँ पर उपस्थित हैं। आप में से अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर वह किसी राजनीति की किसी संकुचित दायरे में कैद नहीं है, उत्तर प्रदेश में वह किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, किसी भी जनपद से जुड़ा हुआ हो, किसी भी पेशे से जुड़ा हुआ हो, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की इस प्रगति को आप सब ने पिछले एक दशक में देखा है। बदलते हुए भारत में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या हो सकती है और उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है, उत्तर प्रदेश की क्या आकांक्षाएं थी, उन आकांक्षाओं की पूर्ति हुई है नहीं हुई है, इन सभी बातों को अनुभव भी किया होगा। मुझे एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के पहले एक सांसद के रूप में उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय मैं उन मुद्दों से जूझता था। उन मुद्दों के लिए हर स्तर पर उन मुद्दों को उठाने का प्रयास करता था और कभी-कभी निराशा भी होती थी कि लगता है ये सब नियति बन चुकी है, बीमारी से मरना, माफिया के सामने लोगों का नतमस्तक होना, बिजली के लिए और सामान्य जन सुविधाओं के लिए लोगों को तरसते हुए देखना, भूख से मौत, युवाओं के सामने पहचान का संकट, किसान के सामने आत्महत्या जैसे कदम उनके द्वारा उठाए जाने, ये सभी चीजों को हम बहुत नजदीक से देखते थे और उस समय अंतःकरण में पीड़ा होती थी कि क्या इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है क्या। लेकिन जब पिछले 9 वर्ष के अंदर मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर शासन सत्ता का संचालन करने का अवसर हमारी पार्टी ने दिया और मैं इसके परिणाम को देखता हूं, ऐसा नहीं कि मेरे साथ में दिल्ली से या लखनऊ गोरखपुर से कोई टीम अलग से आई हो। मैं दिल्ली में सांसद था जब मुझे यहां भेजा गया, मेरे साथ एक भी व्यक्ति दिल्ली से नहीं आया। मैं गोरखपुर से सांसद था और गोरखपुर में लगातार 5 बार से सांसद होने के साथ साथ वहां से हर एक उस पे जुड़ा था, वहां से भी एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं आया। जो लोग लखनऊ में मौजूद थे और जो टीम मुझे मिली, मैंने उसी को लेकर के उनकी मानसिकता को बदलने का काम करने का प्रयास किया और जो परिणाम सामने आए हैं ये सब आपके सामने हैं। और मैं केवल एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि यही काम, यही घोषणा जो मैं भी आपके सामने करने जा रहा हूं, जो रिजल्ट आए हैं, अगर यह बात मैं आज से 9 वर्ष पहले मैं बोलता या 9.25 वर्ष पहले जो महानुभाव उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री थे वे लोग उस प्रकार की घोषणा यूपी के बारे में करते तो लोग जरूर हंस देते, अब उसके लिए ताली नहीं बजाते, उस समय हंसते। हमने इन 9 वर्षों में यूपी को कहां पहुंचाया है और मैं मानता हूं कि यूपी को इन 9 वर्षों में हम लोगों ने पहचान के संकट से उभारा है,
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है, उत्तर प्रदेश के अंदर वीमेन वर्क फोर्स की उपस्थिति 3 गुना बढ़ी है, और उत्तर प्रदेश जो कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में था, इन 9 वर्षों में देश की टॉप 3 यानी बॉटम 3 से टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। ऐसे कौन से कारण थे जो यूपी में नहीं हो सकते थे, लेकिन इन 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार आने के बाद वे जमीनी धरातल पर दिखाई दिए, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, 2014 के पहले भी एक प्रकार की डबल इंजन सरकार थी। केंद्र में कांग्रेस और यूपीए की गवर्नमेंट थी, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दोनों मिलकर के काम कर रहे थे, लेकिन पब्लिक में विश्वास नहीं था, आम जन में विश्वास नहीं था, क्योंकि आम जन ये मानता था इन दोनों की जो स्थिति है वह है एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, दोनों की स्थिति कमोवेश यही थी। ये लोग आज जो उपदेश देते हैं उन उपदेशों को इन्होंने 2014 के पहले स्वयं अंगीकार किया होता तो ये स्वयं हाशिए पर नहीं गए होते। क्या स्थिति थी यूपी के अंदर? यूपी का नौजवान अपनी पहचान छुपाता था, उसकी नौकरी पर सेंध लगती थी, उसको नौकरी नहीं मिलती थी, और अगर कभी नौकरी निकल भी गई, सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकला, उसने आवेदन भी किया, तो उसकी योग्यता के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता था, और सेलेक्ट नहीं होता था क्योंकि नौकरी पर कुछ चंद जनपदों का कब्जा था, कुछ चंद लोगों का कब्जा था। सुरक्षा की स्थिति बदहाल थी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था, कितनी खराब स्थिति यूपी के अंदर थी कल्पना करिए। 35 से ज्यादा जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में कोई भी सभ्य परिवार और कोई भी क्षमतावान परिवार अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजता था, अगर उसको भेजना होता था तो यूपी के बाहर किसी हॉस्टल में या किसी नातेदार रिश्तेदार के यहां भेज करके वहां से अपनी बेटी को पढ़ाता था। एक बेटी को जिसको मां बाप का सानिध्य मिलना चाहिए बचपन में, वह हॉस्टल में रहने के लिए या फिर अपने नातेदार रिश्तेदार के यहां रहने के लिए मजबूर कर दी जा रही है। यह स्थिति 2017 के पहले थी। कैसे सत्ता के समानांतर माफिया की सरकारें चलती थी, कोई सुरक्षित नहीं था, न मीडिया सुरक्षित थी, न कॉमन मैन सुरक्षित था, न व्यापारी सुरक्षित था, न कोई बेटी सुरक्षित थी, न उद्यमी सुरक्षित था। व्यापारी घर से निकलता था तो ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मैं शाम को भी अपने परिवार का मुंह देख सकूं। परिवार का कोई सदस्य घर से सर्विस करने के लिए किसी काम के लिए बाहर निकलता था तो शाम वह ये प्रार्थना करके निकलता था कि ईश्वर मुझे शाम को अपने परिवार का मुंह देखने का अवसर मिले। उद्यमी निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे मालूम था कि जब वह स्वयं सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। न सरकार की नीति थी और न नियत थी, अराजकता चरम पर थी, माफिया के सामने सरकारें नाक रगड़ती भी दिखाई देती थी, और आज भी उनके पुराने संस्कार आप सुनते होंगे
जब ये बोलते हैं कि अगर सत्ता में कभी आ गए तो हम इसकी जांच कराएंगे कि माफिया मारे क्यों जा रहे हैं या माफिया को माफिया के साथ इतनी सख्ती क्यों की जा रही है, यानी उनकी सहानुभूति आज भी यूपी के नागरिकों के लिए नहीं है, यूपी के कॉमन मैन के लिए नहीं है, यूपी के व्यापारी यूपी की बेटी के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति आज भी उस माफिया के प्रति है, उनके गुर्गों के प्रति है जो या तो जेल में है या फिर जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उनकी सहानुभूति यूपी के नागरिकों के प्रति आज भी नहीं दिखती है। ये स्थिति यूपी के अंदर, आप यूपी के अंदर आज एक संतुष्टि का लेवल पाते होंगे अगर सरकार के स्तर पर तुलनात्मक रूप से आप कोई भी बात पब्लिक के सामने कहेंगे कि 2017 से लेके 2026 के बीच इन 20 वर्षों के ही या 2003 से लेकर के 2026 के बीच इन 23 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के आप पब्लिक के बीच में जाइए, पहले 4 साल मुलायम सिंह जी के, अगले 5 साल मायावती जी के, अगले 5 वर्ष अखिलेश जी के, और फिर पिछले 10 वर्षों से लगभग 9 सवा 9 वर्षों से हमारी सरकार है, इन सभी को लेकर के इस रिपोर्ट कार्ड को एक बार पब्लिक के सामने आप जाएंगे तो पब्लिक से इस रिपोर्ट के बारे में, संतुष्टि के लेवल के बारे में आप पूछेंगे, आपको स्वर्गीय राजीव गांधी जी की वे प्रश्न वे मुद्दे याद आ जाएंगे जिन्होंने कभी एक बार बहुत निराश होकर के कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं लेकिन 15 ही नीचे पहुंचता है। मित्रों, ये 15 रुपया ही पहुंचता था, ये 85 कौन खा जाता था, और ये पैसा जो 85 रुपया खाया जा रहा था, 85% पैसे पे डकैती पड़ती थी, ये पैसा किसी युवा का होगा, किसी छात्र की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी युवा की नौकरी का पैसा था, किसी बुजुर्ग और निराश्रित महिला की पेंशन का पैसा था, किसी गरीब के अनाज का पैसा था, किसी बहन और बेटी के लिए बनने वाले शौचालय का यही पैसा था, जिस पैसे पर 85% पैसे पर ये लोग डकैती डालने का काम करते थे, और आज DBT के माध्यम से 100 रुपया दिल्ली से या लखनऊ से हम भेजते हैं तो अब पैसा सीधे उस लाभार्थी के खाते में जाता है, वह चाहे वह छात्र हो, चाहे वह युवा हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह अन्नदाता किसान हो, चाहे वह श्रमिक हो, किसी भी तबके का व्यक्ति है, उस तक उन योजनाओं का लाभ आज पहुंचता है। अब उससे अलग नहीं है, उन योजनाओं का लाभ उस तक पहुंच रहा है। आज सरकार के पास नीति भी है और उसको जमीनी धरातल पर उतारने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति का की नियत भी है। हमने संकल्प किया था कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करेंगे, माफिया मुक्त करेंगे, कर्फ्यू मुक्त करेंगे, दंगा मुक्त करेंगे, सरकार की इच्छा शक्ति थी, हम लोगों ने उसको जमीनी धरातल पर उतार कर दिखाया कि हाँ, देश का सबसे बड़ी आबादी का राज्य दंगा मुक्त हो सकता है, कर्फ्यू मुक्त हो सकता है, उपद्रव से मुक्त हो सकता है और अपनी परंपरागत पहचान उत्सव से युक्त हो सकता है। ये यूपी ने करके दिखाया है 9 वर्षों में। उत्तर प्रदेश बीमारी से मुक्त हो सकता है, माफिया से मुक्त हो सकता है, हम लोगों ने करके दिखाया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से मौतें, हर वर्ष यही सीजन था, हर परिवार सशंकित रहता था, पता नहीं कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत जीरो जीरो पे पहुंच चुकी है। हर वर्ष 1200 से 1500 मौतें होती थी, भूख से मौतें अलग से होती थी, आज सैचुरेशन 100% उन्हें हम सैचुरेट कर चुके हैं। जो लोग भूख से मरते थे उनको जमीन के पट्टे मिल चुके हैं, उनका अपना आवास बन चुका है, उनके लिए आयुष्मान का कार्ड उन तक पहुंच चुका है, उन तक रसोई गैस के सिलेंडर पहुंच चुके हैं और उनके लिए कोई ना कोई रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
परंपरागत उद्यम फिर से पुनर्जीवित हो चुका है जिसने कभी यूपी को एक पहचान दिलाई थी। याद करिए 1900 आजादी के तत्काल बाद 1950 में भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का जो योगदान था वह 14% था। 2017 में जब हम लोग आए थे तो घट करके मात्र 7% के आसपास रह गया था। यानी देश प्रगति कर रहा है लेकिन यूपी अवनति की ओर था, लगातार उसकी अर्थव्यवस्था में गिरावट थी। कारण था अन्नदाता किसान को पानी नहीं मिलता था, अन्नदाता किसान को समय पे बीज नहीं मिलता था, अन्नदाता किसान के लिए बिजली नहीं थी, किसान अपने खेत में जाने से डरता था, पैदावार हो गई फसल और ज्यादा हो गई वह भी एक समस्या थी क्योंकि उसका दाम किसान को नहीं मिलता था, बिचौलियों को मिलता था। एग्रीकल्चर यूपी के आधार थी, सरकार के स्तर पर कोई प्रोत्साहन नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग पावर जब परंपरागत उद्यम के साथ जुड़ती है तो परिणाम देती है, इकोनॉमी को तेज करती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास एमएसएमई का एक बेहतरीन नेटवर्क था लेकिन पिछली सरकारों के इंस्पेक्टर राज ने उसको तबाह कर दिया था। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जाता था, कहीं विभागीय उत्पीड़न के शिकार वे लोग होते थे। न उन्हें टेक्नोलॉजी दी गई थी, न उनको डिजाइन दी गई, न उनके लिए पैकेजिंग की सुविधा थी, न उनके लिए मार्केट की सुविधा थी, कुछ भी नहीं था। परिणाम था हताश और निराश होकर के लोग, जो किसान यूपी के अंदर कभी आत्मनिर्भर इकाई बनकर के स्वावलंबन का जीवन व्यतीत करता था, जो कारीगर कभी यूपी के अंदर उद्यमी था वो प्लान कर चुका था, कारीगर श्रमिक बन गया, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। यूपी की अर्थव्यवस्था को तो डूबना ही डूबना था और यही यूपी के अंदर हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 2017 से 2026 के बीच में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास की दर को 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की है। आज किसान के लिए समय पे बीज है। आप याद कर रहे होंगे इस समय अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, फर्टिलाइजर की क्राइसिस स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए थी लेकिन यूपी में किसानों को फर्टिलाइजर समय पे मिल रहा है, पेस्टिसाइड समय पे मिल रहा है, सीड समय पे मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इन 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने 24 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। आज यूपी के किसानों को 10 घंटे का बिजली हम उपलब्ध करवाते हैं खेती के लिए और बिजली फ्री है। यानी 16 लाख ट्यूबवेल, प्राइवेट ट्यूबवेल थे, उनको भी हमने फ्री में बिजली कर दी है। हमने कहा पैसा हम लोग स्वयं भरेंगे लेकिन आप अच्छी फसल करिए। और मुझे बताते प्रसन्नता है कि आज यूपी का किसान अच्छा कर रहा है। अकेले गन्ना किसानों को हम लोगों ने अब तक, यानी जिस राज्य में 2007 से 2017 के बीच 29 चीनी मिलें बंद हुई, 21 चीनी मिलें बेच दी गई औने पौने दाम पे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक चीनी मिल ऐसी थी जिस चीनी मिल की जमीन की कीमत ही 100 करोड़ से ऊपर की थी, उस चीनी मिल को मात्र 3 करोड़ में बेचा गया था, मात्र 3 करोड़ में। 2017 में जब सरकार बनी हमारी तब उत्तर प्रदेश में 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी था और आज पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने 3,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। ये सीधे किसानों के खाते में पैसा गया है। 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना का दाम हम किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं
और आज के दिन पे 122 चीनी मिलों का संचालन यूपी कर रहा है। एमएसएमई में जो दम तोड़ चुका था, जहां कारीगर प्लान कर चुका था, वह फिर से आगे बढ़ा है। आज के दिन पे यूपी देश के अंदर सबसे ज्यादा एमएसएमई यूनिट को संचालित कर रहा है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट वर्तमान में यूपी के अंदर संचालित हो चुके हैं। 96 लाख, हर एक यूनिट को सरकार 5 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की बीमा भी कवर उपलब्ध करवा रही है, और 3.25 करोड़ युवा इसके साथ रोजगार के साथ जुड़ चुके हैं। मित्रों, यूपी जैसे राज्य के बारे में मेरा मानना है, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कानून का राज स्थापित कर दीजिए, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल दे दीजिए, अपने आप सुशासन के लक्ष्य प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। और उत्तर प्रदेश में इस कार्य को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज मैं मानता हूं, मुझे अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि यूपी मॉडल को सुरक्षा के इस मायने में लोगों ने अडॉप्ट किया। यूपी का नाम वहीं पे नहीं आ रहा है। पहले एक मान्यता थी, मैं दिल्ली में अक्सर देखता था, राज्यों की सूची आती थी, राज्यों में किस योजना में कौन राज्य टॉप 3 में है, कौन कौन राज्य है टॉप 3 में, यूपी का कहीं पता नहीं होता था। हम ढूंढते थे यूपी कहां है, ओह यूपी तो बॉटम 3 में है। हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते थे, क्योंकि उस समय सरकारों की मानसिकता ऐसी थी। आज मैं कह सकता हूं, देश के अंदर कोई भी

नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में 100 से ज्यादा वेलफेयर की स्कीम निकली है। इन स्कीम में आज के अंदर आप देखेंगे यूपी हर एक स्कीम में टॉप 2 में यूपी का नाम आता है, हर एक स्कीम में यूपी का नाम आता है। और यूपी में स्कीम सफल होने का मतलब स्कीम अपने आप में देश के अंदर सफल हो गई, दुनिया के लिए एक मॉडल बन गई। आज हम मॉडल 100 बना रहे हैं। आज गरीब को राशन मिल रहा है, आज किसी बेटी और किसी बहन को अपनी गरिमा को छुपाने के लिए शाम का इंतजार नहीं करना होता, उसके घर में शौचालय है, कोई समस्या नहीं, पेयजल की समस्या का समाधान हुआ है। यूपी के सभी 75 जनपदों में समान रूप से हम बिजली उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यूपी में 2017 के पहले कुछ विद्युत की कुल आपूर्ति यूपी के अंदर कुल 15,000 से 16,000 मेगावाट पीक आवर में होती थी, और आज पीक आवर में यह खपत हुई है लगभग 35,000 से 35,000 मेगावाट। ये यूपी की नई स्थिति है। यूपी के अंदर बहुत सारे लोगों को औद्योगिकीकरण का मॉडल दिखाई नहीं देता है, यानी 36 सेक्टोरल पॉलिसीज यूपी ने बनाई है। इसके माध्यम से जो निवेश हुआ है, मुझे याद है 2017 में जब सरकार आने के बाद 6 महीने के बाद मेरे औद्योगिक विकास के मंत्री और अवस्थापन और औद्योगिक विकास के आयुक्त मेरे पास आए। उन्होंने कहा था हम कोई इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा भाई आपका टारगेट क्या है? उन्होंने कहा साहब 20,000 करोड़। मैंने कहा नाम क्या है? उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो मैंने कहा पहले नाम बदल दो भाई, मुझे देखे। मैंने कहा भी देखो ग्लोबल शब्द आपने रखा है और टारगेट है 20,000 करोड़ का। 20,000 करोड़ तो एक जिले का होना चाहिए, इसको डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टर समिट रखो, ये ग्लोबल नहीं, ग्लोबल के लिए आपको टारगेट बड़ा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा साहब यूपी में कौन निवेश करेगा? मैंने कहा 6 महीने हुए हैं ना, अभी कुछ तो बदला होगा। उन्होंने कहा साहब समय लगेगा, अभी विश्वास बहाल करने में समय लगेगा, हम जिससे भी बात करते हैं वो हाँ तो कहता है लेकिन निवेश करने को तैयार नहीं होता है। मैंने कहा मेहनत करो, पॉलिसीज बनाओ, इन्वेस्टर समिट के पहले हमारी कुछ पॉलिसीज आनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होगा, अनावश्यक विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा एक्सपर्ट की राय लीजिए, पॉलिसी तैयार करो, पिक एंड चूज नहीं करेंगे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे पास 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज है, 50,00,000 करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए, 50,00,000। जिस राज्य में 20,000 करोड़ का निवेश नहीं आने को तैयार था, आज 50,00,000 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 15,00,000 करोड़ को हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कर लिया है, 7,50,000 करोड़ हमारे पास तैयार है, उसके लिए कोई तिथि तय करते हुए हम उसको भी ग्राउंड ब्रेकिंग कराने की तैयारी कर रहे हैं। यह है नया यूपी, जिस यूपी में और इसके माध्यम से 65,00,000 नौजवानों को हमने यूपी के अंदर ही नौकरी दी है। ये सभी कार्यक्रम आज यूपी के अंदर चल रहे हैं। आज यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल, 2017 के पहले हम लोग भी इस बात को बोलते थे और सोचते थे, मजाक में हम लोग भी कह देते थे, लोग कहते थे यूपी का बॉर्डर कहां से शुरू हो रहा है इस राज्य में, हम कहते थे भाई देखो सड़क पे चलना है, जहां से गड्ढे प्रारंभ हो जाए मान लेना यूपी का बॉर्डर प्रारंभ हो गया। शाम के समय अगर देर शाम हो गई, जहां से अंधेरा शुरू हो जाए मान लेना यूपी का बॉर्डर शुरू हो गया। आज मैं मानता हूं यूपी के अंदर सड़कें देश के अंदर किसी भी राज्य की तुलना में अच्छी मिलेंगी, सबसे अच्छी सड़कें यूपी की मिलेंगी। भारत की 60% एक्सप्रेस नेटवर्क पर यूपी का अधिकार है आज के दिन पे। सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी के से जुड़े हुए एयरपोर्ट यूपी के पास हैं। आज के दिन पे हम 17 एयरपोर्ट का संचालन कर रहे हैं, जब मैं आया था तब यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 17 संचालित हैं, उनमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं।

0: जिसमें अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने उसका उद्घाटन करवाया है, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। यानी इस एयरपोर्ट में हमारे पास जो लैंड है वह है लगभग 14,000 एकड़ लैंड। भारत के अंदर किसी एयरपोर्ट के पास इतनी लैंड नहीं है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ और वाराणसी पहले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। और ये सभी एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, नए एयरक्राफ्ट आएंगे और बेहतरीन सुविधा यहां प्राप्त होगी। 5 नए एयरपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है। अब चित्रकूट में भी एयरपोर्ट है, आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट है। कोई सोचता था आजमगढ़ में एयरपोर्ट होगा? आज आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट है, श्रावस्ती में एयरपोर्ट है, अलीगढ़ में एयरपोर्ट, मुरादाबाद में एयरपोर्ट, जहां लोग कल्पना नहीं करते थे, सोनभद्र में एयरपोर्ट। यानी जिन क्षेत्रों में कभी कोई कल्पना ही नहीं करता था वहां भी एयरपोर्ट है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में चल चुकी है। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन, 17 के पहले एक भी नहीं था, आज 7 सिटी है हमारे पास जहां पे मेट्रो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। ये नया यूपी है, 17 के पहले अगर समाजवादी विकास का मॉडल होता ना तो यूपी कब का डूब गया होता। कैसे डूबो रहे थे ये सब? इस सिफाई खानदान कैसे यूपी को तबाह कर रहा था, उसका नमूना हम यहां पर बैठे हैं। इसके ठीक पीछे एक ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, उसको कहते हैं JPNIC, भारत के आजादी के बाद जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ था, जिस महापुरुष के नाम पर हुआ था, ऐसे सरदेव जयप्रकाश जी के नाम पर वह सेंटर बनाया है, इन समाजवादियों ने बनाने का प्रयास किया था। उसकी DPR थी 200 करोड़, 864 करोड़ खर्च हो गए, अभी भी अधूरा। कहां चला गया ये पैसा? यानी 200 करोड़ के प्रोजेक्ट पर 864 करोड़ खर्च हो गए, तब भी अधूरा है। आप यहां आए होंगे, इसके बगल में एक नदी पड़ती है, आदि गंगा के रूप में मां गोमती है, गोमती रिवर फ्रंट के नाम पर। इसका जो कुल PPR बना था वह बना था 167 करोड़ का, खर्च हो गए 1400 करोड़ और कार्य अधूरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 2016 दिसंबर में तत्कालीन CM ने उसका शिलान्यास किया। शिलान्यास करने के बाद 15,200 करोड़ रुपए के लिए उसका अलाइनमेंट तय करते हुए तय किया कि 15,200 करोड़ रुपए में यह एक्सप्रेसवे बनेगा। मार्च 17 में सरकार बदल गई, मई 17 में मैंने उसकी समीक्षा कर रहा था, मैंने पूछा भाई ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रोग्रेस क्या है? लोगों ने कहा साहब जीरो। मैंने कहा जीरो क्यों है? मुझे बताया गया कि साहब जो है लैंड ही नहीं है। तो मैंने कहा बिना लैंड के कैसे सब इसके टेंडर हो गए? आप देखिए कितनी बड़ी बेमानी थी ये। तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया एक सामान्य वे में। हमने कभी कैंसिल करो, जब है नहीं तो लैंड नहीं है तो पहले लैंड तो अलॉट एक्वायर करो या लैंड खरीदो। लैंड खरीदी गई, हमें 2 वर्ष लगे लैंड खरीदने में। 18 के अंत में लैंड जब हमारे पास आ गई, इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट के लिए 80% लैंड आपके पास होनी चाहिए, लेकिन थी ही नहीं लैंड। केवल जो ग्राम पंचायतों की राजस्व विभाग की लैंड रही होगी उस लैंड को ही इन्होंने आधार बना करके टेंडर कर दिए, सब कुछ कर दिए। 2018 में जब हमारे पास लैंड आ गई, लगभग 90% लैंड आ गई, टेंडर हुए, टेंडर के बाद ये हुआ कि अब इसको काम शुरू हो। हमने कहा भी ठीक है काम शुरू होगा, भाई बताओ कितने का टेंडर, कितने का खुला है? मुझे बताया गया कि साहब 15,200 करोड़ का। मैंने कहा पहले कितने का था? कहा 15,200 करोड़। मैंने कहा 2 साल के बाद कॉस्ट एक्सलेशन का कोई मुद्दा आया नहीं क्या? कहा नहीं साहब, कोई भी कॉस्ट नहीं बढ़ाई है लोगों ने। मैंने कहा यार देखो ये कॉन्ट्रेक्टर इतने ज्यादा जो है मेहरबान क्यों है हम लोगों पे कि 2 साल के बाद भी इनका दाम नहीं बढ़ा है। मैंने कहा एक काम करो इसको कैंसिल कर दो और एक साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मंगाओ। हमने एक साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मंगाई। मित्रों जब इस बार एक साथ मंगाई गई और उसके बाद देखा तो ये मात्र जो 15,200 करोड़ का टेंडर हुआ था वह चल गया इस बार 11,800 करोड़ रुपए में। और उस एक्सप्रेसवे को जो 341 किलोमीटर लंबा है, 341 किलोमीटर लंबा है, जिसे समाजवादी पार्टी 340 किलोमीटर बनाना चाहती थी, हमने 341 किलोमीटर बनाया। वे 110 मीटर चौड़ा बनाना चाहते थे, हमने उसको 120 मीटर चौड़ा बनाया और उसको मात्र 11,800 करोड़ रुपए में। वही एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसको आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए हम उपयोग करते हैं। यूपी के अंदर सुरक्षा नहीं थी तो यूपी के अंदर जिस राज्य में पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, आज मुझे अच्छा लगता है जब कोई पर्व और त्योहार किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, किसी का भी होता है और उनका पर्व बहुत अच्छे ढंग से मनता है, वो मनाया जाता है, तो उसके बाद वे आकर के मुझे धन्यवाद देते हैं कि साहब बहुत अच्छा हो गया कार्यक्रम। तो मैं बोलता हूँ यार 9 वर्ष के बाद तो कम से कम धन्यवाद मत दो। तो पहले दिन से हमने तय किया है कि हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से होगा, हर पर्व और त्योहार होगा। अब याद करिए 17 के पहले अभी हमारी कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है। यानी ये लोग क्या करते थे कि उपद्रव को रोकने के लिए ये कहते थे कावड़ यात्रा ही न हो, रामनवमी के ही शोभा यात्राएं न निकले, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन ही न हो, दुर्गा पूजा के पंडाल ही न सजे, इन्होंने बैन कर दिया था। यानी जो लोग कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, जो लोग रामनवमी की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजनों को नहीं होने देते थे, नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों को प्रतिबंधित करते थे, वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। कितना हास्यास्पद है, वे आज वह आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई, वे आज आस्था की बात करते हैं। जिन लोगों ने पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों में नमाज पढ़वा करके पूरे वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास किया, भाई अगर आप सेकुलर थे, एक जगह आप नमाज पढ़वा रहे थे तो किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का भी पाठ करवा देते साथ साथ, दोनों एक साथ होता चलो मान्य हो जाता कि चलो भाई दोनों लोग सहमत हैं, लेकिन ये वन वे चल रहा था, वन वे। वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। तो देश के उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर रहे थे कि साहब राम और कृष्ण हुए ही नहीं, वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो, उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास की, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है। वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं। उस समय कौन कौन से घोटाले नहीं हुए थे, चाहे वह केंद्र की सरकार उस समय की कांग्रेस की रही हो, चाहे यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकारें। अयोध्या की घटना निश्चित ही हम सब की आस्था, हम जैसे राम भक्तों की आस्था को आहत करती है। और ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया, वह एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट को उस पर कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। ट्रस्ट ने अनुरोध किया, गवर्नमेंट ने उस एसआईटी गठित की। एसआईटी की रिपोर्ट आते ही ट्रस्ट ने कार्रवाई भी शुरू की। जो 6 लोग विजुअल में चोरी करते हुए पकड़े गए उनकी गिरफ्तारी हुई, जो उनमें सहयोग कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी होने के साथ ही नैतिक आधार पर भी 2 इस्तीफे और हुए। लेकिन उसके नाम पर अयोध्या को बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि को बदनाम करना, हिंदू आस्था पर प्रहार करना, ये कहां का न्याय संगत है? और इसीलिए आज प्रश्न ये उठता है कि जब ये लोग सत्ता में थे तब आस्था पर प्रहार करते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी की चरम तक पहुंचते थे, हर प्रकार से आस्था को आहत करने वाले कार्य करते थे, और आज यूपी के अंदर जब ये सभी आस्था के केंद्र देश के लिए मॉडल बन रहे हैं और यूपी अपनी उस पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है, अयोध्या में आस्था को भी सम्मान मिला, लेकिन साथ साथ उससे अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई है। मैं मानता हूं समाजवादी पार्टी की यह पीड़ा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज उसी अयोध्या में लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आकर के दर्शन करते हैं और अपनी आस्था का सम्मान पाते हैं। ये आस्था का सम्मान है, लेकिन उससे अर्थव्यवस्था को जो गति मिली है, याद करिए वह गति वही है, चाहे वो फूल बेचने वाला हो, रिक्शा चालक हो, रेस्टोरेंट और चाय बेचने वाला हो, या फिर कोई होटल संचालक हो, कोई टैक्सी संचालक हो, कोई नाविक हो, इन सब की भी तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, इन सबको भी सम्मान मिला है, इन सबको भी पहचान मिला है। महाकुंभ के दौरान एक भव्य और दिव्य कुंभ हुआ, आपने देखा होगा कि अकेले प्रयागराज में 45 दिन के उस आयोजन में एक नाविक परिवार ने 30 करोड़ की इनकम की थी अकेले प्रयागराज में। आपने दृश्य देखा होगा जो समय मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बना था, और वही तो मैं कह रहा हूं इनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि समृद्धि तो जैसे लगता है कि इन 2 खानदानों की ही, इन्होंने 2 खानदानों ने अपने नाम पे पेटेंट करवा दिया है कि समृद्धि लूट का हो चाहे कैसे भी हो, केवल इन 2 खानदानों के हिस्से में आना चाहिए, बाकी लोग विपन्न रहे, उसमें इनको अच्छा लगता है। मुझे आश्चर्य होता है किस किस प्रकार से ये लोग माहौल खराब करके वो करते हैं, जिन्होंने जमीनी धरातल को नहीं देखा, जिनको फुर्सत नहीं होती जाने की, एक गरीब की पीड़ा को नहीं समझ सकते। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इन दोनों राजकुमारों ने जहां जन्म लिया है, तो जन्म से दोनों युवराजों ने चांदी की चम्मच से खाने की आदत रही है, देर से सोकर के उठने की आदत रही है, तो उनको सूर्योदय का आनंद नहीं होगा, उनको तो ये उनकी नींद में खलल डालने जैसा होता है। गर्मी कैसे होती है दोनों को नहीं पता है, बरसात की पीड़ा क्या होती है उनको नहीं पता है, क्योंकि दोनों लोग फीफा कप का आनंद लेने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया गया है, कोई यूएस की यात्रा में अपने टूरिस्ट वीजा में गया है, ये पैसा किसका है? किसके पैसे को लेकर के आप ये फॉरेन की यात्रा कर रहे हैं और यहां आईना दिखा करके समाज को बांटने का पाप करते हैं? जातीय खेमों में बांट करके, जाति को जाति से लड़ा करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके सत्ता हत्याने की कुछ सी चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन ये जनता है, सब जानती है, आपके सारे करतूतों को जानती है, अब आपको माफ करने वाली नहीं है। और इसीलिए आपके पास आया हूं और मैं आज इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूं 9 वर्षों की कार्य पद्धति भी, जनता जनार्दन के सामने हमारा रिपोर्ट कार्ड भी पूरी पारदर्शिता के साथ जनता जनार्दन के सामने है। 2003 से लेकर के 2017 के बीच में प्रदेश के अंदर शासन करने वाली समाजवादी पार्टी और अन्य सरकारों की कार्य पद्धतियां भी सबके सामने हैं। जनता जनार्दन फैसला करने को तैयार है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हम लोगों ने जो कार्य किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी और डायनेमिक लीडरशिप में विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का काम किया है। डबल इंजन सरकार का लाभ हम लोगों ने लिया है, मोदी जी का मार्गदर्शन भी है, उनका नेतृत्व भी है, इसमें यूपी सफल हुआ है। और विकसित भारत की उसी संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत का मतलब किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र, किसी भाषा या किसी पार्टी का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का भारत कैसा होना चाहिए जिसमें 140 करोड़ चेहरे पर खुशहाली हो, हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो, हर बहन और हर बेटी स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हो, हर व्यापारी मजबूती के साथ राष्ट्र की जीवन रेखा बन करके अपने आप को आगे बढ़ा सके। उस नए भारत के निर्माण के लिए हम विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं और मेरा मानना है विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है। और कोई संदेह नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने सभी लोगों को मौका दिया है। गत वर्ष एक रिकॉर्ड टूटा था, इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार यूपी के अंदर हैट्रिक लगाएगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं इंडिया टुडे ग्रुप को और इस प्रतिष्ठित चैनल आज तक को इस पंचायत उत्तर प्रदेश के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी महानुभावों का भी अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
4: आगे आगे
5: अरे उधर
4: उधर किधर
5: करेक्ट करेक्ट
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
6: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: College shouldn't waste your time or your money. That's why WGU's programs are designed with input from industry experts. You'll learn the skills that employers need today and be ready for the opportunities of tomorrow. Learn more at WGU.edu.
1: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
1: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
3: You're listening to MSNBC.
1: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
4: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
6: इन एसोसिएशन विद हिंट बड़े आराम से
7: शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू
8: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
6: विमल बोलो जुबा केसरी
9: जो मिसिंग लिंक है उस पर जो लैंडस्लाइड हुआ था ये लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए के बाद उसको एक्सपेंड करने के बाद काफी सालों की मेहनत करने के बाद उसको वो सर्वे करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि डैमेज इस तरह का हादसा फिर से ना हो उसको रोकने की कोशिश करेंगे वो कैमरामैन महेश मोरे के साथ विद्या पुणे आज तक
10: पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन को लगा बड़ा झटका आईबी अफसर अंकित शर्मा के हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया अंकित शर्मा की हत्या के मामले में 6 साल बाद दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कोर्ट ने नाजिम काशिम अनस जावेद और ताहिर हुसैन को हत्या अपहरण दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगा करने का दोषी ठहराया वहीं कोर्ट की सुनवाई के दौरान आरोपी ताहिर हुसैन कोर्ट में रोने लगा फैसले के बाद ताहिर ने अपने आप को बेगुनाह बताया
11: ताहिर जी आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने आपको कुछ कहना है क्या इंसान क्या कहना चाहते हैं सर बताइए
10: वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा बीजेपी ने सीधे ताहिर हुसैन के बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की
12: आज जो लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं सनातनी बनने का ढोंग कर रहे हैं ये लोग जब सत्ता में थे तब इन्होंने अंकित शर्मा जैसे न जाने कितने बेगुनाह निरपराध हिंदू नौजवानों का हत्या करवाने का मर्डर कराने का जो दिल्ली दंगों का पूरा प्लान था उसके ये भागीदार थे और बाद में अपराधियों को बचाने की भी सारी कोशिश केजरीवाल और उनके गैंग के द्वारा की गई थी
10: 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिला था उनके पिता ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था जिसको लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है आज तक ब्यूरो

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: छह साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया उसे लेकर सुलगती सियासत का एक सिरा पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार तक पहुंचता है। 2020 की फरवरी के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की हत्या हुई थी। मारे गए 40 मुस्लिम और 13 हिंदुओं में एक नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा का भी था, जिसकी हत्या के केस में कड़कड़डूमा की अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जो आरोप लगाए थे उनमें से अदालत ने हत्या की धारा 302, अपहरण की धारा 365, दंगे से जुड़े अपराधों की धारा 147, 148, 149 और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की धारा 153 और सरकारी आदेश तोड़ने की धारा 188 के तहत ताहिर को दोषी करार दिया है। दोषियों की सजा का ऐलान 16 जुलाई को होगा, लेकिन 5 दोषियों में से एक आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद और AIMIM के विधानसभा उम्मीदवार रहे ताहिर हुसैन ने इसे नाइंसाफी कहा है। लेकिन बीजेपी से इंसाफ की मिसाल कहती है और 51 बार चाकुओं से गोद कर मारे गए अंकित शर्मा के हत्यारों के साथ ताहिर हुसैन के गुनाह का जिक्र भी करती है। सियासत ये है कि दिल्ली की घटना पर पंजाब में पॉलिटिकल घेराबंदी हो गई, क्योंकि दिल्ली दंगे से ठीक पहले दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दे चुके कपिल मिश्रा ने अब इन दंगों के डायरेक्टर का सवाल उठाया है। हालांकि चुप्पी सिर्फ आम आदमी पार्टी लीडरशिप की ही नहीं है। जिस AIMIM ने पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया था, दिल्ली दंगे के आरोपी होने के बावजूद जो ताहिर 33,000 वोट पाता है, अब तक ओवैसी की पार्टी उस पर चुप है, लेकिन केजरीवाल की पार्टी के विधायक अब भी ताहिर हुसैन के समर्थन में खड़े हैं। केजरीवाल के विधायक को ताहिर के लिए ऊपरी अदालतों में इंसाफ की उम्मीद बची हुई लगती है, तो कांग्रेस के नेता ताहिर के साथ इंसाफ की उम्मीद छोड़ चुके हैं और वजह बताते हैं ताहिर का मजहब। दरअसल दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन के दोषी करार होने का असर अब दिल्ली से पंजाब तक दिख रहा है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी की दो चुनौतियां केजरीवाल और कांग्रेस हैं, लिहाजा बीजेपी अब ताहिर खान के जरिए दोनों दलों को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। हालांकि दिल्ली दंगे को लेकर AIMIM सवाल उठाती रही है कि जिस दंगे में 53 लोगों की जान चली गई उसमें 6 साल बाद भी सिर्फ एक हत्या के केस में दोषियों की पहचान क्यों हो पाई। आखिर वो कैसी जांच थी जिसमें इसी दंगे में मारे गए हाशिम अली की हत्या के 12 और अनवर हत्याकांड के 5 आरोपी बरी हो जाते हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।

Mac. ममता बैनर्जी को एक और बड़ा झटका, दीदी के करीबी और पूर्व मंत्री मदन मित्रा भी बागी गुट में शामिल, अब ऋतव्रता के साथ।

0: कान खोलकर सुन ले मुनीर, टूट जाएगा पाकिस्तान। जीता भारत का सच, बेनकाब पाकिस्तान का 78 साल पुराना झूठ। मुनीर के जनरल और रेंजर फेल, पीओके में सबसे बड़ी बगावत। दिल्ली के बाद अब रावलकोट की सड़कों पर गूंज रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आवाम मकबूजा बोल रही है। पाकिस्तान के बिखरने की उल्टी गिनती शुरू, लॉन्ग मार्च का आगाज। आठी बिजली और हक की लड़ाई पाकिस्तान को तोड़ने पर आई। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक उठी रैलियों की आंधी। झूठे फॉल्स फ्लैग से भी अब नहीं बचेगा पाकिस्तान। नया भूगोल बनाने को तैयार है पीओके की शेर दिल आवाम।
1: ये आवाज पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की गलियों में समय गूंज रही है, हम लेके रहेंगे आजादी। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के हुक्मरानों, रावलपिंडी के जनरलों और आतंकवाद के उस पूरी नर्सरी की रीढ़ की हड्डी हिल रही है। दरअसल नफरत की बुनियाद पर बना पाकिस्तान आज अपने ही कर्मों के जाल में ऐसा फंस रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हालत साफ तौर पर पतली होती नजर आ रही है। 78 साल, जी हां, पूरे 78 साल से इस्लामाबाद और रावलपिंडी जिस झूठ की काली कमाई खा रहे थे, जिस पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को वो दुनिया के सामने आजाद कश्मीर बता रहे थे, जो पाखंड का लेबल लगा रहे थे, जो चूरन बेच रहे थे, आज उसी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की सड़कों पर 78 साल पुराने प्रोपेगेंडा के पर खच्चे उड़ रहे हैं। और ये काम कोई बाहरी ताकत नहीं कर रही है, ये काम पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की आवाम कर रही है, जिसने पाकिस्तान के धोखे का लाइव पोस्टमार्टम दुनिया के सामने कर दिया है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे रावलकोट की। रावलकोट का वो ऐतिहासिक ईदगाह मैदान, 80,000 से ज्यादा लोगों का सैलाब है। मंच पर है ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान। और अब सुनिए, सरदार अमान खान ने दहाड़ते हुए पूरी दुनिया के सामने कहा कि यह कोई आजाद कश्मीर नहीं है, यह मकबूजा है, यह विवादित है, यह मकबूजा यानी गुलाम है, इस पर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है। 80,000 लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट ने रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय को हिला कर रख दिया होगा। खैर, हिल तो भारत में भी जो पाकिस्तान की गाते हैं वो भी हिल गए होंगे, क्योंकि जो रटा रटाया पाठ वो यहां पर कश्मीर को लेकर सुना रहे थे, आज असलियत उनके सामने है। लेकिन हम सबसे पहले सरदार अमान खान का वो बयान आपको सुनवाते हैं और फिर आपको बताएंगे कि दरअसल पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में समय हो क्या रहा है। लेकिन पहले सरदार अमान खान को सुनिए।
2: मौजूद है और उन क्रियादादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका है, इस पर कब्जा है, इस पर चली कब्जा है, ये एक मुतनाजा इलाका है। जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास ये राइट है, جموں کشمیر کے مسئلے کے متعلق جو بات کرنے کا اختیار ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، وہ ان خواتین کے پاس ہے، وہ ان مردوں کے پاس ہے، ان کی اولادوں کے پاس ہے، وہ ریاست کے شہریوں کے پاس ہے، اور اس پہ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اس تحریک میں شہید بھی ہو جائے تو ہمیں یقین ہے ہماری اولادیں اس علم کو بلند رکھیں گی، اس جھنڈے کو بلند رکھیں گی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس علم کو بلند رکھیں گی، اور فتح سے پہلے ہم سارے مارے جائیں، فتح سے پہلے یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، یہ جنگ ختم، اب یہ حقوق کی جنگ ختم
1: ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو جنگ ہے وہ ان کے حقوق کے لیے ہے، ان کے ادھیکاروں کی یہ جنگ ہے۔ آصف منیر کتنا شیخ ہی بگار رہے تھے، یاد ہے 16,000 سے زیادہ بھاری بھرکم فوج جو ہے، بے رحم رینجر جو ہے، بندوقیں جو ہیں، وہ سب برسائی گئی جنتا پر۔ لیکن یہ جو آگ ہے اس سمے پاک ادھکرت جموں کشمیر میں، کچھ لوگ اسے بغاوت کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سوتنترتا سنگرام ہے، وہاں پر یہ آگ نہیں بجھے گی۔ نہتھے پردرشنکاریوں پر جو گولیاں چلوائی گئی، 20 سے زیادہ بے گناہ پاک ادھکرت جموں کشمیر میں مارے گئے، انٹرنیٹ اور فون کاٹ دیا گیا۔ اب یہاں جس علاقے میں پورا بلیک آؤٹ ہے اور اس کے باوجود یہ آندولن جو ہے اس کی تصویریں نکل کر دنیا بھر میں پھیل رہی ہیں۔ اس آندولن کو بدنام کرنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کی نوٹنکی پاکستان کی سینا رچ رہی ہے، آروپ یہ لگا رہی ہے کہ یہ بھارت کروا رہا ہے، لیکن وہاں کی عوام کہہ رہی ہے، یاد رکھنا آصف منیر، جب کسی عوام کا صبر اور اس کا باندھ ٹوٹتا ہے تو بڑے بڑے تاناشاہ کے جو تخت تاج ہے وہ اتہاس کے کوڑے دان میں بہ جاتے ہیں، اور آج یہی پاکستان ادھیکرت جموں کشمیر میں ہو رہا ہے۔ پاک ادھیکرت جموں کشمیر کے اتہاس کا سب سے بڑا آزادی کا آندولن اس سمے اپنے چرم پر پہنچ رہا ہے۔ جو الٹیمیٹم ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور مظفر آباد کی طرف بڑھ رہا یہ جو جن سیلاب ہے، یہ پاکستان کی اسمبلی سے آزادی کا اعلان کرنے کی دہلیز پر اس سمے کھڑا ہے۔ یہ شروع کیسے ہوا؟ ان کو آٹا تک نہیں مل رہا۔ سوچئے، پاک ادھیکرت جموں کشمیر میں عوام کو، پاکستان کے جو پنجابی مسلمان ہیں پنجاب کے، وہ آٹا تک نہیں دے رہے، وہاں سے بجلی لے لیتے ہیں لیکن ان کو بجلی نہیں دیتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے آصف منیر کی سلطنت میں، اور اب عوام کہہ رہی ہے کہ آصف منیر کی سلطنت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان کا بھوگول کیا ایک بار پھر بدلے گا؟ کیونکہ یہ جنگ اب صرف آٹے کے لیے یا بجلی کے لیے یا سبسڈی کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ کشمیریوں کے، پاک ادھیکرت جموں کشمیر کے، جموں کے لوگوں کے وجود کی یہ جنگ ہے، اور اس جنگ کے جو لڑنے والے ہیں وہ پاکستان کے اویدھ قبضے میں رہنے والے لوگ اب مکمل آزادی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم چھین کے لیں گے آزادی۔ سنیے،
2: اور حکمرانوں سے ہم کہتے ہیں کہ نہ تو لال سے کام نہیں چلے گا۔ ایک آتا ہے کہتا ہے فلاں نہیں مان رہا، دوسرا آتا ہے کہتا ہے فلاں نہیں مان رہا، ہم نے کسی کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، ریاست کے شہری ہیں، ریاست عوام سے ہے اور عوام ہی ریاست ہے، سپیریئر ریاست عوام ہے، عوام طاقت ہے، اور عوام کی بات مانی جائے گی اور اپنی ہوگی،
1: تو آج جو چلو مظفر آباد کی مارچ ہے، اس سے ٹھیک پہلے کل جو سرحد کے اس پار یا نینترن ریکھا کے اس پار راولا کوٹ کا علاقہ ہے، پنچ کے اپوزٹ جو علاقہ ہے یا سنودھی ضلعے ہے، وہاں پر بھاری ہنسا ہوئی۔ راولا کوٹ بس سٹینڈ اور سدھنوتی میں پردرشنکاریوں کو تتر بتر کرنے کے لیے پاکستان کے رینجرز نے پہلے آنسو گیس کے گولے داغے اور پھر عوام پر اندھا دھند فائرنگ کر لی۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ 8 سے 9 پردرشنکاری وہیں مارے گئے اور کئی گمبھیر روپ سے زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد ریلی میں اور بھاری سنکھیا میں لوگ پہنچے اور انہوں نے کہا، تم کتنے لوگوں کو گولی مارو گے، کتنوں کو گولی مارو گے، ہم اور نکلیں گے سڑکوں پر۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آندولن کو بدنام کرنے کے لیے پاکستانی فوج جھوٹے دعوے کر رہی ہے۔ دعویٰ یہ کہ راولا کوٹ میں ایک پاکستانی رینجر امتیاز علی کی ہتیا کر دی گئی۔ 5 अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हैं। वहीं दावा तो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से ही आ रहा है कि यह हमला दरअसल एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। सूत्रों के मुताबिक, और यह पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है, इस घटना का इस्तेमाल इलाके में पाकिस्तान सरकार और फौज के खिलाफ चल रहे स्थानीय विरोध प्रदर्शन पर कड़ी कार्रवाई के लिए इसको अंजाम दिया गया। और अब कोशिश ये हो रही है कि जो कार्रवाई चल रही है जिसमें 9 लोगों को गोली मार दी गई, उसे जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक घटनास्थल के बाद लश्कर ए तैयबा का एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप मौजूद है और यह लश्कर ए तैयबा UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको रिजवान हनीफ नाम का आतंकी चला रहा था। वहां तक पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से बकायदा एक वीडियो जारी किया गया। सवाल यह कि क्या आतंकी वीडियो जारी करते हैं? ऐसे में शक ये हो रहा है कि ड्रोन फुटेज का इस्तेमाल आंदोलन को कुचलने के लिए और आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस समय किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, इस बार जो ये मार्च हो रही है ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें स्थानीय लोग तो है, उनके साथ साथ घरों की महिलाएं सामने आई हैं, स्कूली बच्चे सामने आए हैं, स्कूल की वर्दी में ये लड़के लड़कियां सामने आए हैं, रिकॉर्ड नंबर में ये भाग ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर बाकायदा वीडियो जारी कर रहे हैं ये महिलाएं और ये बच्चे। इनके हाथों में तख्तियां हैं और इन तख्तियों पर पाकिस्तान की सेना यानी आसिम मुनीर की सेना के अत्याचार और भारी टैक्स और आटे बिजली की महंगाई के खिलाफ नारे लगाते हुए ये बच्चे अब मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ ही पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में आजादी की मांग को लेकर जो एक एक बच्चा शामिल हो रहा है, तो आप सोचिए जो पाकिस्तान दावा करता था ये आजाद कश्मीर है, आज वो दावे कितने खोखले हैं, ये दुनिया के सामने सच्चाई सामने आ गई है। नवी क्लास से लेकर तीसरी क्लास तक की बच्चियां बेरहम पाकिस्तान रेंजर्स को चुनौतियां दे रही हैं, मारने तो बच्चों को गोली मार दो। ये पाकिस्तानी मीडिया को भी कोस रही है, वो मीडिया जिसके बारे में भारत में कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया फ्री है, यहां पर उनको सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, एक इकोसिस्टम है हमारे देश में, और वो मीडिया बिल्कुल चुप बैठा है। 90,000 लोग सड़कों पर है, पाकिस्तान में एक शब्द नहीं लिखा जा रहा है। मीडिया ने तो चुप्पी साधी है क्योंकि पाकिस्तान की सेना कहती है अगर कोई लिखेगा तो वो जेल जाएगा। अच्छा, जो लिखते हैं वो ये कह रहे हैं कि आतंकी सड़कों पर उतरे हैं। सोचिए ये जो 80-90 हजार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में लोग उतरे हैं, इनको वहां का मीडिया आतंकी बता रहा है। लेकिन देखिए पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रही इस जंग में बच्चों का हौसला कितना बुलंद है, इस जमीनी स्थिति को आप खुद देखिए।
3: मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाए, एक्सिक्यूटिव ने क्या गलत किया, वो तो हमारे अवाम के हकी नवाल थे। मेरी आप सब पाकिस्तानी आवाम से गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े हो, हमें हक के लिए आवाज उठा रहे, क्यों आप लोग पीछे खड़े, हमारे साथ अल्लाह खड़ा है, प्लीज हमारा साथ दे। कश्मीरियों की तारीख लिखी जाएगी तब तब तारीख सबू में यह भी लिखा जाएगा कि कश्मीरियों की मुआदिन मौजूदा नस्ल थी जिसने हाँ और मौत को पीछे छोड़ दिया, मीडिया सबके सामने की हाथ में खड़े हो।
4: ज्यादा हो चुका है। अब अपने बुनियादी हकूक की खातिर, अपनी नस्लों की बका की खातिर और अपनी सेना की खातिर सरापा एहतजाजी। बैरूनी फोर्सेस मंगवा रहे हैं, कत्ले आम कर रहे हैं, बेशुमार नौजवानों को शहीद कर रहे हैं। क्या वो 2 साल की बच्ची भी दहशत करती नहीं? ये फोर्सेस के एनसीपीसी और रेंजर्स दहशत करते, जिन्हें हमें मारने के लिए, हमारी आवाज को कुचलने के लिए बुलाया गया है।
1: आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में इन छोटी छोटी स्कूली बच्चियों की आवाज सुनी। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी रेंजर्स को इनकी आवाज कुचलने के लिए बुलाया है, लेकिन आज तक पर इनकी आवाज बुलंद है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में भड़की आजादी की इस आग पर अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एडिशनल सेक्रेटरी रणधीर जायसवाल ने दो टूक कहा कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जारी ये जो महाविद्रोह है, ये पाकिस्तान के दशकों पुराने शोषण, बुनियादी अधिकारों के हनन और प्रशासनिक जुल्म का नतीजा है। भारत ने सीधे तौर पर कहा कि अवैध कब्जे वाले इस इलाके में पाकिस्तानी हुक्मरान निहत्ते नागरिकों को, महिलाओं को और मासूम बच्चों पर बर्बरता से गोलियां बरसा रहे हैं। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, राशन पानी रोक लिया गया है। नई दिल्ली ने साफ शब्दों में पूरी दुनिया से अपील की कि आंखें खोलो और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में हो रहे इस भयानक मानवाधिकार उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कटघरे में खड़ा किया जाए और हिसाब किया जाए।
5: देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीज़ों को रोका गया है, इंटरनेट ब्लैकआउट को लागू किया गया है और निहत्थे नागरिकों पर के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घोर दुर्व्यवहारों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराएगी।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में वहां की आवाम के साथ अत्याचार हो रहा है, तो वहां की जो आवाम है उसने 38 मांगों का एक मसौदा सामने रखा, लेकिन पाकिस्तान की सेना यानी आसिफ मुनीर और जो वहां की सरकार है उसका रवैया या तो पूरी तरह से इनकार कर रहा है या टाल मटोल कर रहा है। आइए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि 3 बड़ी मांगे क्या हैं, महज 3 बड़ी मांगे जिन पर पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान से टूटकर अलग होने की संभावना भी अब बढ़ जाती है। लोगों की क्या मांग है, ये जो वीआईपी कल्चर है ना, ये खत्म हो, सारे भत्ते बंद करो। दरअसल पाकिस्तान के जो पंजाबी मुसलमान है ना, वो पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में वहां के जो कश्मीरी हैं या डोगरा हैं या जो जम्मू के इलाके के लोग हैं, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। पाकिस्तान का जवाब है, कोई ठोस कानून नहीं बनेगा इस पर। यानी पाकिस्तान की जो सरकार है वो पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान ही चलाते हैं और वो अपना ये अधिकार छोड़ना नहीं चाहते। वहां बड़े बड़े लोगों ने जमीन ले रखी है, पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों ने, जो कश्मीरी मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं। 12 सीटों पर प्रवासियों का जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया जाए। दरअसल ये पाकिस्तान की ISIEC के जरिए पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में अपनी सत्ता चलाती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना का जवाब है कि संवैधानिक सुरक्षा के कारण यह संभव नहीं है, यानी ISI अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहती। फिर आवाम की मांग है कि जो आटा है, बिजली है, इस पर सब्सिडी मिले, और मिले तो उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा है, वहां बिजली नहीं मिल रही है अपने घरों के लिए। पाकिस्तान की सरकार का जवाब है कि कमजोर आर्थिक हालात और कर्ज के कारण वो पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैसा आता है पाकिस्तान में वो दरअसल पाकिस्तान की सरकार अपने लिए ले लेती है, जो पैसा बचता है वो पाकिस्तान की सेना अपने लिए रख लेती है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, क्योंकि पाकिस्तान में और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में इस समय ये आजादी की जंग है, जो कभी बलूचिस्तान में उसकी आग निकलती है तो कभी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में। इस खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Chogan Perfumes.
8: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
6: The French edition for him.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: पापा।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ
6: तो भरोसा है।
7: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
8: मीडिया 50,000 युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
9: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
7: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
10: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: YouTube पर अब देखिए आज तक वर्टिकल।
12: अरे भाई फिर घुमा रहे हैं,
11: छोड़ दीजिए घुमाने की आदत, अब आज तक वर्टिकल।

0: छतरी न खोल बरसात में,
1: आहा भीग जाने दे
0: मेरी छतरी के नीचे हाचा।
1: क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी?
0: सलमा या कमला?
1: सलमा भी थी, कलमा भी होगी, कमला भी होगी।
2: अरे आप कमला गाओगे,
1: सलमा
2: ये सलमा गाएंगे।
1: कोई तो आगे और पीछे होगा मामला।
0: मैं कमला पसंद, ये सलमा पसंद। नेताओं ने मिलकर ये ट्रस्ट बनाया है जिसमें लैक ऑफ ट्रस्ट जो है आजकल सबसे ज्यादा है, तो का ही कर सकते हैं आप। और सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। संघ ने इधर लेटर जारी कर दिया,

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

का टूटेगा रिकॉर्ड। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा चढ़ावा चोरी बनेगा चुनावी मुद्दा, राहुल अखिलेश साथ। उत्तर प्रदेश चुनाव से

बहाली के लिए लड़ाई जरूरी। ईरान पर अमेरिका ने फिर बोला धावा, तेहरान की सैन्य क्षमता पर वार, हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य बनाने की कोशिश का दावा।

0: और अब सावंत, इस वक्त की बड़ी खबर, सियासी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर पुराने और विवादित जख्मों को कुरेदने की साजिश शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने श्रीनगर में मीडिया को संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक बार फिर इंटरनल ऑटोनॉमी यानी आंतरिक स्वायत्तता और अनुच्छेद 370 की बहाली का जिन्न बाहर निकालने की कोशिश की है। सैफुद्दीन सोज ने कहा कि हमारा असली मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ऑटोनॉमी है, जिसके लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। सैफुद्दीन सोज का यह बयान घाटी में एक बार फिर अलगाववादी सोच को हवा देने की साजिश के रूप में देखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी राजधानी दिल्ली में इस बयान से सहमत है, या फिर खुद को सैफुद्दीन सोज के इस विवादित बयान से कांग्रेस पार्टी अलग करेगी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सैफुद्दीन सोज ने क्या कहा, सुनिए।
1: कोई जम्मू कश्मीर रियासत को यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकता, ये टेम्परेरी चीज है। हमारा असल मसला अंदरूनी दाखिली खुद मुख्तारी है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 की बहाली के लिए लड़ना चाहिए। कभी कभी आपस में ये बात करते हैं बिना दिन की ही, ये गलत लफ्ज है नौजवानों के लिए। हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको दिमाग में यह होना चाहिए कि हमने मुस्लिम अक्सरियत की रियासत ने हिंदुस्तान के साथ शिरकत की, जिसमें हिंदू लोगों की अक्सरियत थी। तो अभी शेख साहब ने मुनासिब समझा कि इस हिंदुस्तान में उस वक्त 8 करोड़ मुसलमान थे, अब तो 23-24 करोड़ मुसलमान हैं। इसलिए हमने ठीक फैसला किया, हिंदुस्तान में रहे, लेकिन अपनी शर्त पर। हमको दाखिली खुद मुख्तारी जो है जरूर रेस्टोर होनी चाहिए।
0: 370 का जिन एक बार फिर निकालने की साजिश रची जा रही है क्या जम्मू कश्मीर में, यह बड़ा प्रश्न। और सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, जहां प्रयास नौजवानों के मन में नौकरी का, उज्जवल भविष्य का होना चाहिए, एक बार फिर एक पीढ़ी के नेता इन नौजवानों को उसी पुरानी लीक पर धकेलने की साजिश क्या कर रहे हैं?
2: बिल्कुल गौरव, ये समझना जरूरी होगा कि सैफुद्दीन सोज जो है न वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, न वो पीडीपी के नेता है, न वो अलगाववादी नेता है, वो कांग्रेस पार्टी के नेता है, काफी वरिष्ठ नेता है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, और उनकी तरफ से ऐसा बयान आया है। उन्होंने ऑटोनॉमी का राग अलापना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि खुदमुख्तारी यानी कि आंतरिक वो स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। बड़ा ही विवादास्पद बयान उनकी तरफ से आया है, और कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि उनके एक बड़े नेता, उनका एक बड़ा चेहरा जो है जम्मू कश्मीर से, वो स्वायत्तता की मांग कर रहा है। क्योंकि सैफुद्दीन सोज से आज सवाल पूछा गया था श्रीनगर में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड को लेकर कोई कुछ नहीं करना चाहिए, स्टेटहुड मुद्दा नहीं है, मुद्दा 370 है, आंतरिक स्वायत्तता है। उन्होंने कहा कि 370 को बहाल करने के लिए लड़ना होगा। बड़ा ही विवादास्पद बयान है, और साथ ही में जो उन्होंने ऑटोनॉमी की बात की है, और गौरव हमें पता है कि जो ऑटोनॉमी का राग है ये 1953 से पहले ले जाता है, जब जम्मू कश्मीर में अलग राष्ट्रपति होता था, अलग प्रधानमंत्री होता था। तो ये तो अलगाववादी भाषा है जिस प्रकार से बोली गई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी एंबैरसमेंट है कि जम्मू कश्मीर से जो उनका बड़ा चेहरा है, जो कि केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से बहुत बड़ा विवादास्पद बयान आया है।
0: इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए। एक और बात, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो भी एक धर्म विशेष की राजनीति करने से बच नहीं पाते हैं, वो अपने आप को एक धर्म विशेष बहुल राज्य बताने में हिचकिचाते नहीं है, फिर भी अपने आप को सेकुलर कहते हैं। खैर, एक और बड़ी खबर इस समय जो ब्रिटेन से आ रही है उसका रुख करते हैं। ब्रिटेन में हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदलने का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश का मामला पीटरबरो के इलाके में आया है, और अब यह मामला यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, ब्रिटेन के हाई कोर्ट में पहुंच गया है। दरअसल पीटरबरो सिटी काउंसिल ने अपने फैसले को कानूनी बताया है। काउंसिल का दावा यह है कि यह गैर कानूनी नहीं है कि अगर उन्हें पैसे की जरूरत हो तो किसी हिंदू मंदिर या हिंदू समुदाय के मंदिर को अगर मस्जिद के लोग खरीदना चाहते हैं तो वहां पर वो पैसा लेकर उस जगह को मस्जिद बना दे। लेकिन पीटरबरो का जो हिंदू समुदाय है इसने इस फैसले का कड़ा विरोध करना शुरू किया है। अब चौंकाने वाली बात एक और बात सुनिए, पीटरबरो सिटी काउंसिल में 10 सदस्य हैं, इनमें से 5 मुसलमान हैं। जो वर्तमान काउंसलर है डॉक्टर शबीना कयूम, वो लेबर पार्टी की हैं, काउंसिल की वो लीडर है। दूसरे हैं मोहम्मद जमील, तीसरे हैं जमीर अली, चौथे हैं नुमान अली इकबाल और जो पांचवें हैं वो हैं एन शहीद। अब ये पूरा मामला मैं आपको समझाता हूं। दरअसल ब्रिटेन में पीटरबरो सिक्योरिटी जो सिटी काउंसिल है उसने एक बिल्डिंग को बेचने का निर्णय कर लिया है। इस बिल्डिंग में पिछले करीब 40 साल से एक भव्य राम मंदिर चल रहा है। ये बिल्डिंग जो है यूके इस्लामिक मिशन को बेची जा रही है जो वहां पर एक मस्जिद और इस्लामिक सेंटर बनाना चाहता है। अब इस बात से वहां का जो हिंदू समुदाय है वो बेहद नाराज है। दरअसल भारत हिंदू समाज नाम की जो संस्था है उसने 1986 में इस परिसर में एक राम मंदिर बनाया और वहीं से श्री राम मंदिर यहां चल रहा है 1986 से। उनका कहना यह है कि पिछले 10 वर्षों से इस बिल्डिंग को खरीदने की कोशिश वहां के मुस्लिम लोग कर रहे हैं। उनका दावा यह है कि करीब 56 किलोमीटर के दायरे में यह एकमात्र हिंदू मंदिर है। अगर बिल्डिंग को बेचा जाता है तो मंदिर को खाली करना पड़ेगा। जो भारत हिंदू समाज है वो इस मामले को यूके के हाईकोर्ट में लेकर गया है और कहा है कि जो पीटरबरो सिटी काउंसिल है उसका फैसला गैर कानूनी है, गलत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन पीटरबरो काउंसिल ने कोर्ट में कहा कि हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, हिंदू समुदाय की जो चिंता है उस पर विचार किया गया, लेकिन कानून ये नहीं कहता कि जिस आधार पर फैसला लिया जाए वो धर्म का हो, वो तो बस अब पैसा देख रहे हैं। पार्षद का दावा यह है कि उसने हिंदू समुदाय के लिए एक और जगह मंदिर बनाने की पेशकश की, लेकिन सवाल यह है कि काउंसिल ने यूके इस्लामिक मिशन को इसको ही क्यों चुना? 5 उसमें मुसलमान सदस्य हैं, वो इस्लामिक काउंसिल को ही वो बिल्डिंग क्यों बेचना चाहते हैं? अब जब बोली लगाई गई तो इस्लामिक मिशन ने लगभग 18 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जबकि जो हिंदू समाज है उसने करीब 10 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। काउंसिल का दावा यह है कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसीलिए उसने ज्यादा कीमत देने वालों की बोली को चुन लिया। यह मामला अब ब्रिटेन की हाई कोर्ट में है। अब कोर्ट तय करेगा कि परिषद का फैसला कानून सम्मत है, कानून के मुताबिक है या नहीं, लेकिन तब तक मंदिर जो है वो मौजूदा लीज के तहत वहां पर बना रहेगा। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने पीटरबरो राम मंदिर की ट्रस्ट की सदस्य गौरी चौधरी से बात की, सुनिए उनका क्या कहना है।
3: आप 14 लाख पाउंड देने के लिए तैयार थी, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है वो उससे ज्यादा पैसे देके एक राम मंदिर की जमीन खरीदना चाहते हैं ताकि वहां पर एक मस्जिद बनाई जा सके, ये सही है?
4: हाँ जी, 1.4 मिलियन पाउंड्स यस, और उनकी हम लोग देने के लिए तैयार थे। हमारी बिड में इतने की बिड करी थी, लेकिन हमारी बिड शायद पीटरबरो सिटी काउंसिल को ठीक नहीं लगी या जो भी हुआ, उन्होंने यूके आईएम ने इसको विन किया एंड ये चीज उनके हक में ये फैसला आया कि अभी यहाँ पे यूके आईएम को ये जमीन देनी चाहिए, ना कि राम मंदिर।
3: गौरी जी, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि ये सब कुछ फैसला हाल ही में जो पीटरबरो सिटी काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है और वहां पर मुस्लिम बहुलता वाली जो नेतृत्व है वो आया है और उसके बाद ये फैसलों में बदलाव हुआ है, क्या ये आकलन सही है या क्या इस तरीके की कोई चीज हुई है, तथ्य क्या है?
4: है क्या कि पिछली बार ये पहले सिटी काउंसिल अलग एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में थी। ये बात है तो ठीक कि ये जो जैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है और उस एडमिनिस्ट्रेशन में जो कैबिनेट है उस कैबिनेट के जितने भी मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसी फेथ ग्रुप के हैं और हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मुश्किलें आई हैं वो भी इस एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने के बाद आई हैं। बट अब इसका डायरेक्ट फेथ से कनेक्शन है वो मैं नहीं बोल सकती, या मुझे पता भी नहीं है, बट मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि हमारी जो असली मुश्किल स्टार्ट हुई है वो इस एडमिनिस्ट्रेशन के आने के।

0: जितने सहयोगी दल हैं उसमें ओबीसी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल हैं, क्या चिराग पासवान उस एक वैक्यूम को फिल करेंगे? क्योंकि इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि चिराग, उनको तो ऊपर से भेजा गया है सच में।
1: देखिए, मैं लोक जनशक्ति पार्टी के विस्तार की सोच में रखता हूं। मेरे नेता ने चाहा था कि पार्टी अलग अलग राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करे, और आज मुझे खुशी है कि आज न सिर्फ बिहार में बल्कि झारखंड में हमारे विधायक हैं, नागालैंड में हमारे विधायक हैं, कई राज्यों में लोकल बॉडी के चुनाव से जीते हुए हमारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी हमारी सोच है कि पार्टी एक मजबूत उपस्थिति अपनी उत्तर प्रदेश विधानसभा में दर्ज कराए। हैविंग सेड दैट, ये जरूर है कि अलग अलग जातियों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले कई दल हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान इस बात का अनुभव किया कि समाज का एक ऐसा वर्ग जो अनुसूचित जाति से आता है, उनको लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के द्वारा, और जब मैं विपक्षियों का जिक्र कर रहा हूं, मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनके द्वारा उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया गया, परिणाम स्वरूप नुकसान हुआ। यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से सीटें जीती लोकसभा में, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रहा जो झूठ इन्होंने विधानसभा लोकसभा चुनाव में बोला, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाएगा। आज मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से कि आज 2 साल हो गए मेरी सरकार को केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बने हुए, इन 2 सालों में किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहां का लोकतंत्र समाप्त हो गया, या किस संविधान की हत्या कर दी गई? झूठ बोलकर इन लोगों ने वोट हासिल किया, और आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो असामाजिक तत्व की सोच के लोग हैं, सबसे ज्यादा प्रताड़ित समाज के उसी वर्ग को करने का काम करते हैं, इन्हीं के लोग उसमें सम्मिलित रहते हैं। और जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ये लोग जाना भी जरूरी नहीं समझते। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखती है, तो यकीनन ऐसे में मैं ऐसे वर्ग की आवाज मजबूती से बनना चाहता हूं जिस वर्ग से मैं खुद आता हूं। हम लोगों ने पासी पासवान अनुसूचित जाति से आने वाले हर एक वर्ग जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी तो आवाज बनना ही बनना।
0: क्या ललिता गौतम, जब केस पूरा जो अभी सुर्खियों में है, आप वहां पर गए हैं?
1: बिल्कुल, मेरी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जिस दिन ये घटना घटी, तुरंत उसके बाद, अगर मेरी याददाश्त सही है तो 17 मई को ही पार्टी का प्रतिनिधि मंडल ना सिर्फ हम लोग वहां पर गए, बल्कि हम लोगों ने विस्तार में इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने देने का काम किया। यकीनन कतई हम लोग इस पे राजनीति करने की सोच के साथ नहीं, परिवार को न्याय मिले इस सोच के साथ हम लोगों ने उस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री जी को देने का काम किया। और ये उन्हीं घटनाओं में से एक है जिसका जिक्र मैंने किया, जहां पे विपक्षी दलों ने चुनाव में इन लोगों को भ्रमित कर वोट तो लेने का काम किया, पर आज जब उनको इनकी जरूरत है तो ये लोग उपस्थिति तक भी दर्ज कराना जरूरी नहीं समझते, उल्टा परिवार को और प्रताड़ित करने का काम करते हैं। तो इनकी आवाज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से बने, इस सोच के साथ हम लोग यहां पर आए।
0: पर उत्तर प्रदेश में जब हम दलित विचारों वाली पार्टी की बात करते हैं, दलित हितों की बात करने वाली पार्टी की बात करते हैं, तो शायद बहन मायावती का सबसे बड़ा चेहरा सामने आता है। हालांकि अब चंद्रशेखर भी, जो कि लोकसभा चुनावों में भी एक सबको चौंकाते हुए परफॉर्मेंस उन्होंने किया था, सीट निकाली थी, आज वो अपने आप को सबसे बड़ा चेहरा दिखाते हैं, फिर चिराग पासवान की जगह कहाँ है?
1: देखिए, मैं चेहरा दिखाने, चेहरा चमकाने, जैसा मैंने कहा, मैं कतई इस सोच के साथ नहीं आया हूँ। मेरा समर्पण है समाज के वंचित वर्ग के प्रति, और उस वंचित वर्ग के जब मैं बात करता हूँ, मैं हर वर्ग की बात करता हूँ, हर जाति हर धर्म से आने वाले लोगों के समावेश की मैं बात करता हूँ। मेरे नेता के विचारों को आगे लेकर चलने की मैं सोच रखता हूँ। यकीनन मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर अनुसूचित जाति की प्रमुखता से आवाज बनने का उन्होंने काम किया। इसी श्रृंखला में मैं इस बात को भी उतनी ही विनम्रता से मैं स्वीकार करता हूं कि आदरणीय बहन मायावती जी ने भी समाज के उत्थान के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए, उनके संघर्षों के साथ अपने आप को मजबूती से जोड़ने का काम किया। आज की तारीख में सक्रियता उतनी नहीं दिखती है कई बार इस बात का अभाव भी कारण बनता है कि समाज के उस वर्ग अनुसूचित जाति के साथ हो रही प्रताड़नाएं उतनी मजबूती से सुनाई नहीं देती हैं। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं कि समाज के हर वर्ग और खास तौर पर अनुसूचित जाति, जिनकी आवाज आज की तारीख में शायद उत्तर प्रदेश में मजबूती से उठाने वाले नाम ना के बराबर रह गए, वो बनने का प्रयास जरूर कर रहा हूं।
0: ऐसे में मायावती जी की तरफ से जब बयान दिया गया, पहले तो जब चंद्रशेखर और उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता गए, काफी हंगामा हुआ, कई चीजों को लेकर सवाल खड़े हुए, उसमें मायावती जी की तरफ से कहा गया कि मैं उन लोगों का समर्थन नहीं कर सकती हूं जो समाज को बरगला के और उनके हितों से अलग कर रहे हैं। जिस पर चंद्रशेखर जी का जवाब भी ये था कि वो मायावती जी का भले सम्मान करते हैं पर वो इस चीज में बिल्कुल नहीं उनसे सहमत हैं कि ये उग्र था या आक्रामक था, और वो चाहते हैं कि लोग पूरी आक्रामकता के साथ विरोध प्रदर्शन करें। दोनों की राजनीति एक दिशा में हो रही है पर बिल्कुल अलग अंदाज में हो रही है। चिराग पासवान, इन दोनों तरह की राजनीति पर क्या कहें?
1: अनुसूचित जाति समाज का ना सबसे ज्यादा अहित इसी राजनीति ने किया है, जहां पे सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से एक घटना का आंकलन करता है। ये गलत सोच है। वो घटना घटी है, वो आपके लिए कोई केस स्टडी नहीं है कि आप उस पर अपनी राजनीति कैसे चमकाएं। एक पार्टी ये बयान दे रही है, दूसरी पार्टी वो बयान दे रही है, तो इसमें वो परिवार कहां गया जिसके साथ अन्याय हुआ? उसकी आवाज कौन बन रहा है? आप अपने अपने दलों की आवाज बन रहे हैं। मैं इस बात को मैं एस्टैब्लिश करना मैं चाहता हूं। मैं पार्टी की आवाज, पार्टी का चेहरा, खुद का चेहरा चमकाने की सोच के साथ नहीं आया हूं। मैं उन लोगों की आवाज बनने की सोच के साथ आया हूं जिनकी आवाज शायद आज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जहां से उनको न्याय मिले, और इसीलिए उनकी आवाज बनकर मुख्यमंत्री तक, केंद्र सरकार तक, केंद्रीय गृह मंत्री जी तक इन बातों को पहुंचाने का प्रयास करता हूं।
0: तो आपके लिए एक अनुसूचित जाति के नौजवान के लिए, एक नवयुवती के लिए क्या भविष्य है, क्या चाहते हैं आप, क्या रास्ता वो अपनाए? वो तो कंफ्यूज होंगे इस तरह की दो राजनीतिक बयान सुन सुन के।
1: देखिए, मैं बस इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले जात पात धर्म मजहब की बंदिशों से अपने आप को निकाले। कई बार अनुसूचित जाति कह कह कर आपको मेंटली आपको तोड़ा जाता है, कई बार आपको इंफीरियर होने का एहसास दिलाया जाता है। आज की तारीख में चिराग पासवान, मैं भले अनुसूचित जाति समाज से आता हूं बट मैं कहीं पीछे नहीं रहा। भले अपर कास्ट के किसी गरीब व्यक्ति की आवाज उठाने की बात हो, पिछड़ा वर्ग के किसी गरीब व्यक्ति की आवाज उठाने की बात हो, अल्पसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति की आवाज उठाने की बात हो, मैं हर जगह मजबूती से उनके साथ खड़ा रहा, उनकी आवाज बनके, उन्हीं के परिवार का बनके। तो ऐसे में दलित समाज समुदाय से आने वाले जितने भी युवा हैं, बस सिर्फ इतना आग्रह है कि पढ़ लिख कर अपने आप को इतना सशक्त कर लें कि आप अपनी आवाज खुद बने, कोई दूसरा आपकी लड़ाई लड़े, ये परिस्थिति ही ना आए।
0: ये एक नारा था, है आपकी पार्टी का, न जात न पात करेंगे सबकी बात, पर अब ज्यादा जोर से दूसरा सुन रहा है कि गूंजे धरती आसमान पंडित पासी पासवान। दोनों में से कौन से पे, किस विकल्प पे टिक मारना है?
1: देखिए, मैं दोहराता हूं कि मैं समावेश की सोच रखता हूं, बट समाज के अगर कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके बीच राजनीतिक दृष्टि से मतभेद पैदा करने का प्रयास किया जाता है, ये उसी समावेश की सोच को बल देने की बात करता है। समाज का एक सबसे अगड़ा वर्ग, जिसको कहा जाता है कि पूरी तरीके से सक्षम है, क्या वो वर्ग को न्याय मिल रहा है? आज मेरे बिहार में ही एक एनकाउंटर हुआ, वो पंडित परिवार से ही वो आता था, उसकी भी मैंने निंदा उतनी ही प्रमुखता से की जितने यहाँ पे किसी पासी समाज के साथ हो रहे।
0: आप भरत तिवारी केस की बात कर रहे हैं? भरत तिवारी
1: जी, बिल्कुल, मैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। उसकी भी मैंने उतनी ही प्रमुखता से आवाज बनने का प्रयास किया। ये दो छोर हैं जिनको अपनी अपनी राजनीतिक दृष्टि से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है, एक को इस बात का एहसास दिला के कि भाई तुम तो सबसे ज्यादा सक्षम हो, बट आज उसके उसके घर में भी अत्याचार हो रहे हैं, उनको भी प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है, और दूसरा वर्ग जिसको कि तुम अछूत रहे हो, तुम गांव से बाहर रहे हो, तुम तो अनुसूचित जाति के हो, उनको भी अलग रखा जा रहा है। ये वही समावेश है जिसको मैं ए टू जेड में कहता हूं। ए जिनको सबसे आगे दिखा के अन्याय उनके साथ भी किया जा रहा है, दूसरे को जेड बता के पंक्ति में अंतिम पायदान पे खड़ा करके अन्याय उनके साथ भी किया जा रहा है। बट इस पंडित पासी पासवान के बीच में समाज का हर एक वर्ग है जिसकी मैं आवाज बनने का प्रयास कर रहा हूँ।
0: ये इनमें से दो वोट ऐसे हैं जो अयोध्या में हरा दिया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, जिसके लिए पूरा पूरे समय अब तो संसद में आपके सामने वो कटाक्ष होते रहते थे जो अखिलेश यादव करते थे।
1: नहीं बिल्कुल, और ये मैंने उसी का मैंने जिक्र किया, ये फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया।
0: नहीं तो विधानसभा में आप मदद कर सकते हैं अपने सहयोगी की।
1: देखिए मैं जरूर, अगर मैं गठबंधन किसी, मुझे नहीं पता कि गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, होगा कि भी नहीं होगा, क्योंकि इससे पूर्व मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में मैंने 2020 में बिहार का विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ा। इसकी सोच कहां से आई, क्योंकि 2005 में मेरे नेता ने बिहार विधानसभा का चुनाव अकेले लड़कर अपनी ताकत दिखाई। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी 2002 में मेरे नेता ने अकेले चुनाव लड़कर दो विधायक जिताकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजने का काम किया। तो मुझे नहीं पता कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, होगा नहीं होगा, मैं राजनीतिक दृष्टि से इन तमाम मूल्यांकनों को कम, बट हाँ मैं उस समाज को एकत्रित करने का प्रयास जरूर कर रहा हूं जिसको लोग अपना वोट बैंक बना रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं, और आज जब उनको जरूरत पड़ रही है तो उनके साथ खड़े होना भी वो लोग जरूरी नहीं समझ रहे, उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़कर विकास की राह पर आगे लेकर जाने का एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूं।
0: ये 10 सीटें शायद आपको मिल रही हैं यूपी में लड़ने के लिए या नहीं?
1: नहीं, गठबंधन के तहत नहीं, हम लोग अकेले 2002 में हम लोग चुनाव लड़े थे।
0: हाँ।
1: और उसके बाद गठबंधन
0: नहीं, इस बार तो इस तरह की खबरें कुछ आ रही थी।
1: कितनी
0: 10 सीटें,
1: दहाई का आंकड़ा आपने कहा। जी, यू बीन वेरी काइंड टू मी एंड थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज मैं एक ऐसे राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसको सार्वजनिक मंचों पे हमेशा कमतर आका गया। मुझे लोकसभा चुनाव में कहा गया कि एक सीट मिल जाएगी, दो सीट मिल जाएगी, और ये मैं श्रेय मेरे गठबंधन के सहयोगी और खासतौर पर मेरे प्रधानमंत्री जी को जरूर दूंगा कि एक अकेले सांसद वाली पार्टी को उन्होंने पांच सीट जीत कर दी, वो सेकेंडरी है, बट प्राइमरी ये कि ये विश्वास उनका मुझ पे होना कि चिराग 5 सीटें जिता के ला सकता है, गठबंधन में अकेले सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें देने का काम किया। कमिंग टू बिहार विधानसभा चुनाव, वहां पे कहा जा रहा था कि मुश्किल से 10-12 सीटें, अब तो 10 आप उत्तर प्रदेश में कह रही हैं, बिहार में हमें 10-12 सीटों पे सीमित किया जा रहा था, 29 सीटें दी, जिसमें से यकीनन डिफिकल्ट सीटें भी थी, 26 हारी हुई सीटें थी, पर उनमें से हम लोग 19 सीटें हम लोग जीत कर आए। मैं दोहराऊंगा, मुझे अंक गणित नहीं पता कि क्या रहेगा, कितनी सीटें गठबंधन में मिलेंगी नहीं मिलेंगी, गठबंधन का स्वरूप होगा क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मेरी तैयारी 403 सीटों पर है, ताकि अगर मैं गठबंधन में भी चुनाव लड़ूं तो मेरे गठबंधन के सहयोगियों को भी अपनी हर उस विधानसभा पे मेरे समर्थकों का साथ मिलना चाहिए, गठबंधन की सोच ही यही होती है। तो आज मेरी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें कई प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किए, जिसमें संगठन का विस्तार भी है, और आज ये फैसला लिया गया कि हमारे संगठन के साथी 403 विधानसभा पे अपनी तैयारी करने जा रहे हैं।
0: नहीं, क्योंकि आपकी आपकी बातों को आपके साथी सीरियसली भी बहुत लेते हैं, क्योंकि इकलौते नेता मुझे लगता है कि नहीं, साथ भी नहीं लड़ पा रहे हैं, कोई गठबंधन अपनी पार्टी में पूरी तरीके से संघर्ष मचा हुआ है, उसके बीच में मैं मोदी का हनुमान हूं बोलते हुए अपनी बातों को रखते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, और एक ट्रेजेडी से जब आप गुजर रहे हैं, तो आपकी बात को हल्के में तो लेंगे नहीं वो, कि अगर ये सीट इतनी सीटों की तैयारी कर रहा है उससे अच्छा गठबंधन कर लो इसके साथ। पर आपको लगता है कि चिराग
1: आपने मेरे बिहाफ पे एडवोकेट कर ही दिया है। तो मुझे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई, वे आज आस्था की बात करते हैं। अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात करते हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है। वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं। ये घटना निश्चित ही हम सब की आस्था, हम जैसे राम भक्तों की आस्था को आहत करता है। ट्रस्ट ने अनुरोध किया, गवर्नमेंट ने उस एसआईटी गठित की। एसआईटी की रिपोर्ट आते ही ट्रस्ट ने कार्रवाई भी शुरू की। गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के साथ ही नैतिक आधार पर भी दो स्थिति और हुई। अयोध्या को बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि को बदनाम करना, हिंदू आस्था पर प्रहार करना, ये कहां का न्याय संगत है?
1: बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप इस मंच पर मेरे साथ शामिल हुए हैं। मोहसिन जी, शुरुआत तो आप ही से करनी पड़ेगी। क्या इस बार के चुनाव में कम से कम 20% आबादी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के लिस्ट में नजर आएगी कहीं पर, एक या दो नंबर में? मतलब 10 तो मैं जा ही नहीं रहा हूं, एक या दो नंबर में भी नजर आए तो क्या मोहसिन भाई हमको नजर आएंगे विधानसभा के चुनाव के लिस्ट में, उम्मीदवारों के लिस्ट में कहीं नजर आएंगे?
2: देखिए, हमें नेतृत्व जो है वो प्रतिनिधित्व देता है जब हम सत्ता में आते हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हमारे लिए सब भारतीय हैं। अगर कोई अपने को 20% में सीमित कर लेता है तो ये उसकी कमी है, लेकिन हम किसी भी योजना में भेदभाव तो नहीं करते। अगर हम करोड़ों मकान देते हैं तो उसमें हम नाम पूछकर नहीं देते हैं, पात्रता के आधार पर देते हैं। तो आदरणीय मोदी सरकार ने सबको दिया, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने सबको दिया। अब अगर कोई इस पर प्रश्न खड़ा करता है, कोई अपनी 20% की राजनीति में अपनी रोटी सेकना चाहता है, तो 20% की राजनीति वाले लोग आपको बता पाएंगे। हम तो 100% की राजनीति करते हैं, देशहित की राजनीति करते हैं, देश के लोगों के लिए और उनके हितों के लिए काम करते हैं। कोई भी कल्याणकारी योजना होती है 142 करोड़ लोगों के लिए बनती है, खाली किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी मत के लिए नहीं और किसी पंथ के लिए नहीं बनाते हम। तो इसलिए ये सोचना उन्हें होगा जो लोग 20% की राजनीति से सहमत हैं। अभी ये बच्चे हमारे सामने नौजवान बैठे थे, मैं आ रहा था तो क्या ये जो नारे लगा रहे थे, ये क्या पहली बार लगाना पड़ रहे हैं इनको इतनी जोर देकर? इनको किसी ने रोका है क्या? ये तो AIMM इसके AIMM के लोग बताएंगे क्या पहली बार इनको लगाने के लिए रोका गया? और ये मंच सुन लीजिए, मैं बताना क्या चाहता हूं। ये वही राम का देश है जहां पर मोहम्मद साहब का सम्मान होता है, इनको नहीं पता है तो हम कैसे बताएं? ये इनको समझना होगा, इनके नेताओं को समझना होगा। इनको 20% में बांट कर वो अपनी रोटी तो सेक रहे हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे 60 साल कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया था, जैसे समाजवादी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया 4 बार, ऐसे ही वो भी आ गए हैदराबाद से, उन्हें भी लगा कि यार ये तो बिल्कुल असहाय लोग हैं जिनको हमने पढ़ने लिखने दिया नहीं है, लिहाजा क्या करेंगे, ये नारे तो लगाएंगे, नारे लगवाओ, लेकिन तो नारे लगाने के लिए
1: भेज किया। लेकिन मोहसिन भाई यहां पर ये तो कोई बात नहीं हो सकती ना कि राज्य की योजनाएं हम सभी को दे रहे हैं, नाम पूछ कर नहीं दे रहे, कोई उपकार थोड़ी कर रहे हैं। राज्य सरकार है, जो जो मतदाता है, जो उत्तर प्रदेश का रहवासी है, उसको सबको मिलना चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सरकार ने कितना बड़ा काम कर दिया कि भाई सभी को, मुसलमानों को भी दे रहे हैं, इनको भी दे रहे हैं।
2: नहीं,
1: सरकार की योजनाएं सभी को मिलनी चाहिए,
2: सबको दे रहे हैं साहिल जी।
1: सवाल यहां पर यह होता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या 20% आबादी को भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है या नहीं देना चाहती?
2: क्यों नहीं हम देते हैं?
1: क्यों नहीं मोहसिन रजा हमें दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी
2: मिनिस्टर बनाए?
1: उन्नाव से क्यों नहीं वहां पर चुनाव लड़ते?
2: मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। हमारे को अगर वोट की आप बात कर रहे हैं तो हमारा हम वोट बैंक किसी को नहीं बनाकर चलते, हम नीतियों को लाकर सामने रखते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं और तय करने का काम जनता जनार्दन का होता है। जो 27 में करेगी, 17 में किया, 22 में किया, 27 में करेगी, तो 27 में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जो 20% की राजनीति जो आप बात, मैं उस पर इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि हम इनके लिए इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहां पर इनको समझना होगा। ऐसे ही मुख्तार अब्बास नकवी, ऐसे ही शहनवाज हुसैन और तमाम हमारे नेता हैं, सब हैं।
3: कहां है वो?
2: सब पार्टी के वरिष्ठ नेता
3: हैं। कहां है वो?
2: सब पार्टी के वरिष्ठ। देखिए क्या है, आपने देखा सबको नेतृत्व मिला है, कोई ये नहीं कह सकता अभी भी राज्यसभा से लेकर और उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हमारे पास, हमने लड़ाया नहीं है। हम लड़ाने का काम नहीं करते, हम नेतृत्व देने का काम करते हैं।
3: लड़ाने
2: का काम तो ये लोग करेंगे ना।
3: कौन किस तरीके से लड़?
2: देखिए हमने अभी 80-20 की बात आप कर रहे हैं, हम 20% वो लोग हैं जो हमारे साथ ना आकर फिर भी हम लाभ दे रहे हैं, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं कि उन्हें विचार करना होगा कि कांग्रेस एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या उससे पहले संघ की बात कर लें।
3: सरकार
2: कांग्रेस के साथ, साहिल जी
3: आपको वोट दे या ना दे आपको तो लाभ देना होगा, सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है।
2: ठीक है,
3: उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो सरकार की जिम्मेदारी है वो तो उनको करनी पड़ेगी भाई। योजना की
2: निर्वाह जो
3: भले आपको वोट दे या ना दे,
2: हम उसका निर्वाह करते हैं, हमें वोट दे ना दे, यही तो आदरणीय मोदी जी ने कहा, यही आदरणीय योगी जी ने कहा कि हम भेदभाव नहीं करते, हमें वोट दे या ना दे हम योजना का लाभ देते हैं।
3: भेदभाव का आरोप तो आप पर लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 80-20 की बात इसलिए होती है क्योंकि भेदभाव की कोशिश समाजवादी पार्टी करती है, ये उनका आरोप है।
4: ये भेदभाव करके दिखा दी, ये जो अभी योजना बताए थे ना, सबको हम देते हैं, सबको हम लेते हैं, अपने घर से लाए थे क्या? सफीपुर से बेच के सड़क आए थे, अपना खेत बेच के आए थे क्या? संविधान कहता है कि अगर योजना सरकार की है जिसमें सारे टैक्स पेयर का पैसा होता है, हमारा भी पैसा होता है, आपका भी पैसा होता है, इनका भी पैसा होता है, अगर ये मजाक उड़ाना चाहते हैं टैक्स पेयर का तो उड़ाएं। इनको 2024 में समाजवादी पार्टी ने हाफ कर दिया, हाफ। उत्तर प्रदेश में बैसाखी के वजह से ये केंद्र सरकार में बैठे हैं और 2027 में इनको साफ कर देंगे, साफ। ये इस लायक नहीं रहेंगे कि बोल पावे कि हम सबको देते हैं। सबका सम्मान होना चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सब धर्म की बात करनी
3: कैसे
4: चाहिए।
3: कैसे साफ करेंगे जब आपकी पार्टी भी अब 80 लोगों की बात करने लगी है?
4: नहीं, किसने कहा?
3: अगर समाजवादी पार्टी सनातनी बन गई तो डॉक्टर खान उस पार्टी में क्या करेंगे?
4: नहीं नहीं, किसने कहा ये?
3: अरे खुद कह रहे हैं वो।
4: नहीं, कौन कह रहा?
3: खुद समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम सनातनवादी पार्टी।
4: 80-20 को नहीं कह रहा,
3: समाजवादी
4: साथ, सबके साथ चलने की बात कह रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का स्पोक पर्सन हूं, मैं कह रहा हूं कि सभी जाति धर्म के लोगों को, सभी जात बिरादरी को लेकर समाजवादी पार्टी चलेगी।
3: शौकत अली, सुना आपने?
5: देखिए मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात सुनी नहीं। यकीनन अखिलेश यादव ने इस बात को कहा है कि जो सनातनी है वही समाजवादी है, तो अब डॉक्टर साहब को फैसला करना है कि सनातनी है या क्या है। दूसरी चीज रह गई मोहसिन भाई की, जो इन्होंने कहा अपनी पार्टी के बारे में कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के हमारी पार्टी काम करती है। मोहसिन भाई से मेरा एक सवाल है कि मोहसिन भाई, कल संभल के अंदर असमौली में एक कब्रिस्तान की जमीन पर ईदगाह थी और उस ईदगाह को तोड़ दिया गया, क्या वो ईदगाह आपकी थी या नहीं थी? या तोड़ दिया तो क्यों? चूंकि कब्रिस्तान की जमीन थी, वो गवर्नमेंट की लैंड तो थी नहीं। कब्रिस्तान की जमीन पर ईदगाह रहेगी ना रहेगी, ये हमारा धार्मिक और शरई मामला, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको तोड़ दिया। संभल के अंदर
3: सरकारी जमीन थी, सरकार का कहना है सरकारी की जमीन पर ईदगाह बनाएंगे।
5: कब्रिस्तान की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन थी, सरकार का कहना है कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद बनेगी नहीं बनेगी, ये हमारा अपना मामला, ये शरई मामला है। दूसरी चीज, आपने वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया, अब उन जमीनों का क्या होगा जो 100 साल पुराने कब्रिस्तान या मसाजिद या आशूरखाने और भी चीजें क्या होगा? अभी आपने संभल में एक और मस्जिद को तोड़ दिया आप बोल करके कि जो है ये इलीगल है, तो आप वक्फ बाय यूजर को खत्म करके जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम से थी आप उसको चोरी के रास्ते से एसआई को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये कौन सा सबका साथ? दूसरी चीज ये है कि अगर खुदा न खास्ता एक
3: वक्फ में 2 लाख रजिस्टर वक्फ की प्रॉपर्टीज थी,
1: 2 लाख
6: उत्तर प्रदेश
1: के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर, उसमें से 1,75,000 जो आंकड़ा कहता है, 1,27,000 सिर्फ उतने ही बचे हैं। तो वैसे ही जो वक्फ के नाम पर रजिस्टर, वक्फ बाय यूजर तो छोड़ दीजिएगा, जो यूज बाय यूजर
6: आप उसको खत्म करके हमारी उस प्रॉपर्टी को लूटना चाहती है सरकार।
1: और जब हो रहा हो पहले 75,000 जो लूटी गई है उसका क्या होगा, उस पर कोई क्यों नहीं बात करता है?
5: देखिए मैं ये देखिए मैं जो बात कह रहा हूं आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं वक्फ बाय यूजर को गवर्नमेंट क्यों खत्म करना चाहती है?
1: ठीक है मोहसिन जी जवाब दीजिए, सरकार के नुमाइंदे आप, क्यों वक्फ बाय यूजर खत्म करना चाहते
2: हैं? वक्फ को लेकर बात कर रहे हैं
1: जी, बिल्कुल।
2: देखिए वक्फ को लेकर मैंने आपको बताया कि 2 लाख वक्फ रजिस्टर्ड थे उत्तर प्रदेश में। सरकारें यहां कांग्रेस की और मिलीजुली सरकारें सपा बसपा की चली, उन सरकारों ने इसको खुर्दबुर्द किया, उनके नेताओं को दी गई प्रॉपर्टियां, बहुत से पॉलिटिकल नेता, बहुत से मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उस प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया। ये किसकी थी? ये हमें नहीं मतलब था इससे, हम तो संरक्षण देने के लिए सरकार में आते हैं। आज हम संरक्षित कर रहे हैं, आज अमेंडमेंट अगर हम लेकर आए हैं 2025 में आदरणीय मोदी सरकार, तो इसको संरक्षण देने के लिए, पारदर्शी करने के लिए। और उसको लेकर ये सवाल उठेगा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि जिस तरह से एसआईटी की मांग विपक्ष ने उठाई थी, हम भी इसकी मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होना चाहिए।
6: 9 साल बाद?
2: नहीं, मैंने पहले भी
6: देखिए मंत्री रहे,
2: तो ये ऑडिट की बात, मैं आपको बता रहा हूँ
6: चुनाव के पहले आप,
2: हाँ मैं आपको बता रहा हूँ साहिल जी, आपको बता दूं मैं कि ये 2017 में जब ऑडिट के लिए मैंने ही पत्र लिखा, तो ना तो दोनों वक्फ बोर्ड के, क्योंकि दोनों वक्फ बोर्ड पहले से चले आ रहे थे,
6: ऑडिट का
2: दोनों वक्फ
6: ऑडिट का नतीजा बताइए,
2: ऑडिट नहीं करने दिया ना इन लोगों ने, कोई सहयोग नहीं किया ना सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ना शिया ने, और ना ही वहां पर बैठे हुए प्रबंधन कमेटी के लोगों ने, जो मुतवल्ली लाखों की तादाद में बने उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया, उसका पैमाना जो है वो अगर आंकड़ा आज ढूंढा जाए तो मुझे लगता है कि 50,000 करोड़ से ऊपर का तो खाली घोटाला और लोगों ने अकूत संपत्तियां बनाई हैं। तो अब इस पर जांच होगी, लेकिन सुन लीजिए मैं बात कहना चाह रहा हूं, उस पर जांच होगी, उसके लिए इनको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि उसमें मिलने वाला वापस जो आएगा, उससे जो धन वापस रिकवरी होगी, जो जमीनें रिकवर करके लाई जाएंगी, उससे कौन आच्छादित होगा?
6: इनको मतलब
2: अल्पसंख्यक होगा,
6: इनको मतलब किसको?
2: मुस्लिम्स को, और किसको होगा? वक्फ तो इन्हीं के लिए बनाया,
6: आप भी तो है,
2: ये मुस्लिम वक्फ है, मैंने कहा ना, तो हमारी जिम्मेदारी है, हम सरकार हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको जांच कराकर वापस,
6: क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियां उसका विरोध कर रही थी जब आपने?
2: नहीं कर रही है समाजवादी पार्टी, तो देखिए अब तो वो सनातन की राह पर आ गए ना,
6: आ गया,
2: अब समझ में आ गया कि सनातन की राह पर ही जो है इंसाफ मिलेगा, सनातन की राह पर आ गए, समाजवाद मतलब सनातन, तो साफ साफ वो कह रहे हैं।
1: डॉक्टर खान
4: जी देखिए ये मोहसिन रजा साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मंत्री रहे 3-4 साल तक, क्या क्या वक्त में
5: सपा और भाजपा का अक्सर गठबंधन रहता है,
1: दोस्ती पुरानी है,
6: खत्म कर देते।
4: ये मोहसिन रजा साहब मंत्री रहते हुए इनके डिपार्टमेंट में इनके पास वक्त भी था, चोरी डकैती होती रही, कुछ नहीं कर पाए, आज भाषण दे रहे हैं आप, भाषण दे रही है, भाषण किस मुंह से दे रहे हैं भाई आप जो आदमी 25 साल से वहां पर वक्त में बैठा था आपका फारूकी, उसको हटा तक तो पाए नहीं आप, आपके नाम से जितने लोगों को यहाँ हुसैनाबाद में जो ट्रस्ट है, जो शिया वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, उसमें करप्शन खत्म तो कर नहीं पाए आप, किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप, किसको बता रहे हैं जिम्मेदार? आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास वक्फ बोर्ड है और उसके मंत्री हैं, और मंत्री कौन है? सुहेल देव राजभर। तो ये इंसाफ की बात करेंगे?
1: नहीं आप, अब तो दानिश जी कह रहे हैं कि हम भी मध्य प्रदेश की तरह यहाँ पर वक्फ बोर्ड बनाएंगे, यही कहा है ना उन्होंने सरकार की तरफ से,
4: कहाँ बनाएंगे? ये मंत्री थे,
1: वैसे ही बनाएंगे जिसमें 2 नॉन मुस्लिम भी रहेंगे, वो हिंदू हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ये उनका बयान है आज की स्थिति में।
4: किसका बयान है?
1: जो मंत्री है यहाँ के दानिश अली, उनका बयान है कि हम लोग मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बन रहा है उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बनाने वाले।
4: नहीं नहीं ये बयान जो है ये बयान ठीक नहीं है। इस बयान में देखिए जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, जो मुसलमानों ने दान किया है, उसमें दूसरे को बनाने का क्या मतलब है? अल्लाह के राम पे जिसने कर दिया वक्त, उसको जो है विधवा को, बेवा को, बच्चों को जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे उनके लिए खर्च कर दिया।
1: मोहसिन जी ये बात तो उठाई जाती है,
4: ये बात
1: जब
4: गलत है।
1: जब राम मंदिर के सीईओ की तलाश हो रही है तो उसमें एक पैरामीटर यह रखा गया है कि यह पूरी तरीके से राम भक्त होना चाहिए,
3: और यही बात तो मुसलमान कह रहे हैं कि भाई हमारे वक्फ बोर्ड पर नॉन मुस्लिम क्या करें।
2: ये एक संवैधानिक संस्था है जिसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है, ये संविधान के दायरे में आती है, सरकार के अधीन चलती है, और जो ट्रस्ट होते हैं वो अपने अपने ट्रस्ट होते हैं। और ये चूंकि भारत एक
3: तो सरकार ने बनाया हुआ
2: नहीं, सरकार नहीं ट्रस्ट
3: बनाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के
2: आधार पर बनाया हुआ। वो हस्तक्षेप कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट तो संज्ञान स्वतः ले सकती है, लेकिन कोई भी ट्रस्ट जो बनते हैं वो ट्रस्ट हमने सरकार ने बनाए, सरकार का काम है संरक्षण देना। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड है ये तो कानून के दायरे में बना हुआ वक्फ बोर्ड है, तो इसमें तो सरकार जब चाहेगी अमेंडमेंट भी करेगी और उसके बेहतरी और कल्याण के लिए उसमें बेहतर व्यवस्था देगी। तो व्यवस्था देने के लिए अगर दो गैर मुस्लिम लाए जा रहे हैं तो सहयोग करने के लिए लाए जा रहे हैं ना।
4: आप इस चीज को गलत कह रहे हैं मोहसिन साहब। वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों का है, इसमें मुसलमान ही रहने चाहिए, किसी दूसरे को उसका दखल नहीं होना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो संविधान के खिलाफ कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो आईन के खिलाफ कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं,
2: इन्हीं की बात
4: ये नहीं कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए आपका,
2: इन्हीं की बात का जवाब है।
4: आपने क्या किया था बता दीजिए, मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे कि आप मंत्री वक्त थे क्या, कितने घोटाले पकड़े आपने, सीबीआई जांच हुई। अरे
2: जवाब सुन लीजिए,
4: सीबीआई जांच हुई, वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच हुई।
2: इससे पूछिए कि जब कोई वक्फ के मामले में किसी तरह का कोई मामला आता है,
4: ठीक है, आप मंत्री हैं आपसे ही पूछा जाएगा।
3: डॉक्टर खान जवाब देंगे,
4: आप पंडित
3: जवाब
4: नहीं है,
3: जवाब
4: आज भी
2: वक्फ का एक
3: जवाब दे,
2: वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये जानते हैं कि वक्फ का कल्याण अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट कल्याण अधिकारी, वो सारे मामलों की जांच करता है, जिला अधिकारी अपर सर्वे आयुक्त होता है। तो ये क्या इसमें ये कंडीशन हो सकती है क्या, ये तो सारे के सारे जो होते हैं वो गैर मुस्लिम होते हैं, तो जाहिर सी बात है संरक्षण देने के लिए होते हैं ना, आपकी सहायता करने के लिए, न्याय देने के लिए, तो न्यायिक प्रक्रिया के लिए तो आपको इसमें जाना होगा, तो परेशान होने क्या जरूरत।
3: ठीक है शौकत अली, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसी विवाद।
5: देखिए अब तक जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वो उसकी जिम्मेदार सरकारें रही हैं, सरकार समाजवादी की रही हो या सरकार बीजेपी,
3: वक्फ बोर्ड के भीतर जो भी भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए वहां की सरकार जिम्मेदार रही है, ये आपका कहना है?
5: यकीनन।
3: तो आपका कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वक्फ बोर्ड के भीतर जो भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए समाजवादी पार्टी की जिम्मेदार
5: होगा? आप बताइए मुझे कौन है उसका जिम्मेदार, अगर हुआ है तो उसकी जिम्मेदार सरकारें हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं,
3: कौन,
5: समाजवादी और बीजेपी। बीजेपी बीजेपी हिंदुओं को बीजेपी बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों से डराती है और समाजवादी मुसलमानों को बीजेपी से डराती है, ना ही बीजेपी विकास।
3: रिपीट करिए आपने जो बोला वो एक बार।
5: बीजेपी हिंदू समाज के लोगों को मुसलमानों से डराती है,
3: हाँ,
5: और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को बीजेपी से डराती है,
3: हाँ,
5: बाकी इनके पास कोई दूसरा रास्ता।
3: आप किसी से किसी को नहीं लड़ाते
5: मुसलमान, हम तो मुसलमानों से ये कहते हैं कि आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए।
3: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहती है
5: दूसरी चीज,
3: कांग्रेस और एक सुन लीजिए ना अभी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहती है कि
5: भाई यहाँ भी मुझे दबाया जा रहा है,
3: सुन तो लीजिए एक लाइन सुन लीजिएगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहती है कि आप तो मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ा देते चुनाव में।
5: देखिए मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी ने अब तक मुसलमानों का वोट बेवा के माल की तरह लूटा है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से
3: बदतर, चेहरे पर स्माइल देख लीजिएगा जैसे,
5: आज हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है। 60 साल इस देश में हुकूमत कांग्रेस ने किया है, 4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में समाजवादी पार्टी रही, बहुजन समाज पार्टी रही। अगर आज मुसलमान मुख्य धारा से कट गया है तो उसका जिम्मेदार कौन है, आप बताइए। जो लोग हमें कहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, भाई साहब अगर कान साफ हो तो सुन लीजिए कि सिरसागंज के 3 भार के विधायक और मुलायम सिंह यादव के समधी 3 बार के, ये बीजेपी में नाम बता दूं आपको, ना जानते हो, हरिओम यादव नाम है, करहल से जो चुनाव लड़े थे उपचुनाव, धर्मेंद्र यादव के सगे बहनों ही हैं और धर्मेंद्र यादव की सगी बहन बीजेपी से जिला पंचायत है। तो अच्छा अपर्णा यादव कौन है, तो जिनके घर शीशे के हैं दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारे जाते।
3: तो एक
5: मुझे मालूम है कि अब्दुल दीवाना है लेकिन अब्दुल कुछ नहीं पाएगा,
3: एक परिवार
6: मैं
3: में,
6: मैं बस इतना ही कहूंगा,
3: एक परिवार में
6: जितेंद्र,
3: एक परिवार में दो अलग अलग पार्टी में लोग नहीं हो सकते।
6: नहीं नहीं,
3: अलग
6: आप, अलग आपके पास क्या प्रूफ है?
3: पूछ रहा हूं मैं आपसे,
6: आपके पास क्या
3: राजनीति है?
6: आपके पास क्या है? हम सवाल कर रहे हैं,
3: आप कुछ अलग सोच सकते हैं, मैं कुछ अलग।
6: आपके पास क्या प्रूफ है? देखिए, लड़ाई विचारधारा की है। अब चच्चा बैठे हैं, कौन विचारधारा के हमको नहीं मालूम।
3: ठीक है, डॉक्टर खान जवाब दे दीजिए।
6: देखिए डॉक्टर साहब,
3: दोगला चरित्र,
6: देखिए
3: दोगला चरित्र जो कहने की वो कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का दोगला चरित्र है। एक तरफ तो सनातन की बात,
6: चच्चा चच्चा कुछ दिन पहले समाजवादी को गाली दे रहे थे,
3: ठीक है,
6: बहुजन समाज की विचारधारा पे।
3: डॉक्टर
6: कब ये आ गए समाजवादी की विचारधारा? समाजवादी पार्टी की अपनी कोई विचारधारा है ही नहीं, उसकी सिर्फ एक विचारधारा।
7: बहुत बढ़िया,
6: समाजवादी और कांग्रेस की एक विचारधारा है, मुसलमानों को बीजेपी से डरा करके इनके वोट को लूटने, यही इसकी विचारधारा है।
3: ठीक,
6: अभी अजय राय साहब यहाँ बैठ करके बोल रहे
3: हैं। खान जवाब दीजिए, जवाब दीजिए।
7: अब इनको मैं क्या जवाब दूं भाई? मैं
3: जवाब,
7: मैं मुसलमान,
3: प्लीज प्लीज प्लीज, जरा एक मिनट, एक मिनट।
6: अब्दुल जितेंद्र महेंद्र के झगड़े में दीवाना मत हो, लिंचिंग आपकी की होगी।
3: शौकत अली जी,
7: ये सुनिए,
3: आपके समर्थकों को ये बता दीजिए, अगर वो बात करेंगे तो आपके यहाँ पर बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप ताकत द्वारा इसके लिए यहाँ पर बैठे, आप अपनी भूमिका रख रहे हैं। डॉक्टर खान जवाब दीजिए,
7: चलिए सुनिए।
3: ठीक,
7: अब देखिए, इनकी हकीकत मैं अभी खोले दे रहा हूँ, अभी इनका चेहरा नकाब खोल दूंगा मैं। कहते हैं ओवैसी साहब इनके लीडर की हिजाब वाली मुख्यमंत्री बनेगी, हिजाब वाले प्रधानमंत्री बनेगी। अच्छा, अब सुनिए, ये जो बैठे
6: क्या संविधान में प्रावधान नहीं? आप संविधान को मानते हैं? संविधान में प्रावधान नहीं है?
7: दाढ़ी वाले से झगड़ा मत करो, दाढ़ी वाले से झगड़ा मत करो, बिना दाढ़ी वाले से झगड़ा मत करो, बिना दाढ़ी वाले मुसलमानों की बात करेंगे? अरे मुसलमानों की बात तब करना जब दाढ़ी रखा लेना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आ जाना, तब
3: मैं एक मिनट।
6: साहिल भाई, हिंदुस्तान की तारीख में, साहिल भाई हिंदुस्तान की तारीख में,
3: एक मिनट,
6: हिंदुस्तान
3: एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। अरे एक मिनट,
7: दलाल लोगों को चुप रहिए,
3: एक मिनट,
7: दलाल ही नहीं।
6: साहिल भाई हिंदुस्तान,
3: आपका कहने का मतलब क्या है? कोई नकाब वाली मुख्यमंत्री नहीं बन सकती?
7: नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ बन सकती है।
3: हाँ ठीक है,
7: हाँ, लेकिन इन्होंने क्या किया अभी?
3: हाँ,
7: अभी मटेरा विधानसभा है, वहाँ से समाजवादी पार्टी की महिला एमएलए है, उसके खिलाफ लड़ने जा रही है, महिला मुसलमान के खिलाफ जा रही है। ये है,
3: ठीक है,
7: वहाँ कहाँ के रहने वाले, अब कहाँ जा रहे हैं लड़ने के लिए?
3: ठीक है,
7: ये सोचिए।
3: शौकत अली जवाब दीजिएगा, मुसलमानों के वोट में, भाई एक मिनट, आपके दो नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, वो बात कर रहे हैं, आप जरा उनकी बात सुन लीजिएगा। सब लोग बात कर रहे हैं, आप रील बना लीजिएगा आराम से, लेकिन पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो। शौकत, सवाल यहाँ पर ये है, 2024 के लोकसभा के चुनाव होते हैं।
6: नहीं, इन्होंने
3: उस पर आऊंगा ना, उसी पर बात करेंगे ना, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, थोड़ा सा खुल के तो बात कर ले। 2024 के लोकसभा चुनाव में 92% वोट मुसलमानों के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को पड़े। आप पर भरोसा नहीं रखा मुस्लिम समुदाय ने, क्यों नहीं रखा? उनको लगता है कि वोट टूटेंगे तो इनको फायदा हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए क्या आज की स्थिति में जो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप वहां पर आकर उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? जो
6: साहिल भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम एक भी सीट लोकसभा में नहीं लड़े थे। 24 में हम सिर्फ 3 सीट लड़े थे, 3 या 4 सीट पूरे हिंदुस्तान में। उत्तर प्रदेश में हम लोकसभा का इलेक्शन
3: क्यों नहीं लड़े थे?
6: उत्तर प्रदेश में यह पार्टी का फैसला था,
3: ठीक है,
6: पार्टी का फैसला था, हम चुनाव नहीं लड़े। यकीनन हमको कामयाबी नहीं मिली अब तक, लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी, वक्त लगेगा। और दूसरी चीज जो चच्चा कह रहे हैं,
3: किस मुद्दे पर कामयाबी मिली?
7: नाम लीजिए, देखिए, नहीं हमें नाम लो हमारा, चच्चा कहोगे तो तुमको बच्चा कह देंगे हम,
6: बिल्कुल कहिए,
7: बच्चा हो,
6: बिल्कुल
7: बच्चा हो,
6: बिल्कुल कहिए,
7: खेलने वाले बच्चा,
6: बिल्कुल
7: वाले बच्चा हो,
6: बिल्कुल
7: चच्चा मत कहो, मेरा नाम है,
6: बिल्कुल,
7: मैं डॉक्टर हूँ, तुम डॉक्टर नहीं हो।
3: डॉक्टर खान, उनको बोलने दीजिए,
7: मैं डॉक्टर हूँ,
3: क्या बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए, बोलने
7: कैसे बोलेंगे? चच्चा चच्चा करेंगे,
3: बोलिए बोलिए।
7: मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर, ये डॉक्टर है क्या? ये डॉक्टर हैं क्या?
3: उनका जवाब तो सुन लीजिए।
7: प्रोफेसर हैं क्या?
3: ठीक है, जवाब तो सुन लीजिए।
7: अरे तो ये बेवकूफी वाला जवाब थोड़ी सुनने बैठे हैं।
3: ठीक है, सुन लीजिए।
7: बेवकूफी का जवाब नहीं सुनेंगे हम।
3: नहीं नहीं, सुन लीजिए, सुन जवाब सुन लीजिए, आपके पास आऊंगा। चलिए शोकत अली, आपकी बात खत्म करें, आपकी बात खत्म करें।
7: तेरे सुनूंगा,
3: आगे बढ़ेंगे, आगे
7: बढ़ेंगे।
3: अरे आगे बढ़ेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज,
7: सुनने पे कायम रहिए।
3: चलिए शोकत अली, आपकी बात खत्म करें,
7: सुनने पे कायम रहिए।
3: आप जी, आप किस किस किस मुद्दे को लेकर मुसलमानों के पास जाएंगे, जो आप कह रहे हैं कि आपको वोट मिलेंगे इस बार लोकसभा की तरफ?
5: मैंने आपसे शुरू में बताया कि इस देश में सबसे पिछड़ा अगर कोई समाज है तो वो मुसलमान है। मुख्य धारा से कोई समाज कटा है तो वो मुसलमान है। 2012 के अपने चुनावी मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों से 18% रिजर्वेशन की बात की थी, दरगाहों के संरक्षण की बात की थी, मुस्लिम बस्तियों में कैंप लगा करके मुस्लिम नौजवानों को डायरेक्ट पुलिस में भर्ती करने की बात की थी, आतंकवाद के झूठे मुकदमे में जो मुसलमान जेल की सलाखों में उनको छोड़ने की बात कही थी। 2012 में मुसलमान

0: के अंदर।
1: मैं कल का उदाहरण दे दूं आपको अभी,
0: खालिद मुजाहिद, खालिद मुजाहिद को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया।
1: अरे मैं कल का उदाहरण दे दूं आपको,
0: आप कह रहे हैं कि
1: अरे सुन लीजिए ना, आपके समर्थक भी,
0: अगर हम ये बात कह रहे हैं तो हमको आप कह रहे हैं हम बीजेपी की भी टीम है।
1: अरे ठीक है, तो मैं आपको कल का
2: उदाहरण, आपको आप खुद ही कह रहे हो,
0: आप कह रहे हैं
2: हम बीजेपी की भी टीम है, हमने तो नहीं कहा बीजेपी की टीम।
1: देखिए
2: आप खुद कह रहे हो बीजेपी की
0: भी, अरे आप लोगों की सियासत इसी पे है, आप कैसी बात कर रहे हो,
2: कह रहे हो खुद, आप खुद दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो।
1: ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये बड़ी दिलचस्प,
0: राज्यसभा के इलेक्शन में कांग्रेस ही बिकता है बीजेपी को,
1: शौकत अली
0: समाजवादी बिकता बीजेपी को, आप इल्जाम हमको दे रहे हो।
1: आज मेरे पास फेडर
0: आधा परिवार मुलायम सिंह का,
1: आज मेरे पास फेडर नहीं है, इसके लिए मैं किसी को चुप नहीं करा सकता, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए एक बार, मैं कल की याद दिला देता हूँ आपको। कल दिल्ली दंगों के मामले में ताहिर हुसैन उनको दोषी पाया गया, ठीक है। ताहिर हुसैन आपके कैंडिडेट थे दिल्ली विधानसभा,
0: बिल्कुल थे, आप संविधान को मानते हैं,
1: सुन तो लीजिए, दिल्ली विधानसभा के आपके कैंडिडेट थे,
0: हाँ बिल्कुल थे।
1: जब उनको डिफेंड करने के लिए बुलाया गया
0: जी,
1: तो आपके आपके नुमाइंदे आए नहीं, क्यों नहीं आए
0: जी,
1: आपके आपके नुमाइंदे आए नहीं उनको डिफेंड करने के लिए, जो जो आरोप आप समाजवादी पार्टी पर लगा रहे वो तो आपने भी किया हुआ है।
0: नहीं नहीं सुनिए सुनिए मेरी बात,
1: ताहिर हुसैन को आपने आम आदमी पार्टी के खिलाफ,
0: आप देखिए सेशन कोर्ट से उनको सजा हुई है,
1: ठीक है।
0: अच्छा, जब ताहिर हुसैन को हमने चुनाव लड़ाया था संविधान, तब उस वक्त उनको इस बात की इजाजत देता था,
1: ठीक,
0: कि वो चुनाव लड़ सके, तो अगर आप संविधान को नहीं मानते तो अलग बात है।
1: मैं पूछ रहा हूँ आपसे,
0: और तब वो कन्विक्टेड,
1: आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने वहां पर भूमिका रखी कि
0: मैं किसी हत्या की ताइद नहीं कर रहा हूं।
1: हाँ।
0: मैं उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है फर्जी इनकाउंटर, मैं उसकी भी ताइद में नहीं हूं, चाहे वो तिवारी को मारा जाए, चाहे वो ठाकुर को मारा जाए, चाहे मुसलमान को। हमारे यहां न्यायालय है, क्यों है, क्या इसको ताला मार देंगे आप इसको ताला लगा देंगे? अच्छा बताइए, राम मंदिर में खुदा न खास्ता अगर कहीं गलती से कोई अब्दुल होता तो अब तक तो बुलडोजर उसके घर पे होता, लेकिन इत्तेफाक से बुलडोजर
1: सही है क्या
0: बन रहा है?
1: ये जो बोल रहे हैं वो सही है क्या? जो ओवैसी भी बोल चुके हैं हालांकि,
3: असल में अभी मैं दोनों को सुन रहा था और देश की जनता भी देख रही है,
1: मन में मुस्कुरा रहे हैं, जैसे ही समाजवादी पार्टी और
3: आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इनका भविष्य कहाँ है और ये क्या करेंगे उत्तर प्रदेश में और क्या करेंगे देश में। वो बोल रहे हैं भाई, उनकी पार्टी के तो नेता अभी बोल रहे हैं शौकत साहब, उनकी पार्टी के नेता तो साफ कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम दिखाते हैं तुम्हें अब देश में क्या होता है। तो ऐसे लोगों को तो सत्ता कभी नहीं मिलने वाली, ये भूल ही जाएं। और दूसरे ये बैठे हैं ये अपराधियों का, ऐसा इन्होंने अपराधीकरण किया था राजनीति का, जितने भी निर्दलीय अपराधी थे सबको बुला के सरकार बनाई और फिर उन्हीं अपराधियों को टिकट देने का काम एआई ने कहा, एआईएमआईएम ने कहा, ये अपराधियों को लाए हैं
2: भूषण शरण सिंह क्या है,
3: ये अपराधियों को लाए हैं
2: भूषण शरण सिंह क्या है,
3: तो अपराधियों के साथ आतंकियों के साथ में चलने वाले लोग और आतंकियों के ऊपर से मुकदमे हटाने वाले, इनके हाथ में सत्ता कौन देगा,
2: बात करेंगे
3: ये कौन लोग हैं, इनकी तो जांच होना चाहिए कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं देश में। ये अस्थिरता फैलाने वाले लोग हैं, ये अपराधियों का महिमा मंडन करने वाले लोग हैं। इन्होंने अपराधियों को समाजवादी पार्टी ने अपराधीकरण किया उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो कहते हैं कि हम तो अपने जितने भी अपराधी हैं हमारी पार्टी में आएंगे, हम उनको प्रत्याशी बनाएंगे, और प्रत्याशी बनाते यहां ज्वाइन किया उन्होंने, यहां उत्तर प्रदेश में आकर इन्हीं के नेता ने ज्वाइन कराया एक अपराधी की पत्नी को। जवाब देना प्रदेश की जनता को, क्यों आपने आपको कोई शरीफ आदमी नहीं मिला, आपको भी अपराधी सहारा चाहिए सत्ता में आने के लिए, आपको अपराधी चाहिए हैं
1: तो,
3: और उनको भी अपराधी चाहिए हैं
1: तो बीजेपी,
3: तो ये 20% इसीलिए हाशिए पर हैं और इनको बर्बाद करने वाले ये लोग हैं।
1: उत्तर प्रदेश में जब चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएगी, तब जब उम्मीदवारों की सूची आएगी तो उसमें पता चलेगा कि किस पार्टी में से कितने अपराधी उस उम्मीदवारों की सूची में दिखाई देते हैं, उसमें सभी पार्टी के नाम होंगे।
3: बिल्कुल भी।
1: लेकिन डॉक्टर खान को जवाब देना चाह रहे हैं पहले डॉक्टर, अरे एक मिनट भाई प्लीज, अरे कोई बात नहीं आप बैठ जाइए, ठीक है चलिए आगे।
2: मोहसिन साहब कह रहे हैं अपराधियों को, ब्रजभूषण शरण सिंह क्या है बता देंगे? ब्रजभूषण शरण सिंह लड़कियों के रेपिस्ट, उनके लड़के को टिकट दिया, एक को एमपी बनाया, एक को एमएलए बनाया, ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं।
1: क्यों समाजवादी पार्टी पर अपराधीकरण का आरोप लगता है? इनका तो छोड़ दीजिए, वो भी लगा रहे हैं और
2: आरोप लगाने का हिसाब किताब आ गया ना, पश्चिम बंगाल में क्या करने गए थे ये? जैसे ही वहां पर देखा उन्होंने कि हाँ 12,000 करोड़ रुपया आ गया।

0: 6000 करोड़ पहले किनारे हो गए और 2024 में जब मैंने पहले भी कहा था अब भी कह रहा हूं कि 2024 में अगर जनता का विश्वास ना होता तो हम बीजेपी को हार नहीं कर पाते। बीजेपी को हराने का काम किया अगर तो समाजवादी पार्टी ने किया है और केंद्र में बैसाखी पे ले जाने का काम अगर किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। आप यहां पर आके हिंदू मुसलमान का झगड़ा करेंगे, मुसलमान मुसलमान को लड़ाएंगे, ये नहीं चलेगा।
1: भैया आपने तो हिंदुओं की हत्या कराकर पार्टी बनाई और मुसलमानों का दिल जीत लिया, मतलब देश के लोगों की हत्या कराई है, राम सेवकों की हत्या कराई है और उसके बाद आप मुसलमानों का दिल जीत लिए, तो ऐसी आपको राजनीति नहीं चलेगी देश में, ऐसी राजनीति नहीं चलेगी भैया।
0: 36
1: ये सब की बातें खान साहब, ये नहीं चलेगा। आपने निहत्थेकार सेवकों की हत्या कराकर आपकी पार्टी बनाई गई है।
2: ठीक है ठीक है, मैं एक बात बताऊं आज स्ट्रैटेजी के लिए नहीं, एक मिनट, नहीं होगा ये बातचीत नहीं होगी, सभी को सब कुछ पता है। प्लीज बैठिए
0: बैठ जाओ।
2: एक डॉक्टर खान, मैडम प्लीज, मैडम ये टेलीविजन डिबेट नहीं है, आपको मौका मिलेगा तब बोल लीजिएगा प्लीज, सॉरी। डॉक्टर खान, बड़ा क्या हो रहा है पता है, जैसे ही विधानसभा चुनाव की राजनीति होने लगती है तो एक तरफ तो बीजेपी खींच लेती है आपको कि कृष्ण जन्मभूमि पर क्या करेंगे, संबल पर क्या करेंगे, अयोध्या पर क्या करेंगे, दूसरी तरफ वो आपको खींचने लगते हैं कि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट पर क्या करेंगे या बाकी सारे मुद्दों पर कितने मुसलमानों को टिकट देंगे। आपकी राह बड़ी मुश्किल है, आपकी राह बड़ी मुश्किल है, नहीं लगता आपको? क्या आपको लगता है कि जो स्ट्रेटेजी आज की स्थिति में अपनाई जा रही है, जो 92% ब्लॉक वोटिंग मुसलमानों की आपको हुई थी, विधानसभा के लिए आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर वो भी चुनाव में उतर जाते हैं?
0: नहीं नहीं, मैं उस चीज को नहीं मानता हूं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हमको सभी समाज के लोगों का वोट नहीं मिला होता तो 2024 में 37 एमपी यहां से जीत के नहीं जाते, हमारा 37 एमपी जीत गए यहां।
2: तो आप सभी समाज
0: 111 एमएलए हमारे आज के पास है और उसमें कम से कम 35 से 36 एमएलए मुसलमान है और वही गूंगे, आइए ये हैदराबाद से आके ये बिना गूंगे वाले हैं, ये कहाँ के रहने वाले, कहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं करना कुछ, ये सब बातें नहीं करना है, हम गूंगे हैं क्या? मैं दाढ़ी रखा के बैठा हूँ, मैं गूंगा हूँ क्या? अरे बस सब दाढ़ी तक तो नहीं है तुम हमारे पास, तुम्हारे पास दाढ़ी तक तो नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत को ना अदा करे वो मुसलमान ही नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है भाई, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जो ना अदा करे वो मुसलमान ही नहीं है, और मुसलमान वो होता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी रखा के बैठता है।
2: सवाल ये होता है
0: जी,
2: इसमें मैंने सवाल आपको इसलिए पूछा क्योंकि सिकंदर की कहानी इसमें बड़ी चर्चा में आती है। जब सिकंदर भारत में आया था तो किसी मुनि को मिलने गए, उनको बोला कि आप एक उनके सामने दरी बिछाई और कहा कि उस पर बैठ जाइए, और वो दरी गोल थी, जब वो आगे बैठने जाते थे तो पीछे से ऊपर हो जाती थी, पीछे बैठने जाते थे तो आगे से ऊपर आ रही थी। आज समाजवादी पार्टी की हालत ऐसी हो गई है क्या कि एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व भी उनको करना है, दूसरी तरफ मुसलमानों का वोट भी चाहिए, ये स्थिति में तो नहीं आप आ गए?
0: मैं क्या हूं,
2: जैसे ही एमआईएम वहां
0: मैं, मैं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं आप बताइए, अरे भाई बताइए ना, मैं डॉक्टर एमएच खान, दाढ़ी वाला मुसलमान, आज समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो मुसलमानों को हिस्सा नहीं मिला क्या? ये चिल्लर चिल्लाने वाले चिल्लर हैं, ये कुछ नहीं, एक भी मुसलमान इसमें नहीं है,
2: शौकत अली,
0: एक भी आदमी मुसलमान नहीं है,
2: शौकत अली,
0: सब मुसलमान नहीं है,
2: शौकत अली,
0: एक भी दाढ़ी वाला नहीं है, एक भी टोपी वाला नहीं है
2: भाई, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं
0: वाला नहीं है,
2: आपको तो सिर्फ
0: वाला नहीं है,
2: आप
0: जो नहीं है
2: भाई, एक मिनट, अरे एक मिनट प्लीज, देखिए आपको और इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले मोहसिन भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ 20% से वोट चाहिए और इन्हें सिर्फ 80% से वोट चाहिए।
3: देखिए मैं आपको बता दूं,
2: यही बात है ना,
3: देखिए मैं आपको बता
2: दूं, इसीलिए तो खींचा का नहीं है,
3: बीस
2: आप लेके जाएंगे, 80 ये ले जाएंगे, बाकी लोग छोड़ दें।
3: देखिए मैं आपको बता दूं,
2: यही बात है ना,
3: समाजवादी पार्टी की हुकूमत में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ।
2: मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए, उस पर जाएंगे हम लोग, मैंने क्या पूछा आपको, आपको सिर्फ 20% से वोट चाहिए, इनको सिर्फ 80% से वोट चाहिए,
3: नहीं ऐसा,
2: यही बात है,
3: ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी में बहुत सारे हिंदू हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी में हिंदू नहीं है, और हमने 2022 के इलेक्शन में 19 गैर मुस्लिमों को हमने टिकट भी दिया था, ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन हम इतना आपसे जरूर कहेंगे कि आने वाले 2027 में जिस तरीके का दावा ये लोग कर रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ जाएगा, 37 एमपी इनके हैं और 111 एमएलए हैं। मुसलमानों के ऊपर जब जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार होता है, जब इनके नेताओं से कहो तो कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी सत्ता नहीं है। 33 साल से मटेरा विधानसभा में समाजवादी, जब वो चर्दा थी 2012 में मटेरा बनी, 33 साल से वहां का जो विधायक है समाजवादी पार्टी का है। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, अफसोस होगा कि एक महिला डिग्री कॉलेज मटेरा विधानसभा में नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक अस्पताल नहीं है। कुछ रोड ऐसे हैं मटेरा विधानसभा में, जैसे खास करके मैं नाम लेकर के बता रहा हूं, बुलबुल नवाज रोड, अगर आप वहां जाएंगे तो रास्ते नहीं है। वो घर के बच्चे कह रहे हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, सड़कें है ही नहीं है, साइकिल घर में रख दिए, बोले अब हम स्कूल ही नहीं जाएंगे। तो 33 सालों में मैं सिर्फ एक विधानसभा, इन्होंने कहा कि मुसलमान विधायक, हमको मुसलमान विधायक नहीं चाहिए, हमको मुसलमानों पे बात करने वाला विधायक चाहिए। ये दोनों में फर्क है।
2: क्या फर्क है?
3: ये दोनों में बहुत फर्क है।
2: क्या फर्क है?
3: देखिए, हमें और गूंगे और बहरे की जरूरत नहीं है। मोहसिन भाई संबल की ईदगाह पे नहीं बोल पाएंगे, हमको मालूम है मोहसिन भाई की मुसलमान है, हमको मालूम है, क्योंकि पार्टी से बंधे हुए हैं,
2: नहीं बोल पाएंगे आप,
3: नहीं बोल पाएंगे भाई,
2: संबल पे नहीं,
3: संबल की मस्जिद तोड़ी जाएगी,
1: नहीं बोल पाएंगे, पूरे देश पर बोलेंगे, ये कहीं नहीं बोल पाएंगे,
3: नहीं बोल
1: पाएंगे, हम तो पूरे देश पर बोलते हैं, देश के हित में बोलते हैं, ये कहां बोल पाएंगे, इनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, इनके पास एक ले देंगे, संबल ले आएंगे, उसके बाद मुसलमान ले आएंगे, सबकी इनकी राजनीति जो है वो
2: संबल पर बोल पाएंगे,
1: इनकी राजनीति अयोध्या से शुरू हुई उनकी संबल पे खत्म हो जाएगी। हम देश में काम कर रहे हैं
3: साहिल भाई,
1: हम देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, हमारे लिए पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हम सबके लिए काम करते हैं। हम 15% हटाने की बात नहीं करते हैं, हम 15% को जोड़ने की बात करते हैं, ये 15% पे राजनीति करने की बात करते हैं।
3: अरे ये मोहसिन भाई
1: 15% पे बंटवारा करेंगे,
2: ठीक है, ठीक है भाई, प्लीज,
1: ये 15% पे बंटवारा करेंगे,
2: दिखाया हुआ है। आप एक काम करिए, शौकत भाई की जगह आपके बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, हम
3: मोहसिन,
2: आप उधर आके बैठ जाइए ना, उनको क्यों बिठा,
3: मोहसिन भाई, ये मोहसिन भाई, ये
1: हमको चाहते हैं कि शौकत साहब जो है उनको सोचना चाहिए, अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, खान साहब भी बहुत अच्छी विचारधारा के व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों पार्टियां गलत चुन चुके हैं। इनको हम स्वागत करते हैं कि आए और विचार करें, ये भी भारतीय सोच में आ जाएं, ये उस सोच से बाहर निकल आए जो अपराधीकरण की सोच है।
2: इसका मतलब क्या हो गया कि एमआईएम, एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ कि एमआईएम या समाजवादी पार्टी भारतीय सोच के लोग नहीं?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं है।
2: कैसे नहीं?
1: मैं देखिए ना, मैं कह तो रहा हूं कि गुमराह करना, अपराधीकरण, आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए बात कहना कि सत्ता में आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 15% लोग हम हैं, आप पुलिस हटा लो, 15 मिनट में हम सफाया कर देंगे। तो भाई, इतने खतरनाक लोग हैं, इनको लेकर ये बेचारे हमारे अल्पसंख्यक के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये क्यों इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं? इनकी विचारधारा ठीक नहीं है, इनकी देशहित की विचारधारा नहीं है, ये बार बार मैं कह रहा हूं। और अब क्यों कहना पड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष को इनके समाजवादी पार्टी के, कि समाजवादी ही सनातन है? हम तो बार बार कह रहे हैं कि यहां सनातन की विचारधारा है, ये वो देश है जहां पर राम के देश में मोहम्मद का सम्मान होता है, ये समझना पड़ेगा आपको।
3: ये राम का देश नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का भी संविधान से चलने वाला देश है।
1: कैसी बात कर रहे हैं, राम का देश है,
3: ये
1: यहाँ पर संविधान से चलने वाला देश है,
3: ठीक है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से चलने वाला देश नहीं है।
2: चलिए बीच में,
3: यहाँ पर देखिए,
2: ये आप एक मिनट, ये कह रहे हैं राम का देश है, ये कह रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर का देश है, आप बताइए किसका देश है? समाजवादी पार्टी
3: संविधान का देश है,
2: संविधान,
3: संविधान, संविधान इस देश में लागू होगा।
1: मैं संविधान का देश है तो संविधान के साथ रहिए ना,
3: उनके नहीं, नहीं, नहीं, संविधान में कहीं नहीं है किसी जात विशेष के बारे में कहा गया,
2: ठीक है,
3: संविधान में कहा गया है कि जो जिस धर्म को मानना चाहे माने,
2: तो भी सत्ता में आने के बाद 52% यादवों को सिर्फ नौकरी क्यों, मेरे पास क्यों नहीं, समय खत्म हो रहा है मेरा समय,
3: मैं एक लाइन कह के,
2: ठीक है, करिए करिए,
3: मैं कह रहा हूँ एमआईएम को, कह रहा हूँ कि ये अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता है, इनको चुनाव लड़ना चाहिए, लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं,
2: दिक्कत नहीं,
3: कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम 2027
2: कोई प्रपोजल नहीं कि हमारे साथ
3: 2027 में बीजेपी को हरा करके सत्ता में आने जा रहे हैं, बस इतना है ये,
2: ठीक है,
3: ये
2: आखिरी 3 मिनट है, 1 मिनट प्लीज प्लीज, अभी अभी शांति से सुन लीजिए, प्लीज प्लीज, एक एक मिनट, मैं टाइमर लगा रहा हूं, उत्तर प्रदेश की आबादी को एक मिनट में आपकी पार्टी की तरफ से आप क्या कहेंगे, एक एक मिनट में तीनों लोग कहेंगे, पहले आप शुरुआत करिए शौकत भाई।
3: देखिए मैं तो उत्तर प्रदेश की आवाम से ये कहूंगा कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के चेहरे को पहचानिए और कांग्रेस भी उसी में लिप्त है। कांग्रेस ने अभी कहा है कि शिलान्यास हमने करवाया, बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा जो कि संविधान के ऊपर ये हमला था और सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया था। तो ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू है, बेवकूफ बना रहे हैं जनता को, जनता को इनके झांसे में नहीं आना चाहिए।
2: समाजवादी पार्टी
0: सारे समाज को लेकर चलने वाली समाजवादी पार्टी है, सारे धर्म को मानने वाली समाजवादी पार्टी है और जिस जिसको चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड कर दिया है वो चुनाव लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं।
2: ठीक है, मोहसिन रजा।
1: देखिए उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता आदरणीय मोदी जी के साथ, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार, जिस तरह से सुशासन कानून और जिस तरह से कल्याण और विकास हुआ है अपने आप में, तीसरी बार भी हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं।
3: 27 में आपको टिकट जरूर मिलेगा इंशाल्लाह मोहसिन भाई, मैं दुआ करूंगा।
2: बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी उम्मीद सिर्फ इतनी रहेगी कि 80-20 से नहीं 100 से वोटिंग हो, यही उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने।

0: hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
1: मिल गया।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: इंडियन क्रिकेट ने अगर कोई गोट देखा है तो आज मैं उनके सामने बैठा हूं। वैभव सूर्यवंशी को पारी आप कैसे देखते हैं?
3: ह्यूज टैलेंट विदाउट एनी डाउट, इज एज गुड एज सचिन और विराट कोहली।
2: लेकिन क्रिकेटिंग हलकों में क्या उसी तरह से नाम बज रहा था सचिन तेंदुलकर का जैसे आज वैभव सूर्यवंशी का बज रहा है?
3: आई थिंक वैभव का थोड़ा ज्यादा है,
2: उनका डेब्यू थोड़ा सा डिलेड है,
3: बट आप इतिहास देखिए तो आपको एहसास होगा कभी कभी लेट ना हो जाए।
2: विराट में आपने ऐसा क्या देखा?
3: विराट को देख के मेरे को मैकेनरो याद आते हैं,
2: जॉन मैकेनरो।
3: हाँ, क्योंकि जब तक वो लड़ते नहीं थे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे। थोड़ा सा जो उनका अजीब लगता है कि वो ज्यादा जोशीले हो जाते। आई लव टू प्रूव पीपल रॉन्ग।
4: वी मस्ट राइज, वी मस्ट फाइट। दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का, लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में खासतौर पर तेहरान के इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वायर पर नजर आएगा। आप देखते रहिए आज तक।

0: छतरी ना खोल बरसात में,
1: आहा भीग जाने दे
0: मेरी छतरी के नीचे हाचा।
1: क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी?
0: सलमा या कमला?
1: सलमा भी थी, कलमा भी होगी, कमला भी होगी।
2: अरे आप कमला गाओगे,
1: मैं सलमा,
2: ये सलमा गाएंगे।
1: कोई तो आगे और पीछा होगा।
0: मैं कमला पसंद, ये सलमा पसंद। नेताओं ने मिलकर ये ट्रस्ट बनाया है जिसमें लैक ऑफ ट्रस्ट जो है आजकल सबसे ज्यादा है, तो का ही कर सकते हैं आप। और सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। संघ ने इधर लेटर जारी कर दिया,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
2: Oh, sorry!

0: छह साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया उसे लेकर सुलगती सियासत का एक सिरा पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार तक पहुंचता है। 2020 की फरवरी के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की हत्या हुई थी। मारे गए 40 मुस्लिम और 13 हिंदुओं में एक नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा का भी था, जिसकी हत्या के केस में कड़कड़डूमा की अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जो आरोप लगाए थे उनमें से अदालत ने हत्या की धारा 302, अपहरण की धारा 365, दंगे से जुड़े अपराधों की धारा 147, 148, 149 और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की धारा 153 और सरकारी आदेश तोड़ने की धारा 188 के तहत ताहिर को दोषी करार दिया है। दोषियों की सजा का ऐलान 16 जुलाई को होगा, लेकिन 5 दोषियों में से एक आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: आएंगे। और सुनो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भैया सबको घर बनवाया पक्के कि नहीं बनवाया? बोलो बनवाया। भाई कुछ पत्रकार मित्र तो बोल दें, पक्के मकान मिले हैं सबको? मिले हैं दीदी, मिले हैं कि नहीं मिले हैं? मिले हैं। अच्छा बताइए इन्होंने क्या किया? हम जिंदा के लिए मकान बना रहे हैं, वो कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल करा रहे हैं। ये क्या भाग जाएंगे वहां से मुर्दे? मुर्दों को भी गाड़ी होती है? मुर्दों को ताले में क्यों बंद किया आपने? समाजवादी पार्टी बताए कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल क्यों कराई, ये बता दे बस। क्या मुर्दे भागेंगे वहां से? अब बताइए, आप जवाब दे दीजिए।
1: नहीं, लेकिन ब्रजेश पांडे,
0: आप केवल एक बात बता दीजिए, केवल समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल क्यों कराई? हमने गरीब को पक्के मकान दिया है, क्या मुर्दे भागेंगे कब्रिस्तान से? इसका जवाब दीजिए आप।
1: ब्रजेश पाठक जी, आप एक तरफ कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि विकास पर चुनाव होगा।
0: हाँ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये तो आपने छेड़ा है कि समाजवादी पार्टी कह रही है राम मंदिर। अरे भैया, जहां रुपया है वहां गड़बड़ी है, हमने तैनाती की है, पुलिस जांच कर रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। अब एको बार नहीं बोले कि मस्जिद में गड़बड़ है, मौलाना ने ये गड़बड़ कर दिया, वो गड़बड़ हुआ, मदरसों में गड़बड़ हुआ, अखबार में आया, हमने कार्रवाई की। वक्त की संपत्तियों में लूट मची हुई है, कोई बोला समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता? खाली वोट लेते हैं, खाली वोटें चाहिए इनका, कुछ नहीं चाहिए इनका, खाली वोटन से मतलब है, कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गरीबन की पार्टी है, मोदी जी की पार्टी है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की पार्टी है और सबका साथ लेके चल रही है। आज यू बता दें आपके यहाँ उत्तर प्रदेश का बजट 12 से 17 तक जितना रहा है 3 गुना बजट हो चुका है, प्रति व्यक्ति आमदनी 3 गुनी हो चुकी है, 75 जिलों में 4 लेन की सड़क बन चुकी है, सर्वाधिक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है, बिजली समाजवादी पार्टी की सरकार में कितनी आती थी पता है आपको? 15,000 मेगावाट जलाते थे तो कहते हैं पीक, बहुत बिजली इतिहास बन गया। हम 32,000 मेगावाट बिजली यूज करते हैं और पूरे प्रदेश से पूछिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में बत्ती आती थी 1 हफ्ता दिन में 1 हफ्ता रात में, काहे नहीं बताते हो तुम लोग? 1 हफ्ता दिन में 1 हफ्ता रात में, जब हमारे रिश्तेदार आवे जीजा फूफा तो पूछते थे बत्ती दिन की है कि रात की, जरा पूछिए, भूल गए तुम लोग?
1: लेकिन ब्रजेश जी, आपने जो काम किया आप उसको गिनाएंगे ना?
0: हाँ?
1: जो समाजवादी पार्टी की सरकार तो 10 साल पहले थी।
0: हाँ भाई, देखिए जब हम किसी भी कंपनी में काम करने जाते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कर लीजिए, चाहे उसको कह दीजिए तुलनात्मक अध्ययन। बोलो भैया, एक उदाहरण देते हैं आपको, हम बाजार जाते हैं, हम छोटे थे, कक्षा 8 में पढ़ते थे, अम्मा ने झोला दे दिया सब्जी खरीदने के लिए, दे दिया, आप तुमको भी दिया होगा। हम गए दुकानदार से कहा हमने का सब्जी दे दो, उसने भिंडी भर दिया, तोरई भर दिया, लौकी भर दिया, आलू भर दिया, टमाटर भर दिया, धनिया भर दिया। अब घर लेके आए, पिताजी नाराज हो गए, पिताजी ने कहा ये कबाड़ उठा के लाए, भिंडी कड़ी है, लौकी कड़ी है। तो पिताजी गुस्से में थे, उन्होंने डंडा उठा लिया। पिताजी डंडे को समझावन लाल कहते थे, क्या कहते थे? कहले समझावन लाल को लाया जाए। तो अम्मा हमारी दुलार में हमको अपने कोछे में भर ली, कहीं भैया को हम सिखा देते हैं सब्जी कैसे खरीदी जाएगी, ठीक है? तो कहीं भिंडी खरीदे हो तो पीछे से पूंछ तोड़ लो, भिंडी की पूंछ तोड़ देख लो तो खाने लायक है, बोलो यही है ना? और लौकी खरीदना हो तो लौकी में नाखून लगा दो, अगर नाखून चला जाए तो लौकी खाने लायक है, क्यों भैया?
1: लेकिन लौकी की बात क्यों?
0: मेरी बात तो सुन लो दीदी, पूरी बात मैं कर दूं। फिर क्या है, मैं कहता हूं कि 50 रुपए की सब्जी के लिए तो झंझट दुकानदार से, दुकानदार पूछ तोड़ने नहीं देता भिंडी की लौकी की नाक। अब वोट देना है जहां प्रदेश की तस्वीर और तदबीर बदलनी है, तब वोट का है दे दो कि जाति के नाम पर दे दो, धर्म पे के नाम? अरे हिम्मत है तो मांगो डेवलपमेंट पर वोट। ब्रजेश पाठक कहता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम काम के नाम पर वोट मांगेंगे, हम काम के नाम पर वोट मांगेंगे। तुम पीडीए की बात करते हो, जो दुकान तुम्हारी ब्लैक लिस्टेड हो गई है, आप नाम बदल करके लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करना चाहते हैं, प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।
1: जाति की राजनीति तो आप भी कर रहे हैं।
0: मैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आप लिस्ट उठा लो प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं की, हर गरीब को पक्का मकान मिला है, मुस्लिम समाज के जितने भी बीपीएल श्रेणी में थे सबको पक्का मकान न मिला हो, हम राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी, हर मुस्लिम भाई जो जरूरतमंद था, जो बीपीएल था, उसे मिला है, ना मिला हो तो हम राजनीति छोड़ देंगे।
1: धर्मेंद्र यादव अभी यहाँ पर थे, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो भी बेनिफिट मिला है वो एक जात को मिला है।
0: उनसे पूछना कि लिस्ट तो कंप्यूटर पर उपलब्ध है भैया कि नहीं। अच्छा एक काम करें, वो अपने जिले में मैनपुरी में इटावा में सूची मंगाएं, आपको दिखाएं, आप टीवी पर दिखाइए। बोलो भैया तय है, जो इटावा मैनपुरी और जहां उनके प्रभाव वाले जिले जहां वो एमएलए एमपी हैं या नहीं है, आप लखनऊ की सूची मंगा लीजिए। लखनऊ की सूची, इटावा की, मैनपुरी की सूची इस टेलीविजन पर चलेगी आज तक पर कि कौन कौन बेनिफिशियरी है, चलेगी ना? बोलो भैया लोकतंत्र में। आजमगढ़ की मंगा लीजिए सूची, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिला है, यादव समाज को भी मिला है, जो बीपीएल है उसकी सेवा हमने की है।
1: चलिए ब्रजेश पाठक जी, जो लखनऊ में आग की घटना हुई वहां पर आप जब आप गए वहां पर आप बहुत भावुक हुए, उसके बाद सवाल उठे कि जब आग होती है, आग की घटना होती है, ट्रेजेडी है, सबको तकलीफ होती है, उसके बाद कोई ठोस कदम नहीं उठते।
0: ये मैं पूरे प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, आपके मंच का उपयोग मैं कर रहा हूँ। जो भी आप व्यवसायिक प्रतिष्ठान है जहाँ लोगों का आना जाना है, कम से कम दुई रास्ता भैया बनाओ, कम से कम सीढ़ी को खुला रखो, अग्निशमन यंत्र जरूर लगाओ। ये हमारी आम जनता, आप हमारे अपने हो, जब कोई घटना होती है तो हम दुखी होते हैं। हमारे बच्चे मेरी आंखों के सामने चले गए क्योंकि उसका निकलने का और जाने का रास्ता एक ही था। अब आप सोचो, लगभग सारे ढेर सारे लोग मकान अपना बना लिए हैं, फिर उसे दुकान बना लिए हैं, और सरकार सबको तो आतंक करके बंद नहीं कर सकती ना, सरकार रिक्वेस्ट कर सकती है, जनता भी हमारी है और हमारी कोई गलती नहीं है। हम सबसे निवेदन हाथ जोड़ करके करते हैं कि अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में भैया कम से कम दुई रास्ता बनाओ, सीढ़ी खुला रखो और आग बुझाने के सारे उपकरण अपने यहाँ लगाओ। मैं यही कह सकता हूँ, हमने एडवाइजरी भी जारी की है और नए मकानों के लिए हमने कड़ाई से पालन करने के लिए LDA को कहा है।
1: लेकिन ये तो तैयारियों की बात हुई, उस घटना के बाद एक्शन क्या हुआ?
0: एक्शन ये हुआ कि जो भी जिम्मेदार लोग थे उनके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई की, कुछ को सस्पेंड किया है, कुछ को गिरफ्तार किया है, और कोई बचे ना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदार लोग थे वो जेल में हैं और जो लापरवाह थे उनको सस्पेंड कर दिया है।
1: तो आपको जी, तो ब्रजेश पाठक जी, तो आपको लगता है कि ये इस तरह की जो घटना होती है उसकी जिम्मेदारी जनता पर भी होती
0: नहीं,
1: है?
0: सरकार
1: कुछ, कुछ कोशिश
0: नहीं, नहीं सरकार की भी है, हम जनता से सहयोग की अपील करते हैं। जैसे हम ये बिल्डिंग बनाए हैं जहां हम लोग ये बात कर रहे हैं ना, तो इसमें भी दो रास्ते होने चाहिए। देखो इधर बना है, ताज वाले बनाए, देखो दिखाओ भैया। हाँ मान लो कौनी बात हो जाए तो एक रास्ते कैसे निभागेंगे, तो दो रास्ता यहाँ भी बना है। क्यों बना है?
1: लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा होती है।
0: लॉ एंड ऑर्डर बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश में, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। आज उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं है, माफिया का छोटा अंश भी नहीं है, माफिया सब गए।
1: 2017 का चुनाव हो या 2022, बार बार आपने ये जरूर कहा कि यहाँ महिला सुरक्षित महसूस करती हैं, और हम लोग क्योंकि ग्राउंड पर थे, हम लोगों ने बहुत महिलाओं से बातचीत भी की, तो ये साफ तौर पे दिखा महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है।
0: देखिए हमारे पास सूचनाएं जो है, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 5 बजते बजते अम्मा कहने लगती थी बिटिया घर लौटी आओ, अगर कोई जरूरी काम है तो भैया जाएं संग में, पिताजी जाएं, नहीं तो अम्मा खुद ही जाएं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 12 बजे रात को भी हमारी बेटी शाम को हजरतगंज में आइसक्रीम खाती है, किसी की हिम्मत नहीं कि बुरी नजर से देख सके। कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो गुंडे हैं वो प्रदेश छोड़ दें।
1: समीकरण की बात करते हैं, यहाँ पर तेजस्वी चिराग पासवान आए थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि बहुत ही तैयारी, वो जो जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, उनको उम्मीद है कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन होगा NDA के तौर पर।
0: गठबंधन है ही है, हमारे पार्ट है वो, हमारे
1: यहाँ पर NDA के साथ वो चुनाव
0: सबके साथ है, सब मेरे परिवार के लोग हैं, कोई दिक्कत
1: लेकिन
0: नहीं।
1: लेकिन अगर इस तरह का छोटी छोटी पार्टियां लड़ेंगी चुनाव,
0: कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नेतृत्व का सवाल है, हमारे लिए सवाल नहीं है, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, ये बाहर हमारे नेता लोग बताएंगे।
1: लेकिन दलित समाज,
0: दीदी ये सब नेता लोग बताएंगे, हमारे लिए यूपी का जो मसला है वो हम देखेंगे, हम यूपी में आम जनता के साथ खड़े लड़ेंगे इनके लिए।
1: ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है समाजवादी पार्टी,
0: कुछ नहीं निकलने वाला है, ये सब ढपोल संघ है, इनकी दुकान बंद हो चुकी है, ये आखिरी लौ इनकी जल रही, दिया जो है फड़फड़ाता है, ये फड़फड़ा रहे हैं, आखिरी इनके पास कुछ है नहीं। इस चुनाव का हारने के बाद पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की दुकान ठप हो जाएगी, इनका जनता से कोई लेना देना नहीं।
1: 300 सीट का दावा करके गए हैं यहाँ से।
0: अरे भाई आपको रोका किसी ने? जो नया दल आज रजिस्ट्रेशन कराया वो भी दावा करे, दावा करने कोई रोका है? कोई टैक्स ही पड़ा है? दावा पे कोई टैक्स है? दावा पे कोई टैक्स नहीं है, कोई करे?
1: लेकिन ब्रजेश पाठक जी वो सरकार में रहे हैं और 2024
0: में तो ढेर सारे, 2024 में तो कांग्रेस भी रही है,
1: नहीं 2024
0: सरकार में तो राहुल गांधी भी रहे हैं, उनसे पूछो क्या हालचाल है। रात को नींद नहीं आ रही है कि नानी क्या करके गई, नाना क्या करके गए, हाय भाई कुछ नहीं है, दुकान ठप है।
1: 2024 का चुनाव,
0: अरे काट की हांडी एक बार चढ़ती हर बार थोड़ी चढ़ेगी।
1: लेकिन 2024 का चुनाव आप भूल कैसे?
0: भाई काट की हांडी एक बार चढ़ती है वो 8,000 रुपया महिलाओं के खाते में जाएगा। राहुल जी बोल रहे हैं, अखिलेश जी मंच से बोल रहे हैं, फटाफट 66 रुपया जाएगा। गुमराह करके वोट हासिल किया कोई मतलब नहीं है।
1: लेकिन दूसरे स्टेट में वो प्रभाव नहीं हुआ था, दूसरे राज्यों में नहीं हुआ, बगल के बिहार में नहीं हुआ।
0: आप देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में इन लोगों ने केंद्रित किया कि हम महिलाओं के खाते में 8,000 रुपया डालेंगे और गुमराह करके वोट हासिल कर लिया। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये लाइन ऑर्डर पर चुनाव होगा। लाइन ऑर्डर पर बोले कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं थे, लाइन ऑर्डर पर बोले कि हम टेंडर लुटवाते नहीं थे, ये कहें कि हम खनिज आइटम बालू और मोरंग लुटवाते नहीं थे, ये कहें कि हर जिले में गुंडे नहीं थे, हर जिले में मिनी सीएम नहीं थे, कहें? हिम्मत है तो कहें।
1: नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है तो कृष्ण जन्मभूमि की बात क्यों हो रही है? ये अलग अलग मुद्दा है।
0: क्या
1: कृष्ण जन्मभूमि, वहां पर कार सेवा भी शुरू होगी?
0: अरे भाई लाइन ऑर्डर हम मेंटेन करेंगे, और जैसे अयोध्या धाम में प्रभु रामलला का मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, उज्जैन में भोले बाबा का कॉरिडोर बन गया, माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन गया, तो बिहारी जी क्या उन गलती की है, उनका भी बनना चाहिए, मुरली बजना चाहिए। अब ईश्वर जाने कब बजेगा, ये तो ईश्वर के हाथ में है, हम लोग केवल निमित्त मात्र है, करने वाला कोई दूसरा है।
1: तीन मिनट है तो दो तीन सवाल और आपसे, और ये सवाल होगा कि बिहार जो भाजपा का संगठन है वो बहुत मजबूत है और आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी हैं योगी आदित्यनाथ।
0: मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता तो इतनी है कि हर जिले में आप किसी भी मीटिंग में जाइए तो पब्लिक दीवानी रहती है कि हमारे नेता ने दिखाया है लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, दिखाया डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, इनके पास तनख्वाह देख पैसा ना रहा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने खजाना भर दिया है बगैर टैक्स बढ़ाए। ये सब लूट के घर ले जाते थे, मुख्यमंत्री जी ने खजाने में डाल दिया। देखो खनिज पदार्थ लूट रहे थे, एक्साइज लूट रहा था, और जो टैक्सेस थे लूट रहे थे, सब खजाने में डाल दिए और जनता के हित में खर्च कर दिए। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल नंबर एक पर,
1: ये सब इश्यूज हो गए इस बार
0: जी।
1: और जो संगठन में कंसर्न्स हैं, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन,
0: सब लोग साथ में, कोई दिक्कत नहीं, सब पूरा बड़ा परिवार है। हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता।
1: लेकिन सवाल ये भी होगा कि अब पहले ये जो चुनाव है ये बहुत अहम चुनाव है, आपका 10 साल का आपका रिपोर्ट कार्ड जनता मांगेगी, आपने सारा आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी।
0: हमने कोई आरोप नहीं लगाया, ये मैंने जनता की बात रखी है, आप जनता से पूछ लीजिए, ओपिनियन पोल ले लीजिए कि हमने गलत कहा है सही कहा। आप लगा दीजिए माइक।
1: नहीं, वो जनता रिपोर्ट कार्ड दिखा देगी आप।
0: हाँ मैं सहमत हूँ, मैं तो ये कहता हूँ मंच लगा दीजिए और समाजवादी पार्टी को कहिए कि अपने नेता को खड़ा करें, हम खड़े होते हैं, जो जनता जिसके साथ वही जीतेगा।
1: ब्रजेश पाठक जी देखिए पूरा रिस्पांस देखिए और आप समझ जाइएगा कि आप लोगों ने कोशिश
0: बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद आपका
1: जी। लेकिन सवाल ये भी है कि ये माना जाए कि आप चुनाव के लिए तैयार हैं या
0: पूरी तरह से तैयार हैं?
1: नहीं, और ये भी सवाल हो रहा है कि क्या चुनाव पहले भी हो सकता है?
0: अब ये हमें नहीं पता है, तो भारत निर्वाचन आयोग को पता होगा, ये तो आपको पता होगा, या तो क्यों ये भारत निर्वाचन आयोग का काम,
1: पहले हो गया चुनाव या बाद में हुआ,
0: हम आज तैयार हैं,
1: आज
0: हो जाए, आज वोट पर जाए, डायरेक्ट वोट पर जाए, हम तैयार हैं।
1: क्या कोई नया समीकरण होगा, कुछ कोई कोशिश होगी कि कोई नया कॉम्बिनेशन,
0: सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी हमारे नेता हैं, योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे प्रदेश में नंबर एक पर आएंगे, देखिएगा 17 वाला इतिहास दोहराएंगे।
1: और 2017 2022
0: कहते 17 वाला इतिहास दोहराएंगे, 2022 तो 250 255 थी, हम 17 वाले 325 वाले हैं,
1: लेकिन सपा भी बोल रही है 300 के ऊपर है।
0: तो दावा करने में कोई टैक्स है समाजवादी पार्टी?
1: तो आपकी भी बात ये भी माना जाए कि आप भी दावा कर
0: तो
1: रहे हैं।
0: हम तो भाई बाल सामने दिखा रहे ना, हम तो सबके सामने खड़े हैं, आप देख लो, निकलो, आप निकलो, आप भी सड़क पे निकलो, हम भी निकलते हैं, जिसके साथ जनसैलाब है वही नेता है, निकलो सड़क पर, फुर्सत हो तब ना। राहुल बाबा तो इटली गए, पूछो कहां गए।
1: यही सवाल मैंने समाजवादी पार्टी के नेता से पूछा था कि आप भाजपा आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव तो और है ही नहीं, वो रहेंगे तब राजनीति करेंगे, तो उनका कहना है कि वो एक्सपोजर के लिए गए हैं, नए आइडियाज मिलते हैं उनको बाहर जाने के बाद।
0: ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, महात्मा बुद्ध को तो हमारे यहाँ कुशीनगर में मिल गया था ज्ञान, इनको क्या राहुल गांधी जी की जगह मिलेगा? महात्मा बुद्ध से बड़ा कौन हमारे सामने विचारक हुआ है? चाणक्य से बड़ा कोई विचारक हुआ है? चाणक्य को ज्ञान कहां मिला था बताओ जरा। इन लोगों को भी बताओ क्या बात करते।
1: तो विदेश जाकर के क्या है विदेश जाने
0: हमने
1: में?
0: कब कहा विदेश गए आप कह रही हैं? हमने तो नहीं कहा, मैंने बिल्कुल एक लाइन नहीं बोला विदेश के बारे
1: में। आइडियाज मिल रहे हैं तो इसमें दिक्कत,
0: हमारा यह कहना है कि हम उत्तर प्रदेश की मिट्टी में जन्मे हैं, हम उत्तर प्रदेश के लिए काम करते हैं, और आइडियाज के लिए उत्तर प्रदेश में ढेर सारे स्थान, कुशीनगर में बड़ी शांति है, भगवान बुद्ध लेटे हुए हैं, आज भी ज्ञान की धारा पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध का संदेश दे रही है, प्रेम अहिंसा सबको साथ लेकर के चलना है, भगवान बुद्ध ने कहा था। हमारे यहां कौन, स्वामी महावीर, भगवान बुद्ध, सब कुछ तो अपने यहां है। कबीरदास जी, कबीरदास जी देखो अपने यहां थे ना, कबीरदास जी क्या पढ़े लिखे नहीं थे? कबीरदास जी ने कहा मस कागज छुओ नहीं कलम गही न हाथ, लेकिन कबीरदास जी का आज भी हम प्रासंगिक मानते हैं, रहीमदास जी को आज भी प्रासंगिक मानते हैं, इसीलिए रहीमदास जी ने लिखा ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, एक बार टूटे जुड़े जुड़े गांठ पड़े, रहीमदास जी ने लिखा।
1: आपने
0: ये तो सब यही है।
1: चलिए आपने प्रेम और शांति का
0: और तुलसीदास जी यही है, तुलसीदास जी ने तो, बाबा तुलसीदास ने क्या काम किया 16वीं शताब्दी में, कितना बवाल चल रहा था, बाबा ने लिखा बनारस के किनारे घाट पर बैठ करके, पूरी दुनिया में रामचरितमानस, चाहे मुंडन हो, पसनी हो, शादी हो, बिहाव हो, बाबा राखी रामचरितमानस पढ़ी जाएगी, पढ़ी जाएगी नहीं पढ़ी जाएगी? बाबा तुलसीदास जी अपने बांदा के थे, इनसे पूछो जरा, अपने तुलसीदास जी को याद करें जरा, लोहिया जी के बारे में कुछ सोचे कि रामायण मेला लगाते थे, सब लोग जाते थे, भगवान राम की चर्चा करते थे, मारे डर के भगवान राम की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि गड़बड़ हुआ मंदिर में, ये नहीं कह रहे हैं कि दर्शन करें कब जाएंगे, कह तो जाएं, टोपी उतारे जाएं दर्शन करें।
1: ब्रजेश पाठक जी,
0: हम न्योता देते हैं कि सारे लोग जो चिंता कर रहे हैं एक बार भगवान रामलला के दर्शन करें और जाकर के कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन करें और वहीं भगवान कृष्ण की चौखट पर कसम खाएं कि भगवान कृष्ण की ये जो जन्मभूमि कब्जा करके बनी है काम मुक्त करेबे, भले न होए कोटते होए, लेकिन एक बार कसम खाए क्या हुए हम कहीं टाइम।
1: चुनाव आने वाला है, बात कंटिन्यू करेंगे हम लोग आज तक के इस मंच पर आपके आने
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार,
1: शुक्रिया।
0: भारत माता की
2: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पंचायत आज तक में मौजूद थे, आपने सुना, लेकिन सुबह पंचायत आज तक का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। योगी आदित्यनाथ जब बोले तो खूब बोले, राम मंदिर से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव तक को उन्होंने घेरा, राम मंदिर पर अपनी बात रखी, स्पष्ट किया, कड़ी कार्रवाई की बात कही, उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास पर उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड भी पेश की, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी उनके निशाने पर थे। सुनिए,
3: जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई वे आज आस्था की बात करते हैं, जिन लोगों ने पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों में नमाज पढ़वा करके पूरे वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास किया, भाई अगर आप सेकुलर थे एक जगह आप नमाज पढ़वा रहे थे तो किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का भी पाठ करवा देते साथ साथ, दोनों एक साथ होता चलो मान्य हो जाता कि चलो भाई दोनों लोग सहमत हैं, लेकिन ये वन वे चल रहा था, वन वे। वे आज आस्था की बात कर रहे हैं, तो देश के उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर रहे थे कि साहब राम और कृष्ण हुए ही नहीं, वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो उस मुद्दे पर

0: ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको हम लोग निर्वाह करने का प्रयास करते हैं, और 2017 में भाजपा की सरकार बनी है, अभी सरकार है, आगे अभी 2047 तक रहने वाली है जब तक विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश नहीं बन जाएगा। तो जो पार्टी जिम्मेदारी देती है तो हमारे जैसे कार्यकर्ता उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं।
1: लेकिन जब हम बाहर से देखते हैं तो उसमें मुझे तो कुछ राजनीतिक कारण भी नजर आते हैं, और उसके उसमें सबसे बड़ा कारण यह है, एक घोषणा मैंने चुनाव के वक्त सुनी थी, और खास करके बीजेपी के नेता ये घोषणा कई बार देते हैं कि जो ओबीसी की बात करेगा वही प्रदेश पे राज करेगा, और ओबीसी उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ रहा है कल्याण सिंह जी के जमाने से। क्या ये एक सबसे बड़ा कारण है?
0: देखिए, सबका साथ सबका विकास ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है, तंत्र है, और उसी के हिसाब से हम कार्य करते हैं। या सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग 55% के लगभग है, और उसमें से सर्वाधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है, और जब बाबूजी कल्याण सिंह जी थे तब भी मिलता रहा है। अब इस समय भी जब से देश में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में हमको छप्पर फाड़ करके अगड़ा पिछड़ा दलित तीनों की जो त्रिवेणी है वो भाजपा के लिए बह रही है।
1: लेकिन ये बात भी तो सोचनी होगी ना, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी को ठाकुर और ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था, और अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखें तो 14-15% के ऊपर तो वो जा नहीं सकेंगे उनकी आबादी। ऐसे में बीजेपी को जो 45% तक वोट शेयर मिलता है उसमें ओबीसी समाज का ही सबसे बड़ा आधार रहा है, और उसी के आधार पर बीजेपी इतनी बड़ी संख्या में सत्ता पर आई।
0: सैल जी, पहले कहा जाता था कि भाजपा कुछ जातियों की पार्टी है, और कहा रहता ऐसा नहीं था। विपक्ष के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं होता था तो वो ऐसा कहते थे भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी है, बैनियों की पार्टी है, ठाकुरों की पार्टी है। लेकिन आज हम ये गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि देश के 140 करोड़ लोगों की अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो कार्य है उसको जमीन पर उतारा है। यह सच है कि पिछड़ा वर्ग जिसके साथ जाता है सरकार उसकी बनती है। पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है इसे सरकार हमारी है, और आगे भी पिछड़ा वर्ग हमारे साथ रहने वाला है इसे सरकार हमारी फिर से बनने वाली है।
1: ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जिसके साथ पिछड़ा वर्ग जाता है उसकी सरकार बनती है। इस थॉट को हम रखेंगे क्योंकि उस पर मुझे आखिर में आपसे एक सवाल पूछना है, आप भी इसे याद रखिएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा 2017 में जाना है, आज के चुनाव पर हम बात कर रहे हैं लेकिन 2017 में मुझे जाना है, क्योंकि 2017 जब मैं सोचता हूं तब मैं सोचता हूं केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में उस वक्त चुनाव लड़ा गया था। आप उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, आपको चुनाव से पहले खास अध्यक्ष के तौर पर भेजा गया था कि आप अध्यक्ष बन के यहां पर चुनाव लड़ाइएगा। उस वक्त प्रदेश में वो पार्टी सत्ता में थी जिन्होंने पिछड़ों की राजनीति हमेशा की है, मुस्लिम यादव समीकरण के नाम पर उन्होंने अपने चुनाव हमेशा लड़े और लंबे समय तक सत्ता में भी रहे। कैसे आपने उनको काटा, कैसे उस राजनीति को आपने चुनौती दी थी?
0: देखिए, समाजवादी पार्टी सपा जब सरकार में रहती है, जब वह कुछ जातियों की पार्टी बन जाती है, कुछ समुदायों की पार्टी बन जाती है, कुछ विशेष प्रकार के जो कुकृत्य करने वाले लोग होते हैं उनकी पार्टी बन जाती है। मतलब श्री अखिलेश यादव जी आजकल बहुत पीडीए की बात करते हैं, और मैं कहता हूं उनका पीडीए फर्जी है। जब मैं उनसे सवाल करता हूं कि श्री अखिलेश जी आप ये बताइए, 2012 से 2017 तक आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी की सरकार थी, तब आपको पिछड़े याद नहीं आए? जब आप सत्ता से बेदखल हो गए तब पिछड़ों की याद आई। अब पिछड़ा जाग चुका है, सपा को बहुत पीछे छोड़ चुका है, भाजपा के साथ बहुत आगे जा चुका है। अब पिछड़ा वर्ग भाजपा को छोड़ करके जाने वाला नहीं है, और सपा को वो अपनाने वाला नहीं।
1: एक आम तौर पर देखा गया था जब 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त में उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पर गया था, तो वहां पर लोगों से बातचीत करते समय ये समझ में आया कि यादव समुदाय के अलावा जो समुदाय है उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ में कर लिया है। अब इसका तोड़ 2024 में नजर आता है। जी, आप पहले बताइए उसके बाद।
0: देखिए, हम लोग जाति की बात तो नहीं करते, लेकिन यादवों में भी बड़ी संख्या में हम लोगों के समर्थक हैं, हम लोगों के कार्यकर्ता हैं, हमको वोट देते हैं। लेकिन यह सच है कि बहुसंख्यक मात्रा में अभी यदुवंशियों को गुमराह करके सपा अपने खाते में ले जाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन आज जैसे हम मध्य प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा क्रॉस करते हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी वहां हमारे मुख्यमंत्री हैं, सपा को भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई भाजपा यादव को मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन यादव को भी भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है, सैनी को भी मुख्यमंत्री बनाती है, कुशवाहा को भी मुख्यमंत्री बनाती है, ब्राह्मण को भी मुख्यमंत्री बनाती है, छत्री को भी मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन जाति के आधार पर नहीं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने के लक्ष्य के साथ यह काम करते हैं।
1: और यूपी में ठाकुरों को मुख्यमंत्री बना,
0: देखिए यूपी में तो अभी आप ये कह सकते हैं कि वो एक साधु हैं, उनको ठाकुर कहने का काम तो सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी करते रहते हैं, लेकिन अभी वो गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में, एक संत के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते बागडोर संभाली, और 9 वर्षों में उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है, और उत्तर प्रदेश 9 वर्षों में हम बहुत आगे लेकर के जाने में सफल हुए हैं, गुंडागर्दी से बाहर निकालने में सफल हुए हैं, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए सफल हुए हैं, निवेश को बड़ी बड़े पैमाने पर आकर्षित करने में सफल हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है, रोजगार के व्यापक अवसर मिले हैं, यानी सभी क्षेत्रों में अगर मैं कहूं कि यूपी ने विकास किया है तो कोई गलत नहीं होगा। सपा ने तो बर्बाद करके छोड़ा था प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।
1: आप ग्रामीण विकास मंत्री है, आप रूरल डेवलपमेंट मंत्री है, तो आपने जिन मुद्दों का जिक्र किया है उस पर तो मुझे सवाल पूछने हैं, लेकिन मैंने यादव मुस्लिम वाला सवाल क्यों पूछा था वो मैं आपको बताता हूं। 2024 का चुनाव आता है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपनी रणनीति बदल देती है। आंकड़े बड़े दिलचस्प है, 37 सांसद समाजवादी पार्टी के जीते हैं, उसमें से 25 सांसद ये गैर यादव कम्युनिटी से आते हैं, अलग अलग ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, और इसी के आधार पर समाजवादी पार्टी आज दावा कर रही है कि हम तो अब पीडीए बन गए हैं।
0: देखिए
1: चुनौती है आपके सामने,
0: देखिए हमारे सामने चुनौती नहीं है, इसलिए चुनौती नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मैदान में आए थे, उन्होंने दुष्प्रचार का सहारा लिया, झूठ बोला था जनता से कि भाजपा 400 सीटें जीतेगी तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, फिर चुनाव ही नहीं होंगे, इस प्रकार की बातें करने लगे थे। इस दुष्प्रचार के प्रभाव में कुछ लोग आ गए, इसके कारण से सपा कांग्रेस गठबंधन को वोट दे दिए। हमारी लड़ाई मतलब केवल 24 की नहीं है, 24 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, कमल खिला, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, कमल खिला, दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ, कमल खिला, बिहार का चुनाव हुआ, कमल खिला, पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, कमल खिला, आसाम में भी हमारी तीसरी बार सरकार बनी, कमल खिला, मतलब उसके बाद कमल खिल रहा है। इनका दुष्प्रचार अब काम नहीं आ रहा है, ये जो गुमराह करके वोट 2024 में लेकर के कुछ सांसद जरूर ये हमसे अधिक जिताने में कामयाब हो गए, लेकिन अब समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है, उसकी नैया डूबने वाली है, सपा का सूर्य अस्त होने वाला है, और 2027 के विधानसभा चुनाव में इनके अहंकार को उत्तर प्रदेश की जनता चूर चूर कर देगी।
1: लेकिन आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, इसके लिए मैं उसी को लेकर पूछ लेता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में जब विधानसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने 300 ओबीसी सम्मेलन किए महाराष्ट्र के भीतर, राजो आप भी आए थे महाराष्ट्र में, अलग
0: आया था
1: आप भी आए थे उसमें, 300 ओबीसी सम्मेलन किए अलग अलग समुदायों के साथ में, पीडीए का महत्व वहां पर समझ में आ गया था भारतीय जनता पार्टी को, और वही बात पर 2024 में समाजवादी पार्टी ने चुनाव,
0: हम भी उत्तर
1: इस बार की आपकी स्ट्रेटेजी
0: उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन करते हैं, अनुसूचित वर्ग का सम्मेलन करते हैं, महिलाओं का सम्मेलन करते हैं, व्यापारियों का सम्मेलन करते हैं, जब भी चुनाव होते हैं तब भी करते हैं, जब चुनाव नहीं होता तब भी करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सीधे जनता से जुड़ी हुई है, हमारा संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पर कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के पास बूथ स्तर पर गुंडे अपराधी हैं, तो गुंडे अपराधी चुनाव में मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अब चुनाव निष्पक्ष होने लगे हैं, इससे समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर है।
1: आपने सम्मेलन तो किया, अभी भी आप उस पर कायम है, लेकिन आरोप यह लगता है कि जब जब भी सजा देने का वक्त होता है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी यहां पर आए थे और उन्होंने कहा कि हमने अपराध खत्म करने के लिए एनकाउंटर्स का रास्ता अपनाया, और जो उनको सपोर्ट करते हैं उसके बारे में जो भी उन्होंने कहा, और वो कई बार कहते रहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि जो 207 एनकाउंटर 2024 तक के जो आंकड़े हैं, उसके बाद के आंकड़े अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन 207 जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें से 60% एनकाउंटर मुस्लिम या पीडीए ग्रुप से आपको मिलेंगे। अगर आप किसी विशेष जाति के नहीं है तो हो सकता है कि आपका एनकाउंटर, कुल मिलाकर कहने का लब्बो लुबाब उनका ये था उसमें।
0: मैं इतना ही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ये बतावे कि अगर कोई मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, अगर किसी अपराधी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होती है तो दर्द समाजवादी पार्टी को ही क्यों होता है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को ही क्यों होता है? यह जवाब जनता सपा से पूछती है, सपा के नेताओं से पूछती है। कार्रवाई हो रही है, जनता खुश है, जनता अपने को सुरक्षित मान रही है, और जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बिना भेदभाव के होगी। सपा का चश्मा मुस्लिम तुष्टिकरण का चश्मा रहता है, इसलिए उनको इस प्रकार की कार्रवाई में मुसलमान दिखाई देते हैं, बाकी लोग नहीं दिखते।
1: लेकिन ये भी तो दिखाई देता है ना, जैसे अभी मई महीने में यहाँ पर कैबिनेट एक्सपांशन हुआ उत्तर प्रदेश के भीतर, मैं उसके नंबर्स देख रहा था, 6 मिनिस्टर्स नए आ गए, 6 में से 3 ओबीसी समुदाय के आते हैं और 2 दलित आते हैं। कहीं ना कहीं आपने भी नोट कर लिया है, आपकी पॉलिटिकल माइंड में नोट कर लिया है कि देखिए ये वर्क हो रहा है, समाजवादी पार्टी को टक्कर देनी है तो हमें ये सब चीजें करनी होगी, थोड़ा सा लेट तो नहीं हो गया इसके लिए?
0: ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ सम्मान और स्थान देने का काम लगातार किया गया है। देश के इस समय महामहिम राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो आदिवासी समुदाय से आती हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनी और वो महामहिम राष्ट्रपति बनी। इसके पहले श्री रामनाथ कोविंद जी उत्तर प्रदेश के ही थे, वो दलित समुदाय से आते थे, वह भी देश के राष्ट्रपति के रूप में। अति पिछड़े वर्ग से आने वाले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और 35 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान उनको देने का काम किया है। तो हमारे यहाँ चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, चाहे अगड़े वर्ग का हो, देश के सरकार को देखेंगे तो वहाँ पर भी, प्रदेश की सरकार या प्रदेशों की सरकार जो भाजपा की है वहाँ देखेंगे तो वहाँ भी यही चित्र दिखाई देगा।
1: दबे सुरों में अगर आप लखनऊ में कहीं घूमोगे पॉलिटिकल गलियारों में, तो दबे सुरों में कहीं ना कहीं ये चर्चा तो आपके भी कान पर आती होगी कभी कभी कि ठाकुर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है लखनऊ के भीतर, ये चर्चा क्यों सुनाई देती है? मतलब अभी लोग तो ओपनली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चा क्यों सुनाई देती है?
0: ये समाजवादी पार्टी सोच रही है कि ऐसा हम कहेंगे तो उसको उसकी साइकिल पंचर होने से या भ्रष्ट होने से या सफाई जाने से बच जाएगी, लेकिन बचने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारी पार्टी में सभी जाति के विधायक सांसद भी हैं, सभी जाति समुदाय के हमारे माननीय मंत्रीगण भी हैं, और सबको समान अवसर भी दिया जाता है। इस प्रकार का एक दुष्प्रचार है,
1: उसका तो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ब्राह्मण जो विधायक है उनके सम्मेलन लेने पड़ रहे हैं उसके उसकी वजह से, ओबीसी समुदाय के जो

0: होती है तो उनको एक सहारा मिल जाता है उसमें। उनको पता है कि अगर ये पकड़ेंगे तो हो सकता है कि जिस राम के नाम पर पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के भीतर खड़ी हुई, उस राजनीति को चुनौती देने का एक बहुत अच्छा मौका उनके हाथ में आ गया।
1: ये भगवान श्री राम और श्री राम जन्मभूमि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए आस्था का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। अगर हम गिनावे तो हम तो 1992 में जब 6 दिसंबर को ढांचा गिरा तब हमको ऐसा नहीं कि 300 सीटें मिल गई थी, और न जब हम रामलला का भव्य मंदिर बना दिए तो ऐसा भी नहीं कि हमको 400 सांसद मिल गए थे। वो आस्था का हमारे सवाल है और रामलला का भव्य मंदिर बन गया, इस पर हमें गर्व है। लेकिन विपक्ष जो रामद्रोही है, जो राम मंदिर निर्माण का विरोधी है, जिसने कार सेवकों निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भून डाला, उसको श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
0: लेकिन आपकी सरकार होते हुए जब यह घटना होती है तो उसका झटका तो आपको भी लगेगा।
1: सरकार की व्यवस्था नहीं होती, अगर किसी ने चोरी किया तो उसमें जो कानूनी व्यवस्था होती है, FIR हो गई, SIT की जांच हो गई, और फिर हनुमान जी की गदा है, जो चोरी करेगा हनुमान जी उस अपने गदा से उसको कुचल करके रख देंगे, आप एकदम ध्यान में रखिए। लेकिन कोई इस प्रकार की गलती हुई तो ये मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा विहीन है विपक्ष, तब वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के मुद्दे को जनता के बीच में ले जाना चाहता है। लेकिन एक वोट, मैं बता रहा हूं, 1,000, 2,000 या 1,00,000, 2,00,000 वोट तो बहुत बड़ी बात है, एक भी वोट इसके कारण से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी या जो मंदिर में यह एक घटनाक्रम घटित हुआ है इसको हो हल्ला कर रहे हैं, इसके कारण से उनका एक भी वोट बढ़ने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का एक भी वोट घटने वाला नहीं है।
0: आपको नहीं लगता लेकिन ये चुनावी मुद्दा बनेगा? आपको नहीं लगता कि ये चुनावी मुद्दा बनेगा?
1: नहीं नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है।
0: अगर 2024 के चुनाव के पहले,
1: मैं तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का कार्यकर्ता रहा हूँ,
0: इसीलिए तो सवाल है।
1: और इसलिए मैं जानता हूँ कि ये चोरी किया है किसी कर्मचारी ने, वो चोरी की घटना हो गई, हनुमान जी की गदा भी है, कानून के माध्यम से उनके खिलाफ जो कार्रवाई होना चाहिए वो भी हो रही है।
0: उसे एक अलग रंग देने की भी कोशिश हो रही है कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन हो रहा था तब सड़क पर आंदोलन करने में थे केशव प्रसाद मौर्य, विनय कटियार, उमा भारती, लेकिन जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो वो ट्रस्ट पर बैठने वाले लोग कोई और ही थे, ये बात को लेकर भी सवाल उठा रहे जो आज चोरी में पकड़े गए और उसको लेकर लोग सवाल।
1: ये इशू है ही नहीं, हमको इस बात का गर्व है कि 500 साल से जो लड़ाई चल रही थी, जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो रामलला का भव्य मंदिर बन गया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। जब देश आजाद हुआ तो 370 लगा करके भारत माता को हथकड़ी लगा दिया गया, जब भाजपा को बहुमत मिला तो 370 हट गई, ये हमारे लिए गर्व की बात है। जब कांग्रेस की सरकार थी गरीबी हटाओ का नारा देती थी लेकिन गरीबों का हक लूट लेती थी, बताती थी संसद में खड़े होकर के कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, और हम छाती ठोक के कहते हैं दिल्ली या लखनऊ से 1 रुपये भेजे चाहे 1,00,000 रुपये भेजे, पूरा का पूरा पैसा जिसके पास भेजते हैं उसके पास पहुंचता है। तो भाजपा में, कांग्रेस में, सपा में जमीन और आसमान का अंतर
0: नहीं, लेकिन लोग भी तो कहते हैं ना कि पारदर्शिता होनी चाहिए ये इस पूरे मामले में, और आप सत्ता में, आप समझते हैं कि पारदर्शिता का मतलब क्या है, उसी के आधार पर जनता अवसर भी देती है लोगों को। अब देखिए, आज हम उम्मीद करके बैठे हुए थे कि आज जब पंचायत हो रहा है उसी वक्त केशव प्रसाद मौर्य जी आएंगे और कहेंगे कि ये देखिए SIT का पूरा रिपोर्ट जो हमने वादा किया था, 15 जुलाई को हम पूरा रिपोर्ट लेकर आपके सामने आए। अभी अभी मुझे पता चला है कि एक बार फिर SIT को मोहलत बढ़ा के दी गई है, कहा गया है कि आप और भी कुछ समय दिया गया।
1: देखिए जांच,
0: ये तो
1: जांच में तो कई बार बड़े बड़े जांच आयोग बनते हैं और अगर जांच में कुछ अधूरापन रह जाता है तो उसको समय दिया जाता है।
0: डर ये लग रहा है कि छोटे लोगों को फंसाया जाएगा, नोट गिनने वाले, ड्राइवर, इन लोगों को फंसाया
1: जाएगा। पूरी पारदर्शिता रहेगी जांच में, पूरी पारदर्शिता रहेगी, जो दोषी होगा कानून के हिसाब से उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जो मैं आस्थावान हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, भगवान श्री रामलला के मंदिर के चढ़ावे को जिसने चोरी किया है, हनुमान जी की गदा का प्रहार भी उस पर होगा।
0: कहां चूक हो गई? आप अगर दूर से देखते हैं उसे तो कहां चूक हो गई? ये ट्रस्ट
1: जांच का विषय, उसमें मैं कैसे जवाब दे सकता?
0: आप इस आंदोलन में शामिल थे, आपको क्या लगता है कहां चूक हो गई?
1: चूक जो हुई है,
0: जब आरोप हो रहे थे,
1: चूक जो हुई है उसी के लिए SIT है, उसी के लिए FIR है, उसी के लिए चोरी करने वाले
0: जो जांच
1: पकड़े गए हैं और जो पकड़े गए हैं उनसे अभी छानबीन चल रही है, जब तक निष्कर्ष नहीं निकल आता है, मैं सरकार का उप मुख्यमंत्री हूं, मैं उस पर कैसे कोई बयान दूं?
0: मैं आपको बता रहा हूं मैंने सवाल ये आपसे क्यों पूछा, क्योंकि जो जांच कर रही है वो पुलिस तो आप ही की है, राज्य सरकार की पुलिस
1: हमारी होने का मतलब
0: जो एसआईटी गठित की गई है वो भी यूपी सरकार की तरफ से गठित की गई।
1: आप सपा और कांग्रेस जैसी

0: कारों को मत समझिए, भाजपा की सरकार में पुलिस और प्रशासन या एसआईटी या आयोग जो सच होगा वही जांच करके सामने लाने का काम करेगी। ये भ्रम पूरी तरह से लोगों का हट जाना चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था का केंद्र है और वहां जो चोरी हुई है उसको मैंने कहा आस्था के अनुसार हनुमान जी वहां अयोध्या धाम के राजा हैं, बैठे हुए हैं, उनकी गदा चलेगी। कानून के हिसाब से कार्रवाई एसआईटी अलग जांच कर रही, पुलिस अलग जांच कर रही है, जो दोषी पाए गए वो पकड़े गए हैं, पूरे सब कुछ खंगाला जा रहा है। इसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं है, इसमें केवल यह है कि जिसने चोरी की है उनको पकड़ा जाए।
1: ये क्रिमिनल केस की तरह आप उसको नजर कर रहे हैं या आस्था को ठेस पहुंचने की तरह?
0: दोनों बातें बताया, क्रिमिनल केस जो है उसकी कार्रवाई हो रही है, आस्था के आधार पर मैंने बताया जिसने रामलला के खजाने से चोरी की है उसको हनुमान जी की गदा का प्रहार सहना पड़ेगा।
1: आपको इस बात का कोई डर नहीं है कि, चलिए आपने कहा हनुमान जी की गदा का प्रहार सहन करना पड़ेगा, लेकिन इस चोरी के वजह से बीजेपी को राजनीतिक गदा का प्रहार सहन करना पड़ेगा, लोगों के गुस्से का, ये आपको डर नहीं लगता? आपको नहीं
0: ये
1: लगता?
0: मुझे 0.1% भी डर नहीं,
1: बिल्कुल नहीं लगता।
0: मैं जानता हूँ राम भक्त इस बात को जानता है, राष्ट्रभक्त इस बात को जानता है, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाने वाले कौन है और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले कौन है, राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने वाले कौन है और बाधा को हटाने वाले कौन है। ये चोरी एक घटना है जिसकी जांच हो रही, जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत न खराब होने वाली है और न विरोधियों की सेहत अच्छी होने वाली।
1: आपकी सरकार होते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आज ये धमकी दे रही है कि 9 अगस्त से हम कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा शुरू करेंगे, आप सरकार के नाते उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कार सेवा तब शुरू की जाती
0: है। हम तो चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ के मंदिर के स्थान पे जो ज्ञानव्यापी मस्जिद के नाम पे ढांचा खड़ा वो हट जाए,
1: ठीक,
0: जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ईदगाह बनी है वो हट जाए, वहाँ भगवान कान्हा का मंदिर बन जाए, यहाँ बाबा विश्वनाथ का मंदिर बन जाए। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, हम लोग न्यायालय से जब न्याय आएगा तो चूंकि सच के पक्ष में हिंदू समाज खड़ा है, कृष्ण भक्त शिव भक्त खड़े हैं, इसलिए जीत हिंदुओं की होगी, शिव भक्तों की होगी, कृष्ण भक्तों की होगी, ये मेरा विश्वास है और हमें न्यायालय के निर्णय का इंतजार है।
1: कार सेवा नहीं होनी चाहिए, कार सेवा वहां पर नहीं होनी चाहिए।
0: हम इस पर कुछ बोलना इसलिए नहीं चाहते, पूज्य साधु संत हैं, उन्होंने क्या निर्णय किया है वो तो अखाड़ा परिषद से आप बात करिए, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जो दोनों स्थान है, जैसे अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया, वैसे काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनना चाहिए, लेकिन माननीय न्यायालय से जल्दी जल्दी निर्णय आ जाए, ये हम लोगों को इंतजार।
1: मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कार सेवा बनेगी तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल भी खड़ा होगा, एक सरकार के नाते आपको लॉ एंड ऑर्डर से भी निपटना होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या, क्योंकि आपको पता ही है इतिहास पूरा, 6 दिसंबर को क्या हुआ था, कार सेवा का ही परिणाम था कि बाबरी मस्जिद ढा दी गई।
0: आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, जहां भाजपा होगी वहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, यहाँ भाजपा की सरकार है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार है, कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम नहीं करेगा, और 9 वर्षों की सरकार में आपने देखा है एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी कर्फ्यू नहीं लगा, और सुशासन की झलक पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है।
1: आपका रिपोर्ट कार्ड मैं देखने की कोशिश कर रहा था और उस पर कुछ मैंने चीजें देखी है, उसमें से 3 चीजें उभर कर मेरे सामने आई। सबसे पहले तो पीएम आवास योजना, जो खास करके प्रधानमंत्री भी कई रैलीज में कहते हैं, जो आंकड़े मेरे पास है उसके मुताबिक 55 लाख घर उत्तर प्रदेश के भीतर पीएम आवास के तहत बने और भारत में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश राज्य है, बाकी राज्यों की तुलना करें तो बीजेपी के प्रशासित। जल जीवन मिशन में 1.8 करोड़ कनेक्शंस आपकी सरकार के समय पे हुए, वहां पर भी बाकी राज्यों के मुकाबले आप आगे नजर आते हैं। और आखिर में मनरेगा के, अब तो मनरेगा की स्कीम अलग नाम से चलेगी,
0: भारत जी राम जी हो गया,
1: 6 करोड़ आपने जॉब कार्ड उस पर बनाए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, लेकिन अभी भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं या शिक्षा जैसी सुविधाएं, ड्रॉप आउट रेट है 9वीं और 10वीं कक्षा में अभी भी 15% से ऊपर है। ये चीजें आप, क्योंकि हाईवे तो बन रहे हैं लेकिन हाईवे के नीचे या आसपास के गांवों में जो चीजें हो रही है उसको लेकर आप किस तरीके से टैकल करेंगे?
0: देखिए, हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में बहुत सजग है और अधिकांश योजनाओं में जो भारत सरकार के द्वारा संचालित होती हैं उसमें हम नंबर 1 पर हैं। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, यह तीनों क्षेत्रों में हमारी सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है। इसलिए मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जैसे पीएम आवास योजना में हम नंबर 1 में क्यों हैं, क्योंकि हमने ढंग से नंबर 1 में काम करके दिखाने का काम किया है। हम जो अब विकसित भारत जी राम जी के नाम से अब योजना चालू हो गई है 1 जुलाई से, उसमें भी सबसे अधिक संख्या में महिलाओं को भी रोजगार देने में हमने कामयाबी की है और श्रमिक भाई भाइयों को भी काम देने में कामयाबी हासिल की है, उसमें भी हम देश में नंबर एक पर हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज देने वाला उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज भी बना के दिया, सबसे अधिक पीएससी और सीएससी बनाने का काम भी किया। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार के बड़े बड़े कदम उठाए गए और उसके कारण से आज प्रदेश के अंदर विशेष तौर से जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, वहाँ पहले ड्रॉप आउट बहुत बड़े पैमाने पर होता था, आज बहुत कम मात्रा में रह गया है। लेकिन इसको भी हम लोग सुधार करके ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई बच्चा अगर स्कूल जाता है तो वो अपनी कॉलेज तक की शिक्षा पूरी करके ही मतलब आगे की यात्रा करे, ये हम लोगों का प्रयास है।
1: नहीं, लेकिन फिर भी शिक्षकों की कमी अभी भी है। डॉक्टर्स अगर हम देखें तो 1500 के पीछे एक डॉक्टर यहाँ पर नजर आता है, जो आमतौर पर मानक अलग है, हजार व्यक्तियों के पीछे एक डॉक्टर की जरूरत है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आपको नहीं लगता कि जब आप अर्थव्यवस्था में अगर आगे बढ़ रहे हैं, आज योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे थे कि हम नंबर 3 पर पहुंच गए हैं, जो एक बीमारू राज्य था वहां से तो हम बाहर निकल कर आ गए, बिहार से स्थिति बेहतर है लेकिन अभी भी गाँव जाएंगे तो स्थिति,
0: तो ये विकसित भारत 2047 20 वर्ष बाद बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश 20 वर्ष बाद बनेगा, विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश में कोई समस्या शेष न रह जाए, इसलिए 2047 तक देश और प्रदेश में, मैं कहता हूँ देश में कांग्रेस नहीं आने वाली है, प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं आने वाली, भाजपा वर्तमान में, भाजपा भविष्य में रहेगी, जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। इसलिए जो काम अभी बकाया है, इसीलिए हम कहा करते हैं अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है।
1: तो 20 साल इंतजार करना होगा हमें पूरी
0: नहीं, 20 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर हम 55 लाख से ज्यादा 60 लाख लगभग हम आवास बना चुके, आपके पास आंकड़ा पुराना है, 60 लाख प्रधानमंत्री आवास गांव और शहर मिला के हम उत्तर प्रदेश में बना चुके हैं, तो ये 60 लाख आवास बनाने का मतलब है कि 60 लाख लोग तो जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, कच्चे घर में रहते थे, उनको पक्का घर मिल गया ना, जिनके पास शौचालय नहीं थे उनको शौचालय मिल गया, जिनके पास गैस का कनेक्शन नहीं था कनेक्शन गैस का मिल गया, बिजली का कनेक्शन मिल गया, बीमार थे इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मिल गया, बहुत बड़ी मात्रा में मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में भी हम लोग बहुत लोगों को कवरेज दे रहे हैं, जो किसी में कवर नहीं होते उनको मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से भी इलाज के लिए पैसा देने का काम, अगर कोई रिकमेंडेशन आता है तो उनको पैसा दिया जाता है।
1: लेकिन इसके बावजूद अभी भी पलायन के मामले में अगर हम देखें तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड से पलायन अभी तक रोक नहीं पाए।
0: अभी आपको अभी भी लेटेस्ट आंकड़ा जुटाइए,
1: अलग हो गया,
0: अब रोजगार खोजने के लिए देश भर से लोग पूर्वांचल में भी आते हैं, बुंदेलखंड में भी आते हैं,
1: ऐसा तो नहीं कि
0: यहाँ से पलायन करने का काम अब रुक गया,
1: ऐसा तो नहीं कि सिर्फ नोएडा तक सीमित हो जाएंगे, जो रोजगार तलाशने में जो लोग आ रहे हैं वो नोएडा तक सीमित हो गए, ऐसा तो नहीं हो रहा है।
0: आप जाइए ना, आप बुंदेलखंड जाइए, जिसको सबसे पिछड़ा माना जाता था, जो प्यासा रहता था, आज बुंदेलखंड चमक गया है, बुंदेलखंड के लोगों की किस्मत चमक गई है और बुंदेलखंड में दुनिया आ रही है, मतलब देश नहीं आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं। पूर्वांचल में भी यही स्थिति है, हम आने वाले समय में पूर्वांचल को भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरह, बुंदेलखंड को भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरह चमका देंगे, रोजगार के अवसर खड़े कर देंगे और किसी को पलायन के लिए मजबूर ना होना पड़े, जाने के लिए कोई और अच्छे काम के लिए देश में दुनिया में जा सकता है, लेकिन मजबूरी के कारण किसी को पूर्वांचल से पलायन करना पड़े या किसी को बुंदेलखंड से पलायन करना पड़े, अब यह स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली है। देश में माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन की सरकार की यही उपलब्धि है, इस पर हमें गर्व है।
1: एक और एक ट्रेंड पूरे देश में चल पड़ा है, अलग अलग राज्यों के विधानसभा के चुनाव हमने देखे कि चुनाव से पहले या 6 महीने पहले या 7 महीने पहले या 8 महीने पहले एक स्कीम की घोषणा की जाती है, जिसे महाराष्ट्र में लाड़की बहन कहा जाता है, मध्य प्रदेश में लाडली बहना कहा जाता है, तो क्या उत्तर प्रदेश के भीतर भी कोई ऐसी स्कीम की हम योजना पकड़ कर चले कि इसके बारे में कुछ सोचा जा रहा है?
0: देखिए, विपक्ष जब चुनाव में पराजय के द्वार पर खड़ा हो जाता है और घबराहट में इस प्रकार के आरोप लगाता है, अगर हमारी सरकार कोई भी योजना लेकर के आती है, अगर चुनाव आचार संहिता नहीं लागू है, तो हमारी सरकार के द्वारा अगर महिला सशक्तिकरण की कोई योजना लाई जाती है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोई योजना लाई जाती है, गाँव का सर्वांगीण विकास करने के लिए कोई योजना लाई जाती है, शहरों में भी जहाँ कुछ बकाया है उसको पूरा करने की योजना लाई जाती है, रेलवे, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग बनाया जाता है। तो इससे विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि उनको ये मालूम है कि अब चुनाव के मैदान में वो पराजित होने वाले हैं, इसलिए चुनाव से पहले स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। हम महिला सशक्तिकरण करेंगे, कर रहे हैं, इस पर हमें गर्व है।
1: कोई योजना के कोई मन में है योजना?
0: अनेक योजनाएं हैं और वो योजनाएं चल भी रही हैं, उनको और बल देने का काम हो रहा है, आगे भी उन योजनाओं को बढ़ाएंगे।
1: कोई नई योजना की? कोई
0: नई योजना भी लाएंगे।
1: नई योजना लाएंगे?
0: लाएंगे।
1: महिलाओं को लेकर नई योजना लाएंगे?
0: महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना हम लोग लेकर के आने वाले हैं।
1: नई योजना लाएंगे?
0: लाएंगे। और गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं, वो 3 करोड़ परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम सशक्त करेंगे। और इससे अगर श्री अखिलेश यादव के पेट में दर्द होता है तो हम कहेंगे दवा अगर वो चाहें तो पीजीआई से ले ले, चाहे केजीएमयू से ले ले, और चाहे वो सैफाई के पीजीआई से ले ले।
1: केशव प्रसाद जी, इंटरव्यू के शुरुआत में मैंने कहा था कि एक बात आप याद रखिएगा, अंत में मैं आपसे एक बार फिर उसको रिविजिट करेंगे हम लोग, क्योंकि आपने कहा था कि ओबीसी समाज का सपोर्ट मिलने के वजह से ही सत्ता में हम यहां पर आ पाते हैं, और जो नारा शुरुआत में दिया गया था कि जो ओबीसी की बात करेगा वही प्रदेश पे राज करेगा, ओबीसी कब राज करेगा?
0: देखिए, ओबीसी ही राज कर रहा है। केशव प्रसाद अगर पिछड़े वर्ग का है और उत्तर प्रदेश का, लगातार आप ही अभी सवाल करते हुए बता रहे हैं कि मैं 9 वर्ष से लगातार उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम हूं, मेरे मंत्री मतलब योगी जी के मंत्री परिषद में पिछड़े वर्ग के इतने मंत्री हैं, अनुसूचित वर्ग के इतने मंत्री हैं कि वह देख करके ही अखिलेश यादव जी का हाजमा खराब रहता है। इसलिए पिछड़ा वर्ग, मैं कहा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी अगड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी है, और यह त्रिवेणी भाजपा के साथ है और भाजपा उनके लिए ईमानदारी से काम कर रही है। इसलिए इस त्रिवेणी के सहयोग से हम 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे, यह हमारा विश्वास है। और समाजवादी पार्टी को 2017 से 47 सीट 2017 में जीते थे सत्ता में रहते हुए, इनको 17 से भी पीछे धकेलने का काम करेंगे।
1: लेकिन वो आखिरी कुर्सी बाकी है ना, अभी कल्याण सिंह जी से शुरू हुआ था वो सिलसिला, आपको नहीं लगता कि
0: भाजपा में जब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनको देखने के बाद अगर देश के पिछड़े वर्ग को संतोष नहीं होगा तो किससे संतोष होगा? केशव प्रसाद को भी, अभी पिछड़े वर्ग के बगल में मुख्यमंत्री है ना मोहन यादव जी, सम्राट चौधरी जी बिहार में मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, जिधर नजर दौड़ाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए आदिवासी समाज से आने वाले,
1: उड़ीसा
0: में चले जाइए आदिवासी समाज से आने वाले, अगर ऐसे गरीब से गरीब बैकग्राउंड के लोग जो कभी सत्ता में आने की, विधायक बनने की बात नहीं सोच सकते थे, वो आज मुख्यमंत्री हैं, देश की राष्ट्रपति हैं, तो हर क्षेत्र में जहां मौका मिलता है वहां अवसर मिलता है। इंतजार करने का साहस राजनीति में होना चाहिए, जो इंतजार करेगा, मेहनत करेगा, पार्टी के लिए जिम्मेदारी से काम करेगा, उसका भविष्य उज्जवल रहेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं।
1: वो सब्र का मीठा फल आपको मिले, इस उम्मीद के साथ इस चर्चा को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत
0: साहिल जी, बहुत धन्यवाद है, लेकिन मैं तो 9 वर्ष से आप ही बता रहे हैं उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हूँ, और श्री अखिलेश यादव जी से पूछिए उन्होंने क्या किसी मौर्य, किसी पटेल, किसी पाल, किसी अन्य हमारे जो पिछड़े वर्ग के भाई बहन है उनको क्या उप मुख्यमंत्री बनाया था? क्या नहीं बनाया था, उनको कुचलने का काम किया था, दमन करने का काम किया था। आज भी लाखों मामले होंगे उनके जहां राजनीतिक प्रभाव हैं, वहां लाखों लोग ऐसे होंगे जो सपा सरकार के समय पीड़ित किए गए, उनकी जमीन, मकान, दुकान कब्जा किए गए, उनकी जांच करा रहे, एक एक करके कार्रवाई कर रहे, सबको न्याय दिला रहे। इसीलिए सपा रसातल में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार आकाश की ऊंचाइयों की ओर जा रही है। इसीलिए देश के अधिकांश हिस्से पर आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सत्ता में है, और जहां नहीं है वहां भी कमल खिलेगा। तीसरी बार तो भाजपा की सरकार बनती ही बनती है, इसे अखिलेश यादव जी भी जानते हैं। तीसरी बार तो उनकी क्षमता नहीं है कि भाजपा को सरकार बनाने से रोक सके, लेकिन मैं कहता हूं 2047 तक आने वाले चुनावों में भी सपा का भविष्य अंधकार में है, सपा डूबती हुई नाव है, जो उसमें बैठे हैं वो अपने आप को बचा सके बचा ले।
1: कोई टूट फूट की आशंका तो नहीं है डूबने के साथ?
0: ये तोड़ फोड़ करने की हमें जरूरत नहीं है, भाजपा के साथ जनता है, भाजपा के साथ भाजपा में का भविष्य है और भाजपा की तीसरी बार उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनने जा रही है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
2: No.
3: Oh, no.
4: Welcome to Get Real.
2: I got something to say.
4: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
3: Oh, my God.
2: It's got to be deliciously desperate.
3: Why do these girls forgive him?
5: Well, she has a soft spot for troubled men.
2: Boo bloody who?
4: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
3: Love runs deeper than we know.
4: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
6: We are over, Jimmy.
7: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
3: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
2: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
3: अर्ज किया है,
2: पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
4: वाँ वाँ वाँ वाँ।
2: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
5: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
6: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
12: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
11: छक्का?
12: सब कैशलेस हो गया
11: है।
12: ओला ला भाई मेरा बैट।
11: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
12: चार्ज हुआ यार।
11: ओला बैट किसका है?
13: टाटा AIG है तो भरोसा है।
14: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
15: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
16: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
17: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
18: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
19: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
20: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
2: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
3: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
2: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
3: अर्ज किया है,
2: पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
4: वाँ वाँ वाँ वाँ।
2: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
5: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
6: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
21: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
22: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
23: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
21: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
24: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
21: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
24: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इन एसोसिएशन विद
25: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
24: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
26: Get
0: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
1: We are over, Jimmy.
7: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PPF sambhal lega. Aap apna dekh lo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
13: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
12: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
13: अर्ज किया है
12: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
14: वाँ वाँ वाँ वाँ।
12: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
15: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
16: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
17: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच, हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
18: YouTube पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत, आज तक वर्टिकल।

योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनावी मुकाबले के लिए तैयार है। उद्घाटन, शिलान्यास और यूपी के लगभग हर जिले को नापना इस तैयारी का हिस्सा है। 2017 से पहले और अब का फर्क गिनाना योगी आदित्यनाथ का चुनावी अंदाज है। योगी की इस रणनीति के बीच बीजेपी अच्छे से जानती है कि चुनाव के लिए संगठन और समीकरण बेहद अहम है। यूपी बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए 8 प्रमुख संगठनात्मक कार्यक्रमों का रोड मैप तैयार किया है। 19 से 22 जुलाई तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बूथों की मैपिंग कर संगठन को और मजबूत किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में बूथों की संख्या 80 से अधिक होगी, वहां नए मंडलों का गठन किया जाएगा। SIR के बाद बदले मतदाता आंकड़ों के आधार पर कई जगह बूथों और मंडलों का पुनर्गठन होगा। यूपी में चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन की रणनीति में जुलाई के पहले हफ्ते से सरगर्मी आई है, जब पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे थे। यूपी में 12 जुलाई को वृक्षारोपण कार्यक्रम का पहला चरण पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को नए सिरे से बूथ स्तर तक पहुंचाने की रणनीति बनाई जा रही है। चुनाव से पहले सभी जिलों में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। जून में बीजेपी ने यूपी की टीम भी नए सिरे से बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम में 19 उपाध्यक्ष हैं, जिनमें 8 OBC हैं। यूपी में संगठन को टॉप गियर में डालने का बीजेपी का ये फैसला अखिलेश यादव के दाव के बीच आया है। अखिलेश यादव जहां अपने PDA के समीकरण पर मजबूती से खड़े हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन जैसे आयोजन कर और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी को घेर कर, साथ ही सनातन की बात कर बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की तैयारियों के बीच असल सवाल SIR के बाद बनी परिस्थितियों का है। उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया में तकरीबन 2,04,00,000 नाम कटे और तकरीबन 84,28,000 नए नाम जुड़े। SIR पर विपक्ष के राजनीतिक विरोध के बीच पिछले साल बिहार चुनाव से राज्यों में SIR हो रहे हैं। बिहार, बंगाल, पुडुचेरी में NDA सरकारें बनी हैं, जबकि केरल में कांग्रेस और तमिलनाडु में TVK सरकार बनी है। अब सबकी निगाहें यूपी पर है। आज तक बेरोजगार

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें आपके लिए होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पंचायत उत्तर प्रदेश, आज तक में सीएम योगी की दो टूक। कहा, श्री राम को नकारने वाले आस्था की कर रहे हैं बात। नेता विपक्ष मास्ता प्रसाद का दावा, चढ़ावा चोरी बनेगा चुनावी मुद्दा। 48 घंटे में आ सकती है एसआईटी की रिपोर्ट। यूपी चुनाव से पहले मोदी सरकार का वाराणसी को तोहफा। 46 किलोमीटर का बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर। 7 बड़े निर्णय में 225,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट भी शामिल। करीबी मदन मित्रा के भी बागी होने पर बीजेपी पर भड़की ममता। कहा, इनके इशारे पर हमारे नेताओं पर दबाव, लेकिन विचारधारा से हमारा समझौता नहीं। नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा उत्तराखंड हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, 6 सप्ताह में जमीन स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी पूरी। और एनसीआर में आग का तांडव। नोएडा के ममूरा में लपटों में झुलसकर 2 की मौत, तो गुरुग्राम में मशहूर थिएटर किंगडम ऑफ ड्रीम्स अग्निकांड में हुआ तबाह। शो की शुरुआत आइए करते हैं श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जारी राजनीति के साथ। आज तक पंचायत में जब राजनीतिक दिग्गजों का मेला लगा, तो एक बार फिर से ही श्री राम मंदिर के मुद्दे की गूंज सुनाई दी, जिससे साफ हो गया कि 2027 के चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है।
1: आज तक पंचायत का मंच सजा, तो एक बार फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की गूंज सुनाई दी।
2: जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो, उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास किए, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में, उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है। वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं।
1: विपक्ष ने साफ किया कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर ही सियासी मैदान पर उतरने वाले हैं।
3: चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा, हम मुद्दा बनावें या न बनावें, जो साधारण जनमत है, जो साधारण व्यक्ति है, वो रोज पूछता है, बाबू अयोध्या में मंदिर से कैसे चोरी हो गया, ये लोग क्यों चुरा ले गए मामला। वो हमको नहीं चोर बताते हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं बताते हैं, वो उन्हीं को बताते हैं। इसने समाजवादी पार्टी का जनाधार जनता में बढ़ा और इनका जनाधार इस चोरी से कम हुआ है।
4: चढ़ावा चोरी पे क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, चंदा चोरी पर क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, इनके लोग शामिल हैं उसमें। भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम के नाम पर ही ये जाएंगे, क्योंकि जो लोग आज उसमें हैं, छोटे छोटे लोगों को तो जेल भेज दिया आपने, छोटे लोगों को भेज दिया, टिल्लू यादव कौन कौन और किसको किसको भेज दिया आपने, मिश्रा जी को। अरे भैया, चंपत राय बंसल कब जेल जाएंगे, योगी जी अनिल मिश्रा कब जाएंगे, निपेंद्र मिश्रा के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, गोविंद गिरी पर कब कार्रवाई होगी, गोपाल राव पर कब कार्रवाई होगी, ये प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। और निश्चित तौर से आज ये जो आज गांव गांव में चर्चा है कि चंदा चोरी तो अशोक सिंगल के समय हुआ, अब चढ़ावा चोरी हो रहा है। जो माताएं बने अपने आंचल में पैसा बांध कर जाती है, उस आंचल का पैसा इन्होंने छीन लिया, इसका जवाब चुनाव में कैसे दोगे।
1: उधर योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर राम मंदिर पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं।
5: ये पाप हुआ है, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि एक संदेशा जाए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कि इस देश में 2026 में ये हुआ था अयोध्या मंदिर में, तब ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिला था, तब उन लोग कांपे, ताकि कोई आगे ये गंदा पाप, ये घिनौना, ये घृण तक अपराध ना कर पाए।
3: हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए, सारे चोरों को जेल भेज दिया, सारे पाकेट मारों को जेल भेज दिया, तो वहाँ कहाँ पैदा हो गए? अयोध्या में कैसे पैदा हो गए? ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी।
1: बहरहाल यूपी में 2027 की लड़ाई में राम मंदिर बड़ा मुद्दा होने वाला है। जिस राम मंदिर ने बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, वहीं चढ़ावा चोरी के कलंक को विपक्ष किसी भी कीमत पे छोड़ता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
0: श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एक्शन भी पूरा है। एक और जहां ट्रस्ट के सीईओ के लिए आवेदनों की बाढ़ लग गई, वहीं फाइनल एसआईटी रिपोर्ट के लेकर भी खबरें आ रही हैं। सूत्रों के अनुसार फाइनल रिपोर्ट में टिन्नू यादव के लिए और भी खुलासे हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट अगले 24 से 48 घंटे में आने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, जांच टीम अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। एसआईटी की रिपोर्ट में जांच से जुड़े महत्वपूर्ण निष्कर्ष और जिम्मेदारियों का उल्लेख होने की संभावना है।

0: राम मंदिर चढ़ावे की जिन्होंने चोरी की है अब उनका हिसाब जल्दी ही होने वाला है। एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट लगभग तैयार है और सूत्रों के मुताबिक इसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो मंदिर प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जांच में टिन्नू यादव की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आई है। टिन्नू यादव की मंदिर के प्रबंधन और संवेदनशील कामकाज में गहरी पैठ थी। दानपात्र यानी हुंडियों की चाबियां भी उसके पास रहती थी। चोरी की सबसे बड़ी वजह भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताएं रही। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कमजोर किए जाने से चोरी की गुंजाइश बनी। चंपत राय को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई है। चंपत राय को लापरवाही और निगरानी में नाकामी के लिए जिम्मेदार माना गया है। हालांकि आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका पर एसआईटी ने कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है क्योंकि पुलिस की जांच अभी जारी है। वहीं एसओपी में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया की अनियमितताओं के लिए अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उधर राम मंदिर के सीईओ पद के लिए आवेदन करने वालों की होड़ लगी है। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए हजारों आवेदन आ चुके हैं। आवेदकों में सबसे बड़ी संख्या सेवानिवृत्त नौकरशाहों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बताई जा रही है। बहरहाल अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
1: संसद के आगामी सत्र से पहले परिसीमन को लेकर राजनीति काफी तेज हो गई और इसी बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अपना रुख भी साफ कर दिया। सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी।

0: महाराष्ट्र की सियासत में इंडिया गठबंधन को फिर से करारा झटका लगा है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के भीतर एकजुटता नहीं दिख रही है, क्योंकि शरद पवार वाली एनसीपी ने खुला ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का शरद पवार की एनसीपी समर्थन करेगी।
1: वी विल कंसीडर प्रोवाइडेड कंसीडर, इंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसीडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड।
0: इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि एनसीपी शरद चंद्र पवार महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों के पक्ष में खड़ी है। अगर शरद पवार की पार्टी की ताकत देखी जाए तो लोकसभा में 8 सांसद हैं, राज्यसभा में 3 सांसद हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधायक हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद में 3 एमएलसी हैं। सुप्रिया सुले के ऐलान के बाद परिसीमन जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष के भीतर एक अलग राजनीतिक संदेश जाता दिखाई दे रहा है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें बिल का समर्थन करना पड़ रहा है, वरना विरोध करने पर टीएमसी जैसा हाल होना तय है।
2: उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए वो अगर करते हैं समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को।
0: परसीमन का मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। दक्षिण भारत के कई दल आबादी के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण को लेकर अपनी आशंकाएं जता चुके हैं। ऐसे माहौल में शरद पवार गुट का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभाव रखने वाली इस पार्टी का ये रुख संसद के भीतर होने वाली बहस को नई दिशा दे सकता है। आज तक ब्यूरो।
3: पंजाब कांग्रेस में भी राजनीतिक घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसने आलाकमान की टेंशन को बढ़ा दिया। चन्नी गुट की बगावत के बीच केंद्रीय नेतृत्व राजा वडिंग को हटाने के मूड में भी नहीं दिख रहा है।

0: चुनाव से पहले एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में बगावत की चिंगारी सुलगी तो आग बुझाने की जिम्मेदारी दिल्ली में आलाकमान तक पहुंच गई। पंजाब की रिपोर्ट लेकर प्रभारी भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने अपनी रिपोर्ट संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है और उसमें भी वडिंग को ही जिम्मेदारी जारी रखने की सिफारिश की गई है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल राजा अमरिंदर सिंह वडिंग के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक संगठन के भीतर भी वडिंग की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। 29 जिला अध्यक्षों में से 25 उनके समर्थन में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 सांसद और 8 से 9 विधायक भी उनके साथ खड़े हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में करीब 55 हलका प्रमुख बताए जा रहे हैं, जबकि 12 हलका प्रमुख ऐसे हैं जो दोनों नेताओं के साथ तालमेल बनाए हुए हैं।
1: क्या नेतृत्व परिवर्तन की
2: कोई भाई ये नीचे रख ले यार।
3: मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं।
1: अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश?
3: मैं पहले भी बोल चुका हूं आपसे, दोबारा गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है।
0: अब सवाल यह है कि पिछली रिपोर्ट के बाद भी राजा वडिंग को न हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद चन्नी गुट ने बैठक की थी। ऐसे में अगर राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रहने का फैसला जारी रहता है तो फिर चन्नी अब आगे क्या फैसला करेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस को पंजाब से सत्ता खोनी पड़ी थी। वहीं बीजेपी भी चन्नी को ऑफर दे चुकी है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
4: और अब खबर नोएडा में हुए हादसे की। नोएडा की एक इमारत में भीषण आग लग गई। ऐसा बताया गया कि इस इमारत में 40 परिवार रह रहे थे। अधिकतर लोगों को तो आग से बचा लिया गया, मगर 2 लोगों की जान चली गई।
5: आग की लपटें इमारत को राख में तब्दील कर देने पर उतारू है। भयानक आग का गोला है और इस आग में चल रही है गाड़ियां। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 62 के ममूरा की, जहाँ एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई। आग लगी तो इमारत में रहने वाले 40 परिवारों में भगदड़ मच गई। आग में ये गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं।
6: ये पार्किंग की कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम गाड़ियां अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये यहां पर देखिए जल के राख हो गई हैं। तमाम आप गाड़ियां देखिए, कुछ भी यहां पर नहीं बताए। और बताया जा रहा है कि जो आग लगी थी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल था, उसकी बैटरी यहीं पर चार्ज पे जो बैटरी लगी थी और अचानक से उसमें आग लगती है इस पार्किंग से। और उसमें आग लगने के बाद ये पूरी पार्किंग आप देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ जल के राख हो गया है।
5: आग तेजी से बढ़ रही थी, ऐसे में ऊपरी फ्लोर पर रह रहे लोग जान बचाने के लिए छत की ओर भागे। जिस इमारत में आग लगी थी उसके नजदीक वाली इमारत के बीच सीढ़ी का पुल बनाया गया और इसी सीढ़ी के जरिए 40 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान बचाई थी।
7: इस छत के पास ये छत दूसरी छत से लगी हुई है और ये सीढ़ी है। इस बांस की सीढ़ियों के सहारे वो जो सामने की छत है वहां से लोग एक एक करके यहां पर रेस्क्यू करके इस जगह इस छत पर लाए गए। तकरीबन 40 लोग इसी सीढ़ियों के सहारे अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब रहे।
5: चश्मदीद की जुबानी सुनिए कि कैसे लोगों की जान बची।
8: सीढ़ी लगाया, रस्सा बांधा, बांस डाला, फिर एक एक करके सबको इस पर ले गए। हाँ,
7: तो इस सीढ़ियों के सहारे
8: इस सीढ़ी इस सीढ़ियों का सहारा रस्सी पकड़ पकड़ के सबको इस छत में ले गए।
7: उस वक्त तो लोगों की हालत काफी खराब होगी। तस्वीर आप दिखाइएगा।
8: अमित भर रहा था, धुमा धुमा इतना हो रहा था, इतना खस रहा था।
5: बहुत सारे लोगों की जिंदगी तो बच गई, मगर बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ भूपेंद्र चौधरी, नोएडा आज तक।
4: नोएडा की तरह एक आग की तस्वीर मुंबई से भी आई, जहां एक टनल के अंदर गाड़ी में आग लग गई। हमारी संवाददाता ऋत्विक भालेकर की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
9: मुंबई में कोस्टल रोड के टनल पर आज सुबह आग लगने की घटना यहां पर हुई है और जिससे इस टनल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हम देख सकते हैं वो बस जो वहां पर खड़ी है उसके आगे आग की लपटें हमें सीधे तौर पर दिखाई दे रही है और उसी के कारण यहाँ पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक कंजेशन हो गया था, जिससे लोगों में घबराहट देखने को मिली, डरा हुआ माहौल यहाँ पर देखने को मिला और जिसके तुरंत बाद यहाँ पर खुद होकर लोगों ने गाड़ियां यू टर्न लेकर फिर एक बार जो ट्रैफिक मुंबई साउथ बाउंड जा रहा था उसे डाइवर्ट करते हुए सभी गाड़ियां यू टर्न लेकर अब नॉर्थ बाउंड जाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि बताया जा रहा है, हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की और जानने की कोशिश की, यहाँ पर इन आग की लपटों का कारण बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ियों में ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ है ये अब तक पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन
10: आगे आग लग गया, आग लग गया, आगे आग देखा नहीं, आगे आगे
9: कितना दूर?
10: दो मिनट आगे।
9: कोई हताहत हुआ है किसी को?
10: आगे नहीं पहुंच पाया, आगे नहीं,
9: कोई पुलिस या कोई फायर ब्रिगेड कोई
10: भी हम लोग यहाँ अरेंज कर रहे हैं, सबको रिवर्स निकलने का अरेंज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हम
9: लोग कितने लोग फंसे हुए हैं? सभी गाड़ियाँ छोड़ के निकल
10: सब गया, काफी ड्राइवर मेन टैक्सी वाले निकल के भाग गए, टैक्सी वाले भाग गए।
9: बहुत बड़ा आग लगा, आपने खुद देखा इन गाड़ी में, गाड़ियों में आग लगी है? हमारे एक कोई बचाव कार्य हुआ? बचाव कार्य नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने कुछ देखा?
11: हाँ भैया, वहाँ आगे आग लग गई है और गाड़ी फट गई है, तो अभी धुआं हो गया है, तो सारी गाड़ियों को पीछे कर रहे हैं वो लोग।
9: अच्छा, किसी को लगा है या कुछ हुआ है, कोई हताहत हुई है?
11: चोट वोट तो नहीं पता।
12: गाड़ी में आग लगी है, हमारा बस के 10-15 गाड़ी आगे आग लगी है, 2-3 गाड़ी में आग लगी है बोलते है, हम लोग जल्दी इवैक्यूएट कर रहे हैं।
9: ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट
11: हो गया, 2-3 गाड़ी का अभी इवैक्यूएट करो,
13: चले पूरा गाड़ी पे आग।
4: एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से आ रही है, जहां रामपुर विकास प्राधिकरण का एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। ये आजम खान पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के नेता की यूनिवर्सिटी है, 40 में से 38 भवन जो वहां पर बने हुए हैं उन पर वो अवैध हैं, उन पर बुलडोजर चलेगा, यानी कि उन्हें ध्वस्त किया जाएगा, उन्हें जमींदोज किया जाएगा। आजम खान की इस यूनिवर्सिटी पर पहले से कार्रवाई चल रही है, इसकी बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया था, इसकी जमीन पर विवाद है, किसानों और गरीबों की जमीन छीनने का आरोप है। अब समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी इस यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवन जो हैं वो पूरी तरह से मिटा दिए जाएंगे, यानी कि उन पर बुलडोजर चलेगा। और ये निर्णय हुआ है, अवैध निर्माण है ये सारा के सारा, बिना नक्शा पास कराए इन भवनों का निर्माण कराया गया है और ये आदेश अब आ चुका है, तो जल्द ही ये कार्रवाई होगी। और अब खबर मौसम की, जहां हमारे देश भारत के कई हिस्से बारिश के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट में मौसम तबाही मचा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश ने जबरदस्त नुकसान किया है।
14: तेजी बारिश होने के कारण अभी 20 तक
9: अरुणाचल प्रदेश की ये तस्वीरें तबाही की कहानी बयां कर रही हैं। नदियां उफान मार रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें तबाह हो रही हैं, चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में हो रही लगातार बारिश ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। कुमेह नदी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से पारसी, पार्लो, सरकर और दामिन सब डिवीजन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दामिन में हुरी दामिन को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह बह गया है, जिससे सड़क संपर्क कट गया है। लगातार बारिश के कारण स्कूलों, दफ्तरों और घरों में पानी भर गया है। इलाके की कई कॉलोनियों और गांवों की सड़कें पूरी तरह जलमग्न हैं।
15: कोयू सर्कल जो है स्टिल इट इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहां पे अभी इतने ज्यादा मोर देन 300 लोकेशंस पे रोड या तो डैमेज है या तो वो ढह गया है।
9: राज्य सरकार की माने तो बाढ़ में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। राज्य के 26 जिलों के 425 गांवों में बाढ़ से कुल 97,182 लोग प्रभावित हुए हैं, साथ ही कृषि और सार्वजनिक संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है।
16: ये 1950 का जो आर्थक्वेक है, भूकंप है, उससे भी ज्यादा भयानक हुआ है।
9: वहीं बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और अन्य विभागों के साथ मिलकर नुकसान का जायजा ले रहा है और राहत कार्य चलाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से युवराज मेहता के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और अब बाजार की खबर। कारोबार के दौरान खरीदारी के पॉजिटिव माहौल के बीच घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 130 अंक मजबूत होकर 77,185 और निफ्टी 26 अंक चढ़कर 24,079 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में तेजी मुख्य रूप से बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में खरीदारी के दम पर देखने को मिली, जबकि सकारात्मक वैश्विक संकेतों ने भी बाजार को सहारा दिया। शेयर बाजार की मजबूती के बीच रुपए पर दबाव बना रहा और डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे कमजोर होकर 96.29 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। वहीं सराफा बाजार में भी आज मिश्रित रुख रहा। सोना 112 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 1,41,770 रुपए पर आ गया, जबकि चांदी 416 रुपए बढ़कर 2,20,991 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। सराफा बाजार में सोने और चांदी की चाल आज अलग अलग रही। और अब खबर फीफा वर्ल्ड कप की, जहां फ्रांस को हराकर स्पेन 16 वर्ष बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। आज इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होने वाले मुकाबले के बाद यह साफ हो जाएगा कि वर्ल्ड कप फाइनल में युद्ध किसके बीच होगी। अब देखना यह है कि स्पेन के सामने फाइनल में कौन सी टीम होती है। सबसे बड़ी बात, जो भी टीम फीफा की रैंकिंग में नंबर वन रही है वो वर्ल्ड कप विजेता नहीं बन पाई। पिछली बार अर्जेंटीना रैंकिंग में तीसरे नंबर पर थी और खिताब अपने नाम किया, यानी कि चैंपियन बनी। इससे पहले सातवें नंबर की टीम फ्रांस चैंपियन रही। और बिल्कुल इसी तरह 1994 से लेकर अब तक के आंकड़े आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर हमारे सामने हैं। 2006 में तो इटली रैंकिंग में 13वें नंबर पर थी और खिताब जीता था, जबकि 1998 में फ्रांस 14वें नंबर की टीम थी और वर्ल्ड कप विजेता बनी थी। ऐसे में इस बार रैंकिंग में टॉप पर फ्रांस थी, जो कि वर्ल्ड कप से अब बाहर हो चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
13: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। In association with
17: Arab. Summer hits blends old school jams with fresh favorites, so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
18: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
3: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
2: ओ अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
4: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
5: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
7: Ready for the next big IPO? Apply for it on Grow. Open your free DMAT account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Grow now for stocks, mutual funds and IPOs.
8: Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
9: Papa!
10: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
11: सब कैशलेस हो गया है।
10: हाँ ओला ला भाई मेरा बैट।
11: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
12: वो तो चार्ज हुआ यार।
13: ओला बैट किसका है?
14: टाटा AIG है तो भरोसा है।
15: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
16: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
17: सोच बदलो और बैंक भी।
18: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
19: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
20: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
21: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
22: लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
23: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
24: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
25: आगे आगे
26: करेक्ट करेक्ट
27: मिल गया।
28: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: Ready for the next big IPO? Apply for it on Grow. Open your free DMAT account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Grow now for stocks, mutual funds and IPOs.
8: Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.

0: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
1: Koli hing kan kan me jaan.
2: अनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
3: वी आर ओवर जिमी।
5: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
6: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
7: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
8: आगे आगे
9: करेक्ट
10: मिल गया।
11: आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: Ready for the next big IPO? Apply for it on Grow. Open your free DMAT account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Grow now for stocks, mutual funds and IPOs.
13: Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.

0: in association with Hind, Bade Aram Se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
0: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: शेयर बाजार जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिजटेक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिजटेक पर।
3: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
4: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे, इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
3: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम,

0: देहरादून में आधी रात को कांग्रेस का हल्ला बोल। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर सड़क पर उतरी कांग्रेस। छात्रों की गूंज, कार्यक्रम स्थल को लेकर बढ़ा सियासी संग्राम। देहरादून के परेड ग्राउंड में राहुल गांधी के कार्यक्रम को इजाजत न मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देर रात प्रदर्शन किया। परेड ग्राउंड तक मार्च निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध को देखते हुए परेड ग्राउंड के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। परेड ग्राउंड का गेट खुलवाने की कोशिश के दौरान पुलिस से कुछ कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: 17 तारीख को

0: आवाज है, नौजवानों की आवाज, हमारी युवाओं की आवाज, हमारी युवतियों की आवाज, उनके भविष्य को पूछा जा रहा है, उनके सपनों को बर्बाद किया जा रहा है और राहुल गांधी जी सबकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे आना चाहते हैं और सरकार की मंशा नियत साफ हो चुकी है, उनकी नियत में खोट है और मैं कहना चाहता हूँ जवाबदाही जवाबदेही सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार बेनकाब हो चुकी है।
1: कांग्रेस का दावा है कि 9 तारीख को ही प्रशासन से इजाजत मांगी गई थी और 10 तारीख को परमिशन मिल भी गई थी, लेकिन अब कार्यक्रम को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया। आधी रात तक चली सियासी उठापटक के बाद कांग्रेस स्थल बदलने के फैसले पर मान गई और अपने विरोध प्रदर्शन को खत्म किया। राहुल गांधी का कार्यक्रम अब बन्नू स्कूल मैदान में आयोजित किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

योगी की दो टूक, कहा श्री राम को नकारने वाले आस्था की कर रहे हैं बात। नेता विपक्ष माता प्रसाद का दावा, चढ़ावा चोरी बनेगा चुनावी मुद्दा, 48 घंटे में आ सकती है एसआईटी की रिपोर्ट। यूपी चुनाव से पहले मोदी सरकार का वाराणसी को तोहफा, 46 किलोमीटर का बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, 7 बड़े निर्णय में 125,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट भी शामिल। रामपुर में एसपी नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर होगा बड़ा एक्शन, 40 में से 38 अवैध इमारतों पर चलेगा बुलडोजर, बिना नक्शा पास कराए हुआ है निर्माण। करीबी मदन मित्रा के भी बागी होने के बाद बीजेपी पर भड़की ममता, का इनके इशारों पर हमारे नेताओं पर दबाव, लेकिन विचारधारा से हमारा समझौता नहीं। नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा उत्तराखंड हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, 6 हफ्ते में जमीन स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी पूरी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। और आज हम विशेष में बात करेंगे उबलते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। बीओके में इस समय बगावत की आग लगी हुई है और इस आग की तपिश इस्लामाबाद और लाहौर तक महसूस की जा रही है। बीओके के अलग अलग हिस्सों से लोग इस समय मुजफ्फराबाद कूच के लिए निकल पड़े हैं। क्या दिन क्या रात, लोगों का ये मार्च लगातार चल रहा है और इन प्रदर्शनकारियों पर मुनीर की सेना का जोर जबर भी नहीं चल रहा। नियत प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हो रही है, हंगामा मचा हुआ है, लेकिन ये आगे बढ़ते जा रहे हैं।
1: क्या पीओके इस बार पाकिस्तान के कब्जे से निकल जाए? पीओके में बुलंद हुई आजादी की आवाज, अब क्या करेंगे मुनीर और शहबाज?
2: ये जो दहशतगर्दी है,
3: इसके पीछे बंदी है।
2: ये जो दहशतगर्दी है,
3: इसके पीछे बंदी है।
2: ये जो गुंडागर्दी है,
3: इसके पीछे बंदी है।
2: ये जो अफरातफरी है,
3: इसके पीछे बंदी है।
2: ये जो शल्लिंग बल्लिंग है,
3: इसके पीछे बंदी है।
1: पीओके की पूरी आवाम सड़कों पर आ गई। सबसे बड़ी बगावत हो गई। आटे बिजली और हक की लड़ाई पाकिस्तान को तोड़ने पर।
4: कहना चाहूंगी कि अगर हम दहशतगर्द होते तो ये लाखों के मजमे में लोग और लड़कियां, ये खवातीन अपने गोद वाले बच्चे को इधर लेके आती, ये कोई दहशतगर्द है, आके प्लीज चेक कर दिया जाए।
1: क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या औरत और क्या मर्द, पूरा का पूरा पीओके सड़कों पर उतरा हुआ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर रावलकोट से उठती ये आवाज लाहौर और इस्लामाबाद को कपा रही। पीओके की यह बगावत बता रही कि अब बंदूक की जोर पर चलने वाली मुनीर की फौज के खिलाफ लोग खड़े हो गए। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन ने आसिफ मुनीर की चूलें हिला दी। वो पीओके के लोगों पर फायरिंग करवा रहा है। पाकिस्तान की फौज और रेंजर निर्दोषों की जान ले रहे हैं, लेकिन लोगों के इस बगावत में कोई कमी नहीं आई। पिछले दो हफ्तों से पीओके में हुए इन प्रदर्शनों में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई। मुजफ्फराबाद, रावलकोट और मीरपुर समेत बहुत से इलाकों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार किया है। इन्हीं की नदियों के पानी से बिजली बनाकर लाहौर और पंजाब में बिजली दी जाती है। पीओके वालों को राशन के लिए भी तरसाया जाता है। इन्हीं मुद्दों के खिलाफ पिछले 4 साल से पीओके सुलगा हुआ है, लेकिन मौजूदा विवाद चुनाव से जुड़ा हुआ है। 27 जुलाई को पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान होना है। पीओके की असेंबली में 12 सीटें बाहर से आए हुए लोगों के नाम पर आरक्षित है। आरोप ये है कि पाकिस्तान की सरकार इन 12 सीटों पर अपने लोगों को बिठा देती है और इन 12 सीटों के द्वारा ही पीओके में पावर कंट्रोल होता है। इसीलिए अब ये डिमांड है कि ये 12 सीटें खत्म करके इन पर पीओके के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। प्रदर्शन की कमान संभाली है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी JAC ने, और इस कमेटी में शामिल लोग पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर रहे हैं। पूरे 78 साल से इस्लामाबाद जिस झूठ की काली कमाई को खा रहा था, जिस पीओके को वो दुनिया के सामने आजाद कश्मीर का पाखंडी लेबल लगाकर बेच रहा था, आज उस 78 साल पुराने प्रोपेगेंडा के पर खच्चे उड़ चुके हैं।
5: मौजूद है और उनकी आजादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर कब्जा है, ये एक मुतनाजा इलाका है, जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुताबिक जो बात करने का इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है, वो इन खबर خواتین کے پاس ہے، وہ ان مردوں کے پاس ہے، ان کی اولادوں کے پاس ہے، وہ ریاست کے شہریوں کے پاس ہے، اور اس پہ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اس تحریک میں شہید بھی ہو جائیں تو ہمیں یقین ہے ہماری اولادیں اس علم کو بلند رکھیں گی، اس جھنڈے کو بلند رکھیں گی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس علم کو بلند رکھیں گی، اور فتح سے پہلے ہم سارے مارے جائیں، فتح سے پہلے یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، یہ جنگ ختم، اب یہ حقوق کی جنگ ختم
1: رابلہ کوٹ کے ایتیحاسک عیدگاہ میدان میں 80,000 سے زیادہ لوگوں کا سیلاب، اور منچ پر کھڑے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نیتا سردار امان خان۔ پی او کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی او کے پر پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ سیدھی چنوتی منیر کو ہے، منیر کی بھاری بھرکم فوج اور ان کی گولیاں بھی بغاوت کی آگ کو ٹھنڈی نہیں کر پا رہی۔ جب کسی عوام کے صبر کا باندھ ٹوٹتا ہے تو بڑے بڑے تاناشاہوں کے تخت و تاج اتہاس کے کوڑے دان میں بہ جاتے ہیں۔
5: اور حکمرانوں سے ہم کہتے ہیں کہ میں تو لال سے کام نہیں چلے گا۔ ایک آتا ہے کہتا ہے فلاں نہیں مان رہا، دوسرا آتا ہے کہتا ہے فلاں نہیں مان رہا، ہم نے کسی کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، ریاست کے شہری ہیں، ریاست عوام سے ہے اور عوام ہی ریاست ہے، سپیریئر ریاست عوام ہے، عوام طاقت ہے، اپنی ہوگی۔
1: اس بار کے مارچ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں استھانیہ مہیلائیں اور اسکولی بچوں نے ریکارڈ سنکھیا میں حصہ لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر آ رہے ویڈیوز میں مہیلائیں اور بچوں کے ہاتھوں میں تختیاں لے کر پاکستانی سینا کے اتیاچاروں، بھاری ٹیکس اور آٹے بجلی کی مہنگائی کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے مظفر آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مہیلاؤں کے ساتھ ہی پی او کے میں آزادی کی مانگ کو لے کر چل رہی بغاوت میں اب وہاں کا بچہ بچہ شامل ہے۔
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام معروف اور میں کلاس 9 میں پڑھتی ہوں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، ہمیں کل بھی روکا جا رہا تھا کہ آپ دھرنے میں نہ جائیں، ایکشن کمیٹی نے کیا غلط کیا، وہ تو ہمارے عوام کے حق کے لیے آواز اٹھائے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں خبروں میں کہہ رہے ہیں، اور دھرنے یہاں تک ریجرز بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر جو لڑکے ہوئے، جو بچے ایکشن کمیٹی میں آئے ہوئے، اگر وہ پیچھے نہ گئے ان کے پے فارمز نہیں مانے جائیں گے، ان کی چیزیں نہیں مانی جائیں گی، ان کے شناختی کارڈ نہیں مانیں گے، یہ پے فارم ہے ہمارے، اگر ہمارے بے فارم نہیں مانے جائیں گے، جائیں آپ لوگ کے بے فارم اپنی مرضی سے جی، ہمیں آپ کے بے فارم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور میری آپ سب پاکستانی عوام سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، ہمیں حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، کیوں آپ لوگ پیچھے کھڑے، ہمارے ساتھ اللہ کھڑا ہے، پلیز ہمارا ساتھ دیں۔
1: پی او کے میں بھڑکی آزادی کی اس آگ پر اب بھارت نے انتراشٹریہ منچ پر پاکستان کو پوری طرح سے بے نقاب کر دیا۔ بھارت نے دو ٹوک کہہ دیا کہ پی او کے میں جاری یہ مہاودروہ پاکستان کے دشکوں پرانے شوشن، بنیادی ادھیکاروں کے ہنن اور پرشاسنک ظلم کا نتیجہ ہے۔
7: دیکھیے، پاکستان ادھیکرت جموں کشمیر میں چل رہے ویروھ پردرشن پاکستان دوارا اپنے اویدھ اور جبرن قبضے والے کھیتروں میں دشکوں سے چل رہے شوشن، مولک ادھیکاروں کا ہنن اور پرشاسنک اتپیڑن ایڈمنسٹریٹو آپریشن کا سیدھا پرینام ہے اور پروان بھی ہے۔ ستھانی آبادی کی جائز شکایتوں کو سمادھان کرنے کے بجائے وہاں کا پرشاسن، وہاں کا سرکار نے اتیادھک پولیس کرورتا کا سہارا لیا ہے۔ اس میں اسہائے لوگ جس میں مہیلائیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے۔
0: اب سوال یہی ہے کہ کیا پی او کے پاکستان کے چنگل سے آزاد ہونے کے لیے چھٹپٹا رہا ہے؟ کیا پاکستان نے اتنے دشکوں تک جس جھوٹ کو پالا پوسا، انتراشٹریہ استر پر جھوٹا پرچار کیا، کیا اس جھوٹ سے پردہ ہٹ گیا؟ کیونکہ اب تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ بغاوت کی آگ اتنی جلد شانت ہونے والی نہیں۔
1: बुधवार को ऐतिहासिक मुजफ्फराबाद मार्च हो रहा है। एक दिन पहले इसी मार्च के लिए रावलाकोट में पीओके की आवाम इकट्ठा हुई। मुजफ्फराबाद के लिए प्रदर्शनकारियों का एक्शन प्लान तैयार था, शांतिपूर्वक आगे बढ़ने का एजेंडा था, लेकिन हैवानियत की हदें पार करने वाले पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस का कहर प्रदर्शनकारियों पर टूटा। पहले तो उन्होंने भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शन में शामिल स्कूली बच्चे और महिलाएं बेतहाशा परेशान रहे। प्रदर्शनकारी जब अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने इन बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां दागी। रावलाकोट बस अड्डा, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी थी, वहां पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग हुई। उधर सुधनौती में भी फायरिंग की घटना हुई। 14 जुलाई को हुई फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई। इस दौरान एक पाकिस्तानी रेंजर की भी मौत हो गई। 5 अन्य सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए हैं। अब उस गोलीबारी को लेकर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों का दावा है कि यह हमला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, यानी अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अपने ऊपर खुद ही हमला करवाया और अपने जवान को मार डाला, ताकि प्रदर्शनकारियों पर किए एक्शन को सही ठहराया जा सके। लेकिन एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की ऐसी किसी भी साजिश का सच पूरी दुनिया जान चुकी है और अब पूरा पीओके सड़कों पर उतरा है।
8: रावलाकोट इलाके में पाकिस्तान के रेंजर्स की फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई थी। अब इसी आंदोलन में अमान खान का एक भाषण जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पीओजेके न तो विवादित है, न ही आजाद कश्मीर है, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है।
5: ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है।
1: आंदोलनकारी पाकिस्तान को सच का आईना दिखा रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विवादित इलाका नहीं है, बल्कि उस पर पाकिस्तान का कब्जा है।
5: और उनकी आजादी की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है।
0: विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
9: You hear it once and remember everything.
10: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
9: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stayed forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
11: Check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Grow Now for stocks, mutual funds and IPOs.
12: Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
13: Papa!
14: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
15: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
14: छक्का?
15: सब कैशलेस हो गया है।
14: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
15: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
14: चार्ज हुआ यार।
13: ला बैट किसका है?
16: टाटा AIG है तो भरोसा है।
17: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
18: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
19: सोच बदलो और बैंक भी।
20: वी आर ओवर जिमी।
21: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
22: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
23: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
2: वीडियो बना वीडियो बना वीडियो बना वीडियो बना अच्छा वीडियो वीडियो बना
3: कार की बोनट पर एक शख्स बैठा है, उसके हाथ में शराब की बोतल है। कार में बैठे परिवार वाले कुछ भी बोलते उससे पहले ही ये शख्स कार के शीशे को बोतल से तोड़ देता है और कार में बैठे पति पत्नी बेहद घबरा जाते हैं। उसका डर उसकी आवाज से समझा जा सकता है। ये खौफनाक तस्वीरें इंदौर के मोती तबेला इलाके की हैं, जहां रोड रेज का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में मामूली कट लग जाने की बात को लेकर इस शख्स ने एक कार पर हमला कर दिया। आरोपी ने कार के शीशे तोड़ दिए और कार के बोनट पर चढ़कर जमकर हंगामा करता नजर आया। इस वक्त उसका एक साथी भी वहीं मौजूद था। इस दौरान कार के अंदर बैठे दंपति घबरा गए लेकिन बाहर नहीं निकले। उन्होंने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक बार फिर पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। परिवार वालों की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आई। आरोपी युवक की तलाश शुरू की और कुछ ही देर में आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में हुई रोड रेज की यह घटना बेहद सनसनीखेज है। जिस तरह से बीच सड़क कार पर हमला हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। हालांकि अब मामले के दोनों आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: तो उत्तर प्रदेश आज तक में सीएम योगी की दो टूक का श्री राम को नकारने वाले आस्था के कर रहे हैं बात। नेता विपक्ष माता प्रसाद का दावा, चढ़ावा चोरी बनेगा चुनावी मुद्दा, 48 घंटों में आ सकती है एसआईटी रिपोर्ट। यूपी चुनाव से पहले मोदी सरकार का वाराणसी को तोहफा, 46 किलोमीटर का बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, 7 बड़े निर्णय में 25,00,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट भी शामिल। रामपुर में एसपी नेता आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन, 40 में से 38 अवैध इमारतों पर चलेगा बुलडोजर, बिना नक्शा पास कराए हुआ निर्माण। बीस जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद 21 को एनडीए संसदीय दल की बैठक, सांसदों को संबोधित करेंगे पीएम, उससे पहले सर्वदलीय बैठक में टीएमसी होगी शामिल। खरीबी मदन मित्रा के भी बागी होने के बाद बीजेपी पर भड़की ममता, कहा इनके इशारे पर हमारे नेताओं पर दबाव, लेकिन विचारधारा से हमारा कोई समझौता नहीं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: नमस्कार, वक्त है हर बड़ी खबर से आपको खबरदार करने का। इस वक्त देश की राजनीति में दो जगह सबसे ज्यादा सबकी नजर है, एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, दूसरी देश की राजधानी दिल्ली। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। परिसीमन बिल को लेकर क्या मोदी सरकार के मिशन 360 को अब शरद पवार वाली पावर भी मिल गई है, इस खबर के पूरे नंबर गेम से खबरदार करेंगे। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश चलिए, जहां 2027 के चुनाव से पहले पंचायत आज तक के मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ 9 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा, बल्कि सरकार पर उठते सवालों पर का भी जवाब दिया है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
3: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

पंचायत आज तक इस विशेष कॉन्क्लेव में उपस्थित वाइस चेयरमैन इंडिया टुडे ग्रुप सामान्य कलीपुरी जी, न्यूज डायरेक्टर आज तक श्री सुप्रिय प्रसाद जी, आज तक ग्रुप से जुड़े हुए सभी उनके संपादकगण और उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले आज तक को पंचायत उत्तर प्रदेश के इस विशेष कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश को फोकस करते हुए इस विशेष पंचायत को उन्होंने यहां पर रखा है और पहले ही देश के इस सबसे बड़े ग्रुप ने इस बात की भी घोषणा कर दी है कि बीजेपी यूपी में फिर से हैट्रिक लगाने जा रही है। उनकी इस घोषणा के लिए मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। वास्तव में एक लोकप्रिय मीडिया ग्रुप होने के नाते आम जन की आवाज उन लोगों तक पहुंचती है। उन्होंने ये कहकर के आम जन की आवाज को ही मोहर लगाने का काम किया है। मित्रों, मुझे एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के पहले एक सांसद के रूप में उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र से देश के संसद में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय मैं उन मुद्दों से जूझता था। उन मुद्दों के लिए हर स्तर पर उन मुद्दों को उठाने का प्रयास करता था और कभी कभी निराशा भी होती थी कि लगता है ये सब नियति बन चुकी है, बीमारी से मरना, माफिया के सामने लोगों का नतमस्तक होना, बिजली के लिए और सामान्य जन सुविधाओं के लिए लोगों को तरसते हुए देखना, भूख से मौत, युवाओं के सामने पहचान का संकट, किसान के सामने आत्महत्या जैसे कदम उनके द्वारा उठाए जाने, ये सभी चीजों को हम बहुत नजदीक से देखते थे और उस समय अंतःकरण में पीड़ा होती थी कि क्या इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है क्या। लेकिन जब पिछले 9 वर्ष के अंदर मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर शासन सत्ता का संचालन करने का अवसर हमारी पार्टी ने दिया और मैं इसके परिणाम को देखता हूं, ऐसा नहीं कि मेरे साथ में दिल्ली से या लखनऊ गोरखपुर से कोई टीम अलग से आई हो। मैं दिल्ली में सांसद था जब मुझे यहां भेजा गया, मेरे साथ एक भी व्यक्ति दिल्ली से नहीं आया। मैं गोरखपुर से सांसद था और गोरखपुर में लगातार 5 बार से सांसद होने के साथ साथ वहां से हर एक उस पर जुड़ा था, वहां से भी एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं आया। जो लोग लखनऊ में मौजूद थे और जो टीम मुझे मिली, मैंने उसी को लेकर के उनकी मानसिकता को बदलने का काम करने का प्रयास किया और जो परिणाम सामने आए हैं वे सब आपके सामने हैं। हमने इन 9 वर्षों में यूपी को कहां पहुंचाया है
और मैं मानता हूं कि यूपी को इन 9 वर्षों में हम लोगों ने पहचान के संकट से उभारा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर वीमेन वर्कफोर्स की उपस्थिति 3 गुना बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश जो कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में था, इन 9 वर्षों में देश की टॉप 3 यानी बॉटम 3 से टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। ऐसे कौन से कारण थे जो यूपी में नहीं हो सकते थे, लेकिन इन 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार आने के बाद वे जमीनी धरातल पर दिखाई दिए। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, 2014 के पहले भी एक प्रकार की डबल इंजन सरकार थी। केंद्र में कांग्रेस और यूपीए की गवर्नमेंट थी, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दोनों मिलकर के काम कर रहे थे, लेकिन पब्लिक में विश्वास नहीं था, आम जन में विश्वास नहीं था, क्योंकि आम जन मानता था इन दोनों की जो स्थिति है वह है एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। दोनों की स्थिति कमोवेश यही थी। ये लोग आज जो उपदेश देते हैं उन उपदेशों को इन्होंने 2014 के पहले स्वयं अंगीकार किया होता तो ये स्वयं हाशिए पर नहीं गए होते। क्या स्थिति थी यूपी के अंदर? यूपी का नौजवान अपनी पहचान छुपाता था, उसकी नौकरी पर सेंध लगती थी, उसको नौकरी नहीं मिलती थी, और अगर कभी नौकरी निकल भी गई, सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकला, उसने आवेदन भी किया, तो उसकी योग्यता के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता था, और सेलेक्ट नहीं होता था क्योंकि नौकरी पर कुछ चंद जनपदों का कब्जा था, कुछ चंद लोगों का कब्जा था। सुरक्षा की स्थिति बदहाल थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था। कितनी खराब स्थिति यूपी के अंदर थी, कल्पना करिए। 35 से ज्यादा जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में कोई भी सभ्य परिवार और कोई भी क्षमतावान परिवार अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजता था। अगर उसको भेजना होता था तो यूपी के बाहर किसी हॉस्टल में या किसी नातेदार रिश्तेदार के यहां भेज करके वहां से अपनी बेटी को पढ़ाता था। एक बेटी को जिसको माँ बाप का सानिध्य मिलना चाहिए बचपन में, वह हॉस्टल में रहने के लिए या फिर अपने नातेदार रिश्तेदार के यहां रहने के लिए मजबूर कर दी जा रही है। यह स्थिति 2017 के पहले थी। कैसे सत्ता के समानांतर माफिया की सरकारें चलती थी, कोई सुरक्षित नहीं था, न मीडिया सुरक्षित थी, न कॉमन मैन सुरक्षित था, न व्यापारी सुरक्षित था, न कोई बेटी सुरक्षित थी, न उद्यमी सुरक्षित था। उद्यमी निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे मालूम था कि जब वह स्वयं सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। न सरकार की नीति थी और न नियत थी, अराजकता चरम पर थी। माफिया के सामने सरकारें नाक रगड़ती भी दिखाई देती थी, और आज भी उनके पुराने संस्कार आप सुनते होंगे जब वे बोलते हैं कि अगर सत्ता में कभी आ गए तो हम इसकी जांच कराएंगे कि माफिया मारे क्यों जा रहे हैं या माफिया को माफिया के साथ इतनी सख्ती क्यों की जा रही है। यानी उनकी सहानुभूति आज भी
यूपी के नागरिकों के लिए नहीं है, यूपी के कॉमन मैन के लिए नहीं है, यूपी के व्यापारी, यूपी की बेटी के लिए नहीं है। उनके सहानुभूति आज भी उस माफिया के प्रति है, उनके गुर्गों के प्रति है, जो या तो जेल में है या फिर जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उनकी सहानुभूति यूपी के नागरिकों के प्रति आज भी नहीं दिखती है। आपको स्वर्गीय राजीव गांधी जी के वे प्रश्न, वे मुद्दे याद आ जाएंगे जिन्होंने कभी एक बार बहुत निराश होकर के कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं लेकिन 15 ही नीचे पहुंचता है। मित्रों, ये 15 रुपया ही पहुंचता था, ये 85 कौन खा जाता था? और ये पैसा जो 85 रुपया खाया जा रहा था, 85% पैसे पे डकैती पड़ती थी। ये पैसा किसी युवा का होगा, किसी छात्र की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी युवा की नौकरी का पैसा था, किसी बुजुर्ग और निराश्रित महिला की पेंशन का पैसा था, किसी गरीब के अनाज का पैसा था, किसी बहन और बेटी के लिए बनने वाले शौचालय का यही पैसा था, जिस पैसे पर 85% पैसे पर ये लोग डकैती डालने का काम करते थे। और आज DBT के माध्यम से 100 रुपया दिल्ली से या लखनऊ से हम भेजते हैं तो अब पैसा सीधे उस लाभार्थी के खाते में जाता है, वह चाहे वह छात्र हो, चाहे वह युवा हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह अन्नदाता किसान हो, चाहे वह श्रमिक हो, किसी भी तबके का व्यक्ति है, उस तक उन योजनाओं का लाभ आज पहुंचता है। अब उससे अलग नहीं है, उन योजनाओं का लाभ उस तक पहुंच रहा है। आज सरकार के पास नीति भी है और उसको जमीनी धरातल पर उतारने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति का की नियत भी है। हमने संकल्प किया था कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करेंगे, माफिया मुक्त करेंगे, कर्फ्यू मुक्त करेंगे, दंगा मुक्त करेंगे। सरकार की इच्छा शक्ति थी, हम लोगों ने उसको जमीनी धरातल पर उतार कर दिखाया कि हाँ, देश का सबसे बड़ी आबादी का राज्य दंगा मुक्त हो सकता है, कर्फ्यू मुक्त हो सकता है, उपद्रव से मुक्त हो सकता है और अपनी परंपरागत पहचान उत्सव से युक्त हो सकता है। ये यूपी ने करके दिखाया है 9 वर्षों में। उत्तर प्रदेश बीमारी से मुक्त हो सकता है, माफिया से मुक्त हो सकता है। भूख से मौतें अलग से होती थी, आज सैचुरेशन 100% उन्हें हम सैचुरेट कर चुके हैं। जो लोग भूख से मरते थे उनको जमीन के पट्टे मिल चुके हैं, उनका अपना आवास बन चुका है, उनके लिए आयुष्मान का कार्ड उन तक पहुंच चुका है, उन तक रसोई गैस के सिलेंडर पहुंच चुके हैं और उनके लिए कोई ना कोई रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 2017 से 2026 के बीच में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास की दर को 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की है। आज किसान के लिए समय पे बीज है। आप याद कर रहे होंगे, इस समय अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, फर्टिलाइजर की क्राइसिस स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए थी लेकिन यूपी में किसानों को फर्टिलाइजर समय पे मिल रहा है, पेस्टिसाइड समय पे मिल रहा है, सीड समय पे मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इन 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने 24 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है। दशकों से लंबित परियोजनाएं थी लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज वह कार्य पूरा होने के बाद 2.5 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध करवाई। आज यूपी के किसानों को 10 घंटे का बिजली हम उपलब्ध करवाते हैं खेती के लिए और बिजली फ्री है। आज किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना भी है, सॉयल हेल्थ कार्ड की भी योजना है। आज किसान के लिए हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी खेती में जो विकास दर बढ़ी है उस विकास दर के पीछे ये डबल इंजन सरकार के द्वारा जो उसको फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है उसका परिणाम आज यहां देखने को मिल रहा है। MSME में
जो दम तोड़ चुका था, जहां कारीगर प्लान कर चुका था, वह फिर से आगे बढ़ा है। आज के दिन पे यूपी देश के अंदर सबसे ज्यादा एमएसएमई यूनिट को संचालित कर रहा है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट वर्तमान में यूपी के अंदर संचालित हो चुके हैं। 96 लाख, हर एक यूनिट को सरकार 5 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की बीमा भी कवर उपलब्ध करवा रही है, और 3.25 करोड़ युवा इसके साथ रोजगार के साथ जुड़ चुके हैं। मित्रों, यूपी जैसे राज्य के बारे में मेरा मानना है, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कानून का राज स्थापित कर दीजिए, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल दे दीजिए, अपने आप सुशासन के लक्ष्य प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। और उत्तर प्रदेश में इस कार्य को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज मैं मानता हूं, मुझे अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि यूपी मॉडल को सुरक्षा के इस मायने में लोगों ने अडॉप्ट किया। यूपी का नाम वहीं पे नहीं आ रहा है। पहले एक मान्यता थी, मैं दिल्ली में अक्सर देखता था, राज्यों की सूची आती थी, राज्यों में किस योजना में कौन राज्य टॉप 3 में है, कौन कौन राज्य हैं टॉप 3 में, यूपी का कहीं पता नहीं होता था। हम ढूंढते थे यूपी कहां है, ओह यूपी तो बॉटम 3 में है। हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते थे, क्योंकि उस समय सरकारों की मानसिकता ऐसी थी। आज मैं कह सकता हूं, देश के अंदर कोई भी स्कीम हो, किसी भी स्कीम के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में 100 से ज्यादा वेलफेयर की स्कीम निकली हैं। इन स्कीम में आज के अंदर आप देखेंगे यूपी हर एक स्कीम में टॉप 2 में यूपी का नाम आता है, हर एक स्कीम में यूपी का नाम आता है। यूपी में 2017 के पहले कुछ विद्युत की कुल आपूर्ति यूपी के अंदर कुल 15 से 16 हजार मेगावाट पीक आवर में होती थी, और आज पीक आवर में यह खपत हुई है लगभग 35 से 35 हजार मेगावाट। यह यूपी की नई स्थिति है। यूपी के अंदर बहुत सारे लोगों को औद्योगिकीकरण का मॉडल दिखाई नहीं देता है। हमारे पास 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 50 लाख, जिस राज्य में 20,000 करोड़ का निवेश नहीं आने को तैयार था, आज 50 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 15 लाख करोड़ को हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कर लिया है, 7.5 लाख करोड़ हमारे पास तैयार है, उसके लिए कोई तिथि तय करते हुए हम उसको भी ग्राउंड ब्रेकिंग कराने की तैयारी कर रहे हैं। ये है नया यूपी, जिस यूपी में और इसके माध्यम से 65 लाख नौजवानों को हमने यूपी के अंदर ही नौकरी दी है। ये सभी कार्यक्रम आज यूपी के अंदर चल रहे हैं। आज यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल, 2017 के पहले हम लोग भी इस बात को बोलते थे और सोचते थे, मजाक में हम लोग भी कह देते थे, लोग कहते थे यूपी का बॉर्डर कहां से शुरू हो रहा है इस राज्य में। हम कहते थे भाई देखो, सड़क पे चलना है, जहां से गड्ढे प्रारंभ हो जाए मान लेना यूपी का बॉर्डर प्रारंभ हो गया। शाम के समय अगर देर शाम हो गई, जहां से अंधेरा शुरू हो जाए मान लेना यूपी का बॉर्डर शुरू हो गया। आज मैं मानता हूं यूपी के अंदर सड़कें देश के अंदर किसी भी राज्य की तुलना में अच्छी मिलेंगी, सबसे अच्छी सड़कें यूपी की मिलेंगी। भारत की 60% एक्सप्रेस नेटवर्क पर यूपी का अधिकार है आज के दिन पे। सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी के से जुड़े हुए एयरपोर्ट यूपी के पास हैं। आज के दिन पे हम 17 एयरपोर्ट का संचालन कर रहे हैं। जब मैं आया था तब यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 17 संचालित हैं, उनमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन, 17 के पहले एक भी नहीं था, आज 7 सिटी है हमारे पास जहां पे मेट्रो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। ये नया यूपी है। 17 के पहले अगर समाजवादी विकास का मॉडल होता ना,
तो यूपी कब का डूब गया होता? कैसे डूबो रहे थे ये सब? इस सिफाई खानदान कैसे यूपी को तबाह कर रहा था, उसका नमूना हम यहां पर बैठे, इसके ठीक पीछे एक ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, उसको कहते हैं JPNIC, भारत के आजादी के बाद जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ था, जिस महापुरुष के नाम पर हुआ था, ऐसे सरदेव जयप्रकाश जी के नाम पर वह सेंटर बनाया है, इन समाजवादियों ने बनाने का प्रयास किया था। उसकी DPR थी 200 करोड़, 864 करोड़ खर्च हो गए, अभी भी अधूरा। गोमती रिवर फ्रंट के नाम पर इसका जो कुल PPR बना था, वह बना था 167 करोड़ का, खर्च हो गए 1400 करोड़, और कार्य अधूरा। यानी कोई अप्रूवल नहीं, खजाना लुटवाया जा रहा था। एक तरफ गरीब भूख से मर रहा था, गरीब बीमारी से मर रहा था, और दूसरी तरफ खजाने को कैसे लुटवाया जा रहा था। एक अन्य उदाहरण इनकी डकैती का मैं आपको बताना चाहता हूं, वह है यूपी की एक्साइज पॉलिसी का। 2017 में यूपी के अंदर एक्साइज ड्यूटी जो आती थी वह मात्र आती थी 12,000 करोड़ की, और 12,000 करोड़ रुपया ये मिलता था, हाफ करके मिलता था। ये भी हमने पूरी पॉलिसी चेंज की। मैं जानता था ये सब माफिया जकड़े हुए हैं सत्ता को, पूरे उसको हम लोगों ने किया, मैं मानता था। बहुत कठिन था मेरे लिए, हमारी सरकार के लिए कठिन था। सारे हथकंडे उन्होंने अपनाए, हम लोगों ने तब भी उसको लागू कराया। और करवाने के बाद यूपी की आमदनी क्या है इस समय, एक्साइज से यूपी को मिलता है इस समय 63,000 करोड़ रुपए, 63,000, 12,000 करोड़ से आप अनुमान करिए 5 गुना से अधिक एक्साइज ड्यूटी यूपी को आज के दिन पे प्राप्त हो रही है। ये पैसा किसका था? किसी गरीब का, भूख से मरने वाले उस गरीब का पैसा ये समाजवादी डकार जाते थे। किसी छात्र की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी वृद्ध जन की वृद्धावस्था पेंशन का पैसा था, वह पैसा जाता उसको ये लोग किस रूप में डकार जाते थे और कैसे डकैती डालते थे, उसके उदाहरण है। और यूपी के अंदर सुरक्षा नहीं थी, तो यूपी के अंदर जिस राज्य में पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, आज मुझे अच्छा लगता है जब कोई पर्व और त्योहार किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, किसी का भी होता है, और उनका पर्व बहुत अच्छे ढंग से मनता है, वो मनाया जाता है, तो उसके बाद वे आकर के मुझे धन्यवाद देते हैं कि साहब बहुत अच्छा हो गया कार्यक्रम। तो मैं बोलता हूँ यार 9 वर्ष के बाद तो कम से कम धन्यवाद मत दो। तो पहले दिन से हमने तय किया है कि हर पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से होगा, हर पर्व और त्यौहार होगा। अब याद करिए 17 के पहले अभी हमारी कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है। यानी ये लोग क्या करते थे कि उपद्रव को रोकने के लिए ये कहते थे कावड़ यात्रा ही न हो, रामनवमी के ही शोभा यात्राएं न निकले, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन ही न हो, दुर्गा पूजा के पंडाल ही न सजे, इन्होंने बैन कर दिया था। यानी जो लोग कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, जो लोग रामनवमी की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजनों को नहीं होने देते थे, नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों को प्रतिबंधित करते थे, वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। कितना हास्यास्पद है, वह आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई,
वे आज आस्था की बात करते हैं। जिन लोगों ने पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों में नमाज पढ़वा करके पूरे वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास किया, भाई अगर आप सेकुलर थे, एक जगह आप नमाज पढ़वा रहे थे तो किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का भी पाठ करवा देते साथ साथ, दोनों एक साथ होता चलो मान्य हो जाता कि चलो भाई दोनों लोग सहमत हैं, लेकिन ये वन वे चल रहा था, वन वे। वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। तो देश के उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर रहे थे कि साहब राम और कृष्ण हुए ही नहीं, वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो, उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास की, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है, वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं। उस समय कौन कौन से घोटाले नहीं हुए थे, चाहे वह केंद्र की सरकार उस समय की कांग्रेस की रही हो, चाहे यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकारें। अयोध्या की घटना निश्चित ही हम सब की आस्था, हम जैसे राम भक्तों की आस्था को आहत करती है, और ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया, वह एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट को उस पर कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। ट्रस्ट ने अनुरोध किया, गवर्नमेंट ने उस एसआईटी गठित की, एसआईटी की रिपोर्ट आते ही ट्रस्ट ने

नैतिक आधार पर भी दो इस्तीफे और हुए, लेकिन उसके नाम पर अयोध्या को बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि को बदनाम करना, हिंदू आस्था पर प्रहार करना, यह कहां का न्याय संगत है? और इसीलिए आज प्रश्न ये उठता है कि जब ये लोग सत्ता में थे तब आस्था पर प्रहार करते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी की चरम तक पहुंचते थे, हर प्रकार से आस्था को आहत करने वाले कार्य करते थे, और आज यूपी के अंदर जब ये सभी आस्था के केंद्र देश के लिए मॉडल बन रहे हैं और यूपी अपनी उस पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है, अयोध्या में आस्था को भी सम्मान मिला, लेकिन साथ साथ उससे अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई है। मैं मानता हूं समाजवादी पार्टी की यह पीड़ा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज उसी अयोध्या में लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आकर के दर्शन करते हैं और अपनी आस्था का सम्मान पाते हैं। यह आस्था का सम्मान है, लेकिन उससे अर्थव्यवस्था को जो गति मिली है, याद करिए वह गति वही है, चाहे वो फूल बेचने वाला हो, रिक्शा चालक हो, रेस्टोरेंट और चाय बेचने वाला हो, या फिर कोई होटल संचालक हो, कोई टैक्सी संचालक हो, कोई नाविक हो, इन सब की भी तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, इन सबको भी सम्मान मिला है, इन सबको भी पहचान मिला है। महाकुंभ के दौरान एक भव्य और दिव्य कुंभ हुआ, आपने देखा होगा कि अकेले प्रयागराज में 45 दिन के उस आयोजन में एक नाविक परिवार ने 30 करोड़ की इनकम की थी अकेले प्रयागराज में। आपने दृश्य देखा होगा जो समय मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बना था, और वही तो मैं कह रहा हूं इनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि समृद्धि तो जैसे लगता है कि इन दो खानदानों की ही, इन्होंने दो खानदानों ने अपने नाम पे पेटेंट करवा दिया है कि समृद्धि लूट का हो चाहे कैसे भी हो, केवल इन दो खानदानों के हिस्से में आना चाहिए, बाकी लोग विपन्न रहें उसमें इनको अच्छा लगता है। मुझे आश्चर्य होता है किस किस प्रकार से ये लोग माहौल खराब करके वो करते हैं, जिन्होंने जमीनी धरातल को नहीं देखा, जिनको फुर्सत नहीं होती जाने की, एक गरीब की पीड़ा को नहीं समझ सकते। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इन दोनों राजकुमारों ने जहां जन्म लिया है, तो जन्म से दोनों युवराजों ने चांदी की चम्मच से खाने की आदत रही है, देर से सोकर के उठने की आदत रही है, तो उनको सूर्योदय का आनंद नहीं होगा, उनको तो ये उनकी नींद में खलल डालने जैसा होता है। गर्मी कैसे होती है दोनों को नहीं पता है, बरसात की पीड़ा क्या होती है उनको नहीं पता है, क्योंकि दोनों लोग फीफा कप का आनंद लेने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया गया है, कोई यूएस की यात्रा में अपने टूरिस्ट वीजा में गया है। ये पैसा किसका है, किसके पैसे को लेकर के आप ये फॉरेन की यात्रा कर रहे हैं और यहां आईना दिखा करके समाज को बांटने का पाप करते हैं, जातीय खेमों में बांट करके, जाति को जाति से लड़ा करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके सत्ता हत्याने की कुछ सी चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन ये जनता है सब जानती है, आपके सारे करतूतों को जानती है, अब आपको माफ करने वाली नहीं है। और इसीलिए आपके पास आया हूं, और मैं आज इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूं 9 वर्षों की कार्य पद्धति भी, जनता जनार्दन के सामने हमारा रिपोर्ट कार्ड भी पूरी पारदर्शिता के साथ जनता जनार्दन के सामने है। 2003 से लेकर के 2017 के बीच में प्रदेश के अंदर शासन करने वाली समाजवादी पार्टी और अन्य सरकारों की कार्य पद्धतियां भी सबके सामने हैं। जनता जनार्दन फैसला करने को तैयार है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं हम लोगों ने जो कार्य किया

0: और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी और डायनेमिक लीडरशिप में विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का काम किया है। डबल इंजन सरकार का लाभ हम लोगों ने लिया है, मोदी जी का मार्गदर्शन भी है, उनका नेतृत्व भी है, इसमें यूपी सफल हुआ है। और विकसित भारत की उसी संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत का मतलब किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र, किसी भाषा या किसी पार्टी का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का भारत कैसा होना चाहिए जिसमें 140 करोड़ चेहरे पर खुशहाली हो, हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो, हर बहन और हर बेटी स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हो, हर व्यापारी मजबूती के साथ राष्ट्र की जीवन रेखा बन करके अपने आप को आगे बढ़ा सकें। उस नए भारत के निर्माण के लिए हम विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं, और मेरा मानना है विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है। और कोई संदेह नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने सभी लोगों को मौका दिया है। गत वर्ष एक रिकॉर्ड टूटा था, इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है, और पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार यूपी के अंदर हैट्रिक लगाएगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं इंडिया टुडे ग्रुप को और इस प्रतिष्ठित चैनल आज तक को इस पंचायत उत्तर प्रदेश के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं।
1: अब खबर देश की राजनीति में होती हलचल की। मॉनसून सत्र से पहले बड़ा पावर गेम खेला जा रहा है। शरद पवार की पार्टी ने लोकसभा में परिसीमन बिल का समर्थन करने के संकेत दिए हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर शरद पवार के 8 सांसदों से मोदी सरकार के लोकसभा में 2/3 बहुमत के मिशन को मजबूती मिलेगी।
2: ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था, और इसको हमने हरा दिया है।
3: ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है, ये हमने रोक दिया है।
4: इंडिया गठबंधन की जिस एकता के दम पर राहुल गांधी ने अप्रैल महीने में नरेंद्र मोदी सरकार को संसद में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधन बिल पर हराने का दावा किया, क्या वो एकता मानसून सत्र शुरू होने से पहले तार तार होने लगी है?
5: There is nothing permanent in politics ever for anybody for that matter.
4: टीएमसी और उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या शरद पवार और एम के स्टालिन की पार्टी का भी स्टैंड बदलेगा? 20 जुलाई को शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले शरद पवार को लेकर पहली बार पुख्ता संकेत मिला। शरद पवार की बेटी और पार्टी सांसद सुप्रिया सुले इशारा करती दिखी हैं कि वो एनडीए के परिसीमन बिल को समर्थन कर सकती हैं।
5: We will consider, provided, consider, इंग्रजी में रिपीट करती है, consider supporting if the 50% cap is to be discussed and the bill, how will it be implemented is still a question.
4: अप्रैल में ये बिल संसद में गिर गया था क्योंकि मोदी सरकार 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई, लेकिन इस बिल पर शरद पवार की एनसीपी सुर बदलती है तो सरकार कि 2/3 वाले बहुमत के मिशन को नई ताकत मिल जाएगी।
5: किरण रिजिजू यानी अरविंद सावंत जी शिवसेना, असद ओवेसी भाई, असद भाईना माला आणि अरविंद सावंतांना आम्हाला तिघांना त्यांनी बोलवलं दिल्ली। त्या मीटिंग मध्ये या देशाचे गृहमंत्री माननीय अमित भाई शाही होते, त्यांनी आम्हाला सगळ्यांना असं ब्रीफिंग किरण रिजिजूंनी केलं दिल्ली मध्ये की आमचं सपाशी, काँग्रेसशी, डीएमकेशी सगळ्यांचं वेगळं वेगळं बोलणं झालंय, आम्ही तुम्हाला तिघांना एकत्र बोलवलेलं आहे। तर अमित भाई शाह आणि किरण रिजिजूंनी असा एक प्रस्ताव आमच्या समोर ठेवला की आपण सरसकट काश्मीर टू कन्याकुमारी प्रत्येक राज्यामध्ये 50% सीट वाढतील। म्हणून खडगे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही एक पत्र लिहिलं सरकारला की बाबा जो काही प्रस्ताव आहे हा आम्हाला बरा वाटतोय, करायचा असेल, कारण का डिलिमिटेशनचं बिल ह्या वर्षी ड्यू आहे, कुठल्याही राज्यावर अन्याय होऊ नये, डिलिमिटेशन व्हावं।
4: सुप्रिया सुले की ये शब्द पहले से सरकार मानने को तैयार है। आपको याद होगा कि विपक्ष का समर्थन जुटाने के लिए अप्रैल महीने में अमित शाह ने सदन के अंदर ही विपक्ष की इस चिंता को घंटे भर के भीतर दूर करने का ऑफर तक दे दिया था।
6: अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो एक घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं माननीय, मगर बिल पारित करने का वो बाधा था।
4: अप्रैल में जरूर हार हुई, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार इस बिल को पास करवाने के लिए बहुमत जुटाया जा रहा है। इसीलिए परिसीमन जैसे अहम मुद्दे पर अगर इंडिया गठबंधन में शामिल एनसीपी का सत्र से पहले समर्थन मिलता है तो ये काफी अहम बात होगी, क्योंकि शरद पवार को लेकर चर्चा यहां तक चल रही है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह एनसीपी शरद गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल का पहले शरद पवार और फिर देवेंद्र फडणवीस से मिलना है।
5: जयंत राव काल ऑफिशियली माननीय मुख्यमंत्र्यांचा वेळ मागून गेले होते। माननीय मुख्यमंत्र्यांना ते हे सांगायला गेले होते की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार ह्याचा नगराध्यक्ष आहे, त्या नगराध्यक्षावर चुकीच्या पद्धतीने ऍक्शन घेतलेली आहे, बरोबर ऍक्शनचा टायमिंग बघा।
4: तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल चल रहा है। रात में जयंत पाटिल देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं, तो दिल्ली में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात होती है। इस दौरान शिवसेना यूबीटी छोड़कर आए 6 सांसद मौजूद होते हैं और अगली सुबह शरद पवार की पार्टी परिसीमन बिल पर सरकार के करीब आती दिखती है। अब सवाल डीएमके को लेकर है, जिसे साधने के लिए सरकार 50% सीटें बढ़ाने को पहले से तैयार है। डीएमके के पास 22 सांसद लोकसभा में हैं, जिन्हें मनाने की कोशिश सरकार की तरफ से अप्रैल के बाद से ही तेज कर दी गई थी।
5: तर डीएमके ऐसा विचार करायला मी हो म्हणलेले नाही।
4: शरद पवार को साधने की बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन ये सब कांग्रेस को रास नहीं आ रहा और पी चिदम्बरम जैसे नेता ऐसा होने पर विश्वासघात की बात कर रहे हैं। सवाल है कि क्या इसके पीछे पवार के एनडीए में जाने का डर है?
5: पक्ष एका डायरेक्शन ने काम करतो, सगले 24/7 आदरणीय पवार साहेबांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतात।
4: जानकारों को लगता है कि शरद पवार ने बिना इंडिया गठबंधन छोड़े और एनडीए में शामिल हुए बड़ा दांव खेला है। इसकी सबसे बड़ी वजह उद्धव की पार्टी की तरह अपनी पार्टी को टूटने से बचाना है। भले ही सुप्रिया सुले बिल देखकर समर्थन देने की बात कर रही हो, लेकिन उनकी शर्त को तो सरकार पहले ही पूरा करने को तैयार है, इसीलिए उनके समर्थन को औपचारिक माना जा रहा है।
1: तो क्या शरद पवार ने लोकसभा में परिसीमन बिल को समर्थन का संकेत देकर अपने सियासी हित साध लिए हैं? क्या उन्होंने ऐसा अपनी पार्टी में फूट को रोकने के लिए किया? क्योंकि उद्धव ठाकरे का उदाहरण सामने है, जिनके 8 में से 6 सांसदों को तोड़कर एनडीए का आंकड़ा लोकसभा में 360 के लक्ष्य के पहले से नजदीक पहुंच गया। लेकिन अगर पवार के बाद डीएमके भी सरकार को समर्थन देने का संकेत देती दिखी तो सरकार का मिशन इम्पॉसिबल बड़े आराम से पूरा हो सकता है।
7: सिर्फ वक्त का इंतजार है, हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए।
4: 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान में 131वां संशोधन बिल वोटिंग के बाद जब गिरा, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो अब होता दिख रहा है। अप्रैल में बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, विरोध में 230 वोट पड़े। तब मोदी सरकार को उपस्थित 528 सांसदों में 352 सांसदों का समर्थन चाहिए था, जो विपक्षी एकता के चलते नहीं मिल पाया था। लेकिन तब 298 सांसदों का साथ लोकसभा में एनडीए को मिला। अब आज के सियासी माहौल में इसी नंबर को आधार बनाकर चले तो 540 सांसदों की लोकसभा में जहां 2/3 बहुमत 360 का चाहिए, वहां अप्रैल तक एनडीए 298 सांसद तक पहुंचा हुआ है। लेकिन मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार अपने मिशन 360 के बेहद करीब पहुंच गई है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के बागियों का बड़ा रोल है।
8: बहुत महत्वपूर्ण बिल आने की बात चल रही है, हो सकता है कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण का बिल भी आ जाए, पहले भी आया था। जब आता है महिला आरक्षण का तो आप समर्थन करेंगे सरकार का?
9: महिला के साथ हम सब हर वक्त है, जो केंद्रीय सरकार है महिलाओं के लिए काफी काम कर रहे हैं, हमारे राज्य सरकार अन्नपूर्णा भंडार से काफी काम कर रहे हैं, हम भी उनके साथ ही रहेंगे।
4: तृणमूल कांग्रेस की बगावत से पहले ये बड़ा सवाल था कि लोकसभा के भीतर मोदी सरकार 298 सांसदों के समर्थन के साथ 62 सांसदों का अतिरिक्त योग कैसे जोड़ेगी, लेकिन अब इस सवाल से पर्दा धीरे धीरे उठता दिखने लगा, क्योंकि पिछली बार 298 सांसदों का समर्थन सरकार दोबारा जुटा लेती है तो उसके साथ जुड़े तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसद, उद्धव गुट से शिंदे की शिवसेना में आए 6 सांसद और एनसीपी पवार गुट के 8 सांसदों का समर्थन जोड़े तो ये 332 होता है। इसमें अगर 22 सांसद डीएमके के भी समर्थन करते हैं तो 360 के नंबर से सिर्फ 6 सांसद कम पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में अगर कुछ छोटे दल गैर हाजिर भी हो जाए तो फिर बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा और सरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, जिस बिल को सरकार जल्द से जल्द पास करा लेना चाहती है।
10: कुछ ऐसे बिल जिस पर आप लोगों ने कोशिश की लाने की लेकिन आगे नहीं हुआ, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि उस पर बनेगी बात? डिलिमिटेशन हो गया, महिला आरक्षण हो गया।
11: देखिए, मैं ये पारित क्यों नहीं हुए मुझे इस बात पे भी आश्चर्य है। अब ये वही राजनीति है जहां पे आप फॉल्स नैरेटिव आप सेट करना चाहते हैं। पिछले सेशन में जब हम लोग इसको पारित करना चाहते थे तो उस वक्त यही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे दलों ने एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया कि इसकी आड़ में ये करना चाहते हैं, उसकी आड़ में वो करना चाहते हैं, महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। तो प्रभु, डिलिमिटेशन आज नहीं तो कल आपको करना है ना।
4: विपक्ष में जिस तरह से टूट हो रही है, दशकों की करीबी को विधायक और सांसद मिनटों में छोड़ रहे हैं, उससे विपक्ष को झटके पर झटके लगते हैं। मदन मित्रा का उदाहरण अब सामने, जो ममता बनर्जी के करीबी विधायक रहे, मंत्री ममता सरकार में रहे, कुछ दिन पहले तक पार्टी के साथ रहने का दावा करते नहीं थकते थे, लेकिन अचानक ऋतव्रत बनर्जी गुट के साथ आ गए। हालांकि उनके साथी नेताओं का आरोप है कि बीवी और बेटे को ईडी का समन मिलने से मदन मित्रा का मन बदला है।
12: पार्टी डूब जा रहा है, नाव डूब गया है, करोड़ों आदमी मर रहे हैं, फिर भी एक आदमी के लिए पार्टी ये मान नहीं पड़ा कि नहीं, सबको मरने दीजिए लेकिन अभिषेक को बचाना है, ये बड़ी दुख की बात है।
4: मदन मित्रा शारदा चिटफंड घोटाले में 22 महीने तक जेल में रह चुके हैं, फिर भी उन्होंने ममता का साथ नहीं छोड़ा था। बंगाल में सत्ता बदलने के बाद भी वो ममता के साथ रहने का दावा करते रहे, लेकिन अचानक उन्होंने पाला बदल कर ममता को और कमजोर कर दिया।
13: একজন আজও চলে গেছে, আমার কোনো দুঃখ নেই, কারণ সে আমাকে কালকেই মেসেজ দিয়ে বলেছিল যে আমার পরিবারের সকলকে সামন দিয়েছে ইডি। তখনই আমি বুঝে গেছিলাম, তখনই কাজে মিথ্যে কথা বলে চাতুরি করার কেউ চেষ্টা করবেন না, যাদের যেতে হয় যান।
4: রাজ্যও কি তারা কেন্দ্র মে বিপক্ষী দলো মে হতি টুট মোদি সরকার কো মজবুত কর রহি হ্যায়। দো তিহাই বহুমত মিলনে পর সরকার বিনা কিসি অড়ঙ্গে কে আপনে এজেন্ডে কো পুরা কর সকতি হ্যায়।
1: खबर अब पंजाब से, जहां दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार स्कूल क्रांति के दावे करती रही। वहां पता चला कि बिजली का बिल नहीं भरने से लुधियाना के सरकारी स्कूल की ही बिजली काट दी गई, बच्चे अंधेरे में पढ़ते रहे। इसी स्कूल में एक ही हॉल में 5वीं तक की क्लास चलती है।
14: मैं क्लास जावड़िया, मैं कभी पूछने लग गया मैं की बने, कोई कहंदा जी डॉक्टर बनूंगा, कोई कहंदा इंजीनियर, एक कहंदा मुख्यमंत्री बनूंगा जी मैं। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨੇਤਾ ਚੁਣੂਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖ ਬੱਚੇ ਦਾ।
4: काश पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थोड़ा सा वक्त निकालकर लुधियाना के सरकारी स्कूल तक का दौरा कर लेते तो फिर बच्चों के कॉन्फिडेंस को किस तरह से हिला दिया जा रहा है उन्हें पता चल जाता मुख्यमंत्री और पंजाब की सरकार को कि स्कूल बिना बिजली के कैसे चलते हैं, जहां पंखे हैं लेकिन चल नहीं पाते। वजह समराला चौक के सरकारी प्राइमरी स्कूल की बिजली का कट जाना है, क्योंकि बिजली का बिल जमा नहीं था। सोचिए स्कूल की यह हालत है, बाकी का क्या होगा। जहां आज तक की टीम पहुंची, पता चला अब 2 दिन बाद जाकर स्कूल की बिजली वापस चालू कर दी गई। लेकिन लुधियाना के सरकारी प्राइमरी स्कूल का हाल देखिए, सॉरी हॉल देखिए, जहां एक हॉल के भीतर ये एक क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, ये चौथी, ये पांचवी, और इसी हॉल के भीतर पता चला नर्सरी से 5वीं तक की कुल 8 क्लास एक साथ चलाई जाती हैं, जहां रसोई घर भी है और बाथरूम, जहां मुस्कुराते हुए भीतर मुख्यमंत्री भगवंत मान का पोस्टर भी लगा है। लेकिन काश मुख्यमंत्री आकर यहां का हाल और हॉल दोनों देख पाते।
2: लाखों करोड़ों रुपए का फंड जो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च किया जा रहा है। इस एजुकेशन सिस्टम का असली चेहरा क्या है, आज हम आपको दिखाते हैं। लुधियाना के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में हम मौजूद हैं, जहां पे एक ही हॉल के अंदर नर्सरी से लेकर पांचवी तक के बच्चों की सभी क्लासें एक ही हॉल के अंदर लगाई जा रही हैं।
15: इन्हां नूं असीं सुखाम माहौल नहीं दे सकदे जिहड़ा मिलना चाहीदा वा। मेन दिक्कत सानूं बिल्डिंग दी हैगी आ, ते सरकार कोलों असीं इही मंग करांगे कि सानूं जल्दी तो जल्दी एक बिल्डिंग प्रोवाइड होवे।
16: आपकी तरफ से ये ध्यान में आया मेरे, तो इस पर हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा ये भी जानने की जरूरत है।
4: सवाल है कि फाइलों में स्कूल शिक्षा में नंबर वन खुद को कहने वाले पंजाब की हकीकत पता नहीं दिखती नहीं है या फिर देखी ही नहीं जाती है।
1: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
20: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
21: आगे आगे
22: उधर उधर
21: करेक्ट करेक्ट
23: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
24: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
25: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
24: छक्का?
25: सब कैशलेस हो गया है।
24: हाँ, ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ। तू
26: बिलोटे चार्ज हुआ यार।
27: ला बैट किसका है?
28: टाटा AIG है तो भरोसा है।
29: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Ready for the next big IPO? Apply for it on Grow. Open your free DMAT account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Grow now for stocks, mutual funds and IPOs.
3: Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
4: ये देखो, एक investment guru के tip से पैसे double होंगे। बस offer claim करना है।
5: पैसे double? ऐसे कोई भी group से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
6: वाह वाह वाह वाह।
5: सेबी और एनएससी का कहना है, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
7: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
8: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
10: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
11: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
12: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
13: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
14: वी आर ओवर जिमी।
15: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
16: आगे आगे।
17: अरे उधर
16: उधर गया।
17: करेक्ट करेक्ट।
18: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
20: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
21: Right field, and it will...
20: From the first pitch of the season to the stretch run.
21: And that's the ball game.
20: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
16: आगे आगे।
17: अरे उधर
16: उधर गया।
17: करेक्ट करेक्ट।
18: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
22: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
14: We are over, Jimmy.
15: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
16: आगे आगे।
17: अरे उधर
16: उधर गया। करेक्ट करेक्ट।
18: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: Ready for the next big IPO? Apply for it on Grow. Open your free DMAT account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Grow now for stocks, mutual funds and IPOs.
3: Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
23: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
0: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना,
1: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
4: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे,
23: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
5: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम,
24: इन एसोसिएशन विद
25: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
26: ऐसे पोस्टर्स यूपी के अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं। एक पोस्टर में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव हैं, इसमें लिखा है मुलायम सरकार की असलियत। दूसरे पोस्टर में अखिलेश शिवपाल और राम गोपाल यादव की तस्वीरें हैं, इसमें लिखा गया है दिल में बाबर मुंह में राम। ऐसे पोस्टर्स लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और अयोध्या में लगाए गए हैं।
27: जैसे चुनाव नजदीक आएगा सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, प्रायर पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे।
26: इस सियासत से इतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है। खबर है कि मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक जाहिर किया था। कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रसीद नहीं दी गई। आरोप ये भी है कि उनकी दी गई भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित या सुरक्षित नहीं रखी गई। अब इन वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। खबर ये भी है कि चढ़ावा चोरी की जाँच के लिए गठित SIT की टीम जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। आज तक ब्यूरो

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और ब्लैक एंड व्हाइट में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले आपको पीओके में पाकिस्तान के सेना की वो बर्बरता दिखाएंगे जिसने पीओके को जलियांवाला बाग बना दिया। जनरल डायर बने मुनीर की सेना ने सस्ती बिजली, आटा और रोजगार मांगने वाले लोगों पर सीधे गोलियां बरसाई और 9 लोगों की हत्या कर दी। इस बर्बरता के बावजूद पीओके में हजारों लोग सड़कों पर हैं और आजादी के नारे वहां सड़कों पर गूंज रहे हैं। आज सवाल यह है कि गजा पर रोने वाले लोग पीओके के मुसलमानों पर आखिर खामोश क्यों हैं? इसके बाद आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ फॉर्मूस में 20% वसूली वाली बात से यू टर्न क्यों ले लिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में एक बार फिर से पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाने की धमकी दी है, लेकिन बार बार के यू टर्न के चलते ईरान ने अब इन चेतावनियों को गंभीरता से लेना ही छोड़ दिया है, क्योंकि वो धमकी देते हैं और बार बार पीछे हट जाते हैं। इसके बाद आपको इंग्लैंड के पीटरबोरो शहर में लिए चलेंगे, जहां पर एक 40 साल पुराने भगवान श्री राम के मंदिर को हटाने की तैयारियां हो रही हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर की जगह को अब एक मस्जिद बनाने के लिए बेचा जा रहा है। ये उस शहर की कहानी है जहां पहले से 19 मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन एकमात्र हिंदू मंदिर को सिर्फ इसलिए नीलाम कर दिया गया क्योंकि स्थानीय प्रशासन को एक इस्लामिक संस्था से ज्यादा पैसे मिल रहे थे। आखिर में आपको बताएंगे फीफा वर्ल्ड कप में आज रात सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं है बल्कि एक जंग होने जा रहे हैं। आखिर क्यों इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच में होने वाला यह सेमीफाइनल मुकाबला कड़वाहट और बदले का मैच बन चुका है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की क्रूर सेना ने पीओके को जलियांवाला बाग बना दिया और आसिम मुनीर खुद जनरल डायर बन गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो लोग सस्ती बिजली, आटा और नौकरियों की मांग कर रहे थे, उन पर पुंछ डिवीजन में पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों ने कल रात बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, बर्बरता दिखाई और 9 लोगों को गोलियों से भूनकर मार डाला, उनकी हत्या कर दी। पीओके के लोगों पर यह अत्याचार सिर्फ इसलिए किया गया ताकि वो अपने मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च को स्थगित कर दें, लेकिन जनरल डायर बना आसिम मुनीर ऐसा करके भी कामयाब नहीं हुआ। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो पाकिस्तानी सेना के क्रूरता के बाद भी बड़ी संख्या में लोग आपको यहां सड़कों पर उतरे हुए दिखाई देंगे जो विरोध कर रहे हैं, मुखर हो रहे हैं। और रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लोगों ने सेना और सरकार को यह कहते हुए ललकारा कि अब वो इस जुल्म को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अब और सहेंगे नहीं। बड़ी बात इसमें यह है कि आसिम मुनीर ने हजारों जवानों को पीओके में तैनात किया है, लेकिन इसके बावजूद पीओके के लोगों ने अपना आंदोलन स्थगित नहीं किया है, वड़े हुए हैं, वो खड़े हैं। 9 लोगों की हत्या के बाद भी सरकार और सेना का विद्रोह करने के लिए लॉन्ग मार्च निकाला गया और इसमें भी पीओके की आजादी के नारे लगाए गए। और यकीन मानिए, पीओके में इस बार जो हो रहा है वो पहले हुए तमाम आंदोलन से बिल्कुल अलग है, जुदा है। आसिम मुनीर को डर है कि यह विद्रोह पीओके को पाकिस्तान से आजाद कराने की नींव भी बन सकता है।
1: एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है। ये वतन
0: सोचिए, जो पाकिस्तान ईरान युद्ध में मध्यस्थता की कोशिशें करके खुद को शांति दूत साबित कर रहा था, उस पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है? असली चेहरा यह है कि पीओके के लोगों को वो बेरहमी से मार रहा है, उन पर जुल्म कर रहा है और तब मार रहा है जब ये लोग भी मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं। लेकिन इन मुसलमानों के मानवाधिकारों की बात करने वाला कोई भी नहीं है, कोई नहीं। अगर होता तो शायद संयुक्त राष्ट्र में आज पीओके के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाया गया होता, ठीक उसी तरह जैसे गजा के मुद्दे पर बुलाया गया था। और यहां तो ये भी देखिए अब कि इन लोगों की आखिर मांगे क्या है। ये लोग तो पिछले साल जो मुजफ्फराबाद समझौता हुआ था उसे ही लागू करने की मांग कर रहे हैं, जो कि यह कहता है कि जिस पीओके से पूरे पाकिस्तान को 10-15% तक बिजली मिलती है उस पीओके के साथ इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, उसे न सिर्फ पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिए बल्कि बिजली को सस्ती दरों पर उपलब्ध भी करवाना चाहिए। और यह कोई गैर वाजिब मांग है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बड़ी साधारण सी मांग है। अगर पाकिस्तान को 10-15% बिजली पीओके से मिलती है तो इतना तो वहां के मुसलमानों का हक बनता है कि उनके घरों में भी यह बिजली पहुंचे। लेकिन आसिम मुनीर को यह मांग बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। इसी समझौते में यह भी लिखा हुआ है कि पीओके के लोगों को गेहूं और अनाज पर सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि ये लोग सस्ता अनाज मांग रहे हैं और इन्हें गोलियां मिल रही हैं, जबकि ये गोलियां अनाज पर दी जाने वाली सब्सिडी से सस्ती नहीं होगी, महंगी ही होगी। लेकिन इन मूलभूत मांगों के लिए पाकिस्तान की सेना और सरकार पीओके के लोगों का दमन कर रही है, उन्हें कुचल रही है, और पूरी दुनिया इस पर खामोश है, चुप है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, यानी कि वहां की सरकार यह ढोंग करती है कि उसने पीओके को शासन व्यवस्था अधिकारों की आजादी दी है और इसी आधार पर पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर का राग अलापता है। लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान के उस कड़वे इतिहास का एक रिविजन कराना चाहते हैं। विभाजन के समय साल 1947 में जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत थी, ये आप सब जानते हैं। वो अलग रियासत थी और उसके शासक थे महाराजा हरि सिंह। उस समय जम्मू कश्मीर ने शुरुआत में भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग रहने की कोशिश की, लेकिन अक्टूबर 1947 में परिस्थिति बदल गई। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की ओर से आए कबायली लड़ाकू ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया, उन्होंने हमला कर दिया और उस वक्त हमलावर तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। और इस संकट के बीच में महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी, जबकि भारत की तत्कालीन सरकार ने सहायता देने से पहले जम्मू कश्मीर रियासत के भारत में कानूनी विलय की मांग रखी। ये बिल्कुल सीधी मांग थी। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने इसे स्वीकार किया और भारतीय सेना जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए पहुंच गई। विलय पत्र के तहत पूरा जम्मू कश्मीर हमारा था, पूरा, लेकिन पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने जिन इलाकों पर उस समय कब्जा किया था उसके कारण कश्मीर का एक हिस्सा उस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। लेकिन इन सारी बातों में एक विडंबना ऐसी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो आपको सुननी चाहिए। जम्मू कश्मीर के विलय से पहले जिन कबायली लड़ाकों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था उन लड़ाकों में पुंछ के सुधन समुदाय के लोग शामिल थे। इन लोगों ने तब पाकिस्तान के लिए कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा किया, किसके लिए? पाकिस्तान के। लेकिन बहुत जल्द पीओके पर कब्जा करने वाले इन्हीं लड़ाकों के साथ पाकिस्तान में गद्दारी हो गई। विभाजन के सिर्फ 8 साल के बाद पीओके के पुंछ में एक बहुत बड़ा जन विद्रोह भड़का जिसे पुंछ अपराइजिंग कहा गया। इस विद्रोह का कारण यह था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर घोषित करके अच्छा खासा ढोंग किया गया, लेकिन जमीनी हालात ये थे कि कब्जा करने वाले लोगों की पीओके में एक नहीं चल रही थी, यानी कि कोई भी उनकी नहीं सुन रहा था। इन लोगों के नेता सरदार इब्राहिम खान थे जो आजाद कश्मीर की सरकार के पहले बड़े नेता बने, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को उन पर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, इसलिए उनकी सरकार को हटा दिया गया। 1955 तक तनाव इतना बढ़ गया कि स्थानीय मुसलमानों और पाकिस्तान समर्थित सुरक्षा बलों के बीच में टकराव शुरू हो गया, ठीक वैसा ही टकराव जैसा आज इस समय हो रहा है। और उस वक्त भी पीओके के लोग अपने हक, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, और आज भी 2026 में कहानी ज्यादा बदली नहीं है, वो आज भी लड़ी रहे हैं, आज भी मांग ही कर रहे हैं, बोल के लब आजाद हैं तेरे कह रहे हैं। पीओके के लोग वही मांगे कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान उन्हें आज तक सिर्फ और सिर्फ झूठ और झूठ देता रहा है, उनको सिर्फ पाकिस्तान से अन्याय मिला है, बर्बरता क्रूरता मिली है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पीओके और बदलते जम्मू कश्मीर की एक तुलना देख लीजिए, क्या बदलाव दोनों में आए हैं वो आप समझ जाएंगे। हमारे जम्मू कश्मीर का सालाना बजट 1,13,000 करोड़ रुपए का है, जबकि पीओके का बजट सिर्फ 9,885 करोड़ का है, यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर के एक साल के बजट में पीओके का 11 साल का बजट समा सकता है। और ये अंतर यहीं पर खत्म नहीं होता, पहले तो देखिए कितना बड़ा अंतर है, लेकिन अंतर यहीं तक सीमित नहीं है। जम्मू कश्मीर की जीडीपी 2,86,000 करोड़ रुपए की है, जबकि पीओके की जीडीपी सिर्फ 58,000 करोड़ की है। और यहां भी अंतर किसी गहरी खाई के जैसा ही नजर आता है। जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,68,000 रुपए है, जबकि पीओके में यही प्रति व्यक्ति सालाना आय पर कैपिटल इनकम 1,20,000 रुपए है। जम्मू कश्मीर में महंगाई दर 3.47% है, जबकि पीओके में यही महंगाई दर 11.1% है, जो पूरे भारत के महंगाई दर से भी कहीं ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 4.8% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जबकि पीओके की 40% आबादी गरीबी और भुखमरी से जूझ रही है। इस समय पीओके में जो लोग आज तक देख रहे हैं उन्हें भी यह अंतर देखना चाहिए, और देखना चाहिए कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है, हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो कितना संपन्न हो गया है। जम्मू कश्मीर में लोगों को 200 यूनिट तक प्रत्येक यूनिट के लिए 2.30 रुपए देने होते हैं, लेकिन पीओके में यही एक यूनिट बिजली 30 रुपए की है, 30 रुपए की। और वहां यह आंदोलन सस्ती बिजली के लिए ही हो रहा है कि हम ही से बिजली ले रहे हो, यही पावर प्लांट लगा रहे हो, लेकिन हम ही महंगी बिजली दे रहे हो और कई बार दे ही नहीं रहे हो, घरों में बिजली ही नहीं पहुंच रही। अब आप इसे समझ सकते हैं कि जब पीओके के पास अपना संविधान, अपना राष्ट्रपति, अपना प्रधानमंत्री, अपनी विधानसभा और अपना सुप्रीम कोर्ट है, तब भी वहां के लोग आजादी क्यों चाहते हैं। और क्यों कहा जा रहा है कि 1971 में जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग भड़की थी, ठीक उसी तरह की आग अब पीओके में भड़क रही है।
2: इस मुद्दे पर हम लोगों ने पिछले प्रेसर में भी हम लोगों ने बयान जारी किया था। देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीज़ों को रोका गया है, इंटरनेट ब्लैकआउट को लागू किया गया है और निहत्थे नागरिकों पर के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घोर दुर्व्यवहारों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराएगी।
0: आज ये समझना भी जरूरी है कि जब पीओके में मुसलमानों पर जुल्म होता है, या बलूचिस्तान में मुसलमानों की हत्याएं की जाती हैं, या अफगानिस्तान में मुसलमानों पर बारूद बरसाया जाता है, या चीन जैसे देश में उइगर मुसलमानों का दमन होता है, तो इन मुसलमानों की कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन जब इसराइल गजा में हमले करता है तो गजा के मुसलमानों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चिंताएं जताई जाती हैं, और न सिर्फ चिंता जताई जाती है, खूब प्रदर्शन होते हैं, उनके लिए आर्थिक मदद जुटाई जाती है, और गजा के मुसलमानों से हमदर्दी जताते हुए कई देश अपने विदेश मंत्रालयों से बयान जारी करवाते हैं कि हमें तो इसमें कोई एतराज नहीं है। हमारा सवाल तो यह है कि गजा के मुसलमानों में और बलूचिस्तान, पीओके और अफगानिस्तान के मुसलमानों में अंतर क्यों किया जाता है? क्यों नहीं गजा की तरह पीओके के मुसलमानों के मानव अधिकारों पर चर्चा होती है? और यह भेदभाव क्यों है? और क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मुसलमान अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम राजनीति में फिट नहीं बैठते हैं? और आप इसे इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में नॉर्वे की टीम पहली बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए अक्टूबर 2025 में नॉर्वे का मुकाबला इसराइल की टीम के साथ होना था, तब नॉर्वे फुटबॉल महासंघ ने यह ऐलान किया था, यह घोषणा की थी कि वो इस मैच से होने वाली आमदनी से गजा के मुसलमानों की मदद करेंगे। और आप इससे समझ पाएंगे कि गजा को लेकर पूरी दुनिया के मानवाधिकार चैंपियन एक्टिव रहते हैं, लेकिन आज जब पीओके में मुसलमानों को गोलियों से भूना जा रहा है, कत्लेआम मचाया जा रहा है, रक्त से आप कह सकते हैं कि सड़कों को सींचा जा रहा है वहां के लोगों के, या बलूचिस्तान, अफगानिस्तान या चीन में उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लग रहा है, तो वहां पर कोई भी मुसलमानों की बात नहीं करता, और इसी को कहते हैं दोहरा मापदंड। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको यह बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर ईरान से चाहते क्या है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को यह धमकी दी है कि अगर ईरान समझौते के लिए आगे नहीं आया तो अगले हफ्ते उसके पावर प्लांट्स, उसके बड़े बड़े पुलों को निशाना बनाया जाएगा। और यह वही धमकी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल के महीने में भी सीज फायर पर सहमति बनने से पहले दी थी, और बाद में वो फिर अपने बयान से पलट भी गए थे। एक बार फिर से राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप जब भी इस तरह से यूटर्न लेते हैं या धमकी देने के बाद पीछे हट जाते हैं तो दुनिया इसे उनकी मैडमैन थ्योरी बताती है। यह वही कूटनीतिक रणनीति है जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने शीत युद्ध के दौरान लोकप्रिय बनाया था। अब इस सिद्धांत का अर्थ है कि एक नेता जानबूझकर अपने विरोधियों के सामने खुद को ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा आक्रामक, अप्रत्याशित और मैडमैन के रूप में पेश करता है ताकि इससे विरोधी देश डर जाएं या दबाव में आ जाएं। और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी बिल्कुल यही कहा जाता है कि वो इसी रणनीति को अपनाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों से ईरान दबाव में आ जाता, जबकि ईरान में तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का कोई ज्यादा असर दिखता नहीं है, बल्कि ईरान ने तो ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से लेना ही बंद कर दिया है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों में अब गंभीरता और संजीदगी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 20% टोल वसूलने की बात कही थी, लेकिन अपने इस बयान पर वो 24 घंटे में नहीं टिक सके और अब वो ईरान के पावर प्लांट्स और बड़े पुलों को निशाना बनाने की धमकी दे रहे हैं, जबकि ये धमकी इससे पहले उन्होंने इसी युद्ध में 3 बार दी और हर बार इस धमकी को वापस भी ले लिया। अब आप खुद सोचिए कि जब इस युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप कई बार अपने बयानों से पलट चुके हैं तो ईरान पर उनकी धमकियों का असर क्यों ही होगा, मतलब क्यों ही वो गंभीरता से इन धमकियों को लेगा। और अभी ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बावजूद अपने हमलों को जारी रखा हुआ है। अमेरिका ने लगातार 4th रात भी ईरान पर 7 घंटे तक हमले किए हैं और यह युद्ध फिर से वहीं पहुंच गया है जहां पर 7 अप्रैल से पहले युद्ध खड़ा था।

0: खैर, पाकिस्तान ने इस युद्ध में जो सीज फायर कराया उसका नतीजा तो पूरी दुनिया देख ही रही है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि जब भारत इस तरह के युद्ध में शांति का प्रयास करता है तो उनका क्या असर होता है, क्या इम्पैक्ट होता है। साल 2022 में जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका था और दुनिया को डर था कि कहीं ये जंग परमाणु हथियारों तक न पहुंच जाए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई थी। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की, उन्हें परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कहा था और बाद में रूस ने ऐसा कोई भी हमला नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिनकी बात राष्ट्रपति पुतिन गंभीरता से सुनते हैं और इसकी वजह दोनों देशों के पुराने संबंध और मित्रता है। यहां पोलैंड के उप विदेश मंत्री जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो साल 2022 की है। उस वक्त एक तरफ यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों से बड़ी मात्रा में हथियार, सैन्य मदद मिल रही थी और यूक्रेन ने कई इलाकों में रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसी के बाद रूस के कुछ नेताओं ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी भी दी थी और सबसे ज्यादा चिंता टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि छोटे स्तर पर इस्तेमाल किए जाने वाले परमाणु हथियारों को लेकर थी। डर यह था कि अगर रूस को युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ तो वो सीमित परमाणु हमला कर सकता है, लेकिन बाद में ऐसा कोई भी हमला नहीं हुआ और माना जा रहा है कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी थे। उस वक्त उज़्बेकिस्तान के समरकंद में हुए एसईओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इस बयान की पूरी दुनिया में काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। कई देशों ने रूस के लिए इसे एक महत्वपूर्ण संदेश भी माना था और बड़ी बात यह है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने बिल्कुल संतुलित नीति अपनाई। भारत ने न तो रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों की तरफ बिल्कुल कड़े प्रतिबंध लगाए, न ही रूस के हर कदम का भारत ने आंख मूंद कर समर्थन कर दिया हो, तटस्थ कह सकते हैं आप। यही नहीं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी कई मौकों पर संतुलित रुख अपनाया है। भारत से तेल खरीदना भारत ने जो है रूस से जारी रखा। रूस और यूक्रेन दोनों से बातचीत बनाए रखी और शांति और कूटनीतिक समाधान की भी भारत लगातार अपील करता रहा। इस दौरान भारत का तर्क यही था कि विदेश नीति देश के राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होती है और प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन से नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बात की। और अब पोलैंड के उप विदेश मंत्री जो बात कह रहे हैं उससे यह पता चलता है कि भारत और रूस की दोस्ती भरोसे पर टिकी है और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने एक दूसरे के साथ ऐसा संतुलन बिठाया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से कुछ कहते हैं तो वो इसे गंभीरता से लेते हैं और सिर्फ गंभीरता से लेते ही नहीं उस पर अमल भी करते हैं।
1: I mentioned that on Indian television that he was one of the two people who called President Putin to not to attempt to use tactical nuclear weapons on the territory of Ukraine in 2022. And I think he has definitely a role to play trying to make President Putin come to his senses, because Russia is not going to win the war in Ukraine. So Prime Minister Modi, I'm sure, being a global statement, as he is able to, is one of the few people able to talk to President Putin and maybe let him see some reason.
0: चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये बताते हैं कि भारत से 7000 किलोमीटर दूर इंग्लैंड के पीटरबोरो शहर में एक 40 साल पुराने मंदिर की जगह को मस्जिद बनाने के लिए क्यों बेचा जा रहा है। ये कहानी भगवान श्री राम के उस मंदिर की है जिसे साल 1972 में युगांडा से निष्कासित हुए हिंदू परिवारों ने खुद स्थापित किया था। साल 1986 में यह मंदिर एक ऐसी इमारत में बना जिसे सिटी काउंसिल ने हिंदू परिवारों को खुद लीज पर दिया था और दावा है कि स्थानीय हिंदू परिवार पिछले 14 सालों से इस जगह को खरीदने की कोशिशें कर रहे थे। उन्हें उम्मीद भी थी कि स्थानीय प्रशासन उन्हें इस इमारत को दे देगा, सौंप देगा इमारत को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब इस मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाने की बात कही जा रही है। जी हां, मंदिर की जगह मस्जिद, और यह भी तब होने वाला है जब इस मंदिर के 56 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा हिंदू मंदिर नहीं है। जबकि पीटरबोरो शहर में 19 मस्जिदें, उसी शहर में 19 मस्जिदें हैं। इससे यह सवाल उठता है कि जिस शहर में पहले से 19 मस्जिदें हैं वहां एकमात्र हिंदू मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाने के लिए यह इमारत क्यों दी जा रही है। हम चाहते हैं कि आप इस पूरी खबर को बहुत ध्यान से देखें और ये भी समझें कि जब बात हिंदू अल्पसंख्यकों की आती है तो धर्म निरपेक्षता का पैमाना बदल क्यों जाता है। यहां पर अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी का मुद्दा उठाने वाले लोग आखिर कहां चले जाते हैं, इस समय वो लोग कहां हैं। यह पूरा विवाद पहली बार तब चर्चा में आया जब पिछले साल पीटरबोरो सिटी काउंसिल ने अपना 6,500 करोड़ का कर्ज कम करने की प्लानिंग बनाई, योजना बनाई। इस योजना के तहत यह तय हुआ कि सिटी काउंसिल उन इमारतों की नीलामी करेगा जो उसने लीज पर दे रखी है। इनमें भी जिस इमारत में आज से 40 साल पहले भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित हुआ था उस इमारत को भी नीलामी में शामिल कर दिया गया। हिंदू पक्ष को उम्मीद थी कि वो इस इमारत को सिटी काउंसिल से खरीद लेगा और अपने आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर को बचा लेगा, लेकिन सिटी काउंसिल ने नीलामी में यह जमीन यूके इस्लामिक मिशन को बेच दी। ये एक इस्लामिक संस्था है जो साल 1962 में बनी थी और जो ब्रिटेन में अभी 43 मस्जिदों और इस्लामिक केंद्रों का संचालन करती है। और जब सिटी काउंसिल ने मंदिर की जगह इस्लामिक संस्था को बेची तो इस संस्था ने यहां पर एक मस्जिद और इस्लामिक केंद्र बनाने का ऐलान किया। इससे हिंदू परिवारों की आस्था को गहरा झटका लगा। उन्होंने सिटी काउंसिल से पूछा कि आखिर यह जमीन उन्हें क्यों नहीं बेचे गए और आखिर मंदिर की जगह को मस्जिद बनाने के लिए कैसे बेचा जा सकता है जबकि वहां पर पहले से मंदिर स्थापित था। इस पर सिटी काउंसिल ने ये कहा, उन्होंने उनकी दलील भी आपको जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि नीलामी में उसे हिंदू पक्ष से ज्यादा पैसे इस इस्लामिक संस्था से मिल रहे हैं, जिसके कारण उसने ये इमारत इस संस्था को देने का फैसला किया। उस वक्त उस फैसले का काफी ज्यादा विरोध भी हुआ और यह मामला दोबारा से फिर काउंसिल कैबिनेट के पास में भेजा गया। यहां पर हिंदू परिवार ये उम्मीद कर रहे थे कि अब शायद उनके साथ इंसाफ होगा, शायद यहां पर कुछ उनके हक में फैसला आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काउंसिल कैबिनेट ने नीलामी के फैसले को बरकरार रख दिया और बाद में यह मामला बड़ी अदालत में गया। अब बाहर से देखने पर यह पूरा मामला कानूनी दांव पेच का लगता है, लेकिन हिंदू परिवारों का आरोप है कि इसके पीछे असल में एक दूसरी कहानी है। इस मंदिर के ट्रस्टी गौरी चौधरी का कहना है कि हाल ही में पीटरबोरो सिटी काउंसिल में नया प्रशासन आया, नया सिस्टम आप कह सकते हैं कि आया है, और सिस्टम में लोग नए आए हैं। इनमें भी ज्यादातर नेता इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, जिसके कारण मंदिर की यह जगह मस्जिद बनाने के लिए दे दी गई। और हिंदू पक्ष यह भी आरोप लगाता है कि अयोध्या में जिस तरह विवादित ढांचे को हटाकर भव्य राम मंदिर बना, उसका बदला लेने के लिए यहां मंदिर की जमीन मस्जिद के लिए बेच दी गई। हमने इन आरोपों की पुष्टि करने के लिए पीटरबोरो सिटी काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट को चेक किया और वहां पर हमने जो देखा वो थोड़ा हैरान करने वाला था। इसमें लिखा गया था कि सिटी काउंसिल के प्रमुख नेता और काउंसलर शबीना कयूम हैं, जो कि एक मुसलमान है। उसके बाद सिटी काउंसिल के कैबिनेट सदस्य भी हैं जो कि इस्लाम धर्म से, कई कैबिनेट के सदस्य हैं। इसमें मोहम्मद जमील फिनेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो है कैबिनेट मेंबर हैं, जमीर अली कम्युनिटीज एंड पब्लिक सेफ्टी के कैबिनेट मेंबर हैं और नुमान अली इकबाल ग्रोथ एंड रीजनरेशन के कैबिनेट मेंबर हैं। और इसी आधार पर हिंदू पक्ष ये पूछ रहा है कि जब सिटी काउंसिल की कमान मुस्लिम नेताओं के हाथ में आई तभी मंदिर की जमीन मस्जिद के लिए कैसे बेच दी गई। इसमें भी बड़ी बात यह है कि जब इंग्लैंड के इस शहर में पहले से 19 मस्जिदें हैं तब वहां पर एक और मस्जिद की आवश्यकता क्यों और उस मस्जिद के लिए एक मंदिर को ही क्यों हटाया जा रहा है, इमारतें तो और भी हैं। आज इंग्लैंड के इस पीटरबोरो शहर में सबसे ज्यादा 46.3% आबादी ईसाइयों की है, 12.2% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन हिंदुओं की आबादी यहां मात्र 1.8% है। और कई हिंदू परिवारों का कहना है कि वो यहां पर अल्पसंख्यक हैं, उनकी संख्या मुसलमानों से कम है, इसलिए वहां राम मंदिर की जमीन मस्जिद बनाने के लिए दे दी गई और इस फैसले का बचाव भी किया गया। इस बार आप कल्पना करके देखिए कि अगर इसी जगह पर मस्जिद की जमीन मंदिर बनाने के लिए दे दी गई होती तो यह खबर कितनी बड़ी हो जाती, कितने सवाल उठने लगते, क्योंकि यहां पर 40 साल पुराने मंदिर की जगह मस्जिद बननी है, इसलिए इस खबर के बारे में ज्यादा बात ही नहीं हो रही है। और सिटी काउंसिल ये कह रहा है कि वो हिंदू मंदिर के लिए दूसरी जगह देने के लिए तैयार है, लेकिन स्थानीय हिंदू परिवारों ने इसका विरोध किया है, इसके खिलाफ प्रदर्शन करके उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। देखिए,

हैं और आपको इंग्लैंड के बाद भारत के ही मंदिरों में लेकर चलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए। पिछले दिनों अयोध्या के राम मंदिर, उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम, केरल के सबरीमाला मंदिर और गुजरात के अंबाजी मंदिर में चढ़ावे की चोरी का आरोप लगा और अब यह दावा किया जा रहा है कि जम्मू के श्री वैष्णो देवी मंदिर में भी 500 करोड़ रुपए की चांदी में हेरा फेरी कर दी गई। इस मामले में जम्मू की एक अदालत ने जांच कर रहे क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने और सभी रिकॉर्ड साथ लाने का आदेश दिया है और इस जांच के आदेश दिए गए हैं। अब इस आदेश के बाद से यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या वाकई में जो चांदी श्रद्धालुओं ने श्री वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ाई उसे हेरा फेरी करके चुरा लिया गया, चांदी चुरा लिया गया। यह आरोप उस शिकायत के आधार पर लगाया जा रहा है जो कि जम्मू क्राइम ब्रांच के महानिरीक्षक और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को भेजी गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि श्री वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाई गई चांदी के साथ हेरा फेरी हुई, यानी कि आरोप है कि जो चांदी मंदिर में लोगों ने दान में चढ़ाई उस चांदी को गलाकर या उसमें मिलावट करके असली चांदी को चुरा लिया गया और नकली चांदी रख दी गई। शिकायत में शब्दशः लिखा गया है कि श्री वैष्णो देवी में कई सालों में 20 टन चांदी चढ़ावे में आई जिसकी अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। दावा है कि जब इस चांदी को प्रोसेसिंग के लिए बाहर भेजा गया तो इस दौरान असली चांदी चुरा ली गई और यह भी आरोप है कि जब बची हुई चांदी की जांच हुई तो उसमें केवल 5 से 6% ही वास्तविक चांदी पाई गई जबकि बाकी में कैडमियम, लोहा और कम गुणवत्ता वाली धातु में मिली है। जिसका मतलब यह है कि 500 करोड़ रुपए की चांदी को तो पार कर लिया गया। हालांकि अभी इन आरोपों की पुष्टि होनी बाकी है और अदालत ने 29 जुलाई को इस मामले पर जवाब मांगा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब तक श्री वैष्णो देवी मंदिर की व्यवस्था को फुल प्रूफ और बहुत सुरक्षित माना जाता था और हमने भी आपको बताया था कि देश के बाकी मंदिरों को श्री वैष्णो देवी मंदिर की व्यवस्थाओं से सीखना चाहिए। जहां पर मंदिर के एक सीईओ की नियुक्ति होती है, श्राइन बोर्ड पूरी पारदर्शिता के साथ वहां पर काम करता है। लेकिन इन आरोपों के बाद अब बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या अब सरकार को हमारे मंदिरों की व्यवस्था में बड़े बदलाव करने के लिए आगे आना होगा और आखिर इस तरह की चोरी और कितने मंदिरों में हुई है यह भी बहुत बड़ा सवाल अब बना हुआ है। खैर अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको यह बताते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट की सरकार थी तब वहां के दरवाजे मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन के लिए आखिर क्यों बंद रहे। एक ऐसी खबर है जो पश्चिम बंगाल का वो दौर याद दिलाती है जब वहां पर बांग्लादेश के कट्टरपंथ की परछाई पड़ रही थी। हाल ही में तस्लीमा नसरीन ने बताया कि वो 20 साल बाद आखिरकार 1 अगस्त को कोलकाता लौट रहे हैं। वहां पर धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ और अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन में एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे और वो कोलकाता लौटने पर तस्लीमा नसरीन का स्वागत करेंगे। आज ये समझना जरूरी है कि आखिर तस्लीमा नसरीन को पश्चिम बंगाल क्यों छोड़ना पड़ा था और इस वक्त के पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की कितनी घुसपैठ थी। तस्लीमा नसरीन का जन्म 1962 के पूर्वी पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे और इसलिए वो बाद में डॉक्टर ही बने। उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में सरकारी अस्पताल में नौकरी शुरू कर दी लेकिन अस्पताल में काम करते करते तस्लीमा नसरीन ने समाज का एक ऐसा चेहरा देखा जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने देखा कि महिलाओं पर घरेलू हिंसाएं हो रही, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है, धर्म और समाज के नाम पर उनके अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं और यहीं से उन्होंने लिखना शुरू किया। शुरुआत में वो बांग्लादेश की पत्रिकाओं में लेख और कॉलम लिखती थी और उनके लेखों का विषय होता था पुरुष प्रधान समाज, मेल डोमिनेंट सोसाइटी आप कह सकते हैं, महिलाओं पर होने वाला अत्याचार, मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति, इस्लामिक कानूनों के खिलाफ उनकी जो लेख होते थे और इस्लामिक कानूनों के कारण महिलाओं पर पड़ने वाला असर। इन लेखों ने जल्द ही उन्हें मशहूर भी बना दिया और विवादों में भी लाकर खड़ा कर दिया। कई लेखकों ने पहले भी ऐसे विषय उठाए थे लेकिन आलोचकों का कहना था कि तस्लीमा नसरीन की भाषा बेहद तीखी, बेहद आक्रामक थी और यही वजह है कि धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसमें भी सबसे बड़ा मोड़ तब आया 1993 में जब तस्लीमा नसरीन का उपन्यास

0: लज्जा प्रकाशित हुआ। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है ये पढ़ा भी हो। यह कहानी एक बांग्लादेशी हिंदू परिवार दत्ता परिवार की थी और इस कहानी की शुरुआत होती है 6 दिसंबर 1992 से, 6 दिसंबर जब अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था। यह उपन्यास बांग्लादेश में हिंदू परिवारों की पीड़ा दिखा रहा था और यह बता रहा था कि कैसे इस हिंदू परिवार को उन मुसलमानों ने भी नहीं बख्शा जिन पर वो भरोसा करते थे। लेकिन बाद में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने आरोप लगाया कि यह किताब तो इस्लाम को बदनाम करती है और कुछ कट्टरपंथियों ने भी यह कहा कि इस किताब से तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। और आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री खालिदा जिया की सरकार ने इस किताब के प्रकाशित होने के लगभग 7 महीनों के बाद इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। यह विवाद चल ही रहा था कि एक अखबार ने यह खबर छापी कि तस्लीमा नसरीन कुरान में बदलाव करने के लिए कह रही हैं, जबकि तस्लीमा नसरीन का कहना था कि उन्होंने कुरान में नहीं बल्कि शरीयत कानून में बदलाव की मांग की थी, शरीयत में। लेकिन इस सफाई के बाद भी बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए। कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने उन्हें मारने तक के लिए इनाम तक का ऐलान कर दिया। जून 1994 में तस्लीमा नसरीन किसी तरह से बांग्लादेश छोड़कर फिर स्वीडन पहुंच गए। यहीं से उनके निर्वासन की जिंदगी शुरू हुई। बाद में उन्हें स्वीडन की नागरिकता भी मिल गई। हालांकि विदेश में रहते हुए तस्लीमा नसरीन का मन बंगाल में ही बसता था। उनका कहना था कि भाषा, संस्कृति और साहित्य उन्हें कोलकाता से जोड़ता है। साल 2004 में भारत सरकार उन्हें कोलकाता में रहने की अनुमति दे दी और इसके बाद वो कोलकाता आ गए। उन्होंने फिर से लिखना शुरू किया और साहित्यिक कार्यक्रमों में वो सक्रिय रहने लगे। उन्हें लगा कि अब शायद उन्हें स्थायी ठिकाना मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोलकाता में भी उनके लेखन को लेकर विवाद शुरू हो गया। उनकी आत्मकथा विखंडित पर पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वामपंथी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह प्रतिबंध हटा दिया, लेकिन धार्मिक कट्टरपंथी संगठन लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। साल 2006 में कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम सैयद नूरूर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वो व्यक्ति जो तस्लीमा नसरीन का चेहरा काला करेगा उसे इनाम से नवाजा जाएगा, वो उसे इनाम देंगे। साल 2007 में तस्लीमा नसरीन हैदराबाद में अपनी किताब के तेलुगु अनुवाद के विमोचन कार्यक्रम में गई थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने मंच पर चढ़कर उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि यह हमला AIMIM के कुछ समर्थकों के द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में नवंबर 2007 में कोलकाता में उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि लगभग 15 साल बाद कोलकाता के सड़कों पर सेना बुलानी पड़ी। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तस्लीमा नसरीन को शहर छोड़ने के लिए कह दिया। 21 नवंबर 2007 को उन्हें गुप्त तरीके से कोलकाता से निकालकर पहले जयपुर लाया गया और कड़े सुरक्षा में एक अज्ञात स्थान पर उन्हें रखा गया और करीब 7 महीने के बाद फिर उन्हें नई दिल्ली भेजा गया। और सोचिए कि उस दौर में तस्लीमा नसरीन को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। और अब जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई है तो वो वापस भारत लौट कर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड शुरू हो गया है और पिछले करीब 5 सालों से दोनों ही देशों के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जैसे एक व्यापारिक समझौते की कोशिशें हो रही थी। इसके लिए कई दौर की बातचीत भी हुई और इस साल मई में दोनों ही देशों के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट हो भी गया और आज से लागू भी हो गया, जिसका फायदा दोनों ही देशों के व्यापारियों और आम लोगों को होगा, यानी कि आपको होगा। जब दो देशों के बीच में FTA जैसा कोई व्यापारिक समझौता होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब उनके बीच में व्यापार को आसान बनाया जाएगा और इसके तहत कई सामानों पर लगने वाला टैरिफ कम किया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। ऐसा होने पर दोनों ही देशों के लोगों को एक दूसरे का सामान सस्ती दरों पर उपलब्ध होता है और व्यापारियों को एक नया बाजार भी मिल जाता है। भारत और ब्रिटेन के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि CETA हुआ है, उसके मुताबिक भारत से निर्यात होने वाले 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन टैरिफ नहीं लगाएगा और ठीक उसी तरह से भारत भी ब्रिटेन से आने वाले 90% वस्तुओं पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाएगा। मतलब यह है कि दोनों ही देशों के व्यापारियों और किसानों को एक नया बाजार मिलेगा जहां पर वो कम कीमत पर अपना सामान बेच सकेंगे और आम लोगों तक ज्यादा विकल्प कम कीमत पर मिल जाएंगे। यह समझौता भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों की इकोनॉमी के लिए बूस्टर माना जा रहा है। साल 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 3.96 ट्रिलियन डॉलर जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 3.84 ट्रिलियन डॉलर की थी। दोनों ही देश व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाकर अपनी असली अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती देना चाहते हैं। अभी तक भारत और ब्रिटेन के बीच में करीब 2,23,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है जिसमें भारत का ब्रिटेन को कुल निर्यात 1,19,000 करोड़ रुपए का है और ब्रिटेन का भारत को कुल निर्यात 1,04,000 करोड़ का है। यानी कि भारत ट्रेड सरप्लस पर है और उसका व्यापार लाभ सीधा सीधा सा है 15,000 करोड़ का। अभी ब्रिटेन के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 3% है और भारत के कुल व्यापार में ब्रिटेन की हिस्सेदारी लगभग 2% है। सीईटीए होने के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटेन के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ेगी और कीमतों के मामले में ब्रिटेन में भारतीय कंपनियां अन्य देशों की कंपनियों को टक्कर दे पाएंगे। अब सवाल यह है कि इसका फायदा किस तरह से मिलेगा, जो आपके मन में भी यह सवाल कौन सा होगा। लैंड रोवर, जैगुआर, रोल्स रॉयल, एस्टन मार्टिन, बेंटले, मिनी और मैक्लारेन जैसे ब्रिटिश कार कंपनियां भारत में पहले से कम कीमत पर अपनी गाड़ियां बेच पाएंगी। सीईटीए के तहत इन हाई एंड गाड़ियों पर यह टैरिफ को अगले 5 सालों में 110% से घटाकर 10% तक लाया जाएगा। इसके अलावा द बॉडी शॉप, मॉल्टन ब्राउन, एलिमस और शार्लेट टिलबरी जैसे जो बड़े बड़े ब्रिटिश कंपनियों के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, भारतीय बाजारों में कम कीमत पर पहुंच भी जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, ब्रिटेन के सी फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, परफ्यूम्स, शेविंग क्रीम बनाने वाली कंपनियां भी भारतीय बाजारों में सस्ती कीमत पर अपना सामान बेच सकेंगे। बिल्कुल उसी तरह से भारत का टेक्सटाइल, लेदर, जेमस्टोन, ज्वेलरी, पेपर, फर्नीचर, ऑटो पार्ट्स, फुटवेयर, इंजीनियरिंग गुड्स, खनिज, खेलकूद की चीजें और केमिकल पर ब्रिटेन में टैरिफ कम या फिर शून्य कर दिया गया है। यानी कि इससे जुड़े हुए व्यापारियों को, किसानों को सीधा फायदा होगा। जैसे ब्रिटेन में अभी तक भारतीय प्रोसेस्ड फूड पर 70% तक टैरिफ लगता था, सी फूड पर करीब 21%, इंजीनियरिंग से जुड़े सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, लेदर और फुटवेयर पर 16%, कपड़े पर 12%, केमिकल और फार्मा प्रोडक्ट्स पर 8% तक टैरिफ लगाया जाता था, लेकिन अब इन पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 0 कर दिया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीयों को एक बड़ा फायदा होगा। डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत यूके में काम करने वाले भारतीयों के सैलरी का जो 25% पैसा ब्रिटेन सरकार के सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जाता था, वो पैसा अब सीधे भारत में उनके पीएफ अकाउंट में ब्याज के साथ जमा होगा। इसे ब्रिटेन में काम करने वाले 75,000 भारतीयों को फायदा होगा। दोनों ही देशों की कंपनियां एक दूसरे के यहां पर काफी पहले से काम कर रहे हैं और यहां के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। भारत और ब्रिटेन की कंपनीज पिछले कई वर्षों से एक दूसरे के देशों में काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। यूके में 971 भारतीय कंपनियां ऑपरेट करती हैं, इनमें 1,00,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसी तरह भारत में 667 ब्रिटिश कंपनियां इस समय काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, इनमें 5,00,000 लोग काम करते हैं। और माना जा रहा है कि सीईटीए के बाद इन कंपनियों को अपना काम और ज्यादा फैलाने में मदद मिलेगी, जिससे दोनों ही देशों के लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। यह सोचने वाली बात है कि ब्रिटेन ने अमेरिका से भी बिल्कुल इसी तरह का कोई व्यापारिक समझौता नहीं किया है, जबकि ब्रिटेन के कुल व्यापार में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 17% है। ब्रिटेन ने चीन के साथ भी कोई व्यापारिक समझौता नहीं किया है, जबकि चीन की हिस्सेदारी लगभग 5.5% है। कुल मिलाकर सीईटीए जैसा व्यापारिक समझौता होने से भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापारिक संबंध पहले से कहीं ज्यादा और मजबूत होंगे। और अब बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। आप सब लोग फॉलो तो कर ही रहे होंगे। स्पेन ने फ्रांस के खिलाफ शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल का टिकट कटा लिया है, लेकिन फाइनल में स्पेन से भिड़ेगा कौन, इसका फैसला आज रात उस महामुकाबले में होगा जो 90 मिनट का आम फुटबॉल मैच नहीं है बल्कि एक जंग है। जब हमने शब्द जंग का इस्तेमाल किया है तो आप ध्यान से सुनेगा क्यों। फीफा का यह दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच। फुटबॉल की दुनिया में इन दोनों ही देशों की दुश्मनी बिल्कुल ऐसी है जैसे भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मुकाबला, यानी कोई भी हारना नहीं चाहता। 2005 के बाद पहली बार इंग्लैंड और अर्जेंटीना किसी बड़े टूर्नामेंट में आमने सामने है। लेकिन आखिर यह कौन सी दुश्मनी है जिसने इस मुकाबले को जंग जैसा बना दिया है? दरअसल 1986 के वर्ल्ड कप में डिएगो माराडोना का एक गोल जो चर्चा का विषय रहा। माराडोना की चालाकी को अंग्रेज आज भी नहीं भूले हैं, जिसमें उन्होंने हाथ से गोल करके इंग्लैंड को रुला दिया था, जो हैंड ऑफ गॉड के नाम से मशहूर है। इंग्लैंड सूत समेत इसे स्पेन को चुकाना चाहता है, लेकिन ये दुश्मनी सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, इसकी जड़ें 1982 के युद्ध तक भी जाती हैं। एटलांटिक ओशियन में अर्जेंटीना के बेहद करीब एक द्वीप है जिसे वो मालविनास कहता है, जबकि इस द्वीप पर जो शासन है वो इंग्लैंड का है और वो कहता है फॉकलैंड्स। इस द्वीप के लिए 44 साल पहले इंग्लैंड और अर्जेंटीना में भयंकर युद्ध हुआ जो करीब 2.5 महीनों तक चला था। इसमें 900 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब सेमीफाइनल से ठीक पहले अर्जेंटीना के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस द्वीप पर इंग्लैंड का वैध कब्जा है, तो ब्रिटेन की ओर से कहा गया कि वहां के लोग तो ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं। बयानबाजी दोनों तरफ से हुई। अर्जेंटीना और इंग्लैंड की इस फुटबॉल वाली जंग में आवाज भी हथियार बनी है। एक तरफ 30,000 इंग्लिश फैंस अपने फेमस सॉन्ग वंडरवॉल को एक ही साथ गाने के लिए तैयार है, तो अर्जेंटीना के फैंस की जुबान पर आजकल जो है मुचाचोस सॉन्ग चढ़ा हुआ है, वो इसे गुनगुना रहे हैं या जोर से गा रहे हैं। मैदान के बाहर भी अर्जेंटीना और इंग्लैंड के फैंस एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं और यहां पर जोरदार जुबानी जंग चल रही है, तंज कसे जा रहे हैं। इसीलिए इंग्लैंड और अर्जेंटीना का यह मुकाबला सिर्फ एक नॉकआउट मैच नहीं है, ये लड़ाई है दो अलग अलग जज्बातों की, मुचाचोस वर्सेस वंडरवॉल की और 4 दशकों पुरानी कड़वाहट की। अब फुटबॉल के मैदान पर दोनों ही देश ये मुकाबला जीतकर खुद को थोड़ी सी तसल्ली देने के साथ दशकों पुराना हिसाब भी चुकता कर लेना चाहते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे फीफा वर्ल्ड कप ने एक छोटे से देश के पर्यटन में उछाल ला दिया है। दुनिया के नक्शे पर छोटे से बिंदु के रूप में नजर आने वाला केप वर्दे 10 ज्वालामुखीय द्वीपों का समूह है जिसकी आबादी सिर्फ 5 लाख के करीब है। केप वर्दे, जिसे काबो वर्ल्ड भी कहते हैं, यह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर 650 किलोमीटर दूर समुद्र में बसा देश है। एक ऐसा देश जहां पर बहुत कम लोग जाते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फीफा वर्ल्ड कप ने लेकिन इसकी तस्वीर बदल दी है ग्लोबली। अब इसकी टीम ने ग्रुप स्टेज में स्पेन, सऊदी अरब और उरुग्वे जैसी दिग्गज फुटबॉल टीमों के साथ में ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में भी अर्जेंटीना को कड़ी टक्कर दी, हालांकि 3-2 से हार का सामना करना पड़ा और उनका सफर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन पूरी दुनिया में इस टीम की चर्चाएं जरूर हुई हैं। इनके जज्बे की चर्चा हुई है, स्किल की चर्चा हुई है, जिसका सीधा असर अब इस देश के पर्यटन पर दिख रहा है। अमेरिका में केप वर्दे वेकेशन की ऑनलाइन सर्च में 5,000 से ज्यादा का भारी उछाल दर्ज किया गया है। अब तमाम लोग यहां की संस्कृति, ज्वालामुखी वाले पहाड़ और बेहतरीन नजारे देखने के लिए आ रहे हैं। पर्यटन हमेशा से केप वर्दे की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। ये देश की GDP में लगभग 25% का योगदान देता है। 2025 में यहां पर रिकॉर्ड लगभग 12.5 लाख पर्यटक आए थे, जो यहां की आबादी से 2 गुना ज्यादा है, और अब इसमें भारी उछाल का अनुमान है। खेल कैसे किसी देश की तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है, केप वर्दे आज इसका एक बड़ा उदाहरण है। कल तक जो जगह दुनिया की नजरों से दूर थी, आज वो अपने जाबाज खिलाड़ियों की बदौलत तेजी से उभरता हुआ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: नीड अ गुड लैप? वी नो अ प्लेस जस्ट फॉर लैप्स। रेडियो ब्रिंग्स यू नॉनस्टॉप स्टैंड अप बिट्स बाय द बेस्ट कॉमिक्स इन द गेम, फ्रॉम ऑल टाइमर्स टू राइजिंग स्टार्स, एंड द पंचलाइन, इट्स ऑल वेटिंग फॉर यू ऑन ट्यून इन। हेड ऑन ओवर टू जस्ट फॉर लैप्स रेडियो टुडे।
4: सोकुडो

0: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
1: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
4: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: Ready for the next big IPO? Apply for it on Grow. Open your free DMAT account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Grow now for stocks, mutual funds and IPOs.
6: Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
7: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
3: Ready for the next big IPO? Apply for it on Grow. Open your free DMAT account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Grow now for stocks, mutual funds and IPOs.
4: Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.

0: इन एसोसिएशन विद हिंट बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
0: विमल बोलो जुबां केसरी
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
0: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Ready for the next big IPO? Apply for it on Grow. Open your free DMAT account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Grow now for stocks, mutual funds and IPOs.
2: Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
3: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
4: छह साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया, अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी पाए गए हैं, वहीं ताहिर के अलावा चार और आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
5: क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं?
4: आपको बता दें कि 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिला था। उनके पिता ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। तमाम गवाहों की पेशी, सबूतों और सुनवाई के बाद अदालत का फैसला दिल्ली के सामने है। जहां तक ताहिर हुसैन का सवाल है, तो खबर है कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगा। ताहिर की माने तो वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है।
6: ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
4: हिंसा में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन से केजरीवाल ने किनारा कर लिया था। आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने गले लगा लिया।
7: 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन और ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया।
8: कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है, तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा।
9: लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी फरी हो जाता।
4: दिल्ली दंगे को लेकर AIM सवाल उठाती रही है कि जिस दंगे में 53 लोगों की हत्या हुई, उसमें 6 साल बाद भी सिर्फ एक हत्या के केस में दोषियों की पहचान क्यों हो पाई है? आखिर वो कैसी जांच थी जिसमें इसी दंगे में मारे गए हाशिम अली की हत्या के 12 और अनवर हत्याकांड के 5 आरोपी बरी हो जाते हैं? दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।

में बदलाव की खबरों के बीच पीएम के घर पर बड़ी बैठक, अमित शाह, नितिन नवीन, बीएल संतोष मौजूद। पंचायत आज तक के मंच पर दावे अपने अपने, सीएम योगी बोले प्रचंड बहुमत से बनाएंगे हैट्रिक, विपक्ष का दावा जनता को बीजेपी पर नहीं है भरोसा। मदन मित्रा के भी बागी होने के बाद बीजेपी पर भड़की ममता, कहा इनके इशारे पर हमारे नेताओं पर दबाव लेकिन विचारधारा से हमारा समझौता नहीं।

0: IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च, बीट वर्जन में रेल टिकट बुकिंग होगी सुपर फास्ट, नए डिजाइन फीचर्स का अनुभव ले सकेंगे यात्री।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर। आप देख रहे हैं दस्तक, और आज दस्तक पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ पीओके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से उठी सबसे बड़ी बगावत पर। जी हां, पीओके वालों ने शहबाज सरकार और पाकिस्तानी सेना के आजाद कश्मीर वाले प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। पीओके में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC ने और JAAC के नेता सरदार अमन खान ने रावलकोट में एक विशाल रैली में ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि पीओके ना तो आजाद इलाका है ना ही विवादित, बल्कि ये तो कब्जे वाला इलाका है। पीओके से उठी बगावत की इस आवाज ने कैसे मुनीर के गले की नस को दबा दिया है, देखिए।
1: पीओके में सबसे बड़ा ऐलान, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं पीओके। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों ने मुनीर के गले की नस दबा दी। पीओके से आई आवाज, पीओके आजाद नहीं, कब्जाया गया है। पीओके में बगावत का एटम बम, आसिम मुनीर की शामत कन्फर्म। मुनीर के खिलाफ पीओके से यलगार, आजादी के लिए लहू बहाने को तैयार। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर 1947 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। जी हाँ, 1947 में भारत के विभाजन के समय जब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय का फैसला किया था, इसके बाद पाकिस्तान समर्थित कबाइलियों और सेना ने कश्मीर के हिस्से पर हमला कर इस पर कब्जा कर लिया था। आज भी भारत पीओके को अपना अभिन्न अंग मानता है। आज की तारीख में जिस तरह से पीओके में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ विद्रोह की आग भड़की हुई है, अब पीओके वाले आर पार पर उतर आए हैं। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावला कोट की तस्वीरें हैं, जहां लोग अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। अकेले रावला कोट में पीओके के अलग अलग शहरों से लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं। सिर्फ रावला कोट के ईदगाह मैदान में 80,000 लोगों की भीड़ जमा होती है, और इस रैली में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के कद्दावर नेता सरदार अमन खान लोगों को संबोधित करते हुए जो ऐलान करते हैं, उसे सुनकर न सिर्फ आसिम मुनीर के होश उड़ गए होंगे, बल्कि पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। जी हां, पीओके के इस नेता ने जब माइक संभाला तो न सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत को चेतावनी दे डाली, बल्कि ये भी ऐलान कर दिया कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पीओके न तो आजाद इलाका है न ही विवादित, बल्कि ये तो कब्जे वाला इलाका है।
2: ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है। ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर कभी कब्जा है। ये एक मुतनाजा इलाका है, जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुतल्लिक जो बात करने का इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरियों के पास है, और इस पे हम अपना हक महफूज रखते हैं। तो इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएं बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म। نہیں ہوگی, یہ جنگ ختم. اب اب یہ حقوق کی جنگ ختم, حقوق کی جنگ ختم, حقوق کی جنگ ختم.
1: पीओके में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन खान ने इस ऐलान के साथ मुनीर के गले की नस दबा दी है, क्योंकि मुनीर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को गर्दन की नस बताते हैं.
3: गवर्नमेंट स्टांस ऑन कश्मीर इज एब्सोल्युटली क्लियर. इट वाज आवर जगलर वेन, इट इज आवर जगलर वेन. वी विल नॉट फॉरगेट इट एंड वी विल नॉट लीव आवर कश्मीरी ब्रदरन.
1: जिस पीओके के लिए पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर कोरा झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं कि वो कश्मीर के भाइयों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज पाकिस्तान के उसी झूठ की पोल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग खुद खोल रहे हैं. ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भविष्यवाणी सच होने जा रही है.
4: हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा.
1: 5 जून से पीओके में अपने हक के लिए भड़का आंदोलन इस बात का भी गवाह बन रहा है कि कैसे आसिफ मुनीर जनरल डायर बनकर बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहे हैं. मुनीर की फौज गोलियां बरसा रही है. पिछले 2 हफ्तों में पीओके में हुए इन प्रदर्शनों में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई है. मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर समेत बहुत से इलाकों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं. लेकिन मुनीर की सेना जितनी गोलियां बरसा रही है, आंदोलनकारी उतने ही बेखौफ हो रहे हैं. आगे बिजली और अपने हक की लड़ाई के लिए पीओके की जनता ने शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के खिलाफ यलगार छेड़ रखी है. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कई इलाकों से लोग मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं. पीओके के सुदनोती और कोकली से हजारों लोगों का काफिला मुजफ्फराबाद के लिए पैदल निकल पड़ा है. इस बार के मार्च की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें स्थानीय महिलाओं और स्कूली बच्चों ने रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लिया है. सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियो में महिलाएं और बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों, भारी टैक्स और आते बिजली की महंगाई के खिलाफ नारे लगाते हुए मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं. महिलाओं के साथ ही पीओके में आजादी की मांग को लेकर चल रही बगावत में अब यहाँ का बच्चा बच्चा शामिल है.
5: मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाए. एक्शन कमेटी ने ऐसे क्या गलत किया? वो तो हमारे वाम के हक की आवाज उठाए. ये कहना चाहूंगी कि अगर हम दहशत खत्म होते तो ये लाखों के मजमे में लोग और लड़कियां अपने गोद वाले बच्चे को इधर लेके आती, जिसे कोई दहशत गर्द है आके प्लीज चक्कर दिया जाए.
6: अब 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, आप अपने बुनियादी हुकूक की खातिर, अपनी नस्लों की बका की खातिर और अपनी सेना की खातिर सरापा एहतजाजी.
5: अंदर आप सब कुछ करने वाले से गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े हो, हमें हक के लिए आवाज उठाए.
1: प्रदर्शन की कमान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने संभाल रखी है और अब इस कमेटी में शामिल लोग भी पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर रहे हैं.
2: किसी ने वो बंदर की आंख में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी. इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया, जो होता है कहते हैं कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी का होते हैं. कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है.
1: JAAC ने पाकिस्तान सरकार को अपनी मांगे मानने के लिए 14 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था. इसने कहा था कि ऐसा ना होने पर 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च किया जाएगा. आज तक ब्यूरो.
0: रिपोर्ट के अनुसार पीओके के रावलकोट, मीरपुर, कोटली और बाग इलाकों में 1,00,000 से अधिक प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ ने सेनापति इलाके में सुरक्षा बलों के कैंप को भी निशाना बनाया, हमला कर दिया। इससे इलाके में तनाव चरम पर पहुंच गया। मुजफ्फराबाद जाने वाले रास्तों पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगाए गए भारी भारी कंटेनर्स और बैरिकेड्स को प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर तोड़ दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तानी पुलिस और रेंजर्स की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की भी खबरें आई हैं।
1: यह सच है कि पाकिस्तान की सरकार पीओके के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार करती आई है। इन्हीं की नदियों के पानी से बिजली बनाकर लाहौर और पंजाब में दी जाती है और पीओके वालों को राशन के लिए भी तरसाया जाता है। इन्हीं मुद्दों के खिलाफ पिछले 4 साल से पीओके सुलगा हुआ है, लेकिन मौजूदा विवाद चुनाव से जुड़ा है। 27 जुलाई को पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान होना है। पीओके की असेंबली में 12 सीटें बाहर से आए हुए लोगों के नाम पर आरक्षित हैं। आरोप यह है कि पाकिस्तान की सरकार इन 12 सीटों पर अपने लोगों को बिठा देती है और इन 12 सीटों के जरिए ही पीओके में पावर कंट्रोल होता है। इसीलिए अब ये डिमांड है कि ये 12 सीटें खत्म करके इन पर पीओके के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। पीओके में भड़की आजादी की इस आग पर अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि पीओके में जारी ये विद्रोह पाकिस्तान के दशकों पुराने शोषण, बुनियादी अधिकारों के हनन और प्रशासनिक जुल्म का नतीजा है।
7: देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीज़ों को रोका गया है, इंटरनेट ब्लैकआउट को लागू किया गया है और निहत्थे नागरिकों पर के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घोर दुर्व्यवहारों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराएगी।
1: सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी विद्रोह की चिंगारी भड़की हुई है। आपको बता दें कि 1948 से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन जब से आसिफ मुनीर सेना प्रमुख बने, ये विद्रोह अब चरम पर पहुंच चुका है। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना उन पर जुल्म की अति कर रही है। ऐसे में आसिफ मुनीर को उलेमाए इस्लाम फजल यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने सीधी चुनौती दी है। रहमान ने कहा है कि अगर सेना को राजनीति करनी है तो वर्दी उतार कर अपनी पार्टी बनाए और चुनाव लड़े।
8: आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे।
1: आप इसके साथ ही मौलाना फजलुर रहमान ने बलूचिस्तान और पश्तून इलाकों में हालात को लेकर भी पाकिस्तानी सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। फजलुर रहमान ने यह भी दावा किया है कि बलूचिस्तान के बड़े हिस्सों पर अब पाकिस्तान सरकार का असरदार नियंत्रण नहीं बचा है।
8: बलोच इलाकों में बगावतें थी, पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है, लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी, पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने दो तीन दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं।
1: अब पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक मुनीर की शामत आई हुई है। भले ही मुनीर के कंट्रोल में सेना होने की वजह से लोगों पर कहर ढा रहे हैं, लेकिन अब ये बगावत बहुत आगे बढ़ चुकी है।
0: और अब खबर श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर उठे सवालों पर आज तक के मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे जवाब की। लखनऊ में आज तक पंचायत के मंच से योगी आदित्यनाथ ने चढ़ावा चोरी मामले की जांच और कार्रवाई की एक एक डिटेल शेयर की। तो वहीं चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुटी विपक्षी पार्टियों के आरोपों का जवाब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। आज तक पर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं।
9: चोरी के मामले की बात है, यह दुर्भाग्य है क्योंकि ये पहले से इन लोगों की आदत न होती ये इस तरह की, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती।
10: उन्नीस सौ नब्बे से लेके आज तक जितना भी चंदा इकट्ठा किया है क्या उसका कोई भी हिसाब किताब दोगे?
11: भगवान राम के स्थान को लेकर जो अयोध्या पवित्र नगरी, उस पवित्र नगरी को आरजेएस और बीजेपी ने अपवित्र करने का पूरा प्रयास किया।
12: सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है, अब बताइए वही रहेंगे एसआईटी में?
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड को 2027 विधानसभा चुनाव का मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष सड़कों पर है। आरोप यही है कि जो राम राज्य लाने वाले थे उन्हीं के राज में प्रभु राम का धन भी लुट गया। अब सवाल यही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर विपक्ष के नैरेटिव को बीजेपी तोड़ पाएगी या नहीं। इस सवाल का जवाब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तक के मंच पर दिया। योगी ने माना कि चढ़ावा चोरी कांड से आस्था आहत हुई है, लेकिन राम धन के लुटेरों पर कानून का हर डर आफत बनकर बरस रहा है।
13: अयोध्या की घटना निश्चित ही हम सब की आस्था, हम जैसे राम भक्तों की आस्था को आहत करती है, और ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया। वो एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट को उस पर कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। ट्रस्ट ने अनुरोध किया, गवर्नमेंट ने उस एसआईटी गठित की। एसआईटी की रिपोर्ट आते ही ट्रस्ट ने कार्रवाई भी शुरू की। जो 6 लोग विजुअल में चोरी करते हुए पकड़े गए उनकी गिरफ्तारी हुई, जो उनमें सहयोग कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी होने के साथ ही नैतिक आधार पर भी 2 स्थिति और हुई। लेकिन उसके नाम पर अयोध्या को बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि को बदनाम करना, हिंदू आस्था पर प्रहार करना, ये कहां का न्याय संगत है? एसआईटी की रिपोर्ट आती
1: है। चढ़ावा चोरों के खिलाफ बड़ा और कड़ा एक्शन जारी है। योगी का दावा है कि राम मंदिर का चढ़ावा चुराने वाले किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन सीएम योगी चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाकर आरोपों के बाढ़ चला रहे विपक्ष की नीति और नियत पर सीधे सवाल खड़ा कर रहे हैं।
13: जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई वे आज आस्था की बात करते हैं। जिन लोगों ने पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों में नमाज पढ़वा करके पूरे वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास किया, भाई अगर आप सेकुलर थे एक जगह आप नमाज पढ़वा रहे थे तो किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का भी पाठ करवा देते साथ साथ, दोनों एक साथ होता चलो मान्य हो जाता कि चलो भाई दोनों लोग सहमत हैं। लेकिन ये वन वे चल रहा था, वन वे। वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। तो देश के उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर रहे थे कि साहब राम और कृष्ण हुए ही नहीं, वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास की, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते।
1: सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया तो विपक्ष से सीधा सवाल भी पूछा, आखिर गैर बीजेपी सरकारों में हिंदुओं के धार्मिक पर्व पर प्रतिबंध क्यों थे?
13: अब याद करिए 17 के पहले, अभी हमारी कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, यानी ये लोग क्या करते थे कि उपद्रव को रोकने के लिए ये कहते थे कावड़ यात्रा ही न हो, रामनवमी के ही शोभा यात्राएं न निकले, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन ही न हो, दुर्गा पूजा के पंडाल ही न सजे, इन्होंने बैन कर दिया था। यानी जो लोग कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, जो लोग रामनवमी की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजनों को नहीं होने देते थे, नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों को प्रतिबंधित करते थे, वे आज आस्था की बात कर रहे हैं।
1: योगी ने चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पर सीधा हमला किया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम लिए बिना निशाना साधा, कहा दो युवराजों को हिंदुओं की आस्था के केंद्र पर बढ़ी गरीबी की कमाई आंखों में किरकिरी बनी हुई है।
13: गर्मी कैसे होती है दोनों को नहीं पता है, बरसात की पीड़ा क्या होती है उनको नहीं पता है, क्योंकि दोनों लोग फीफा कप का आनंद लेने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया गया है, कोई यूएस की यात्रा में अपने टूरिस्ट वीजा में गया है। ये पैसा किसका है, किसके पैसे को लेकर के आप ये फॉरेन की यात्रा कर रहे हैं और यहां आईना दिखा करके समाज को बांटने का पाप करते हैं, जातीय खेमों में बांट करके, जाति को जाति से लड़ा करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके सत्ता हत्याने की कुछ सी चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन ये जनता है, सब जानती है, आपके सारे करतूतों को जानती है।
1: विपक्ष जिस चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाकर 2027 में अपनी चुनावी नाव को पार लगाना चाहता है, योगी उसी नाव को बीच मझधार में डुबोने की तैयारी कर चुके हैं। आज तक ब्यूरो।
14: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे ट्रंप का ऑपरेशन ब्लैकआउट। आप देखते रहिए दस्तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर
16: इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
18: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
19: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
20: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
21: AU
22: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर किधर
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
10: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
9: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
10: अर्ज किया है
9: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
11: वाँ वाँ वाँ वाँ।
9: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
12: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
13: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
14: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
15: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
14: छक्का?
15: सब कैशलेस हो गया
14: है। हाँ, ला भाई मेरा बैट।
15: वो अभी तो ठीक हुआ, तो
14: चार्ज हुआ यार।
16: बैट किसका है?
17: टाटा AIG है तो भरोसा है।
18: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
19: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
20: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान।
21: वी आर ओवर जिमी।
22: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
23: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
24: मीडिया 50,000 युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
25: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
23: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
26: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
27: वो हॉस्पिटल है, तकरीबन 470 जो पेशेंट थे पाकिस्तानी बॉम्बिंग में मारे गए। जो वो पेशेंट्स थे उनके रहने की जो व्यवस्था वहां पे थी, पूरे कंपाउंड में जो है प्लान्ड बॉम्बिंग हुई और कोई यहां का कोना हिस्सा नहीं है जो बचा। सब कुछ तबाह हो गया। मीर फरीद, काबुल, आज तक।

परंपरागत उद्यम फिर से पुनर्जीवित हो चुका है, जिसने कभी यूपी को एक पहचान दिलाई थी। याद करिए, आजादी के तत्काल बाद 1950 में भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का जो योगदान था वह 14% था। 2017 में जब हम लोग आए थे तो घट करके मात्र

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
4: मीडिया 50,000 युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
5: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
3: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
6: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: वो हॉस्पिटल है, तकरीबन 470 जो पेशेंट थे पाकिस्तानी बॉम्बिंग में मारे गए, जो वो पेशेंट्स थे उनके रहने की जो व्यवस्था वहां पे थी, पूरे कंपाउंड में जो है प्लान्ड बॉम्बिंग हुई और कोई यहां का कोना हिस्सा नहीं है जो बचा, सब कुछ तबाह हो गया। मीर फरीद, काबुल, आज तक।

परंपरागत उद्यम फिर से पुनर्जीवित हो चुका है, जिसने कभी यूपी को एक पहचान दिलाई थी। याद करिए, आजादी के तत्काल बाद 1950 में भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का जो योगदान था वह 14% था। 2017 में जब हम लोग आए थे तो घट करके मात्र 7% के आसपास रह गया था। यानी देश प्रगति कर रहा है लेकिन यूपी अवनति की ओर था, लगातार उसकी अर्थव्यवस्था में गिरावट थी। कारण था, अन्नदाता किसान को पानी नहीं मिलता था, अन्नदाता किसान को समय पे बीज नहीं मिलता था, अन्नदाता किसान के लिए बिजली नहीं थी, किसान अपने खेत में जाने से डरता था, पैदावार हो गई फसल और ज्यादा हो गई वह भी एक समस्या थी, क्योंकि उसका दाम किसान को नहीं मिलता था, बिचौलियों को मिलता था। एग्रीकल्चर यूपी के आधार थी, सरकार के स्तर पर कोई प्रोत्साहन नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग पावर जब परंपरागत उद्यम के साथ जुड़ती है तो परिणाम देती है, इकोनॉमी को तेज करती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास एमएसएमई का एक बेहतरीन नेटवर्क था, लेकिन पिछली सरकारों के इंस्पेक्टर राज ने उसको तबाह कर दिया था। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जाता था, कहीं विभागीय उत्पीड़न के शिकार वे लोग होते थे। न उन्हें टेक्नोलॉजी दी गई थी, न उनको डिजाइन दी गई, न उनके लिए पैकेजिंग की सुविधा थी, न उनके लिए मार्केट की सुविधा थी, कुछ भी नहीं था। परिणाम था हताश और निराश होकर के लोग, जो किसान यूपी के अंदर कभी आत्मनिर्भर इकाई बनकर के स्वावलंबन का जीवन व्यतीत करता था, जो कारीगर कभी यूपी के अंदर उद्यमी था, वो प्लान कर चुका था, कारीगर श्रमिक बन गया, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। यूपी की अर्थव्यवस्था को तो डूबना ही डूबना था, और यही यूपी के अंदर हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 2017 से 2026 के बीच में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास की दर को 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की है। आज किसान के लिए समय पे बीज है। आप याद कर रहे होंगे, इस समय अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, फर्टिलाइजर की क्राइसिस स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए थी, लेकिन यूपी में

किसानों को फर्टिलाइजर समय पे मिल रहा है, पेस्टिसाइड समय पे मिल रहा है, सीड समय पे मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इन 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने 24 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब खबर ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन ब्लैकआउट की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है कि अगले कुछ घंटों में ईरान से बातचीत की टेबल पर नहीं होगा। अगर वो बातचीत की टेबल पर नहीं लौटा तो ईरान के पावर प्लांट्स, पुल, परमाणु सेंटर्स को उड़ा देंगे। बड़ी बात यह है कि ट्रंप की धमकी उस समय आई जब बीते कई दिनों से लगातार ईरान पर हमले अमेरिका की तरफ से जारी हैं। वहीं ईरान ने ट्रंप की धमकी के बावजूद हथियार डालने से मना कर दिया, सीधे युद्ध लड़ने का ऐलान कर दिया। मतलब यही है कि अब ये युद्ध और भड़केगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ईरान में ट्रंप ब्लैकआउट करने की तैयारी कर चुके हैं।

0: अगले 72 घंटों में कुछ बड़ा करने वाले हैं ट्रंप। ईरान पर सबसे बड़े हमले की धमकी आ गई। पावर प्लांट और तेल भंडार पर होगा हमला। क्या ईरान के एटमी सेंटर पर ट्रंप करेंगे हमला? क्या एटमी युद्ध की तरफ बढ़े ईरान अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन ब्लैक आउट। अगले कुछ घंटे ईरान और अमेरिका युद्ध में बहुत अहम हैं, क्योंकि लगातार चौथे दिन भी ईरान के सैन्य अड्डों पर अमेरिकी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, जो चुनकर हुर्मुज के आसपास ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी सेना की तरफ से भीषण बमबारी की जा रही है। यहां तक कि अमेरिकी सेना अब अपने समुद्री ड्रोन से ईरान के सैन्य अड्डों को निशाना बना रही है। बीते कुछ दिनों में अमेरिकी हमलों में ईरान में 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि 260 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। मतलब अमेरिकी हमले से ईरान में भारी तबाही का मंजर है। सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा? क्या युद्ध और भड़केगा? क्या ईरान में बारूद से महाविनाश की तैयारी अमेरिकी राष्ट्रपति कर चुके हैं? अगर ईरान के खिलाफ ट्रंप ने अपनी नई धमकी को हकीकत में बदल दिया तो अगले 72 घंटे दुनिया के लिए बहुत भारी हैं।
1: But we're going to hit him very hard tonight. We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अगला हफ्ता ईरान पर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अगले हफ्ते अमेरिकी सेना ईरान के पावर प्लांट और बड़े पुलों को निशाना बनाएगी। मतलब यही है कि ईरान में ऑपरेशन ब्लैकआउट को हरी झंडी दिखा चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान के पुलों को उड़ाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह ठप कर सकते हैं। हम उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। समुद्र किनारे जो कुछ भी उनके पास है हम उसे निशाना बना रहे हैं। हुर्मुज हर हाल में खुला रहेगा, क्योंकि ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है। इन लोगों से सिर्फ ताकत के जरिए ही बातचीत की जा सकती है, और असली ताकत सैन्य ताकत होती है। हमने वही किया है। ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि मैं खुद ये ना कह दूं कि अब ये काफी है। अमेरिका ने मंगलवार रात लगातार चौथे दिन ईरान पर हमले जारी रखे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक करीब 7 घंटे तक चले ऑपरेशन में हुर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों के साथ साथ कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने 14 जुलाई को ईरान के खिलाफ हमलों का एक और दौर पूरा किया, जिसमें हुर्मुज और ईरानी तटीय क्षेत्रों के पास दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। 7 घंटे तक चले इस हमले के दौरान अमेरिकी लड़ाकू विमानों, ड्रोनों और नौसैनिक जहाजों ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक क्षमताओं और तटीय रक्षा प्रणालियों पर सटीक गोलीबारी की, ताकि जहाजों और नागरिक दल को धमकाने की ईरान की क्षमता को और कम किया जा सके। बड़ी बात यह है कि बीती रात को 7 घंटे तक बमबारी के बाद आज सुबह भी ईरान के सैन्य ठिकानों पर नए सिरे से अमेरिकी सेना ने हमला किया। ये हमला ईरान के ग्रेटर तुनक द्वीप पर हुआ, जिसमें ईरान के क्रूज मिसाइल सेंटर और लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। संभावना ये भी है कि ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज को निशाना बनाने से पहले ट्रंप ईरान के पिकैक्स माउंटेड पर बड़ा हमला करें।
2: You. Great speech, Mr. President. Go get Pickaxe Mountain and don't keep the speaker waiting. I appreciate your time, sir.
3: Okay, and we will do that. We're going to take out Pickaxe Mountain. Tell the Iranians to be ready.
2: I will. Let them
3: know
2: did.
3: We're coming, okay? There's not you a damn did. Thing they can do about it. All right. Thanks
2: Thank you,
3: a lot,
2: sir.
3: You.
0: ट्रंप का दावा यही है कि ईरान का पिकैक्स माउंटेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स अमेरिका के टारगेट पर है। किसी भी वक्त न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर हमला हो सकता है। ट्रंप के निशाने पर ये परिसर क्यों है समझिए। पिकैक्स माउंटेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास पहाड़ के नीचे मौजूद है। यानी पूरी परमाणु साइट अंडरग्राउंड है। खबरों के मुताबिक ये साइट 100 मीटर मोटी चट्टानों के नीचे है, जहां पर एडवांस सेंट्रीफ्यूज बनाए जाते हैं। हालांकि अमेरिका को शक है कि इसी साइट का इस्तेमाल ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए भी कर रहा है। संभव है कि यहीं पर ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में जुटा हो, लेकिन ट्रंप की मुसीबत यह है कि पिकेक्स माउंटेड न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को अमेरिका अपने सबसे ताकतवर GBU-57 बंकर बस्टर बम से भी पूरी तरह तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि पहाड़ की मोटी चट्टानों के नीचे ये साइट मौजूद है। मतलब यही है कि ट्रंप के दिमाग में इस वक्त हॉर्मुज के साथ साथ ईरान के पावर प्लांट, ईरान के पुल और ईरान के परमाणु सेंटर की तस्वीरें घूम रही हैं।
1: Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line, ultimately, because, you know, I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate, they're very good negotiators, they're crafty. But in the end, we have all the cards because we've defeated them militarily. Look, they have no navy. Every ship, they have 159 ships. Every one of them are at the bottom of the sea. If we didn't hit them with the B-2 bombers 9 months ago, they would have a nuclear weapon right now.
0: ईरान के परमाणु ठिकानों पर बीते साल भी अमेरिका ने हमले किए थे। इस साल भी ईरान के एटमी सेंटर को अमेरिकी सेना निशाना बना चुकी है। तो क्या अमेरिका को लेकर ईरान की भविष्यवाणी सच हो सकती है?
4: They did everything and they could not make any achievements. So they used fighter jets, they used missiles, they used actually ground operation and they tried to steal the enriched uranium from Iran. In all of them, they failed.
5: Yes.
4: So if they wanted to make any achievements, they would have done it during those 40 days. And they don't have any other options. There remains only one option, which is the nuclear bomb, that even if it is used, it would not stop Iranian people.
0: दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ट्रंप की धमकी के आगे नहीं झुकेगा, अमेरिकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देगा। अमेरिकी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने भी बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर बड़े हमले किए हैं। ईरान ने कुवैत के अमेरिकी बेस पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में अमेरिकी एयरबेस पर हुए धमाकों को देखा जा सकता है। ठीक ऐसे ही ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट के बेस पर बड़ा हमला किया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी सैन्य अड्डे को नुकसान पहुंचा है। ये नुकसान सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। अब इस तस्वीर को भी देखिए। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में अमेरिकी राष्ट्रपति को निशाना बनाते हुए एक पोस्टर लगाया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रंप को अमेरिकी झंडे में लिपटे ताबूत में लेटा हुआ दिखाया गया है। इसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है, हम ट्रंप को मारेंगे। ये तस्वीरें गवाह हैं कि ईरान की हिटलिस्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति है। खुद ट्रंप दावा कर चुके हैं कि ईरान उन्हें मारने की साजिशें रच रहा है। ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जमीनी हमले और अमेरिकियों को बंधक बनाने का आह्वान किया है। पूर्व विदेश मंत्री और सांसद मनु चहर मुताकी मानते हैं कि अमेरिका के खिलाफ अब जमीनी युद्ध की घड़ी आ चुकी है। मेरा प्रस्ताव यह है कि हम इस क्षेत्र में स्थित अमेरिकी ठिकानों में से एक पर जमीनी हमला करें, 100 अमेरिकियों को पकड़े और उन्हें ईरान ले आएं। ईरान में अब पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत का बदला लेने की मांग लगातार उठ रही है। ईरान के चौक चौराहों पर ट्रंप को निशाना बनाने वाले पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान में एक धड़ा ऐसा भी है जो मानता है कि अब शांति समझौते को लेकर अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। अब मिसाइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन किए जाने चाहिए, ताकि अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाकर अपनी मांगे ट्रंप से मनवाई जा सके। आज तक ब्यूरो।
6: अमेरिका लगातार ईरान पर न सिर्फ
5: बड़े बड़े हमले कर रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में और भी घातक हमलों की चेतावनी दे रहा है, धमकी दे रहा है, क्योंकि ये अमेरिका और ईरान के बीच नया युद्ध है और नया युद्ध हॉर्मुज को लेकर छिड़ा है। और इसीलिए ईरान अब दुनिया को अपना दबदबा दिखाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहा है, जबकि अमेरिका ने एक बार फिर से हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी का दावा किया है। लेकिन ईरान ने भी धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका ने उसकी नौसैनिक नाकेबंदी की तो दुनिया में किसी को भी तेल गैस नहीं मिलेगा। आइए हम आपको दिखाएं कि अब फिर से दुनिया के लिए तेल और गैस का बड़ा संकट खड़ा होने वाला है।
0: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान में आर पार। अमेरिका ने ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी शुरू की। ईरान ने भी दुनिया का तेल गैस रोकने की चेतावनी दे दी। हॉर्मुज में अटके जहाज, दुनिया के सामने फिर वही संकट। ट्रंप हॉर्मुज पर 20% टोल से पलटे, ईरान ने उड़ाई खेल ली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 14 जुलाई को सिर्फ 4 जहाज गुजरे। आपको बता दें कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते यानी MOU के बाद ये सबसे कम शिपिंग ट्रैफिक है। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज में 20% टैक्स वसूली से पलट गए हैं, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के खिलाफ एक बार फिर से नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान किया है, ईरान भड़क उठा है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू कर दी गई है। US सेंट्रल कमांड ने बताया है कि ये नाकेबंदी अमेरिकी वक्त के मुताबिक मंगलवार यानी 14 जुलाई की शाम 4 बजे लागू हुई। ये ऐसे समय में लागू की गई है जब पिछले महीने हुआ नाजुक युद्ध विराम टूट रहा है और फिर से पूर्ण युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ रहा है। नाकेबंदी के बारे में जानकारी देते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये लागू कर दी गई है क्योंकि अमेरिकी सेना ने इस इलाके में फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी के 20 से ज्यादा युद्ध पोत और सैकड़ों विमान तैनात हैं।
6: The U.S. Navy has restarted a blockade of Iranian ports. Now, this blockade is aimed at stopping Iran from getting its crude oil to the international market. And that's important because crude oil is a main driver of Iran's economy. Now, this comes as Iran has been attacking ships going through the Strait of Hormuz on a route that is hugging the coastline of Oman. Tehran has insisted that any ship going through the strait must do so on a route through Iranian waters and must follow the instructions of Iran's paramilitary Revolutionary Guard.
0: ऐसे में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू किए जाने के बाद कड़ी चेतावनी दी है। IRGC ने कहा है कि मिडिल ईस्ट से तेल और गैस का निर्यात या तो सभी देशों के लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं। अमेरिका के भीषण हमलों के बाद ईरानी सेना भी जोरदार पलटवार कर रही है। इस बीच ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट तब तक नहीं खोलेगा जब तक कि अमेरिका अपनी आक्रामक कार्रवाई को खत्म नहीं करता है। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर ये हमले जारी रहे तो हॉर्मुज में तेल गैस सप्लाई को निशाना बनाया जा सकता है। IRGC ने धमकी दी कि वो आगे चलकर अन्य निर्यात कॉरिडोर को भी बंद कर देंगे जो अमेरिका और उसके सहयोगियों की मदद करते हैं। माना जा रहा है कि उनका इशारा बाब अल मंदेब की ओर है जो लाल सागर में है। लाल सागर के रास्ते ही सऊदी अरब बहुत बड़े पैमाने पर तेल का निर्यात कर रहा है। ईरान की सड़कों पर लगे बैनर और अमेरिका विरोधी पोस्टर तेहरान के गुस्से को बयान कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सेनेटरों को निशाना बनाते हुए पोस्टर साफ गवाही दे रहे हैं कि ईरान इस नाकेबंदी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर कह रही हैं कि हॉर्मुज पर केवल ईरान का हक है, लेकिन प्रतिबंधों की मार झेल रहे आम लोगों के लिए ये नई नाकेबंदी एक बड़ी आर्थिक आफत बनकर आई है।
7: जाहिर तौर पर ये नाकेबंदी चिंता का विषय है, अगर हम तेल नहीं बेच पाएंगे या जरूरी सामान आयात नहीं कर पाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इससे हमारा व्यापार भी पूरी तरह ठप हो जाएगा।
0: एक अंतरिम समझौते के जरिए इस समुद्री मार्ग को खोला जाना था, लेकिन अमेरिकी सेना की निगरानी वाले रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद स्थिति फिर बिगड़ गई है। तेहरान की सड़कों पर सर्वोच्च नेता खामेनेई के पोस्टर लोगों से डटे रहने की अपील कर रहे हैं।
8: अगर हम हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने नियंत्रण में रख पाते हैं तो ये हमारे राष्ट्रीय गौरव की बात होगी। इससे हम अमेरिका के लिए हमारे देश पर धौंस जमाना और मुश्किल बना सकते हैं।
0: अमेरिका ने समुद्री रास्ते को बलपूर्वक खोलने की धमकी दी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसके लिए वॉशिंगटन को भारी सैन्य ताकत झोंकनी होगी। दशकों के प्रतिबंधों और संघर्षों से जूझ रही ईरान की बीमार अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल होने वाले हैं। अमेरिका की ओर से ईरानी जहाजों पर फिर से नौसैनिक नाकेबंदी लागू किए जाने के बाद ईरान के दो तेल टैंकरों ने अपना अगला रास्ता बदलकर कराची दिखाया। रानी और अमिल नाम के इन दोनों टैंकरों में मिलाकर करीब 10 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल भरा हुआ है। जहाजों ने मंगलवार को फारस की खाड़ी से निकलने के बाद अपने गंतव्य के रूप में कराची का नाम दर्ज किया। रानी और अमिल दोनों जहाज अमेरिका के प्रतिबंधों की सूची में शामिल हैं और इन्हें ईरानी तेल के परिवहन में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से होती है। अमेरिका चाहता है कि यहाँ जहाजों की आवाजाही बिना किसी रोक टोक जारी रहे, जबकि ईरान इसे अपनी सुरक्षा और संप्रभुता का मामला मानता है। और अब फिर से ईरान पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी ने हॉर्मुज में टेंशन बढ़ा दी है। आज तक ब्यूरो।
5: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Ooh, yeah. TuneIn has got you covered. With 90s hits, jam out to your favorite artists from the 90s, ooh, like yeah. pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: राम मंदिर के दान पात्रों में चोर लग गए थे। ये खबर जैसे ही सामने आई, मंदिर ट्रस्ट ने यूपी सरकार से जांच की अपील की और फिर सीएम योगी ने जो एसआईटी बनाई उसने राम के नाम पर हो रही बहुत सी धांधलियों की परतें उधेड़नी शुरू कर दी। 13 जून को सरकारी आदेश पर बनी एसआईटी के अध्यक्ष लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के साथ लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और उत्तर प्रदेश वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन ने जांच शुरू की। जैसे जैसे मंदिर में चोरी की पड़ताल आगे बढ़ी, मंदिर व्यवस्था में बहुत सी गड़बड़ियों के खुलासे होते गए और तब जाकर मंदिर ट्रस्ट ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद राम मंदिर के अंदर दान पात्रों से चोरी के मामले पर 3 जगह कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है। एसआईटी पता लगा रही है कि राम मंदिर में चढ़ावे के अलावा और क्या क्या घोटाले हुए। पुलिस पता लगा रही है कि इस पूरे गैंग में कौन कौन शामिल है और अब सुप्रीम कोर्ट की नजर भी इस पर पड़ गई है, जिसने केंद्र, यूपी और एसआईटी को नोटिस जारी करके पूरा ब्यौरा पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एसआईटी में रखे गए सदस्यों से लेकर अब तक की जांच में पाए गए तथ्यों की स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब एसआईटी को पहले रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचानी है। शायद यही वजह है कि 15 जुलाई तक सरकार को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट अब देर से सौंपी जाएगी। वैसे अब तक की जांच में एसआईटी ने जो तथ्य सबूत पाए हैं और अंतरिम रिपोर्ट में जैसे संकेत मिले थे उसके मुताबिक फाइनल रिपोर्ट में न केवल कथित चोरी में सीधे तौर पर शामिल लोगों की पहचान की जाएगी बल्कि उस जवाबदेही की कड़ी की भी जांच की जाएगी जिसकी वजह से कथित गबन जारी रहा। इसमें दान पात्रों की कस्टडी से लेकर कैश की गिनती, बैंक तक ट्रांसपोर्टेशन, बैंक में जमा कराने से लेकर ऑडिटिंग तक के हर चरण पर जवाबदेही तय की जाएगी। इसके अलावा दान प्रबंधन के लिए बनी एसओपी, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस में पाई गई कमियों का भी जिक्र होगा। उधर खबर है कि अयोध्या पुलिस ने चोरी के पैसे की ट्रैकिंग के लिए इनकम टैक्स विभाग से जांच में मदद मांगी है, जिसमें शक के दायरे में ज्यादातर गिरफ्तार किए गए आरोपित और उनके परिजनों के खाते। पुलिस 8 आरोपियों और उनके परिजनों के करीब 50 बैंक खातों की जांच कर रही है। इन खातों में 2022 से हुए लेनदेन की पड़ताल चल रही है। पता लगाया जा रहा है कि चोरी के पैसे किन खातों तक पहुंचे, क्या उनका शेयर बाजार में निवेश हुआ, क्या चल अचल संपत्तियां बनाई गईं या किसी दूसरे साधनों में पैसों का इस्तेमाल हुआ। सूत्रों के मुताबिक पुलिस संदिग्धों के खातों के विस्तृत बैंक स्टेटमेंट, केवाईसी रिकॉर्ड, नॉमिनी की जानकारी और लेनदेन का इतिहास मांग रही है। इनमें नगद जमा, बड़ी रकम की निकासी, खातों के बीच ट्रांसफर और आरोपियों और उनके करीबी परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए निवेश का विश्लेषण किया जा रहा है। पुलिस को इन पड़ताल में अगर अन्य लोगों की मिलीभगत का पता चलता है तो आगे अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
3: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
1: है मुलायम सरकार की असलियत। दूसरे पोस्टर में अखिलेश शिवपाल और राम गोपाल यादव की तस्वीरें हैं। इसमें लिखा गया है, दिल में बाबर, मुंह में राम। ऐसे पोस्टर्स लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और अयोध्या में लगाए गए हैं।
2: जैसे चुनाव नजदीक आएगा, सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, प्रायर पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे।
1: इस सियासत से इतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है। खबर है कि मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक जाहिर किया था। कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रसीद नहीं दी गई। आरोप ये भी है कि उनकी दी गई भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित या सुरक्षित नहीं रखी गई। अब इन वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। खबर ये भी है कि चढ़ावा चोरी की जाँच के लिए गठित SIT की टीम जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। आज तक ब्यूरो।
3: योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनावी मुकाबले के लिए तैयार है। उद्घाटन, शिलान्यास और यूपी के लगभग हर जिले को नापना इस तैयारी का हिस्सा है। 2017 से पहले और अब का फर्क गिनाना योगी आदित्यनाथ का चुनावी अंदाज है। योगी की इस रणनीति के बीच बीजेपी अच्छे से जानती है कि चुनाव के लिए संगठन और समीकरण बेहद अहम है। यूपी बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए 8 प्रमुख संगठनात्मक कार्यक्रमों का रोड मैप तैयार किया है। 19 से 22 जुलाई तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बूथों की मैपिंग कर संगठन को और मजबूत किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में बूथों की संख्या 80 से अधिक होगी, वहां नए मंडलों का गठन किया जाएगा। SIR के बाद बदले मतदाता आंकड़ों के आधार पर कई जगह बूथों और मंडलों का पुनर्गठन होगा। यूपी में चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन की रणनीति में जुलाई के पहले हफ्ते से सरगर्मी आई है, जब पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे थे। यूपी में 12 जुलाई को वृक्षारोपण कार्यक्रम का पहला चरण पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को नए सिरे से बूथ स्तर तक पहुंचाने की रणनीति बनाई जा रही है। चुनाव से पहले सभी जिलों में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। जून में बीजेपी ने यूपी की टीम भी नए सिरे से बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम में 19 उपाध्यक्ष हैं, जिनमें 8 OBC हैं। यूपी में संगठन को टॉप गियर में डालने का बीजेपी का ये फैसला अखिलेश यादव के दाव के बीच आया है। अखिलेश यादव जहां अपने PDA के समीकरण पर मजबूती से खड़े हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन जैसे आयोजन कर और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी को घेर कर, साथ ही सनातन की बात कर बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की तैयारियों के बीच असल सवाल SIR के बाद बनी परिस्थितियों का है। उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया में तकरीबन 2,04,00,000 नाम कटे और तकरीबन 84,28,000 नए नाम जुड़े। SIR पर विपक्ष के राजनीतिक विरोध के बीच पिछले साल बिहार चुनाव से राज्यों में SIR हो रहे हैं। बिहार, बंगाल, पुडुचेरी में NDA सरकारें बनी हैं, जबकि केरल में कांग्रेस और तमिलनाडु में TVK सरकार बनी है। अब सबकी निगाहें यूपी पर है। आज तक देखो।

0: आज तक भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

कैबिनेट और संगठन में हेरफेर में बदलाव की खबरों के बीच पीएम आवास पर मीटिंग करीब दो घंटे तक मंथर, अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष मौजूद। पंचायत आज तक के मंच पर दावे अपने अपने, सीएम योगी बोले प्रचंड बहुमत से बनाएंगे जीत की हैट्रिक, विपक्ष का दावा जनता को बीजेपी पर भरोसा नहीं। मदन मित्रा के भी बागी होने के बाद बीजेपी पर भड़की ममता, कहा इनके इशारों पर हमारे नेताओं पर दबाव लेकिन विचारधारा से हमारा समझौता नहीं। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च, वीटा वर्जन में रेल टिकट बुकिंग होगी सुपरफास्ट, नए डिजाइन और फीचर्स का अनुभव ले सकेंगे लोग। नोएडा में 11,000 केवी हाई टेंशन लाइन का तार टूटा, पांच लोग झुलसे, स्कूटी में भी लगी आग, ममूरा के पास लपटों में झुलसकर दो की मौत, गुरुग्राम में किंगडम्स ऑफ ड्रीम्स अग्निकांड में तबाही।

0: नमस्कार, मैं हुशम ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बहुत सारे लोग ठीक एक बैंक के बाहर एक ताबूत लेकर पहुंचते हैं। उस ताबूत पे एक बुजुर्ग की लाश थी और उस बुजुर्ग का उसी बैंक में खाता। यहाँ आए लोगों की जिद थी कि वो उस ताबूत को ठीक बैंक के बाहर ही दफनाएंगे, ताकि बैंक के मुलाजिम हर रोज जब बैंक आए या जाए तो वो उसकी कब्र से होकर गुजरे। अब सवाल ये है कि आखिर कोई किसी मुर्दे को किसी बैंक के बाहर क्यों दफनाएगा?
1: का अंत होता है। हम लोगों ने तुम्हारे खिलाफ आरएम को रिपोर्ट किया, उसके बाद भी तुमने अपना आदत नहीं छोड़ा। बहुत अत्याचार होता है, उनके साथ ना इंसाफी होती है। इस बात का भी सबूत है हमारे पास कि बैंक में खाता खोलने का भी तुम पैसा लेते हो। नेता, हम यहीं पर कुदाली लेके आए हैं, यहीं पर रतन लकड़ा का दफन करेंगे और डेली तुमको उनके कब्र से होकर अपने बैंक में जाना पड़ेगा।
0: ये तस्वीर झारखंड में एक बैंक के बाहर की है। बैंक के ठीक सामने बैंक को जाने वाले रास्ते पर काले रंग का एक ताबूत रखा है। इस ताबूत के साथ चार महिलाएं और दो पुरुष बैठे नजर आ रहे हैं। सामने की तरफ लोगों की भीड़ है और उन्हीं भीड़ में से कोई एक शख्स ये कह रहा है कि इस ताबूत में लेटे रतन लकड़ा को बैंक के सामने वाले इसी रास्ते पर इसी जगह कब्र में दफना देंगे। फिर बैंक के लोगों को हर रोज रतन लकड़ा के इसी कब्र से होकर गुजरना होगा। अगर पहली बार में ठीक से नहीं सुना तो फिर से सुनिए।
1: पत्नी का अंत होता है। हम लोगों ने तुम्हारे खिलाफ आरएम को रिपोर्ट किया, उसके बाद भी तुमने अपना आदत नहीं छोड़ा। बहुत अत्याचार होता है, उनके साथ ना इंसाफी होती है। इस बात का भी सबूत है हमारे पास कि बैंक में खाता खोलने का भी तुम पैसा लेते हो। नेता, हम यहीं पर कुदाली लेके आए हैं, यहीं पर रतन लकड़ा का दफन करेंगे और डेली तुमको उनके कब्र से होकर अपने बैंक में जाना पड़ेगा।
0: एक बैंक के बाहर ताबूत रखकर ये लोग यहाँ क्यों धरना दे रहे हैं? इस कहानी को समझने से पहले आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इस तस्वीर में भी एक मुर्दा है, इस कहानी में भी एक बैंक है और इस बैंक में भी मौत का एक खाता है। पर कांधे पर रखी इस लाश या यूं कहें कि कंकाल की कहानी सुने उससे पहले इस ताबूत की कहानी जान लीजिए। ये झारखंड का गढ़वा इलाका है। इसी गढ़वा इलाके में मौजूद झारखंड ग्रामीण बैंक का ये बारगढ़ ब्रांच है। इस बैंक में ताबूत में बंद रतन लकड़ा का भी खाता था। बुजुर्ग रतन लकड़ा को झारखंड सरकार से पेंशन मिला करता था। आदिवासी रतन लकड़ा का गुजर बसर उसी पेंशन से होता, पर पिछले 3 महीने से रतन बीमार थे। इलाज पर अलग से पैसे खर्च हो रहे थे, पर बीमारी की हालत में भी वो बैंक जाते अपने पैसे निकालने के लिए। लेकिन बैंक वालों ने कहा कि खाते से पैसे निकालने से पहले उनका KYC अपडेट करना जरूरी है। कहानी यहीं से शुरू होती है। अब रतन लकड़ा KYC अपडेट कराने के लिए बैंक जाते हैं, लेकिन काम बनता नहीं। 3 महीने तक बैंक मैनेजर रतन लकड़ा को KYC के नाम पर दौड़ाता रहा। इस ग्रामीण बैंक में KYC या बायोमेट्रिक के लिए दूसरी मंजिल पर बैंक स्टाफ बैठा करते हैं। पहले से ही बीमार रतन एक बार बेहद गंभीर हालत में बैंक पहुंचते हैं, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि वो दूसरी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़कर जा नहीं सकते थे। रतन के साथ गई उनकी बहू ने बैंक मैनेजर से गुजारिश की कि अगर कोई नीचे जाकर उनका KYC कर दे तो उनके पैसे निकल आएंगे, बहुत बीमार है वो। लेकिन बैंक मैनेजर ने गुस्से में अपने स्टाफ से रतन लकड़ा और उसकी बहू को बैंक से बाहर निकाल दिया। बीमार रतन लकड़ा एक बार फिर खाली हाथ घर लौटा है। KYC हुआ नहीं तो पैसे आए नहीं, पैसे आए नहीं तो दवा खरीदी नहीं, दवा खरीदी नहीं तो आखिर में बिस्तर ही पकड़ लिया।
2: मैं आम आदमी भी आई आपको कर सके की पैसे लगल है तो पैसा निकासी नहीं होने पा रहा है। मैं बोली कि सर मैं एक बारी करो ले लेके आ रही हूँ पाँचो का करके खराब होते जा रहा है तो चल थोड़ा देख लीजिए मैं नीचे रखी हूँ पाँचो करके।
1: रतन लकड़ा और उनकी पत्नी का केवाईसी 3 महीनों से नहीं हो रहा था, मार्च अप्रैल मई 3 महीना तक उनकी जो बहू है फुलमनी लकड़ा वो बैंक में दौड़ती रही और परेशान होके वो अपने ससुर को यहाँ टांग के ले आई। मैनेजर से कहा कि मैं अपने ससुर को टांग के ले आई हूँ, मरनासन है, कृपया आप चल के देख लीजिए, बैंक में नहीं चढ़ सकते हैं, है ना, आप उनका केवाईसी कर दीजिए। बैंक मैनेजर अपना चपरासी को बोलते हैं इसको बाहर निकालो, दरवाजा बंद करो, हटाओ यहाँ से, है ना, केवाईसी नहीं हुआ।
0: अब होता यह है कि रतन लकड़ा की ये कहानी सुन गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं, कुछ लोकल लीडर के पास जाते हैं, फिर बात बैंक मैनेजर तक पहुंचती है। तब बैंक मैनेजर को पहली बार लगता है कि अगर रतन लकड़ा मर गया तो लोग बैंक के खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे। इसी के बाद 3 महीने से एक बीमार बुजुर्ग पर केवाईसी के नाम पर बैंक के चक्कर कटवाने वाले बैंक के कर्मचारी एक रोज खुद रतन लकड़ा के घर पहुंच जाते हैं, अंगूठे का निशान लेते हैं, केवाईसी की रस्म अदायगी करते हैं और फिर रतन के बेटे और रतन से कहते हैं कि अब आप अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। पर लगता है रतन भी बस इसी उम्मीद में जिंदा था कि एक बार, बस एक बार किसी तरह केवाईसी हो जाए। जैसे ही केवाईसी हुआ रतन लकड़ा ने दम तोड़ दिया, खाता बैंक में ही खुला रह गया, उसके अपने पैसे खाते में ही पड़े रह गए। पर वो बैंक के निकम्मेपन और पत्थर दिल रवैये के चलते दवा खरीदने के लिए खुद अपने पैसे बैंक से निकाल नहीं पाया।
1: बैंक मैनेजर के कारण इनको पैसा नहीं मिला जिसके वजह से इनका इलाज नहीं हुआ, आज ये पैसा के अभाव में मर गए, है ना। तो बैंक में हम लोग कह रहे हैं कि बैंक मैनेजर इनके हत्यारे हैं, इंसाफ दे रतन लकड़ा के साथ, इंसाफ करे, हम लोग ये चाहते हैं इनके साथ इंसाफ हो, इनका जो पैसा है इनको मिले।
0: जाहिर है इस बैंक में अब जो खाता है वो एक मुर्दे का है। जब केवाईसी के नाम पर बैंक ने 3 महीने तक बीमार रतन को बैंक के इतने चक्कर कटवाए तो अंदाजा लगाइए अब उसी मुर्दा रतन के खाते में जमा पैसे को उसके जिंदा रिश्तेदारों को देने में कितनी मुद्दत लगाएगा।
3: रतन लकड़ा की मृत्यु के बाद जब हम लोगों ने धरना दिया था बैंक में तो मैंने खुद आरएम से बात की थी, संबंध में मैंने कहा था कि उनके अकाउंट में जमा राशि के भुगतान में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पर आरएम ने कहा था कि यह राशि आप लोगों को भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका प्रोसेस जारी है। मुझे पता चला है कि आज या कल उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा, इसके बाद उसको तुरंत बैंक में जमा करके हम लोग राशि निकासी की मांग करेंगे, अभी तक राशि नहीं मिली है, प्रोसेस में है।
0: खैर, मुर्दा बैंक खाते को छोड़िए, अब जैसे ही रतन लकड़ा की मौत होती है पूरा इलाका गुस्से में उबलने लगता है। रतन लकड़ा की लाश को एक ताबूत में रखकर लोग बैंक तक पैदल चल पड़ते हैं, फिर बैंक के बाहर ताबूत रखकर रतन की लाश बैंक के बाहर दफनाने की जिद करने लगते हैं। लोकल मीडिया के जरिए ये तस्वीरें और खबर झारखंड की राजधानी रांची तक पहुंचती है, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक भी ये खबर पहुंची। वो इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हैं और घटना पर अफसोस जताते हैं। आदिवासी इलाकों में ज्यादातर आदिवासी अपने या सरकारी योजनाओं से मिलने वाले पैसे इसी झारखंड ग्रामीण बैंक में जमा करते हैं। सरकारी योजनाओं के कुछ पैसे इन आदिवासियों के खाते में सीधे इसी अर्ध सरकारी ग्रामीण बैंक तक पहुंचता है। अब जैसे ही झारखंड के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए इस घटना पर अफसोस जताया, बैंक के अफसरों के हाथ पांव फूल गए, उन्हें अपनी नौकरी ही खतरे में पड़ती नजर आई। नौकरी बचाने के लिए अब उसी बैंक के दो अफसर, जिस बैंक में रतन लकड़ा का खाता था, रात के अंधेरे में रतन के घर उनकी बीवी बेटे और बहू से बात करने चुपके से पहुंच जाते हैं। पहले धमकी देते हैं, फिर लालच। पर इत्तफाक से उसी गांव के कुछ लोग रतन के घर पहुंच जाते हैं। एक शख्स मोबाइल पर ही रात में चोरी से आने वाले दोनों बैंक अफसरों से पूछताछ शुरू कर देता है। दोनों ऐसे घबराते हैं कि घर छोड़कर ही भाग जाते हैं।
4: इतना रात को आप लोग कहाँ आए हैं? बैठिए बैठिए, कहाँ आए हैं आप? बैंक मैनेजर है ना? है रुकिए,
5: फालतू वाला ये सब चीज। रुकिए, आपको कोई ये है?
4: कोई नहीं है कुछ, इसका मतलब क्या है? आप लोग कहाँ आए हैं इतना रात को? बैंक है क्या है? आप लोग जवाब दीजिए।
5: नहीं, वो बोला
4: था। बैंक है कि क्या है? आप लोग कहाँ आए हैं रात में? लाइट क्यों बंद कराए थे? इसका जवाब दीजिए हम लोगों को। लाइट क्यों बंद करवाए है? काहे लाइट बंद करवाए?
5: अरे छोड़िए ना सर, काहे लाइट बंद करवाए?
4: देखिए, बैठिए बैठिए, इज्जत से बैठिए आप लोग, बैठिए।
5: नहीं हम
4: नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हैं?
5: मारना चाह रहे हैं?
4: मारेंगे नहीं हम लोग, मारेंगे नहीं। लेकिन आप लोग आए कहाँ है रात के? बर्गर के बैंक मैनेजर कृष्णा कुमार राम और ये क्या नाम है उनका जी, नंदलाल, रात में आकर के इस विधवा महिला के घर में लाइट बंद करा करके यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? जब हमने आया कि यहाँ पर ये लोगों को पकड़ने, तो गाड़ी देख लीजिए कि यहाँ 200 किलोमीटर दूर में गाड़ी रखे हैं। लाइट दिखाइए जी, इधर लाइट दिखाइए। बैंक मैनेजर जा रहे हैं यहाँ, देख लीजिए आगे आगे नंदलाल जा रहे हैं।
6: काहे अर्जुन जी सब कर रहे हैं आपसे? कोई मेरा पर्सनल कुछ है क्या?
4: और कुछ बोलना है बोलिए।
6: अरे क्या समझ में नहीं आ रहा,
4: देख लीजिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। नंदलाल जी गाड़ी में बैठ गए, बाइक इतना दूर, बताइए
6: कहाँ जाते हैं?
4: भाग रहे हैं यहाँ से, पूरब की ओर जा रहे हैं, पता नहीं अब कहाँ जा रहे हैं ये लोग।
0: बेशर्मी का आलम देखिए, जब रतन की मौत सुर्खियां बनी तब इसी बैंक के स्टाफ ये कहने लगे कि रतन का केवाईसी तो हो गया था, पैसे निकालने की कोई दिक्कत भी नहीं थी, पर पैसा निकालने कोई आया ही नहीं।
7: उसके बारे में जानकारी हमको नहीं है सर।
8: क्या जानकारी है?
7: अभी तो ये लोग बोल रहे हैं कि केवाईसी का प्रॉब्लम है, लेकिन हमको तो जानकारी है कि केवाईसी हो गया सर।
8: पैसा क्यों निकला?
7: पैसा के लिए तो आए नहीं है सर। पैसा के लिए यहाँ कोई आए नहीं है।
8: वो लोग तो बोल रहे हैं कि लगातार चक्कर लगा रहे हैं,
7: नहीं सर,
8: इलाज के बारे में मौत हो गया इनका।
7: एक बार न्यूज में आया था, हम लोग देखे थे, उसके अलावा फिर और कोई पैसा के लिए तो नहीं आए।
0: अब कहानी ये है कि इलाके के डीसी, एसडीएम और एलडीएम मामले की जांच में जुट गए, जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बातें भी कर रहे हैं।
9: ये हमको जानकारी हुई है और ये काफी दुखद है और ये गंभीर मामला है, और आज सवेरे ही हमने जांच के आदेश दे दिए हैं अनुमंडल पदाधिकारी रंका और एलडीएम को, संयुक्त रूप से जांच करके प्रतिवेदन देने के लिए हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, और इस संदर्भ में जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मिला है लेकिन हमने जांच के आदेश दे दिए हैं, जैसे ही जांच प्रतिवेदन आएगा, आज ही जांच प्रतिवेदन आएगा, और उसके बाद उस प्रतिवेदन के आलोक में कठोर कार्रवाई की जाएगी।
10: देखिए, वो जो डेथ कर गए हैं उनके परिजन से भी मिले हैं, सारा चीज इन्होंने भी विस्तृत रूप से बताया है, साक्ष्य भी कलेक्ट हुआ है, बैंक वालों से भी बात की गई है, तो इसको हम लोग जो जांच रिपोर्ट है बैंक महोदय को हम लोग आगे भेजेंगे, सुनिश्चित रूप से जो भी कार्रवाई होगी।
0: पर इन अफसरों से हटकर आपको एक बात बताता हूँ, ये जो सरकारी अफसर जांच और कार्रवाई के दावे और दम भर रहे, असल में इनमें से ज्यादातर हवा हवा ही होते हैं। ये क्या कार्रवाई करेंगे और क्या जांच, इसका एक छोटा सा नमूना देखिए कि जीते जी तो रतन लकड़ा को उसके पैसे नहीं मिल पाए, पर मरने के बाद भी रतन के मुर्दा खाते से उसके जिंदा परिवार को अब तक एक भी रुपया नहीं मिला है। पहले केवाईसी के नाम पर रतन मर गया, अब उसी मुर्दा रतन के मुर्दा होने का सबूत यानी डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र का इंतजार हो रहा है। एक बार रतन के मुर्दा होने का सबूत कागज पर उतर आए, उसके बाद बैंक वाले फिर से उस कागज की जांच करेंगे कि वो असली है कि नहीं, कहीं रतन जिंदा तो नहीं, कहीं रतन के परिवार वाले धोखे से उसका पैसा हड़पने की कोशिश तो नहीं कर रहे, और इस तरह अब भी इंतजार करना होगा रतन के मुर्दा खाते से रतन के जिंदा रिश्तेदारों को पैसा निकालने के लिए। जब रतन जिंदा था तब उसने इंतजार किया, अब रतन के घर वाले इंतजार करेंगे। एक इंतजार ही तो है जिसका कोई सबूत किसी सरकारी दफ्तर में नहीं मांगा जाता, क्योंकि इंतजार सरकारी अफसर नहीं वो जनता करती है जो इन्हें सरकारी अफसर बनाती है। चंदन कुमार कश्यप, गढ़वा, झारखंड, आज तक। झारखंड में तो फिर भी एक बैंक के बाहर मुर्दे को दफनाने की जिद थी, लेकिन उड़ीसा में तो एक भाई सिर्फ बैंक वालों को ये यकीन दिलाने के लिए कि उसकी बहन 3 महीने पहले मर चुकी है, 3 महीने पुरानी लाश कब्र से ही बाहर निकाल लाया। इसके बाद वही लाश उसने बैंक के दरवाजे पर लाकर रख दी। तपती पथरीली सड़क, नंगे पांव और जिस्म पर सिर्फ एक लुंगी, मगर पथरीली सड़क की तपिश में उसके कदमों की रफ्तार को कम नहीं कर पा रही है। वो बस तेज कदमों से चलता चला जा रहा है। इसी आलम में उसे कुल 3 किलोमीटर पैदल चलना है। इसके कांधे पर फिलहाल तो कंकाल जैसी कोई चीज नजर आ रही है। कंकाल इसलिए कि आगे की तरफ दोनों पांव किसी कंकाल के पांव की तरह ही नजर आ रहे हैं। बाकी कांधे पर जो कुछ है वो प्लास्टिक की एक बोरी से ढका हुआ है। इसे अपने आसपास से गुजरने वाले किसी की भी कोई परवाह नहीं, या शायद कोई सुधि नहीं। चलते चलते शायद इस बोझ से उसका कांधा दुखने लगा है, तो बीच में वो इसे अपने दोनों हाथों से एक तरह से गोद में लिए चल रहा है। 3 किलोमीटर का सफर या दूरी, खासकर पैदल, वो भी इस तेज गर्मी में तय करना इतना आसान भी नहीं। लेकिन एक कब्रिस्तान से शुरू हुआ ये सफर 3 किलोमीटर बाद जहां जाकर खत्म होना था वहां पहुंचने की शायद इसे जल्दी थी, इसीलिए बिना रुके थके बस ये चलता रहा। आखिरकार 3 किलोमीटर का ये सफर खत्म होता है इस बैंक पर आकर। ये ओडिशा ग्रामीण बैंक का एक ब्रांच है। अपनी मंजिल पर पहुंचते ही अब ये शख्स अपने कांधे से वो बोझ उतारता है और बैंक के दरवाजे के बाहर इस जगह पर रख देता है। बस थोड़ी ही देर हुए थे कि अचानक बैंक का हर स्टाफ ये मंजर देखकर सिहर उठा। दरअसल इस बैंक में कंकाल बन चुका एक मुर्दा अपने खाते से 19,300 रुपए निकालने आया था। जितने भी नियम कायदे कानून लिखत पढ़त कागजी कार्रवाई होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि जिनके लिए ये नियम कायदे कानून बने हैं उन्हें इससे फायदा हो। लेकिन क्या फायदा ऐसे नियम और कानून का जो उन लोगों के किसी काम का ही नहीं जो इसे न पढ़ सकते हैं न समझ सकते हैं। जिस तरह कलेजा चीर देने वाली ये तस्वीरें हैं उससे कहीं ज्यादा कलेजा चाक कर देने वाली इस कंकाल और कंकाल को अपने कांधे पर रखकर 3 किलोमीटर का सफर तय करने वाले इस आदिवासी जीतू मुंडा की कहानी। ओडिशा के क्योंझर इलाके में मौजूद ये ओडिशा ग्रामीण बैंक का एक ब्रांच है। इस बैंक में जीतू मुंडा की बहन कलारा मुंडा का एक खाता है। कलारा मुंडा ने अपने जानवर बेचकर 20,000 रुपए जमा किए और सारे के सारे पैसे इसी बैंक में जमा कर दिया। इस खाते के हिसाब से कलारा का पति और बेटा नॉमिनी थे। इत्तफाक से पति और बेटे की पहले ही मौत हो चुकी थी, अब अकेली कलारा बची थी अब होता यह है कि इसी साल 26 जनवरी को क्लारा की भी मौत हो जाती है बीमारी की वजह से। अब क्लारा के सबसे करीबी रिश्तेदार में उसका इकलौता भाई ही बचा, जीतू मुंडा। वही भाई जीतू मुंडा जिसने 2 महीने पहले अपने हाथों से अपनी बहन क्लारा की मौत के बाद उसकी लाश को यहीं दफनाया था। अब चूंकि क्लारा के घर में कोई रहा नहीं तो सब कुछ जीतू मुंडा ही देख रहा था। जीतू पढ़ा लिखा नहीं है। ग्रामीण बैंक के पासबुक को देखकर किसी पढ़े लिखे ने उसे बताया कि उसकी बहन के खाते में इस वक्त 19,300 रुपए है। चूंकि वो उसका भाई है और कोई नॉमिनी भी नहीं बचा तो इस पैसे पर उसका हक है और वो बैंक से ये पैसे निकाल सकता है। इसी के बाद जीतू बैंक पहुंचा लेकिन बैंक वालों ने ये कहकर उसे पैसे देने से इनकार कर दिया कि जिसका खाता है उसे बैंक लेकर आओ। अब जाहिर है जीतू अपनी मुर्दा बहन को बैंक तो ला नहीं सकता था। उसने बैंक स्टाफ को बताया कि उसकी बहन की जनवरी में ही मौत हो चुकी है लेकिन बैंक वाले नहीं माने। फिर भी पिछले 2 महीने से जीतू लगातार बैंक के चक्कर काटता रहा। पिछले हफ्ते जीतू फिर बैंक पहुंचा तब बैंक स्टाफ ने झल्लाकर उससे कहा कि जिंदा अपनी बहन को नहीं ला सकते तो मुर्दा ही ले आओ, हमें यकीन हो जाएगा तब पैसे निकाल लेना। अब चूंकि जीतू पढ़ा लिखा था नहीं, उसे नॉमिनी, डेथ सर्टिफिकेट या बैंक के नियम कानून कुछ पता नहीं थे, लिहाजा आदिवासी जीतू को लगा कि अगर वो अपनी बहन की लाश बैंक में ले आए तो बैंक वालों को यकीन हो जाएगा। एक बैंक स्टाफ ने उससे ऐसा ही कहा था, फिर क्या था, जीतू ने ठीक ऐसा ही किया। 27 अप्रैल सोमवार के दिन बैंक खुलने से पहले सुबह सुबह जीतू सबसे पहले अपनी बहन की कब्र पर पहुंचा, उसी कब्र पर जहां 3 महीने पहले उसने खुद अपने हाथों से अपनी बहन को दफनाया था। अब वो वापस उसी कब्र को अकेले खोदना शुरू करता है। 3 महीने में लाश कंकाल बन चुकी थी। कंकाल बाहर निकालता है, जिस्म का ऊपरी हिस्सा सिर तक प्लास्टिक की बोरी में लपेटता है और फिर इसी कब्र से कंकाल को अपने कांधे पर रखकर 3 किलोमीटर दूर इस बैंक में पहुंच जाता है। अब पहली बार बैंक के स्टाफ के होश उड़े थे, उन्होंने उसे काफी समझाने की कोशिश की पर अगर जीतू पढ़ा लिखा होता तो पहले ही समझ जाता। वो कंकाल को बैंक के बाहर ही रखकर बस यही कहता रहा कि यह है मेरी बहन के मुर्दा होने का सबूत, अब तो खाते से पैसे दे दो। जब बैंक स्टाफ जीतू को समझाने में नाकाम रहे तब किसी ने पुलिस को खबर दे दी। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और यूं एक कंकाल को बैंक के बाहर रखा देखती है फिर पूरी कहानी सुनती है तो खुद पुलिस हैरान रह

मीटिंग करीब दो घंटे तक मंथन अमित शाह नितिन नवीन और बीएल संतोष मौजूद। पंचायत आज तक के मंच पर दावे अपने अपने। सीएम योगी बोले प्रचंड बहुमत से बनाएंगे जीत की हैट्रिक। विपक्ष का दावा जनता को बीजेपी पर भरोसा नहीं। मदन मित्रा के भी बागी होने के बाद बीजेपी पर भड़की ममता। कहा इनके इशारों पर हमारे नेताओं पर दबाव लेकिन विचारधारा के साथ हमारा कोई समझौता नहीं। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च। बीटा वर्जन में रेल टिकट बुकिंग होगी सुपरफास्ट। नए डिजाइन और फीचर्स का अनुभव ले सकेंगे लोग।

महाराष्ट्र के किसानों की बड़ी राहत, सीएम फडणवीस ने 48,000 करोड़ रुपए का पुराना बिजली का बिल माफ करने का ऐलान किया। सीएम फडणवीस के साथ तकरार की खबरों पर शिंदे का बड़ा बयान, कहा हमारे बीच मतभेद पैदा करना नामुमकिन है। फडणवीस से शरद गुट के नेता जयंत पाटिल की बंद कमरे में लंबी बैठक, महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरणों की चर्चा तेज। जयंत पाटिल और सीएम फडणवीस से मुलाकात के बीच मचे सियासी हलचल पर संजय राउत का बयान, बोले बैठक किसी और मुद्दे पर हुई थी। पुणे में कचरा डिपो हादसे पर बड़ी कार्रवाई, पिंपरी चिंचवड़ निगम के 2 वरिष्ठ अधिकारी निलंबित किए गए, एक ठेकेदार को कल गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र के भीड़ में चलती स्कॉर्पियो कार से निकला धुआं, मिनट्स में जोरदार धमाके के बाद लगी आग, गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक। मुंबई के कोस्टल रोड टनल में चलती कार में भीषण आग लगी, मौजूदा वाहन चालकों में अफरा तफरी मची, डर के मारे गाड़ियां छोड़कर भागने लगे थे लोग। पालघर में मीरा रोड पर एक स्कूल के टॉप फ्लोर पर भीषण आग लगी, समय रहते आग पर काबू पाया गया, बड़ा हादसा टला। नासिक के बावल डैम पर महिला पर्यटक से छेड़छाड़ के विरोध करने पर परिवार का 15 किलोमीटर तक पीछा किया गया, चलती कार पर पत्थरबाजी भी की गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 18,000 रुपए के विवाद में चालक ने 21 लाख का गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक गायब कर दिया, पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। फिल्म तेरा यार हूं का नया डांस सॉन्ग रिलीज किया गया, इस गाने को नकाश ने गाया है और इंद्र कुमार ने इसके बोल लिखे हैं। बदली जा सकती है श्रद्धा कपूर की आगामी फिल्म ईटा की नई रिलीज डेट, यश की फिल्म टॉक्सिक से बॉक्स ऑफिस पर क्लैश से बचने के लिए 28 अगस्त को इसे रिलीज किया जाएगा। इम्तियाज अली के करियर की तीसरी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी है मैं वापस आऊंगा, फिल्म ने 33वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 27 लाख का कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पर फिर से मचेगा रूह बाबा का धमाल, जल्द शुरू होगी कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 4 की शूटिंग, मेकर्स ने कंफर्म किया। फिल्म जन नायकन के लिए 6 महीने का लंबा इंतजार कर रहे फैंस के लिए मेकर्स ने खुशखबरी दी, मूवी की रिलीज डेट का अनाउंस कर दी है, 23 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह के साथ शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे की हाई लेवल मीटिंग के

0: एनडीए में शिंदे का कद बढ़ने जा रहा है। जी हां, खबर यह है कि मोदी कैबिनेट विस्तार में शिंदे गुट के दो और मंत्री शामिल हो सकते हैं, जिसमें डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को कैबिनेट मंत्री और संजय जाधव को राज्य मंत्री बनाने की चर्चाएं हैं। अमित शाह और शिंदे के बीच 15 मिनट तक अकेले में भी चर्चा हुई है। कल शिंदे ने उद्धव कैंप में शामिल हुए 6 सांसदों के साथ अमित शाह से मुलाकात की थी। अब शिंदे की शिवसेना के पास कुल 13 सांसद हो गए, जिससे उनके मोलभाव करने की क्षमता और बढ़ गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋत्विक भालेकर जुड़ गए। ऋत्विक, वैसे भी मौका ऐसा है जब शिंदे बात कर सकते हैं, और ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि ये क्षमता बढ़ जाने के बाद जरूर नेगोशिएट किया जाएगा और कुछ और मिनिस्टर उनकी पार्टी से होंगे केंद्र में।
1: जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उद्धव ठाकरे के 13 सांसद तोड़ने के बाद एनडीए में शामिल हुए, और जिस तरह से एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने एनडीए में अपना कद बढ़ाया है, जाहिर सी बात है अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो एकनाथ शिंदे को तोहफा तो जरूर दिया जाएगा, और ये तोहफा इसी रूप में होगा कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में एक कैबिनेट मंत्री पद और एक राज्य मंत्री पद दिए जाने की चर्चाएं जोरों पर है, जिसमें डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो संसदीय दल के शिवसेना के नेता भी है उन्हें कैबिनेट मंत्री पद मिल सकता है, एक अच्छा पोर्टफोलियो उन्हें दिया जा सकता है, और राज्य मंत्री पद के लिए जो सांसद उद्धव ठाकरे के गुट से एकनाथ शिंदे के पास आया है उनमें से एक सांसद यानी सबसे आगे नाम चल रहा है संजय बंडू जाधव का, जो कि सबसे सीनियर सांसद है, उन्हें राज्य मंत्री पद पर मौका दिया जा सकता है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो शिवसेना के पास कुल 13 सांसद हो गए हैं और मोलभाव करने की क्षमता बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि दो और मिनिस्टर्स हैं जो केंद्र में कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। 15 मिनट तक आज बात हुई है उनकी, इसके बाद और ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई हैं। परिसीमन बिल का मुद्दा अब लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। दक्षिण भारत के कई दल आबादी के आधार पर सीटों के दोबारा निर्धारण को लेकर अपनी आशंकाएं पहले ही जता चुके हैं। ऐसे माहौल में एनसीपी शरद गुट ने ऐलान कर दिया है कि वो मानसून सत्र में इस मुद्दे पर एनडीए का समर्थन करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि क्या शरद पवार के 8 लोकसभा के सांसद एनडीए के खेमे में आकर मोदी सरकार की ताकत को बढ़ाने जा रहे हैं, और क्या वाकई पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामने वाले हैं।
2: देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर वर्षा पर सियासी गहमागहमी बनी रही। दरअसल एनसीपी के दोनों गुटों के नेताओं ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की। पहले से ऐसी अफवाह है कि शरद गुट वाली एनसीपी के कुछ विधायक निर्वाचन क्षेत्र के फंड के नाम पर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन इन सब के केंद्र में मोदी सरकार का आने वाला परिसीमन बिल है। कहा जा रहा है कि परिसीमन बिल को पास कराने के लिए एनडीए को संसद में अतिरिक्त वोटों की सख्त जरूरत है, जिसमें शरद पवार की अहमियत बढ़ जाती है। और इस बीच शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने खुला ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का वो समर्थन करेगी।
3: वी विल कंसीडर प्रोवाइडेड कंसीडर, इंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसीडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड।
2: अब शरद पवार की पार्टी की सियासी ताकत भी समझ लीजिए। लोकसभा में 8 सांसद, राज्यसभा में 3 सांसद, महाराष्ट्र में विधायक 10, महाराष्ट्र में एमएलसी 3। सुप्रिया सुले के ऐलान के बाद परिसीमन बिल जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष के भीतर अलग सियासी संदेश जाता दिखाई दे रहा है। अब शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि एनसीपी शरद गुट की मजबूरी है कि उन्हें परिसीमन बिल का समर्थन करना पड़ रहा है, वरना उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा।
4: देखिए, समर्थन देंगे तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वो संभ्रम में है। उनको उनकी इंडिया अलायंस जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है, इंडिया अलायंस में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है, परसों बोला वो, आज फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है। पिछले समय तो ये 50% वाला मामला था ही, अमित भाई ने खुद लोकसभा में कहा था कि हर राज्य में 50% सीटों में बढ़ोतरी होगी, सिर्फ भाजपा शासित या एनडीए शासित प्रदेश में नहीं होगी, पूरे देश में सभी राज्यों में 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी, ये खुद अमित भाई ने कहा है। तो ये कहां से नया मामला उठा के लाए,

0: ये कारण ढूंढ रहे हैं, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है अगर उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी।
1: इस बीच एनसीपी एसपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री फडणवीस से अपनी आधी रात की मुलाकात पर चुप्पी तोड़ी।
2: मेरे मतदार संघ में एक समस्या थी, वो नगराध्यक्ष को अवैध ठहराया गया, वो 7,000 वोटों से चुन के आया, उसके बारे में मुझे मुख्यमंत्री जी को मिलना और एकनाथ शिंदे साहब को मिलना आवश्यक था। एकनाथ शिंदे साहब दिल्ली चले गए, मुख्यमंत्री जी यहां पे मौजूद थे, मैंने टाइम मांगा, उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने मेरे से मुलाकात की 5-10 मिनट, मैं मेरी जो मुझे जो कहना है उनको कहा और मैं वापस आया।
1: शिवसेना यूबीजी ने भी जयंत पाटिल का मजबूती से समर्थन किया और साथ ही संसदीय रणनीति को लेकर केंद्र पर निशाना साधा।
3: पाटिल के पास गलत इन्फॉर्मेशन, जयंत राव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले, वो अलग विषय है, उनका जो चुनाव क्षेत्र से एक जो नगराध्यक्ष है पब्लिक इलेक्टेड, उनको वहां के कलेक्टर ने डिस्क्वालीफाई किया है गैर कानूनी तरीके से, उस बारे में अपनी बात लेकर जयंत राव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले हैं, ये मेरी जानकारी है और कुछ नहीं। अगर सरकार वापस वो बिल लाती है तो पूरा अपोजिशन एक विरोध करेगा। हमने जो उनको सूचनाएं की है इस प्रकार से बिल में आप थोड़ा दुरुस्ती करो, अमेंडमेंट करो, लेकर आइए, अगर हमारी बात मानी जाती है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे।
1: इधर कांग्रेस कह रही है कि परिसीमन बिल पास कराने के लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद का सहारा ले रही है।
4: कोई भी हालत में ये बिल पारित करने के लिए डिलिमिटेशन का, उसकी पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है, उसमें कोई दो मत नहीं है। आरएसएस और नरेंद्र मोदी की सरकार ये डिलिमिटेशन के बाद देश की संविधानिक व्यवस्था के मूल ढांचे को ही तोड़ना चाहती है और इसलिए उनका जो मकसद है कि ये संविधान आरएसएस को भी एक्सेप्ट नहीं है ना बीजेपी को एक्सेप्ट है और उसी आधार पर संविधानिक व्यवस्था तोड़ने की कोशिश वो पूरी तरह कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि डीएमके हो या उद्धव ठाकरे की सेना हो या शरद पवार जी हो, इनके इसमें नहीं जाएंगे।
1: उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के बाद एनसीपी एसपी पर अपने लोगों को एकजुट रखने का भारी दबाव है। सवाल है कि क्या शरद पवार अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होंगे या ऐतिहासिक परिसीमन बिल को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ ही कदम ताल करते नजर आएंगे।
5: कई आधी रात की मुलाकातें सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा है या फिर महाराष्ट्र में किसी बड़े सियासी उलटफेर का इशारा। सच जो भी हो, लेकिन दिल्ली में आने वाला डिलिमिटेशन बिल इस लड़ाई को और भी दिलचस्प बना देता है। अब देखना यह होगा कि क्या शरद पवार की पार्टी सत्ता में हिस्सेदारी के लिए एनडीए का रुख करेगी या फिर इंडिया अलायंस के साथ डटी रहेगी। महाराष्ट्र की इस सियासी हलचल पर हमारी नजरें टिकी रहेगी। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
6: आज मुंबई कोस्टल रोड पर टनल में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई थी क्योंकि दोपहर करीब 12 बजे कोस्टल रोड की साउथ बाउंड टनल में एक चलती कार में आग लगी। उसके बाद ट्रैफिक जाम हो गया, कई लोग घबराहट में गाड़ी छोड़कर ही भागने लगे, धमाके की अफवाहों से और ज्यादा डर गए थे और बुरे हालात यहां पर नजर आए, जबकि कई ड्राइवर नॉर्थ एंड की तरफ यू टर्न लेने लग गए थे। आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड की इमरजेंसी टीमें यहां पहुंची मौके पर। उसके 1 घंटे के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। करीब 2 घंटे के बाद इस टनल में आवाजाही सामान्य हो पाई थी। लोगों में जबरदस्त पैनिक था।
7: मुंबई के कोस्टल रोड पर हुआ और कोस्टल रोड के टनल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी गाड़ियां जो है वो रोक दी गई है और कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ अंतर पर आग लगने की संभावना जताई जा रही है और लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा, कोई इंस्ट्रक्शंस ठीक से नहीं मिल रहे और इसी कारण लोग जो है यहां पर कहीं ना कहीं डरे हुए, सहमे हुए लग रहे हैं। लोग यहां पर गाड़ियां यू टर्न लेकर वापस निकलने की कोशिश कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर आग लगी हुई है या क्या हुआ है। कुछ लोग जो है उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ है।
8: आगे आग लग गया, आग लग गया, आगे देखा नहीं, आगे आगे
7: कितना दूर?
8: दो मिनट आगे, दो मिनट।
7: कोई हताहत हुआ है किसी को?
8: नहीं, आगे नहीं पहुंच पाया, आगे नहीं पहुंच।
7: कोई पुलिस या कोई फायर ब्रिगेड? कोई
8: अभी हम लोग यहाँ अरेंज कर रहे हैं, सबको रिवर्स निकलने का अरेंज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हम
7: लोग कितने लोग फंसे हुए हैं? सभी गाड़ियाँ छोड़ के निकल
8: सब गया। काफी ड्राइवर मेन टैक्सी वाले निकल के भाग गए, टैक्सी वाले भाग गए। जब प्राइवेट
7: कितनी बड़ी आगे, कितनी बड़ी
8: आग तो दिख रही थी, लपटे दिख रही थी मुझे, पहले देखा बहुत ज्यादा लपटे दिख रही थी, पूरी बहुत फ्लेम था, बड़ा फ्लेम था।
7: कितने देर से यहाँ?
8: ये 5 मिनट हो गए।
7: तो पिछले 5 मिनट से यहाँ पर आग की लपटें दिखाई दे रही है। डरे हुए सहमे हुए लोग यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये अफरा तफरी का जो माहौल है, हम देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां जो है यहाँ पर यूटर्न ले रही है और यूटर्न होकर यहाँ पर आग लगी है ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर आग लगी है ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर अब देख रहे हैं कि शायद रेस्क्यू के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर पहुंच रही है। हालांकि कुछ किलोमीटर के अंतर पर यहां से आग की लपटें दिख रही है ऐसा बताया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की और देखने की कि आखिरकार यहां पर क्या माहौल है। हमारी खुद की गाड़ी भी यहां पर अटकी पड़ी है और कुछ लोग जो है जो उल्टी दिशा से यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या हुआ है?
9: आग लगा है।
7: कितना बड़ा आग है?
9: मैं
7: कितना बड़ा
9: देखो, उधर जाके देखो, मुझे भी नहीं मालूम।
6: तो लगभग 2 घंटे लगे सामान्य हालात होने में, क्योंकि लगा ये था कि शायद ब्लास्ट हुआ है और इसीलिए ज्यादा पैनिक कर गए थे लोग। उधर मुंबई के चेंबूर इलाके में पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत के मामले में बीएमसी ने जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। हादसे के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दी है। साथ ही साथ साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और साथ ही साथ कंसल्टेंट पर भी कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश भी की है। सवाल अब यह है कि क्या मुंबई वालों की जान की कीमत सिर्फ 7 लाख रुपए है?

0: अब की बार मुंबई में मॉनसून हादसों की बाढ़ लेकर आया। बारिश से हुए अलग अलग हादसों में 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में एक शख्स की खुले मेनहोल में गिरने से मौत हो चुकी है। बारिश से हुए हादसों की चर्चा विधानसभा तक में हुई। स्पीकर राहुल नार्वेकर से लेकर बीजेपी विधायक अमित साटम तक ने लानत मलानत और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही, लेकिन नतीजा क्या निकला? सबसे दर्दनाक मौत चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से हुई थी। इस हादसे में 11 साल के छात्र विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी, जबकि कई बच्चे घायल हुए थे।
1: मुंबई के चेंबूर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर दोपहर से ही बारिश हो रही थी और स्कूल से भरी हुई बस बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी, तभी यहां पर एक पेड़ था जो उस बस पर गिर गया। इस हादसे में 10 बच्चे घायल हुए हैं, तो वहीं 4 बच्चों को इलाज के लिए जैन हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, तो वहीं एक 11 वर्षीय बच्चे की इसमें मृत्यु हो गई है। काफी दर्दनाक हादसा था, बारिश हो रही थी, कई जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई थी। ये चेंबूर भी उन्हीं इलाकों में से एक था जहां पर पेड़ गिरा था, यही वो पेड़ था जो गिरा। फिलहाल बस को यहां से हटा दिया गया है, लेकिन अब इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। बहुत ही विशाल ये पेड़ था जिसे काट के एक तरफ किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं अभी भी इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। प्रशासन का राहत कार्य जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका था, लेकिन इस घटना के लिए जो दोषी है उन पर भी कार्रवाई की मांग जो पूर्व MP हैं यहाँ के राहुल चौहान उनके द्वारा की गई है।
0: लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि BMC की जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई। इस दुखद घटना की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली BMC कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी। साथ ही साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। मुंबई BJP अध्यक्ष अमित साटम ने भी नाराजगी जताते हुए एक न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन पोस्ट करते हुए लिखा, विहान की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? BMC का कहना है कि कोई नहीं। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने भी चेंबूर हादसे की जांच रिपोर्ट पर हैरानी जताते हुए कहा कि खानापूर्ति वाली कार्रवाई मंजूर नहीं है।
2: उसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा Day 1 से एक ही स्टेटमेंट था, ये जो रोड बने हैं ये मुंबईकर के लिए बने, मुंबईकर बहुत खुश है क्योंकि आज की तारीख में बारिश में पॉटहोल्स नहीं दिख रहे जहाँ पे रोड बने हैं, साइड ड्रेन भी बने हैं, लेकिन ये काम ये किसका था? मुंबई महानगर पालिका और उसके यहाँ पे जो निश्चित किए गए साइट इंजीनियर का काम था और वहाँ पे गार्डन डिपार्टमेंट का काम था, तो ये संयुक्त उन्होंने मिलके वो काम करना चाहिए था। वहाँ पे जो विजिट मैंने करने के बाद भी मैंने कहा था कि ये जो पूरे पेड़ है ये वीक हो रहे हैं, तो वहाँ के जो साइट इंजीनियर है उसकी जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, गार्डन का अधिकारी है उसकी ना जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, बल्कि ना 7 लाख रुपए दे के बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा।
0: राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य भर में सड़क किनारे लगे सभी पेड़ों का ऑडिट किया जाना चाहिए। BMC की रिपोर्ट पर मेयर की आलोचना का समर्थन करते हुए विपक्ष के नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा कि सिर्फ असहमति जताना काफी नहीं है। पेडनेकर ने कहा कि मेयर को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। वहीं BMC में शिवसेना के ग्रुप लीडर अमेय घोले ने कहा कि चेंबूर हादसे की रिपोर्ट अभी पेश नहीं की गई है, लेकिन पता नहीं कि जानकारी बाहर कैसे आई। उन्होंने भी पेड़ गिरने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
3: जो जो ऑफिसर्स के नीचे से ये पूरा कंप्लेन जो झाड़ के बारे में गया है उनकी इंक्वायरी होके उसपे ऊपर जो कुछ निर्णय आ सकता है वो महानगर पालिका ने देना चाहिए।
0: वहीं विरार में पानी भरे गड्ढे मौत का जाल बनते जा रहे हैं। ऐसे गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। विरार में बारिश भले थम गई, लेकिन बारिश के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। विरार पश्चिम में जकात नाका के पास सड़क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। CCTV में कैद इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ प्रवीण नालावड़े, पालघर आज तक।
4: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start, Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.

0: जुलाई से सितंबर तक का सीजन किसानों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है और ये सीजन खरीफ का है, यानी कि दलहन और तिलहन इसी सीजन में बोई जाती हैं, धान बोई जाती है। लेकिन खराब मानसून और कम बारिश की वजह से किसानों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। वो अपनी फसलों की बुआई नहीं कर पा रहे। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि इनकी 80 से 85% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
1: विदर्भ का किसान इस समय तिहरी मार झेल रहा है। पहले मानसून देर से आया, फिर कई किसानों को सोयाबीन के बीजों का अंकुरण नहीं होने के कारण दोबारा बुआई करनी पड़ी, और अब पिछले 6 दिनों से बारिश थमने के कारण खेतों में खड़ी फसल सूखने लगी है। विदर्भ की 80 से 85% खेती आज भी सिर्फ मानसून पर निर्भर है। ऐसे में किसान खेतों में गुड़ाई कर बची हुई नमी फसलों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: करीबन 1.5 लाख रुपए अब कैसा भरेंगे, अब जो भी होएंगे अब बैंक देखेंगे, हमारी हर राशि में लगाएंगे खेत, और इसके और कुछ कर सकते नहीं, हम क्या करेंगे। हमने कर्जा जो लिए काय के लिए लिए, फसल के लिए, फसल ही नहीं रही तो पैसे भरेंगे काय कहाँ से। अभी समझ लो 8-10 दिन पानी नहीं आए तो ट्रैक्टर डालो, खेत काला करके मोकला करो, इसके अलावा कुछ कर सकते नहीं हम।
3: मजूर के भाव बढ़ गए, अब खाद के भाव बढ़ गए, बीज के भाव बढ़ गए तो कितना पैसा लगाना, जितना पैसा रहता सोना नाना सब बैंक पे रखना पड़ता, कर्जा लेना पड़ता, फसल आने के बाद में वापिस दे देते, अब ये आया ही नहीं तो कैसा करेंगे हम।
1: इस साल विदर्भ में मानसून की शुरुआत देर से हुई। शुरुआती बारिश के बाद किसानों ने बड़े पैमाने पर सोयाबीन, कपास, धान और तुअर की बुआई की, लेकिन सामान्य के मुकाबले अब तक अपेक्षित बारिश का केवल 70 से 75% हिस्सा ही दर्ज हो पाया है, जिससे बारिश का बैकलॉग बना हुआ है। पिछले 6 दिनों से बारिश लगभग थम सी गई है।
4: ज्यादा अगर फसल विदर्भ में होती है तो वो है कॉटन की, कपास की। अब वो भी फसल देखिए आप किस तरह से, यहाँ पर एक एक पत्ता जो है उसका पानी नहीं होने के चलते जो है पीला पड़ते जा रहा है, तो कहीं जलते नजर आ रहा है। ये पूरी हकीकत जो है ये विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की है। लगभग विदर्भ में जिस तरीके से सरकारी आंकड़े के मुताबिक जो है वो यहाँ पर जिस तरीके से हर साल बारिश होनी थी उससे कम हुई है, तो लगभग विदर्भ के पूरे क्षेत्र में लगभग 75% ही बुआई हुई है, जो पिछले साल के मुताबिक, यानी पिछले साल लगभग 99-100% बुआई हुई थी, लेकिन इस वक्त बुआई इसलिए कम हुई है कि बारिश ही ठीक ठाक नहीं है। पश्चिम विदर्भ में कुछ इलाकों में मानो अकोला या उसके लगभग जो है वो अमरावती है, यवतमाल है, बुलढाणा है, वहां तो ठीक ठाक बारिश जरूर नजर आ रही है, लेकिन वो कुछ ही इलाकों में है, चंद इलाकों में है।
1: मराठवाड़ा में इस साल मानसून की बेरुखी के कारण किसानों पर दोबारा बुआई का भारी संकट मंडरा रहा है। इसी आर्थिक और मानसिक तनाव के चलते बीड जिले के एक किसान ने आत्महत्या कर ली। गेवराई तहसील के रानमला गांव के 25 साल के युवा किसान मुकुंद गंगाराम हिंगे ने रविवार को अपने घर में फांसी लगा दी। इस साल बारिश न होने से फसलें बर्बाद हो गई, जिससे कर्ज चुकाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
5: पाऊस पानी नहीं, आज विहिरीत पानी नहीं, बोरला पानी नहीं, ऊस जळून गेलाय आणि त्याला त्याच्याकडे कर्जाचा डोंगर झाल्यामुळं त्यांना निराश झाला, आणि निराश होऊन त्यांना आत्महत्या केली।
1: बीड जिले में इस साल बारिश की स्थिति बेहद चिंताजनक है। जुलाई का आधा महीना बीत जाने के बाद भी जिले में केवल 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिले में कुल 8 लाख हेक्टेयर बुआई के लायक क्षेत्र है, लेकिन पानी की कमी के कारण अब तक केवल 4 लाख हेक्टेयर पर ही किसी तरह बुआई हो सकी है। जिन किसानों ने शुरुआती हल्की बारिश पर बुआई की थी उनकी फसलें अब सूख चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में भी मानसून की रफ्तार थम सी गई है। जून लगभग सूखा गुजर गया और जुलाई में भी बारिश उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा असर अब किसानों पर दिख रहा है। बेमेतरा और राजनांदगांव जैसे कृषि प्रधान जिलों में खेत तैयार हैं, लेकिन पानी नहीं है, कहीं बुआई नहीं हो पा रही तो कहीं अंकुर निकलने के बाद फसल सूखने लगी है। किसान अब आसमान की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं।
6: इस बार मौसम की बेरुखी से सबसे ज्यादा परेशानी अगर हो रही है तो किसानों को हो रही है, हम लोगों को हो रही है। मैं जान सकता हूं कि क्या स्थिति है। अब आप देखिए कि मेरे पूरे खेत की जुताई हो चुकी है, पूरा खेत तैयार है, मैं सिर्फ पानी का इंतजार कर रहा था कि पानी गिरे तो अपनी फसलों को जो लगाऊं रोपाई करूं। सबसे पहले चीज़ थी कि हमने ये उम्मीद थी कि इस बार बरसात अच्छी होगी, हालांकि सरकार जो वैज्ञानिक है वो कह रहे थे बरसात कम होगी, लेकिन उम्मीद थी कि बरसात अच्छी होगी, इसीलिए हम तैयारी की। लेकिन क्या करें, उम्मीद में हम अपने खेतों की जुताई कर चुके हैं, तो हम सीधा सीधा श्री पद्धति से, जो वैज्ञानिक पद्धति होता है श्री पद्धति, उससे हम उनारी कर रहे हैं ताकि अगर पानी गिरे तो हमारी फसल कुछ तो हो जाए, इसी उम्मीद से हम लोग अभी फसल को लगा रहे हैं।
1: बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता सिर्फ फसल तक सीमित नहीं है, कई किसानों ने खाद और बीज खरीदने के लिए कर्ज लिया है। उन्हें दोबारा बुआई की आशंका और आर्थिक नुकसान दोनों का डर सता रहा है। इसीलिए किसान सरकार से फसल नुकसान का सर्वे, उचित मुआवजा और फसल बीमा के दावों का जल्द निपटारा करने की मांग कर रहे हैं।
7: मानसून देखा है तो पिछले एक हफ्ते सक्रिय रहा है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से देखा है तो कोई खास सिस्टम नहीं है, और मानसून ट्रफ भी है जो उत्तर को और पोजिशन है, जिसकी वजह से प्रदेश का पिछले 2 दिन से शुष्क रहा। लेकिन आज का स्थिति में देखा है तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो हेड बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ है, जिस प्रभाव से आज और कल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की चांस है, एंड पूर्वी इलाकों में 1-2 स्थानों पर मध्य से लेके भारी वर्षा भी होने की संभावना है।
1: आज तक ब्यूरो।
0: और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
10: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
9: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
8: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

कैबिनेट और संगठन में हेरफेर में बदलाव की खबरों के बीच प्रधानमंत्री आवास पर हुई मीटिंग, करीब दो घंटे तक चले मंथन में अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष रहे मौजूद। पंचायत आज तक के मंच पर दावे अपने अपने, सीएम योगी बोले प्रचंड बहुमत से बनाएंगे जीत की हैट्रिक, विपक्ष का दावा जनता को बीजेपी पर नहीं है भरोसा। मदन मित्रा के भी बागी होने के बाद बीजेपी पर भड़की ममता, कहा इनके इशारों पर हमारे नेताओं पर दबाव लेकिन विचारधारा से हमारा कोई समझौता नहीं। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च, बीटा वर्जन में रेल टिकट बुकिंग होगी सुपरफास्ट, नई डिजाइन और फीचर्स का अनुभव ले सकेंगे लोग। और पीओजेके में पाकिस्तान को खुला चैलेंज, आंदोलनकारी नेता मान खान शहबाज मुनीर को ललकारते हुए नजर आए, कहा ये कब्जे वाला इलाका

कैबिनेट की बैठक में देश के इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले, कुल 2,19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर मोहर। सेमीकंडक्टर 2.0 और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी कैबिनेट ने दिया बूस्ट, 1,27,500 करोड़ के बजट के साथ सेमीकंडक्टर 2.0 को मंजूरी, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी। लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए झारखंड रेल प्रोजेक्ट में 1,365 करोड़ रुपए का निवेश, 24 लाख रोजगार की उम्मीद। वाराणसी के लिए 2 बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी, वरुणा नदी के किनारे होगा 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण, गंगा किनारे 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के विकास को भी हरी झंडी। कृषि क्षेत्र और किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट ने नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 को स्वीकृति दी। कैबिनेट और संगठन में हेरफेर में बदलाव की खबरों के बीच प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक, अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष मौजूद थे। 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद 21 एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उससे पहले सर्वदलीय मीटिंग में टीएमसी होगी शामिल। कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एमओयू साइन, गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में समझौता। दिल्ली में चुनाव आयोग ने बढ़ाई है एसआईआर की तारीख, 8 अगस्त तक भर सकते हैं एसआईआर फॉर्म, अब 19 अक्टूबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज हुई, अगले 24 से 48 घंटे में आ सकती है एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट। पंचायत उत्तर प्रदेश आज तक के मंच पर दावे अपने अपने, सीएम योगी बोले प्रचंड बहुमत से बनाएंगे जीत की हैट्रिक, राम को नकारने वाले आस्था की कर रहे हैं बात, अयोध्या को बदनाम करना न्याय संगत नहीं है। सीएम योगी के दो टू का नए भारत के निर्माण में यूपी का अहम योगदान है, सभी खानदान ने राज्य को डुबोया, हमने टॉप 3 में पहुंचाया। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले पिछड़े वर्ग के मंत्री ही देख, मंत्री अखिलेश का हाजमा रहता है खराब, योगी मंत्रिमंडल में ओबीसी ही कर रहे हैं राज। पंचायत आज तक कार्यक्रम में डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसपी को आड़े हाथों लिया, कहा मस्जिद के लिए चंदा का हिसाब क्यों नहीं, विपक्ष गुमराह करके वोट लेना चाहता है, यूपी के लोग एसपी से उठ चुके हैं। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा चढ़ावा चोरी बनेगा चुनावी मुद्दा, राहुल गांधी के साथ यूपी चुनाव में होगा गठबंधन। पंचायत आज तक में धर्मेंद्र प्रधान बोले यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीत सरकार बनाएगा इंडिया गठबंधन। आज तक के मंच पर सांसद रवि किशन का दावा, यूपी में बीजेपी की हैट्रिक तय, 2027 में 17 की जीत का टूटेगा रिकॉर्ड। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा एनडीए गठबंधन में कोई मतभेद है ही नहीं, देश के 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है, जल्द टूटेगा एनडीए गठबंधन। पंचायत आज तक में चिराग पासवान ने की शिरकत, बोले यूपी में मेरी तैयारी 403 सीटों पर है, मैं समाज के हर वर्ग के लिए समर्पित। कांग्रेस नेता अजय राय का यूपी चुनाव में जीत का दावा, बोले 403 विधानसभा में पूरी तैयारी, कांग्रेस कार्यकर्ता भरपूर जोश के साथ काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, दीदी के करीबी और पूर्व मंत्री मदन मित्रा भी बागी गुट में शामिल हुए, थामा ऋतु बत्रा का हाथ। मदन मित्रा के बागी होने पर ममता बनर्जी का आरोप, बोली बीजेपी के इशारों पर हमारे नेताओं पर दबाव, लेकिन विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी शिफ्ट करने का दिया आदेश, 6 हफ्ते में जमीन स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होगी। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं, कांवड़ियों की सुरक्षा सुगम यात्रा के लिए किए जा रहे हैं प्रबंधों को निरीक्षण किया गया। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त है, भाले, त्रिशूल, तलवार, बेसबॉल के डंडे, जुगाड़ वाहन और साइलेंसर्स का प्रयोग पूरी तरह से बैन। रामपुर में एसपी नेता आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन, 40 में से 38 अवैध इमारतों पर चलेगा बुलडोजर, बिना नक्शा पास कराए हुआ था निर्माण। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज का विवादित बयान, जम्मू कश्मीर के लिए उठाया आंतरिक स्वायत्तता का मुद्दा, कहा अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ाई जरूरी। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, बिट्टू सिंह और केसी सिन्हा समेत कई नेता बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में बदल सकते हैं सियासी समीकरण, पर सीमन बिल के पर सरकार का साथ देगा एनसीपी, शरद पवार गुट। सुप्रिया सुले ने परिसीमन मुद्दे पर मीडिया रिपोर्ट्स को बताया अटकलें, कहा एनसीपी एसपी के परिसीमन बिल का समर्थन करने की अफवाहें पूरी तरह से बेबुनियाद। महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत, सीएम फडणवीस ने 48,000 करोड़ रुपए का पुराना बिजली का बिल माफ करने का ऐलान किया। सीएम फडणवीस के साथ तकरार की खबरों पर शिंदे का बड़ा बयान, कहा हमारे बीच मतभेद पैदा करना नामुमकिन। सीएम फडणवीस के शरद गुट के नेता जयंत पाटिल की बंद कमरे में लंबी बैठक हुई, महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरणों पर चर्चा तेज। जयंत पाटिल और सीएम फडणवीस की मुलाकात से बचे सियासी हलचल पर संजय राउत का बयान, बोले बैठक में किसी और मुद्दे पर बात हुई। पुणे में कचरा डिपो हादसे पर बड़ी कार्रवाई, पिंपरी चिंचवाड़ निगम के 2 वरिष्ठ अधिकारी निलंबित और कल एक ठेकेदार की गिरफ्तारी हुई थी।
नवी मुंबई एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ। अबुधाबी के लिए पहली सेवा शुरू। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान को मिला वाटर सैल्यूट। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन के एक महीने में ही 61,000 यात्रियों ने भरी उड़ान। अभी 15 शहरों के लिए मिल रही है फ्लाइट। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट 2026 का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया इसमें शामिल हुए। धनबाद के निरसा में एलिवेटेड रोड पर सियासी संग्राम। सांसद डुल्लू महतो और विधायक अरूप चटर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा का करके शक्ति प्रदर्शन किया। भोपाल में ट्रैफिक नियमों पर सख्ती। मजिस्ट्रेट चेकिंग में हटाया गया वैध हुड और काली फिल्म। तेलंगाना के मशहूर हैंडलूम कारीगर विजय कुमार ने देवी भ्रमरांबा को हाथ से बुनी रेशम की अनोखी साड़ी भेंट की। माचिस की एक छोटी सी डिब्बी में समा सकती है ये साड़ी। तिरुपति के अस्पताल में जवानों का मॉक ड्रिल। इमरजेंसी से निपटने के लिए किया गया मॉक ड्रिल। आज से शुरू हो रही है भगवान जगन्नाथ की पवित्र यात्रा। उड़ीसा में पुरी में मेगा तैयारियां। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। पुरी में रथ यात्रा से पहले डीजीपी ने जगन्नाथ मंदिर का दौरा किया। सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। अहमदाबाद में 149वीं रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हुई। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने जगन्नाथ मंदिर में गुंबज पर ध्वजारोहण किया। मानसून ने पहाड़ों पर सुहाना हुआ है मौसम। चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। बद्रीनाथ धाम में रोजाना आने वाले भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी लौटी श्रद्धालुओं की रौनक। अब तक मत्था टेकने वाले पहुंचे 1,97,548 सिख श्रद्धालु। असम के लखीमपुर में भारी बारिश के बीच बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाके पानी में डूबे। सिक्किम के गैंगटॉक में भी जोरदार बारिश। भूस्खलन के अलर्ट के बीच प्रशासन सतर्क। कोलकाता में भारी बारिश के बाद तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहाना लेकिन थम गई है ट्रैफिक की रफ्तार। नेपाल में बारिश के बाद उफनाई पहाड़ी नदियां। 22 गांवों का टूट गया है संपर्क। नेपाल में बारिश के चलते मुजफ्फरपुर की बागमती नदी में उफान। तेज बहाव से कटी सड़क। प्रशासन अलर्ट पर। हर साल बागमती नदी में उफान के कारण मुजफ्फरपुर में कटरा प्रबंध प्रखंड में आती है भीषण बाढ़। गांवों और स्कूलों में पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त। मथुरा में बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर। वृंदावन में 3 फीट बढ़ गया यमुना का पानी। विशाखापट्टनम के बीच लहरों में बहे तेलंगाना के आए 5 पर्यटक। मरीन पुलिस ने बचाया सुरक्षित। नोएडा के ममूरा में 5 मंजिला घर में लगी थी भीषण आग। 2 लोगों की मौत हुई। इलेक्ट्रिक बाइक में चिंगारी की वजह से हुआ हादसा। नोएडा के ममूरा में आग की लपटों में फंसे 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हादसे के समय 50 परिवार मौजूद थे। गुरुग्राम में किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी थी विकराल आग। धुएं का गुबार देकर इलाके में हड़कंप मचा। महाराष्ट्र की बीड़ में चलती स्कॉर्पियो एंड कार से निकला था धुआं। मिनट्स में जोरदार धमाके के साथ आग लगी। गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक। मुंबई के कोस्टल रोड टनल में चलती कार में लगी थी भीषण आग। मौजूदा वाहन चालकों में मच गई थी अफरा तफरी। डर के कारण गाड़ियों को छोड़कर भागने लगे थे लोग। पालघर में मीरा रोड पर एक स्कूल के टॉप फ्लोर पर लगी थी आग। समय रहते आग पर काबू पाया गया। बड़ा हादसा टला। नासिक के भावली डैम पर महिला पर्यटक से छेड़छाड़। विरोध करने पर परिवार का 15 किलोमीटर तक पीछा किया। चलती कार पर पत्थरबाजी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 18,000 रुपए के विवाद में चालक ने 21 लाख का गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक गायब कर दिया। पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। कर्नाटक के बेलगावी में जिमखाना क्लब में गोलीबारी हुई। कारोबारी की हत्या की कोशिश में हथियारों के साथ बेखौफ घूमते नजर आए आरोपी। झारखंड के गढ़वा में जुआ खेलने और कमीशन के लेन देन को लेकर विवाद में युवक को गोली मारी। इलाज के दौरान मौत। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर किसान को गोली मारने के आरोप हैं। घायल बोला आए थे जमीन को कब्जाने। पटना के टीवीएस शोरूम में घुसकर लूटपाट और मारपीट। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। जांच के लिए एसआईटी गठित। मुजफ्फरपुर में जमानत पर आए युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक पर मिला था शव। इलाके में सनसनी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बुजुर्ग दंपति की हत्या के बाद शव को जलाया गया। पुलिस ने जमीन विवाद में वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई। जयपुर की आमेर घाटी में तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हुई। एक की मौत हुई। 2 गंभीर रूप से घायल है। महाराष्ट्र के वसई में स्कूटी से पेट्रोल चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। अमरावती में लड़की को लेकर विवाद में युवक की बेरहमी से हत्या। 3 नाबालिग समेत 4 की हिरासत। रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसा। पेड़ से टकरा गई थी यात्रियों से भरी हुई बस। हादसे में 1 की मौत हुई। 11 घायल। रायसेन में 2 भाइयों के जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद। खेत में बुआई के दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू से मारकर हत्या कर डाली। जयपुर में पूर्व जज के बेटे ने बहन पर किया जानलेवा हमला। कार के शीशे तोड़कर डंडे से पीटा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के फॉर्मेट में आईसीसी ने ऐतिहासिक बदलाव किए। इस नए नियमों के तहत नॉकआउट से पहले खेले जाएंगे सुपर सीरीज और सुपर 7 राउंड। टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों को और ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाना है इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य ताकि शुरुआती दौर को हल्के में न ले सके कोई भी टीम। इंग्लैंड में खेले गए वनडे में बुमराह ने रचा इतिहास। वनडे ने पूरे में
वनडे में पूरे किए 150 विकेट। साथ ही इंग्लैंड में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने बुमराह। बदला जा सकता है टीम मुंबई का, मुंबई इंडियंस का कप्तान। मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या की टीम से विदाई के साथ तिलक वर्मा या जसप्रीत बुमराह को मिल सकती है कप्तानी। अगले साल में पूरी तरह बदल जाएगा दुनिया के सबसे बड़े शतरंज टूर्नामेंट फिडे वर्ल्ड कप का फॉर्मेट। अब शुरुआत से नॉकआउट मैच की जगह सभी खिलाड़ी स्विस लीग खेलेंगे, उसके बाद टॉप 16 खिलाड़ी नॉकआउट में पहुंचेंगे। फिल्म तेरा यारू में का डांस सॉन्ग रिलीज हुआ, इस गाने को नकाश अजीज ने गाया है, इंद्र कुमार ने लिखे हैं इसके बोल। बदली जा सकती है श्रद्धा कपूर की आगामी फिल्म ईटा की रिलीज डेट। यश की फिल्म टॉक्सिक से बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए अब 28 अगस्त को रिलीज करने की तैयारियां। इम्तियाज अली के करियर की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है मैं वापस आऊंगा। फिल्म ने 33 दिन बॉक्स ऑफिस पर 27 लाख का कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पर फिर बचेगा रूह बाबा का धमाल, जल्द शुरू होगी कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 4 की शूटिंग, मेकर्स ने किया कन्फर्म। फिल्म जन नायकन के लिए 6 महीने का लंबा इंतजार कर रहे फैंस के लिए मेकर्स ने खुशखबरी दी, मूवी की रिलीज डेट अनाउंस की गई, फिल्म 23 जुलाई को रिलीज होगी। ईपीएफओ ने 3 से 7 दशक पुरानी 3 योजनाओं को अपडेट किया है, इसके बाद पेंशन क्लेम का निपटारा 20 दिनों में होगा और देरी से क्लेम पर 12% ब्याज का प्रावधान किया गया है। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप को यूजर नेम फीचर फिलहाल लॉन्च नहीं करने के निर्देश दिए। सरकार के मुताबिक इस फीचर से पहचान छुपाकर धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ने की आशंकाएं। जून में यूपीआई से रोजाना 75 करोड़ से ज्यादा लेनदेन के बाद कुल ट्रांजैक्शंस में बीते महीने 23% का उछाल दर्ज किया गया, वैल्यू के हिसाब से 20% की बढ़ोतरी हुई। जून में भारत ने रोजाना रिकॉर्ड 4.93 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात किया है, 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन के साथ भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बना रूस। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिका को दी है चेतावनी, कहा सितंबर में होने वाले चुनावों में दखल न दे अमेरिका, हम अमेरिकी चुनावों में दखल नहीं देते। तुर्की में सैन्य तख्ता पलट की कोशिश में 10वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, सांसदों ने इस दौरान स्मारक पर फूल चढ़ाकर मारे गए लोगों को याद किया। इटली की राजधानी रोम में इसराइल और लेबनान में शांति की दिशा में बड़ा कदम, दोनों ही दिशाओं में पायलट जोन बनाने पर सहमति बनी। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका का हमला, हमले में 7 ईरानी सैनिकों की मौत हुई, अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को भी निशाना बनाया। रूसी सेना का यूक्रेन के ओडेसा और सुमी में भीषण हमला, दोनों ही हमले में 6 लोगों की मौत हुई, 15 से ज्यादा घायल हुए। यूक्रेन और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक रक्षा समझौता ड्रोन डील पर दोनों ही पक्षों ने हस्ताक्षर किए, इस डील से सालाना 2 करोड़ ड्रोन बनाने का लक्ष्य। रूस ने लिथुआनिया के हमलों के आरोपों को खारिज किया, कहा लिथुआनिया ने लोगों को डराने और ब्रेन वॉश करने के लिए रची थी कहानी। पीएम पद छोड़ने से पहले के स्टामर का ब्रिटिश संसद में आखिरी भाषण, कहा यह मेरे राजनीतिक यात्रा का अंत है, सांसदों ने खड़े होकर स्टामर को विदाई दी। न्यूजीलैंड में बर्ड फ्लू की दस्तक, पहला मामला सामने आया, राजधानी वेलिंगटन के पास समुद्री पक्षी में हुई वायरस की पुष्टि, खतरनाक वायरस की वजह से दुनिया भर में पक्षियों की हो चुकी है मौत। तुर्की के मिलास में इलाके में भड़की थी जंगल में जबरदस्त आग, बढ़ती हुई आग के बाद रिहायशी इलाकों को खाली कराया गया, 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और ब्लैक एंड व्हाइट में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले आपको पीओके में पाकिस्तान के सेना की वो बर्बरता दिखाएंगे जिसने पीओके को जलियांवाला बाग बना दिया। जनरल डायर बने मुनीर की सेना ने सस्ती बिजली, आटा और रोजगार मांगने वाले लोगों पर सीधे गोलियां बरसाई और 9 लोगों की हत्या कर दी। इस बर्बरता के बावजूद पीओके में हजारों लोग सड़कों पर हैं और आजादी के नारे वहां सड़कों पर गूंज रहे हैं। आज सवाल यह है कि गजा पर रोने वाले लोग पीओके के मुसलमानों पर आखिर खामोश क्यों हैं? इसके बाद आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ फॉर्मूस में 20% वसूली वाली बात से यू टर्न क्यों ले लिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में एक बार फिर से पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाने की धमकी दी है, लेकिन बार बार के यू टर्न के चलते ईरान ने अब इन चेतावनियों को गंभीरता से लेना ही छोड़ दिया है, क्योंकि वो धमकी देते हैं और बार बार पीछे हट जाते हैं। इसके बाद आपको इंग्लैंड के पीटरबोरो शहर में लिए चलेंगे जहां पर एक 40 साल पुराने भगवान श्री राम के मंदिर को हटाने की तैयारियां हो रही हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर की जगह को अब एक मस्जिद बनाने के लिए बेचा जा रहा है। ये उस शहर की कहानी है जहां पहले से 19 मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन एकमात्र हिंदू मंदिर को सिर्फ इसलिए नीलाम कर दिया गया क्योंकि स्थानीय प्रशासन को एक इस्लामिक संस्था से ज्यादा पैसे मिल रहे थे। आखिर में आपको बताएंगे फीफा वर्ल्ड कप में आज रात सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं है बल्कि एक जंग होने जा रहे हैं। आखिर क्यों इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच में होने वाला यह सेमीफाइनल मुकाबला कड़वाहट और बदले का मैच बन चुका है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की क्रूर सेना ने पीओके को जलियांवाला बाग बना दिया और आसिम मुनीर खुद जनरल डायर बन गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो लोग सस्ती बिजली, आटा और नौकरियों की मांग कर रहे थे, उन पर पुंछ डिवीजन में पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों ने कल रात बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, बर्बरता दिखाई और 9 लोगों को गोलियों से भूनकर मार डाला, उनकी हत्या कर दी। पीओके के लोगों पर यह अत्याचार सिर्फ इसलिए किया गया ताकि वो अपने मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च को स्थगित कर दें, लेकिन जनरल डायर बना आसिम मुनीर ऐसा करके भी कामयाब नहीं हुआ। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो पाकिस्तानी सेना के क्रूरता के बाद भी बड़ी संख्या में लोग आपको यहां सड़कों पर उतरे हुए दिखाई देंगे जो विरोध कर रहे हैं, मुखर हो रहे हैं। और रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लोगों ने सेना और सरकार को यह कहते हुए ललकारा कि अब वो इस जुल्म को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अब और सहेंगे नहीं। बड़ी बात इसमें यह है कि आसिम मुनीर ने हजारों जवानों को पीओके में तैनात किया है, लेकिन इसके बावजूद पीओके के लोगों ने अपना आंदोलन स्थगित नहीं किया है। वो अड़े हुए हैं, वो खड़े हैं। 9 लोगों की हत्या के बाद भी सरकार और सेना का विद्रोह करने के लिए लॉन्ग मार्च निकाला गया और इसमें भी पीओके की आजादी के नारे लगाए गए। और यकीन मानिए, पीओके में इस बार जो हो रहा है वो पहले हुए तमाम आंदोलन से बिल्कुल अलग है, जुदा है। आसिम मुनीर को डर है कि यह विद्रोह पीओके को पाकिस्तान से आजाद कराने की नींव भी बन सकता है।
1: एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है।
2: ये वतन
0: सोचिए, जो पाकिस्तान ईरान युद्ध में मध्यस्थता की कोशिशें करके खुद को शांतिदूत साबित कर रहा था, उस पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है? असली चेहरा यह है कि पीओके के लोगों को वो बेरहमी से मार रहा है, उन पर जुल्म कर रहा है और तब मार रहा है जब ये लोग भी मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं। लेकिन इन मुसलमानों के मानवाधिकारों की बात करने वाला कोई भी नहीं है, कोई नहीं। अगर होता तो शायद संयुक्त राष्ट्र में आज पीओके के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाया गया होता, ठीक उसी तरह जैसे गजा के मुद्दे पर बुलाया गया था। और यहां तो ये भी देखिए अब कि इन लोगों की आखिर मांगे क्या है। ये लोग तो पिछले साल जो मुजफ्फराबाद समझौता हुआ था उसे ही लागू करने की मांग कर रहे हैं, जो कि यह कहता है कि जिस पीओके से पूरे पाकिस्तान को 10-15% तक बिजली मिलती है उस पीओके के साथ इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, उसे न सिर्फ पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिए बल्कि बिजली को सस्ती दरों पर उपलब्ध भी करवाना चाहिए। और यह कोई गैर वाजिब मांग है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बड़ी साधारण सी मांग है। अगर पाकिस्तान को 10-15% बिजली पीओके से मिलती है तो इतना तो वहां के मुसलमानों का हक बनता है कि उनके घरों में भी यह बिजली पहुंचे। लेकिन आसिम मुनीर को यह मांग बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। इसी समझौते में यह भी लिखा हुआ है कि पीओके के लोगों को गेहूं और अनाज पर सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि ये लोग सस्ता अनाज मांग रहे हैं और इन्हें गोलियां मिल रही हैं, जबकि ये गोलियां अनाज पर दी जाने वाली सब्सिडी से सस्ती नहीं होगी, महंगी ही होगी। लेकिन इन मूलभूत मांगों के लिए पाकिस्तान की सेना और सरकार पीओके के लोगों का दमन कर रही है, उन्हें कुचल रही है और पूरी दुनिया इस पर खामोश है, चुप है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, यानी कि वहां की सरकार यह ढोंग करती है कि उसने पीओके को शासन व्यवस्था अधिकारों की आजादी दी है और इसी आधार पर पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर का राग अलापता है। लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान के उस कड़वे इतिहास का एक रिविजन कराना चाहते हैं। विभाजन के समय साल 1947 में जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत थी, ये आप सब जानते हैं। वो अलग रियासत थी और उसके शासक थे महाराजा हरि सिंह। उस समय जम्मू कश्मीर ने शुरुआत में भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग रहने की कोशिश की, लेकिन अक्टूबर 1947 में परिस्थिति बदल गई। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की ओर से आए कबायली लड़ाकू ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया, उन्होंने हमला कर दिया और उस वक्त हमलावर तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। और इस संकट के बीच में महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी, जबकि भारत की तत्कालीन सरकार ने सहायता देने से पहले जम्मू कश्मीर रियासत के भारत में कानूनी विलय की मांग रखी। ये बिल्कुल सीधी मांग थी। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने इसे स्वीकार किया और भारतीय सेना जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए पहुंच गए। विलय पत्र के तहत पूरा जम्मू कश्मीर हमारा था, पूरा, लेकिन पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने जिन इलाकों पर उस समय कब्जा किया था उसके कारण कश्मीर का एक हिस्सा उस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। लेकिन इन सारी बातों में एक विडंबना ऐसी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो आपको सुननी चाहिए। जम्मू कश्मीर के विलय से पहले जिन कबायली लड़ाकों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था उन लड़ाकों में पुंछ के सुधन समुदाय के लोग शामिल थे। इन लोगों ने तब पाकिस्तान के लिए कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा किया, किसके लिए? पाकिस्तान के। लेकिन बहुत जल्द पीओके पर कब्जा करने वाले इन्हीं लड़ाकों के साथ पाकिस्तान में गद्दारी हो गई। विभाजन के सिर्फ 8 साल के बाद पीओके के पुंछ में एक बहुत बड़ा जन विद्रोह भड़का जिसे पुंछ अपराइजिंग कहा गया। इस विद्रोह का कारण यह था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर घोषित करके अच्छा खासा ढोंग किया गया, लेकिन जमीनी हालात ये थे कि कब्जा करने वाले लोगों की पीओके में एक नहीं चल रही थी, यानी कि कोई भी उनकी नहीं सुन रहा था। इन लोगों के नेता सरदार इब्राहिम खान थे जो आजाद कश्मीर की सरकार के पहले बड़े नेता बने, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को उन पर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, इसलिए उनकी सरकार को हटा दिया गया। 1955 तक तनाव इतना बढ़ गया कि स्थानीय मुसलमानों और पाकिस्तान समर्थित सुरक्षा बलों के बीच में टकराव शुरू हो गया, ठीक वैसा ही टकराव जैसा आज इस समय हो रहा है। और उस वक्त भी पीओके के लोग अपने हक, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। और आज भी 2026 में कहानी ज्यादा बदली नहीं है, वो आज भी लड़ी रहे हैं, आज भी मांग ही कर रहे हैं, बोल के लब आजाद हैं तेरे कह रहे हैं। पीओके के लोग वही मांगे कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान उन्हें आज तक सिर्फ और सिर्फ झूठ और झूठ देता रहा है। उनको सिर्फ पाकिस्तान से अन्याय मिला है, बर्बरता, क्रूरता मिली है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पीओके और बदलते जम्मू कश्मीर की एक तुलना देख लीजिए, क्या बदलाव दोनों में आए हैं वो आप समझ जाएंगे। हमारे जम्मू कश्मीर का सालाना बजट 1,13,000 करोड़ रुपए का है, जबकि पीओके का बजट सिर्फ 9,885 करोड़ का है। यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर के एक साल के बजट में पीओके का 11 साल का बजट समा सकता है। और ये अंतर यहीं पर खत्म नहीं होता, पहले तो देखिए कितना बड़ा अंतर है, लेकिन अंतर यहीं तक सीमित नहीं है। जम्मू कश्मीर की जीडीपी 286,000 करोड़ रुपए की है, जबकि पीओके की जीडीपी सिर्फ 58,000 करोड़ की है। और यहां भी अंतर किसी गहरी खाई के जैसा ही नजर आता है। जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,68,000 रुपए, जबकि पीओके में यही प्रति व्यक्ति सालाना आय पर कैपिटल इनकम 1,20,000 रुपए है। जम्मू कश्मीर में महंगाई दर 3.47% है, जबकि पीओके में यही महंगाई दर 11.1% है, जो पूरे भारत के महंगाई दर से भी कहीं ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 4.8% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जबकि पीओके की 40% आबादी गरीबी और भुखमरी से जूझ रही है। इस समय पीओके में जो लोग आज तक देख रहे हैं उन्हें भी यह अंतर देखना चाहिए, और देखना चाहिए कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है, हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो कितना संपन्न हो गया है। जम्मू कश्मीर में लोगों को 200 यूनिट तक प्रत्येक यूनिट के लिए 2.30 रुपए देने होते हैं, लेकिन पीओके में यही एक यूनिट बिजली 30 रुपए की है, 30 रुपए की। और वहां ये आंदोलन सस्ती बिजली के लिए ही हो रहा है कि हम ही से बिजली ले रहे हो, यही पावर प्लांट लगा रहे हो, लेकिन हम ही महंगी बिजली दे रहे हो और कई बार दे ही नहीं रहे हो, घरों में बिजली ही नहीं पहुंच रही। अब आप इसे समझ सकते हैं कि जब पीओके के पास अपना संविधान, अपना राष्ट्रपति, अपना प्रधानमंत्री, अपनी विधानसभा और अपना सुप्रीम कोर्ट है, तब भी वहां के लोग आजादी क्यों चाहते हैं। और क्यों कहा जा रहा है कि 1971 में जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग भड़की थी, ठीक उसी तरह की आग अब पीओके में भड़क रही है।
2: इस मुद्दे पर हम लोगों ने पिछले प्रेसर में भी हम लोगों ने बयान जारी किया था। देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक

0: जिसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीज़ों को रोका गया है, इंटरनेट ब्लैकआउट को लागू किया गया है और निहत्थे नागरिकों पर के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घोर दुर्व्यवहारों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराएगी।
1: आज ये समझना भी जरूरी है कि जब पीओके में मुसलमानों पर जुल्म होता है, या बलूचिस्तान में मुसलमानों की हत्याएं की जाती हैं, या अफगानिस्तान में मुसलमानों पर बारूद बरसाया जाता है, या चीन जैसे देश में उइगर मुसलमानों का दमन होता है, तो इन मुसलमानों की कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन जब इसराइल गजा में हमले करता है तो गजा के मुसलमानों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चिंताएं जताई जाती हैं, और न सिर्फ चिंता जताई जाती है, खूब प्रदर्शन होते हैं, उनके लिए आर्थिक मदद जुटाई जाती है, और गजा के मुसलमानों से हमदर्दी जताते हुए कई देश अपने विदेश मंत्रालयों से बयान जारी करवाते हैं कि हमें तो इसमें कोई एतराज नहीं है। हमारा सवाल तो यह है कि गजा के मुसलमानों में और बलूचिस्तान पीओके और अफगानिस्तान के मुसलमानों में अंतर क्यों किया जाता है? क्यों नहीं गजा की तरह पीओके के मुसलमानों के मानव अधिकारों पर चर्चा होती है, और यह भेदभाव क्यों है? और क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मुसलमान अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम राजनीति में फिट नहीं बैठते हैं? और आप इसे इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में नॉर्वे की टीम पहली बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए अक्टूबर 2025 में नॉर्वे का मुकाबला इसराइल की टीम के साथ होना था, तब नॉर्वे फुटबॉल महासंघ ने यह ऐलान किया था, यह घोषणा की थी कि वो इस मैच से होने वाली आमदनी से गजा के मुसलमानों की मदद करेंगे। और आप इससे समझ पाएंगे कि गजा को लेकर पूरी दुनिया के मानवाधिकार चैंपियन एक्टिव रहते हैं, लेकिन आज जब पीओके में मुसलमानों को गोलियों से भूना जा रहा है, कत्लेआम मचाया जा रहा है, रक्त से आप कह सकते हैं कि सड़कों को सींचा जा रहा है वहां के लोगों के, या बलूचिस्तान अफगानिस्तान या चीन में उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लग रहा है, तो वहां पर कोई भी इन मुसलमानों की बात नहीं करता, और इसी को कहते हैं दोहरा मापदंड। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको यह बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर ईरान से चाहते क्या है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को यह धमकी दी है कि अगर ईरान समझौते के लिए आगे नहीं आया तो अगले हफ्ते उसके पावर प्लांट्स, उसके बड़े बड़े पुलों को निशाना बनाया जाएगा। और यह वही धमकी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल के महीने में भी सीज फायर पर सहमति बनने से पहले दी थी, और बाद में वो फिर अपने बयान से पलट भी गए थे। एक बार फिर से राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप जब भी इस तरह से यू टर्न लेते हैं या धमकी देने के बाद पीछे हट जाते हैं तो दुनिया इसे उनकी मैडमैन थ्योरी बताती है। यह वही कूटनीतिक रणनीति है जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने शीत युद्ध के दौरान लोकप्रिय बनाया था। अब इस सिद्धांत का अर्थ है कि एक नेता जानबूझकर अपने विरोधियों के सामने खुद को ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा आक्रामक, अप्रत्याशित और मैडमैन के रूप में पेश करता है ताकि इससे विरोधी देश डर जाए या दबाव में आ जाए। और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी बिल्कुल यही कहा जाता है कि वो इसी रणनीति को अपनाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों से ईरान दबाव में आ जाता, जबकि ईरान में तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का कोई ज्यादा असर दिखता नहीं है, बल्कि ईरान ने तो ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से लेना ही बंद कर दिया है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों में अब गंभीरता और संजीदगी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 20% टोल वसूलने की बात कही थी, लेकिन अपने इस बयान पर वो 24 घंटे में नहीं टिक सके और अब वो ईरान के पावर प्लांट्स और बड़े पुलों को निशाना बनाने की धमकी दे रहे हैं, जबकि ये धमकी इससे पहले उन्होंने इसी युद्ध में 3 बार दी और हर बार इस धमकी को वापस भी ले लिया। अब आप खुद सोचिए कि जब इस युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप कई बार अपने बयानों से पलट चुके हैं तो ईरान पर उनकी धमकियों का असर क्यों ही होगा, मतलब क्यों ही वो गंभीरता से इन धमकियों को लेगा। और अभी ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बावजूद अपने हमलों को जारी रखा हुआ है। अमेरिका ने लगातार 4th रात भी ईरान पर 7 घंटे तक हमले किए हैं और ये युद्ध फिर से

0: खैर पाकिस्तान ने इस युद्ध में जो सीज फायर कराया उसका नतीजा तो पूरी दुनिया देख ही रही है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि जब भारत इस तरह के युद्ध में शांति का प्रयास करता है तो उनका क्या असर होता है, क्या इम्पैक्ट होता है। साल 2022 में जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका था और दुनिया को डर था कि कहीं ये जंग परमाणु हथियारों तक न पहुंच जाए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई थी। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की, उन्हें परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कहा था और बाद में रूस ने ऐसा कोई भी हमला नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिनकी बात राष्ट्रपति पुतिन गंभीरता से सुनते हैं और इसकी वजह दोनों देशों के पुराने संबंध और मित्रता है। यहां पोलैंड के उप विदेश मंत्री जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो साल 2022 की है। उस वक्त एक तरफ यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों से बड़ी मात्रा में हथियार, सैन्य मदद मिल रही थी और यूक्रेन ने कई इलाकों में रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसी के बाद रूस के कुछ नेताओं ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी भी दी थी और सबसे ज्यादा चिंता टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि छोटे स्तर पर इस्तेमाल किए जाने वाले परमाणु हथियारों को लेकर थी। डर यह था कि अगर रूस को युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ तो वो सीमित परमाणु हमला कर सकता है, लेकिन बाद में ऐसा कोई भी हमला नहीं हुआ और माना जा रहा है कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी थे। उस वक्त उज़्बेकिस्तान के समरकंद में हुए एसईओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इस बयान की पूरी दुनिया में काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। कई देशों ने रूस के लिए इसे एक महत्वपूर्ण संदेश भी माना था और बड़ी बात यह है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने बिल्कुल संतुलित नीति अपनाई। भारत ने न तो रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों की तरफ बिल्कुल कड़े प्रतिबंध लगाए, न ही रूस के हर कदम का भारत ने आंख मूंद कर समर्थन कर दिया हो, तटस्थ कह सकते हैं आप। यही नहीं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी कई मौकों पर संतुलित रुख अपनाया। भारत से तेल खरीदना भारत ने जो है रूस से जारी रखा। रूस और यूक्रेन दोनों से बातचीत बनाए रखिए और शांति और कूटनीतिक समाधान की भी भारत लगातार अपील करता रहा। इस दौरान भारत का तर्क यही था कि विदेश नीति देश के राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होती है और प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन से नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बात की। और अब पोलैंड के उप विदेश मंत्री जो बात कह रहे हैं उससे यह पता चलता है कि भारत और रूस की दोस्ती भरोसे पर टिकी है और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने एक दूसरे के साथ ऐसा संतुलन बिठाया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से कुछ कहते हैं तो वो इसे गंभीरता से लेते हैं और सिर्फ गंभीरता से लेते ही नहीं उस पर अमल भी करते हैं।
1: I mentioned that on Indian television that he was one of the two people who called President Putin to not to attempt to use tactical nuclear weapons on the territory of Ukraine in 2022. And I think he has definitely a role to play trying to make President Putin come to his senses, because Russia is not going to win the war in Ukraine. So Prime Minister Modi, I'm sure, being a global statement, and he is able to, is one of the few people able to talk to President Putin and maybe let him see some reason.
0: चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये बताते हैं कि भारत से 7000 किलोमीटर दूर इंग्लैंड के पीटरबोरो शहर में एक 40 साल पुराने मंदिर की जगह को मस्जिद बनाने के लिए क्यों बेचा जा रहा है। यह कहानी भगवान श्री राम के उस मंदिर की है जिसे साल 1972 में युगांडा से निष्कासित हुए हिंदू परिवारों ने खुद स्थापित किया था। साल 1986 में यह मंदिर एक ऐसी इमारत में बना जिसे सिटी काउंसिल ने हिंदू परिवारों को खुद लीज पर दिया था और दावा है कि स्थानीय हिंदू परिवार पिछले 14 सालों से इस जगह को खरीदने की कोशिशें कर रहे थे। उन्हें उम्मीद भी थी कि स्थानीय प्रशासन उन्हें इस इमारत को दे देगा, सौंप देगा इमारत को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब इस मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाने की बात कही जा रही है। जी हां, मंदिर की जगह मस्जिद, और यह भी तब होने वाला है जब इस मंदिर के 56 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा हिंदू मंदिर नहीं है, जबकि पीटरबोरो शहर में 19 मस्जिदें हैं। उसी शहर में 19 मस्जिदें हैं। इससे यह सवाल उठता है कि जिस शहर में पहले से 19 मस्जिदें हैं वहां एकमात्र हिंदू मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाने के लिए यह इमारत क्यों दी जा रही है। हम चाहते हैं कि आप इस पूरी खबर को बहुत ध्यान से देखें और यह भी समझें कि जब बात हिंदू अल्पसंख्यकों की आती है तो धर्म निरपेक्षता का पैमाना बदल क्यों जाता है। यहां पर अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी का मुद्दा उठाने वाले लोग आखिर कहां चले जाते हैं, इस समय वो लोग कहां हैं? यह पूरा विवाद पहली बार तब चर्चा में आया जब पिछले साल पीटरबोरो सिटी काउंसिल ने अपना 6,500 करोड़ का कर्ज कम करने की प्लानिंग बनाई, योजना बनाई। इस योजना के तहत यह तय हुआ कि सिटी काउंसिल उन इमारतों की नीलामी करेगा जो उसने लीज पर दे रखी हैं। इनमें भी जिस इमारत में आज से 40 साल पहले भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित हुआ था उस इमारत को भी नीलामी में शामिल कर दिया गया। हिंदू पक्ष को उम्मीद थी कि वो इस इमारत को सिटी काउंसिल से खरीद लेगा और अपने आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर को बचा लेगा, लेकिन सिटी काउंसिल ने नीलामी में यह जमीन यूके इस्लामिक मिशन को बेच दी। ये एक इस्लामिक संस्था है जो साल 1962 में बनी थी और जो ब्रिटेन में अभी 43 मस्जिदों और इस्लामिक केंद्रों का संचालन करती है। और जब सिटी काउंसिल ने मंदिर की जगह इस्लामिक संस्था को बेची तो इस संस्था ने यहां पर एक मस्जिद और इस्लामिक केंद्र बनाने का ऐलान किया। इससे हिंदू परिवारों की आस्था को गहरा झटका लगा। उन्होंने सिटी काउंसिल से पूछा कि आखिर यह जमीन उन्हें क्यों नहीं बेची गई और आखिर मंदिर की जगह को मस्जिद बनाने के लिए कैसे बेचा जा सकता है जबकि वहां पर पहले से मंदिर स्थापित था। इस पर सिटी काउंसिल ने यह कहा, उन्होंने उनकी दलील भी आपको जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि नीलामी में उसे हिंदू पक्ष से ज्यादा पैसे इस इस्लामिक संस्था से मिल रहे हैं, जिसके कारण उसने ये इमारत इस संस्था को देने का फैसला किया। उस वक्त उस फैसले का काफी ज्यादा विरोध भी हुआ और यह मामला दोबारा से फिर काउंसिल कैबिनेट के पास में भेजा गया। यहां पर हिंदू परिवार ये उम्मीद कर रहे थे कि अब शायद उनके साथ इंसाफ होगा, शायद यहां पर कुछ उनके हक में फैसला आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काउंसिल कैबिनेट ने नीलामी के फैसले को बरकरार रख दिया और बाद में यह मामला बड़ी अदालत में गया। अब बाहर से देखने पर यह पूरा मामला कानूनी दांव पेच का लगता है, लेकिन हिंदू परिवारों का आरोप है कि इसके पीछे असल में एक दूसरी कहानी है। इस मंदिर के ट्रस्टी गौरी चौधरी का कहना है कि हाल ही में पीटरबोरो सिटी काउंसिल में नया प्रशासन आया, नया सिस्टम आप कह सकते हैं कि आया है और सिस्टम में लोग नए आए हैं। इनमें भी ज्यादातर नेता इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, जिसके कारण मंदिर की यह जगह मस्जिद बनाने के लिए दे दी गई। और हिंदू पक्ष यह भी आरोप लगाता है कि अयोध्या में जिस तरह विवादित ढांचे को हटाकर भव्य राम मंदिर बना, उसका बदला लेने के लिए यहां मंदिर की जमीन मस्जिद के लिए बेच दी गई। हमने इन आरोपों की पुष्टि करने के लिए पीटरबोरो सिटी काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट को चेक किया और वहां पर हमने जो देखा वो थोड़ा हैरान करने वाला था। इसमें लिखा गया था कि सिटी काउंसिल के प्रमुख नेता और काउंसलर शबीना कयूम हैं, जो कि एक मुसलमान है। उसके बाद सिटी काउंसिल के कैबिनेट सदस्य भी हैं जो कि इस्लाम धर्म से, कई कैबिनेट के सदस्य हैं। इसमें मोहम्मद जमील फिनेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो है कैबिनेट मेंबर हैं, जमीर अली कम्युनिटीज एंड पब्लिक सेफ्टी के कैबिनेट मेंबर हैं और नुमान अली इकबाल ग्रोथ एंड रीजनरेशन के कैबिनेट मेंबर हैं। और इसी आधार पर हिंदू पक्ष ये पूछ रहा है कि जब सिटी काउंसिल की कमान मुस्लिम नेताओं के हाथ में आई तभी मंदिर की जमीन मस्जिद के लिए कैसे बेच दी गई। इसमें भी बड़ी बात यह है कि जब इंग्लैंड के इस शहर में पहले से 19 मस्जिदें हैं तब वहां पर एक और मस्जिद की आवश्यकता क्यों और उस मस्जिद के लिए एक मंदिर को ही क्यों हटाया जा रहा है, इमारतें तो और भी हैं। आज इंग्लैंड के इस पीटरबोरो शहर में सबसे ज्यादा 46.3% आबादी ईसाइयों की है, 12.2% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन हिंदुओं की आबादी यहां मात्र 1.8% है। और कई हिंदू परिवारों का कहना है कि वो यहां पर अल्पसंख्यक हैं, उनकी संख्या मुसलमानों से कम है, इसलिए वहां राम मंदिर की जमीन मस्जिद बनाने के लिए दे दी गई और इस फैसले का बचाव भी किया गया। इस बार आप कल्पना करके देखिए कि अगर इसी जगह पर मस्जिद की जमीन मंदिर बनाने के लिए दे दी गई होती तो यह खबर कितनी बड़ी हो जाती, कितने सवाल उठने लगते, क्योंकि यहां पर 40 साल पुराने मंदिर की जगह मस्जिद बननी है, इसलिए इस खबर के बारे में ज्यादा बात ही नहीं हो रही है। और सिटी काउंसिल यह कह रहा है कि वो हिंदू मंदिर के लिए दूसरी जगह देने के लिए तैयार है, लेकिन स्थानीय हिंदू परिवारों ने इसका विरोध किया है, इसके खिलाफ प्रदर्शन करके उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। देखिए

अच्छा, इंग्लैंड में ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब वहां पर इस्लाम धर्म के बढ़ते प्रभाव पर लगातार बहस हो रही है। आप बीबीसी के एक नए रिपोर्ट को देखिए जो ये बताती है कि इंग्लैंड और वेल्स में लगातार तीसरे साल ऐसा हुआ है जब नवजात बच्चों का नाम सबसे ज्यादा मोहम्मद रखा गया है। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक सबसे ज्यादा 5,957 लड़कों का नाम मोहम्मद रखा गया। इसके बाद 4,075 लड़कों का नाम नोआ और 3,278 लड़कों का नाम लियो रखा गया। पिछले 3 साल से लगातार ऐसा हो रहा है जब इंग्लैंड और वेल्स में पैदा होने वाले लड़कों का नाम सबसे ज्यादा मोहम्मद रखा जाता है, जबकि 10 सालों में ऐसा हो रहा था कि जब लड़कियों का नाम सबसे ज्यादा ओलिविया रखा जाता था। और अब यह उस ब्रिटेन में हो रहा है जिसने धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमान में भारत का विभाजन किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको इंग्लैंड के बाद भारत के ही मंदिरों में लेकर चलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए। पिछले दिनों अयोध्या के राम मंदिर, उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम, केरल के शबरीमाला मंदिर और गुजरात के अंबाजी मंदिर में चढ़ावे की चोरी का आरोप लगा और अब यह दावा किया जा रहा है कि जम्मू के श्री वैष्णो देवी मंदिर में भी 500 करोड़ रुपए की चांदी में हेरा फेरी कर दी गई। इस मामले में जम्मू की एक अदालत ने जांच कर रहे क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने और सभी रिकॉर्ड साथ लाने का आदेश दिया है और इस जांच के आदेश दिए गए हैं। अब इस आदेश के बाद से ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या वाकई में जो चांदी श्रद्धालुओं ने श्री वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ाई उसे हेरा फेरी करके चुरा लिया गया, चांदी चुरा लिया गया। यह आरोप उस शिकायत के आधार पर लगाया जा रहा है जो कि जम्मू क्राइम ब्रांच के महानिरीक्षक और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को भेजी गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि श्री वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाई गई चांदी के साथ हेरा फेरी हो गई। यानी कि आरोप है कि जो चांदी मंदिर में लोगों ने दान में चढ़ाई उस चांदी को गलाकर या उसमें मिलावट करके असली चांदी को चुरा लिया गया और नकली चांदी रख दी गई। शिकायत में शब्दशः लिखा गया है कि श्री वैष्णो देवी में कई सालों में 20 टन चांदी चढ़ावे में आई जिसकी अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। दावा है कि जब इस चांदी को प्रोसेसिंग के लिए बाहर भेजा गया तो इस दौरान असली चांदी चुरा ली गई और यह भी आरोप है कि जब बची हुई चांदी की जांच हुई तो उसमें केवल 5 से 6% ही वास्तविक चांदी पाई गई जबकि बाकी में कैडमियम, लोहा और कम गुणवत्ता वाली धातु में मिली है। जिसका मतलब यह है कि 500 करोड़ रुपए की चांदी को तो पार कर लिया गया। हालांकि अभी इन आरोपों की पुष्टि होनी बाकी है और अदालत ने 29 जुलाई को इस मामले पर जवाब मांगा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब तक श्री वैष्णो देवी मंदिर की व्यवस्था को फुल प्रूफ और बहुत सुरक्षित माना जाता था और हमने भी आपको बताया था कि देश के बाकी मंदिरों को श्री वैष्णो देवी मंदिर की व्यवस्थाओं से सीखना चाहिए। जहां पर मंदिर के एक सीईओ की नियुक्ति होती है, श्राइन बोर्ड पूरी पारदर्शिता के साथ वहां पर काम करता है। लेकिन इन आरोपों के बाद अब बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या अब सरकार को हमारे मंदिरों की व्यवस्था में बड़े बदलाव करने के लिए आगे आना होगा और आखिर इस तरह की चोरी और कितने मंदिरों में हुई है यह भी बहुत बड़ा सवाल अब बना हुआ है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको यह बताते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट की सरकार थी तब वहां के दरवाजे मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन के लिए आखिर क्यों बंद रहे। ये एक ऐसी खबर है जो पश्चिम बंगाल का वो दौर याद दिलाती है जब वहां पर बांग्लादेश के कट्टरपंथ की परछाई पड़ रही थी। हाल ही में तस्लीमा नसरीन ने बताया कि वो 20 साल बाद आखिरकार 1 अगस्त को कोलकाता लौट रहे हैं। वहां पर धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ और अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन में एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे और वो कोलकाता लौटने पर तस्लीमा नसरीन का स्वागत करेंगे। आज ये समझना जरूरी है कि आखिर तस्लीमा नसरीन को पश्चिम बंगाल क्यों छोड़ना पड़ा था और इस वक्त के पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की कितनी घुसपैठ थी। तस्लीमा नसरीन का जन्म 1962 के पूर्वी पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे और इसलिए वो बाद में डॉक्टर ही बने। उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में सरकारी अस्पताल में नौकरी शुरू कर दी। लेकिन अस्पताल में काम करते करते तस्लीमा नसरीन ने समाज का एक ऐसा चेहरा देखा जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने देखा कि महिलाओं पर घरेलू हिंसाएं हो रही, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है।
धर्म और समाज के नाम पर उनके अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं और यहीं से उन्होंने लिखना शुरू किया। शुरुआत में वो बांग्लादेश की पत्रिकाओं में लेख और कॉलम लिखती थी और उनके लेखों का विषय होता था पुरुष प्रधान समाज, मेल डोमिनेंट सोसाइटी आप कह सकते हैं, महिलाओं पर होने वाला अत्याचार, मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति, इस्लामिक कानूनों के खिलाफ उनकी जो लेख होते थे और इस्लामिक कानूनों के कारण महिलाओं पर पड़ने वाला असर। इन लेखों ने जल्द ही उन्हें मशहूर भी बना दिया और विवादों में भी लाकर खड़ा कर दिया। कई लेखकों ने पहले भी ऐसे विषय उठाए थे लेकिन आलोचकों का कहना था कि तस्लीमा नसरीन की भाषा बेहद तीखी, बेहद आक्रामक थी और यही वजह है कि धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसमें भी सबसे बड़ा मोड़ तब आया 1993 में जब तस्लीमा नसरीन का उपन्यास लज्जा प्रकाशित हुआ। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है ये पढ़ा भी हो। ये कहानी एक बांग्लादेशी हिंदू परिवार दत्ता परिवार की थी और इस कहानी की शुरुआत होती है 6 दिसंबर 1992 से, 6 दिसंबर जब अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था। यह उपन्यास बांग्लादेश में हिंदू परिवारों की पीड़ा दिखा रहा था और यह बता रहा था कि कैसे इस हिंदू परिवार को उन मुसलमानों ने भी नहीं बख्शा जिन पर वो भरोसा करते थे। लेकिन बाद में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने आरोप लगाया कि यह किताब तो इस्लाम को बदनाम करती है और कुछ कट्टरपंथियों ने भी यह कहा कि इस किताब से तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। और आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री खालिदा जिया की सरकार ने इस किताब के प्रकाशित होने के लगभग 7 महीनों के बाद इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। यह विवाद चल ही रहा था कि एक अखबार ने यह खबर छापी कि तस्लीमा नसरीन कुरान में बदलाव करने के लिए कह रही हैं, जबकि तस्लीमा नसरीन का कहना था कि उन्होंने कुरान में नहीं बल्कि शरीयत कानून में बदलाव की मांग की थी, शरीयत में। लेकिन इस सफाई के बाद भी बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए। कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने उन्हें मारने तक के लिए इनाम तक का ऐलान कर दिया। जून 1994 में तस्लीमा नसरीन किसी तरह से बांग्लादेश छोड़कर फिर स्वीडन पहुंच गए। यहीं से उनके निर्वासन की जिंदगी शुरू हुई। बाद में उन्हें स्वीडन की नागरिकता भी मिल गई। हालांकि विदेश में रहते हुए तस्लीमा नसरीन का मन बंगाल में ही बसता था। उनका कहना था कि भाषा, संस्कृति और साहित्य उन्हें कोलकाता से जोड़ता है। साल 2004 में भारत सरकार उन्हें कोलकाता में रहने की अनुमति दे दी और इसके बाद वो कोलकाता आ गए। उन्होंने फिर से लिखना शुरू किया और साहित्यिक कार्यक्रमों में वो सक्रिय रहने लगे। उन्हें लगा कि अब शायद उन्हें स्थायी ठिकाना मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोलकाता में भी उनके लेखन को लेकर विवाद शुरू हो गया। उनकी आत्मकथा विखंडित पर पश्चिम बंगाल की तत्कालीन वामपंथी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह प्रतिबंध हटा दिया, लेकिन धार्मिक कट्टरपंथी संगठन लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। साल 2006 में कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम सैयद नूरूर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वो व्यक्ति जो तस्लीमा नसरीन का चेहरा काला करेगा उसे इनाम से नवाजा जाएगा, वो उसे इनाम देंगे। साल 2007 में तस्लीमा नसरीन हैदराबाद में अपनी एक किताब के तेलुगु अनुवाद के विमोचन कार्यक्रम में गई थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने मंच पर चढ़कर उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि यह हमला AIMIM के कुछ समर्थकों के द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में नवंबर 2007 में कोलकाता में उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि लगभग 15 साल बाद कोलकाता के सड़कों पर सेना बुलानी पड़े। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तस्लीमा नसरीन को शहर छोड़ने के लिए कह दिया। 21 नवंबर 2007 को उन्हें गुप्त तरीके से कोलकाता से निकालकर पहले जयपुर लाया गया और कड़े सुरक्षा में एक अज्ञात स्थान पर उन्हें रखा गया और करीब 7 महीने के बाद फिर उन्हें नई दिल्ली भेजा गया। और सोचिए कि उस दौर में तस्लीमा नसरीन को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। और अब जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई है तो वो वापस भारत लौट कर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड शुरू हो गया है और पिछले करीब 5 सालों से दोनों ही देशों के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जैसे एक व्यापारिक समझौते की कोशिशें हो रही थी। इसके लिए कई दौर की बातचीत भी हुई और इस साल मई में दोनों ही देशों के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट हो भी गया, रियाद से लागू भी हो गया, जिसका फायदा दोनों ही देशों के व्यापारियों और आम लोगों को होगा।
यानी कि आपको होगा। जब दो देशों के बीच में FTA जैसा कोई व्यापारिक समझौता होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब उनके बीच में व्यापार को आसान बनाया जाएगा और इसके तहत कई सामानों पर लगने वाला टैरिफ कम किया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। ऐसा होने पर दोनों ही देशों के लोगों को एक दूसरे का सामान सस्ती दरों पर उपलब्ध होता है और व्यापारियों को एक नया बाजार भी मिल जाता है। भारत और ब्रिटेन के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि CETA हुआ है, उसके मुताबिक भारत से निर्यात होने वाले 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन टैरिफ नहीं लगाएगा और ठीक उसी तरह से भारत भी ब्रिटेन से आने वाले 90% वस्तुओं पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाएगा। मतलब यह है कि दोनों ही देशों के व्यापारियों और किसानों को एक नया बाजार मिलेगा जहां पर वो कम कीमत पर अपना सामान बेच सकेंगे और आम लोगों तक ज्यादा विकल्प कम कीमत पर मिल जाएंगे। यह समझौता भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों की इकोनॉमी के लिए बूस्टर माना जा रहा है। साल 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था $3.96 trillion जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था $3.84 trillion की थी। दोनों ही देश व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाकर अपनी असली अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती देना चाहते हैं। अभी तक भारत और ब्रिटेन के बीच में करीब 2,23,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है जिसमें भारत का ब्रिटेन को कुल निर्यात 1,19,000 करोड़ रुपए का है और ब्रिटेन का भारत को कुल निर्यात 1,04,000 करोड़ का है। यानी कि भारत ट्रेड सरप्लस पर है और उसका व्यापार लाभ सीधा सीधा सा है 15,000 करोड़ का। अभी ब्रिटेन के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 3% है और भारत के कुल व्यापार में ब्रिटेन की हिस्सेदारी लगभग 2% है। CETA होने के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटेन के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ेगी और कीमतों के मामले में ब्रिटेन में भारतीय कंपनियां अन्य देशों की कंपनियों को टक्कर दे पाएंगे। अब सवाल यह है कि इसका फायदा किस तरह से मिलेगा, जो आपके मन में भी यह सवाल कौन सा होगा। लैंड रोवर, जगुआर, रोल्स रॉयल, एस्टन मार्टिन, बेंटले, मिनी और मैक्लारेन जैसे ब्रिटिश कार कंपनियां भारत में पहले से कम कीमत पर अपनी गाड़ियां बेच पाएंगी। CETA के तहत इन हाई एंड गाड़ियों पर यह टैरिफ को अगले 5 सालों में 110% से घटाकर 10% तक लाया जाएगा। इसके अलावा द बॉडी शॉप, मॉल्टन ब्राउन, एलिमस और शार्लेट टिलबरी जैसे जो बड़े बड़े ब्रिटिश कंपनियों के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, भारतीय बाजारों में कम कीमत पर पहुंच भी जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, ब्रिटेन के सी फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, परफ्यूम्स, शेविंग क्रीम बनाने वाली कंपनियां भी भारतीय बाजारों में सस्ती कीमत पर अपना सामान बेच सकेंगे। बिल्कुल उसी तरह से भारत का टेक्सटाइल, लेदर, जेमस्टोन, ज्वेलरी, पेपर, फर्नीचर, ऑटो पार्ट्स, फुटवेयर, इंजीनियरिंग गुड्स, खनिज, खेलकूद की चीजें और केमिकल पर ब्रिटेन में टैरिफ कम या फिर शून्य कर दिया गया है। यानी कि इससे जुड़े हुए व्यापारियों को, किसानों को सीधा फायदा होगा। जैसे ब्रिटेन में अभी तक भारतीय प्रोसेस्ड फूड पर 70% तक टैरिफ लगता था, सी फूड पर करीब 21%, इंजीनियरिंग से जुड़े सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, लेदर और फुटवेयर पर 16%, कपड़े पर 12%, केमिकल और फार्मा प्रोडक्ट्स पर 8% तक टैरिफ लगाया जाता था, लेकिन अब इन पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 0 कर दिया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीयों को एक बड़ा फायदा होगा। डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत UK में काम करने वाले भारतीयों के सैलरी का जो 25% पैसा ब्रिटेन सरकार के सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जाता था, वो पैसा अब सीधे भारत में उनके PF अकाउंट में ब्याज के साथ जमा होगा। इसे ब्रिटेन में काम करने वाले 75,000 भारतीयों को फायदा होगा। दोनों ही देशों की कंपनियां एक दूसरे के यहां पर काफी पहले से काम कर रहे हैं और यहां के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। भारत और ब्रिटेन की कंपनीज पिछले कई वर्षों से एक दूसरे के देशों में काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। UK में 971 भारतीय कंपनियां ऑपरेट करते हैं, इनमें 1,00,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसी तरह भारत में 667 ब्रिटिश कंपनियां इस समय काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, इनमें 5,00,000 लोग काम करते हैं। और माना जा रहा है कि CETA के बाद इन कंपनियों को अपना काम और ज्यादा फैलाने में मदद मिलेगी, जिससे
दोनों ही देशों के लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। यह सोचने वाली बात है कि ब्रिटेन ने अमेरिका से भी बिल्कुल इसी तरह का कोई व्यापारिक समझौता नहीं किया है, जबकि ब्रिटेन के कुल व्यापार में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 70% तक है। ब्रिटेन ने चीन के साथ भी कोई व्यापारिक समझौता नहीं किया है, जबकि चीन की हिस्सेदारी लगभग 5.5% है। कुल मिलाकर सीईटीए जैसा व्यापारिक समझौता होने से भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापारिक संबंध पहले से कहीं ज्यादा और मजबूत होंगे। और अब बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। आप सब लोग फॉलो तो कर ही रहे होंगे। स्पेन ने फ्रांस के खिलाफ शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल का टिकट कटा लिया है, लेकिन फाइनल में स्पेन से भिड़ेगा कौन, इसका फैसला आज रात उस महामुकाबले में होगा जो 90 मिनट का आम फुटबॉल मैच नहीं है बल्कि एक जंग है। जब हमने शब्द जंग का इस्तेमाल किया है तो आप ध्यान से सुनेगा क्यों। फीफा का यह दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच। फुटबॉल की दुनिया में इन दोनों ही देशों की दुश्मनी बिल्कुल ऐसी है जैसे भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मुकाबला, यानी कोई भी हारना नहीं चाहता। 2005 के बाद पहली बार इंग्लैंड और अर्जेंटीना किसी बड़े टूर्नामेंट में आमने सामने है। लेकिन आखिर यह कौन सी दुश्मनी है जिसने इस मुकाबले को जंग जैसा बना दिया है। दरअसल 1986 के वर्ल्ड कप में डिएगो माराडोना का एक गोल जो चर्चा का विषय रहा। माराडोना की चालाकी को अंग्रेज आज भी नहीं भूले हैं, जिसमें उन्होंने हाथ से गोल करके इंग्लैंड को रुला दिया था, जो हैंड ऑफ गॉड के नाम से मशहूर है। इंग्लैंड सूत समेत इसे स्पेन को चुकाना चाहता है, लेकिन ये दुश्मनी सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, इसकी जड़ें 1982 के युद्ध तक भी जाती हैं। एटलांटिक ओशियन में अर्जेंटीना के बेहद करीब एक द्वीप है जिसे वो मालविनास कहता है, जबकि इस द्वीप पर जो शासन है वो इंग्लैंड का है और वो कहता है फॉकलैंड्स से। इस द्वीप के लिए 44 साल पहले इंग्लैंड और अर्जेंटीना में भयंकर युद्ध हुआ जो करीब 2.5 महीनों तक चला था। इसमें 900 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब सेमीफाइनल से ठीक पहले अर्जेंटीना के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस द्वीप पर इंग्लैंड का वैध कब्जा है, तो ब्रिटेन की ओर से कहा गया कि वहां के लोग तो ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं। बयानबाजी दोनों तरफ से हुई। अर्जेंटीना और इंग्लैंड की इस फुटबॉल वाली जंग में आवाज भी हथियार बनी है। एक तरफ 30,000 इंग्लिश फैंस अपने फेमस सॉन्ग वंडर वॉल को एक ही साथ गाने के लिए तैयार है, तो अर्जेंटीना के फैंस की जुबान पर आजकल जो है मुचाचोस सॉन्ग चढ़ा हुआ है, वो इसे गुनगुना रहे हैं या जोर से गा रहे हैं। मैदान के बाहर भी अर्जेंटीना और इंग्लैंड के फैंस एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं और यहां पर जोरदार जुबानी जंग चल रही है, तंज कसे जा रहे हैं। इसीलिए इंग्लैंड और अर्जेंटीना का यह मुकाबला सिर्फ एक नॉकआउट मैच नहीं है, ये लड़ाई है दो अलग अलग जज्बातों की, मुचाचोस वर्सेस वंडर वॉल की और 4 दशकों पुरानी कड़वाहट की। अब फुटबॉल के मैदान पर दोनों ही देश ये मुकाबला जीतकर खुद को थोड़ी सी तसल्ली देने के साथ दशकों पुराना हिसाब भी चुकता कर लेना चाहते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे फीफा वर्ल्ड कप ने एक छोटे से देश के पर्यटन में उछाल ला दिया है। दुनिया के नक्शे पर छोटे से बिंदु के रूप में नजर आने वाला केप वर्दे 10 ज्वालामुखीय द्वीपों का समूह है जिसकी आबादी सिर्फ 5 लाख के करीब है। केप वर्दे, जिसे काबो वर्ल्ड भी कहते हैं, यह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर 650 किलोमीटर दूर समुद्र में बसा देश है। एक ऐसा देश जहां पर बहुत कम लोग जाते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फीफा वर्ल्ड कप ने लेकिन इसकी तस्वीर बदल दी है ग्लोबली। अब इसकी टीम ने ग्रुप स्टेज में स्पेन, सऊदी अरब और उरुग्वे जैसी दिग्गज फुटबॉल टीमों के साथ में ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में भी अर्जेंटीना को कड़ी टक्कर दी, हालांकि 3-2 से हार का सामना करना पड़ा और उनका सफर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन पूरी दुनिया में इस टीम की चर्चाएं जरूर हुई हैं। इनके जज्बे की चर्चा हुई है, स्किल की चर्चा हुई है, जिसका सीधा असर अब इस देश के पर्यटन पर दिख रहा है। अमेरिका में केप वर्दे वेकेशन की ऑनलाइन सर्च में 5,000 से ज्यादा का भारी उछाल दर्ज किया गया है। अब तमाम लोग यहां के संस्कृति, ज्वालामुखी वाले पहाड़ और बेहतरीन नजारे देखने के लिए आ रहे हैं। पर्यटन हमेशा से केप वर्दे की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। ये देश की जीडीपी में लगभग 25% का योगदान देता है।
2025 में यहां पर रिकॉर्ड लगभग 12.5 लाख पर्यटक आए थे, जो यहां की आबादी से 2 गुना ज्यादा है, और अब इसमें भारी उछाल का अनुमान है। खेल कैसे किसी देश की तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है, केप वर्दे आज इसका एक बड़ा उदाहरण है। कल तक जो जगह दुनिया की नजरों से दूर थी, आज वो अपने जाबाज खिलाड़ियों के बदौलत तेजी से उभरता हुआ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

0: आज तक पंचायत में जब सियासी दिग्गजों का मेला लगा तो एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे की गूंज सुनाई दी, जिसने साफ कर दिया कि 2027 के चुनावों में यह सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है।
1: आज तक पंचायत का मंच सजा तो एक बार फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की गूंज सुनाई दी।
2: जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास किए, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है, वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं।
1: विपक्ष ने साफ किया कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर ही सियासी मैदान पर उतरने वाले हैं।
3: चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा, हम मुद्दा बनावे या ना बनावे, जो साधारण जनमत है, जो साधारण व्यक्ति है, वो रोज पूछता है बाबू अयोध्या में मंदिर से कैसे चोरी हो गया, ये लोग क्यों चुरा ले गए मामला। वो हमको नहीं चोर बताते हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं बताते हैं, वो उन्हीं को बताते हैं। इसे समाजवादी पार्टी का जनाधार जनता में बढ़ा और इनका जनाधार इस चोरी से कम हुआ।
4: चढ़ावा चोरी पे क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, चंदा चोरी पर क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, इनके लोग शामिल हैं उसमें। भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम के नाम पर ही ये जाएंगे, क्योंकि जो लोग आज उसमें हैं, छोटे छोटे लोगों को तो जेल भेज दिया आपने, छोटे लोगों को भेज दिया, टिल्लू यादव कौन कौन और किसको किसको भेज दिया आपने, मिश्रा जी को। अरे भैया चंपत राय बंसल कब जेल जाएंगे, योगी जी अनिल मिश्रा कब जाएंगे, नीपेंद्र मिश्रा के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, गोविंद गिरी पर कब कार्रवाई होगी, गोपाल राव पर कब कार्रवाई होगी, ये प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। और निश्चित तौर से आज ये जो आज गांव गांव में चर्चा है कि ये चंदा चोरी तो अशोक सिंगल के समय हुआ, अब चढ़ावा चोरी हो रहा है, जो माताएं बने अपने आंचल में पैसा बांध कर जाती है उस आंचल का पैसा इन्होंने छीन लिया, इसका जवाब चुनाव में कैसे दोगे।
1: उधर योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर राम मंदिर पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं।
5: ये पाप हुआ है, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि एक संदेशा जाए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कि इस देश में 2026 में ये हुआ था अयोध्या मंदिर में, तब ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिला था, तब उन लोग कांपे, ताकि कोई आगे ये गंदा पाप, ये घिनौना, ये घृणित अपराध ना कर पाए।
3: हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए, सारे चोरों को जेल भेज दिया, सारे पॉकेट मारों को जेल भेज दिया, ते वहाँ कहाँ पैदा हो गए, अयोध्या में कैसे पैदा हो गए, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी।
1: बहरहाल यूपी में 2027 की लड़ाई में राम मंदिर बड़ा मुद्दा होने वाला है। जिस राम मंदिर ने बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, वहीं चढ़ावा चोरी के कलंक को विपक्ष किसी भी कीमत पे छोड़ता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एक्शन भी फुल है। एक ओर जहां ट्रस्ट के सीईओ के लिए आवेदनों की बाढ़ आई हुई है, वहीं फाइनल एसआईटी रिपोर्ट बहुत ही जल्द आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक फाइनल रिपोर्ट में टिन्नू यादव के लिए और भी खुलासे हैं।

0: राम मंदिर चढ़ावे की जिन्होंने चोरी की है अब उनका हिसाब जल्दी ही होने वाला है। एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट लगभग तैयार है और सूत्रों के मुताबिक इसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो मंदिर प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जांच में टिन्नू यादव की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आई है। टिन्नू यादव की मंदिर के प्रबंधन और संवेदनशील कामकाज में गहरी पैठ थी। दानपात्र यानी हुंडियों की चाबियां भी उसके पास रहती थी। चोरी की सबसे बड़ी वजह भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताएं रही। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कमजोर किए जाने से चोरी की गुंजाइश बनी। चंपत राय को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई है। चंपत राय को लापरवाही और निगरानी में नाकामी के लिए जिम्मेदार माना गया है। हालांकि आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका पर एसआईटी ने कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है क्योंकि पुलिस की जांच अभी जारी है। वहीं एसओपी में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया की अनियमितताओं के लिए अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उधर राम मंदिर के सीईओ पद के लिए आवेदन करने वालों की होड़ लगी है। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए हजारों आवेदन आ चुके हैं। आवेदकों में सबसे बड़ी संख्या सेवानिवृत्त नौकरशाहों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बताई जा रही है। बहरहाल अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
1: संसद के आगामी सत्र से पहले परिसीमन को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। इसी बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनकी पार्टी परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी।
2: महाराष्ट्र की सियासत में इंडिया गठबंधन को फिर से करारा झटका लगा है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के भीतर एकजुटता नहीं दिख रही है क्योंकि शरद पवार वाली एनसीपी ने खुला ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का शरद पवार की एनसीपी समर्थन करेगी।
3: वी विल कंसीडर प्रोवाइडेड कंसीडर, इंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसीडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल How will it be implemented?
2: इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि एनसीपी शरद चंद्र पवार महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों के पक्ष में खड़ी है। अगर शरद पवार की पार्टी की ताकत देखी जाए तो लोकसभा में 8 सांसद हैं, राज्यसभा में 3 सांसद हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधायक हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद में 3 एमएलसी हैं। सुप्रिया सुले के ऐलान के बाद परसीमन जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष के भीतर एक अलग राजनीतिक संदेश जाता दिखाई दे रहा है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें बिल का समर्थन करना पड़ रहा है वरना विरोध करने पर टीएमसी जैसा हाल होना तय है।
4: उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए वो अगर करते हैं समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को।
2: परसीमन का मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। दक्षिण भारत के कई दल आबादी के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण को लेकर अपनी आशंकाएं जता चुके हैं। ऐसे माहौल में शरद पवार गुट का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभाव रखने वाली इस पार्टी का ये रुख संसद के भीतर होने वाली बहस को नई दिशा दे सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: पंजाब कांग्रेस में भी सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसने आलाकमान की टेंशन को बढ़ा दिया है। चन्नी गुट की बगावत के बीच केंद्रीय नेतृत्व राजा वडिंग को हटाने के मूड में नहीं दिख रहा।

0: चुनाव से पहले एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में बगावत की चिंगारी सुलगी तो आग बुझाने की जिम्मेदारी दिल्ली में आलाकमान तक पहुंच गई। पंजाब की रिपोर्ट लेकर प्रभारी भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने अपनी रिपोर्ट संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है और उसमें भी वर्डिंग को ही जिम्मेदारी जारी रखने की सिफारिश की गई है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल राजा अमरिंदर सिंह वर्डिंग के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक संगठन के भीतर भी वर्डिंग की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। 29 जिला अध्यक्षों में से 25 उनके समर्थन में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 सांसद और 8 से 9 विधायक भी उनके साथ खड़े हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में करीब 55 हलका प्रमुख बताए जा रहे हैं, जबकि 12 हलका प्रमुख ऐसे हैं जो दोनों नेताओं के साथ तालमेल बनाए हुए हैं।
1: क्या नेतृत्व परिवर्तन की
2: कोई भाई ये नीचे रख ले यार।
3: मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं?
1: अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश?
3: मैं पहले भी बोल चुका आपसे, गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है।
0: अब सवाल यह है कि पिछली रिपोर्ट के बाद भी राजा वडिंग को न हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद चन्नी गुट ने बैठक की थी। ऐसे में अगर राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रहने का फैसला जारी रहता है तो फिर चन्नी अब आगे क्या फैसला करेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस को पंजाब से सत्ता खोनी पड़ी थी। वहीं बीजेपी भी चन्नी को ऑफर दे चुकी है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
4: मुंबई के चेंबूर इलाके में पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत के मामले में बीएमसी ने जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। हादसे के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी है। साथ ही साथ साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है। सवाल अब यह है कि क्या मुंबई वालों की जान की कीमत सिर्फ 7 लाख रुपए हैं?

0: अब की बार मुंबई में मॉनसून हादसों की बाढ़ लेकर आया। बारिश से हुए अलग अलग हादसों में 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में एक शख्स की खुले मैनहोल में गिरने से मौत हो चुकी है। बारिश से हुए हादसों की चर्चा विधानसभा तक में हुई। स्पीकर राहुल नार्वेकर से लेकर बीजेपी विधायक अमित साटम तक ने लानत मलानत और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही, लेकिन नतीजा क्या निकला? सबसे दर्दनाक मौत चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से हुई थी। इस हादसे में 11 साल के छात्र विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी, जबकि कई बच्चे घायल हुए थे।
1: मुंबई के चेंबूर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर दोपहर से ही बारिश हो रही थी और स्कूल से भरी हुई बस बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी, तभी यहां पर एक पेड़ था जो उस बस पर गिर गया। इस हादसे में 10 बच्चे घायल हुए हैं, तो वहीं 4 बच्चों को इलाज के लिए जैन हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, तो वहीं एक 11 वर्षीय बच्चे की इसमें मृत्यु हो गई है। काफी दर्दनाक हादसा था, बारिश हो रही थी, कई जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई थी। ये चेंबूर भी उन्हीं इलाकों में से एक था जहां पर पेड़ गिरा था, यही वो पेड़ था जो गिरा। फिलहाल बस को यहां से हटा दिया गया है, लेकिन अब इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। बहुत ही विशाल ये पेड़ था जिसे काट के एक तरफ किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं अभी भी इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। प्रशासन का राहत कार्य जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका था, लेकिन इस घटना के लिए जो दोषी है उन पर भी कार्रवाई की मांग जो पूर्व एमपी हैं यहाँ के राहुल चौहान उनके द्वारा की गई है।
0: लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि बीएमसी की जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई। इस दुखद घटना की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी। साथ ही साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने भी नाराजगी जताते हुए एक न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन पोस्ट करते हुए लिखा, विहान की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? बीएमसी का कहना है कि कोई नहीं। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने भी चेंबूर हादसे की जांच रिपोर्ट पर हैरानी जताते हुए कहा कि खानापूर्ति वाली कार्रवाई मंजूर नहीं है।
2: उसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा डे वन से एक ही स्टेटमेंट था, ये जो रोड बने हैं ये मुंबई कर के लिए बने। मुंबई कर बहुत खुश है क्योंकि आज की तारीख में बारिश में पॉटहोल्स नहीं दिख रहे जहाँ पे रोड बने हैं, साइड ड्रेन भी बने हैं, लेकिन ये काम ये किसका था? मुंबई महानगर पालिका और उसके यहाँ पे जो निश्चित किए गए साइट इंजीनियर का काम था और वहाँ पे गार्डन डिपार्टमेंट का काम था, तो ये संयुक्त उन्होंने मिलके वो काम करना चाहिए था। वहाँ पे जो विजिट मैंने करने के बाद भी मैंने कहा था कि ये जो पूरे पेड़ है ये वीक हो रहे हैं, तो वहाँ के जो साइट इंजीनियर है उसकी जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, गार्डन का अधिकारी है उसकी ना जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, बल्कि ना 7 लाख रुपए दे के बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा।
0: राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य भर में सड़क किनारे लगे सभी पेड़ों का ऑडिट किया जाना चाहिए। बीएमसी की रिपोर्ट पर मेयर की आलोचना का समर्थन करते हुए विपक्ष के नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा कि सिर्फ असहमति जताना काफी नहीं है। पेडनेकर ने कहा कि मेयर को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। वहीं बीएमसी में शिवसेना के ग्रुप लीडर अमेघ होले ने कहा कि चेंबूर हादसे की रिपोर्ट अभी पेश नहीं की गई है, लेकिन पता नहीं कि जानकारी बाहर कैसे आई। उन्होंने भी पेड़ गिरने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
3: जो जो ऑफिसर्स के नीचे से ये पूरा कंप्लेन जो झाड़ के बारे में गया है, उनकी इंक्वायरी होके उसपे ऊपर जो कुछ निर्णय आ सकता है वो महानगर पालिका ने देना चाहिए।
0: वहीं विरार में पानी भरे गड्ढे मौत का जाल बनते जा रहे हैं। ऐसे गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। विरार में बारिश भले थम गई, लेकिन बारिश के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। विरार पश्चिम में जकात नाका के पास सड़क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ प्रवीण नालावड़े, पालघर आज तक।
4: सवाल अब ये कि क्या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होने के लिए छटपटा रहा है? क्या पाकिस्तान ने इतने दशकों तक जिस झूठ को पाला पोसा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठा प्रचार किया, क्या इस झूठ से पर्दा हट गया है? क्योंकि अब तो ऐसा ही लगता है कि बगावत की आग इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाली।
5: बुधवार को ऐतिहासिक मुजफ्फराबाद मार्च हो रहा है। एक दिन पहले इसी मार्च के लिए रावलाकोट में पीओके की आवाम इकट्ठा हुई थी। मुजफ्फराबाद के लिए प्रदर्शनकारियों का एक्शन प्लान तैयार था, शांतिपूर्वक आगे बढ़ने का एजेंडा था, लेकिन हैवानियत की हदें पार करने वाले पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस का कहर प्रदर्शनकारियों पर टूटा। पहले तो उन्होंने भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शन में शामिल स्कूली बच्चे और महिलाएं बेतहाशा परेशान रहे। प्रदर्शनकारी जब अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने इन बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां दाग दी। रावलाकोट बस अड्डा, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी थी, वहां पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग हुई। उधर सुधनौती में भी फायरिंग की घटना हुई। 14 जुलाई को हुई फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई। इस दौरान एक पाकिस्तानी रेंजर की भी मौत हो गई। 5 अन्य सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए हैं। अब उस गोलीबारी को लेकर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों का दावा है कि यह हमला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, यानी अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अपने ऊपर खुद ही हमला करवाया और अपने जवान को मार डाला, ताकि प्रदर्शनकारियों पर किए एक्शन को सही ठहराया जा सके। लेकिन एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की ऐसी किसी भी साजिश का सच पूरी दुनिया जान चुकी है और अब पूरा पीओके सड़कों पर उतरा है।
6: रावलाकोट इलाके में पाकिस्तान के रेंजर्स की फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई थी। अब इसी आंदोलन में अमान खान का एक भाषण जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पीओजेके न तो विवादित है, न ही आजाद कश्मीर है, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है।
7: ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है।
5: आंदोलनकारी पाकिस्तान को सच का आईना दिखा रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विवादित इलाका नहीं है, बल्कि उस पर पाकिस्तान का कब्जा है।
7: और उन क्रियादादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर सभी कब्जा है, ये एक मुतनाजा इलाका है, जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास ये राइट है।
5: दरअसल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की 38 सूत्रियां मांगे हैं। इनमें 12 रिफ्यूजी सीटों को खत्म करना, बिजली टैरिफ में भारी कमी किया जाना शामिल है। एक मांग यह है कि स्थानीय संसाधनों से होने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा पीओके में ही रहना चाहिए। बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए आटे, चीनी और अन्य जरूरी वस्तुओं पर भारी सब्सिडी की मांग भी शामिल है। साथ ही बेहतर सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा व्यवस्था की आवाज भी उठ रही है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग एक्शन कमेटी कर रही है। वाजिब मांगों पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलियां बरसाई, जुल्म की हदें पार कर।
8: बैरूनी फोर्सेस मंगवा रहे हैं, कत्ले आम कर रहे हैं, बेशुमार नौजवानों को शहीद कर रहे हैं। क्या वो 2 साल की बच्ची भी दहशत करती नहीं? ये फोर्सेस, ये एसटीपीसी और ये रेंजर्स दहशत करते, जिन्हें हमें मारने के लिए, हमारी आवाज को कुचलने के लिए बुलाया गया है।
7: Get up!
5: ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीओके के मसले पर पहली बार बेनकाब हुआ है, लेकिन अब वहां लगातार तेज होते पाकिस्तान विरोध ने उसकी तमाम साजिशों को बेनकाब कर दिया है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक भी।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

कैबिनेट और संगठन में हेरफेर में बदलाव की खबरों के बीच प्रधानमंत्री आवास पर हुई मीटिंग करीब दो घंटे तक चले मंथन में अमित शाह नितिन नवीन और बीएल संतोष रहे मौजूद। पंचायत आज तक के मंच पर दावे अपने अपने सीएम योगी बोले प्रचंड बहुमत से बनाएंगे जीत की हैट्रिक विपक्ष का दावा जनता को बीजेपी पर नहीं है भरोसा। मदन मित्रा के भी बागी होने के बाद बीजेपी पर भड़की ममता कहा इनके इशारों पर हमारे नेताओं पर दबाव लेकिन विचारधारा से हमारा कोई समझौता नहीं। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च बीटा वर्जन में रेल टिकट बुकिंग होगी सुपरफास्ट नई डिजाइन और फीचर्स का अनुभव ले सकेंगे लोग। और पीओजेके में पाकिस्तान को खुला चैलेंज आंदोलनकारी नेता मान खान

0: लगा तो एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे की गूंज सुनाई दी, जिसने साफ कर दिया कि 2027 के चुनावों में यह सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है।
1: आज तक पंचायत का मंच सजा तो एक बार फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की गूंज सुनाई दी।
2: जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास किए, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है, वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं।
1: विपक्ष ने साफ किया कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर ही सियासी मैदान पर उतरने वाले हैं।
3: चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा, हम मुद्दा बनाओ या ना बनाओ, जो साधारण जनमत है, जो साधारण व्यक्ति है, वो रोज पूछता है बाबू अयोध्या में मंदिर से कैसे चोरी हो गया, ये लोग क्यों चुरा ले गए मामला। वो हमको नहीं चोर बताते हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं बताते हैं, वो उन्हीं को बताते हैं। इसने समाजवादी पार्टी का जनाधार जनता में बढ़ा और इनका जनाधार इस चोरी से कम हुआ।
4: चढ़ावा चोरी पे क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, चंदा चोरी पर क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, इनके लोग शामिल हैं उसमें। भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम के नाम पर ही ये जाएंगे, क्योंकि जो लोग आज उसमें हैं, छोटे छोटे लोगों को तो जेल भेज दिया आपने, छोटे लोगों को भेज दिया, टिल्लू यादव कौन कौन और किसको किसको भेज दिया आपने, मिश्रा जी को। अरे भैया चंपत राय बंसल कब जेल जाएंगे, योगी जी अनिल मिश्रा कब जाएंगे, नीपेंद्र मिश्रा के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, गोविंद गिरी पर कब कार्रवाई होगी, गोपाल राव पर कब कार्रवाई होगी, ये प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। और निश्चित तौर से आज ये जो आज गांव-गांव में चर्चा है कि चंदा चोरी तो अशोक सिंघल के समय हुआ, अब चढ़ावा चोरी हो रहा है, जो माताएं बने अपने आंचल में पैसा बांध कर जाती है उस आंचल का पैसा इन्होंने छीन लिया, इसका जवाब चुनाव में कैसे दोगे।
1: उधर योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर राम मंदिर पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं।
5: ये पाप हुआ है, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि एक संदेशा जाए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कि इस देश में 2026 में ये हुआ था अयोध्या मंदिर में, तब ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिला था, तब उन लोग कांपे, ताकि कोई आगे ये गंदा पाप, ये घिनौना, ये घृण तक अपराध ना कर पाए।
3: हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए, सारे चोरों को जेल भेज दिया, सारे पॉकेट मारों को जेल भेज दिया, ते वहाँ कहाँ पैदा हो गए, अयोध्या में कैसे पैदा हो गए, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी।
1: बहरहाल यूपी में 2027 की लड़ाई में राम मंदिर बड़ा मुद्दा होने वाला है। जिस राम मंदिर ने बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, वहीं चढ़ावा चोरी के कलंक को विपक्ष किसी भी कीमत पे छोड़ता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एक्शन भी फुल है। एक ओर जहां ट्रस्ट के सीईओ के लिए आवेदनों की बाढ़ आई हुई है, वहीं फाइनल एसआईटी रिपोर्ट बहुत ही जल्द आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक फाइनल रिपोर्ट में टिन्नू यादव के लिए और भी खुलासे हैं।

राम मंदिर चढ़ावे की जिन्होंने चोरी की है अब उनका हिसाब जल्दी ही होने वाला है। एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट लगभग तैयार है और सूत्रों के मुताबिक इसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो मंदिर प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जांच में टिन्नू यादव की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आई है। टिन्नू यादव की मंदिर के प्रबंधन और संवेदनशील कामकाज में गहरी पैठ थी। दानपात्र यानी हुंडियों की चाबियां भी उसके पास रहती थी। चोरी की सबसे बड़ी वजह भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताएं रही। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कमजोर किए जाने से चोरी की गुंजाइश बनी। चंपत राय को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई है। चंपत राय को लापरवाही और निगरानी में नाकामी के लिए जिम्मेदार माना गया है।

0: हालांकि आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका पर एसआईटी ने कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है क्योंकि पुलिस की जांच अभी जारी है। वहीं एसओपी में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया की अनियमितताओं के लिए अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उधर राम मंदिर के सीईओ पद के लिए आवेदन करने वालों की होड़ लगी है। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए हजारों आवेदन आ चुके हैं। आवेदकों में सबसे बड़ी संख्या सेवानिवृत्त नौकरशाहों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बताई जा रही है। बहरहाल अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
1: संसद के आगामी सत्र से पहले परिसीमन को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। इसी बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनकी पार्टी परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी।

0: महाराष्ट्र की सियासत में इंडिया गठबंधन को फिर से करारा झटका लगा है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के भीतर एकजुटता नहीं दिख रही है, क्योंकि शरद पवार वाली एनसीपी ने खुला ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का शरद पवार की एनसीपी समर्थन करेगी।
1: वी विल कंसीडर प्रोवाइडेड कंसीडर, इंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसीडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल How will it be implemented?
0: इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि एनसीपी शरद चंद्र पवार महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों के पक्ष में खड़ी है। अगर शरद पवार की पार्टी की ताकत देखी जाए तो लोकसभा में 8 सांसद हैं, राज्यसभा में 3 सांसद हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधायक हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद में 3 एमएलसी हैं। सुप्रिया सुले के ऐलान के बाद परसीमन जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष के भीतर एक अलग राजनीतिक संदेश जाता दिखाई दे रहा है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें बिल का समर्थन करना पड़ रहा है, वरना विरोध करने पर टीएमसी जैसा हाल होना तय है।
2: उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए वो अगर करते हैं समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को।
0: परसीमन का मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। दक्षिण भारत के कई दल आबादी के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण को लेकर अपनी आशंकाएं जता चुके हैं। ऐसे माहौल में शरद पवार गुट का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभाव रखने वाली इस पार्टी का ये रुख संसद के भीतर होने वाली बहस को नई दिशा दे सकता है। आज तक ब्यूरो।
3: पंजाब कांग्रेस में भी सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जिसने आलाकमान की टेंशन को बढ़ा दिया है, चन्नी गुट की बगावत के बीच केंद्रीय नेतृत्व राजा वडिंग को हटाने के मूड में नहीं दिख रहा।

0: चुनाव से पहले एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में बगावत की चिंगारी सुलगी तो आग बुझाने की जिम्मेदारी दिल्ली में आलाकमान तक पहुंच गई। पंजाब की रिपोर्ट लेकर प्रभारी भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने अपनी रिपोर्ट संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है और उसमें भी वर्डिंग को ही जिम्मेदारी जारी रखने की सिफारिश की गई है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल राजा अमरिंदर सिंह वर्डिंग के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक संगठन के भीतर भी वर्डिंग की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। 29 जिला अध्यक्षों में से 25 उनके समर्थन में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 सांसद और 8 से 9 विधायक भी उनके साथ खड़े हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में करीब 55 हलका प्रमुख बताए जा रहे हैं, जबकि 12 हलका प्रमुख ऐसे हैं जो दोनों नेताओं के साथ तालमेल बनाए हुए हैं।
1: क्या नेतृत्व परिवर्तन की
2: कोशिश भाई यहाँ ये नीचे रख ले यार।
3: मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं?
1: अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश?
3: मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपसे, गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है।
0: अब सवाल यह है कि पिछली रिपोर्ट के बाद भी राजा वडिंग को न हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद चन्नी गुट ने बैठक की थी। ऐसे में अगर राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रहने का फैसला जारी रहता है तो फिर चन्नी अब आगे क्या फैसला करेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस को पंजाब से सत्ता खोनी पड़ी थी। वहीं बीजेपी भी चन्नी को ऑफर दे चुकी है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
4: दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार स्कूल क्रांति के दावे करती है, लेकिन पता चला कि बिजली का बिल नहीं भरने से लुधियाना के सरकारी स्कूल की ही बिजली काट दी गई। बच्चे अंधेरे में पढ़ते रहे। इस स्कूल में एक ही हॉल में 5वीं तक की क्लास चलती है।
5: मैं क्लास जावड़िया, मैं कभी पूछने लग गया मैं की बने बने। कोई कहना जी डॉक्टर बनूंगा, कोई कहना इंजीनियर, एक कहना कहना मुख्यमंत्री बनूंगा जी मैं। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨੇਤਾ ਚੁਣੂਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖ ਬੱਚੇ ਦਾ।
6: ਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਥੋੜਾ ਸਾ ਵਕਤ ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਕਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਲੇਤੇ ਤੋ ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਿਲਾ ਦਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹੇ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਤਾ। ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾ ਬਿਜਲੀ ਕੇ ਕੈਸੇ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪੰਖੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚਲ ਨਹੀਂ ਪਾਤੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾ ਕੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਸੋਚੀਏ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਾ ਕਿਆ ਹੋਗਾ। ਜਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਤਾ ਚਲਾ ਅਬ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕਰ ਸਕੂਲ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾ ਹਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਸੋਰੀ ਹਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਹਾਂ ਇੱਕ ਹਾਲ ਕੇ ਭੀਤਰ ਯੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ, ਯੇ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ, ਯੇ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ, ये चौथी, ये पांचवी, और इसी हॉल के भीतर पता चला नर्सरी से पांचवी तक की कुल 8 क्लास एक साथ चलाई जाती हैं, जहां रसोई घर भी है और बाथरूम, जहां मुस्कुराते हुए भीतर मुख्यमंत्री भगवंत मान का पोस्टर भी लगा है। लेकिन काश मुख्यमंत्री आकर यहां का हाल और हॉल दोनों देख पाते।
7: लाखों करोड़ों रुपए का फंड जो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च किया जा रहा है। इस एजुकेशन सिस्टम का असली चेहरा क्या है, आज हम आपको दिखाते हैं। लुधियाना के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में हम मौजूद हैं, जहां पे एक ही हॉल के अंदर नर्सरी से लेकर पांचवी तक के बच्चों की सभी क्लासें एक ही हॉल के अंदर लगाई जा रही हैं।
8: ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੇਨ ਦਿੱਕਤ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਵੇ।
9: ਆਪਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਯੇ ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ, ਤੋ ਇਸ ਪਰ ਹਮ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੇਂਗੇ। ਇਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਰਹਾ ਹੋਗਾ ਯੇ ਵੀ ਜਾਨਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
6: ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲੋਂ ਮੇਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਮੇਂ ਨੰਬਰ 1 ਖੁਦ ਕੋ ਕਹਿਨੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਹੈ।
4: मुंबई के चेंबूर इलाके में पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत के मामले में बीएमसी ने जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। हादसे के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी है। साथ ही साथ साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है। सवाल अब यह है कि क्या मुंबई वालों की जान की कीमत सिर्फ 7 लाख रुपए हैं।

0: अब की बार मुंबई में मॉनसून हादसों की बाढ़ लेकर आया। बारिश से हुए अलग अलग हादसों में 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में एक शख्स की खुले मेनहोल में गिरने से मौत हो चुकी है। बारिश से हुए हादसों की चर्चा विधानसभा तक में हुई। स्पीकर राहुल नार्वेकर से लेकर बीजेपी विधायक अमित साटम तक ने लानत मलानत और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही, लेकिन नतीजा क्या निकला? सबसे दर्दनाक मौत चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से हुई थी। इस हादसे में 11 साल के छात्र बिहान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी, जबकि कई बच्चे घायल हुए थे।
1: मुंबई के चेंबूर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर दोपहर से ही बारिश हो रही थी और स्कूल से भरी हुई बस बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी, तभी यहां पर एक पेड़ था जो उस बस पर गिर गया। इस हादसे में 10 बच्चे घायल हुए हैं, तो वहीं 4 बच्चों को इलाज के लिए जैन हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, तो वहीं एक 11 वर्षीय बच्चे की इसमें मृत्यु हो गई है। काफी दर्दनाक हादसा था, बारिश हो रही थी, कई जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई थी। ये चेंबूर भी उन्हीं इलाकों में से एक था जहां पर पेड़ गिरा था, यही वो पेड़ था जो गिरा। फिलहाल बस को यहां से हटा दिया गया है, लेकिन अब इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। बहुत ही विशाल ये पेड़ था जिसे काट के एक तरफ किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं अभी भी इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। प्रशासन का राहत कार्य जो है वो यहां पर पहुंच चुका था, लेकिन इस घटना के लिए जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग जो पूर्व एमपी हैं यहाँ के राहुल चौहान उनके द्वारा की गई है।
0: लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि बीएमसी की जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई। इस दुखद घटना की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी। साथ ही साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने भी नाराजगी जताते हुए एक न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन पोस्ट करते हुए लिखा, विहान की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? बीएमसी का कहना है कि कोई नहीं। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने भी चेंबूर हादसे की जांच रिपोर्ट पर हैरानी जताते हुए कहा कि खानापूर्ति वाली कार्रवाई मंजूर नहीं है।
2: उसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा डे वन से एक ही स्टेटमेंट था, ये जो रोड बने हैं ये मुंबई कर के लिए बने। मुंबई कर बहुत खुश है क्योंकि आज की तारीख में बारिश में पॉटहोल्स नहीं दिख रहे जहाँ पे रोड बने हैं, साइड ड्रेन भी बने हैं, लेकिन ये काम ये किसका था? मुंबई महानगर पालिका और उसके यहाँ पे जो निश्चित किए गए साइट इंजीनियर का काम था और वहाँ पे गार्डन डिपार्टमेंट का काम था, तो ये संयुक्त उन्होंने मिलके वो काम करना चाहिए था। वहाँ पे जो विजिट मैंने करने के बाद भी मैंने कहा था कि ये जो पूरे पेड़ है ये वीक हो रहे हैं, तो वहाँ के जो साइट इंजीनियर है उसकी जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, गार्डन का अधिकारी है उसकी ना जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, बल्कि ना 7 लाख रुपए दे के बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा।
0: राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य भर में सड़क किनारे लगे सभी पेड़ों का ऑडिट किया जाना चाहिए। बीएमसी की रिपोर्ट पर मेयर की आलोचना का समर्थन करते हुए विपक्ष के नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा कि सिर्फ असहमति जताना काफी नहीं है। पेडनेकर ने कहा कि मेयर को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। वहीं बीएमसी में शिवसेना के ग्रुप लीडर अमेय घोले ने कहा कि चेंबूर हादसे की रिपोर्ट अभी पेश नहीं की गई है, लेकिन पता नहीं कि जानकारी बाहर कैसे आई। उन्होंने भी पेड़ गिरने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
3: जो जो ऑफिसर्स के नीचे से ये पूरा कंप्लेंट जो वो झाड़ के बारे में गया है उनकी इंक्वायरी होके उस पे ऊपर जो कुछ निर्णय आ सकता है वो महानगर पालिका ने देना चाहिए।
0: वहीं विरार में पानी भरे गड्ढे मौत का जाल बनते जा रहे हैं। ऐसे गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। विरार में बारिश भले थम गई, लेकिन बारिश के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। विरार पश्चिम में जकात नाका के पास सड़क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ प्रवीण नालावड़े, पालघर आज तक।
4: पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त बगावत की आग लगी हुई है और इस आग की तपिश इस्लामाबाद और लाहौर तक महसूस की जा रही है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से लोग इस वक्त मुजफ्फराबाद कूच के लिए निकल रहे हैं। क्या दिन और क्या रात, लोगों का ये मार्च लगातार जारी है और इन प्रदर्शनकारियों पर मुनीर की फौज का जोर जबरदस्ती भी लगातार जारी है। निहत्ते प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है, जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है।
5: बड़ी
6: लड़कियों
7: क्या पीओके इस बार पाकिस्तान के कब्जे से निकल जाए? पीओके में बुलंद हुई आजादी की आवाज, अब क्या करेंगे मुनीर और शहबाज?
8: ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है, ये जो अफरातफरी है, ये जो शल्लिंग बल्लिंग है।
7: पीओके की पूरी आवाम सड़कों पर आ गई, सबसे बड़ी बगावत हो गई। आटे बिजली और हक की लड़ाई पाकिस्तान को तोड़ने पर है।
9: मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम दहशतगर्द होते तो ये लाखों के मजमे में लोग और लड़कियां, ये खवातीन अपने गोद वाले बच्चों को इधर लेके आती, ये कोई दहशतगर्द है, आके प्लीज चेक कर दिया जाए।
7: क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या औरत और क्या मर्द, पूरा का पूरा पीओके सड़कों पर उतरा हुआ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर रावलकोट से उठती ये आवाज लाहौर और इस्लामाबाद को कपा रही। पीओके की यह बगावत बता रही कि अब बंदूक की जोर पर चलने वाली मुनीर की फौज के खिलाफ लोग खड़े हो गए। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन ने आसिफ मुनीर की चूले हिला दी, वो पीओके के लोगों पर फायरिंग करवा रहा है। पाकिस्तान की फौज और रेंजर निर्दोषों की जान ले रहे हैं, लेकिन लोगों के इस बगावत में कोई कमी नहीं आई। पिछले दो हफ्तों से पीओके में हुए इन प्रदर्शनों में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई। मुजफ्फराबाद, रावलपुर और मीरपुर समेत बहुत से इलाकों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार किया है। इन्हीं की नदियों के पानी से बिजली बनाकर लाहौर और पंजाब में बिजली दी जाती है। पीओके वालों को राशन के लिए भी तरसाया जाता है। इन्हीं मुद्दों के खिलाफ पिछले 4 साल से पीओके सुलगा हुआ है, लेकिन मौजूदा विवाद चुनाव से जुड़ा हुआ है। 27 जुलाई को पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान होना है। पीओके की असेंबली में 12 सीटें बाहर से आए हुए लोगों के नाम पर आरक्षित हैं। आरोप ये है कि पाकिस्तान की सरकार इन 12 सीटों पर अपने लोगों को बिठा देती है और इन 12 सीटों के द्वारा ही पीओके में पावर कंट्रोल होता है। इसीलिए अब ये डिमांड है कि ये 12 सीटें खत्म करके इन पर पीओके के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। प्रदर्शन की कमान संभाली है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी JAC ने, और इस कमेटी में शामिल लोग पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर रहे हैं। पूरे 78 साल से इस्लामाबाद जिस झूठ की काली कमाई को खा रहा था, जिस पीओके को वो दुनिया के सामने आजाद कश्मीर का पाखंडी लेबल लगाकर बेच रहा था, आज उस 78 साल पुराने प्रोपेगेंडा के पर हच्चे उड़ चुके हैं।
10: मौजूद है और उनकी आजादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका है, इस पर कब्जा है, इस पर सभी कब्जा है, ये एक मुतनाजा इलाका है। जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुताबिक जो बात करने का इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है, वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के

0: हमारी माएं बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं। फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म, हुकूमत की जंग खत्म, हुकूमत की जंग खत्म।
1: रावलाकोट के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में 80,000 से ज्यादा लोगों का सैलाब और मंच पर खड़े ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान। पीओके के लोग कह रहे हैं कि पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ये सीधी सीधी चुनौती मुनीर को है। मुनीर की भारी भरकम फौज और उनकी गोलियां भी बगावत की आग को ठंडी नहीं कर पा रही। जब किसी अवाम के सब्र का बांध टूटता है तो बड़े बड़े तानाशाहों के तख्तो ताज इतिहास के कूड़ेदान में बह जाते हैं।
0: और हुक्मरानों से हम कहते हैं कि न तो लाल से काम नहीं चलेगा। एक आता है कहता है फलाह नहीं मान रहा, दूसरा आता है कहता है फलाह नहीं मान रहा। हमने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ। रियासत के शहरी है, रियासत आवाम से है और रियासत आवाम से है और आवाम ही रियासत है। सुप्रीमियर रियासत आवाम है, आवाम ताकत है।
1: इस बार के मार्च की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें स्थानीय महिलाएं और स्कूली बच्चों ने रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लिया है। सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियो में महिलाएं और बच्चों के हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों, भारी टैक्स और आटे बिजली की महंगाई के खिलाफ नारे लगाते हुए मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ ही पीओके में आजादी की मांग को लेकर चल रही बगावत में अब वहां का बच्चा बच्चा शामिल है।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मारूख और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाएं। एक्शन कमेटी ने ऐसा क्या गलत किया? वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज़ उठा रहे और वो कह रहे खबरों में कह रहे और धरने में यहाँ तक रेजर्स भी कह रहे कि अगर जो लड़के हो जो बच्चे एक्शन कमेटी में आए हुए अगर वो पीछे ना गए उनके पेफॉर्म्स नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शादी कार्ड नहीं मानेंगे। ये पेफॉर्म है हमारे, अगर हमारे पेफॉर्म नहीं माने जाएंगे चाहे आप लोग के पेफॉर्म अपनी मर्जी से जिया, मैं आपको आपके पेफॉर्म्स की भी जरूरत नहीं है। और मेरी आप सब पाकिस्तानी आवाम से गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े हो, हमें हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्यों आप लोग पीछे खड़े? हमारे साथ अल्लाह खड़े है, प्लीज हमारा साथ दें।
1: पीओके में भड़की आजादी की इस आग पर अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। भारत ने दो टूक कह दिया कि पीओके में जारी ये महाविद्रोह पाकिस्तान के दशकों पुराने शोषण, बुनियादी अधिकारों के हनन और प्रशासनिक जुल्म का नतीजा है।
3: देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीज़ों को रोका गया है, इंटरनेट ब्लैकआउट को लागू किया गया है और निहत्थे नागरिकों पर के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घोर दुर्व्यवहारों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराएगी।
1: उबाल बता रहा है कि पीओके की फॉल्ट लाइन एक्टिव हो चुकी है। पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर के नाम पर जो गुब्बारा फुलाया था उसकी पूरी दुनिया के सामने हवा निकल चुकी है। प्रणव उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कैबिनेट और संगठन में हेरफेर में बदलाव की खबरों के बीच प्रधानमंत्री आवास पर हुई मीटिंग, करीब दो घंटे तक चले मंथन में अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष रहे मौजूद। पंचायत आज तक के मंच पर दावे अपने अपने, सीएम योगी बोले प्रचंड बहुमत से बनाएंगे जीत की हैट्रिक, विपक्ष का दावा जनता को बीजेपी पर नहीं है भरोसा। मदन मित्रा के भी बागी होने के बाद बीजेपी पर भड़की ममता, कहा इनके इशारों पर हमारे नेताओं पर दबाव लेकिन विचारधारा से हमारा कोई समझौता नहीं। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च, बीटा वर्जन में रेल टिकट बुकिंग होगी सुपरफास्ट, नई डिजाइन और फीचर्स का अनुभव ले सकेंगे लोग। और पीओजेके में पाकिस्तान को खुला चैलेंज, आंदोलनकारी नेता मान खान शहबाज मुनीर को ललकारते हुए नजर आए, कहा ये कब्जे वाला इलाका, रावलकोट में उमड़ी भीड़। आज तक पंचायत में जब सियासी दिग्गजों का मेला लगा तो एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे की गूंज सुनाई दी, जिसने साफ कर दिया कि 2027 के चुनावों में यह सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है।
1: आज तक पंचायत का मंच सजा तो एक बार फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की गूंज सुनाई दी।
2: जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास किए, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में, उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है, वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं।
1: विपक्ष ने साफ किया कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर ही सियासी मैदान पर उतरने वाले हैं।
3: चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा, हम मुद्दा बनाओ या ना बनाओ, जो साधारण जनमत है, जो साधारण व्यक्ति है, वो रोज पूछता है बाबू अयोध्या में मंदिर से कैसे चोरी हो गया, ये लोग क्यों चुरा ले गए मामला, वो हमको नहीं चोर बताते हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं बताते हैं, वो उन्हीं को बताते हैं। इसने समाजवादी पार्टी का जनाधार जनता में बढ़ा और इनका जनाधार इस चोरी से कम हुआ।
4: चढ़ावा चोरी पे क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, चंदा चोरी पर क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, इनके लोग शामिल हैं उसमें, भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम के नाम पर ही ये जाएंगे, क्योंकि जो लोग आज उसमें हैं, छोटे छोटे लोगों को तो जेल भेज दिया आपने, छोटे लोगों को भेज दिया, टिल्लू यादव कौन कौन और किसको किसको भेज दिया आपने, मिश्रा जी को, अरे भैया चंपत राय बंसल कब जेल जाएंगे, योगी जी अनिल मिश्रा कब जाएंगे, निपेंद्र मिश्रा के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, गोविंद गिरी पर कब कार्रवाई होगी, गोपाल राव पर कब कार्रवाई होगी, ये प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। और निश्चित तौर से आज ये जो आज गांव गांव में चर्चा है कि ये चंदा चोरी तो अशोक सिंघल के समय हुआ, अब चढ़ावा चोरी हो रहा है, जो माताएं बने अपने आंचल में पैसा बांधकर जाती हैं, उस आंचल का पैसा इन्होंने छीन लिया, इसका जवाब चुनाव में कैसे दोगे।
1: उधर योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर राम मंदिर पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं।
5: ये पाप हुआ है, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि एक संदेशा जाए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कि इस देश में 2026 में ये हुआ था अयोध्या मंदिर में, तब ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिला था, तब उन लोग कांपे, ताकि कोई आगे ये गंदा पाप, ये घिनौना, ये घृण तक अपराध ना कर पाए।
3: हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए, सारे चोरों को जेल भेज दिया, सारे पॉकेट मारों को जेल भेज दिया, ते वहाँ कहाँ पैदा हो गए, अयोध्या में कैसे पैदा हो गए, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी।
1: बहरहाल यूपी में 2027 की लड़ाई में राम मंदिर बड़ा मुद्दा होने वाला है। जिस राम मंदिर ने बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, वहीं चढ़ावा चोरी के कलंक को विपक्ष किसी भी कीमत पे छोड़ता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एक्शन भी फुल है। एक ओर जहां ट्रस्ट के सीईओ के लिए आवेदनों की बाढ़ आई हुई है, वहीं फाइनल एसआईटी रिपोर्ट बहुत ही जल्द आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक फाइनल रिपोर्ट में टिन्नू यादव के लिए और भी खुलासे हैं।

0: राम मंदिर चढ़ावे की जिन्होंने चोरी की है अब उनका हिसाब जल्दी ही होने वाला है। एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट लगभग तैयार है और सूत्रों के मुताबिक इसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो मंदिर प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जांच में टिन्नू यादव की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आई है। टिन्नू यादव की मंदिर के प्रबंधन और संवेदनशील कामकाज में गहरी पैठ थी। दानपात्र यानी हुंडियों की चाबियां भी उसके पास रहती थी। चोरी की सबसे बड़ी वजह भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताएं रही। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कमजोर किए जाने से चोरी की गुंजाइश बनी। चंपत राय को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई है। चंपत राय को लापरवाही और निगरानी में नाकामी के लिए जिम्मेदार माना गया है। हालांकि आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका पर एसआईटी ने कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है क्योंकि पुलिस की जांच अभी जारी है। वहीं एसओपी में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया की अनियमितताओं के लिए अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उधर राम मंदिर के सीईओ पद के लिए आवेदन करने वालों की होड़ लगी है। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए हजारों आवेदन आ चुके हैं। आवेदकों में सबसे बड़ी संख्या सेवानिवृत्त नौकरशाहों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बताई जा रही है। बहरहाल अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। संतोष शर्मा, अयोध्या, आज तक।
1: संसद के आगामी सत्र से पहले परिसीमन को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। इसी बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनकी पार्टी परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी।

0: महाराष्ट्र की सियासत में इंडिया गठबंधन को फिर से करारा झटका लगा है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के भीतर एकजुटता नहीं दिख रही है, क्योंकि शरद पवार वाली एनसीपी ने खुला ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का शरद पवार की एनसीपी समर्थन करेगी।
1: वी विल कंसीडर प्रोवाइडेड कंसीडर, इंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसीडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल How will it be implemented?
0: इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि एनसीपी शरद चंद्र पवार महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों के पक्ष में खड़ी है। अगर शरद पवार की पार्टी की ताकत देखी जाए तो लोकसभा में 8 सांसद हैं, राज्यसभा में 3 सांसद हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधायक हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद में 3 MLC हैं। सुप्रिया सुले के ऐलान के बाद परिसीमन जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष के भीतर एक अलग राजनीतिक संदेश जाता दिखाई दे रहा है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें बिल का समर्थन करना पड़ रहा है, वरना विरोध करने पर टीएमसी जैसा हाल होना तय है।
2: उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए वो अगर करते हैं समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को।
0: परसीमन का मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। दक्षिण भारत के कई दल आबादी के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण को लेकर अपनी आशंकाएं जता चुके हैं। ऐसे माहौल में शरद पवार गुट का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभाव रखने वाली इस पार्टी का ये रुख संसद के भीतर होने वाली बहस को नई दिशा दे सकता है। आज तक ब्यूरो।
3: मुंबई के चेंबूर इलाके में पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत के मामले में बीएमसी ने जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। हादसे के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी है। साथ ही साथ साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है। सवाल अब यह है कि क्या मुंबई वालों की जान की कीमत सिर्फ 7 लाख रुपए हैं।

0: अब की बार मुंबई में मॉनसून हादसों की बाढ़ लेकर आया। बारिश से हुए अलग अलग हादसों में 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में एक शख्स की खुले मेनहोल में गिरने से मौत हो चुकी है। बारिश से हुए हादसों की चर्चा विधानसभा तक में हुई। स्पीकर राहुल नार्वेकर से लेकर बीजेपी विधायक अमित साटम तक ने लानत मलानत और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही, लेकिन नतीजा क्या निकला? सबसे दर्दनाक मौत चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से हुई थी। इस हादसे में 11 साल के छात्र विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी, जबकि कई बच्चे घायल हुए थे।
1: मुंबई के चेंबूर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर दोपहर से ही बारिश हो रही थी और स्कूल से भरी हुई बस बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी, तभी यहां पर एक पेड़ था जो उस बस पर गिर गया। इस हादसे में 10 बच्चे घायल हुए हैं, तो वहीं 4 बच्चों को इलाज के लिए जैन हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, तो वहीं एक 11 वर्षीय बच्चे की इसमें मृत्यु हो गई है। काफी दर्दनाक हादसा था, बारिश हो रही थी, कई जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई थी। ये चेंबूर भी उन्हीं इलाकों में से एक था जहां पर पेड़ गिरा था, यही वो पेड़ था जो गिरा। फिलहाल बस को यहां से हटा दिया गया है, लेकिन अब इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। बहुत ही विशाल ये पेड़ था जिसे काट के एक तरफ किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं अभी भी इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। प्रशासन का राहत कार्य जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका था, लेकिन इस घटना के लिए जो दोषी है उन पर भी कार्रवाई की मांग जो पूर्व एमपी हैं यहाँ के राहुल चौहान उनके द्वारा की गई है।
0: लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि बीएमसी की जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई। इस दुखद घटना की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी। साथ ही साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने भी नाराजगी जताते हुए एक न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन पोस्ट करते हुए लिखा, विहान की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? बीएमसी का कहना है कि कोई नहीं। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने भी चेंबूर हादसे की जांच रिपोर्ट पर हैरानी जताते हुए कहा कि खानापूर्ति वाली कार्रवाई मंजूर नहीं है।
2: उसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा डे वन से एक ही स्टेटमेंट था, ये जो रोड बने हैं ये मुंबई कर के लिए बने। मुंबई कर बहुत खुश है क्योंकि आज की तारीख में बारिश में पॉटहोल्स नहीं दिख रहे जहाँ पे रोड बने हैं, साइड ड्रेन भी बने हैं, लेकिन ये काम ये किसका था? मुंबई महानगर पालिका और उसके यहाँ पे जो निश्चित किए गए साइट इंजीनियर का काम था और वहाँ पे गार्डन डिपार्टमेंट का काम था, तो ये संयुक्त उन्होंने मिलके वो काम करना चाहिए था। वहाँ पे जो विजिट मैंने करने के बाद भी मैंने कहा था कि ये जो पूरे पेड़ है ये वीक हो रहे हैं, तो वहाँ के जो साइट इंजीनियर है उसकी जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, गार्डन का अधिकारी है उसकी ना जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, बल्कि ना 7 लाख रुपए दे के बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा।
0: राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य भर में सड़क किनारे लगे सभी पेड़ों का ऑडिट किया जाना चाहिए। बीएमसी की रिपोर्ट पर मेयर की आलोचना का समर्थन करते हुए विपक्ष के नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा कि सिर्फ असहमति जताना काफी नहीं है। पेडनेकर ने कहा कि मेयर को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। वहीं बीएमसी में शिवसेना के ग्रुप लीडर अमेक होले ने कहा कि चेंबूर हादसे की रिपोर्ट अभी पेश नहीं की गई है, लेकिन पता नहीं कि जानकारी बाहर कैसे आई। उन्होंने भी पेड़ गिरने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
3: जो जो ऑफिसर्स के नीचे से ये पूरा कंप्लेन जो झाड़ के बारे में गया है उनकी इंक्वायरी होके उसपे ऊपर जो कुछ निर्णय आ सकता है वो महानगर पालिका ने देना चाहिए।
0: वही विरार में पानी भरे गड्ढे मौत का जाल बनते जा रहे हैं। ऐसे गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। विरार में बारिश भले थम गई, लेकिन बारिश के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। विरार पश्चिम में जकात नाका के पास सड़क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ प्रवीण नालावड़े, पालघर आज तक।
4: पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त बगावत की आग लगी हुई है और इस आग की तपिश इस्लामाबाद और लाहौर तक महसूस की जा रही है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से लोग इस वक्त मुजफ्फराबाद कूच के लिए निकल रहे हैं। क्या दिन और क्या रात, लोगों का ये मार्च लगातार जारी है और इन प्रदर्शनकारियों पर मुनीर की फौज का जोर जबरदस्ती भी लगातार जारी है। निहत्ते प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है, जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है।
5: क्या पीओके इस बार पाकिस्तान के कब्जे से निकल जाए? पीओके में बुलंद हुई आजादी की आवाज, अब क्या करेंगे मुनीर और शहबाज? की पूरी आवाम सड़कों पर आ गई, सबसे बड़ी बगावत हो गई, आटे बिजली और हक की लड़ाई पाकिस्तान को तोड़ने पर आई।
6: मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम दहशतगर्द होते तो ये लाखों के मजमे में लोग और लड़कियां, ये खवातीन अपने गोद वाले बच्चों को इधर लेके आती, ये कोई दहशतगर्द है, आके प्लीज चेक कर दिया जाए।
5: क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या औरत और क्या मर्द, पूरा का पूरा पीओके सड़कों पर उतरा हुआ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलाकोट से उठती ये आवाजें लाहौर और इस्लामाबाद को कपा रही है। पीओके की यह बगावत बता रही है कि अब बंदूक की जोर पर चलने वाली मुनीर की फौज के खिलाफ लोग खड़े हो गए। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन ने आसिफ मुनीर की चूले हिला दी, वो पीओके के लोगों पर फायरिंग करवा रहा है। पाकिस्तान की फौज और रेंजर निर्दोषों की जान ले रहे हैं, लेकिन लोगों के इस बगावत में कोई कमी नहीं आई। पिछले दो हफ्तों से पीओके में हुए इन प्रदर्शनों में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई। मुजफ्फराबाद, रावलापुर और मीरपुर समेत बहुत से इलाकों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार किया है। इन्हीं की नदियों के पानी से बिजली बनाकर लाहौर और पंजाब में बिजली दी जाती है। पीओके वालों को राशन के लिए भी तरसाया जाता है। इन्हीं मुद्दों के खिलाफ पिछले 4 साल से पीओके सुलगा हुआ है, लेकिन मौजूदा विवाद चुनाव से जुड़ा हुआ है। 27 जुलाई को पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान होना है। पीओके की असेंबली में 12 सीटें बाहर से आए हुए लोगों के नाम पर आरक्षित है। आरोप ये है कि पाकिस्तान की सरकार इन 12 सीटों पर अपने लोगों को बिठा देती है और इन 12 सीटों के द्वारा ही पीओके में पावर कंट्रोल होता है। इसीलिए अब ये डिमांड है कि ये 12 सीटें खत्म करके इन पर पीओके के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। प्रदर्शन की कमान संभाली है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी JAC ने, और इस कमेटी में शामिल लोग पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर रहे हैं। पूरे 78 साल से इस्लामाबाद जिस झूठ की काली कमाई को खा रहा था, जिस पीओके को वो दुनिया के सामने आजाद कश्मीर का पाखंडी लेबल लगाकर बेच रहा था, आज उस 78 साल पुराने प्रोपेगेंडा के परखच्चे उड़ चुके हैं।
7: मौजूद है और उनकी आजादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका है, इस पर कब्जा है, इस पर सभी कब्जा है, ये एक मुतनाजा इलाका है। जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुताबिक जो बात करने का अख्तियार है वो किसी के पास नहीं है, वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है, और इस पे हम अपना हाथ महफूज रखते हैं। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादे इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएं बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी, और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म।
5: रावलाकोट के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में 80,000 से ज्यादा लोगों का सैलाब और मंच पर खड़े ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान। पीओके के लोग कह रहे हैं कि पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ये सीधी सीधी चुनौती मुनीर को है। मुनीर की भारी भरकम फौज और उनकी गोलियां भी बगावत की आग को ठंडी नहीं कर पा रही। जब किसी अवाम के सब्र का बांध टूटता है तो बड़े बड़े तानाशाहों के तख्तो ताज इतिहास के कूड़ेदान में बह जाते हैं।
7: और हुक्मरानों से हम कहते हैं, कि मैं तो लाल से काम नहीं चलेगा। एक आता है कहता है फलाह नहीं मान रहा, दूसरा आता है कहता है फलाह नहीं मान रहा, हमने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ। रियासत के शहरी है, रियासत आवाम से है और रियासत आवाम से है और आवाम ही रियासत है। सुप्रीमियर रियासत आवाम है, आवाम का हक है और आवाम की बात मानी जाएगी और अपनी होगी।
5: इस बार के मार्च की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें स्थानीय महिलाएं और स्कूली बच्चों ने रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लिया है। सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियोस में महिलाएं और बच्चों के हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों, भारी टैक्स और आटे बिजली की महंगाई के खिलाफ नारे लगाते हुए मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ ही पीओके में आजादी की मांग को लेकर चल रही बगावत में अब वहां का बच्चा बच्चा शामिल है।
8: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मारूख और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाएं। एक्शन कमेटी ने ऐसा क्या गलत किया? वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज उठाए और वो क्या कह रहे हैं, खबरों में कह रहे हैं और धरने यहाँ तक रेजर्स भी कह रहे हैं कि अगर जो लड़के जो बच्चे एक्शन कमेटी में आए हुए अगर वो पीछे ना गए उनके पेफॉर्म्स नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शादी कार्ड नहीं मानेंगे। ये पेफॉर्म है हमारे, अगर हमारे पेफॉर्म नहीं माने जाएंगे चाहे आप लोग के पेफॉर्म अपनी मर्जी से जिया, मैं आपको आपके पेफॉर्म्स की भी जरूरत नहीं है। और मेरी आप सब पाकिस्तानी आवाम से गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े हो, हमें हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। क्यों आप लोग पीछे खड़े, हमारे साथ अल्लाह खड़े है, प्लीज हमारा साथ दें।
5: पीओके में भड़की आजादी की इस आग पर अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। भारत ने दो टूक कह दिया कि पीओके में जारी ये महाविद्रोह पाकिस्तान के दशकों पुराने शोषण, बुनियादी अधिकारों के हनन और प्रशासनिक जुल्म का नतीजा है।
9: देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीज़ों को रोका गया है, इंटरनेट ब्लैकआउट को लागू किया गया है और निहत्थे नागरिकों पर के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घोर दुर्व्यवहारों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराएगी।
5: उबाल बता रहा है कि पीओके की फॉल्ट लाइन एक्टिव हो चुकी है। पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर के नाम पर जो गुब्बारा फुलाया था उसकी पूरी दुनिया के सामने हवा निकल चुकी है। प्रणव उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
4: सवाल अभी है कि क्या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होने के लिए छटपटा रहा है? क्या पाकिस्तान ने इतने दशकों तक जिस झूठ को पाला पोसा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठा प्रचार किया, क्या इस झूठ से पर्दा हट गया है? क्योंकि अब तो ऐसा ही लगता है कि बगावत की आग इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाली।
5: बुधवार को ऐतिहासिक मुजफ्फराबाद मार्च हो रहा है। एक दिन पहले इसी मार्च के लिए रावलाकोट में पीओके की आवाम इकट्ठा हुई। मुजफ्फराबाद के लिए प्रदर्शनकारियों का एक्शन प्लान तैयार था, शांतिपूर्वक आगे बढ़ने का एजेंडा था, लेकिन हैवानियत की हदें पार करने वाले पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस का कहर प्रदर्शनकारियों पर टूटा। पहले तो उन्होंने भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शन में शामिल स्कूली बच्चे और महिलाएं बेतहाशा परेशान रहे। प्रदर्शनकारी जब अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने इन बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां दाग दी। रावलाकोट बस अड्डा, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी थी, वहां पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग हुई। उधर सुधनौती में भी फायरिंग की घटना हुई। 14 जुलाई को हुई फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई। इस दौरान एक पाकिस्तानी रेंजर की भी मौत हो गई, 5 अन्य सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए हैं। अब उस गोलीबारी को लेकर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों का दावा है कि यह हमला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, यानी अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अपने ऊपर खुद ही हमला करवाया और अपने जवान को मार डाला ताकि प्रदर्शनकारियों पर किए एक्शन को सही ठहराया जा सके। लेकिन एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की ऐसी किसी भी साजिश का सच पूरी दुनिया जान चुकी है और अब पूरा पीओके सड़कों पर उतरा है।
10: रावलाकोट इलाके में पाकिस्तान के रेंजर्स की फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई थी। अब इसी आंदोलन में अमान खान का एक भाषण जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पीओजेके न तो विवादित है, न ही आजाद कश्मीर है, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है।
7: ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है।
5: आंदोलनकारी पाकिस्तान को सच का आईना दिखा रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विवादित इलाका नहीं है, बल्कि उस पर पाकिस्तान का कब्जा है।
7: और उन क्रियादादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका है, इस पर कब्जा है, इस पर सभी कब्जा है, ये एक मुतनाजा इलाका है। जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास ये राइट है।
5: दरअसल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की 38 सूत्रियां मांगे हैं। इनमें 12 रिफ्यूजी सीटों को खत्म करना, बिजली टैरिफ में भारी कमी किया जाना शामिल है। एक मांग यह है कि स्थानीय संसाधनों से होने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा पीओके में ही रहना चाहिए। बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए आटे, चीनी और अन्य जरूरी वस्तुओं पर भारी सब्सिडी की मांग भी शामिल है। साथ ही बेहतर सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा व्यवस्था की आवाज भी उठ रही है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग एक्शन कमेटी कर रही है। वाजिब मांगों पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलियां बरसाई, जुल्म की हदें पार कर।
6: ये लाखों के मजमे में लोग अंतर किया, ये खवातीन अपने गोद वाले बच्चे को इधर लेके आते, ये कोई दहशत कर दे आके प्लीज चक्कर दिए जाए। पाकिस्तानी मीडिया तो बिल्कुल हमारा नाम ही नहीं ले रही, वो झूठी की खबरें फैला रही है। और ये क्या
11: हो चुका है, आप अपने बुनियादी हुकूक की खातिर, अपनी नस्लों की बका की खातिर और अपनी सेना की खातिर सरापाए एहतजाजी। बैरूनी फोर्सेस मंगवा रहे हैं, कत्ले आम कर रहे हैं, बेशुमार नौजवानों को शहीद कर रहे हैं। क्या वो 2 साल की बच्ची भी दहशत गर्द थी? नहीं, ये फोर्सेस के एनसीपीसी और ये रेंजर्स दहशत गर्द थे, जिन्हें हमें मारने के लिए, हमारी आवाज को कुचलने के लिए बुलाया गया है।
7: Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up
5: ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीओके के मसले पर पहली बार बेनकाब हुआ है, लेकिन अब वहां लगातार तेज होते पाकिस्तान विरोध ने उसकी तमाम साजिशों को

0: कैबिनेट और संगठन में हेरफेर में बदलाव की खबरों के बीच प्रधानमंत्री आवास पर हुई मीटिंग, करीब दो घंटे तक चले मंथन में अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष रहे मौजूद। पंचायत आज तक के मंच पर दावे अपने अपने, सीएम योगी बोले प्रचंड बहुमत से बनाएंगे जीत की हैट्रिक, विपक्ष का दावा जनता को बीजेपी पर नहीं है भरोसा। मदन मित्रा के भी बागी होने के बाद बीजेपी पर भड़की ममता, कहा इनके इशारों पर हमारे नेताओं पर दबाव लेकिन विचारधारा से हमारा कोई समझौता नहीं। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च, बीटा वर्जन में रेल टिकट बुकिंग होगी सुपरफास्ट, नई डिजाइन और फीचर्स का अनुभव ले सकेंगे लोग। जेके में पाकिस्तान को खुला चैलेंज, आंदोलनकारी नेता मान खान शहबाज मुनीर को ललकारते हुए नजर आए, कहा ये कब्जे वाला इलाका, रावलकोट में उमड़ी भीड़। आज तक पंचायत में जब सियासी दिग्गजों का मेला लगा तो एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे की गूंज सुनाई दी, जिसने साफ कर दिया कि 2027 के चुनावों में यह सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है।
1: आज तक पंचायत का मंच सजा तो एक बार फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की गूंज सुनाई दी।
2: जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास किए, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में, उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है, वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं।
1: विपक्ष ने साफ किया कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर ही सियासी मैदान पर उतरने वाले हैं।
3: चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा, हम मुद्दा बनावे या ना बनावे, जो साधारण जनमत है, जो साधारण व्यक्ति है, वो रोज पूछता है बाबू अयोध्या में मंदिर से कैसे चोरी हो गया, ये लोग क्यों चुरा ले गए मामला, वो हमको नहीं चोर बताते हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं बताते हैं, वो उन्हीं को बताते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का जनाधार जनता में बढ़ा और इनका जनाधार इस चोरी से कम हुआ।
4: चढ़ावा चोरी पे क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, चंदा चोरी पर क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, इनके लोग शामिल हैं उसमें, भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम के नाम पर ही ये जाएंगे, क्योंकि जो लोग आज उसमें हैं, छोटे छोटे लोगों को तो जेल भेज दिया आपने, छोटे लोगों को भेज दिया, टिल्लू यादव कौन कौन और किसको किसको भेज दिया आपने, मिश्रा जी को, अरे भैया चंपत राय बंसल कब जेल जाएंगे, योगी जी अनिल मिश्रा कब जाएंगे, निपेंद्र मिश्रा के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, गोविंद गिरी पर कब कार्रवाई होगी, गोपाल राव पर कब कार्रवाई होगी, ये प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। और निश्चित तौर से आज ये जो आज गांव गांव में चर्चा है कि चंदा चोरी तो अशोक सिंघल के समय हुआ, अब चढ़ावा चोरी हो रहा है, जो माताएं बने अपने आंचल में पैसा बांध कर जाती है उस आंचल का पैसा इन्होंने छीन लिया, इसका जवाब चुनाव में कैसे दोगे।
1: उधर योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर राम मंदिर पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं।
5: ये पाप हुआ है, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि एक संदेशा जाए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कि इस देश में 2026 में ये हुआ था अयोध्या मंदिर में, तब ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिला था, तब

0: लोग कांपे ताकि कोई आगे ये गंदा पाप, ये घिनौना, ये घृणित अपराध ना कर पाए।
1: हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए, सारे चोरों को जेल भेज दिया, सारे पॉकेट मारों को जेल भेज दिया, ते वहां कहां पैदा हो गए, अयोध्या में कैसे पैदा हो गए, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी।
2: बहरहाल यूपी में 2027 की लड़ाई में राम मंदिर बड़ा मुद्दा होने वाला है। जिस राम मंदिर ने बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, वहीं चढ़ावा चोरी के कलंक को विपक्ष किसी भी कीमत पे छोड़ता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
3: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एक्शन भी फुल है। एक ओर जहां ट्रस्ट के सीईओ के लिए आवेदनों की बाढ़ आई हुई है, वहीं फाइनल एसआईटी रिपोर्ट बहुत ही जल्द आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक फाइनल रिपोर्ट में टिन्नू यादव के लिए और भी खुलासे हैं।

0: राम मंदिर चढ़ावे की जिन्होंने चोरी की है अब उनका हिसाब जल्दी ही होने वाला है। एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट लगभग तैयार है और सूत्रों के मुताबिक इसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो मंदिर प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जांच में टिन्नू यादव की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आई है। टिन्नू यादव की मंदिर के प्रबंधन और संवेदनशील कामकाज में गहरी पैठ थी। दानपात्र यानी हुंडियों की चाबियां भी उसके पास रहती थी। चोरी की सबसे बड़ी वजह भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताएं रही। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कमजोर किए जाने से चोरी की गुंजाइश बनी। चंपत राय को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई है। चंपत राय को लापरवाही और निगरानी में नाकामी के लिए जिम्मेदार माना गया है। हालांकि आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका पर एसआईटी ने कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है क्योंकि पुलिस की जांच अभी जारी है। वहीं एसओपी में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया की अनियमितताओं के लिए अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उधर राम मंदिर के सीईओ पद के लिए आवेदन करने वालों की होड़ लगी है। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए हजारों आवेदन आ चुके हैं। आवेदकों में सबसे बड़ी संख्या सेवानिवृत्त नौकरशाहों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बताई जा रही है। बहरहाल अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
1: संसद के आगामी सत्र से पहले परिसीमन को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। इसी बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनकी पार्टी परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी।

0: महाराष्ट्र की सियासत में इंडिया गठबंधन को फिर से करारा झटका लगा है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के भीतर एकजुटता नहीं दिख रही है, क्योंकि शरद पवार वाली एनसीपी ने खुला ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का शरद पवार की एनसीपी समर्थन करेगी।
1: वी विल कंसीडर प्रोवाइडेड कंसीडर, इंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसीडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल How will it be implemented?
0: इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि एनसीपी शरद चंद्र पवार महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों के पक्ष में खड़ी है। अगर शरद पवार की पार्टी की ताकत देखी जाए तो लोकसभा में 8 सांसद हैं, राज्यसभा में 3 सांसद हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधायक हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद में 3 MLC हैं। सुप्रिया सुले के ऐलान के बाद परिसीमन जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष के भीतर एक अलग राजनीतिक संदेश जाता दिखाई दे रहा है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें बिल का समर्थन करना पड़ रहा है, वरना विरोध करने पर TMC जैसा हाल होना तय है।
2: उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए वो अगर करते हैं समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को।
0: परसीमन का मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। दक्षिण भारत के कई दल आबादी के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण को लेकर अपनी आशंकाएं जता चुके हैं। ऐसे माहौल में शरद पवार गुट का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभाव रखने वाली इस पार्टी का ये रुख संसद के भीतर होने वाली बहस को नई दिशा दे सकता है। आज तक ब्यूरो।
3: पंजाब कांग्रेस में भी सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जिसने आलाकमान की टेंशन को बढ़ा दिया है, चन्नी गुट की बगावत के बीच केंद्रीय नेतृत्व राजा वडिंग को हटाने के मूड में नहीं दिख रहा।

0: चुनाव से पहले एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में बगावत की चिंगारी सुलगी तो आग बुझाने की जिम्मेदारी दिल्ली में आलाकमान तक पहुंच गई। पंजाब की रिपोर्ट लेकर प्रभारी भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने अपनी रिपोर्ट संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है और उसमें भी वर्डिंग को ही जिम्मेदारी जारी रखने की सिफारिश की गई है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल राजा अमरिंदर सिंह वर्डिंग के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक संगठन के भीतर भी वर्डिंग की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। 29 जिला अध्यक्षों में से 25 उनके समर्थन में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 सांसद और 8 से 9 विधायक भी उनके साथ खड़े हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में करीब 55 हलका प्रमुख बताए जा रहे हैं, जबकि 12 हलका प्रमुख ऐसे हैं जो दोनों नेताओं के साथ तालमेल बनाए हुए हैं।
1: क्या नेतृत्व परिवर्तन की
2: कोई भाई ये नीचे रख ले यार।
3: मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं।
1: अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश?
3: मैं पहले भी बोल चुका हूं आपसे,
4: दोबारा
3: गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है।
0: अब सवाल यह है कि पिछली रिपोर्ट के बाद भी राजा वडिंग को न हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद चन्नी गुट ने बैठक की थी। ऐसे में अगर राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रहने का फैसला जारी रहता है तो फिर चन्नी अब आगे क्या फैसला करेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस को पंजाब से सत्ता खोनी पड़ी थी। वहीं बीजेपी भी चन्नी को ऑफर दे चुकी है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
5: दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार स्कूल क्रांति के दावे करती है, लेकिन पता चला कि बिजली का बिल नहीं भरने से लुधियाना के सरकारी स्कूल की ही बिजली काट दी गई। बच्चे अंधेरे में पढ़ते रहे। इस स्कूल में एक ही हॉल में 5वीं तक की क्लास चलती है।
6: मैं क्लास जावड़िया, मैं कभी पूछने लग गया मैं की बने। कोई कहना जी डॉक्टर बनूंगा, कोई कहना इंजीनियर, एक कहना मुख्यमंत्री बनूंगा जी मैं। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨੇਤਾ ਚੁਣੂਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖ ਬੱਚੇ ਦਾ।
7: काश पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थोड़ा सा वक्त निकालकर लुधियाना के सरकारी स्कूल तक का दौरा कर लेते तो फिर बच्चों की कॉन्फिडेंस को किस तरह से हिला दिया जा रहा है उन्हें पता चल जाता मुख्यमंत्री और पंजाब की सरकार को कि स्कूल बिना बिजली के कैसे चलते हैं, जहां पंखे हैं लेकिन चल नहीं पाते। वजह समराला चौक के सरकारी प्राइमरी स्कूल की बिजली का कट जाना है, क्योंकि बिजली का बिल जमा नहीं था। सोचिए स्कूल की हालत है, बाकी का क्या होगा। जहां आज तक की टीम पहुंची, पता चला अब 2 दिन बाद जाकर स्कूल की बिजली वापस चालू कर दी गई। लेकिन लुधियाना के सरकारी प्राइमरी स्कूल का हाल देखिए, सॉरी हॉल देखिए, जहां एक हॉल के भीतर ये एक क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, ये चौथी, ये पांचवी, और इसी हॉल के भीतर पता चला नर्सरी से 5वीं तक की कुल 8 क्लास एक साथ चलाई जाती हैं, जहां रसोई घर भी है और बाथरूम। जहां मुस्कुराते हुए भीतर मुख्यमंत्री भगवंत मान का पोस्टर भी लगा है। लेकिन काश मुख्यमंत्री आकर यहां का हाल और हॉल दोनों देख पाते।
8: लाखों करोड़ों रुपए का फंड जो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च किया जा रहा है। इस एजुकेशन सिस्टम का असली चेहरा क्या है, आज हम आपको दिखाते हैं। लुधियाना के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में हम मौजूद हैं, जहां पे एक ही हॉल के अंदर नर्सरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों की सभी क्लासें एक ही हॉल के अंदर लगाई जा रही हैं।
9: इन्हां नूं असीं सुखाम माहौल नहीं दे सकदे जिहड़ा मिलना चाहिए वा। मेन दिक्कत सानूं बिल्डिंग दी हैगी आ, ते सरकार कोलों असीं इही मंग करांगे कि सानूं जल्दी तो जल्दी एक बिल्डिंग प्रोवाइड होवे।
10: आपकी तरफ से ये ध्यान में आया मेरे, तो इस पर हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा ये भी जानने की जरूरत है।
7: सवाल है कि फाइलों में स्कूल शिक्षा में नंबर 1 खुद को कहने वाले पंजाब की हकीकत पता नहीं दिखती नहीं है या फिर देखी ही नहीं जाती है।
5: मुंबई के चेम्बूर इलाके में पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत के मामले में बीएमसी ने जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। हादसे के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी है। साथ ही साथ साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है। सवाल अब यह है कि क्या मुंबई वालों की जान की कीमत सिर्फ 7 लाख रुपए हैं?

0: अब की बार मुंबई में मॉनसून हादसों की बाढ़ लेकर आया। बारिश से हुए अलग अलग हादसों में 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में एक शख्स की खुले मेनहोल में गिरने से मौत हो चुकी है। बारिश से हुए हादसों की चर्चा विधानसभा तक में हुई। स्पीकर राहुल नार्वेकर से लेकर बीजेपी विधायक अमित साटम तक ने लानत मलानत और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही, लेकिन नतीजा क्या निकला? सबसे दर्दनाक मौत चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से हुई थी। इस हादसे में 11 साल के छात्र विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी, जबकि कई बच्चे घायल हुए थे।
1: मुंबई के चेंबूर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर दोपहर से ही बारिश हो रही थी और स्कूल से भरी हुई बस बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी, तभी यहां पर एक पेड़ था जो उस बस पर गिर गया। इस हादसे में 10 बच्चे घायल हुए हैं, तो वहीं 4 बच्चों को इलाज के लिए जैन हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, तो वहीं एक 11 वर्षीय बच्चे की इसमें मृत्यु हो गई है। काफी दर्दनाक हादसा था, बारिश हो रही थी, कई जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई थी। ये चेंबूर भी उन्हीं इलाकों में से एक था जहां पर पेड़ गिरा था, यही वो पेड़ था जो गिरा। फिलहाल बस को यहां से हटा दिया गया है, लेकिन अब इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। बहुत ही विशाल ये पेड़ था जिसे काट के एक तरफ किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं अभी भी इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। प्रशासन का राहत कार्य जो है वो यहां पर पहुंच चुका था, लेकिन इस घटना के लिए जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग जो पूर्व एमपी हैं यहाँ के राहुल चौहान उनके द्वारा की गई है।
0: लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि बीएमसी की जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई। इस दुखद घटना की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी। साथ ही साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने भी नाराजगी जताते हुए एक न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन पोस्ट करते हुए लिखा, विहान की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? बीएमसी का कहना है कि कोई नहीं। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने भी चेंबूर हादसे की जांच रिपोर्ट पर हैरानी जताते हुए कहा कि खानापूर्ति वाली कार्रवाई मंजूर नहीं है।
2: उसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा डे वन से एक ही स्टेटमेंट था, ये जो रोड बने हैं ये मुंबई कर के लिए बने। मुंबई कर बहुत खुश है क्योंकि आज की तारीख में बारिश में पॉटहोल्स नहीं दिख रहे जहाँ पे रोड बने हैं, साइड ड्रेन भी बने हैं, लेकिन ये काम ये किसका था? मुंबई महानगर पालिका और उसके यहाँ पे जो निश्चित किए गए साइट इंजीनियर का काम था और वहाँ पे गार्डन डिपार्टमेंट का काम था, तो ये संयुक्त उन्होंने मिलके वो काम करना चाहिए था। वहाँ पे जो विजिट मैंने करने के बाद भी मैंने कहा था कि ये जो पूरे पेड़ है ये वीक हो रहे हैं, तो वहाँ के जो साइट इंजीनियर है उसकी जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, गार्डन का अधिकारी है उसकी ना जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, बल्कि ना 7 लाख रुपए दे के बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा।
0: राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य भर में सड़क किनारे लगे सभी पेड़ों का ऑडिट किया जाना चाहिए। बीएमसी की रिपोर्ट पर मेयर की आलोचना का समर्थन करते हुए विपक्ष के नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा कि सिर्फ असहमति जताना काफी नहीं है। पेडनेकर ने कहा कि मेयर को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। वहीं बीएमसी में शिवसेना के ग्रुप लीडर अमेय घोले ने कहा कि चेंबूर हादसे की रिपोर्ट अभी पेश नहीं की गई है, लेकिन पता नहीं कि जानकारी बाहर कैसे आई। उन्होंने भी पेड़ गिरने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
3: जो जो ऑफिसर्स के नीचे से ये पूरा कम्प्लेन जो झाड़ के बारे में गया है उनकी इंक्वायरी होके उसपे ऊपर जो कुछ निर्णय आ सकता है वो महानगर पालिका ने देना चाहिए।
0: वहीं विरार में पानी भरे गड्ढे मौत का जाल बनते जा रहे हैं। ऐसे गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। विरार में बारिश भले थम गई, लेकिन बारिश के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। विरार पश्चिम में जकात नाका के पास सड़क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ प्रवीण नालावड़े, पालघर आज तक।
4: पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त बगावत की आग लगी हुई है और इस आग की तपिश इस्लामाबाद और लाहौर तक महसूस की जा रही है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से लोग इस वक्त मुजफ्फराबाद कूच के लिए निकल रहे हैं। क्या दिन और क्या रात, लोगों का ये मार्च लगातार जारी है और इन प्रदर्शनकारियों पर मुनीर की फौज का जोर जबरदस्ती भी लगातार जारी है। निहत्ते प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है, जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है।
5: Yeah. क्या पीओके इस बार पाकिस्तान के कब्जे से निकल जाए? पीओके में बुलंद हुई आजादी की आवाज, अब क्या करेंगे मुनीर और शहबाज?
6: ये जो दहशत करती है
7: इसके पीछे बंदी है,
6: ये जो दहशत करती है
7: इसके पीछे बंदी है,
6: ये जो गुंडा करती है
7: इसके पीछे बंदी है,
6: ये जो अपना तफरी है
7: इसके पीछे बंदी है,
6: ये जो शनिंग बल्ली है
7: इसके पीछे बंदी है।
5: पीओके की पूरी आवाम सड़कों पर आ गई, सबसे बड़ी बगावत हो गई। आटे बिजली और हक की लड़ाई पाकिस्तान को तोड़ने पर है।
8: मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम दहशतगर्द होते तो ये लाखों के मजमे में लोग और लड़कियां, ये खवातीन अपने गोद वाले बच्चे को इधर लेके आती, ये कोई दहशतगर्द है आके प्लीज चेक कर दिया जाए।
5: क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या औरत और क्या मर्द, पूरा का पूरा पीओके सड़कों पर उतरा हुआ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर रावलाकोट से उठती ये आवाज लाहौर और इस्लामाबाद को कपा रही। पीओके की यह बगावत बता रही कि अब बंदूक की जोर पर चलने वाली मुनीर की फौज के खिलाफ लोग खड़े हो गए। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन ने आसिफ मुनीर की चूले हिला दी, वो पीओके के लोगों पर फायरिंग करवा रहा है। पाकिस्तान की फौज और रेंजर निर्दोषों की जान ले रहे हैं, लेकिन लोगों के इस बगावत में कोई कमी नहीं आई। पिछले दो हफ्तों से पीओके में हुए इन प्रदर्शनों में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और मीरपुर समेत बहुत से इलाकों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार किया है। इन्हीं की नदियों के पानी से बिजली बनाकर लाहौर और पंजाब में बिजली दी जाती है। पीओके वालों को राशन के लिए भी तरसाया जाता है। इन्हीं मुद्दों के खिलाफ पिछले 4 साल से पीओके सुलगा हुआ है, लेकिन मौजूदा विवाद चुनाव से जुड़ा हुआ है। 27 जुलाई को पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान होना है। पीओके की असेंबली में 12 सीटें बाहर से आए हुए लोगों के नाम पर आरक्षित हैं। आरोप ये है कि पाकिस्तान की सरकार इन 12 सीटों पर अपने लोगों को बिठा देती है और इन 12 सीटों के द्वारा ही पीओके में पावर कंट्रोल होता है। इसीलिए अब ये डिमांड है कि ये 12 सीटें खत्म करके इन पर पीओके के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। प्रदर्शन की कमान संभाली है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी JAC ने, और इस कमेटी में शामिल लोग पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर रहे हैं। पूरे 78 साल से इस्लामाबाद जिस झूठ की काली कमाई को खा रहा था, जिस पीओके को वो दुनिया के सामने आजाद कश्मीर का पाखंडी लेबल लगाकर बेच रहा था, आज उस 78 साल पुराने प्रोपेगेंडा के परखच्चे उड़ चुके हैं।
9: मौजूद है और उनकी आजादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका है, इस पर कब्जा है, इस पर कब्जा है, ये एक मुतनाजा इलाका है, जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास ये राइट है जम्मू कश्मीर के मसले के मुताबिक जो बात करने का इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है, वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है, और इसके हम अपना हक महफूज रखते हैं। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएं बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी, और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब
5: रावलाकोट के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में 80,000 से ज्यादा लोगों का सैलाब और मंच पर खड़े हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान। पीओके के लोग कह रहे हैं कि पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ये सीधी सीधी चुनौती मुनीर को है। मुनीर की भारी भरकम फौज और उनकी गोलियां भी बगावत की आग को ठंडी नहीं कर पा रही। जब किसी अवाम के सब्र का बांध टूटता है तो बड़े बड़े तानाशाहों के तख्तो ताज इतिहास के कूड़ेदान में बह जाते हैं।
9: और हुक्मरानों से हम कहते हैं, हुक्मरानों से हम कहते हैं कि मैं तो लाल से काम नहीं चलेगा, मैं तो लाल से काम नहीं चलेगा। एक आता है कहता है फलां नहीं मान रहा, दूसरा आता है कहता है फलां नहीं मान रहा, हमने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ। रियासत के शहरी है, रियासत अवाम से है और रियासत अवाम से है और अवाम ही रियासत है। सुप्रीम रियासत अवाम है, अवाम ताकत है और अवाम की बात मानी जाएगी और अपनी होगी।
5: इस बार के मार्च की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें स्थानीय महिलाएं और स्कूली बच्चों ने रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लिया है। सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियोस में महिलाएं और बच्चों के हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों, भारी टैक्स और आटे बिजली की महंगाई के खिलाफ नारे लगाते हुए मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ ही पीओके में आजादी की मांग को लेकर चल रही बगावत में अब वहाँ का बच्चा बच्चा शामिल है।
10: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मारूख और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाएं। एक्टिविटी ने से क्या गलत किया? वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज उठा रहे और वो क्या कह रहे हैं, खबरों में कह रहे हैं और धरने याद अगर हेटर्स भी कह रहे हैं कि अगर जो लड़के हुए, जो बच्चे एक्टिविटी में आए हुए, अगर वो पीछे ना गए उनके पेफॉर्म्स नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शादी कार्ड नहीं मानेंगे। ये पेफॉर्म है हमारे, अगर हमारे बेफॉर्म नहीं माने जाएंगे, चाहे आप लोग के बेफॉर्म अपनी मर्जी से जिया, मैं आपके बेफॉर्म की भी जरूरत नहीं है। और मेरी आप सब पाकिस्तानी आवाम से गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े हो, हमें हक के लिए आवाज उठा रहे, क्यों आप लोग पीछे खड़े? हमारे साथ अल्लाह खड़ा है, प्लीज हमारा साथ दें।
5: पीओके में भड़की आजादी की इस आग पर अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। भारत ने दो टूक कह दिया कि पीओके में जारी ये महाविद्रोह पाकिस्तान के दशकों पुराने शोषण, बुनियादी अधिकारों के हनन और प्रशासनिक जुल्म का नतीजा है।
11: देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहाँ का प्रशासन, वहाँ का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीज़ों को रोका गया है, इंटरनेट ब्लैकआउट को लागू किया गया है और निहत्थे नागरिकों पर के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घोर दुर्व्यवहारों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराएगी।
5: उबाल बता रहा है कि पीओके की फॉल्ट लाइन एक्टिव हो चुकी है। पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर के नाम पर जो गुब्बारा फुलाया था, उसकी पूरी दुनिया के सामने हवा निकल चुकी है। प्रणव उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कैबिनेट और संगठन में हेरफेर में बदलाव की खबरों के बीच प्रधानमंत्री आवास पर हुई मीटिंग करीब दो घंटे तक चले मंथन में अमित शाह नितिन नवीन और बीएल संतोष रहे मौजूद। पंचायत आज तक के मंच पर दावे अपने अपने सीएम योगी बोले प्रचंड बहुमत से बनाएंगे जीत की हैट्रिक विपक्ष का दावा जनता को बीजेपी पर नहीं है भरोसा। मदन मित्रा के भी बागी होने के बाद बीजेपी पर भड़की ममता कहा इनके इशारों पर हमारे नेताओं पर दबाव लेकिन विचारधारा से हमारा कोई समझौता नहीं। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च बीटा वर्जन में रेल टिकट बुकिंग होगी सुपरफास्ट नई डिजाइन और फीचर्स का अनुभव ले सकेंगे लोग। और पीओजेके में पाकिस्तान को खुला चैलेंज आंदोलनकारी नेता मान खान शहबाज मुनीर को ललकारते हुए नजर आए कहा ये कब्जे वाला इलाका रावलकोट में उमड़ी भीड़। आज तक पंचायत में जब सियासी दिग्गजों का मेला लगा तो एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे की गूंज सुनाई दी जिसने साफ कर दिया कि 2027 के चुनावों में यह सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है।
1: आज तक पंचायत का मंच सजा तो एक बार फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की गूंज सुनाई दी।
2: जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास किए अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं।
1: विपक्ष ने साफ किया कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर ही सियासी मैदान पर उतरने वाले हैं।
3: चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा हम मुद्दा बनाओ या ना बनाओ जो साधारण जनमत है जो साधारण व्यक्ति है वो रोज पूछता है बाबू अयोध्या में मंदिर से कैसे चोरी हो गया ये लोग क्यों चुरा ले गए मामला वो हमको नहीं चोर बताते हैं समाजवादी पार्टी को नहीं बताते हैं वो उन्हीं को बताते हैं। इसने समाजवादी पार्टी का जनाधार जनता में बढ़ा और इनका जनाधार इस चोरी से कम हुआ है।
4: चढ़ावा चोरी पे क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी पर क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी इनके लोग शामिल हैं उसमें भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम के नाम पर ही ये जाएंगे क्योंकि जो लोग आज उसमें हैं छोटे छोटे लोगों को तो जेल भेज दिया आपने छोटे लोगों को भेज दिया टिल्लू यादव कौन कौन और किसको किसको भेज दिया आपने मिश्रा जी को अरे भैया चंपत राय बंसल कब जेल जाएंगे योगी जी अनिल मिश्रा कब जाएंगे निपेंद्र मिश्रा के खिलाफ कब कार्रवाई होगी जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे गोविंद गिरी पर कब कार्रवाई होगी गोपाल राव पर कब कार्रवाई होगी ये प्रदेश की जनता देख रही है देश की जनता देख रही है और निश्चित तौर से आज ये जो आज गांव-गांव में चर्चा है कि चंदा चोरी तो अशोक सिंगल के समय हुआ अब चढ़ावा चोरी हो रहा है जो माताएं बने अपने आंचल में पैसा बांध कर जाती है उस आंचल का पैसा इन लोगों ने छीन लिया इसका जवाब चुनाव में कैसे दोगे।
1: उधर योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर राम मंदिर पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं
5: ये पाप हुआ है उन लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए ताकि एक संदेशा जाए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कि इस देश में 2026 में ये हुआ था अयोध्या मंदिर में तब ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिला था तब उन लोग कांपे ताकि कोई आगे ये गंदा पाप ये घिनौना ये घृण तक अपराध ना कर पाए।
3: हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए सारे चोरों को जेल भेज दिया सारे पॉकेट मारों को जेल भेज दिया ते वहाँ कहाँ पैदा हो गए अयोध्या में कैसे पैदा हो गए ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी।
1: बहरहाल यूपी में 2027 की लड़ाई में राम मंदिर बड़ा मुद्दा होने वाला है। जिस राम मंदिर ने बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, वहीं चढ़ावा चोरी के कलंक को विपक्ष किसी भी कीमत पे छोड़ता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एक्शन भी फुल है। एक ओर जहां ट्रस्ट के सीईओ के लिए आवेदनों की बाढ़ आई हुई है, वहीं फाइनल एसआईटी रिपोर्ट बहुत ही जल्द आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक फाइनल रिपोर्ट में टिन्नू यादव के लिए और भी खुलासे हैं।

0: राम मंदिर चढ़ावे की जिन्होंने चोरी की है अब उनका हिसाब जल्दी ही होने वाला है। एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट लगभग तैयार है और सूत्रों के मुताबिक इसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो मंदिर प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जांच में टिन्नू यादव की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आई है। टिन्नू यादव की मंदिर के प्रबंधन और संवेदनशील कामकाज में गहरी पैठ थी। दानपात्र यानी हुंडियों की चाबियां भी उसके पास रहती थी। चोरी की सबसे बड़ी वजह भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताएं रही। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कमजोर किए जाने से चोरी की गुंजाइश बनी। चंपत राय को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई है। चंपत राय को लापरवाही और निगरानी में नाकामी के लिए जिम्मेदार माना गया है। हालांकि आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका पर एसआईटी ने कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है क्योंकि पुलिस की जांच अभी जारी है। वहीं एसओपी में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया की अनियमितताओं के लिए अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उधर राम मंदिर के सीईओ पद के लिए आवेदन करने वालों की होड़ लगी है। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए हजारों आवेदन आ चुके हैं। आवेदकों में सबसे बड़ी संख्या सेवानिवृत्त नौकरशाहों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बताई जा रही है। बहरहाल अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। संतोष शर्मा, अयोध्या, आज तक।
1: संसद के आगामी सत्र से पहले परिसीमन को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। इसी बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनकी पार्टी परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी।

0: महाराष्ट्र की सियासत में इंडिया गठबंधन को फिर से करारा झटका लगा है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के भीतर एकजुटता नहीं दिख रही है, क्योंकि शरद पवार वाली एनसीपी ने खुला ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का शरद पवार की एनसीपी समर्थन करेगी।
1: वी विल कंसिडर प्रोवाइडेड कंसिडर, इंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसिडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल How will it be implemented?
0: इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि एनसीपी शरद चंद्र पवार महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों के पक्ष में खड़ी है। अगर शरद पवार की पार्टी की ताकत देखी जाए तो लोकसभा में 8 सांसद हैं, राज्यसभा में 3 सांसद हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधायक हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद में 3 MLC हैं। सुप्रिया सुले के ऐलान के बाद परसीमन जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष के भीतर एक अलग राजनीतिक संदेश जाता दिखाई दे रहा है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें बिल का समर्थन करना पड़ रहा है, वरना विरोध करने पर TMC जैसा हाल होना तय है।
2: उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए वो अगर करते हैं समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को।
0: परसीमन का मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। दक्षिण भारत के कई दल आबादी के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण को लेकर अपनी आशंकाएं जता चुके हैं। ऐसे माहौल में शरद पवार गुट का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभाव रखने वाली इस पार्टी का ये रुख संसद के भीतर होने वाली बहस को नई दिशा दे सकता है। आज तक ब्यूरो।
3: पंजाब कांग्रेस में भी सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जिसने आलाकमान की टेंशन को बढ़ा दिया है, चन्नी गुट की बगावत के बीच केंद्रीय नेतृत्व राजा वडिंग को हटाने के मूड में नहीं दिख रहा।

0: चुनाव से पहले एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में बगावत की चिंगारी सुलगी तो आग बुझाने की जिम्मेदारी दिल्ली में आलाकमान तक पहुंच गई। पंजाब की रिपोर्ट लेकर प्रभारी भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने अपनी रिपोर्ट संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है और उसमें भी वर्डिंग को ही जिम्मेदारी जारी रखने की सिफारिश की गई है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल राजा अमरिंदर सिंह वर्डिंग के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक संगठन के भीतर भी वर्डिंग की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। 29 जिला अध्यक्षों में से 25 उनके समर्थन में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 सांसद और 8 से 9 विधायक भी उनके साथ खड़े हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में करीब 55 हलका प्रमुख बताए जा रहे हैं, जबकि 12 हलका प्रमुख ऐसे हैं जो दोनों नेताओं के साथ तालमेल बनाए हुए हैं।
1: क्या नेतृत्व परिवर्तन की
2: भाई ये नीचे रख ले यार।
3: मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं।
1: अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश?
3: मैं पहले भी बोल चुका हूं आपसे, गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है।
0: अब सवाल यह है कि पिछली रिपोर्ट के बाद भी राजा वडिंग को न हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद चन्नी गुट ने बैठक की थी। ऐसे में अगर राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रहने का फैसला जारी रहता है तो फिर चन्नी अब आगे क्या फैसला करेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस को पंजाब से सत्ता खोनी पड़ी थी। वहीं बीजेपी भी चन्नी को ऑफर दे चुकी है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
4: मुंबई के चेंबूर इलाके में पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत के मामले में बीएमसी ने जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। हादसे के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी है। साथ ही साथ साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है। सवाल अब यह है कि क्या मुंबई वालों की जान की कीमत सिर्फ 7 लाख रुपए हैं?

0: अब की बार मुंबई में मॉनसून हादसों की बाढ़ लेकर आया। बारिश से हुए अलग अलग हादसों में 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में एक शख्स की खुले मेनहोल में गिरने से मौत हो चुकी है। बारिश से हुए हादसों की चर्चा विधानसभा तक में हुई। स्पीकर राहुल नार्वेकर से लेकर बीजेपी विधायक अमित साटम तक ने लानत मलानत और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही, लेकिन नतीजा क्या निकला? सबसे दर्दनाक मौत चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से हुई थी। इस हादसे में 11 साल के छात्र भान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी, जबकि कई बच्चे घायल हुए थे।
1: मुंबई के चेंबूर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर दोपहर से ही बारिश हो रही थी और स्कूल से भरी हुई बस बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी, तभी यहां पर एक पेड़ था जो उस बस पर गिर गया। इस हादसे में 10 बच्चे घायल हुए हैं, तो वहीं 4 बच्चों को इलाज के लिए जैन हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, तो वहीं एक 11 वर्षीय बच्चे की इसमें मृत्यु हो गई है। काफी दर्दनाक हादसा था, बारिश हो रही थी, कई जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई थी। ये चेंबूर भी उन्हीं इलाकों में से एक था जहां पर पेड़ गिरा था, यही वो पेड़ था जो गिरा। फिलहाल बस को यहां से हटा दिया गया है, लेकिन अब इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। बहुत ही विशाल ये पेड़ था जिसे काट के एक तरफ किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं अभी भी इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। प्रशासन का राहत कार्य जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका था, लेकिन इस घटना के लिए जो दोषी है उन पर भी कार्रवाई की मांग जो पूर्व एमपी हैं यहाँ के राहुल चौहान उनके द्वारा की गई है।
0: लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि बीएमसी की जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई। इस दुखद घटना की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी। साथ ही साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने भी नाराजगी जताते हुए एक न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन पोस्ट करते हुए लिखा, विहान की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? बीएमसी का कहना है कि कोई नहीं। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने भी चेंबूर हादसे की जांच रिपोर्ट पर हैरानी जताते हुए कहा कि खाना पूर्ति वाली कार्रवाई मंजूर नहीं है।
2: उसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा डे वन से एक ही स्टेटमेंट था, ये जो रोड बने हैं ये मुंबई कर के लिए बने। मुंबई कर बहुत खुश है क्योंकि आज की तारीख में बारिश में पॉटहोल्स नहीं दिख रहे जहाँ पे रोड बने हैं, साइड ड्रेन भी बने हैं, लेकिन ये काम ये किसका था? मुंबई महानगर पालिका और उसके यहाँ पे जो निश्चित किए गए साइट इंजीनियर का काम था और वहाँ पे गार्डन डिपार्टमेंट का काम था, तो ये संयुक्त उन्होंने मिलके वो काम करना चाहिए था। वहाँ पे जो विजिट मैंने करने के बाद भी मैंने कहा था कि ये जो पूरे पेड़ है ये वीक हो रहे हैं, तो वहाँ के जो साइट इंजीनियर है उसकी जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, गार्डन का अधिकारी है उसकी ना जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, बल्कि ना 7 लाख रुपए दे के बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा।
0: राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य भर में सड़क किनारे लगे सभी पेड़ों का ऑडिट किया जाना चाहिए। बीएमसी की रिपोर्ट पर मेयर की आलोचना का समर्थन करते हुए विपक्ष के नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा कि सिर्फ असहमति जताना काफी नहीं है। पेडनेकर ने कहा कि मेयर को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। वहीं बीएमसी में शिवसेना के ग्रुप लीडर अमेक होले ने कहा कि चेंबूर हादसे की रिपोर्ट अभी पेश नहीं की गई है, लेकिन पता नहीं कि जानकारी बाहर कैसे आई। उन्होंने भी पेड़ गिरने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
3: जो जो ऑफिसर्स के नीचे से ये पूरा कंप्लेन जो झाड़ के बारे में गया है उनकी इंक्वायरी होके उसपे ऊपर जो कुछ निर्णय आ सकता है वो महानगर पालिका ने देना चाहिए।
0: वही विरार में पानी भरे गड्ढे मौत का जाल बनते जा रहे हैं। ऐसे गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। विरार में बारिश भले थम गई, लेकिन बारिश के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। विरार पश्चिम में जकात नाका के पास सड़क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ प्रवीण नालावड़े, पालघर आज तक।
4: पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त बगावत की आग लगी हुई है और इस आग की तपिश इस्लामाबाद और लाहौर तक महसूस की जा रही है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से लोग इस वक्त मुजफ्फराबाद कूच के लिए निकल रहे हैं। क्या दिन और क्या रात, लोगों का ये मार्च लगातार जारी है और इन प्रदर्शनकारियों पर मुनीर की फौज का जोर जबरदस्ती भी लगातार जारी है। निहत्ते प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है, जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है।
5: लकड़ी लेके वो फिर
6: क्या पीओके इस बार पाकिस्तान के कब्जे से निकल जाए? पीओके में बुलंद हुई आजादी की आवाज, अब क्या करेंगे मुनीर और शहबाज? की पूरी आवाम सड़कों पर आ गई, सबसे बड़ी बगावत हो गई, आटे बिजली और हक की लड़ाई पाकिस्तान को तोड़ने पर आई।
7: मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम दहशतगर्द होते तो ये लाखों के मजमे में लोग और लड़कियां, ये खवातीन अपने गोद वाले बच्चों को इधर लेके आती, ये कोई दहशतगर्द है, आके प्लीज चेक कर दिया जाए।
6: क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या औरत और क्या मर्द, पूरा का पूरा पीओके सड़कों पर उतरा हुआ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बालाकोट से उठती ये आवाज लाहौर और इस्लामाबाद को कपा रही है। पीओके की यह बगावत बता रही है कि अब बंदूक की जोर पर चलने वाली मुनीर की फौज के खिलाफ लोग खड़े हो गए। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन ने आसिफ मुनीर की चूले हिला दी, वो पीओके के लोगों पर फायरिंग करवा रहा है। पाकिस्तान की फौज और रेंजर निर्दोषों की जान ले रहे हैं, लेकिन लोगों के इस बगावत में कोई कमी नहीं आई। पिछले दो हफ्तों से पीओके में हुए इन प्रदर्शनों में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई। मुजफ्फराबाद, रावलापुर और मीरपुर समेत बहुत से इलाकों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार किया है। इन्हीं की नदियों के पानी से बिजली बनाकर लाहौर और पंजाब में बिजली दी जाती है। पीओके वालों को राशन के लिए भी तरसाया जाता है। इन्हीं मुद्दों के खिलाफ पिछले 4 साल से पीओके सुलगा हुआ है, लेकिन मौजूदा विवाद चुनाव से जुड़ा हुआ है। 27 जुलाई को पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान होना है। पीओके की असेंबली में 12 सीटें बाहर से आए हुए लोगों के नाम पर आरक्षित हैं। आरोप ये है कि पाकिस्तान की सरकार इन 12 सीटों पर अपने लोगों को बिठा देती है और इन 12 सीटों के द्वारा ही पीओके में पावर कंट्रोल होता है। इसीलिए अब ये डिमांड है कि ये 12 सीटें खत्म करके इन पर पीओके के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। प्रदर्शन की कमान संभाली है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी JAC ने, और इस कमेटी में शामिल लोग पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर रहे हैं। पूरे 78 साल से इस्लामाबाद जिस झूठ की काली कमाई को खा रहा था, जिस पीओके को वो दुनिया के सामने आजाद कश्मीर का पाखंडी लेबल लगाकर बेच रहा था, आज उस 78 साल पुराने प्रोपेगेंडा के परखच्चे उड़ चुके हैं।
8: मौजूद है और उनकी आजादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका है, इस पर कब्जा है, इस पर सभी कब्जा है, ये एक मुतनाजा इलाका है, जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुताबिक जो बात करने का अख्तियार है वो किसी के पास नहीं है, वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है, और इस पे हम अपना हाथ महफूज रखते हैं। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएं बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी, और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म।
6: रावलाकोट के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में 80,000 से ज्यादा लोगों का सैलाब और मंच पर खड़े ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान। पीओके के लोग कह रहे हैं कि पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ये सीधी सीधी चुनौती मुनीर को है। मुनीर की भारी भरकम फौज और उनकी गोलियां भी बगावत की आग को ठंडी नहीं कर पा रही। जब किसी अवाम के सब्र का बांध टूटता है तो बड़े बड़े तानाशाहों के तख्तो ताज इतिहास के कूड़ेदान में बह जाते हैं।
8: और हुक्मरानों से हम कहते हैं, हुक्मरानों से हम कहते हैं कि ना तो लाल से काम नहीं चलेगा, ना तो लाल से काम नहीं चलेगा। एक आता है कहता है फलां नहीं मान रहा, दूसरा आता है कहता है फलां नहीं मान रहा। हमने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ। रियासत के शहरी है, रियासत आवाम से है और रियासत आवाम से है और आवाम ही रियासत है। सुप्रीमियर रियासत आवाम है, आवाम का हक है और आवाम की बात मानी जाएगी और अपनी होगी।
6: इस बार के मार्च की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें स्थानीय महिलाएं और स्कूली बच्चों ने रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लिया है। सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियोस में महिलाएं और बच्चों के हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों, भारी टैक्स और आटे बिजली की महंगाई के खिलाफ नारे लगाते हुए मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ ही पीओके में आजादी की मांग को लेकर चल रही बगावत में अब वहां का बच्चा बच्चा शामिल है।
5: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मारूख और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाएं। एक्शन कमेटी ने ऐसा क्या गलत किया? वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज उठाए और वो क्या कह रहे हैं, खबरों में कह रहे हैं और धरने यहाँ तक रेजर्स भी कह रहे हैं कि अगर जो लड़के जो बच्चे एक्शन कमेटी में आए हुए अगर वो पीछे ना गए उनके पेफॉर्म्स नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शादी कार्ड नहीं मानेंगे। ये पेफॉर्म है हमारे, अगर हमारे पेफॉर्म नहीं माने जाएंगे चाहे आप लोग के पेफॉर्म अपनी मर्जी से जिया, मैं आपको आपके पेफॉर्म्स की भी जरूरत नहीं है। और मेरी आप सब पाकिस्तानी आवाम से गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े हो, हमें हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। क्यों आप लोग पीछे खड़े? हमारे साथ अल्लाह खड़े है, प्लीज हमारा साथ दें।
6: पीओके में भड़की आजादी की इस आग पर अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। भारत ने दो टूक कह दिया कि पीओके में जारी ये महाविद्रोह पाकिस्तान के दशकों पुराने शोषण, बुनियादी अधिकारों के हनन और प्रशासनिक जुल्म का नतीजा है।
9: देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीजों को रोका गया है। इंटरनेट ब्लैकआउट को लागू किया गया है और निहत्थे नागरिकों पर के खिलाफ घात मौतें हुई हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घोर दुर्व्यवहारों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराएगी।
6: उबाल बता रहा है कि पीओके की फॉल्ट लाइन एक्टिव हो चुकी है। पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर के नाम पर जो गुब्बारा फुलाया था उसकी पूरी दुनिया के सामने हवा निकल चुकी है। प्रणव उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

कैबिनेट और संगठन में हेरफेर में बदलाव की खबरों के बीच प्रधानमंत्री आवास पर हुई मीटिंग, करीब दो घंटे तक चले मंथन में अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष रहे मौजूद। पंचायत आज तक के मंच पर दावे अपने अपने, सीएम योगी बोले प्रचंड बहुमत से बनाएंगे जीत की हैट्रिक, विपक्ष का दावा जनता को बीजेपी पर नहीं है भरोसा। मदन मित्रा के भी बागी होने के बाद बीजेपी पर भड़की ममता, कहा इनके इशारों पर हमारे नेताओं पर दबाव लेकिन विचारधारा से हमारा कोई समझौता नहीं। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च, बीटा वर्जन में रेल टिकट बुकिंग होगी सुपरफास्ट, नई डिजाइन और फीचर्स का अनुभव ले सकेंगे लोग। और पीओजेके में पाकिस्तान को खुला चैलेंज, आंदोलनकारी नेता मान खान शहबाज मुनीर को ललकारते हुए नजर आए, कहा यह कब्जे वाला इलाका, रावलकोट में उमड़ी भीड़। आज तक पंचायत में जब सियासी दिग्गजों का मेला लगा तो एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे की गूंज सुनाई दी, जिसने साफ कर दिया कि 2027 के चुनावों में यह सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है।

0: आयत का मंच सजा तो एक बार फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की गूंज सुनाई दी।
1: जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास किए, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है, वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं।
0: विपक्ष ने साफ किया कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर ही सियासी मैदान पर उतरने वाले हैं।
2: चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा, हम मुद्दा बनाओ या ना बनाओ, जो साधारण जनमत है, जो साधारण व्यक्ति है, वो रोज पूछता है बाबू अयोध्या में मंदिर से कैसे चोरी हो गया, ये लोग क्यों चुरा ले गए मामला। वो हमको नहीं चोर बताते हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं बताते हैं, वो उन्हीं को बताते हैं। इसने समाजवादी पार्टी का जनाधार जनता में बढ़ा और इनका जनाधार इस चोरी से कम हुआ है।
3: चढ़ावा चोरी पे क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, चंदा चोरी पर क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, इनके लोग शामिल हैं उसमें। भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम के नाम पर ही ये जाएंगे, क्योंकि जो लोग आज उसमें हैं, छोटे छोटे लोगों को तो जेल भेज दिया आपने, छोटे लोगों को भेज दिया, टिल्लू यादव कौन कौन और किसको किसको भेज दिया आपने, मिश्रा जी को। अरे भैया चंपत राय बंसल कब जेल जाएंगे, योगी जी अनिल मिश्रा कब जाएंगे, नीपेंद्र मिश्रा के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, गोविंद गिरी पर कब कार्रवाई होगी, गोपाल राव पर कब कार्रवाई होगी, ये प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। और निश्चित तौर से आज ये जो आज गांव-गांव में चर्चा है कि ये चंदा चोरी तो अशोक सिंघल के समय हुआ, अब चढ़ावा चोरी हो रहा है, जो माताएं बने अपने आंचल में पैसा बांध कर जाती है उस आंचल का पैसा इन्होंने छीन लिया, इसका जवाब चुनाव में कैसे दोगे।
0: उधर योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर राम मंदिर पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं।
4: ये पाप हुआ है, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि एक संदेशा जाए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कि इस देश में 2026 में ये हुआ था अयोध्या मंदिर में, तब ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिला था, तब उन लोग कांपे, ताकि कोई आगे ये गंदा पाप, ये घिनौना, ये घृण तक अपराध ना कर पाए।
2: हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए, सारे चोरों को जेल भेज दिया, सारे पॉकेट मारों को जेल भेज दिया, ते वहाँ कहाँ पैदा हो गए, अयोध्या में कैसे पैदा हो गए, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी।
0: बहरहाल यूपी में 2027 की लड़ाई में राम मंदिर बड़ा मुद्दा होने वाला है। जिस राम मंदिर ने बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, वहीं चढ़ावा चोरी के कलंक को विपक्ष किसी भी कीमत पे छोड़ता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
5: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एक्शन भी फुल है। एक ओर जहां ट्रस्ट के सीईओ के लिए आवेदनों की बाढ़ आई हुई है, वहीं फाइनल एसआईटी रिपोर्ट बहुत ही जल्द आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक फाइनल रिपोर्ट में टिन्नू यादव के लिए और भी खुलासे हैं।

राम मंदिर चढ़ावे की जिन्होंने चोरी की है अब उनका हिसाब जल्दी ही होने वाला है। एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट लगभग तैयार है और सूत्रों के मुताबिक इसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो मंदिर प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जांच में टिन्नू यादव की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आई है। टिन्नू यादव की मंदिर के प्रबंधन और संवेदनशील कामकाज में गहरी पैठ थी। दानपात्र यानी हुंडियों की चाबियां भी उसके पास रहती थी। चोरी की सबसे बड़ी वजह भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताएं रही। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कमजोर किए जाने से चोरी की गुंजाइश बनी। चंपत राय को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई है। चंपत राय को लापरवाही और निगरानी में नाकामी के लिए जिम्मेदार माना गया है। हालांकि आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका पर एसआईटी ने कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है क्योंकि पुलिस की जांच अभी जारी है। वहीं एसओपी में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया की अनियमितताओं के लिए अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उधर राम मंदिर के सीईओ पद के लिए आवेदन करने

0: वालों की होड़ लगी है। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए हजारों आवेदन आ चुके हैं। आवेदकों में सबसे बड़ी संख्या सेवानिवृत्त नौकरशाहों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बताई जा रही है। बहरहाल अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
1: संसद के आगामी सत्र से पहले परिसीमन को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। इसी बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनकी पार्टी परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी।
2: महाराष्ट्र की सियासत में इंडिया गठबंधन को फिर से करारा झटका लगा है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के भीतर एकजुटता नहीं दिख रही है, क्योंकि शरद पवार वाली एनसीपी ने खुला ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का शरद पवार की एनसीपी समर्थन करेगी।
3: वी विल कंसीडर प्रोवाइडेड कंसीडर, इंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसीडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल How will it be implemented?
2: इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि एनसीपी शरद चंद्र पवार महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों के पक्ष में खड़ी है। अगर शरद पवार की पार्टी की ताकत देखी जाए तो लोकसभा में 8 सांसद हैं, राज्यसभा में 3 सांसद हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधायक हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद में 3 एमएलसी हैं। सुप्रिया सुले के ऐलान के बाद परिसीमन जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष के भीतर एक अलग राजनीतिक संदेश जाता दिखाई दे रहा है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें बिल का समर्थन करना पड़ रहा है, वरना विरोध करने पर टीएमसी जैसा हाल होना तय है।
4: उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए वो अगर करते हैं समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को।
2: परसीमन का मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। दक्षिण भारत के कई दल आबादी के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण को लेकर अपनी आशंकाएं जता चुके हैं। ऐसे माहौल में शरद पवार गुट का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभाव रखने वाली इस पार्टी का ये रुख संसद के भीतर होने वाली बहस को नई दिशा दे सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार स्कूल क्रांति के दावे करती है, लेकिन पता चला कि बिजली का बिल नहीं भरने से लुधियाना के सरकारी स्कूल की ही बिजली काट दी गई। बच्चे अंधेरे में पढ़ते रहे। इस स्कूल में एक ही हॉल में 5वीं तक की क्लास चलती है।
5: मैं क्लास जावड़िया, मैं कभी पूछने लग गया मैं की बने। कोई कहना जी डॉक्टर बनूंगा, कोई कहना इंजीनियर, एक कहना मुख्यमंत्री बनूंगा जी मैं। उसके बाद पढ़ेगा पहला, फिर लोगों की सेवा च लगेगा, फिर सेवा तेरी प्रवान होगी लोगों के दिलों च, फिर लोग तेन कहे तू इलेक्शन लड़, तेन हार नहीं देंगे, फिर तू इलेक्शन लड़ेगा, फिर तेरी पार्टी तेन मुख्यमंत्री वास्ते ना डिकलेयर करूगी, फिर विधायक दल तेन फिर नेता चुनूगा, तो फिर उस बाद तू मुख्यमंत्री की सहु चुकेगा। मैं थोड़ा जहा ज्यादा लंबा नहीं प्रोसैस, कहना कोई गल नहीं जी उन्होंने चर तुम है। मैं कह यार कॉन्फिडेंस देख बच्चे का।
6: काश पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थोड़ा सा वक्त निकालकर लुधियाना के सरकारी स्कूल तक का दौरा कर लेते तो फिर बच्चों के कॉन्फिडेंस को किस तरह से हिला दिया जा रहा है उन्हें पता चल जाता। मुख्यमंत्री और पंजाब की सरकार को कि स्कूल बिना बिजली के कैसे चलते हैं, जहां पंखे हैं लेकिन चल नहीं पाते। वजह समराला चौक के सरकारी प्राइमरी स्कूल की बिजली का कट जाना है, क्योंकि बिजली का बिल जमा नहीं था। सोचिए स्कूल की ये हालत है, बाकी का क्या होगा। जहां आज तक की टीम पहुंची, पता चला अब 2 दिन बाद जाकर स्कूल की बिजली वापस चालू कर दी गई। लेकिन लुधियाना के सरकारी प्राइमरी स्कूल का हाल देखिए, सॉरी हॉल देखिए, जहां एक हॉल के भीतर ये एक क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, ये चौथी, ये पांचवी, और इसी हॉल के भीतर पता चला नर्सरी से 5वीं तक की कुल 8 क्लास एक साथ चलाई जाती हैं, जहां रसोई घर भी है और बाथरूम, जहां मुस्कुराते हुए भीतर मुख्यमंत्री भगवंत मान का पोस्टर भी लगा है। लेकिन काश मुख्यमंत्री आकर यहाँ का हाल और हॉल दोनों देख पाते।
7: लाखों करोड़ों रुपए का फंड जो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च किया जा रहा है। इस एजुकेशन सिस्टम का असली चेहरा क्या है, आज हम आपको दिखाते हैं। लुधियाना के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में हम मौजूद हैं, जहां पे एक ही हॉल के अंदर नर्सरी से लेकर पांचवी तक के बच्चों की सभी क्लासें एक ही हॉल के अंदर लगाई जा रही हैं।
8: इन्हां नूं असीं सुखाम माहौल नहीं दे सकदे जिहड़ा मिलना चाहिए वा। मेन दिक्कत सानूं बिल्डिंग दी हैगी आ, ते सरकार कोलों असीं इही मंग करांगे कि सानूं जल्दी तों जल्दी एक बिल्डिंग प्रोवाइड होवे।
9: आपकी तरफ से ये ध्यान में आया मेरे, तो इस पर हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा ये भी जानने की जरूरत है।
6: सवाल है कि फाइलों में स्कूल शिक्षा में नंबर वन खुद को कहने वाले पंजाब की हकीकत पता नहीं दिखती नहीं है या फिर देखी ही नहीं जाती है।
1: मुंबई के चेंबूर इलाके में पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत के मामले में बीएमसी ने जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। हादसे के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी है। साथ ही साथ साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है। सवाल अब यह है कि क्या मुंबई वालों की जान की कीमत सिर्फ 7 लाख रुपए हैं।

0: अब की बार मुंबई में मॉनसून हादसों की बाढ़ लेकर आया। बारिश से हुए अलग अलग हादसों में 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में एक शख्स की खुले मेनहोल में गिरने से मौत हो चुकी है। बारिश से हुए हादसों की चर्चा विधानसभा तक में हुई। स्पीकर राहुल नार्वेकर से लेकर बीजेपी विधायक अमित साटम तक ने लानत मलानत और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही, लेकिन नतीजा क्या निकला? सबसे दर्दनाक मौत चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से हुई थी। इस हादसे में 11 साल के छात्र विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी, जबकि कई बच्चे घायल हुए थे।
1: मुंबई के चेंबूर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर दोपहर से ही बारिश हो रही थी और स्कूल से भरी हुई बस बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी, तभी यहां पर एक पेड़ था जो उस बस पर गिर गया। इस हादसे में 10 बच्चे घायल हुए हैं, तो वहीं 4 बच्चों को इलाज के लिए जैन हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, तो वहीं एक 11 वर्षीय बच्चे की इसमें मृत्यु हो गई है। काफी दर्दनाक हादसा था, बारिश हो रही थी, कई जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई थी। ये चेंबूर भी उन्हीं इलाकों में से एक था जहां पर पेड़ गिरा था, यही वो पेड़ था जो गिरा। फिलहाल बस को यहां से हटा दिया गया है, लेकिन अब इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। बहुत ही विशाल ये पेड़ था जिसे काट के एक तरफ किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं अभी भी इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। प्रशासन का राहत कार्य जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका था, लेकिन इस घटना के लिए जो दोषी है उन पर भी कार्रवाई की मांग जो पूर्व एमपी हैं यहाँ के राहुल चौहान उनके द्वारा की गई है।
0: लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि बीएमसी की जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई। इस दुखद घटना की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी। साथ ही साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने भी नाराजगी जताते हुए एक न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन पोस्ट करते हुए लिखा, विहान की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? बीएमसी का कहना है कि कोई नहीं। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने भी चेंबूर हादसे की जांच रिपोर्ट पर हैरानी जताते हुए कहा कि खाना पूर्ति वाली कार्रवाई मंजूर नहीं है।
2: उसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा डे वन से एक ही स्टेटमेंट था, ये जो रोड बने हैं ये मुंबई कर के लिए बने। मुंबई कर बहुत खुश है क्योंकि आज की तारीख में बारिश में पॉटहोल्स नहीं दिख रहे जहाँ पे रोड बने हैं, साइड ड्रेन भी बने हैं, लेकिन ये काम ये किसका था? मुंबई महानगर पालिका और उसके यहाँ पे जो निश्चित किए गए साइट इंजीनियर का काम था और वहाँ पे गार्डन डिपार्टमेंट का काम था, तो ये संयुक्त उन्होंने मिलके वो काम करना चाहिए था। वहाँ पे जो विजिट मैंने करने के बाद भी मैंने कहा था कि ये जो पूरे पेड़ है ये वीक हो रहे हैं, तो वहाँ के जो साइट इंजीनियर है उसकी जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, गार्डन का अधिकारी है उसकी ना जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, बल्कि ना 7 लाख रुपए दे के बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा।
0: राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य भर में सड़क किनारे लगे सभी पेड़ों का ऑडिट किया जाना चाहिए। बीएमसी की रिपोर्ट पर मेयर की आलोचना का समर्थन करते हुए विपक्ष के नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा कि सिर्फ असहमति जताना काफी नहीं है। पेडनेकर ने कहा कि मेयर को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। वहीं बीएमसी में शिवसेना के ग्रुप लीडर अमेक होले ने कहा कि चेंबूर हादसे की रिपोर्ट अभी पेश नहीं की गई है, लेकिन पता नहीं कि जानकारी बाहर कैसे आई। उन्होंने भी पेड़ गिरने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
3: जो जो ऑफिसर्स के नीचे से ये पूरा कंप्लेन जो झाड़ के बारे में गया है उनकी इंक्वायरी होके उसपे ऊपर जो कुछ निर्णय आ सकता है वो महानगर पालिका ने देना चाहिए।
0: वही विरार में पानी भरे गड्ढे मौत का जाल बनते जा रहे हैं। ऐसे गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। विरार में बारिश भले थम गई, लेकिन बारिश के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। विरार पश्चिम में जकात नाका के पास सड़क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ प्रवीण नालावड़े, पालघर आज तक।
4: पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त बगावत की आग लगी हुई है और इस आग की तपिश इस्लामाबाद और लाहौर तक महसूस की जा रही है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से लोग इस वक्त मुजफ्फराबाद कूच के लिए निकल रहे हैं। क्या दिन और क्या रात, लोगों का ये मार्च लगातार जारी है और इन प्रदर्शनकारियों पर मुनीर की फौज का जोर जबरदस्ती भी लगातार जारी है। निहत्ते प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है, जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है।
5: खड़ी लड़की
6: आप सब पाकिस्तानी आवाम से गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े हो।
7: क्या पीओके इस बार पाकिस्तान के कब्जे से निकल जाए? पीओके में बुलंद हुई आजादी की आवाज, अब क्या करेंगे मुनीर और शहबाज?
8: ये जो दहशतगर्दी है,
9: इसके पीछे
8: बंदी है। ये जो दहशतगर्दी है,
9: इसके पीछे बंदी है।
8: ये जो गुंडागर्दी है,
9: इसके पीछे बंदी है।
8: ये जो अफरा तफरी है,
9: इसके पीछे बंदी है।
8: ये जो शल्ली बल्ली है,
9: इसके पीछे बंदी है।
7: पीओके की पूरी आवाम सड़कों पर आ गई, सबसे बड़ी बगावत हो गई। आटे बिजली और हक की लड़ाई पाकिस्तान को तोड़ने पर है।
10: कहना चाहूंगी कि अगर हम दहशतगर्द होते तो ये लाखों के मजमे में लोग और लड़कियां, ये खवातीन अपने गोद वाले बच्चों को इधर लेके आती, ये कोई दहशतगर्द है, आके प्लीज चेक कर दिया जाए।
7: क्या बच्चा, क्या बूढ़ी, क्या औरत और क्या मर्द, पूरा का पूरा पीओके सड़कों पर उतरा हुआ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर रावला कोट से उठती ये आवाज लाहौर और इस्लामाबाद को कपा रही। पीओके की यह बगावत बता रही कि अब बंदूक की जोर पर चलने वाली मुनीर की फौज के खिलाफ लोग खड़े हो गए। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन ने आसिफ मुनीर की चूले हिला दी, वो पीओके के लोगों पर फायरिंग करवा रहा है। पाकिस्तान की फौज और रेंजर निर्दोषों की जान ले रहे हैं, लेकिन लोगों के इस बगावत में कोई कमी नहीं आई। पिछले दो हफ्तों से पीओके में हुए इन प्रदर्शनों में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई। मुजफ्फराबाद, रावलापुर और मीरपुर समेत बहुत से इलाकों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार किया है। इन्हीं की नदियों के पानी से बिजली बनाकर लाहौर और पंजाब में बिजली दी जाती है। पीओके वालों को राशन के लिए भी तरसाया जाता है। इन्हीं मुद्दों के खिलाफ पिछले 4 साल से पीओके सुलगा हुआ है, लेकिन मौजूदा विवाद चुनाव से जुड़ा हुआ है। 27 जुलाई को पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान होना है। पीओके की असेंबली में 12 सीटें बाहर से आए हुए लोगों के नाम पर आरक्षित हैं। आरोप ये है कि पाकिस्तान की सरकार इन 12 सीटों पर अपने लोगों को बिठा देती है और इन 12 सीटों के द्वारा ही पीओके में पावर कंट्रोल होता है। इसीलिए अब ये डिमांड है कि ये 12 सीटें खत्म करके इन पर पीओके के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। प्रदर्शन की कमान संभाली है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी JAC ने, और इस कमेटी में शामिल लोग पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर रहे हैं। पूरे 78 साल से इस्लामाबाद जिस झूठ की काली कमाई को खा रहा था, जिस पीओके को वो दुनिया के सामने आजाद कश्मीर का पाखंडी लेबल लगाकर बेच रहा था, आज उस 78 साल पुराने प्रोपेगेंडा के परखच्चे उड़ चुके हैं।
11: मौजूद है और उन क्रियादादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका है, इस पर कब्जा है, इस पर सभी कब्जा है, ये एक मुतनाजा इलाका है। जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुताबिक जो बात करने का अख्तियार है वो किसी के पास नहीं है, वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है, और इस पे हम अपना हाथ महफूज रखते हैं। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादे इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएं बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी, और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म।
7: रावलाकोट के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में 80,000 से ज्यादा लोगों का सैलाब और मंच पर खड़े ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान। पीओके के लोग कह रहे हैं कि पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ये सीधी सीधी चुनौती मुनीर को है। मुनीर की भारी भरकम फौज और उनकी गोलियां भी बगावत की आग को ठंडी नहीं कर पा रही। जब किसी अवाम के सब्र का बांध टूटता है तो बड़े बड़े तानाशाहों के तख्तो ताज इतिहास के कूड़ेदान में बह जाते हैं।
11: और हुक्मरानों से हम कहते हैं, कि ना तो लाल से काम नहीं चलेगा, एक आता है कहता है फलाह नहीं मान रहा, दूसरा आता है कहता है फलाह नहीं मान रहा, हमने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ। रियासत के शहरी है, रियासत आवाम से है और रियासत आवाम से है और आवाम ही रियासत है, सुपीरियर रियासत आवाम है, आवाम ताकत है और आवाम की बात मानी जाएगी और अपनी होगी, आवाम की बात मानी जाएगी और अपनी होगी।
7: इस बार के मार्च की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें स्थानीय महिलाएं और स्कूली बच्चों ने रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लिया है। सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियोस में महिलाएं और बच्चों के हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों, भारी टैक्स और आटे बिजली की महंगाई के खिलाफ नारे लगाते हुए मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ ही पीओके में आजादी की मांग को लेकर चल रही बगावत में अब वहां का बच्चा बच्चा शामिल है।
12: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम मारूख और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाए, एक्शन कमेटी ने ऐसा क्या गलत किया, वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज उठाए और वो क्या कह रहे हैं खबरों में कह रहे हैं और धरने याद तक रेजर्स भी कह रहे हैं कि अगर जो लड़के हुए जो बच्चे एक्शन कमेटी में आए हुए अगर वो पीछे ना गए उनके पेफॉर्म्स नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शादी कार्ड नहीं मानेंगे, ये पेफॉर्म है हमारे, अगर हमारे बेफॉर्म नहीं माने जाएंगे जाएं आप लोग के बेफॉर्म अपनी मर्जी से जिया, मैं आपको आपके बेफॉर्म्स की भी जरूरत नहीं है और मेरी आप सब पाकिस्तानी आवाम से गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े हो, हमें हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्यों आप लोग पीछे खड़े, हमारे साथ अल्लाह खड़े है, प्लीज हमारा साथ दें।
7: पीओके में भड़की आजादी की इस आग पर अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। भारत ने दो टूक कह दिया कि पीओके में जारी ये महाविद्रोह पाकिस्तान के दशकों पुराने शोषण, बुनियादी अधिकारों के हनन और प्रशासनिक जुल्म का नतीजा है।
13: देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहाँ का प्रशासन, वहाँ का सरकार, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीज़ों को रोका गया है, इंटरनेट ब्लैकआउट को लागू किया गया है और निहत्थे नागरिकों पर के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घोर दुर्व्यवहारों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराएगी।
7: उबाल बता रहा है कि पीओके की फॉल्ट लाइन एक्टिव हो चुकी है। पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर के नाम पर जो गुब्बारा फुलाया था उसकी पूरी दुनिया के सामने हवा निकल चुकी है। प्रणव उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कैबिनेट और संगठन में हेरफेर में बदलाव की खबरों के बीच प्रधानमंत्री आवास पर हुई मीटिंग, करीब दो घंटे तक चले मंथन में अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष रहे मौजूद। पंचायत आज तक के मंच पर दावे अपने अपने, सीएम योगी बोले प्रचंड बहुमत से बनाएंगे जीत की हैट्रिक, विपक्ष का दावा जनता को बीजेपी पर नहीं है भरोसा। मदन मित्रा के भी बागी होने के बाद बीजेपी पर भड़की ममता, कहा इनके इशारों पर हमारे नेताओं पर दबाव लेकिन विचारधारा से हमारा कोई समझौता नहीं। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च, बीटा वर्जन में रेल टिकट बुकिंग होगी सुपरफास्ट, नई डिजाइन और फीचर्स का अनुभव ले सकेंगे लोग। और पीओजेके में पाकिस्तान को खुला चैलेंज, आंदोलनकारी नेता मान खान शहबाज मुनीर को ललकारते हुए नजर आए, कहा यह कब्जे वाला इलाका, रावलकोट में उमड़ी भीड़। आज तक पंचायत में जब सियासी दिग्गजों का मेला लगा तो एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे की गूंज सुनाई दी, जिसने साफ कर दिया कि 2027 के चुनावों में यह सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है।
1: आज तक पंचायत का मंच सजा तो एक बार फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की गूंज सुनाई दी।
2: जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास किए, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में, उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है, वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं।
1: विपक्ष ने साफ किया कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर ही सियासी मैदान पर उतरने वाले हैं।
3: चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा, हम मुद्दा बनावें या न बनावें, जो साधारण जनमत है, जो साधारण व्यक्ति है वो रोज पूछता है बाबू अयोध्या में मंदिर से कैसे चोरी हो गया, ये लोग क्यों चुरा ले गए मामला, वो हमको नहीं चोर बताते हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं बताते हैं, वो उन्हीं को बताते हैं। इसे समाजवादी पार्टी का जनाधार जनता में बढ़ा और इनका जनाधार इस चोरी से कम हुआ।
4: चढ़ावा चोरी पे क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, चंदा चोरी पर क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, इनके लोग शामिल हैं उसमें, भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम के नाम पर ही ये जाएंगे, क्योंकि जो लोग आज उसमें हैं, छोटे छोटे लोगों को तो जेल भेज दिया आपने, छोटे लोगों को भेज दिया, टिल्लू यादव कौन कौन और किसको किसको भेज दिया आपने, मिश्रा जी को, अरे भैया चंपत राय बंसल कब जेल जाएंगे, योगी जी अनिल मिश्रा कब जाएंगे, नीपेंद्र मिश्रा के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, गोविंद गिरी पर कब कार्रवाई होगी, गोपाल राव पर कब कार्रवाई होगी, ये प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। और निश्चित तौर से आज ये जो आज गांव गांव में चर्चा है कि चंदा चोरी तो अशोक सिंघल के समय हुआ, अब चढ़ावा चोरी हो रहा है, जो माताएं बने अपने आंचल में पैसा बांध कर जाती है उस आंचल का पैसा इन्होंने छीन लिया, इसका जवाब चुनाव में कैसे दोगे।
1: उधर योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर राम मंदिर पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं,
5: ये पाप हुआ है, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि एक संदेशा जाए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कि इस देश में 2026 में ये हुआ था अयोध्या मंदिर में, तब ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिला था, तब उन लोग कांपे, ताकि कोई आगे ये गंदा पाप, ये घिनौना, ये घृण तक अपराध ना कर पाए।
3: हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए, सारे चोरों को जेल भेज दिया, सारे पॉकेट मारों को जेल भेज दिया, ते वहाँ कहाँ पैदा हो गए, अयोध्या में कैसे पैदा हो गए, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी।
1: बहरहाल यूपी में 2027 की लड़ाई में राम मंदिर बड़ा मुद्दा होने वाला है। जिस राम मंदिर ने बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, वहीं चढ़ावा चोरी के कलंक को विपक्ष किसी भी कीमत पे छोड़ता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एक्शन भी फुल है। एक ओर जहां ट्रस्ट के सीईओ के लिए आवेदनों की बाढ़ आई हुई है, वहीं फाइनल एसआईटी रिपोर्ट बहुत ही जल्द आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक फाइनल रिपोर्ट में टिन्नू यादव के लिए और भी खुलासे हैं।

0: राम मंदिर चढ़ावे की जिन्होंने चोरी की है अब उनका हिसाब जल्दी ही होने वाला है। एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट लगभग तैयार है और सूत्रों के मुताबिक इसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो मंदिर प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जांच में टिन्नू यादव की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आई है। टिन्नू यादव की मंदिर के प्रबंधन और संवेदनशील कामकाज में गहरी पैठ थी। दानपात्र यानी हुंडियों की चाबियां भी उसके पास रहती थी। चोरी की सबसे बड़ी वजह भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताएं रही। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कमजोर किए जाने से चोरी की गुंजाइश बनी। चंपत राय को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई है। चंपत राय को लापरवाही और निगरानी में नाकामी के लिए जिम्मेदार माना गया है। हालांकि आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका पर एसआईटी ने कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है क्योंकि पुलिस की जांच अभी जारी है। वहीं एसओपी में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया की अनियमितताओं के लिए अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उधर राम मंदिर के सीईओ पद के लिए आवेदन करने वालों की होड़ लगी है। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए हजारों आवेदन आ चुके हैं। आवेदकों में सबसे बड़ी संख्या सेवानिवृत्त नौकरशाहों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बताई जा रही है। बहरहाल अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
1: संसद के आगामी सत्र से पहले परिसीमन को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। इसी बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनकी पार्टी परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी।
2: महाराष्ट्र की सियासत में इंडिया गठबंधन को फिर से करारा झटका लगा है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के भीतर एकजुटता नहीं दिख रही है क्योंकि शरद पवार वाली एनसीपी ने खुला ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का शरद पवार की एनसीपी समर्थन करेगी।
3: वी विल कंसीडर प्रोवाइडेड कंसीडर, इंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसीडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल How will it be implemented?
2: इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि एनसीपी शरद चंद्र पवार महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों के पक्ष में खड़ी है। अगर शरद पवार की पार्टी की ताकत देखी जाए तो लोकसभा में 8 सांसद हैं, राज्यसभा में 3 सांसद हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधायक हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद में 3 एमएलसी हैं। सुप्रिया सुले के ऐलान के बाद परिसीमन जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष के भीतर एक अलग राजनीतिक संदेश जाता दिखाई दे रहा है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें बिल का समर्थन करना पड़ रहा है वरना विरोध करने पर टीएमसी जैसा हाल होना तय है।
4: उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए वो अगर करते हैं समर्थन करता है करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को।
2: परसीमन का मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। दक्षिण भारत के कई दल आबादी के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण को लेकर अपनी आशंकाएं जता चुके हैं। ऐसे माहौल में शरद पवार गुट का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभाव रखने वाली इस पार्टी का ये रुख संसद के भीतर होने वाली बहस को नई दिशा दे सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: पंजाब कांग्रेस में भी सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसने आलाकमान की टेंशन को बढ़ा दिया है। चन्नी गुट की बगावत के बीच केंद्रीय नेतृत्व राजा वडिंग को हटाने के मूड में नहीं दिख रहा।

0: चुनाव से पहले एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में बगावत की चिंगारी सुलगी तो आग बुझाने की जिम्मेदारी दिल्ली में आलाकमान तक पहुंच गई। पंजाब की रिपोर्ट लेकर प्रभारी भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने अपनी रिपोर्ट संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है और उसमें भी वर्डिंग को ही जिम्मेदारी जारी रखने की सिफारिश की गई है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल राजा अमरिंदर सिंह वर्डिंग के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक संगठन के भीतर भी वर्डिंग की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। 29 जिला अध्यक्षों में से 25 उनके समर्थन में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 सांसद और 8 से 9 विधायक भी उनके साथ खड़े हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में करीब 55 हलका प्रमुख बताए जा रहे हैं, जबकि 12 हलका प्रमुख ऐसे हैं जो दोनों नेताओं के साथ तालमेल बनाए हुए हैं।
1: क्या नेतृत्व परिवर्तन की
2: कोई भाई ये नीचे रख ले यार।
3: मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं?
1: अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश?
3: मैं पहले भी बोल चुका हूं आपसे, गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है।
0: अब सवाल यह है कि पिछली रिपोर्ट के बाद भी राजा वर्डिंग को न हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद चन्नी गुट ने बैठक की थी। ऐसे में अगर राजा वर्डिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रहने का फैसला जारी रहता है तो फिर चन्नी अब आगे क्या फैसला करेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस को पंजाब से सत्ता खोनी पड़ी थी। वहीं बीजेपी भी चन्नी को ऑफर दे चुकी है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
4: दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार स्कूल क्रांति के दावे करती है, लेकिन पता चला कि बिजली का बिल नहीं भरने से लुधियाना के सरकारी स्कूल की ही बिजली काट दी गई। बच्चे अंधेरे में पढ़ते रहे। इस स्कूल में एक ही हॉल में 5वीं तक की क्लास चलती है।
5: मैं क्लास जावड़िया, मैं कभी पूछने लग गया मैं की बने। कोई कहना जी डॉक्टर बनूंगा, कोई कहना इंजीनियर, एक कहना मुख्यमंत्री बनूंगा जी मैं। उसके बाद पढ़ेगा पहला, फिर लोगों की सेवा च लगेगा, फिर सेवा तेरी प्रवान होगी लोगों के दिलों च, फिर लोग तेन कहे तू इलेक्शन लड़, तेन हार नहीं देंगे, फिर तू इलेक्शन लड़ेगा, फिर तेरी पार्टी तेन मुख्यमंत्री वास्ते ना डिकलेयर करूगी, फिर विधायक दल तेन फिर नेता चुनूंगा, तो फिर उस बाद तू मुख्यमंत्री की सहु चुकेगा। मैं थोड़ा जहा ज़्यादा लंबा नहीं प्रोसैस? कहना कोई गल नहीं जी, उन्होंने चर तुम है। मैं कह यार कॉन्फिडेंस देख बच्चे का।
6: काश पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थोड़ा सा वक्त निकालकर लुधियाना के सरकारी स्कूल तक का दौरा कर लेते तो फिर बच्चों के कॉन्फिडेंस को किस तरह से हिला दिया जा रहा है उन्हें पता चल जाता। मुख्यमंत्री और पंजाब की सरकार को कि स्कूल बिना बिजली के कैसे चलते हैं, जहां पंखे हैं लेकिन चल नहीं पाते। वजह समराला चौक के सरकारी प्राइमरी स्कूल की बिजली का कट जाना है, क्योंकि बिजली का बिल जमा नहीं था। सोचिए स्कूल की ये हालत है, बाकी का क्या होगा। जहां आज तक की टीम पहुंची, पता चला अब 2 दिन बाद जाकर स्कूल की बिजली वापस चालू कर दी गई। लेकिन लुधियाना के सरकारी प्राइमरी स्कूल का हाल देखिए, सॉरी हॉल देखिए, जहां एक हॉल के भीतर ये एक क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, ये चौथी, ये पांचवी, और इसी हॉल के भीतर पता चला नर्सरी से 5वीं तक की कुल 8 क्लास एक साथ चलाई जाती हैं, जहां रसोई घर भी है और बाथरूम। जहां मुस्कुराते हुए भीतर मुख्यमंत्री भगवंत मान का पोस्टर भी लगा है। लेकिन काश मुख्यमंत्री आकर यहां का हाल और हॉल दोनों देख पाते।
7: लाखों करोड़ों रुपए का फंड जो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च किया जा रहा है। इस एजुकेशन सिस्टम का असली चेहरा क्या है, आज हम आपको दिखाते हैं। लुधियाना के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में हम मौजूद हैं, जहां पे एक ही हॉल के अंदर नर्सरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों की सभी क्लासें एक ही हॉल के अंदर लगाई जा रही हैं।
8: इन्हां नूं असीं सुखाम माहौल नहीं दे सकते जिहड़ा मिलना चाहिए वा। मेन दिक्कत सानू बिल्डिंग की हैगी आ, ते सरकार कोलों असीं इही मंग करांगे कि सानू जल्दी तो जल्दी एक बिल्डिंग प्रोवाइड होवे।
9: आपकी तरफ से ये ध्यान में आया मेरे, तो इस पर हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा ये भी जानने की जरूरत है।
6: सवाल है कि फाइलों में स्कूल शिक्षा में नंबर 1 खुद को कहने वाले पंजाब की हकीकत पता नहीं दिखती नहीं है या फिर देखी ही नहीं जाती है।
4: मुंबई के चेंबूर इलाके में पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत के मामले में बीएमसी ने जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। हादसे के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी है। साथ ही साथ साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है। सवाल अब यह है कि क्या मुंबई वालों की जान की कीमत सिर्फ 7 लाख रुपए हैं?

0: अब की बार मुंबई में मॉनसून हादसों की बाढ़ लेकर आया। बारिश से हुए अलग अलग हादसों में 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में एक शख्स की खुले मेनहोल में गिरने से मौत हो चुकी है। बारिश से हुए हादसों की चर्चा विधानसभा तक में हुई। स्पीकर राहुल नार्वेकर से लेकर बीजेपी विधायक अमित साटम तक ने लानत मलानत और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही, लेकिन नतीजा क्या निकला? सबसे दर्दनाक मौत चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से हुई थी। इस हादसे में 11 साल के छात्र विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी, जबकि कई बच्चे घायल हुए थे।
1: मुंबई के चेंबूर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर दोपहर से ही बारिश हो रही थी और स्कूल से भरी हुई बस बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी, तभी यहां पर एक पेड़ था जो उस बस पर गिर गया। इस हादसे में 10 बच्चे घायल हुए हैं, तो वहीं 4 बच्चों को इलाज के लिए जैन हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, तो वहीं एक 11 वर्षीय बच्चे की इसमें मृत्यु हो गई है। काफी दर्दनाक हादसा था, बारिश हो रही थी, कई जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई थी। ये चेंबूर भी उन्हीं इलाकों में से एक था जहां पर पेड़ गिरा था, यही वो पेड़ था जो गिरा। फिलहाल बस को यहां से हटा दिया गया है, लेकिन अब इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। बहुत ही विशाल ये पेड़ था जिसे काट के एक तरफ किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं अभी भी इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। प्रशासन का राहत कार्य जो है वो यहां पर पहुंच चुका था, लेकिन इस घटना के लिए जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग जो पूर्व एमपी हैं यहाँ के राहुल चौहान उनके द्वारा की गई है।
0: लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि बीएमसी की जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई। इस दुखद घटना की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी। साथ ही साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने भी नाराजगी जताते हुए एक न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन पोस्ट करते हुए लिखा, विहान की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? बीएमसी का कहना है कि कोई नहीं। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने भी चेंबूर हादसे की जांच रिपोर्ट पर हैरानी जताते हुए कहा कि खानापूर्ति वाली कार्रवाई मंजूर नहीं है।
2: उसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा डे वन से एक ही स्टेटमेंट था, ये जो रोड बने हैं ये मुंबई कर के लिए बने। मुंबई कर बहुत खुश है, क्योंकि आज की तारीख में बारिश में पॉटहोल्स नहीं दिख रहे जहाँ पे रोड बने हैं, साइड ड्रेन भी बने हैं, लेकिन ये काम ये किसका था? मुंबई महानगर पालिका और उसके यहाँ पे जो निश्चित किए गए साइट इंजीनियर का काम था और वहाँ पे गार्डन डिपार्टमेंट का काम था, तो ये संयुक्त उन्होंने मिलके वो काम करना चाहिए था। वहाँ पे जो विजिट मैंने करने के बाद भी मैंने कहा था कि ये जो पूरे पेड़ है ये वीक हो रहे हैं, तो वहाँ के जो साइट इंजीनियर है उसकी जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए। गार्डन का अधिकारी है उसकी ना जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, बल्कि ना 7 लाख रुपए दे के बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा।
0: राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य भर में सड़क किनारे लगे सभी पेड़ों का ऑडिट किया जाना चाहिए। बीएमसी की रिपोर्ट पर मेयर की आलोचना का समर्थन करते हुए विपक्ष के नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा कि सिर्फ असहमति जताना काफी नहीं है। पेडनेकर ने कहा कि मेयर को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। वहीं बीएमसी में शिवसेना के ग्रुप लीडर अमेक होले ने कहा कि चेंबूर हादसे की रिपोर्ट अभी पेश नहीं की गई है, लेकिन पता नहीं कि जानकारी बाहर कैसे आई। उन्होंने भी पेड़ गिरने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
3: जो जो ऑफिसर्स के नीचे से ये पूरा कंप्लेंट जो वो झाड़ के बारे में गया है उनकी इंक्वायरी होके उस पे ऊपर जो कुछ निर्णय आ सकता है वो महानगर पालिका ने देना चाहिए।
0: वहीं विरार में पानी भरे गड्ढे मौत का जाल बनते जा रहे हैं। ऐसे गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। विरार में बारिश भले थम गई, लेकिन बारिश के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। विरार पश्चिम में जकात नाका के पास सड़क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ प्रवीण नालावड़े, पालघर आज तक।
4: पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त बगावत की आग लगी हुई है और इस आग की तपिश इस्लामाबाद और लाहौर तक महसूस की जा रही है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से लोग इस वक्त मुजफ्फराबाद कूच के लिए निकल रहे हैं। क्या दिन और क्या रात, लोगों का ये मार्च लगातार जारी है और इन प्रदर्शनकारियों पर मुनीर की फौज का जोर जबरदस्ती भी लगातार जारी है। निहत्ते प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है, जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है।
5: क्या पीओके इस बार पाकिस्तान के कब्जे से निकल जाए? पीओके में बुलंद हुई आजादी की आवाज, अब क्या करेंगे मुनीर और शहबाज?
6: ये जो दहशत करती है, ये जो गुंडा करती है, ये जो अपराध करती है, ये जो शल्लिंग बल्लिंग है।
5: पीओके की पूरी आवाम सड़कों पर आ गई, सबसे बड़ी बगावत हो गई। आटे बिजली और हक की लड़ाई पाकिस्तान को तोड़ने पर है।
7: मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम दहशत गर्द होते तो ये लाखों के मजमे में लोग और लड़कियां, ये खवातीन अपने गोद वाले बच्चों को इधर लेके आती, ये कोई दहशत गर्द है, आके प्लीज चेक कर दिया जाए।
5: क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या औरत और क्या मर्द, पूरा का पूरा पीओके सड़कों पर उतरा हुआ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट से उठती ये आवाज लाहौर और इस्लामाबाद को कपा रही। पीओके की यह बगावत बता रही कि अब बंदूक की जोर पर चलने वाली मुनीर की फौज के खिलाफ लोग खड़े हो गए। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन ने आसिफ मुनीर की चूले हिला दी, वो पीओके के लोगों पर फायरिंग करवा रहा है। पाकिस्तान की फौज और रेंजर निर्दोषों की जान ले रहे हैं, लेकिन लोगों के इस बगावत में कोई कमी नहीं आई। पिछले दो हफ्तों से पीओके में हुए इन प्रदर्शनों में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई। मुजफ्फराबाद, रावलपुर और मीरपुर समेत बहुत से इलाकों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार किया है। इन्हीं की नदियों के पानी से बिजली बनाकर लाहौर और पंजाब में बिजली दी जाती है। पीओके वालों को राशन के लिए भी तरसाया जाता है। इन्हीं मुद्दों के खिलाफ पिछले 4 साल से पीओके सुलगा हुआ है, लेकिन मौजूदा विवाद चुनाव से जुड़ा हुआ है। 27 जुलाई को पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान होना है। पीओके की असेंबली में 12 सीटें बाहर से आए हुए लोगों के नाम पर आरक्षित हैं। आरोप ये है कि पाकिस्तान की सरकार इन 12 सीटों पर अपने लोगों को बिठा देती है और इन 12 सीटों के द्वारा ही पीओके में पावर कंट्रोल होता है। इसीलिए अब ये डिमांड है कि ये 12 सीटें खत्म करके इन पर पीओके के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। प्रदर्शन की कमान संभाली है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी JAC ने, और इस कमेटी में शामिल लोग पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर रहे हैं। पूरे 78 साल से इस्लामाबाद जिस झूठ की काली कमाई को खा रहा था, जिस पीओके को वो दुनिया के सामने आजाद कश्मीर का पाखंडी लेबल लगाकर बेच रहा था, आज उस 78 साल पुराने प्रोपेगेंडा के परखच्चे उड़ चुके हैं।
8: मौजूद है और उनकी आजादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर कब्जा है, ये एक मुतनाजा इलाका है। जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुतालिक जो बात करने का इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है, वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है, और इसके हम अपना हक महफूज रखते हैं। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएं बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी, और फतह से पहले हम सारे मारे जाए, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब ये की जंग खत्म।
5: रावलकोट के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में 80,000 से ज्यादा लोगों का सैलाब और मंच पर खड़े ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान। पीओके के लोग कह रहे हैं कि पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ये सीधी सीधी चुनौती मुनीर को है। मुनीर की भारी भरकम फौज और उनकी गोलियां भी बगावत की आग को ठंडी नहीं कर पा रही। जब किसी अवाम के सब्र का बांध टूटता है तो बड़े बड़े तानाशाहों के तख्तो ताज इतिहास के कूड़ेदान में बह जाते हैं।
8: और हुक्मरानों से हम कहते हैं, कि ना तो लाल से काम नहीं चलेगा, एक आता है कहता है फलाह नहीं मान रहा, दूसरा आता है कहता है फलाह नहीं मान रहा, हमने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ। रियासत के शहरी है, रियासत अवाम से है और रियासत अवाम से है और अवाम ही रियासत है, सुपीरियर रियासत अवाम है, अवाम ताकत है, अवाम की बात मानी जाएगी और अपनी होगी, अवाम की बात मानी जाएगी और अपनी होगी।
5: इस बार के मार्च की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें स्थानीय महिलाएं और स्कूली बच्चों ने रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लिया है। सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियोस में महिलाएं और बच्चों के हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों, भारी टैक्स और आटे बिजली की महंगाई के खिलाफ नारे लगाते हुए मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ ही पीओके में आजादी की मांग को लेकर चल रही बगावत में अब वहां का बच्चा बच्चा शामिल है।
9: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मेरा नाम मारूख और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाएं। एक्शन कमेटी ने ऐसा क्या गलत किया? वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज उठा रहे और वो क्या कह रहे हैं, खबरों में कह रहे हैं और धरने याद तक रेजर्स भी कह रहे हैं कि अगर जो लड़के हो, जो बच्चे एक्शन कमेटी में आए हुए हैं, अगर वो पीछे ना गए उनके पेफॉर्म्स नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शादी कार्ड नहीं मानेंगे। ये पेफॉर्म है हमारे, अगर हमारे पेफॉर्म नहीं माने जाएंगे, जाए आप लोग के पेफॉर्म अपनी मर्जी से जिया, मैं आपके पेफॉर्म की भी जरूरत नहीं है। और मेरी आप सब पाकिस्तानी आवाम से गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े हो, हमें हक के लिए आवाज उठा रहे, क्यों आप लोग पीछे खड़े, हमारे साथ अल्लाह खड़ा है, प्लीज हमारा साथ दें।
5: पीओके में भड़की आजादी की इस आग पर अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। भारत ने दो टूक कह दिया कि पीओके में जारी ये महाविद्रोह पाकिस्तान के दशकों पुराने शोषण, बुनियादी अधिकारों के हनन और प्रशासनिक जुल्म का नतीजा है।
10: देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीज़ों को रोका गया है, इंटरनेट ब्लैकआउट को लागू किया गया है और निहत्थे नागरिकों पर के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घोर दुर्व्यवहारों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराएगी।
5: ये उबाल बता रहा है कि पीओके की फॉल्ट लाइन एक्टिव हो चुकी है। पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर के नाम पर जो गुब्बारा फुलाया था, उसकी पूरी दुनिया के सामने हवा निकल चुकी है। प्रणव उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कैबिनेट और संगठन में हेरफेर में बदलाव की खबरों के बीच प्रधानमंत्री आवास पर हुई मीटिंग, करीब दो घंटे तक चले मंथन में अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष रहे मौजूद। पंचायत आज तक के मंच पर दावे अपने अपने, सीएम योगी बोले प्रचंड बहुमत से बनाएंगे जीत की हैट्रिक, विपक्ष का दावा जनता को बीजेपी पर नहीं है भरोसा। मदन मित्रा के भी बागी होने के बाद बीजेपी पर भड़की ममता, कहा इनके इशारों पर हमारे नेताओं पर दबाव लेकिन विचारधारा से हमारा कोई समझौता नहीं। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च, बीटा वर्जन में रेल टिकट बुकिंग होगी सुपरफास्ट, नई डिजाइन और फीचर्स का अनुभव ले सकेंगे लोग। और पीओजेके में पाकिस्तान को खुला चैलेंज, आंदोलनकारी नेता मान खान शहबाज मुनीर को ललकारते हुए नजर आए, कहा ये कब्जे वाला इलाका, रावलकोट में उमड़ी भीड़। आज तक पंचायत में जब सियासी दिग्गजों का मेला लगा तो एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे की गूंज सुनाई दी, जिसने साफ कर दिया कि 2027 के चुनावों में यह सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है।
1: आज तक पंचायत का मंच सजा तो एक बार फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की गूंज सुनाई दी।
2: जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास किए, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में, उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है, वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं।
1: विपक्ष ने साफ किया कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर ही सियासी मैदान पर उतरने वाले हैं।
3: चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा, हम मुद्दा बनावें या ना बनावें,

0: जो साधारण व्यक्ति है वो रोज पूछता है, बाबू अयोध्या में मंदिर से कैसे चोरी हो गया, ये लोग क्यों चुरा ले गए मामला। वो हमको नहीं चोर बताते हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं बताते हैं, वो उन्हीं को बताते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का जनाधार जनता में बढ़ा और इनका जनाधार इस चोरी से कम हुआ है।
1: चढ़ावा चोरी पे क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, चंदा चोरी पर क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, इनके लोग शामिल हैं उसमें। भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम के नाम पर ये जाएंगे, क्योंकि जो लोग आज उसमें हैं, छोटे छोटे लोगों को तो जेल भेज दिया आपने, छोटे लोगों को भेज दिया, टिल्लू यादव कौन कौन और किसको किसको भेज दिया आपने, मिश्रा जी को। अरे भैया चंपत राय बंसल कब जेल जाएंगे, योगी जी अनिल मिश्रा कब जाएंगे, नीपेंद्र मिश्रा के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, गोविंद गिरी पर कब कार्रवाई होगी, गोपाल राव पर कब कार्रवाई होगी, ये प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। और निश्चित तौर से आज ये जो आज गांव गांव में चर्चा है कि चंदा चोरी तो अशोक सिंगल के समय हुआ, अब चढ़ावा चोरी हो रहा है। जो माताएं बने अपने आंचल में पैसा बांध कर जाती है, उस आंचल का पैसा इन्होंने छीन लिया, इसका जवाब चुनाव में कैसे दोगे।
2: उधर योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर राम मंदिर पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं।
3: ये पाप हुआ है, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि एक संदेशा जाए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कि इस देश में 2026 में ये हुआ था अयोध्या मंदिर में, तब ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिला था, तब उन लोग कांपे, ताकि कोई आगे ये गंदा पाप, ये घिनौना, ये घृणित अपराध ना कर पाए।
0: हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए, सारे चोरों को जेल भेज दिया, सारे पॉकेट मारों को जेल भेज दिया, ते वहाँ कहाँ पैदा हो गए, अयोध्या में कैसे पैदा हो गए, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी।
2: बहरहाल यूपी में 2027 की लड़ाई में राम मंदिर बड़ा मुद्दा होने वाला है। जिस राम मंदिर ने बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, वहीं चढ़ावा चोरी के कलंक को विपक्ष किसी भी कीमत पे छोड़ता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
4: राम मंदिर बहुत ही जल्द आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक फाइनल रिपोर्ट में टिन्नू यादव के लिए और भी खुलासे हैं।

0: राम मंदिर चढ़ावे की जिन्होंने चोरी की है अब उनका हिसाब जल्दी ही होने वाला है। एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट लगभग तैयार है और सूत्रों के मुताबिक इसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो मंदिर प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जांच में टिन्नू यादव की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आई है। टिन्नू यादव की मंदिर के प्रबंधन और संवेदनशील कामकाज में गहरी पैठ थी। दानपात्र यानी हुंडियों की चाबियां भी उसके पास रहती थी। चोरी की सबसे बड़ी वजह भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताएं रही। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कमजोर किए जाने से चोरी की गुंजाइश बनी। चंपत राय को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई है। चंपत राय को लापरवाही और निगरानी में नाकामी के लिए जिम्मेदार माना गया है। हालांकि आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका पर एसआईटी ने कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है क्योंकि पुलिस की जांच अभी जारी है। वहीं एसओपी में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया की अनियमितताओं के लिए अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उधर राम मंदिर के सीईओ पद के लिए आवेदन करने वालों की होड़ लगी है। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए हजारों आवेदन आ चुके हैं। आवेदकों में सबसे बड़ी संख्या सेवानिवृत्त नौकरशाहों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बताई जा रही है। बहरहाल अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
1: संसद के आगामी सत्र से पहले परिसीमन को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। इसी बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनकी पार्टी परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी।

0: जी मी रिपीट करती है, कंसिडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड।
1: इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि एनसीपी शरद चंद्र पवार महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों के पक्ष में खड़ी है। अगर शरद पवार की पार्टी की ताकत देखी जाए तो लोकसभा में 8 सांसद हैं, राज्यसभा में 3 सांसद हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधायक हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद में 3 MLC हैं। सुप्रिया सुले के ऐलान के बाद परसीमन जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष के भीतर एक अलग राजनीतिक संदेश जाता दिखाई दे रहा है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी CM कह रहे हैं कि ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें बिल का समर्थन करना पड़ रहा है, वरना विरोध करने पर TMC जैसा हाल होना तय है।
2: उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए वो अगर करते हैं समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को।
1: परसीमन का मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। दक्षिण भारत के कई दल आबादी के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण को लेकर अपनी आशंकाएं जता चुके हैं। ऐसे माहौल में शरद पवार गुट का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभाव रखने वाली इस पार्टी का ये रुख संसद के भीतर होने वाली बहस को नई दिशा दे सकता है। आज तक ब्यूरो।
3: पंजाब कांग्रेस में भी सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसने आलाकमान की टेंशन को बढ़ा दिया है। चन्नी गुट की बगावत के बीच केंद्रीय नेतृत्व राजा वडिंग को हटाने के मूड में नहीं दिख रहा।

0: महाराष्ट्र की सियासत में इंडिया गठबंधन को फिर से करारा झटका लगा है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के भीतर एकजुटता नहीं दिख रही है, क्योंकि शरद पवार वाली एनसीपी ने खुला ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का शरद पवार की एनसीपी समर्थन करेगी।
1: वी विल कंसीडर प्रोवाइडेड कंसीडर इंग्रेज

0: चुनाव से पहले एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में बगावत की चिंगारी सुलगी तो आग बुझाने की जिम्मेदारी दिल्ली में आलाकमान तक पहुंच गई। पंजाब की रिपोर्ट लेकर प्रभारी भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने अपनी रिपोर्ट संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है और उसमें भी वर्डिंग को ही जिम्मेदारी जारी रखने की सिफारिश की गई है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल राजा अमरिंदर सिंह वर्डिंग के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक संगठन के भीतर भी वर्डिंग की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। 29 जिला अध्यक्षों में से 25 उनके समर्थन में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 सांसद और 8 से 9 विधायक भी उनके साथ खड़े हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में करीब 55 हलका प्रमुख बताए जा रहे हैं, जबकि 12 हलका प्रमुख ऐसे हैं जो दोनों नेताओं के साथ तालमेल बनाए हुए हैं।
1: क्या नेतृत्व परिवर्तन की
2: कोई भाई ये नीचे रख ले यार।
3: मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं?
1: अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश?
3: मैं पहले भी बोल चुका आपसे,
4: दोबारा
3: गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है।
0: अब सवाल यह है कि पिछली रिपोर्ट के बाद भी राजा वर्डिंग को न हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद चन्नी गुट ने बैठक की थी। ऐसे में अगर राजा वर्डिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रहने का फैसला जारी रहता है तो फिर चन्नी अब आगे क्या फैसला करेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस को पंजाब से सत्ता खोनी पड़ी थी। वहीं बीजेपी भी चन्नी को ऑफर दे चुकी है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
5: दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार स्कूल क्रांति के दावे करती है, लेकिन पता चला कि बिजली का बिल नहीं भरने से लुधियाना के सरकारी स्कूल की ही बिजली काट दी गई। बच्चे अंधेरे में पढ़ते रहे। इस स्कूल में एक ही हॉल में 5वीं तक की क्लास चलती है।
6: मैं क्लास जावड़िया, मैं कभी पूछने लग गया मैं की बने बने। कोई कोई कहना जी डॉक्टर बनूंगा, कोई कहना इंजीनियर, एक कहना मुख्यमंत्री बनूंगा जी मैं। उसके बाद पढ़ेगा पहला, फिर लोगों की सेवा च लगेगा, फिर सेवा तेरी प्रवान होगी लोगों के दिलों च, फिर लोग तेन कहे तू इलेक्शन लड़, तू तेन हार नहीं देंगे, फिर तू इलेक्शन लड़ेगा, फिर तेरी पार्टी तेन मुख्यमंत्री की सहु चुकेगा। मैं थोड़ा जहा ज्यादा लंबा नहीं प्रोसैस? कहना कोई गल नहीं जी, उन्होंने चर तुम है। मैं यार कॉन्फिडेंस देख बच्चे का।
7: काश पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थोड़ा सा वक्त निकालकर लुधियाना के सरकारी स्कूल तक का दौरा कर लेते तो फिर बच्चों के कॉन्फिडेंस को किस तरह से हिला दिया जा रहा है उन्हें पता चल जाता। मुख्यमंत्री और पंजाब की सरकार को कि स्कूल बिना बिजली के कैसे चलते हैं, जहां पंखे हैं लेकिन चल नहीं पाते। वजह समराला चौक के सरकारी प्राइमरी स्कूल की बिजली का कट जाना है, क्योंकि बिजली का बिल जमा नहीं था। सोचिए स्कूल की हालत है, बाकी का क्या होगा। जहाँ आज तक की टीम पहुंची, पता चला अब 2 दिन बाद जाकर स्कूल की बिजली वापस चालू कर दी गई। लेकिन लुधियाना के सरकारी प्राइमरी स्कूल का हाल देखिए, सॉरी हॉल देखिए, जहाँ एक हॉल के भीतर ये एक क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, ये चौथी, ये पांचवी, और इसी हॉल के भीतर पता चला नर्सरी से 5वीं तक की कुल 8 क्लास एक साथ चलाई जाती है, जहाँ रसोई घर भी है और बाथरूम। जहाँ मुस्कुराते हुए भीतर मुख्यमंत्री भगवंत मान का पोस्टर भी लगा है। लेकिन काश मुख्यमंत्री आकर यहाँ का हाल और हॉल दोनों देख पाते।
8: लाखों करोड़ों रुपए का फंड जो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च किया जा रहा है। इस एजुकेशन सिस्टम का असली चेहरा क्या है, आज हम आपको दिखाते हैं। लुधियाना के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में हम मौजूद है, जहाँ पे एक ही हॉल के अंदर नर्सरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों की सभी क्लासें एक ही हॉल के अंदर लगाई जा रही हैं।
9: इन्हां नूं असी सुखाम माहौल नहीं दे सकदे जिहड़ा मिलना चाहिए वा। मेन दिक्कत सानू बिल्डिंग दी हैगी आ, ते सरकार कोलों असी यही मंग करांगे कि सानू जल्दी तो जल्दी एक बिल्डिंग प्रोवाइड होवे।
10: आपकी तरफ से ये ध्यान में आया मेरे, तो इस पर हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा ये भी जानने की जरूरत है।
7: सवाल है कि फाइलों में स्कूल शिक्षा में नंबर 1 खुद को कहने वाले पंजाब की हकीकत पता नहीं दिखती नहीं है या फिर देखी ही नहीं जाती है।
5: मुंबई के चेंबूर इलाके में पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत के मामले में बीएमसी ने जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। हादसे के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी है। साथ ही साथ साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है। सवाल अब यह है कि क्या मुंबई वालों की जान की कीमत सिर्फ 7 लाख रुपए हैं।

0: अब की बार मुंबई में मॉनसून हादसों की बाढ़ लेकर आया। बारिश से हुए अलग अलग हादसों में 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में एक शख्स की खुले मेनहोल में गिरने से मौत हो चुकी है। बारिश से हुए हादसों की चर्चा विधानसभा तक में हुई। स्पीकर राहुल नार्वेकर से लेकर बीजेपी विधायक अमित साटम तक ने लानत मलानत और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही, लेकिन नतीजा क्या निकला? सबसे दर्दनाक मौत चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से हुई थी। इस हादसे में 11 साल के छात्र विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी, जबकि कई बच्चे घायल हुए थे।
1: मुंबई के चेंबूर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर दोपहर से ही बारिश हो रही थी और स्कूल से भरी हुई बस बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी, तभी यहां पर एक पेड़ था जो उस बस पर गिर गया। इस हादसे में 10 बच्चे घायल हुए हैं, तो वहीं 4 बच्चों को इलाज के लिए जैन हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, तो वहीं एक 11 वर्षीय बच्चे की इसमें मृत्यु हो गई है। काफी दर्दनाक हादसा था, बारिश हो रही थी, कई जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई थी। ये चेंबूर भी उन्हीं इलाकों में से एक था जहां पर पेड़ गिरा था, यही वो पेड़ था जो गिरा। फिलहाल बस को यहां से हटा दिया गया है, लेकिन अब इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। बहुत ही विशाल ये पेड़ था जिसे काट के एक तरफ किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं अभी भी इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। प्रशासन का राहत कार्य जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका था, लेकिन इस घटना के लिए जो दोषी है उन पर भी कार्रवाई की मांग जो पूर्व एमपी हैं यहाँ के राहुल चौहान उनके द्वारा की गई है।
0: लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि बीएमसी की जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई। इस दुखद घटना की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी। साथ ही साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने भी नाराजगी जताते हुए एक न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन पोस्ट करते हुए लिखा, विहान की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? बीएमसी का कहना है कि कोई नहीं। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने भी चेंबूर हादसे की जांच रिपोर्ट पर हैरानी जताते हुए कहा कि खानापूर्ति वाली कार्रवाई मंजूर नहीं है।
2: उसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा डे वन से एक ही स्टेटमेंट था, ये जो रोड बने हैं ये मुंबई कर के लिए बने। मुंबई कर बहुत खुश है क्योंकि आज की तारीख में बारिश में पॉटहोल्स नहीं दिख रहे जहाँ पे रोड बने हैं, साइड ड्रेन भी बने हैं, लेकिन ये काम ये किसका था? मुंबई महानगर पालिका और उसके यहाँ पे जो निश्चित किए गए साइट इंजीनियर का काम था और वहाँ पे गार्डन डिपार्टमेंट का काम था, तो ये संयुक्त उन्होंने मिलके वो काम करना चाहिए था। वहाँ पे जो विजिट मैंने करने के बाद भी मैंने कहा था कि ये जो पूरे पेड़ है ये वीक हो रहे हैं, तो वहाँ के जो साइट इंजीनियर है उसकी जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, गार्डन का अधिकारी है उसकी ना जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, बल्कि ना 7 लाख रुपए दे के बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा।
0: राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य भर में सड़क किनारे लगे सभी पेड़ों का ऑडिट किया जाना चाहिए। बीएमसी की रिपोर्ट पर मेयर की आलोचना का समर्थन करते हुए विपक्ष के नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा कि सिर्फ असहमति जताना काफी नहीं है। पेडनेकर ने कहा कि मेयर को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। वहीं बीएमसी में शिवसेना के ग्रुप लीडर अमेक होले ने कहा कि चेंबूर हादसे की रिपोर्ट अभी पेश नहीं की गई है, लेकिन पता नहीं कि जानकारी बाहर कैसे आई। उन्होंने भी पेड़ गिरने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
3: जो जो ऑफिसर्स के नीचे से ये पूरा कंप्लेन जो झाड़ के बारे में गया है उनकी इंक्वायरी होके उसपे ऊपर जो कुछ निर्णय आ सकता है वो महानगर पालिका ने देना चाहिए।
0: वहीं विरार में पानी भरे गड्ढे मौत का जाल बनते जा रहे हैं। ऐसे गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। विरार में बारिश भले थम गई, लेकिन बारिश के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। विरार पश्चिम में जकात नाका के पास सड़क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ प्रवीण नालावड़े, पालघर आज तक।
4: पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त बगावत की आग लगी हुई है और इस आग की तपिश इस्लामाबाद और लाहौर तक महसूस की जा रही है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से लोग इस वक्त मुजफ्फराबाद कूच के लिए निकल रहे हैं। क्या दिन और क्या रात, लोगों का ये मार्च लगातार जारी है और इन प्रदर्शनकारियों पर मुनीर की फौज का जोर जबरदस्ती भी लगातार जारी है। निहत्ते प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है, जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है।
5: क्या पीओके इस बार पाकिस्तान के कब्जे से निकल जाए? पीओके में बुलंद हुई आजादी की आवाज, अब क्या करेंगे मुनीर और शहबाज?
6: ये जो दहशत करती है,
5: पीओके की पूरी आवाम सड़कों पर आ गई, सबसे बड़ी बगावत हो गई, आटे बिजली और हक की लड़ाई पाकिस्तान को तोड़ने पर।
7: कहना चाहूंगी कि अगर हम दहशत करते थे तो ये लाखों के मजमे में लोग और लड़कियां, ये खवातीन अपने गोद वाले बच्चों को इधर लेके आती, ये कोई दहशत करते आके प्लीज चेक कर दिया जाए।
5: क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या औरत और क्या मर्द, पूरा का पूरा पीओके सड़कों पर उतरा हुआ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलाकोट से उठती ये आवाजें लाहौर और इस्लामाबाद को कपा रही है। पीओके की यह बगावत बता रही है कि अब बंदूक की जोर पर चलने वाली मुनीर की फौज के खिलाफ लोग खड़े हो गए। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन ने आसिफ मुनीर की चूले हिला दी, वो पीओके के लोगों पर फायरिंग करवा रहा है। पाकिस्तान की फौज और रेंजर निर्दोषों की जान ले रहे हैं, लेकिन लोगों के इस बगावत में कोई कमी नहीं आई। पिछले दो हफ्तों से पीओके में हुए इन प्रदर्शनों में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई। मुजफ्फराबाद, रावलापुर और मीरपुर समेत बहुत से इलाकों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार किया है। इन्हीं की नदियों के पानी से बिजली बनाकर लाहौर और पंजाब में बिजली दी जाती है। पीओके वालों को राशन के लिए भी तरसाया जाता है। इन्हीं मुद्दों के खिलाफ पिछले 4 साल से पीओके सुलगा हुआ है, लेकिन मौजूदा विवाद चुनाव से जुड़ा हुआ है। 27 जुलाई को पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान होना है। पीओके की असेंबली में 12 सीटें बाहर से आए हुए लोगों के नाम पर आरक्षित है। आरोप ये है कि पाकिस्तान की सरकार इन 12 सीटों पर अपने लोगों को बिठा देती है और इन 12 सीटों के द्वारा ही पीओके में पावर कंट्रोल होता है। इसीलिए अब ये डिमांड है कि ये 12 सीटें खत्म करके इन पर पीओके के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। प्रदर्शन की कमान संभाली है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी JAC ने, और इस कमेटी में शामिल लोग पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर रहे हैं। पूरे 78 साल से इस्लामाबाद जिस झूठ की काली कमाई को खा रहा था, जिस पीओके को वो दुनिया के सामने आजाद कश्मीर का पाखंडी लेवल लगाकर बेच रहा था, आज उस 78 साल पुराने प्रोपेगेंडा के परखच्चे उड़ चुके हैं।
8: मौजूद है और उनकी आजादियों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका है, इस पर कब्जा है, इस पर सभी कब्जा है, ये एक मुतनाजा इलाका है। जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुतालिक जो बात करने का अख्तियार है वो किसी के पास नहीं है, वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है, और इस पे हम अपना हाथ महफूज रखते हैं। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएं बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी, और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म।
5: रावलाकोट के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में 80,000 से ज्यादा लोगों का सैलाब और मंच पर खड़े हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान। पीओके के लोग कह रहे हैं कि पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ये सीधी सीधी चुनौती मुनीर को है। मुनीर की भारी भरकम फौज और उनकी गोलियां भी बगावत की आग को ठंडी नहीं कर पा रही। जब किसी अवाम के सब्र का बांध टूटता है तो बड़े बड़े तानाशाहों के तख्तो ताज इतिहास के कूड़ेदान में बह जाते हैं।
8: और हुक्मरानों से हम कहते हैं, कि ना तो लाल से काम नहीं चलेगा, एक आता है कहता है फलाह नहीं मान रहा, दूसरा आता है कहता है फलाह नहीं मान रहा, हमने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ। रियासत के शहरी है, रियासत आवाम से है और रियासत आवाम से है और आवाम ही रियासत है, सुपीरियर रियासत आवाम है, आवाम ताकत है और आवाम की बात मानी जाएगी और अपनी होगी, आवाम की बात मानी जाएगी और अपनी होगी।
5: इस बार के मार्च की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें स्थानीय महिलाएं और स्कूली बच्चों ने रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लिया है। सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियोस में महिलाएं और बच्चों के हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों, भारी टैक्स और आटे बिजली की महंगाई के खिलाफ नारे लगाते हुए मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ ही पीओके में आजादी की मांग को लेकर चल रही बगावत में अब वहां का बच्चा बच्चा शामिल है।
9: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम मारूख और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाएं, एक्टिविटी ने ऐसा क्या गलत किया, वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज उठाए और वो क्या कह रहे हैं खबरों में कह रहे हैं और धरने यहाँ तक रिलेटर्स भी कह रहे हैं कि अगर जो लड़के जो बच्चे एक्शन कमेटी में आए हुए अगर वो पीछे ना गए उनके पेफॉर्म्स नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शादी कार्ड नहीं मानेंगे, ये पेफॉर्म है हमारे, अगर हमारे पेफॉर्म नहीं माने जाएंगे चाहे आप लोग के पेफॉर्म अपनी मर्जी से जिया, मैं आपको आपके पेफॉर्म्स की भी जरूरत नहीं है और मेरी आप सब पाकिस्तानी आवाम से गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े हो, हमें हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्यों आप लोग पीछे खड़े, हमारे साथ अल्लाह खड़े है, प्लीज हमारा साथ दें।
5: पीओके में भड़की आजादी की इस आग पर अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। भारत ने दो टूक कह दिया कि पीओके में जारी ये महाविद्रोह पाकिस्तान के दशकों पुराने शोषण, बुनियादी अधिकारों के हनन और प्रशासनिक जुल्म का नतीजा है।
10: देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीज़ों को रोका गया है, इंटरनेट ब्लैकआउट को लागू किया गया है और निहत्थे नागरिकों पर के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घोर दुर्व्यवहारों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराएगी।
5: उबाल बता रहा है कि पीओके की फॉल्ट लाइन एक्टिव हो चुकी है। पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर के नाम पर जो गुब्बारा फुलाया था उसकी पूरी दुनिया के सामने हवा निकल चुकी है। प्रणव उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कैबिनेट और संगठन में हेरफेर में बदलाव की खबरों के बीच प्रधानमंत्री आवास पर हुई मीटिंग करीब दो घंटे तक चले मंथन में अमित शाह नितिन नवीन और बीएल संतोष रहे मौजूद। पंचायत आज तक के मंच पर दावे अपने अपने सीएम योगी बोले प्रचंड बहुमत से बनाएंगे जीत की हैट्रिक विपक्ष का दावा जनता को बीजेपी पर नहीं है भरोसा। मदन मित्रा के भी बागी होने के बाद बीजेपी पर भड़की ममता कहा इनके इशारों पर हमारे नेताओं पर दबाव लेकिन विचारधारा से हमारा कोई समझौता नहीं। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च बीटा वर्जन में रेल टिकट बुकिंग होगी सुपरफास्ट नई डिजाइन और फीचर्स का अनुभव ले सकेंगे लोग। जेके में पाकिस्तान को खुला चैलेंज आंदोलनकारी नेता मान खान शहबाज मुनीर को ललकारते हुए नजर आए कहा ये कब्जे वाला इलाका रावलकोट में उमड़ी भीड़। आज तक पंचायत में जब सियासी दिग्गजों का मेला लगा तो एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे की गूंज सुनाई दी जिसने साफ कर दिया कि 2027 के चुनावों में यह सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है।
1: आज तक पंचायत का मंच सजा तो एक बार फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की गूंज सुनाई दी।
2: जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास किए अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं।
1: विपक्ष ने साफ किया कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर ही सियासी मैदान पर उतरने वाले हैं।
3: चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा हम मुद्दा बनावे या न बनावे जो साधारण जनमत है जो साधारण व्यक्ति है वो रोज पूछता है बाबू अयोध्या में मंदिर से कैसे चोरी हो गया ये लोग क्यों चुरा ले गए मामला वो हमको नहीं चोर बताते हैं समाजवादी पार्टी को नहीं बताते हैं वो उन्हीं को बताते हैं। इसने समाजवादी पार्टी का जनाधार जनता में बढ़ा और इनका जनाधार इस चोरी से कम हुआ है।
4: चढ़ावा चोरी पे क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी पर क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी इनके लोग शामिल हैं उसमें भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम के नाम पर ही ये जाएंगे क्योंकि जो लोग आज उसमें हैं छोटे छोटे लोगों को तो जेल भेज दिया आपने छोटे लोगों को भेज दिया टिल्लू यादव कौन कौन और किसको किसको भेज दिया आपने मिश्रा जी को अरे भैया चंपत राय बंसल कब जेल जाएंगे योगी जी अनिल मिश्रा कब जाएंगे निपेंद्र मिश्रा के खिलाफ कब कार्रवाई होगी जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे गोविंद गिरी पर कब कार्रवाई होगी गोपाल राव पर कब कार्रवाई होगी ये प्रदेश की जनता देख रही है देश की जनता देख रही है और निश्चित तौर से आज ये जो आज गांव गांव में चर्चा है कि चंदा चोरी तो अशोक सिंघल के समय हुआ अब चढ़ावा चोरी हो रहा है जो माताएं बने अपने आंचल में पैसा बांध कर जाती है उस आंचल का पैसा इन्होंने छीन लिया इसका जवाब चुनाव में कैसे दोगे।
1: उधर योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर राम मंदिर पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं
5: ये पाप हुआ है उन लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए ताकि एक संदेशा जाए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कि इस देश में 2026 में ये हुआ था अयोध्या मंदिर में तब ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिला था तब उन लोग कांपे ताकि कोई आगे ये गंदा पाप ये घिनौना ये घृणित अपराध ना कर पाए।
3: हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए सारे चोरों को जेल भेज दिया सारे पॉकेट मारों को जेल भेज दिया ते वहाँ कहाँ पैदा हो गए अयोध्या में कैसे पैदा हो गए ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी।
1: बहरहाल यूपी में 2027 की लड़ाई में राम मंदिर बड़ा मुद्दा होने वाला है जिस राम मंदिर ने बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, वहीं चढ़ावा चोरी के कलंक को विपक्ष किसी भी कीमत पे छोड़ता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एक्शन भी फुल है। एक ओर जहां ट्रस्ट के सीईओ के लिए आवेदनों की बाढ़ आई हुई है, वहीं फाइनल एसआईटी रिपोर्ट बहुत ही जल्द आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक फाइनल रिपोर्ट में टिन्नू यादव के लिए और भी खुलासे हैं।

0: राम मंदिर चढ़ावे की जिन्होंने चोरी की है अब उनका हिसाब जल्दी ही होने वाला है। एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट लगभग तैयार है और सूत्रों के मुताबिक इसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो मंदिर प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जांच में टिन्नू यादव की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आई है। टिन्नू यादव की मंदिर के प्रबंधन और संवेदनशील कामकाज में गहरी पैठ थी। दानपात्र यानी हुंडियों की चाबियां भी उसके पास रहती थी। चोरी की सबसे बड़ी वजह भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताएं रही। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कमजोर किए जाने से चोरी की गुंजाइश बनी। चंपत राय को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई है। चंपत राय को लापरवाही और निगरानी में नाकामी के लिए जिम्मेदार माना गया है। हालांकि आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका पर एसआईटी ने कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है क्योंकि पुलिस की जांच अभी जारी है। वहीं एसओपी में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया की अनियमितताओं के लिए अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उधर राम मंदिर के सीईओ पद के लिए आवेदन करने वालों की होड़ लगी है। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए हजारों आवेदन आ चुके हैं। आवेदकों में सबसे बड़ी संख्या सेवानिवृत्त नौकरशाहों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बताई जा रही है। बहरहाल अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
1: संसद के आगामी सत्र से पहले परिसीमन को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। इसी बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनकी पार्टी परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी।
2: महाराष्ट्र की सियासत में इंडिया गठबंधन को फिर से करारा झटका लगा है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के भीतर एकजुटता नहीं दिख रही है क्योंकि शरद पवार वाली एनसीपी ने खुला ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का शरद पवार की एनसीपी समर्थन करेगी।
3: वी विल कंसीडर प्रोवाइडेड कंसीडर, इंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसीडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल How will it be implemented?
2: इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि एनसीपी शरद चंद्र पवार महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों के पक्ष में खड़ी है। अगर शरद पवार की पार्टी की ताकत देखी जाए तो लोकसभा में 8 सांसद हैं, राज्यसभा में 3 सांसद हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधायक हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद में 3 एमएलसी हैं। सुप्रिया सुले के ऐलान के बाद परिसीमन जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष के भीतर एक अलग राजनीतिक संदेश जाता दिखाई दे रहा है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें बिल का समर्थन करना पड़ रहा है वरना विरोध करने पर टीएमसी जैसा हाल होना तय है।
4: उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए वो अगर करते हैं समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को।
2: परिसीमन का मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। दक्षिण भारत के कई दल आबादी के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण को लेकर अपनी आशंकाएं जता चुके हैं। ऐसे माहौल में शरद पवार गुट का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभाव रखने वाली इस पार्टी का ये रुख संसद के भीतर होने वाली बहस को नई दिशा दे सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार स्कूल क्रांति के दावे करती है लेकिन पता चला कि बिजली का बिल नहीं भरने से लुधियाना के सरकारी स्कूल की ही बिजली काट दी गई। बच्चे अंधेरे में पढ़ते रहे। इस स्कूल में एक ही हॉल में 5वीं तक की क्लास चलती है।
5: मैं क्लास जावड़िया, मैं कभी पूछने लग गया मैं की बने। कोई कहना जी डॉक्टर बनूंगा, कोई कहना इंजीनियर, एक कहना मुख्यमंत्री बनूंगा जी मैं। उसके बाद पढ़ेगा पहला, फिर लोगों की सेवा च लगेगा, फिर सेवा तेरी प्रवान होगी लोगों के दिलों च, फिर लोग तेन कहे तू इलेक्शन लड़, तेन हार नहीं देंगे, फिर तू इलेक्शन लड़ेगा, फिर तेरी पार्टी तेन मुख्यमंत्री वास्ते नाम डिकलेयर करूगी, फिर विधायक दल तेन फिर नेता चुनूंगा, तो फिर उस बाद तू मुख्यमंत्री की सहु चुकेगा। मैं क्या थोड़ा जहा ज्यादा लंबा नहीं प्रोसैस? कहना कोई गल नहीं जी, उन्होंने तुम है। मैं यार कॉन्फिडेंस देख बच्चे का।
6: काश पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थोड़ा सा वक्त निकालकर लुधियाना के सरकारी स्कूल तक का दौरा कर लेते तो फिर बच्चों के कॉन्फिडेंस को किस तरह से हिला दिया जा रहा है उन्हें पता चल जाता मुख्यमंत्री और पंजाब की सरकार को कि स्कूल बिना बिजली के कैसे चलते हैं, जहां पंखे हैं लेकिन चल नहीं पाते। वजह समराला चौक के सरकारी प्राइमरी स्कूल की बिजली का कट जाना है, क्योंकि बिजली का बिल जमा नहीं था। सोचिए स्कूल की हालत है, बाकी का क्या होगा। जहां आज तक की टीम पहुंची, पता चला अब दो दिन बाद जाकर स्कूल की बिजली वापस चालू कर दी गई। लेकिन लुधियाना के सरकारी प्राइमरी स्कूल का हाल देखिए, सॉरी हॉल देखिए, जहां एक हॉल के भीतर ये एक क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, ये चौथी, ये पांचवी, और इसी हॉल के भीतर पता चला नर्सरी से पांचवी तक की कुल 8 क्लास एक साथ चलाई जाती हैं, जहां रसोई घर भी है और बाथरूम। जहां मुस्कुराते हुए भीतर मुख्यमंत्री भगवंत मान का पोस्टर भी लगा है। लेकिन काश मुख्यमंत्री आकर यहां का हाल और हॉल दोनों देख पाते।
7: लाखों करोड़ों रुपए का फंड जो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च किया जा रहा है। इस एजुकेशन सिस्टम का असली चेहरा क्या है, आज हम आपको दिखाते हैं। लुधियाना के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में हम मौजूद हैं, जहां पे एक ही हॉल के अंदर नर्सरी से लेकर पांचवी तक के बच्चों की सभी क्लासें एक ही हॉल के अंदर लगाई जा रही हैं।
8: इन्हां नूं असीं सुखाम माहौल नहीं दे सकते जिहड़ा मिलना चाहिए वा। मेन दिक्कत सानू बिल्डिंग दी हैगी आ, ते सरकार कोलों असीं इही मंग करांगे कि सानू जल्दी तो जल्दी एक बिल्डिंग प्रोवाइड होवे।
9: आपकी तरफ से ये ध्यान में आया मेरे, तो इस पर हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा ये भी जानने की जरूरत है।
6: सवाल है कि फाइलों में स्कूल शिक्षा में नंबर वन खुद को कहने वाले पंजाब की हकीकत पता नहीं दिखती नहीं है या फिर देखी ही नहीं जाती है।
1: मुंबई के चेंबूर इलाके में पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत के मामले में बीएमसी ने जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। हादसे के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी है। साथ ही साथ साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है। सवाल अब यह है कि क्या मुंबई वालों की जान की कीमत सिर्फ 7 लाख रुपए हैं।

0: अब की बार मुंबई में मॉनसून हादसों की बाढ़ लेकर आया। बारिश से हुए अलग अलग हादसों में 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में एक शख्स की खुले मेनहोल में गिरने से मौत हो चुकी है। बारिश से हुए हादसों की चर्चा विधानसभा तक में हुई। स्पीकर राहुल नार्वेकर से लेकर बीजेपी विधायक अमित साटम तक ने लानत मलानत और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही, लेकिन नतीजा क्या निकला? सबसे दर्दनाक मौत चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से हुई थी। इस हादसे में 11 साल के छात्र विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी, जबकि कई बच्चे घायल हुए थे।
1: मुंबई के चेंबूर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर दोपहर से ही बारिश हो रही थी और स्कूल से भरी हुई बस बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी, तभी यहां पर एक पेड़ था जो उस बस पर गिर गया। इस हादसे में 10 बच्चे घायल हुए हैं, तो वहीं 4 बच्चों को इलाज के लिए जैन हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, तो वहीं एक 11 वर्षीय बच्चे की इसमें मृत्यु हो गई है। काफी दर्दनाक हादसा था, बारिश हो रही थी, कई जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई थी। ये चेंबूर भी उन्हीं इलाकों में से एक था जहां पर पेड़ गिरा था, यही वो पेड़ था जो गिरा। फिलहाल बस को यहां से हटा दिया गया है, लेकिन अब इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। बहुत ही विशाल ये पेड़ था जिसे काट के एक तरफ किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं अभी भी इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। प्रशासन का राहत कार्य जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका था, लेकिन इस घटना के लिए जो दोषी है उन पर भी कार्रवाई की मांग जो पूर्व MP हैं यहाँ के राहुल चौहान उनके द्वारा की गई है।
0: लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि BMC की जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई। इस दुखद घटना की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली BMC कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी। साथ ही साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। मुंबई BJP अध्यक्ष अमित साटम ने भी नाराजगी जताते हुए एक न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन पोस्ट करते हुए लिखा, विहान की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? BMC का कहना है कि कोई नहीं। मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने भी चेंबूर हादसे की जांच रिपोर्ट पर हैरानी जताते हुए कहा कि खानापूर्ति वाली कार्रवाई मंजूर नहीं है।
2: उसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा Day 1 से एक ही स्टेटमेंट था, ये जो रोड बने हैं ये मुंबई कर के लिए बने। मुंबई कर बहुत खुश है क्योंकि आज की तारीख में बारिश में पॉटहोल्स नहीं दिख रहे जहाँ पे रोड बने हैं, साइड ड्रेन भी बने हैं, लेकिन ये काम ये किसका था? मुंबई महानगर पालिका और उसके यहाँ पे जो निश्चित किए गए साइट इंजीनियर का काम था और वहाँ पे गार्डन डिपार्टमेंट का काम था, तो ये संयुक्त उन्होंने मिलके वो काम करना चाहिए था। वहाँ पे जो विजिट मैंने करने के बाद भी मैंने कहा था कि ये जो पूरे पेड़ है ये वीक हो रहे हैं, तो वहाँ के जो साइट इंजीनियर है उसकी जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, गार्डन का अधिकारी है उसकी ना जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, बल्कि ना 7 लाख रुपए दे के बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा।
0: राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य भर में सड़क किनारे लगे सभी पेड़ों का ऑडिट किया जाना चाहिए। BMC की रिपोर्ट पर मेयर की आलोचना का समर्थन करते हुए विपक्ष के नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा कि सिर्फ असहमति जताना काफी नहीं है। पेडनेकर ने कहा कि मेयर को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। वहीं BMC में शिवसेना के ग्रुप लीडर अमेघ होले ने कहा कि चेंबूर हादसे की रिपोर्ट अभी पेश नहीं की गई है, लेकिन पता नहीं कि जानकारी बाहर कैसे आई। उन्होंने भी पेड़ गिरने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
3: जो जो ऑफिसर्स के नीचे से ये पूरा कंप्लेन जो झाड़ के बारे में गया है, उनकी इंक्वायरी होके उसपे ऊपर जो कुछ निर्णय आ सकता है वो महानगर पालिका ने देना चाहिए।
0: वहीं विरार में पानी भरे गड्ढे मौत का जाल बनते जा रहे हैं। ऐसे गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। विरार में बारिश भले थम गई, लेकिन बारिश के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। विरार पश्चिम में जकात नाका के पास सड़क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। CCTV में कैद इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ प्रवीण नालावड़े, पालघर आज तक।
4: पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त बगावत की आग लगी हुई है और इस आग की तपिश इस्लामाबाद और लाहौर तक महसूस की जा रही है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से लोग इस वक्त मुजफ्फराबाद कूच के लिए निकल रहे हैं। क्या दिन और क्या रात, लोगों का ये मार्च लगातार जारी है और इन प्रदर्शनकारियों पर मुनीर की फौज का जोर जबरदस्ती भी लगातार जारी है। निहत्ते प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है, जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है।
5: क्या पीओके इस बार पाकिस्तान के कब्जे से निकल जाए? पीओके में बुलंद हुई आजादी की आवाज, अब क्या करेंगे मुनीर और शहबाज?
6: ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, ये जो गुंडा करती है, ये जो अफरा तफरी है, ये जो शल्लिंग बल्लिंग है।
5: पीओके की पूरी आवाम सड़कों पर आ गई, सबसे बड़ी बगावत हो गई। आटे बिजली और हक की लड़ाई पाकिस्तान को तोड़ने पर है।
7: कहना चाहूंगी कि अगर हम दहशत करते थे तो ये लाखों के मजमे में लोग और लड़कियां, ये खवातीन अपने गोद वाले बच्चों को इधर लेके आती, ये कोई दहशत करते आके प्लीज चेक कर दिया जाए।
5: क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या औरत और क्या मर्द, पूरा का पूरा पीओके सड़कों पर उतरा हुआ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट से उठती ये आवाजें लाहौर और इस्लामाबाद को कपा रही। पीओके की यह बगावत बता रही कि अब बंदूक की जोर पर चलने वाली मुनीर की फौज के खिलाफ लोग खड़े हो गए। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन ने आसिफ मुनीर की चूले हिला दी, वो पीओके के लोगों पर फायरिंग करवा रहा है। पाकिस्तान की फौज और रेंजर निर्दोषों की जान ले रहे हैं, लेकिन लोगों के इस बगावत में कोई कमी नहीं आई। पिछले दो हफ्तों से पीओके में हुए इन प्रदर्शनों में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई। मुजफ्फराबाद, रावलपुर और मीरपुर समेत बहुत से इलाकों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार किया है। इन्हीं की नदियों के पानी से बिजली बनाकर लाहौर और पंजाब में बिजली दी जाती है। पीओके वालों को राशन के लिए भी तरसाया जाता है। इन्हीं मुद्दों के खिलाफ पिछले 4 साल से पीओके सुलगा हुआ है, लेकिन मौजूदा विवाद चुनाव से जुड़ा हुआ है। 27 जुलाई को पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान होना है। पीओके की असेंबली में 12 सीटें बाहर से आए हुए लोगों के नाम पर आरक्षित हैं। आरोप ये है कि पाकिस्तान की सरकार इन 12 सीटों पर अपने लोगों को बिठा देती है और इन 12 सीटों के द्वारा ही पीओके में पावर कंट्रोल होता है। इसीलिए अब ये डिमांड है कि ये 12 सीटें खत्म करके इन पर पीओके के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। प्रदर्शन की कमान संभाली है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी JAC ने, और इस कमेटी में शामिल लोग पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर रहे हैं। पूरे 78 साल से इस्लामाबाद जिस झूठ की काली कमाई को खा रहा था, जिस पीओके को वो दुनिया के सामने आजाद कश्मीर का पाखंडी लेवल लगाकर बेच रहा था, आज उस 78 साल पुराने प्रोपेगेंडा के परखच्चे उड़ चुके हैं।
8: मौजूद है और उनकी आजादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका है, इस पर कब्जा है, इस पर सभी कब्जा है, ये एक मुतनाजा इलाका है। जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुतालिक जो बात करने का अख्तियार है वो किसी के पास नहीं है, वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है, और इस पे हम अपना हक महफूज रखते हैं। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएं बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी, और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म, अब ये हुकूमत की जंग खत्म।
5: रावलकोट के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में 80,000 से ज्यादा लोगों का सैलाब और मंच पर खड़े ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान। पीओके के लोग कह रहे हैं कि कि पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ये सीधी सीधी चुनौती मुनीर को है। मुनीर की भारी भरकम फौज और उनकी गोलियां भी बगावत की आग को ठंडी नहीं कर पा रही। जब किसी अवाम के सब्र का बांध टूटता है तो बड़े बड़े तानाशाहों के तख्तो ताज इतिहास के कूड़ेदान में बह जाते हैं।
8: और हुक्मरानों से हम कहते हैं, कि लैतो लाल से काम नहीं चलेगा। एक आता है कहता है फलाह नहीं मान रहा, दूसरा आता है कहता है फलाह नहीं मान रहा, हमने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ। रियासत के शहरी है, रियासत अवाम से है और रियासत अवाम से है और अवाम ही रियासत है। सुप्रीमियर रियासत अवाम है, अवाम ताकत है और अवाम की बात मानी जाएगी और अपनी होगी।
5: इस बार के मार्च की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें स्थानीय महिलाएं और स्कूली बच्चों ने रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लिया है। सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियोस में महिलाएं और बच्चों के हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों, भारी टैक्स और आटे बिजली की महंगाई के खिलाफ नारे लगाते हुए मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ ही पीओके में आजादी की मांग को लेकर चल रही बगावत में अब वहां का बच्चा बच्चा शामिल है।
9: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मारूख और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाएं। एक्टिविटी ने से क्या गलत किया? वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज उठाए और वो क्या रहे खबरों में कह रहे और धरने याद तक लेटेस्ट भी कह रहे कि अगर जो लड़के हुए, जो बच्चे एक्टिविटी में आए हुए, अगर वो पीछे ना गए उनके परफॉर्मेंस नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शादी कार्ड नहीं मानेंगे। ये परफॉर्म है हमारे, अगर हमारे बेफॉर्म नहीं माने जाएंगे, जाएं आप लोग के बेफॉर्म अपनी मर्जी से जिया, मैं आपको आपके बेफॉर्म्स की भी जरूरत नहीं है। और मेरी आप सब पाकिस्तानी आवाम से गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े हो, हमें हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। क्यों आप लोग पीछे खड़े? हमारे साथ अल्लाह खड़े है, प्लीज हमारा साथ दें।
5: पीओके में भड़की आजादी की इस आग पर अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। भारत ने दो टूक कह दिया कि पीओके में जारी ये महाविद्रोह पाकिस्तान के दशकों पुराने शोषण, बुनियादी अधिकारों के हनन और प्रशासनिक जुल्म का नतीजा है।
10: देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहाँ का प्रशासन, वहाँ का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीज़ों को रोका गया है, इंटरनेट ब्लैकआउट को लागू किया गया है और निहत्थे नागरिकों पर के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घोर दुर्व्यवहारों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराएगी।
5: उबाल बता रहा है कि पीओके की फॉल्ट लाइन एक्टिव हो चुकी है। पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर के नाम पर जो गुब्बारा फुलाया था, उसकी पूरी दुनिया के सामने हवा निकल चुकी है। प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं। सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा होगा प्रभाव, अलग अलग राशियों के जिंदगी में क्या होगा बदलाव, और सूर्य देव किसको पहुंचाएंगे फायदा और किसको करेंगे नुकसान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: कैबिनेट और संगठन में हेरफेर में बदलाव की खबरों के बीच प्रधानमंत्री आवास पर हुई मीटिंग करीब दो घंटे तक चले मंथन में अमित शाह नितिन नवीन और बीएल संतोष रहे मौजूद। पंचायत आज तक के मंच पर दावे अपने अपने सीएम योगी बोले प्रचंड बहुमत से बनाएंगे जीत की हैट्रिक विपक्ष का दावा जनता को बीजेपी पर नहीं है भरोसा। मदन मित्रा के भी बागी होने के बाद बीजेपी पर भड़की ममता कहा इनके इशारों पर हमारे नेताओं पर दबाव लेकिन विचारधारा से हमारा कोई समझौता नहीं। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च बीटा वर्जन में रेल टिकट बुकिंग होगी सुपरफास्ट नई डिजाइन और फीचर्स का अनुभव ले सकेंगे लोग। और पीओजेके में पाकिस्तान को खुला चैलेंज आंदोलनकारी नेता मान खान शहबाज मुनीर को ललकारते हुए नजर आए कहा ये कब्जे वाला इलाका रावलकोट में उमड़ी भीड़। आज तक पंचायत में जब सियासी दिग्गजों का मेला लगा तो एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे की गूंज सुनाई दी जिसने साफ कर दिया कि 2027 के चुनावों में यह सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है।
1: आज तक पंचायत का मंच सजा तो एक बार फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की गूंज सुनाई दी।
2: जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास किए अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं।
1: विपक्ष ने साफ किया कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर ही सियासी मैदान पर उतरने वाले हैं।
3: चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा हम मुद्दा बनाओ या ना बनाओ जो साधारण जनमत है जो साधारण व्यक्ति है वो रोज पूछता है बाबू अयोध्या में मंदिर से कैसे चोरी हो गया ये लोग क्यों चुरा ले गए मामला वो हमको नहीं चोर बताते हैं समाजवादी पार्टी को नहीं बताते हैं वो उन्हीं को